0: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित आईवाईसी मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं झंडे लेकर इकट्ठे हुए हैं। क्या है बड़ी मांग?
1: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
2: वहीं बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
3: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
4: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद बदलाव किया गया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही
5: है। এবং যে যে রাজ্যে এসআইআর এর নামে দখল করে ইভিএম মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে জ্ঞানেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে, সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কান্ট্রি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য ডেমোক্রেসি, ইউ আর লায়াবল টু দ্য কনস্টিটিউশন। But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
4: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
6: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
7: चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की सैलरी भी बराबर होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग में फैसले होते हैं सर्वसम्मति के साथ। लेकिन दावा यह है कि कई मामलों में इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों ही चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे चुनाव आयोग इनकार कर रहा है।
8: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईसीआई नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखवीर सिंह संधु ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
9: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है। अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
10: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
8: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
11: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
8: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले बीजेपी, आरएसएस और ईसी ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया, कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
3: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इंफॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
8: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
12: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
7: चुनाव आयोग की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। ईसीआई ने सभी काम कानूनों और आयोगों के निर्देशों के अनुसार होने की बात कही है।
8: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
13: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
8: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
7: बीजेपी राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी के नए प्रभारियों और 24 राज्यों में सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है।
8: बीजेपी की नई टीम तैयार है। आने वाले चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है वो ये हैं। अनिल बलूनी का कद बढ़ाया गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी के संचार विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 4 सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है। आज तक ब्यूरो।
7: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल की खुदकुशी के मामले में आज तक के पास एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि साहिल जब मोबाइल पर चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गए। इससे पहले साहिल के माता पिता के टॉर्चर और जाति सूचक शब्दों वाले आरोपों के बाद मुंबई पुलिस प्रोफेसर दुल्ला के खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। अब IIT बॉम्बे के प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है।
8: justice! Justice! Justice! Justice!
14: आईटी बॉम्बे में बीटेक स्टूडेंट साहिल वाकोडे की खुदकुशी पर मचे हंगामे के बीच एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ आज तक के पास है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि साहिल नकल के दौरान मोबाइल में चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, तभी प्रोफेसर दुल्ला ने उसे देख लिया और उसे बाहर ले गया। अब इस वीडियो की तारीख देखिए, 18 सितंबर। अब समय देखिए, 12:38। यही वो समय है जब वो पेपर अपलोड करते पकड़ा गया। अभी तक साहिल के माता पिता और साथी छात्र नकल वाले आरोपों से इनकार कर रहे थे।
15: साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। अब ये सीसीटीवी फुटेज एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है जिससे पुलिस भी प्रोब करेगी, पुलिस भी इसके डिटेल्स चेक कर रही है। पुलिस ये सीसीटीवी फुटेज ले चुकी है अपने हाथ में, मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ था उस दिन, उस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कहा गया था आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उस दिन साहिल जो है अपने क्वेश्चन पेपर को उसने चैट जीपीटी पर अपलोड कर दिया था और उसके बाद उसमें से आंसर्स देख रहा था, तब उसे प्रोफेसर ने पकड़ा था और बाहर ले जाया गया था।
14: आईटी बॉम्बे भी एक्शन में नजर आ रहा है। छात्र को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब आईटी बॉम्बे मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी।
16: आईआईटी पवई कैंपस में साहिल वाघमोड़े ने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद अब आईआईटी पवई द्वारा एक 10 सदस्यीय कमेटी की स्थापना की गई है जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस पूरे मामले की इस कमेटी द्वारा जांच की जाएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। दूसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इसको लेकर मामला दर्ज किया था और अब उन्होंने प्रोफेसर दुल्ला को स्टेटमेंट के लिए समन किया है। कल साहिल वाघमोड़े के पिता ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया और उन्होंने बताया कि साहिल वाघमोड़े ने शिकायत की थी कि किस तरीके से उसे कैंपस में हरास किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, साथ ही जातिवाचक टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर साहिल काफी परेशान था। पिछले 3 महीनों से यह सब चल रहा था और उस साहिल ने शिकायत की थी, ऐसा साहिल के परिवार का कहना है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल के मोबाइल लैपटॉप को जब्त कर लिया है और अब इसी के आधार पर उनकी जांच आगे बढ़ेगी।
14: आज आईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर दुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
17: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है? सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाकोड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है और हमको पता चल सकता है कि चीटिंग हुई है नहीं। साहिल वाकोड़े को जो जातिवाचक गाली दी गई है, उनको एग्जाम के टाइम पे जो टॉर्चर किया गया है, प्रोफेसर दुल्ला और दो प्रोफेसर्स और एचओडी ने साहिल वाकोड़े को एग्जाम के टाइम में अपने केबिन में जाके और पूरे फ्लोर के सामने जो गाली गलौज की, जो उनके साथ जातिवादक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो सामने आ सकता है। इसके डर से आईआईटी पवई अभी तक सीसीटीवी दे नहीं रही है, नहीं तो चीटिंग की है तो साबित करो।
14: इधर बाकी दल भी सुसाइड पर हो रही सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं।
18: देश के अत्यंत प्रतिष्ठित ऐसे आईआईटी पवई में इस तरीके की सुसाइड होना ये अत्यंत खेदजनक और चिंताजनक बाब है। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अगर एकाधी घटना आत्महत्या और वो भी SC ST की अगर होती है तो निश्चित ये बहुत ही दुर्दैवीय ऐसी बाब है। और इस संदर्भ में आईआईटी के जो संचालक है सुनील केदारे जी, उनसे हम लोग मिले हैं, उनसे हमारी सखोल चर्चा हुई है और उसमें यही निष्पन्न हो रहा है कि उन्होंने जैसे कहा हमको कि यहाँ 13,000 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 1,250 प्राध्यापकों की पोस्ट है, लेकिन उसमें से करीबन 778 पदे भरी हुई है, उर्वरित पदे रिक्त है। SC ST की जहाँ तक बात करें तो 50 से ज्यादा एससी एसटी और 50% से ज्यादा ओबीसी की पदे अभी भी रिक्त है।
8: आरोपी प्रोफेसर को छुट्टी पर भेजे जाने के बावजूद आईआईटी कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर डुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
19: ये कैसे छोटे एट्रोसिटी लागू की जाती है लोगों पर कि जो ये स्टूडेंट है इसने जो आत्महत्या की है वो उसके परिणाम भोगने नहीं थे कि अगर पकड़ा जाता, वो अगर सस्पेंड हो जाता तो घर वालों को क्या कहता, तो उसका इंटरनल प्रेशर था, कहीं पे भी पेपर लीक हुआ है इसलिए उसने किया है क्या आत्महत्या नहीं, कहीं पे अगर उसका पढ़ाई पूरा नहीं हो इसलिए उसने आत्महत्या किया है कि नहीं, वो शॉर्टकट लेकर पास होने का प्रयत्न कर रहा था और इसलिए वो पकड़ा गया, और घर वालों के प्रेशर की वजह से, कहीं पे तो घर वालों का भी प्रेशर होगा उसके ऊपर कि आपको पास होना ही है, तो वो प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। और आज घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उन पे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
8: इससे पहले 22 सितंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने साहिल वाकोड़े के माता पिता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बेटे को टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे।
20: अभी फिलहाल तो मैं दो ही आरोपी बोल रहा, शिरीष केदारे और डुल्ला ना, श्री नारायण डुल्ला, उसको अरेस्ट करिए, बाद में जो जो कुछ उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख, चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब। वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है, हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या कर की है, हत्या की है उसने। ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको।
21: मेरा बच्चा गया है, हाँ मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, आप मेरा बच्चा नहीं तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था, आप पत्रकार है आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है, और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए, दलित बच्चों को क्यों वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं।
8: हालांकि पुलिस पहले ही प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC ST एक्ट में केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है कि क्या नकल वाला CCTV सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर डुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर से दिल्ली में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए।
22: ये गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंग रेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
23: बच्चों की सिंपल डिमांड है बेटर CCTV, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपसेस, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड है जो उन्हें रखी है।
22: उधर दिल्ली गैंग रेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंग रेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
24: इस वक्त आप देखिए हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे, जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहां पर आपको नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है, और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
22: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर DDA के VC और NCD कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है, आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपा पोती की जाती है, आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। आज तक ब्यूरो।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कौन से ग्रह मोटापा बढ़ा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति दुबला पतला होता है? और कौन सा रत्न मोटापा बढ़ाता है और कौन सा रत्न मोटापा घटाता है? क्या है मोटापे का ग्रहों से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

सेवा तीर्थ में चिंतन बैठक का दूसरा दिन। सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से पीएम मोदी का संवाद। सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम। बैठक में पूरी केंद्रीय मंत्री परिषद होगी शामिल। शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा, ट्रंप ने किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात, व्यापार और रणनीति मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत ने खोला कूटनीतिक मोर्चा। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने रूबियो से की बात। मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ का मुद्दा उठाया। यूएनजीए में पेजेस्कियान का तीखा भाषण। ईरानी राष्ट्रपति बोले, झुकेंगे नहीं, बातचीत के लिए दरवाजे खुले। बोले, परमाणु अधिकार पर समझौता नहीं। पटना में दिन दहाड़े गोलीकांड, जन सुराज कार्यकर्ता को मारी 5 गोलियां। सीसीटीवी में दिखे 3 बदमाश। कानून व्यवस्था पर फिर खड़े हुए सवाल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर खबर इस बुलेटिन में है, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर की। कैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ला रेड कार्पेट वेलकम दे रहे हैं। तो अमेरिका दौरे पर 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं जिनपिंग, जिनका ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने खुद खास अंदाज में स्वागत किया। करीब 6 दशक बाद ऐसा हुआ है जब किसी विदेशी नेता का खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत किया हो। 21 सदस्यीय ऑनर कॉर्डन, अमेरिकी एयरफोर्स बैंड और तोपों की सलामी के बीच जिनपिंग का स्वागत हुआ है। इसके बाद दोनों नेता आज व्हाइट हाउस में औपचारिक मुलाकात करेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी। बातचीत में ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी, AI, सैन्य संबंध, मिडिल ईस्ट, रूस यूक्रेन युद्ध, स्पेस, आर्म रेस और ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो गुरुवार को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी आयोजित होगा। देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं सेंट एंड्रयूज एयरबेस से, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहुंचे अपने 3 दिवसीय इस यात्रा पर। और अमेरिका के इतिहास में ये दशकों बाद हो रहा है जब खुद को

0: अमेरिकी राष्ट्रपति रेड कार्पेट पर अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ। ये देखिए ट्रंप जा रहे हैं वहां पर और खुद पहुंचे हैं उस एयरबेस पर जहां पर चाइनीज राष्ट्रपति का विमान, विशेष विमान आया, वो उनको रिसीव करने पहुंचे, उनको ऑनर दिया गया। तो ऊपर फाइटर जेट्स और नीचे सैनिकों के साथ तलामी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका के इतिहास में बिल्कुल नई तस्वीरें कि अमेरिका में जब जैसे जिनपिंग पहुंचे उनका स्वागत करने ट्रंप वहां खुद पहुंचे थे, भव्य स्वागत हुआ है। ये देखिए, ये वो देश हैं जिन्हें आर्च राइवल कहा जाता है। दुनिया के दो अलग एक्सिस पर, दो अलग कॉन्टिनेंट पर बसे ये मुल्क जो कि एक दूसरे के करीबी दुश्मन कहते हैं। और आज करीबियां ऐसी देखिए कि ट्रंप के साथ आज उनकी बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे, अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और उसी के साथ जब जॉइंट एंड्रयूज बेस पर स्तोपों की सलामी दी गई, जिनपिंग का वो स्वागत हुआ जिसके बारे में खुद शायद चीन को भी अंदाजा नहीं होगा कि कहां तो अब तक बातचीत होती रही दुश्मनी की, कहां तो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा सर्वोच्च ताकत बनने की, एक पश्चिम की ताकत, एक पूरब की ताकत। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। रोहित, इन तस्वीरों के बारे में कम से कम ये कयास तो बहुत मुश्किल था कि रेड कारपेट लेकर के ट्रंप खुद एंड्रयूज बेस पर जाएंगे और जिनपिंग का स्वागत करेंगे, वो भी तब जब दोनों की महत्वाकांक्षाएं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सुपर पावर बनने की है। लेकिन इन तस्वीरों के इतर एक संदेश देने की भी क्या कोशिश आपको लग रही है कि हाँ, आइए गिले शिकवे दूर करते हैं।
1: देखिए, गिले शिकवे तो नहीं दूर होंगे आशुतोष। आई थिंक दोनों कंट्रीज एक्नॉलेज करती हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिशन है। बड़ी बात, जैसे कि आप कह रहे थे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एड्रू एयरफोर्स जाना, जॉन एफ कैनेडी गए थे 60s में यूके प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए, तो उसके बाद से कभी इस तरह का प्रोटोकॉल हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी अभी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे चाइना, तब भी इस तरह का हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखा था कि एयरपोर्ट पे लेने के लिए शी जिनपिंग आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक कहीं इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं इस विजिट की। वो इसे G2 कहते हैं, चाइना और अमेरिका की जो जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसे, और ऑब्वियसली बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा कि बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं इस पार्टनरशिप को, चाहते हैं स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन रहे, स्ट्रेटेजिक राइवलरी ना बने। और उसी के चलते मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्लान किया गया, एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे गए, मेलानिया ट्रंप को साथ में लेके गए, साथ में 21 तोपे के वहां पे सलामी दी गई, फिर F2 रैप्टर्स वहां पे थे, B1 बॉम्बर्स ने जो उनके ऊपर से गए, चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वहां पे नेशनल एंथम उनके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक रेड कार्पेट जिसपे आप दिखा रहे हैं हम तस्वीरें जहां पे शी जिनपिंग वॉक कर रहे हैं, वो रोल आउट किया गया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें देखना होगा कि क्या इसमें से एक्शनेबल चीजें कितनी होती है, और वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होगी। अगर आप ट्रेड देख ले तो दोनों की ठनी हुई है, अगर आप टैरिफ देख ले दोनों की ठनी हुई है, अगर आप AI देख ले ठनी हुई है, इंडो पैसिफिक देख ले ठनी हुई है, ताइवान देख ले ठनी हुई है, हर जगह पे जितने भी एरियाज है कहीं पे भी ऐसा नहीं कि दोनों साइड एक तरह की भाषा बोलती है।
0: लेकिन तो रोहित, जो हम रेड कार्पेट या ये जो अभी तस्वीरें देख रहे हैं, एक अंदाजा लगाना आसान ये लग रहा है कि अगर रिश्तों में शुरुआती मान लीजिए गर्माहट लानी है, कड़वाहट खत्म करनी है, तो हो सकता है टैरिफ से बातचीत हो जाए। अगर अमेरिका थोड़ा सा नरमी ये दिखाता है कि चलिए टैरिफ से बात शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजी और ताइवान और अगर इंडो पैसिफिक देखें, ये इतनी जल्दी तो हल नहीं होने वाले। लेकिन अगर ट्रेड से शुरुआत होती है तो क्या चीन भी उसी तरह की नरमी और गर्मी दिखाए अमेरिका के प्रति?
1: देखिए आशुतोष, ट्रेड तो डिस्कस करना ही होगा दोनों को। एक बुसान में जो ट्रेड ट्रूस हुआ था दोनों के बीच में 10 नवंबर को वो एक्सपायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन करने की कोशिश तो की जाएगी। अमेरिका 6 महीने का एक्सटेंशन मांग रहा है कि उसे उसी तरह बरकरार रखें और हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ कल अगर आप देखें राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उन्होंने कहा कि मेरे पास अब एक नई शक्ति आई है रशिया को प्रेशर करने के लिए कि मैं वो 100% टैरिफ लगा सकता हूं, सबसे बड़ा इंपोर्टर हम सब जानते हैं चाइना है। तो अगेन आई थिंक ग्राउंड पे रियलिटी काफी अलग है। ऑप्टिक्स में ये जो हम देख रहे हैं, यू नो अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े मास्टर है, तो वो दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा यू नो एक्साइटेड है। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अगर आप बाकी चीजों की बात करें, तो जैसे कि मैं कह रहा हूं, हमें देखना होगा आशुतोष की कल मीटिंग्स कैसे जाती है और क्या क्या होता है। हालांकि सेक्रेटरी बेसेंट ने यह जरूर कहा है कि कल एक कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, तो शायद ट्रेड को लेके ही कुछ हो, हमें देखना होगा आशुतोष। आई थिंक फॉर नाउ ये जो पॉम्प और ये जो शो है ये काफी अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे, लेकिन जहां तक दोनों देशों का सवाल है बहुत दूर दूर है।
0: दरअसल 60 की तस्वीरें जो कैनेडी का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए गए थे, अब 60 के दशक बाद अगर 2026 में खासकर ये देखें कि बीते 2 साल में चीन और अमेरिका की कड़वाहट रही है, इसीलिए कई बार तस्वीरें बहुत ज्यादा बोलती हैं और उसी के मायने लगाए जाते हैं कि अगर जिनपिंग यहां तक आ रहे हैं, हालांकि उनका डेलीगेशन पहले यहां पहुंच चुका था, कि वो खुद आ रहे हैं, ट्रंप ये नरमी दिखा रहे हैं, यानी 48 घंटे भी नहीं हुए होंगे जब वो ट्रंप चीन

0: के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे थे और 48 घंटों में इतनी कहते ना कि बाहें फैला करके स्वागत करना, तो ये उम्मीद जरूर लग रही है कि पूरे कॉन्टिनेंट में अगर शांति समझौते करने हैं तो कम से कम सुपर पावर्स को अपना अहंकार छोड़ना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेड की बातचीत अगर शुरुआत होगी, लेकिन उस शुरुआत में ट्रैक टू, जैसे आपने कहा कि बुसान में चर्चा हुई थी, कहीं तो बात आगे बढ़ी होगी ना कुछ चीजों को लेकर के एआई के पास दोनों प्लेटफॉर्म है। ज्यादातर जो कहते हैं ना कि वो आत्मनिर्भर देश है अपने आप में, तो शुरुआत करने के लिए कोई तो एक पॉइंट होगा। आज जो बायलैटरल करेंगे, डिनर होगा बायलैटरल में, कुछ तो बातचीत निकलेगी।
1: निकलेगी बिल्कुल। एआई के आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे वीकेंड पे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने कहा था हम एक हॉटलाइन बनाना चाहते हैं चाइना के साथ कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है फ्रंटियर मॉडल द्वारा तो हम चाहते हैं कि हम चाइना को बताएं, चाइना हमें बताए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अग्रीमेंट हमें दिख सकता है, लेकिन फॉलो अप डिलीवरेबल्स ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जैसे कि आप कह रहे हैं मे बी प्रूफ इज इन द पुडिंग वाली बात है, यहाँ पे हो सकता है कि ये स्टार्ट इसलिए जबरदस्त इसलिए है कि बहुत कुछ बिल्डअप कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें पे डिस्कशन हो चुकी है और कल एकदम से रेवलेशन होगा हमारे सामने कि इन 10 चीजों पे अमेरिका और चाइना जो है अब सहमत है, ऐसा होप हम कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए आशुतोष के खुद रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कल सेनेट में बयान दिया आर्म फोर्सेस के चेयर ने कि हम नहीं, हम अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेरी एडवाइस ले तो मैं बुलाता नहीं शी जिनपिंग को। तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट इज द पॉलिसी जो अमेरिका हमेशा से करता है। कोल्ड वॉर के टाइम में भी अमेरिका रशिया के साथ हमेशा एंगेजमेंट रखता था, ओपन डायलॉग रखने की कोशिश करता था। तो मुझे लगता है वही स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो शो, ये जो पॉम्प हमें दिख रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है।
0: एक बार जरा फुल स्क्रीन पर हमें तस्वीरें देखनी चाहिए, मतलब इतना शानदार जिस तरह से स्वागत हुए। देखिए मेलानिया ट्रंप मिल रही है प्रेसिडेंट जिंग के साथ और ये ट्रंप जिंगपिंग का स्वागत करते हुए, बॉडी लैंग्वेज देखिए दोनों की, दो बड़े नेता। और आप सोच सकते हैं कि 3 या 4 दिन पहले किस तरह के बयान चीन की ओर से आते थे, खासकर ताइवान को लेकर के, इंडो पैसिफिक को लेकर के। ट्रंप किस तरह धमकी देते थे कि 200-300% तक टैरिफ कर दूंगा और ऐसा लगा कि ये लोग शाब्दिक विश्व युद्ध में घुस चुके हैं। लेकिन अब देखिए कि कैसे स्थिति पलट जाती है और यही तो जियोपॉलिटिक्स है। इसका एक दूसरा पहलू है कि और आज जब दौरा होगा तो देखिए ज्वाइंट बेस इंटरव्यू में उनका स्वागत हुआ, स्वागत करने के लिए खुद ट्रंप पहुंचे और कहते हैं कि 60 के दशक के बाद जब केनेडी आखिरी बार गए थे उसके बाद ये परंपरा सीधे ट्रंप ने तोड़ी है। व्यापार, तकनीक, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। स्टेट डिनर भी दिया जाएगा जिनपिंग को और उसी स्टेट डिनर के बाद जब प्रोटोकॉल फिर बायलैटरल्स होंगे व्हाइट हाउस में, निजी मुलाकात होगी जिसमें द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी। उन द्विपक्षीय वार्ताओं पर किन विषयों पर चर्चा होगी उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन 3 साल बाद अमेरिका में जब जिनपिंग पहुंचे हैं, ये देखिए कि एक अलग गर्माहट। कौन कह सकता था कि ये प्रतिद्वंदी हैं, इनके बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा रही है, खासकर रूस को लेकर के। व्यापार, तकनीक, ईरान, ताइवान, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जिन तस्वीरों को हम देखते हैं, कहते हैं ना जियोपॉलिटिक्स में रोहित तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और आप सोचिए उसका उदाहरण ईरान नजर आता है कि ईरान के साथ आपने बमबारी की है लेकिन आपने उनको यूएन में आने के लिए, मेजबान देश होने के नाते आप उनको यूएन में आने दे रहे हैं और वहीं पर आकर के वो मीनाब की तस्वीरें दिखा करके कहती हैं देखिए अमेरिका ने क्या किया। जिनपिंग यहां पर आ रहे हैं, उनका स्वागत खुद ट्रंप कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना आयरनी, इतनी आयरनी हो रही है इसमें हमारे, खासकर तस्वीरों के ऑप्टिक्स में, शायद यही जियोपॉलिटिक्स भी है।
1: बिल्कुल 100%। और मैं वही कह रहा था कि अमेरिका जब युद्ध, कोल्ड वॉर था रशिया के साथ, तब भी एंगेजमेंट तो अमेरिका रखता ही था, बात करते ही थे, बातचीत होती थी। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये दो चीजें हैं आशुतोष। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण कि कल हमें देखना होगा डिलीवरेबल्स, जब ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो उसमें किस किन किन बातों पर बात हुई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो चाइना से एक बयान जारी हुआ था कि ह्यूमन राइट्स को लेकर एक रेड लाइन है, चाइना बात नहीं करना चाहता, ताइवान को लेकर चाइना बात करना चाहता। तो इस तरह की कंडीशंस रखना भी अपने आप में बड़ी बात है और दिखाता है कि चाइना कितना बड़ा अपने आप को शक्तिशाली मानता है और हो चुका है शायद कि वो टर्म्स डिक्टेट कर रहा है कि किस किन किन किन चीजों पे वो बात करना चाहेगा और नहीं करना चाहेगा। और अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, हमने देखा है बहुत बार जब वो आप एंगेज करते हैं ऑन 1-to-1 पर्सन तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत एमिकेबल होते हैं, बहुत वार्म होते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली देखना होगा जब शी जिनपिंग यहां से जाएंगे उसके बाद किस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। आई थिंक दैट विल बी द रियल प्रूफ कि किस तरह से बातचीत हुई है। हालांकि कल जैसा कि हम बता रहे थे स्टेट डिनर होने वाला है, उसमें सारे टेक ब्रोज आने वाले हैं, यहां तक कि कहा जा रहा है इलॉन मस्क भी आएंगे। तो हमें देखना होगा कि कल ये जो ऑप्टिक्स है इसके बियॉन्ड क्या क्या होता है। आई थिंक दैट वुड बी द रियल टेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, पूरे दुनिया नजर लगा के देखेगी कि ये दोनों लीडर्स आपस में क्या बातचीत करते हैं, और क्या सचमुच ये मिलके जो दो बड़े युद्ध हैं ईरान का और रशिया, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, उन युद्ध को क्या रोक सकते हैं या नहीं।
0: मेरा अगला सवाल दरअसल इसी को लेकर के था कि ईरान और रूस को लेकर के क्या ट्रंप और जिनपिंग में किसी तरह की बातचीत हो सकती है, खासकर ये रिपोर्ट्स देखें कि पेंटागन को बार बार लगा कि चीन या

0: रूस की तरफ से किसी न किसी तरह की लॉजिस्टिक अप्रत्यक्ष रूप से मदद जरूर की गई ईरान की, तो क्या उसमें भी ट्रंप किसी तरह की चर्चा शुरुआत कर सकते हैं?
1: और यही बात सेनेट में के आम फोर्सेस कमेटी के चेयरमैन निकल गई कि हम क्यों बुला रहे हैं उनको, क्योंकि जब चाइना, हम जानते हैं कि चाइना ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है ईरान को और ईरान ने किस तरह के से अमेरिकन को मारा है इस युद्ध में, तो वाई? तो आई थिंक ये सारी चीजें होंगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सारी चीजों पर डिस्कशन होगा। थोड़ी देर पहले जब वो वापस व्हाइट हाउस आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, ईरान को लेकर भी शायद कुछ बातचीत होगी, तो हमें देखना होगा। आई थिंक सारी चीजें, दो महाशक्तियां हैं तो सारी चीजें ऑन द टेबल होगी, लेकिन कितना लेवरेज अमेरिका कर पाएगा चाइना को, वो आई थिंक अभी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर करना होता तो इससे बहुत पहले हो चुका होता, ये वॉर बहुत पहले खत्म हो चुका होता, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है इस वॉर से, क्योंकि ऑयल इंपोर्टर सबसे बड़ा वही है ईरान का। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, काफी चीजें हैं, कंपीटिंग प्रायोरिटीज है दोनों देशों की, और उसमें क्या उभर के आएगा, किस तरह से चीजें होगी, और आने वाले समय में भारत का जिक्र भी मैं इसमें करूंगा कि हमें भी, भारत को भी देखना होगा, अगर ये दोनों शक्तियां आपस में बहुत सारे समझौते कर लिए थे तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है वो अपने आप हमेशा की तरह यू नो विल बी सक्सेसफुल अगेन। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ इन चीजों को लेकर अभी फिलहाल। आशुतोष,
0: दरअसल इंडो पैसिफिक की बात आपने की, मैं इसीलिए पूछना चाहता कि भारत को इस मुलाकात के को किन नजरियों से देखना चाहिए, क्योंकि ताइवान में अगर जिस तरह के तनाव हैं दोनों के बीच में, अमेरिका क्या उसमें पीछे हटेगा? संभावना ना के बराबर है। भारत के लिए इन दोनों की मुलाकात, इनके बीच होने वाले समझौते, और उन समझौतों के बाद अगर कोई कहते ना कि एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, भारत को उसे किस नजरियों से देखना चाहिए? हमारे लिए खतरा क्या हो सकता है और इन मुलाकात के अच्छे मायने क्या हो सकते हैं?
1: देखिए, अगर दोनों देश स्पेसिफिकली, अगर हम छोटी छोटी बातें करें, अगर ईरान को लेके कोई एग्रीमेंट हो जाता है, या अगर आश्वासन दिया जाता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि वो टैरिफ नहीं लगाएंगे 100%, हालांकि उनका सब शक्ति है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अगर दोनों देश इंडो पैसिफिक को लेकर कोई बात करे तो वो भी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों देशों में ट्रेड को लेके किसी तरह का समझौता होता है तो एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क हमें मिल जाता है कि किस तरह से अमेरिका के साथ डील किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं आई थिंक, बट अगेन यू नो हम टेंजेंशियल हैं अभी इसमें। आई थिंक पूरी दुनिया जो है वो देखेगी कि क्या दोनों नेता डिस्कस कर पाते हैं, कितने वार्मली, जितने वार्मली मिल रहे हैं क्या इतने वार्मली वो बिहाइंड द डोर्स भी डिस्कस कर पाएंगे चीजों को। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वॉशिंगटन डीसी में बड़े कॉशियस हैं, उन्हें लग रहा है कि ये मीटिंग होनी चाहिए, ऑब्वियसली हो रही है, लेकिन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रहे हैं अभी।
0: एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर मुलाकात में क्या क्या होने वाला है, किस तरह की बैठकें होंगी, बैठकों का प्रमुख एजेंडा क्या है। जिंगपिंग पहुंचे एंड्रूज बेस पर, उनका स्वागत हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप मेलानिया ट्रंप के साथ पहुंचे जिंगपिंग का स्वागत करने के लिए। तो अब देखिए, जिंगपिंग की अमेरिका यात्रा, स्टेट डिनर का आयोजन 1874 में राष्ट्रपति केनेडी पहुंचे थे। 152 साल में 300 लोगों को राजकीय भोज का सम्मान मिला है। मेहमान देश के साथ संबंध मजबूत होते हैं, तो स्टेट डिनर के मायने क्या है अमेरिका में, खासकर इस तरह कैसे जो के मेहमान आते हैं उनको स्टेट डिनर दिया जाता है। 1874 में राष्ट्रपति एलिस ग्रांट ने यह परंपरा शुरू की थी और 152 साल में अब तक कुल 300 लोगों को राजकीय भोज का सम्मान मिला है। कहते हैं इससे आत्मीयता बढ़ती है, रिश्तों जो पारस्परिक रिश्ते होते हैं मजबूत होते हैं, तो मेहमान देश के साथ संबंध मजबूत करने की भी कोशिश की जाती है, और उसी के साथ साथ बायलैटरल्स की जो आधारशिला है वो भी रखी जाती है कि जब रिश्ते पारस्परिक नेताओं के बीच बेहतर होते हैं तो उसे एक एटमोस्फेयर मिलता है, एक माहौल बनता है कि अच्छे एटमोस्फेयर में हम बातचीत कर सकते। इन पांच तस्वीरों के जरिए समझिए कि जिनपिंग की अमेरिका यात्रा किस लिहाज से न सिर्फ पूरब के लिए बल्कि पश्चिम, सिर्फ दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जिनपिंग वहां पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है कि अमेरिका की सेना उन्हें जो है गार्ड ऑफ ऑनर देती है, और उसके बाद सीधी बातचीत की तैयारियां हो रही है एंड्रयूज बेस पर। देखिए, ट्रंप खुद सलामी देने के लिए पहुंचे। आप सोच रहे हैं इन तस्वीरों के मायने की, आखिर 60 के दशक के बाद अगर ये परंपरा व्हाइट हाउस ने तोड़ी है तो कोई खास वजह से? हालांकि बहुत ज्यादा मायने ये नहीं लगाए जाते कि सारी चीजों पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि एक एशिया की सुपर पावर है, एक पश्चिम का सुपर पावर है, या कहें दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, और उस दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान अगर खुद चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए स्वागत के लिए पहुंचता है तो वो ये संदेश जरूर देना चाहता है कि हम कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। दो विश्व शक्तियां आज के समय में आपस में लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं। टेक्नोलॉजी, रोहित हमारे साथ वॉशिंगटन से बने हुए, रोहित, टेक्नोलॉजी, AI, ट्रेड, ये वो ऐसे क्षेत्र है जहां हमने देखा है कि जो बहुत कहते ना आर्च राइवल्स होते हैं वो भी एक टॉक टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर बातचीत कर लेते हैं। आपने कहा एलन मस्क आएंगे, चीन के पास भी अपना एलन मस्क है, वो ले आकर के चलिए हम टेक्नोलॉजी पर बात कर लें, एक हॉटलाइन शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसे में कोई स्थिति आती एस्केलेशन हो तो हम डीएस्केलेशन लैडर पर थोड़ा सा नीचे उतर सकें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो आपने जिक्र किया ईरान, रूस, ताइवान, इंडो पैसिफिक, जहां स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट आएंगे। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर दोनों देशों में कौन पहला कदम उठाएगा नरमी बरतने के लिए कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे?
1: देखिए, एक तरह से ऑलिव ब्रांच तो दी गई है सेक्रेटरी बेसेन द्वारा। पिछले वीकेंड न्यूयॉर्क में बात कर रहे थे वो वाइस प्रीमियर के साथ, और उन्होंने उन्होंने खुद ने बात मीडिया में ये बताई कि हम एक एआई हॉटलाइन लेके इस तरह का हम प्रस्ताव लेके गए हैं और शायद हो सकता है कि उसमें अब चाइनीज सहमति मिल जाए। तो अगेन एआई को लेके मे बी एन ऑलिव ब्रांच, राइट? ट्रेड ट्रूस अगर उसको बढ़ा दिया जाता है, 10 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो दैट कुड वो भी बहुत अच्छा एक सिग्नल हो सकता है कि दोनों देश मिलके और भी आगे काम करना चाहते हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं और बहुत ज्यादा ऐसी भी चीजें हैं, मुझे लगता है हर जगह पे अगर आप देखें दोनों देशों के बीच में तो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन हर जगह है। अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, अमेरिका को सेमीकंडक्टर्स के लिए काफी चीजें चाहिए जो नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट चाइना ने कहा था कि हम आपको सप्लाई करेंगे सेमीकंडक्टर्स और वो सारी चीजें, लेकिन वो नहीं हो पाया है। और अगर आप ट्रेड नंबर्स उठा के देखें तो उसमें भी जब चाइना ने कहा था कि हम बीफ खरीदना शुरू कर, सोयाबीन खरीदना शुरू कर देंगे, तो वो नंबर्स वहां तक नहीं जितना अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था। तो देखना होगा, यू नो, एज आई सेड, सारी चीजें ऑन द टेबल अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और कहां कहां ये सहमति कर पाते हैं दोनों देश, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन लगता जरूर है कि शायद शायद अगेन ट्रेड में शायद ट्रूस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और दूसरी चीज जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा, तो शायद वो एआई को लेकर जो गार्डरेल्स है उसको लेके शायद कुछ।
0: ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आखिर ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद आगे भी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, बातें होंगी, तो बातें बनेंगी, और ये देखना होगा कि आगे पूरे विश्व शांति के लिए दोनों विश्व शक्तियां आखिर में क्या फैसला लेते हैं। रुक करते अगली खबर का। पटना में जनसुराज के नेता और वार्ड नंबर 24 के पार्षद ज्ञानवती देवी के पति अनिल यादव पर जानलेवा हमला हुआ है। बिहार में एक बार फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं। बुधा कॉलोनी थाना इलाके में उनके ही अपार्टमेंट की पार्किंग में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक दो बाइक पर सवार 3 हमलावर वहां पहुंचे। अनिल यादव पर 4 से 5 गोलियां दागकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद प्रशांत किशोर अस्पताल पहुंचे। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, देखे सीसीटीवी तस्वीरें भी आ रही है कि जो अपराधी आते हैं बेखौफ आते, देख रहे हैं कितने आराम से जा रहे हैं, डर ही नहीं है, और उसके बाद बैठने के बाद बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पिस्टल निकाला और अंधाधुंध फायरिंग की। अनिल यादव गंभीर हालत में अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। देखिए तस्वीरें, ये बिहार की कानून व्यवस्था का प्रतिबिंब है। ज्यादा समय नहीं हुआ, आपने जमुई की घटना देखी है कि कैसे दो बच्चों के साथ सड़क पर, और उसके बाद फिर एक बार, अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो पता भी नहीं चलता कि स्थिति क्या हो रही है। देखिए 3 आते हैं और किसी तरह का डर आपको लग रहा है इनके चेहरों पर, हेलमेट पहने हैं, बैठे आराम से पिस्टल निकाला, मानो जैसे किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग चल रही हो। धंधाधुंध गोलियां मारी और अपार्टमेंट की पार्किंग पर, बिल्कुल उनको पता है कि वहां, ये देखिए बगल में लोग भी जा रहे हैं, किसी तरह का कोई डर नहीं है। और उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी अब बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
2: पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने क्षेत्र के चकाराम इलाके में अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, ये घर जो है, ये अपार्टमेंट अगर कहा जाए, सुखिया महल, ये वार्ड नंबर 24 की वार्ड पार्षद ज्ञानवती देवी का है और इनके पति को अपराधियों ने गोली मार दिया है। 5 गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी 2 बाइक से 3 की संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ पे बैठे हुए थे ज्ञानवती देवी के पति अनिल यादव, और 3 अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हैं, और जिसके बाद जो है उनके पति अनिल यादव बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उनके साथ जो बैठे लोग थे वो उन्हें आनंद फानन में निजी अस्पताल ले जाते हैं और फिलहाल वहां पे उनका इलाज चल रहा है। स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है क्योंकि 4 से 5 गोलियां लगी हैं जो खबरें आ रही है। और बुद्धा कॉलोनी थाना का ये पॉस इलाका है और इस इलाके में देखिए ये सुखिया महल नाम का ये अपार्टमेंट है और इसमें गर्ल्स हॉस्टल भी चलता था। इसी अपार्टमेंट के नीचे शाम में बैठे हुए थे ज्ञानवती देवी के पति अनिल यादव और घात लगाए अपराधी यहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जिसमें अनिल यादव बुरी तरह घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और देखिए एफएसएल की टीम जो है इस पूरे एरिया को जो है अपने कब्जे में ले ली है और इस पूरे इलाके में जो है छानबीन कर रही है।
0: जंगल राज और कानून व्यवस्था का नाम लेकर के सत्ता में आई सम्राट सरकार की नाक के नीचे पहले जमुई की घटना और अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्या हुआ इस बुद्धा कॉलोनी में। एक अपार्टमेंट के गेट के बाहर अंधाधुंध तरीके से बेखौफ बदमाश आते हैं, गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं और मारी भी किसे जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को। और इसीलिए एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या सम्राट

0: सरकार के नाक के नीचे कानून व्यवस्था धराशायी हो रही है।
1: पटना में बुद्धा कॉलोनी इलाके में वारदात और कैमरे में कैद हमले की तस्वीरें। बाइक से आए थे हमलावर, दो बाइक तीन हमलावर और निशाने पर थे जन स्वराज नेता अनिल यादव। दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 24 की पार्षद ज्ञानवती देवी के पति और जन स्वराज नेता अनिल यादव को उनके ही अपार्टमेंट की पार्किंग में बदमाशों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक दो बाइक पर सवार तीन हमलावर अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे और अनिल यादव पर चार से पांच गोलियां दागकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
2: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।
1: हमले के बाद अस्पताल में नेताओं का पहुंचना भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जांच में जुटी है।
3: अभी उन्होंने कुछ नहीं बता पाए हैं, उन्होंने बोला है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस हर एक बिंदु पे जांच कर रही है।
4: किसी पार्टी में भी
3: थे? जन स्वराज पार्टी से जुड़े
4: हैं।
1: पटना में हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बहस तेज कर दी है। पटना से सुजीत कुमार, आज तक ब्यूरो।
0: उधर दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक बार फिर राजधानी में सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे।
5: गुस्सा है उस सिस्टम के खिलाफ जो देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाता। जगह बदलती है, पीड़ितों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो बेटियों की सुरक्षा के हालात। दिल्ली में श्रीराम लेडी कैंपस के पास हुए गैंग रेप को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं।
6: बच्चों की सिंपल डिमांड है, बेटर सीसीटीवी, बेटर पुलिस कवरेज, बेटर सेफ्टी बियॉन्ड कैंपस। पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाए, ये कुछ डिमांड है जो उन्हें रखी है।
5: उधर दिल्ली गैंगरेप के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पार्क में गैंगरेप के बाद अब पार्क की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है।
7: इस वक्त आप देखिए, हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यहां पर पेट्रोलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए नजर आएगी। आप देखिए, हर जगह जिधर भी आपकी निगाह जाएगी, ये आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान नजर आएंगे। जो न सिर्फ जो मेन जो ये वॉकिंग ट्रैक है यहां पर आपको नजर आएंगे, बल्कि अंदर पार्कों के अंदर भी मूवमेंट है, नजर है, और ये लगातार ये पूरे पार्क में इसी तरीके से राउंड ले रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं।
5: देश की राजधानी में हुई इस दरिंदगी को लेकर उपराज्यपाल भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीए के वीसी और एनसीडी कमिश्नर के साथ बड़ी बैठक की। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे अपराधों के खिलाफ देश की राजधानी अब तक क्यों नहीं तैयार है? आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं और फिर एक्शन के नाम पर लीपापोती की जाती है? आखिर बेटियां राजधानी में कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज तक ब्यूरो।
0: रुकने ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
9: कौन से ग्रह मोटापा बढ़ा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति दुबला पतला होता है और कौन सा रत्न मोटापा बढ़ाता है और कौन सा रत्न मोटापा घटाता है? क्या है मोटापे का ग्रहों से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
10: न
4: नई सरकार।

0: सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
1: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है,
2: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित।
3: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है।
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार।
4: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
5: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर सकते।
0: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: कौन से ग्रह मोटापा बढ़ा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति दुबला पतला होता है? और कौन सा रत्न मोटापा बढ़ाता है और कौन सा रत्न मोटापा घटाता है? क्या है मोटापे का ग्रहों से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

सेवा तीर्थ में चिंतन बैठक का है दूसरा दिन। सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से पीएम मोदी का संवाद, सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम। बैठक में पूरी केंद्रीय मंत्री परिषद होगी शामिल। शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा, ट्रंप ने किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात, व्यापार और रणनीति मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत ने खोला कूटनीतिक मोर्चा। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने रूबियो से की बात। मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ का मुद्दा उठाया। यूएनजीए में पेजेस्कियान का तीखा भाषण। ईरानी राष्ट्रपति बोले, झुकेंगे नहीं, बातचीत के लिए दरवाजे खुले। बोले, परमाणु अधिकार पर समझौता नहीं। पटना में दिनदहाड़े गोलीकांड, जन सुराज कार्यकर्ता को मारी 5 गोलियां। सीसीटीवी में दिखे 3 बदमाश, कानून व्यवस्था पर फिर खड़े हुए सवाल।

0: फिर के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। चुनाव आयोग पर लगातार एसआईआर प्रक्रिया के बाद एक से एक सवाल उठ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट से वो सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष एक सुर में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने, उन्हें गिरफ्तार करने और केस चलाने की मांग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में पिछले 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के दावों को ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के उस आरोप से जोड़ा जा रहा है जिसे विपक्ष लोकतंत्र पर बड़ा हमला और वोट चोरी बताता है। देखिए रिपोर्ट।
1: क्या चुनाव आयोग के अंदर सर्वसम्मति से फैसले नहीं लिए जा रहे?
2: पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में एसआईआर करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है।
1: क्या एसआईआर के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्तों में मतभेद था?
3: याद रहे,

0: एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना।
1: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग 3 सदस्यों की संवैधानिक संस्था है जो देश में एसआईआर की प्रक्रिया में लगी है, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन चुनाव आयोग से जुड़े इस विवाद में अब 2 किरदारों की भी एंट्री हो गई है। सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी दोनों ही चुनाव आयोग थे। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के 2 सदस्यों ने, यानी सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने, बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है।
2: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
1: जैसे ही ये दावा हुआ, देश में राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और एक बार फिर ज्ञानेश कुमार आरोपों के घेरे में आ गए।
2: सभी चुनावों
3: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue.
1: इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए।
4: इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच मतभेद की खबरों को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस यानी इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट उनके मुख्यालय के बाहर जारी है। समय में तस्वीरें रायसीना रोड स्थित आईवाईसी मुख्यालय की आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आईवाईसी के कार्यकर्ता हैं हाथ में तख्तियां लेकर पोस्टर लेकर इकट्ठे हुए हैं और उनकी बड़ी मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जो है इस्तीफा दे। और इस मामले को लेकर देखा जा रहा है अब राजनीति भी गरमाती दिख रही है, जहां देखा जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरती दिख रही है और इसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करती दिख रही है। इसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईवाईसी के जो कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर इकट्ठे हुए हैं, झंडे लेकर इकट्ठे हुए, क्या है बड़ी मांग?
5: बड़ी स्पष्ट मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए और उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। 14 बार 11 महीनों में ऑब्जेक्शन रेज किए गए, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
1: वहीं बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
6: हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर वॉर करना, उन संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से बदनाम करना, और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में, उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है, किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं, तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी, इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है। मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डेलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं, वह विषय ठीक रहेगा नहीं, और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है, तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए, वह लोकतंत्र है।
1: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयोग के कदमों को लेकर 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार ये आपत्तियां चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद को अंधेरे में रखने से लेकर नए मतदाताओं को जोड़ने और नाम हटाने को लेकर दर्ज कराई और गैर कानूनी कदमों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक 10 महीनों में 14 बार और एक ही दिन में 4 बार चुनाव आयुक्तों को अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवानी पड़ी। लेकिन क्यों, आखिर आपत्तियों के बावजूद फैसले कैसे ले लिए गए? जून 2025 में एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई, तब से अब तक 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। चुनाव आयोग को विपक्ष इसे लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन मुद्दों पर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के अंदर बार बार न सिर्फ सवाल उठे बल्कि 2 चुनाव आयुक्त ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई। सबसे बड़ा सवाल फॉर्म 6 को लेकर है, जिसमें एसआईआर से जुड़ा एक सवाल जुलाई में जोड़ा गया, जिसमें नए वोटर से पूछा गया कि उसका, उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछले एसआईआर की वोटर लिस्ट में था या नहीं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसे लेकर मई में दोनों आयुक्तों ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना

0: ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बदलाव किया गया, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि विचारों में मतभेद असहमति होना स्वाभाविक है, फिर भी सभी फैसले बहुमत से लिए गए। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और अपीलों से जुड़े मामलों में भी दोनों आयुक्तों ने सवाल उठाए। इसके बाद अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही है।
1: যে মানুষগুলো নাম বাদ গেছে সমস্ত পুরনো লিস্ট ফিরিয়ে দিতে হবে, এবং যে যে রাজ্যে SIR এর নামে দখল করে EVM মেশিন ক্যাপচার করে হাইজ্যাক করে গণেশ কুমার স্টেটগুলোতে জিতেছে সেই স্টেটগুলোতে আবার নতুন করে পুরনো লিস্টে ভোট দিতে হবে, ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। উই আর ভেরি স্ট্রং, হি ইজ বিন এক্সপোজড। Don't you think you have the responsibility? You are liable to the country. You are liable to the democracy. You are liable to the constitution. But your obligation is only to satisfy the ego of BJP.
0: इस रिपोर्ट के दावों के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
2: निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुबह से ये बवाल कटा हुआ है कि निर्वाचन आयोग में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक साझा बयान जारी कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब बंगाल के चुनाव जो हुए हैं उसके नतीजों को लेकर वहां के कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसे लेकर निर्वाचन आयोग की पेशानी पर बल पड़े हैं, चिंता की लकीरें हैं।
3: विडंबना देखिए कि जिस चुनाव आयोग पर जिम्मेदारी है कि वो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाए ताकि लोकतांत्रिक सरकार बने, उसी संस्था के भीतर तीन बड़े लोगों के बीच लोकतांत्रिक संवाद ही नहीं रहा। वो ज्ञानेश कुमार जिन पर जब बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं तो गोल मोल कविताएं सुना करके, शेरो शायरी सुना करके जवाब से बचते रहे, लेकिन अब जब उन्हीं पर सीधे सवाल उठे हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त बाकी के 2 चुनाव आयुक्त से ऊपर नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त की तनख्वाह बराबर होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग में फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। दावा यह है कि जब मामलों में कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त से दोनों चुनाव आयुक्त के गहरे मतभेद सामने आए, वो भी मुद्दों पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर, उससे चुनाव आयोग उनके अधिकारी एक बयान जारी करके इनकार कर रहे हैं।
0: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का फैसला इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO को स्थानीय स्तर पर करना होता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ECI नेट के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। इस पर 29 मई को विवेक जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वोटर डेटा को दिल्ली में केंद्रीकृत करके राज्य के अधिकारियों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर 13 जुलाई को सुखवीर सिंह संधू ने सहमति जताई। पूर्व चुनाव आयुक्तों की नजर में ये चुनाव आयोग के भीतर जिस उठापटक के दावे हो रहे हैं वो एक अभूतपूर्व दरार को दर्शाते हैं।
4: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
5: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
0: चुनाव आयोग के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए जैसे ही ये खुलासा हुआ विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने SIR को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो चुनाव आयोग और उसके अफसर ये काम कर रहे हैं वक्त आने पर उन्हें सजा दी जाएगी।
6: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
0: ये वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने एक्स पर लिखा, वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले BJP, RSS और EC

0: ने देशद्रोह का काम किया है, इंसाफ जरूर होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने नवीन चावला का उदाहरण देते हुए पलटवार किया। कहा कि साल 2005 में सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की थी, जिसके बाद पार्टी अगला चुनाव जीती।
1: धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपाल स्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इन्फॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए।
0: बीजेपी का कहना है कि तीनों कमिश्नरों में 14 बार असहमति होना लोकतंत्र की निशानी है। संबित पात्रा ने राहुल और कांग्रेस की आपत्तियों को ये कहते हुए खारिज किया कि ये इनकी हार की भड़ास है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल की तरह अखिलेश भी चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर यही हालात रहे तो यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा।
2: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
3: सवाल चुनाव आयोग पर नहीं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर है। चुनाव आयोग ने इस मामले पर सफाई दी है। ईसीआई के सभी काम कानूनों आयोगों के निर्देशों के अनुसार होते हैं। पूरा बयान लिखा लिखाया आया है, देखिए रिपोर्ट।
0: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से यह सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
1: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही हैं।
0: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
3: वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, अब धुआं उठा है तो सियासी आग भी लगी हुई। बहरहाल बीजेपी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिशों में लगी है। बीजेपी ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी के नए प्रभारियों, 24 राज्यों में सह प्रभारियों का ऐलान किया है।
0: बीजेपी की नई टीम तैयार है। आने वाले चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिन चेहरों को मिली है वो ये है। अनिल बलूनी का कद बढ़ाया गया है। अनिल बलूनी को बीजेपी के संचार विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। स्मृति रानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में हरीश द्विवेदी को प्रभारी बनाया गया है। यूपी में 4 सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जिनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को जिम्मेदारी दी गई है। आज तक ब्यूरो।
3: उधर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान के उस भाषण की जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों की हवा निकाल दी। बीते दिन संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी मुल्क बताया था। दावा किया था कि ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो उसके पास आज परमाणु हथियार होते, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का जवाब संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने चुन चुन कर दिया।
0: दुनिया के सबसे बड़े मंच से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधा जवाब दिया। यह जवाब 24 घंटे के बाद आया, लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर जो जो कहा उसका मुंहतोड़ जवाब पेजेस्कियान ने दिया। ट्रंप ने बीते दिन ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश बताया। आज पेजेस्कियान ने सबूतों के साथ तस्वीरों के जरिए ट्रंप के एक एक दावे की हवा निकाली।
4: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर क्या कहा था, ये सुनिए।
5: The world's peril, then the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading death and carnage and chaos across the entire Middle East and beyond. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर आरोप लगाया था कि वो समझौता नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। इस आरोप का जवाब ईरानी राष्ट्रपति ने दिया।
6: No.
4: किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो, और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
0: दरअसल ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि बातचीत की टेबल पर ईरान के साथ अमेरिका ने शांति का प्रस्ताव रखा था। अगर ईरान प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो 28 फरवरी को हमले की नौबत नहीं आती।
5: After giving Iran every chance for a deal, I took action to ensure that neither the United States nor any nation at all would ever have to face such a nightmare, such a catastrophic problem. As a result of Operation Epic Fury, all 159 ships of their navy are now lying at the bottom of the sea. Likewise, their air force is gone, their radar is gone, their anti-aircraft equipment is gone, their missiles and drone manufacturing capacity is almost gone, their economy is gone. The only thing that isn't gone is inflation, which is destroying their country and is now well over 300%.
0: हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर युद्ध थोपा था। ईरान ने अपने बचाव में पलटवार किया, वहीं परमाणु हथियारों को लेकर भी ईरान ने अपनी नीति और नियत एकदम साफ कर दी।
4: इसराइल के पास वो बम है जिससे वो तबाही मचाता है, न वो किसी संधि को मानता है और न कोई उसकी जांच करता है, और इन सब के बदले उसको इनाम मिलता है जिसके बदले वो कहीं पर भी बम बरसा सकता है। न्यूक्लियर हथियार इसराइल में है लेकिन जांच ईरान की होती है। इसराइल किसी को भी मारता है लेकिन प्रतिबंध ईरान पर लगता है, यही असली विडंबना है।
0: ईरान के मुताबिक उसका परमाणु प्रोग्राम मुख्य रूप से अपने बिजली ग्रिड को मजबूत करने और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नागरिक और शांतिपूर्ण प्रयास है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए परमाणु हथियारों की झूठी कहानी गढ़ी।
5: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. They absolutely refused. That was a big mistake. Then in Operation Midnight Hammer, the U.S. military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
0: भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान को किसी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, वहीं ईरान ने भी दुनिया के सबसे बड़े मंच से यह ऐलान किया कि न ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भविष्य में कभी बनाएगा। लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो वो झुकेगा नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा। यानी ट्रंप की धमकी से ईरान डरने वाला नहीं।
5: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: कौन से ग्रह मोटापा बढ़ा देते हैं? किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति दुबला पतला होता है और कौन सा रत्न मोटापा बढ़ाता है और कौन सा रत्न मोटापा घटाता है? क्या है मोटापे का ग्रहों से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए

सेवा तीर्थ में पीएम मोदी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पहले दिन 4.5 घंटे तक मंथन बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की उम्मीद। चुनाव आयोग में मतभेद को लेकर सियासी घमासान। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार और सरकार पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने वोट चोरी के दावों को दोहराया। बीजेपी बोली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है आयोग। आईआईटी बॉम्बे आत्महत्या केस में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। नकल करते साहिल के सीसीटीवी फुटेज का दावा। आईआईटी बॉम्बे ने मामले की जांच के लिए गठित की 10 सदस्यीय कमेटी। पटना में दिन दहाड़े गोलीकांड। जनसुराज कार्यकर्ता को गोलियां मारी। सीसीटीवी में दिखे 3 बदमाश। तेजस्वी ने कहा, राज्य में गुंडा राज। और अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत का कूटनीतिक मोर्चा। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने रूबियो से की मुलाकात। मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ को लेकर जताई चिंता।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक वक्त बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती स्लीपर बस में भीषण आग लगी है। जानकारी के मुताबिक बस में आग लगने के बाद सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही सवारियों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर फायर विभाग की टीम पहुंची। टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुछ यात्रियों के बस में फंसे होने की भी आशंका। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। जान बचाने के लोग स्लीपर बस से कूदे। स्लीपर बस थी, चलती चलती अचानक उसमें आग लग गई और बस पूरी आग की लपटों से घिर गई। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर, वही रास्ता जो आगे आगरा लखनऊ को जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे पर, और उस समय 40 से 50 यात्री बस में मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, जब ये वाकया हुआ। और अचानक ये तेज रफ्तार में स्लीपर बस, क्योंकि यहां पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, और ऐसे में फर्राटेदार रफ्तार से चलती इस बस में 40 से 50 यात्री मौजूद थे। अचानक बस में आग लग जाती है। जानकारी ये भी कि कुछ यात्री बस में फंसे हो सकते हैं, और जैसे आग लगी लोगों ने खिड़कियां तोड़ करके, अब सोचिए कि ये 25 से 30 फीट ऊंची जो बस है उसमें लोग कूदते भागते दिखाई दिए, वहां से जान बचाने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक कई यात्री के उसमें फंसे होने की संभावना थी, और ऐसे में राहत बचाव कार्य के लिए टीमों को वहां पर भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद अब कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हर यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 40 से 50 यात्रियों के बस में फंसे होने की आशंका थी, और मौजूदा जो जानकारी है कई सारे यात्री स्लीपर बस से कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आइए अब देखते हैं भाग्य चक्र पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ।

का आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मोटापे की। किस ग्रह की वजह से मोटापा बढ़ता है, किन ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति दुबला पतला रहता है और मोटापे को कम करने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्व

महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 11:18 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 10:35 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मोटापे की, ओबेसिटी की। ज्योतिष में कौन से ग्रह व्यक्ति को मोटा बनाते हैं, कौन से ग्रह मोटापा बढ़ाते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से बृहस्पति जिम्मेदार होता है, मुख्य रूप से बृहस्पति की भूमिका होती है। इसके अलावा चंद्रमा अगर प्रभाव डाले तो चंद्रमा व्यक्ति को गोल मटोल कर देता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शरीर को प्रभावित करता है वहां पर मोटापा बढ़ जाता है। कुंडली में अगर जल तत्व की प्रधानता हो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि ज्यादा ताकतवर हो तो भी व्यक्ति मोटा और गोल मटोल हो जाता है। इसीलिए जल तत्व प्रधान राशियों के और लग्न के, कर्क वृश्चिक और मीन लग्न वाले या कर्क वृश्चिक और मीन राशि वाले लोग बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। मोटापे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर की बाधा दूर हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो बृहस्पति मुख्यतः किसी व्यक्ति को मोटा बनाता है या मोटापा देता है। अब कौन से वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को दुबला पतला बनाते हैं? देखिए, शनि मुख्य रूप से व्यक्ति को दुबला पतला बनाता है। शनि मोटापे को कम करता है, लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो ज्यादा कम कर देगा, आप बहुत ज्यादा दुबले होंगे। इसके अलावा मंगल की अगर प्रधानता हो, सूर्य की अगर प्रधानता हो, तो ये भी मोटा नहीं होने देते। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं कि व्यक्ति दुबला हो जाता है। लेकिन जो शनि प्रधान लोग होते हैं वो आम तौर पर दुबले बने रहते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। मंगल और सूर्य वाले कभी कभी मोटे हो जाते हैं और कभी कभी दुबले हो जाते हैं। शुक्र या बुध की प्रधानता होती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होता। उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी शानदार हो जाती है। ऐसे लोग स्मार्ट हैंडसम हो जाते हैं, न ज्यादा मोटे रहते हैं और न ज्यादा पतले रहते हैं। मोटापे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा,
परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1981। जन्म का समय शाम के 6:42। जन्म स्थान है देवरिया। अमृता कह रही हैं कि मैं अभी सरकारी नौकरी करती हूं और नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी समस्याएं दूर हो जाएं? अमृता जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि मार्च 2027 तक आप शांत रहिए, तनाव मत पालिए, बिना वजह की चिंता मत करिए, किसी भी तरह के विवाद में मत पड़िए, थोड़ा क्रोध पर काबू रखिए। अगले साल के मार्च अप्रैल के बाद रहेंगी तो लखनऊ में ही, लेकिन आपके विभाग में, आपके स्थान में परिवर्तन होगा और उसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का सुबह शाम एक एक बार पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको राशियों के हिसाब से बताते हैं कि मोटापे की टेंडेंसी क्या होती है, किन किन राशियों पर मोटापे का कैसा असर पड़ता है। जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, इन राशियों के लोग आम तौर पर मोटे नहीं होते और इनका मोटापा अगर बढ़ता भी है तो मध्य आयु के बाद 40 वर्ष के बाद बढ़ता है और ये मेहनत करके, प्रयास करके अपना मोटापा कम कर लेते हैं। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं यानी वृषभ, कन्या और मकर, या तो ये शुरू से इस राशि के लोग मोटे होंगे या ये लोग कभी मोटे नहीं होंगे। इनके लिए अगर मोटापा आ गया वृषभ, कन्या, मकर वालों को, तो ये जीवन में अन्य बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखें तो मोटापे से बच सकते हैं। जो वायु तत्व की राशि के लोग हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग, इनकी मोटापे की टेंडेंसी नहीं होती, सामान्यतः ये लोग मोटे नहीं होते, लेकिन खाने का इनको बड़ा शौक होता है, इसीलिए पेट इनका अलग से कभी कभी निकल आता है। बाकी शरीर नॉर्मल रहेगा, पेट अलग से निकल आता है, मिथुन, तुला, कुंभ वालों का ऐसा देखा गया है। जल तत्व की जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनके अंदर मोटापे की टेंडेंसी होती है।
अगर ये खान पान में, जीवन जीने में जरा भी लापरवाही करें तो इनका मोटापा बढ़ने लगता है। मुख्यतः जो वृषभ, कन्या और मकर वाले हैं, जो कर्क, वृश्चिक और मीन वाले हैं, इनके मोटापा बढ़ने की संभावना काफी होती है। इनकी टेंडेंसी मोटापे की होती है, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। मोटापे पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन का आगमन होता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, वैसे तो मोटापे से बचने के लिए डॉक्टर से या डाइटिशियन से संपर्क करें, अपना रूटीन, अपना खान पान सुधारें, ऐसा तो करना ही चाहिए, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें वो भी जान लेते हैं। नियमित रूप से जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, प्रातःकाल, सुबह शाम। धीरे धीरे कोशिश करिए प्रातः और सायंकाल पद्मासन में बैठने का अभ्यास करिए। अगर मोटापा तेजी से बढ़ रहा है तो पीला पुखराज धारण ना करें, अपने पेट पर नाभि के ऊपर एक लाल धागा बांध लें, इसको हर महीने बदलते रहें, और एक नियम बना लें, सूर्यास्त के बाद भारी भोजन या ज्यादा खाना ना खाएं। प्रातः काल नाश्ते के साथ या नाश्ते में पपीते का सेवन जरूर करें। अगर आप ऐसा करें,
डॉक्टर की सलाह माने, डाइटिशियन की बात माने, एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान दें, तो मोटापे को कम कर पाएंगे। देखिए, जैसे मोटापे की टेंडेंसी होने पर पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है, वैसे ही जिनकी मोटापे की टेंडेंसी हो, अगर वो सलाह लेकर पन्ना पहने या फिरोजा ये धारण करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। फिरोजा पहनने से या पन्ना पहनने से अगर ये आपको सूट करे तो ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

लोग हैं महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ता है, क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है और बृहस्पति मोटापा बढ़ाने वाला ग्रह है। अगर आपके कुंडली में मोटापे की टेंडेंसी है और आप पीला पुखराज पहन लेते हैं तो आपका मोटापा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मोटापे की टेंडेंसी नहीं है तो पीला पुखराज पहनने से मोटापा नहीं बढ़ेगा। जिनकी मोटापा बढ़ने की टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों को पीला पुखराज पहनने में सावधानी रखनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। और नंबर 9, पारिवारिक समस्या हल होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। पारिवारिक जीवन की समस्याओं में आपके सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप

अगला प्रश्न अश्विनी मिश्रा ने हमें लिखा है और अश्विनी जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1973, सुबह के 7:10, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत हैं और कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार मेरे साथ लगी हुई हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? अश्विनी जी, सबसे पहले आप जून 2027 तक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मानसिक स्वास्थ्य का और डाइजेशन का ध्यान देना जरूरी है। बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या आपके साथ नहीं दिख रही है। रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और एक पन्ना, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो जीरा खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कुंभ राशि के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज भगवान कामदेव की उपासना करिए, आपका विवाह शीघ्र होगा। और आज सात्विक आहार ग्रहण करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई है और इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा इलाके से ये यमुना एक्सप्रेसवे पर आग लगते ही बस के अंदर चीख पुकार अफरा तफरी मच गई। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर जहां पर गाड़ियों की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है और ऐसे में ग्रेटर नोएडा से ये बस करीब 40 से 50 लोग सवार थे जो प्राथमिक जानकारी आ रही है। और जैसे ही आग लगी सवारियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई। ये स्लीपर बस है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 से 40 फीट तक होती है और ऐसे में ऊंचाई से शीशे तोड़ करके यात्रियों ने जान बचाने की कोशिश की। अभी जो जानकारी है 40 से 50 लोग उसमें सवार थे। आशंका ये भी जताई गई है कि जैसे ही आग लगी इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। फिलहाल बस को कूल डाउन करने का काम चल रहा है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग बस के अंदर ही फंसे हो सकते हैं। कूल डाउन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ही बस के अंदर तलाशी अभियान चलाया जाएगा। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और जब तलाशी अभियान चलेगा तब उसके बाद पता चलेगा कि मरने वालों का आंकड़ा क्या बढ़ सकता है और उसके बाद ही पता चलेगा क्या अभी भी कोई व्यक्ति वहां फंसा हो सकता है। हालांकि आग बुझने तक कूल डाउन की प्रक्रिया में संभावना बहुत कम होती है कि कोई जीवित बचे। ये देखिए एक तरफ हादसे की तस्वीरें जब बस आग की लपटों में घिरा, दूसरी तरफ बस में जब कूल डाउन प्रक्रिया की गई, आग को बुझाया गया, तुरंत ही दमकल कर्मियों को और पुलिस को मौके इस वारदात पर भेजा गया। उसके बाद ये देखिए अभियान चला करके लपटों पर काबू पाया गया और जैसे ही बस अब पूरी तरह ठंडी होगी, उसका तापमान कम होगा, तब उसके बाद जो दमकल कर्मी है, देखिए बस के अंदर भी कोशिश की गई पहले हिस्से से देखा जाए, उसके बाद पूरे बस की एक सघन तलाशी होगी। 9 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ये दिल्ली से बिहार जा रही थी ये बस, ये लंबी दूरी की बस है। आपको याद हो ऐसा ही एक हादसा राजस्थान में हुआ था और खासकर ये लंबी दूरी की जो बसें हैं अक्सर इनमें इसी तरह की शिकायतें आती हैं कि ये जो स्लीपर कोच बनाए गए हैं ये अनियमित रूप से चलती हैं, नियमों का पालन नहीं करते, इसमें मॉडिफिकेशन कस्टमाइज कराइए। देखिए तो आग बस के पहले हिस्से में लगी और उसके बाद ये देखिए एकदम ड्राइवर कोच के पास, तो ड्राइवर साइड में आग लगती है और उसके बाद आग धीरे धीरे फैलती चली जाती है और इस सड़कों पर कई सारे लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आग अंदर बस में पूरी तरह धुआं भरा था और यह बस पूरी स्लीपर कोच थी, यानी एयर कंडीशन स्लीपर कोच, जिसके चलते बस पूरी तरह से पैक थी और यात्रियों को कूदने के लिए शीशा तोड़ना पड़ा होगा या फिर वो दरवाजे तक पहुंचने में भी मुश्किलें आई होंगी।
1: हम सोए थे, सोने के बाद कोई आया हमको जगाया कि बस में आग लग गई, बस हम निकल के भाग गए।
2: कैसे निकले आप बाहर, क्या स्थिति थी, क्या देखा?
1: निकलने लगती स्थिति नहीं थी, बहुत धुआं धुआं था, जिससे तैसे हम लोग अपने घबराहट में निकले, जिससे आवाज मिला, जो जिसका जितना जगह वो अपने हिसाब से आए।
3: मैं तो सो रही थी तो किसी ने मेरी गेट बजाया, तब मैं निकली वहाँ से, तो बहुत भीड़ हुई हो रखी थी पहले से ही, तो मैं कुछ सामान नहीं उठाई, अपना जूता भी नहीं पहनी हूँ, फोन उठा के निकली तो इतना भीड़ हो गया था ना कि धक्का दे रहे थे एक दूसरे को, तो मैं खुद धक्के धक्के में बाहर, मुझे किसी ने खींच लिया, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है, धुआं धुआं हो रखा था। सिचुएशन क्या, इतना धुआं हो रखा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, घुट रहे थे अंदर, बहुत कम ही लोग निकल पाए हैं, वो भी धक्का मुक्की में जितना निकल आए। पुलिस पहुंच गई थी आधे घंटे के आसपास पहुंच गई थी, मेरे पीछे काफी लोग थे, वो तो शायद निकल नहीं पाए होंगे क्योंकि मैं ही खुद बहुत पीछे निकली हुई थी। हाँ नहीं, लेकिन बहुत लोग रह गए हैं, डेथ भी हुई है।
0: दरअसल स्लीपर कोच की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि उसमें अंदर केबिन बने होते हैं। हमारे सहयोगी अंशुल जो है वो इस समय उसी हादसे की जगह पर पहुंच रहे हैं। अंशुल, ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हमने पहले राजस्थान की घटना देखी, वहां भी ऐसे ही चलते बस में आग लगती थी, यात्री मारे जाते, और एक बार फिर सीधा सा मतलब ये होता है कि बसों में तैयारियां, रख रखाव, मेंटेनेंस, उसमें अनियमितताएं हैं, इसी वजह से ऐसे हादसे होते हैं।
4: जी बिल्कुल, हमने आज तक पर भी कई बार दिखाया है कि किस तरीके से जो ये स्लीपर बसेस चल रही होती हैं इनमें किसी भी तरीके के जो नियम है उनका पालन नहीं किया जाता। इस बस में भी जो 4 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं बस में मौजूद नहीं थे। जो बस ओनर्स का लालच है उसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट की जगह पर एक सीट एक्स्ट्रा बना दी और उसे सीट से पैसा कमा रहे थे, क्योंकि आप देखें ये जितने लोग की भी मौत की अभी तक पुष्टि हुई है, 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, ये सारे के सारे लोग बस की पीछे वाली तरफ थे और पीछे की तरफ किसी भी तरीके का इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। एक इमरजेंसी, एक जो मेन एंट्री एग्जिट का गेट होता है वो था, और इसके अलावा दो ब्रेकेबल विंडोज जो होते हैं वो थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिन विंडोज से लोग कूद रहे हैं वो इमरजेंसी ब्रेकेबल विंडोज है, लेकिन पीछे की तरफ जो एग्जिट होना चाहिए था वो एग्जिट नहीं था और ये बस धड़ल्ले से इतने लंबे रूट पर निकाल दी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या ये वो बस ओनर्स हैं या वो लालची आरटीओ ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कुछ पैसों के लिए लोगों की जान दांव पे लगा देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बस जिन बसेस में बिल्कुल भी जो नियम है उनका पालन नहीं हो रहा उनको भी आराम से सड़कों पे चलने दिया जाए। तो अब इस मामले की भी तफ्तीश होगी, इस मामले पर भी थोड़ा बहुत एक्शन होते हुए दिखेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या इस मामले से सबक लेकर आगे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों पर कोई भी ऐसी बस ना चले जो लोकल आरटीओ नियमों का या जो लोकल सेफ्टी नॉर्म्स है उनका पालन ना कर रही हो।
0: बिल्कुल सही बात है, किंतु परंतु तो है ही नहीं। अगर बस ड्राइवर, बस चालक, बस संचालक, बस कंपनी अपनी लालच में कर रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी है जो इनको चलने दे रही हैं। आमतौर पर फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी होते हैं, उसी के साथ साथ औचक निरीक्षण भी होता है। और सबक नहीं सीखा यूपी में प्रशासन ने, जैसी घटना हमने राजस्थान में देखी थी, ऐसा ही बस चलती ही लपटों में आ गया, इतने लोग मारे जाते हैं। देखिए एक बार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, बस के आगे हिस्से में आग लगती है। जो मुसाफिर पीछे थे आपने प्रत्यक्ष दर्शकों को सुना कि वो आगे नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं था। देखिए बस आगे लगी है आग, पीछे के जो यात्री थे, अलग अलग यहाँ चैम्बर बने होते हैं, स्लीपिंग पॉड बने होते हैं, उस पॉड में उन्हें पता भी नहीं चलेगा आग लगी जब तक कि आग फैल ना जाए। एक दूसरे की मदद की, लोगों ने आवाज दी, वो भागने लगे। अब ड्राइवर की साइड जिस तरफ आग लगी वो दरवाजा पूरी तरह चोक होगा, आग की लपटें होंगी, तो ऐसे में लोग पिछले हिस्से में जाएंगे। नियम ये कहता है कि बस के पिछले हिस्से में भी एग्जिट डोर होने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि वहां पर स्लीपिंग पॉड बनाने के लिए कई बार शौचालय बनाया जाता है और उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, और ऐसे में इस तरह के हादसे होते हैं। यात्रियों को बच के निकलने की भी जगह नहीं होती। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदना जताई है, अधिकारियों को से कहा है कि वो परिजनों के संपर्क में रहें, हर संभव मदद करें, घायलों का समुचित इलाज हो। मृतक के परिजनों से भी सीएम योगी ने बातचीत की है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। 9 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। दिल्ली से महोबा जा रही थी ये स्लीपर बस, अब जो जानकारी आई है दिल्ली से महोबा की ओर ये स्लीपर बस जा रही थी। जिस हाईवे पर यह हादसा हुआ है, सोचिए कि यहां पर बेहद रफ्तार में ये गाड़ियां चलती हैं, लेकिन 9 लोगों की दर्दनाक मौत, और ये मौत फिर सवाल छोड़ जाती है कि बस संचालक, ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, अथॉरिटी, आरटीओ, पुलिस प्रशासन, व्यवस्था में इतने सारे चेहरे हैं, जिम्मेदारी किसकी तय होगी? अंशुल हमारे सहयोगी भी उस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। अंशुल, सवाल बहुत सारे ये छोड़ गई है, राजस्थान की घटना के बाद अगर ये हो रही है, और अगर आमतौर पर देखेंगे तो साल में ऐसे 1-2 हादसे देश के किसी न किसी कोने में होते हैं। हमें पता है ये जिम्मेदारी किसकी, हमें पता है इसके लिए दोषी कौन है, लेकिन ये नहीं पता है कि आखिर इस पर लगाम लगाने की जिसकी जिम्मेदारी है वो कब सचेत होंगे।
4: जी बिल्कुल, और बस आग की घटनाएं नहीं बल्कि और भी कई ऐसे गैर कानूनी काम हैं जो इन बसों में होते हुए देखे हैं। हमने अभी पिछले करीब 2-3 महीने में ही दिल्ली के अंदर 2 रेप की घटनाएं हुई हैं जो ऐसी स्लीपर बसेस में हुई हैं जिनमें ब्लैक फिल्म लगा हुआ था और अंदर से लाइट बंद करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर घूमती हुई भी दिखी थी। तो बस ये नहीं है कि इमरजेंसी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई भी नॉर्म जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, लोकल स्टेट आरटीओ द्वारा बनाए गए हैं, उनका बिल्कुल भी पालन नहीं होता। और हर बार जब ऐसी घटना आती है तो हर बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्शन लेने की कोशिश की जाती है, कुछ बातें होती हैं कि किस तरीके से बसों पे और ज्यादा लगाम लगाई जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो सारे नियमों का पालन करें, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही खबर खत्म होती है फिर से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो अब 9 लोगों की जान एक बार फिर से चली गई है। जैसा आपने बताया, कुछ दिनों पहले राजस्थान में भी इस तरीके का ही हादसा हुआ था जिसके बाद आज तक ने भी बहुत सारी ऐसी बसों से रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से इन बसेस में जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनका पालन नहीं हो रहा। उस वक्त भी जो अथॉरिटीज है उन्होंने इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि और ध्यान से देखा जाएगा और ऐसे बसों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन फिर से एक बार दिल्ली से महोबा जा रही बस में, इतने लंबे रूट की बस में, बिना इमरजेंसी एग्जिट्स के, बिना इमरजेंसी प्लानिंग के ये बस को चलने दिया
0: और इसी वजह से 9 लोगों की इसमें जान चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल, तमाम जानकारी, इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक बार फिर एक बस हादसे की चपेट में आई है, लेकिन इस हादसे के पीछे बड़ी वजह लापरवाही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए आज तक।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: पापा,
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ,
7: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
14: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
18: सोच बदलो और बैंक भी।
19: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
8: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
20: यार लोन भूल गया। मैरी,
21: इट्स
20: जस्ट अ गुड बैंक ना।
21: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
20: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
21: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
22: There's nothing small about them.
21: Ujjivan, nothing small about us.
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Tera pyar pyar pyar unka baar baar baar tera pyar pyar pyar unka baar baar baar sir ek do tin thumka lagane bas by god maza aa jayega
2: catchy hai viral
1: hai thank you
3: aap pe wo dmt baar wali mazbooti nahi aa rahi hai sir
4: main hu na mere paas ek idea
1: kya
4: ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai lekin wo ghar ko tod nahi paaye
5: rungta dmt baar se jo bana hai
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता नो सर
4: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है
3: ओ नादान परिंदे बैठ
2: बैठ बैठ
3: सर मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा तो कौन सी बनानी है

0: 25 एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट।
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
15: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
14: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Tera pyar pyar pyar roonta baar baar baar tera pyar pyar pyar roonta baar baar baar sir ek baar roonti thumka lagane bas my god maza aa jayega
2: catchy hai viral hai
1: thank you
3: aap pe woh tmt baar wali mazbooti nahi aa rahi hai sir
4: main hu na mere paas ek idea hai
1: kya
4: ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai lekin wo ghar ko tod nahi paaye roonta tmt baar se jo bana hai
5: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता नो सर
4: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है
3: ओ नादान परिंदे बैठ
2: बैठ जा बैठ जा
3: सर मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है
2: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
6: तो कौन सी बनानी है

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Tera pyar pyar pyar unka baar baar baar tera pyar pyar pyar unka baar baar baar sir ek baar do tin thumka lagane bas by god maza aa jayega
2: catchy hai
1: viral hai thank you
3: aap pe wo tmt baar wali mazbooti nahi aa rahi hai sir
4: main hu na mere paas ek idea hai
1: kya
4: ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai lekin wo ghar ko tod nahi paaye rungta tmt baar se jo bana hai
5: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर,
4: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, बैठ
2: बैठ बैठ।
3: सर, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। प्रेजेंटेड बाय

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में भीषण आग, 9 यात्रियों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों से की बातचीत।

दूसरा दिन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पहले दिन 4.5 घंटे तक मंथन, बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। चुनाव आयोग में पसरी असहमति पर इलेक्शन कमीशन में मतभेद का तूफान, सियासी घमासान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे, एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात, व्यापार और ताइवान ईरान पर चर्चा की उम्मीद। अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत का कूटनीतिक मोर्चा, न्यूयॉर्क में एस जयशंकर ने रूबियो से की मुलाकात। मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ को लेकर जताई गई चिंता।

0: स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह के 8 बज गए हैं। बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों की, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की एक झलकियों पर नजर डालते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा में बस में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। पूरी खबर विस्तार से आगे आपको बताएंगे। वहीं अमेरिका में शी जिनपिंग के स्वागत के लिए ट्रंप एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे, एक एक तस्वीर उसकी भी आपको दिखाएंगे। बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी होगी। वहीं ईरान ने अमेरिका में खड़े होकर अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है। विस्तार से इस पर भी करेंगे बात। जमुई कांड से जुड़े कुछ अपडेट्स भी आपको देंगे। दिल्ली के कालकाजी गैंगरेप से जुड़ी भी अब तक क्या उसमें एक्शन हुआ है, इस खबर पर भी करेंगे बात। वहीं बिहार में जनसुराज नेता को कई गोलियां मारी गई हैं, ये भी आपको बताएंगे। और बात पीएम मोदी के आज के संवाद की भी करेंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी बाइक यात्रियों से संवाद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगते ही बस के अंदर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सवारियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान तो बचा ली। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। फिलहाल बस को कूल डाउन करने का काम चल रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग बस के अंदर फंसे हो सकते हैं। कूल डाउन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बस के अंदर तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि बस के अंदर कोई व्यक्ति फंसा है या नहीं। ग्रेटर नोएडा पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे के जो जीरो पॉइंट है उससे करीब 32 किलोमीटर आगे हुआ हादसा, और मामला जेवर थाना क्षेत्र का है। तो इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 40 से 50 लोग इस बस में सवार थे। यह तस्वीर आप देखिए, चलती बस में भयानक आग लगी है। 40 से 50 यात्री सवार थे, जिसमें से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल उन यात्रियों को हुई होगी उस बस में से निकलते वक्त।
1: हम सोए थे, सोने के बाद कोई आया, हमको जगाया कि बस में आग लग गई, बस हम निकल के भाग गए।
2: कैसे निकले आप बाहर, क्या स्थिति थी, क्या
1: देखा? निकलने लगते स्थिति नहीं थी, बहुत धुआं धुआं था, जिससे तैसे हम लोग अपने घबराहट में निकले। जिससे आवाज मिला, जो जिसका जितना जगह वो अपने हिसाब से आए।
3: मैं तो सो रही थी, तो किसी ने मेरी गेट बजाया, तब मैं निकली वहाँ से। तो बहुत भीड़ हुई हो रखी थी पहले से ही, तो मैं कुछ सामान नहीं उठाई, अपना जूता भी नहीं पहनी हूँ, फोन उठा के निकली। तो इतना भीड़ हो गया था ना कि धक्का दे रहे थे एक दूसरे को, तो मैं खुद धक्के धक्के में बाहर, मुझे किसी ने खींच लिया। बाकी मुझे कुछ याद नहीं है, धुआं धुआं हो रखा था। सिचुएशन क्या, इतना धुआं हो रखा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, घुट रहे थे अंदर। बहुत कम ही लोग निकल पाए हैं, वो भी धक्का मुक्की में जितना निकल आए। पुलिस पहुंच गई थी, आधे घंटे के आसपास पहुंच गई थी। मेरे पीछे काफी लोग थे, वो तो शायद निकल नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैं ही खुद बहुत पीछे निकली हुई थी। हाँ नहीं, लेकिन बहुत लोग रह गए हैं, डेथ भी हुई है।
0: अरविंद ओझा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से बस में आग लगी है, और कितने यात्री वहां पर सुरक्षित बचा लिए गए हैं?
4: देखिए, 30 से 35 यात्री जो इस बस में सवार थे, और राज कल्पना टू ट्रेवल्स की ये बस थी जो कश्मीरी गेट से महोबा की तरफ जा रही थी, और अचानक तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसमें बस में अचानक आग लग गई। एक आई विटनेस है, उससे मेरी बात हुई जो बस में सवार थे, उनका कहना है कि नीचे से आग लगी। उसके बाद जो बस का ड्राइवर था उसने साइड रोका, सभी को निकलने के लिए कहा, और उसी दौरान भगदड़ मच गई, क्योंकि धीरे धीरे जो आग है उसने विकराल रूख अख्तियार कर लिया। जो निकल पाए वो निकल पाए, कुछ बस के अंदर गिर भी गए थे, धुआं काफी भर गया था, लेकिन किसी तरह बाकी लोग निकल गए। लेकिन 9 लोग इस बस में फंस गए और बुरी तरह से जले, जिनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है, लेकिन एक बड़ा हादसा है। डबल डेकर ये बस थी, नीचे की तरफ और ऊपर स्लीपर था, और इस तरह की कई जो बसें हैं वो चलती हैं, तमाम नियमों को नियम कानून को ताक पर रखकर ले देकर इस तरह की बसें चलती हैं, और पहले भी आज तक ने कई बार इस तरह के रियलिटी चेक किए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की नींद नहीं टूटती है और जिसका नतीजा होता है कि इस तरह के हादसे होते हैं। पूजा,
0: चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे एक सहयोगी जहां पर इलाज चल रहा है उन लोगों का जो लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, वहां से सीधा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि आखिर कितने लोग वहां मौजूद हैं, कितने लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है।
5: जी मैं आपको बता दूं, मैं इस समय नोएडा के जिला अस्पताल में हूं और यहां पे ही कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज है उनको लाया जाएगा, क्योंकि जो यहां से काफी दूर है जहां पे ये हादसा हुआ था। और मैं आपको बता दूं, इस ये जो हादसा है रात को 11:30 बजे के करीब हुआ है, और ये बस है दिल्ली से महोबा के लिए बनके चली थी, और उसके बाद जब ये 0 पॉइंट जो एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट से जब बस चलती है तो 32 किलोमीटर आगे जाकर इसमें अचानक से आग लग जाती है, और आग लगने के बाद इसमें जो नीचे के लोग हैं वो तो तुरंत उनको बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन जो ऊपर लोग थे, डबल डेकर बस थी एक्चुअली, जो ऊपर लोग थे वो फंसे रह गए, जिसमें 9 लोगों की दुखद मौत होगी। आपको याद होगा कि हमने अभी आज तक फिर ये रियलिटी चेक करा था कुछ दिन पहले, नोएडा के नोएडा एक्सप्रेस वे जितनी भी डबल डेकर बसें चलती है क्या उनमें अग्निशमन के जितने जो सिलेंडर होते हैं क्या वो ठीक है, क्या उसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं क्या वो ठीक है। उसमें कुछ बसें थी जो कि जिनपे जो सारा सामान है ये पर्याप्त तौर पे नहीं था, मतलब जो अग्निशमन का जो आग बुझाने का सिलेंडर होता है उस किसी की डेट एक्सपायर थी, कोई ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, और संभवतः ये भी उसी तरीके से हुआ है, पहले इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिसके बाद जो कुछ लोग बच सकते थे वो बच गए,
0: जिसका खामियाजा बस में मौजूद उन लोगों को उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे हादसे की एक और खबर हैदराबाद से सामने आ रही है, जहां पर एक प्राइवेट बस देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई है। जी हाँ, हादसे के वक्त करीब 40 यात्री उसमें सवार थे, गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते बस से बाहर निकल गए। इस हादसे में यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। 40 यात्री इस बस में सवार थे, हैदराबाद से ये तस्वीर सामने आई है। देखिए बस पूरी तरह से जल गई है और सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। गनीमत रही 40 यात्री और 40 के 40 यात्री अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, और सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। हैदराबाद में चलती बस में हड़कंप मच गया क्योंकि बस में भीषण आग लग गई। अब खबर दिल्ली में हुए एक हादसे की खबर। दरअसल शक्तिनगर इलाके में गोल चक्कर के पास एक वैगनार अचानक से पलट गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए, बताया जा रहा है कि कार चालक ने पहले ई रिक्शा को बाई तरफ से ओवरटेक किया, इसी दौरान सामने एक और ई रिक्शा आ गया और उसे बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जोरदार टक्कर के बाद पलट गई। हादसे में किसी की गंभीर चोट की खबर अभी तक नहीं आई है, यानी जो इस गाड़ी को चला रहा था वैगनार को, उसको गंभीर चोट नहीं आई है। तो ओवरटेक के चक्कर में ये सड़क पर हादसा हुआ। दिल्ली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वैगनार गाड़ी एकदम से ओवरटेक करने की कोशिश करती है, सामने से ई रिक्शा वाला आता है और उसको बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जाकर ये गाड़ी टकरा जाती है। जो यात्री इस गाड़ी को चला रहा था वो सुरक्षित है, उसे गंभीर चोट नहीं आई है। तो दिल्ली में यह हादसा हुआ है शक्तिनगर इलाके में गोल चक्कर के पास, वैगनार गाड़ी आप देख पा रहे हैं अचानक से वहां पलट गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार चालक ने पहले ई रिक्शा को बाई तरफ से ओवरटेक किया, इसी दौरान इस सामने से एक ई रिक्शा आ रहा था उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। बड़ी खबर पटना से, जहां पर नेता पर हमला हुआ है। दरअसल नकाबपोश हमलावर ने प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता को गोलियां मारी। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में उनके ही अपार्टमेंट की पार्किंग में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर सवार 3 हमलावर वहां पहुंचे और जनसुराज नेता अनिल यादव पर 4 से 5 गोलियां दागकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद प्रशांत किशोर अस्पताल पहुंचे और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए।
6: पटना में बुद्धा कॉलोनी इलाके में वारदात। और कैमरे में कैद हमले की तस्वीरें। बाइक से आए थे हमलावर, दो बाइक तीन हमलावर, और निशाने पर थे जन स्वराज नेता अनिल यादव। दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 24 की पार्षद ज्ञानवती देवी के पति और जन स्वराज नेता अनिल यादव को उनके ही अपार्टमेंट की पार्किंग में बदमाशों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक दो बाइक पर सवार तीन हमलावर अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे और अनिल यादव पर चार से पांच गोलियां दागकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
7: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।
6: हमले के बाद अस्पताल में नेताओं का पहुंचना भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जांच में जुटी है।
8: अभी उन्होंने कुछ नहीं बता पाए हैं, उन्होंने बोला है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस हर एक बिंदु पे जांच कर रही है।
9: किसी पार्टी में भी
8: थे? जन स्वराज पार्टी से जुड़े
9: हैं।
6: पटना में हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बहस तेज कर दी है। पटना से सुजीत कुमार, आज तक ब्यूरो।
0: तो सीसीटीवी फुटेज अब आपको एक दिखाते हैं जो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, जनस्वराज नेता अनिल यादव पर जिस तरीके से हमला किया, ये बदमाश बाइक पर आते हैं, पार्किंग में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और उनके ही अपार्टमेंट के अंदर ये फायरिंग की गई है, जिसके बाद अनिल यादव पर चार से पांच गोलियां दागी गई हैं और वहां से वो फरार होते हुए दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। दरअसल चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग तीन दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं और जिनपिंग का ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ने स्वागत किया। छह दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया हो। 25 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर शी जिनपिंग रहेंगे। शी जिनपिंग के लिए स्टेट डिनर का भी आयोजन किया गया है और उनकी मुलाकात काफी ज्यादा अहम होने वाली है। छह दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा है। तो अमेरिका अब पहुंच चुके हैं शी जिनपिंग और ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होगी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर पहुंचे और शी जिनपिंग को रिसीव करने के लिए वो पहुंचे हुए थे। भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है और अब ये मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है। ट्रंप के साथ बातचीत आगे होने वाली है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ट्रंप खुद पहुंचे शी जिनपिंग को रिसीव करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए हैं, ये लगभग 6 दशक बाद हुआ है। तो चलिए कुछ और अपडेट अब इसी से जुड़ा आपको दे देते हैं। ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम होने वाली है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत इसमें होगी। काफी समय बाद ये मुलाकात होने वाली है। 3 साल बाद अमेरिका में शी जिनपिंग पहुंचे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कई मुद्दों पर बातचीत होगी। ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे उन्हें रिसीव करने के लिए। व्यापार, टेक्नोलॉजी, ईरान, ताइवान पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक स्टेट डिनर का आयोजन भी किया गया है शी जिनपिंग को लेकर, जहां पर शी जिनपिंग रहेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति भी रहेंगे। व्हाइट हाउस में निजी मुलाकात भी होने वाली है जिसमें वो जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। तो 3 साल बाद ये शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे हैं और देखिए अब आपको समझाते हैं जिनपिंग की अमेरिका यात्रा। स्टेट डिनर का आयोजन जो किया गया है उसको लेकर 1874 में राष्ट्रपति जो वहां के थे उन्होंने शुरू की थी ये पहले परंपरा। 152 साल में 300 लोगों को राजकीय भोज का सम्मान भी उस बीच मिला था। और स्टेट डिनर का आयोजन आज किया गया है शी जिनपिंग के लिए। मेहमान देश के साथ संबंध इससे मजबूत होते हैं ऐसा माना जाता है, इसलिए इस डिनर का आयोजन किया जाता है। तो देखिए अब ये डिनर का भी आयोजन होगा जिसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे और रेसिप्रोकेटल टैरिफ की वजह से व्यापार में तनाव क्योंकि बना हुआ है उसको साधने की भी कोशिश की जाएगी। एआई को लेकर दोनों देशों में होड़ मची हुई है, उस मुद्दे पर भी बात होगी। ताइवान अमेरिका हथियार डील से चीन नाराज चल रहा है। तो उस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच मुलाकात जब होने वाली है दोनों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच, तो इस पर भी बात होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी से मेरे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जरा बताएं कि 6 दशक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, क्या इस स्वागत सत्कार के बाद चीन अमेरिका की तकरार कम होने की उम्मीद लग रही है?
9: वैसे डोनाल्ड ट्रंप का एंड्रू एयरफोर्स जाना, जॉन एफ कैनेडी गए थे 60s में यूके प्राइम मिनिस्टर को लेने के लिए, तो उसके बाद से कभी इस तरह का प्रोटोकॉल हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी अभी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे चाइना, तब भी इस तरह का हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखा था कि एयरपोर्ट पे लेने के लिए शी जिनपिंग आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप एक कहीं इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं इस विजिट की। वो इसे G2 कहते हैं, चाइना और अमेरिका की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसे, और ऑब्वियसली बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा कि बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं इस पार्टनरशिप को, चाहते हैं स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन रहे, स्ट्रेटेजिक राइवलरी ना बने, और उसी के चलते मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्लान किया गया। एंड्रू एयरफोर्स बेस पे गए, मेलानिया ट्रंप को साथ में लेके गए, साथ में 21 तोपे की वहां पे सलामी दी गई, फिर F2 रैप्टर्स वहां पे थे, B1 बॉम्बर्स ने जो उनके ऊपर से गए, चाइनीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वहां पे नेशनल एंथम उनके चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक रेड कार्पेट जिसपे आप दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां पे शी जिनपिंग वॉक कर रहे हैं, वो रोल आउट किया गया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें देखना होगा कि क्या इसमें से एक्शनेबल चीजें कितनी होती है, और वो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात होगी। अगर आप ट्रेड देख ले तो दोनों की ठनी हुई है, अगर आप टैरिफ्स देख ले दोनों की ठनी हुई है, अगर आप AI देख ले ठनी हुई है, इंडो पैसिफिक देख ले ठनी हुई है, ताइवान देख ले ठनी हुई है, हर जगह पे जितने भी एरियाज हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं कि दोनों साइड एक तरह की भाषा बोलती है। तो देखना होगा कि कल मीटिंग के बाद क्या होता है।
0: तो देखिए, न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के बीच एक अहम कूटनीतिक मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से यह मुलाकात की, और दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के साथ पश्चिम एशिया और यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई है। बैठक में रूस और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े नए कानून को लेकर भी भारत की चिंताओं पर बात हुई। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस कानून को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने रखा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपनी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा, तो वहीं अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को अहम भी बताया।
6: न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। बैठक में भारत अमेरिका संबंधों के साथ रूस और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। जयशंकर ने रूबियो के सामने सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को रखा। दोनों नेताओं ने गल्फ और यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा की। अमेरिका की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर लगातार तालमेल कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सहयोग पर चर्चा हुई। नए अमेरिकी कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार है। भारत ने साफ किया कि उसकी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और AI जैसे मुद्दों पर सहयोग जारी रखने पर भी जोर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 19 अक्टूबर को भारत का दौरा कर सकते हैं। न्यूयॉर्क से ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर अमेरिका का दबाव बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो देखिए, दूसरी ओर ईरान ने इस दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान ने अपनी शर्तों के तहत मध्यस्थों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वो स्थायी शांति चाहता है। ईरान की मुख्य शर्तों में क्षेत्र में संघर्ष का पूरी तरह से अंत, प्रतिबंधों को हटाना और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान शामिल है।
10: मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: वहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आसा कुंज गैंगरेप मामले में जांच के दौरान कई अहम खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी हेमंत और मुकेश अपने घर गए और ट्रैक पैंट समेत अपने कपड़े उन्होंने धोए। और पुलिस ने तीनों आरोपियों के कपड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार आसिफ, हेमंत और मुकेश बचपन के दोस्त हैं और अक्सर पार्क में जाते थे। आसिफ के मोबाइल से कथित तौर पर कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं, जबकि मुकेश और हेमंत की सर्च हिस्ट्री डिलीट किए जाने की बात सामने आई है। तीनों के मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आरोप है कि तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर 17 वर्षीय लड़की और उसकी दोस्त को धमकाया। आसिफ से पिस्टल, चाकू और कई चीजें बरामद होने के बाद FIR में आपराधिक साजिश की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। वहीं जमुई में नाबालिग से हुई छेड़छाड़ के आरोपी हरिराम यादव को जमुई कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद निकलते समय एक वकील आकाश पांडे ने तमाचा मार दिया। हालांकि थप्पड़ मारते ही पुलिस ने तुरंत हरिराम यादव को गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उसे वहां से लेकर पुलिस निकल गई।
11: जैसा उन्होंने कृत्य किया उसके लिए तो थप्पड़, उसको तो गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इसने जो कृत्य किया उसके लिए हम लोग पूरा जमुई वासी शर्मिंदा है। हम अगर देखा जाए तो सारे मर्द समाज पर ये चाटा है, ये चाटा उसके मुंह पे वापस किया गया है।
12: तो आप एडवोकेट हैं? और
11: बिल्कुल हैं। एडवोकेट होने से पहले हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर भी एक मानवीयता है।
12: कोर्ट परिसर में ही आपने?
11: हाँ, तो क्यों नहीं करें हम?
12: आपको लगता नहीं कानून को आपने हाथ में लिया?
11: ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमें कानून सजा देगी हम उसके लिए मंजूर हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोग ये चीज नहीं सह पाएंगे। आक्रोश मन में यही था, जो कि हम लोगों ने चीज देखा, जो चीज जाना उसके प्रति आक्रोश था। इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय था, इसे कोई भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा।
0: इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FT, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
15: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: ओ मेरा तो चार्ज हुआ यार।
6: ओला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
10: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
18: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट।
20: जेके मैक्स।
21: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Nadi, I need to open a savings account.
2: Arre, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
1: Small bank?
2: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
1: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
3: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस
5: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया
6: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
5: असली शहद असली स्वाद
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा
8: अब पर वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर
9: मेरे पास एक आइडिया
7: क्या
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
10: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
8: ओ नादान परिंदे बैठ मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
12: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
13: तो कौन सी बनानी है
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा अनमोल बिस्किट्स स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल Signature finest cardamom seeds.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में भीषण आग, 9 यात्रियों की मौत, सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों से की बात। सेवा तीर्थ में पीएम मोदी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पहले दिन 4.5 घंटे तक मंथन, बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। चुनाव आयोग में पसरी असहमति को लेकर सियासी बवंडर, विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की, राहुल गांधी ने वोट चोरी के दावे को दोहराया, बीजेपी बोली लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करा आयोग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे, एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया स्वागत, आज दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात, व्यापार और ताइवान ईरान पर चर्चा की उम्मीद। अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत का कूटनीतिक मोर्चा, न्यूयॉर्क में एस जयशंकर ने रूबियो से की मुलाकात, मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ को लेकर जताई चिंता।

यमुना एक्सप्रेस वे पर ड्यूलेक्स बस में लगी भीषण आग, हादसे में 9 की मौत। बस में आग लगने के बाद सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। देखते ही देखते आग ने पूरे बस को चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम। करीबन 40 से 50 लोग बस में थे सवार। आग का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों से की बात। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हिट एंड रन मामले में थार चालक गिरफ्तार हुआ। हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की हुई थी मौत। पत्नी की गंभीर हालत में इलाज जारी। विनीत मिनोचा हत्याकांड में पुलिस ने उनकी बहू के बाद अब बेटे सुब्रत को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि सुब्रत आर्थिक दबाव में था और साजिश में था शामिल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल तोड़ा। उन्होंने खुद अमेरिकी एयरफोर्स एंड्रयूज एयरबेस पहुंचकर जिनपिंग का वेलकम किया। 3 दिन के इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत के साथ साथ कई औपचारिक कार्यक्रम भी शामिल। आज एक स्टेट डिनर का भी कार्यक्रम। अमेरिका और चीन के बीच बैठक को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका और चीन के बीच के संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष ने जिनपिंग के दौरे का किया विरोध। बोले, ट्रंप को चीन के भारी सैन्य विस्तार और ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों को जरूरी उठाना चाहिए। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में ट्रंप पर जमकर पलटवार किया। कहा, ईरान को आतंकवादी देश बताना गलत। पेजिश्कियान ने कहा, ईरान खुद आतंकवाद का शिकार रहा। साथ ही अमेरिका और इसराइल पर ईरानी धरती पर हमला करने का भी आरोप लगाया। पेजिश्कियान ने अपने संबोधन के दौरान मिनाब स्कूल हमले के पीड़ितों की तस्वीरें भी दिखाई। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का भी जिक्र किया। पेजिश्कियान ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि एटमी एनर्जी ईरान का हक है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसराइल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसराइल अलग अलग शहरों और प्रांतों में इलाकों को निशाना बनाता है और हत्याएं करता है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री अजय शंकर की मुलाकात मार्को रूबियो से हुई। इस दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री अजय शंकर ने बैठक में हुई बातचीत पर दी जानकारी। रशिया और ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने दोहराया। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की बैठक में भी हिस्सा लिया। वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर भारत का पक्ष रखा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर भारत समेत 47 देशों के नागरिकों को युद्ध में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पुतिन को बताया पेशेंट सीरो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधते हुए जेलेंस्की ने कहा, पुतिन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की और इसे दुनिया भर में फैलाया। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। आज चिंतन बैठक का दूसरा दिन सुधारों पर विशेष ध्यान देने के साथ शासन के पहलुओं पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेवा यात्रा में शामिल लोगों से बातचीत करेंगे। ये सेवा यात्री 10 ग्रुप में वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। टीएमसी के नाम चुनाव चिन्ह पर आज सुनवाई। त्योहार से पहले राहत, खाने के तेल पर सरकार ने घटाया आयात शुल्क, आज से लागू नई दरें। पटना में जनसुराज के नेता अनिल यादव पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई, गंभीर हालत में इलाज जारी। अनिल यादव समर्थकों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अस्पताल पहुंचकर अनिल यादव से की मुलाकात। जमकर सम्राट सरकार पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज है, इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे कि पहले बिहार में जंगल राज था, अब क्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी सम्राट चौधरी पर जमकर बोला हमला। कहा, 7 हत्याओं के आरोपी सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते प्रशासनिक व्यवस्था का भी अपराधीकरण कर दिया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब आयोग की सफाई। शुरुआती मतभेदों के बावजूद सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। अलग अलग टिप्पणी को आयोग ने बताया सामान्य। कहा, पिछले 1 साल में हुए सहमति से निर्णय। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर को लेकर दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई। फॉर्म 6 को लेकर भी दिखे मतभेद। आयोग के सूत्रों ने सिस्टम में केंद्रीय हस्तक्षेप से किया इनकार। कहा, पूरे देश के लिए एक सिस्टम, सभी ईआरओ ही डेटा फीड करते। चुनाव आयोग पर मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर सियासत तेज हुई। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी राजद्रोह का मामला। ममता बनर्जी ने की ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करने की मांग। उद्धव गुट बोला, इस्तीफा दे ज्ञानेश। अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल के चुनाव रद्द करने की मांग। उद्धव गुट ने किया समर्थन। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। संबित पात्रा बोले, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव।
बीजेपी ने कांग्रेस राज की दिलाई याद, कहा कांग्रेस का चुनाव आयोग से रहा है पुराना गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी ने 27 के चुनाव से पहले अपनी टीम का किया विस्तार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रभारी और सहप्रभारियों के नाम का ऐलान। अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर, स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। संजय भाटिया को राजस्थान और विप्लव कुमार देव को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई। यूपी के लिए बीजेपी का अलग प्लान, 4 नए सहप्रभारी नियुक्त किए गए। घी को लेकर रामदेव और ब्रजभूषण के बीच खत्म हुआ विवाद, ब्रजभूषण से मुलाकात के बाद बोले रामदेव, मेरा कोई भी सामान नकली नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट पर बवाल, बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। राहुल के सीएम मोहन यादव को चिट्ठी, एमपी में ओबीसी छात्रों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के लातूर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सूखा पीड़ित खेतों का लिया जायजा, किसान ने रोते हुए सुनाई अपनी तकलीफ। बिहार में दरोगा बहाली परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग का फैसला। जमुई में आरोपी हरे राम यादव की पेशी, कोर्ट परिसर में वकील ने मारा थप्पड़। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को बॉम्बे आईआईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेजा, मैनेजमेंट ने 10 मेंबर के पैनल का भी किया गठन। एक हफ्ते में रिपोर्ट देगा पैनल, प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन किया। मृतक साहिल के पिता ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी, बोले अगर दुल्ला और केदारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरने पर बैठूंगा। जोधपुर एम्स में डॉक्टर के सुसाइड पर विरोध प्रदर्शन, डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग की गई। कालकाजी में नाबालिग से हुए हैवानियत पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पुलिस से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कालकाजी गैंगरेप को लेकर एलजी ने बुलाई बड़ी बैठक, पुलिस कमिश्नर डीडीए के वीसी और एमसीडी कमिश्नर के साथ चर्चा हुई। दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान, बनेगी पिंक फोर्स, संवेदनशील इलाकों में होगी पेट्रोलिंग। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में दुर्गा ईवी ऑटो योजना को दी गई मंजूरी। दिल्ली के शक्तिनगर गोल के पास कार पलटी, ई रिक्शा को बचाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों से भरी बस में लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा कर्मचारी बाल बाल बचे। उज्जैन में चल रहे समारोह में भीड़ के बीच पटाखों से किया खतरनाक करतब, गाड़ी के ऊपर जलाए गए पटाखे, टली बड़ी घटना। सुल्तानपुर में छात्रा को कार ने जोरदार टक्कर मारी, हादसे के बाद चालक फरार। नौगछिया में कोसी गंगा के कहर से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई, बाढ़ के पानी में बही किसानों की। हैदराबाद में करमन घाट मंदिर के पास प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, 38 यात्री सुरक्षित। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में पुलिस की स्नैचर से मुठभेड़ हुई, चोरी की बाइक, देसी तमंचा बरामद। गाजियाबाद में खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद मोहन नगर होटल की जांच की गई, पेंट्री बंद कर नोटिस जारी। सुल्तानपुर में एकतरफा प्यार में शादीशुदा शख्स को गोली मारी गई, लड़की के भाइयों पर गोली मारने का लगा आरोप। भोपाल में वकील पुलिस विवाद पर बवाल, थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। बरेली में पंचायत का तालिबानी फरमान, रेप के आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित लड़की से शादी करने का आदेश। वाराणसी में नशे में तालाब पार करने की शर्त जीतने चक्कर में युवक की गई जान, डूबकर हुई मौत, अस्पताल में हंगामा। यूपी के सीतापुर में गणेश पूजा पंडाल पर बरसात के चलते गिरा छज्जा, एक महिला की मौत, 8 घायल। मुरादाबाद में वनस्पति घी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, सड़क पर बिखरे घी की मची लूट, वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों की चोरी, 2 आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 11:18 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 10:35 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर की बाधा दूर हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, चोट चपेट से सावधान रहें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन का आगमन होता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, यात्रा में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

धन प्राप्त होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, धन के खर्चों पर ध्यान दें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
6: अब पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
8: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
9: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
12: तो कौन सी बनानी है?
13: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
14: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
6: आई लाइक दिस ओनली।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
15: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
16: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
17: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
18: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
19: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर
3: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर।
20: इट इज ए वेरी वेरी सीरियस असॉल्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
21: दिस मैन शुड बी सस्पेंडेड। दिस गणेश कुमार शुड बी सस्पेंडेड फोर्थविथ।
22: क्या चुनाव आयोग में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दो चुनाव आयुक्त में बन नहीं रही? क्या SIR पर अपनी चला रहे हैं ज्ञानेश कुमार? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार अलग अलग फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में चार

लावंडर। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने वोट चोरी के दावे को दोहराया। बीजेपी बोली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है आयोग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात। व्यापार और ताइवान ईरान पर चर्चा की उम्मीद। अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत का कूटनीतिक मोर्चा। न्यूयॉर्क में जयशंकर ने रूबियो से की मुलाकात। मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ को लेकर जताई चिंता।

स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। पटना में फिर कानून व्यवस्था हुई तार तार। जन सुराज के नेता के घर में घुसकर मारी गई गोली। सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। साहिल वाकोरे के सीसीटीवी फुटेज में क्या है पूरी डिटेल खबर अब से कुछ ही देर बाद। सड़क पर हो जाएं सावधान। दिल्ली के शक्तिनगर से सामने आई है हादसे की सनसनीखेज वीडियो। ओवरटेक करने में ही पलट गई कार। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहां पर एक चलती स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की जान चली गई है। आग लगते ही बस के अंदर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई जिसके बाद सवारियों ने किसी तरह बस से कूद कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। देखते देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग की चपेट में आ गई। यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से तकरीबन 32 किलोमीटर आगे हुआ है और मामला जेवर थाना क्षेत्र का है। आरोपी है कि बस का ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। लोगों की शिकायत के बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। ये बात सामने आ रही है कि बस में आग बुझाने वाला सिलेंडर काम नहीं कर रहा था। उसी सिलेंडर से दरअसल शीशा तोड़ा गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है। यह हादसा इतना भीषण कि इसमें 9 लोगों की जान चली गई है। बस में आग लगी ठीक उसी वक्त का वीडियो आज तक के पास है। उस वक्त बस में यात्री फंसे हुए थे। चीख पुकार मची हुई थी। बस में सवार शख्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई और बस से उतरने के बाद ये वीडियो बनाया। जो हादसे में मुसाफिर बचे हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। एक छोटी सी चूक 9 जिंदगियों पर आफत बन गई। बस से बदबू भी आ रही थी इसके बावजूद बस चालक ने बस नहीं रोकी। अंदर ही सिगरेट पी रहा था चालक और परिचालक दोनों। ये बात अब बचे हुए मुसाफिरों ने बताई। ग्रेटर नोएडा का यह बस हादसा जिसमें बीती रात 9 लोगों की जान चली गई।

0: जेवर थाना क्षेत्र में ये इलाका आता है और ऐसे में वहीं पर एफआईआर लिखाई गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे अब बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, जो घायल मुसाफिर हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 9 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये अंदर ही जिंदा जल गई स्लीपर बस। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ऊपर सोने के लिए अलग कंपार्टमेंट होता है, और ऐसे में जब जलने की बदबू भी आई, लोगों को आशंका हुई कि बस में आग लग गई है। उसके बावजूद बस चालक ने ये बस नहीं रोकी। अंशुल सिंह मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। अंशुल, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या बता रहे हैं, कैसे ये आग लगी, कहां से ये हादसा शुरू हुआ, और अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्या कार्रवाई चालक और परिचालक के खिलाफ?
1: जी, अभी इस वक्त हम करीब 6वां टोल के आसपास पहुंच गए हैं। इस बस को उस लोकेशन से हटाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा का जो जीरो पॉइंट है उससे करीब 33 किलोमीटर आगे जो है इस बस में आग लगी। पहले जो यात्री हैं उनका ये कहना है कि जब पहली बार बदबू आई तो उन्होंने ड्राइवर को बोला भी कि कहीं इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बदबू आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और तेजी से बस को आगे बढ़ाते रहा। आपको मैं अंदर की तस्वीरें भी अगर दिखाऊं तो आपको ये देखकर समझ आ जाएगा कि यह आग कितनी भयावह थी। बिल्कुल यहीं से जो आग है वो शुरू हुई, और यात्रियों को ये आरोप है कि आग लगते ही जो ड्राइवर का कंडक्टर था और जो ड्राइवर था वो दोनों यहां से निकल गए। इसके बाद जो यात्री थे वो अपनी जान बचाकर यहां से एक एक करके निकलने लगे। अगर आप ये तस्वीरों में देखें तो ये एक ही एग्जिट है जो यहां पर है। इसके अलावा एक एग्जिट जो है वो पीछे वाली तरफ होना चाहिए था, लेकिन पीछे की तरफ जो एग्जिट है उसे सील करके यहां पर सीटें बना दी गई हैं, जिसके वजह से जो लोग पीछे की तरफ इस बस में बैठे हुए थे वो लोग यहां से निकल ही नहीं पाए, उन्हें मौका ही नहीं मिला निकलने का। आप देखिए, इस बस को यहां से निकालने में भी इतनी तकलीफें हो रही हैं क्योंकि बस इतनी भयंकर रूप से जल गई है कि कोई भी हार्ड मटेरियल बचा ही नहीं है जिससे बस को टो करके यहां से निकाल लिया जाए। आप देखें किस तरीके से जो है ये पूरी की पूरी बस जो है कुछ ही मिनटों में जल गई। यहां पर एक इमरजेंसी विंडो था, जो विंडो तोड़कर लोग बाहर निकल पाए। 9 लोग जो पीछे वाली साइड थे वो बाहर नहीं आ पाए हैं। प्रशासन का ये कहना है कि 9 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला जो है उस महिला की हालत अभी गंभीर है, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाकी जो लोग बस में मौजूद थे, बाकी जो यात्री बस में मौजूद थे, उन्हें स्पेशल वाहन से मोबा की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन आप देखें ये पीछे की भी अगर आप विंडो देखें तो ये विंडो भी जो है ये भी एक इमरजेंसी एग्जिट का काम करना चाहिए था। यहां पे भी ग्लास होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए इसको पूरी तरीके से सील बंद कर दिया गया था। एक छोटा सा ये एग्जिट रखा गया, एक छोटा सा ये विंडो रखा गया था जिसकी वजह से लोग इससे समय रहते नहीं निकल पाए और इसी आग में झुलस कर उनकी मौत हो गई है। नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर ली है, बयान भी दर्ज कर लिए हैं, लेकिन अभी तक अगर हम कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन या किसी भी तरीके अरेस्ट की बात करें तो अभी तक किसी भी तरीके की अरेस्ट की जो बात है वो सामने नहीं आई है। तो अब ये देखना होगा जैसे ये तफ्तीश आगे बढ़ती है कि आखिर वो कौन कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से ये आग लगी, क्योंकि अंदर जो मटेरियल था वो मटेरियल भी कहीं ना कहीं फ्लेमेबल मटेरियल था। मैं यहां पर देख के आपको बता सकता हूं कि कुछ ऐसे नियम है जो नहीं पालन किए गए, जैसे कि आरटीओ का नियम है, अगर ये बस सड़क पे चलनी है तो जो ड्राइवर और पैसेंजर्स के बीच में पार्टीशन है ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखें यहाँ पर शायद एक टॉयलेट ही बना दिया है पूरी तरीके से, तो ये भी पालन नहीं हो रहा था। इमरजेंसी एग्जिट पीछे की तरफ होनी चाहिए थी, पीछे इमरजेंसी एग्जिट नहीं है किसी भी तरीके का। आप देखें यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ था उस मटेरियल की हालत देखें आप कि किस तरीके से एक एक चीज जो है पूरी तरीके से जल गई, और कुछ ही मिनटों में जो है, क्योंकि ये मटेरियल इतना फ्लेमेबल होता है, इतनी ज्वलनशील शक्ति होती है कि हल्की सी भी आग इस मटेरियल को बहुत जल्दी पकड़ सकती है। लेकिन नियमों के अनुसार ये होना चाहिए था कि जो मटेरियल यूज हो वो फायर रेजिस्टेंट तो कम से कम हो, कि कम से कम आग लगने में थोड़ा समय लगे ताकि लोग बाहर निकल सके। ये नियम कहते हैं, ये कानून कहता है, लेकिन आप ये देखें ये नॉर्मल हर तरीके का जो मटेरियल है वो यहाँ यूज किया गया, जिसके वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को समय ही नहीं मिला कि इससे किसी भी तरीके से वो निकल पाए। और ये इन तस्वीरों में काफी काफी सीधे तौर पे क्लियर होता है। आप देखिए ये टायरों की हालत देखें, आप ये टायरों की हालत देखें कि ये पूरा जो रबड़ है ये पूरी तरीके से जल गया है, जिसके वजह से आप बस
0: ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बस में सवार सुनील कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। सुनील कुमार से बात की आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने।
2: तो सुनील जी, फिर जब बस में आग लगी तो क्या हुआ, कैसे बस में आग लगी थी?
3: आधे लोग नींद में थे, आधे लोग जाग रहे थे। ड्राइवर अपनी गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कर रहे थे। आप उसको दो चार बार लोगों ने कहा भैया गाड़ी रोको, जैसी आ रही है गाड़ी, उसने लेकिन गाड़ी रोकी नहीं। और बस जब तक काम काफी बढ़ गया, उसने जब ज्यादा धुआं निकलने लगा जब उसने गाड़ी रोकी।
2: अच्छा, तो आप लोग बोल रहे थे जब बदबू आ रही थी कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको?
3: नहीं, मैं नहीं, लोग बोल रहे थे।
2: अच्छा, लेकिन वो गाड़ी ड्राइवर नहीं रोक रहा था?
3: अब जब गाड़ी ड्राइवर ने रोकी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद रोकी, काफी नुकसान हो चुका था।
2: तो वो क्या बीड़ी सिगरेट भी पी रहे थे?
3: अब स्मेल तो आ रही थी सर, अब पता नहीं स्मेल बीड़ी सिगरेट की थी कि काय चीज की थी।
2: अच्छा, नहीं बता रहे हैं कि वो ड्राइवर हंस भी रहा था जब लोग बोल रहे थे कि रोको रोको।
3: हंसने की आवाज तो सर, गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि गाड़ी हंसने की आवाज आ रही थी।
2: तो उसके बाद फिर जब बस में आग लगी तो आप लोग बाहर निकले, फिर कोई पुलिस कैसे आई थी? मतलब कोई पुलिस आई कि 9 लोग जो फंसी गए थे बस में निकल नहीं पाए?
3: वो निकल ही नहीं पाए, इतनी तेज हो गई आग, वो निकल ही नहीं पाए।
2: अच्छा, और आप लोग वही दरवाजे की तरफ से निकले?
3: हाँ, सब लोग दरवाजे की तरफ से निकले। जब उन्होंने जब दो तीन लोगों ने चिल्लाया कि निकलो जल्दी निकलो, आग जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, बाहर निकलो बाहर निकलो, इतनी देर में आग लग गई, टाइम ही नहीं मिला निकलने का, बाहर इतना मौका नहीं फिर मिल पाया लोगों को। अगर गाड़ी टाइम से रुक जाती तो सब लोग निकल जाते।
2: अच्छा, तो जब मतलब बस में आग लगी तो उस वक्त कुछ लोग सो भी रहे थे?
3: हाँ, आधे से ज्यादा लोग सो रहे थे, आधे से ज्यादा के 80% लोग सो रहे थे।
0: और ऐसे ही हादसे की एक और खबर हैदराबाद से, जहां एक प्राइवेट बस देखते देखते शोलों में तब्दील हो गई। हादसे के वक्त करीब 40 यात्री इसमें सवार थे। गनीमत यह रही कि सभी यात्री समय रहते बस से बाहर निकल आए। इस हादसे में यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने भी आग पर काबू पा लिया है। यही वो हादसे वाली जगह है जहां पर पूरी तरीके से जलकर राख ये बस हो चुकी है, सिर्फ इसका ढांचा बाकी है। करीब 40 यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत ही रही कि इतनी भीषण आग के बावजूद सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। और बात पटना गोलीकांड की, बिहार की राजधानी पटना में जन स्वराज के नेता अनिल यादव पर हमला किया गया। नकाबपोश हमलावरों ने प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता को घर में घुसकर गोली मारी। अनिल यादव उस वक्त बुद्धा कॉलोनी स्थित अपने घर की पार्किंग में बैठे थे। 4 गोलियां उन्हें लगी हैं, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
4: तस्वीरें हैरान और विचलित करने वाली हैं। तस्वीरें देखिए, जन सुराज के नेता अनिल यादव कुर्सी पर बैठे हैं और बाइक से उतरकर दो युवक उन पर गोली चला रहे हैं। गोली लगते ही अनिल यादव कुर्सी से जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। अब जरा इससे पहले की तस्वीर देखिए। बाइक पर सवार 3 नौजवान, तीनों के चेहरे पर काला नकाब। एक युवक बाइक संभाले हुए और बाकी दो युवक फायरिंग करते हुए। ये तस्वीर पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके की है, जहां जनसुराज पार्टी के नेता अनिल यादव को गोली मारी गई। बिहार की राजधानी में पटना में हुए इस गोलीकांड ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था को सवालों में ला दिया है।
5: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है। कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।
4: जानकारी के मुताबिक जिस वक्त अनिल यादव को गोली मारी गई, वो अपने घर सुखिया महल की पार्किंग में बैठे थे। अनिल यादव को 4 गोलियां मारी गई। 3 हमलावर 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, तीनों फायरिंग करने के बाद फरार हो गए।
6: पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने क्षेत्र के चकाराम इलाके में अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, ये घर जो है, ये अपार्टमेंट अगर कहा जाए, सुखिया महल, ये वार्ड नंबर 24 की वार्ड पार्षद ज्ञानवती देवी का है और इनके पति को अपराधियों ने गोली मार दिया है। 5 गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी 2 बाइक से 3 की संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ पे बैठे हुए थे। ज्ञानवती देवी के पति अनिल यादव और 3 अपराधी आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हैं और जिसके बाद जो है उनके पति अनिल यादव बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उनके साथ जो बैठे लोग थे वो उन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाते हैं और फिलहाल वहां पे उनका इलाज चल रहा है। स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है।
4: पुलिस निजी दुश्मनी समेत सभी एंगल से इस गोलीकांड की जांच कर रही है।
7: कोई दुश्मनी है इनकी, अभी अज्ञात है किन से इनकी दुश्मनी है, वो पता लगाया जा रहा है और इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन से इनकी दुश्मनी थी, वो कार्रवाई की जाएगी।
4: जन सुराज नेता अनिल यादव को गोली लगने की खबर जैसे ही फैली, नेताओं का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया। जन सुराज नेता प्रशांत किशोर भी पहुंचे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे।
8: कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार, देनदार घर में घुस करके जो है गोलियां मारी जा रही है।
9: भाई भाई साहब थोड़ा नीचे,
8: चाहे बच्चियां हो, चाहे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या जनप्रतिनिधि है, तो आप समझ सकते हैं जब पटना जो राजधानी शहर है, जब वहां के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है?
10: नेता के कारण इस बिहार की दुर्गति हो गई। और कोई कहता है जंगल राज, कोई कहता है महाजंगल राज, तो जंगल राज जब था तो 5 के पहले उसको हटा दिया, अब 5 के बाद जो महाजंगल राज, तो ये कब तक रहेंगे आप? या तो सुधारिए या तो हटिए, स्थिति अच्छी नहीं।
4: पहले जमुई में नाबालिग लड़की से बदसलूकी और अब पटना में फायरिंग। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़े दावे करने वाली सम्राट सरकार अब इसी मोर्चे पर घिरती नजर आ रही है। पटना से सुजीत कुमार, आज तक ब्यूरो।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये आपसी रंजिश का मामला है, राजनीतिक मामला है?
11: नया देखिए, पुलिस अलग अलग बिंदुओं की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा हैरत जो है वो इसी बात को लेकर के है कि ये घटना कोई दूर दराज के क्षेत्र में नहीं हुई है। ये राजधानी पटना का बुद्धा कॉलोनी इलाका है, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंदर चकारम एक जगह है जहां से वार्ड संख्या 24 की जो पार्षद हैं ज्ञानवती देवी, उनके पति अनिल यादव अपने ही घर में, जो उनका मतलब निजी एक तरह से अपार्टमेंट कह लीजिए, उसके बेसमेंट में बैठे थे अपने दूसरे जानने वालों के साथ। उनका सिक्योरिटी गार्ड, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी वहां मौजूद था। इसी दौरान 3 की संख्या में शूटर्स आते हैं। लगभग शाम 7:35 के आसपास की घटना है, तो कोई बहुत देर रात की भी घटना नहीं है। अपने घर में बेसमेंट में वो बैठे थे और इसी दौरान 3 की संख्या में शूटर आए और उन्होंने निशाना बनाया, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 7 राउंड फायरिंग उनकी तरफ से की गई है और 5 गोलियां लगी अनिल यादव को। आनन फानन में उनको पास के ही बोरिंग रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आया गया, लेकिन जब वहां स्थिति बिगड़ने लगी तो फिर उनको एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कल रात भर घटनाक्रम होता रहा नया। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी पहुंचे, पप्पू यादव भी पहुंचे। तो ये अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार जो है उस पर सवाल है विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष यही पूछ रहा है सवाल कि क्या लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं? क्या अब कोई अपने घर में बैठा है तो भी अपराधी उसको निशाना बना करके चले जाएंगे? तो और सबसे दिलचस्प बात ये नेहा कि अगले साल बिहार में जो है निकाय के चुनाव होने हैं, तो पटना नगर निगम का भी चुनाव होगा, तो इसको इससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है। चूंकि एक वार्ड पार्षद के पति की जिस तरह से पति को मारा गया और जो इलाजरत है अभी 5 गोलियां लगने के बाद पटना के एक हॉस्पिटल में, तो ये मामला कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि अगले साल जो चुनाव होने हैं वार्ड के, पटना नगर निगम के, उसमें कहीं रंजिश का कोई एंगल तो नहीं है, पुलिस इन तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात जमुई की करेंगे, जहां पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी हरेराम यादव को जमुई कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद निकलते समय एक वकील आकाश पांडे ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि थप्पड़ मारते ही पुलिस ने तुरंत हरेराम यादव को गाड़ी में उठाया, इसके बाद उसे वहां से लेकर निकल गई।
12: जैसा उन्होंने कृत्य किया उसके लिए तो थप्पड़ उसको तो गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इसने जो कृत्य किया उसके लिए हम लोग पूरा जमुई वासी शर्मिंदा है। हम अगर देखा जाए तो सारे मर्द समाज पर ये चाटा है, ये चाटा उसके मुंह पे वापस किया गया है।
13: तो आप एडवोकेट हैं? और
12: बिल्कुल हैं, एडवोकेट होने से पहले हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर भी एक मानवीयता है।
13: कोर्ट परिसर में ही आपने?
12: हाँ, तो क्यों नहीं करें हम?
13: आपको लगता नहीं कानून को आपने हाथ में लिया?
12: ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमें कानून सजा देगी हम उसके लिए मंजूर हैं, लेकिन एक बहन बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम लोग ये चीज नहीं सह पाएंगे। आक्रोश मन में यही था, जो कि हम लोगों ने चीज देखा, जो चीज जाना उसके प्रति आक्रोश था। इन्होंने जो किया वो पूरी तरह से निंदनीय था, इसे कोई भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा।
0: और बात आईआईटी बॉम्बे में साहिल वाकुड़े सुसाइड मामले की, उस दिन के इम्तिहान का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें साहिल वाकुड़े के नकल करते पकड़े जाने की बात सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ दिख रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
14: आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकुड़े के सुसाइड केस में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो 18 सितंबर को आईआईटी बॉम्बे में चल रहे सेमेस्टर इम्तिहान का है। सीसीटीवी फुटेज पर समय साफ नजर आ रहा है, दोपहर 12:38। परीक्षा केंद्र में सबसे अगली कतार में साहिल आंसर लिखता नजर आ रहा है। वहीं इन्विजिलेटर सूर्य नारायण दुल्ला भी बेहद सतर्कता से निगरानी करते नजर आ रहे हैं। तभी दुल्ला पीछे लौटते हैं और साहिल से कुछ बात करते हैं। साहिल दुल्ला को कुछ देता नजर आता है और फिर सामान समेट कर अपनी सीट से उठकर बाहर जाता नजर आ रहा है। इस वीडियो की अलग अलग व्याख्या हो रही है, इसे परीक्षा में नकल के सबूत के तौर पर भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि आईआईटी बॉम्बे ने शुरुआती बयान में यही कहा था कि साहिल नकल करते पकड़ा गया था।
15: साहिल वाकुड़े आईआईटी बॉम्बे का जो स्टूडेंट है जिसने आत्महत्या कर ली, अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 18 तारीख का है जिस दिन एग्जाम चल रही थी। एग्जाम हॉल का ये सीसीटीवी फुटेज है और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि साहिल कुछ एक मोबाइल की तरफ या किसी चीज की तरफ नीचे बार बार देख रहा है और फिर आंसर शीट में कुछ लिख रहा है। प्रोफेसर आते हैं पहले, फिर दूसरी जगह से उसको देखते हैं, फिर आते हैं उसे कन्फ्रंट करते हैं और उसके बाद साहिल को बाहर ले जाया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है।
14: साहिल खुदकुशी में छात्रों और कई संगठनों के प्रदर्शन के बाद साहिल को टॉर्चर करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला को डीन पद से हटाने के बाद अब बॉम्बे आईआईटी मैनेजमेंट ने छुट्टी पर भेज दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर दुल्ला को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे ने 10 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले की जाँच कर एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल आईआईटी बॉम्बे के बाहर यूथ कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रोफेसर दुल्ला को गिरफ्तार करने की मांग की।
16: यहाँ पे कास्टिज्म हुआ है और प्रोफेसर का कास्टिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का कास्टिज्म छुपाने के लिए चीटिंग का एंगल दिया जा रहा है। चीटिंग हुआ है तो साबित करो, मेरा वापस कहना है। चीटिंग का एंगल क्या आ रहा है, सबसे पहले लोग बोल रहे हैं चैट जीपीटी पे साहिल वाकुड़े ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। चैट जीपीटी पे पूरा हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड दिखता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर अगर चैट जीपीटी को जाएगा तो चैट जीपीटी का पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ सकता है।
14: उधर प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में भी लोग खड़े हो रहे हैं। फैकल्टी बयान जारी कर दुल्ला को समर्थन दे चुकी है। दुल्ला समर्थन में मार्च भी हो चुका है और अब एक वकील प्रथमेश सालवे ने सामाजिक न्याय मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रोफेसर दुल्ला बेगुनाह है, उन पर अत्याचार का झूठा मामला दर्ज किया गया है।
17: घर वालों को जब ये उनसे सहानुभूति रखता हूँ, पर ये काफी गलत है कि अगर जो इन्विजिलेटर है जिन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ा है उनपे ही आप ऐसे आरोप लगा रहे हो।
14: सवाल है कि क्या सीसीटीवी सामने आने के बाद केस की जांच की दिशा बदलेगी और क्या आरोपी प्रोफेसर दुल्ला को क्लीन चिट मिल पाएगी। मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
0: दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या इससे अब ये वाकई साबित हो रहा है कि साहिल ने चीटिंग करी थी? दीपेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, दीपेश से संपर्क करेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि नया सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें साहिल एग्जाम केंद्र में दिख रहा है, वहां पर वो परीक्षा दे रहा है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो वहां से अपना सामान लेकर बाहर निकल जाता है। प्रोफेसर दुल्ला भी इस फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जो साहिल से बात कर रहे हैं। और दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, क्या है सीसीटीवी फुटेज से साबित हो रहा है कि साहिल वाकई चीटिंग कर रहा था?
18: नेहा, देखिए, सीसीटीवी के आखिर में जो अंश है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रोफेसर डुल्ला हैं वो राउंड पर थे, चेक कर रहे थे, इन्विजिलेटर के तौर पर वहां एग्जामिनेशन सेंटर में मौजूद थे, और तभी वो डुल्ला के पास, साहिल के पास आते हैं और उसका आंसर शीट जो है वो ले लेते हैं और उसे बाहर लेकर जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में जो है वो मोबाइल नुमा चीज जो है वो देखी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से या फैकल्टी की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो के आखिर में जो देखा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये जो आईआईटी फैकल्टी द्वारा कहा जा रहा था कि मोबाइल पर चैट जीपीटी पर क्वेश्चन अपलोड कर रहा था, ये कहीं ना कहीं उसमें जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि ये पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता, लेकिन जो ये सीसीटीवी, ये काफी अहम सीसीटीवी है और इसमें जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ जिसकी वजह से वो पूरा वाकया जो है इस सीसीटीवी में कैद होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम सीसीटीवी है क्राइम ब्रांच के लिए। साथ ही जो कमेटी स्थापित की गई है आईआईटी फैकल्टी की तरफ से 10 लोगों की, उसके मुताबिक भी ये काफी अहम सबूत है, जो जिससे उनको भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में काफी मदद होगी। लेकिन जाहिर तौर पर जो आरोप या आईआईटी फैकल्टी द्वारा कहा जा रहा था चीटिंग के बारे में, जो चैट जीपीटी में सवाल देख रहा था क्वेश्चन पेपर अपलोड करके, उसको कहीं ना कहीं एक आधार इस सीसीटीवी से जरूर मिल रहा है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंच गए हैं, वहां ट्रंप और मेलानिया ट्रंप खुद जिनपिंग और उनकी पत्नी का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। अमेरिका पहुंचने पर जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर देखना चाहिए।
14: '62 के बाद ये पहली बार हुआ है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश के नेता का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचा हो। ये तस्वीरें देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं। उनका विमान जैसे ही मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा, वहां ट्रंप मानो जिनपिंग का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति जिनपिंग का ये ऐतिहासिक स्वागत है। शी और चीन की फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन को लेकर आ रहा विमान भारतीय समय के मुताबिक आज तड़के करीब 3:30 बजे जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। ट्रंप ने उनका अभिवादन और वेलकम किया, फिर दोनों नेता रेड कार्पेट पर आगे बढ़े। एयरपोर्ट पर ही जिनपिंग को सलामी दी गई। औपचारिक तोपों की सलामी के बीच अमेरिकी वायुसेना का बैंड धुन बजा रहा था। उसी वक्त अमेरिकी वायुसेना के 2 B-1 बॉम्बर विमान एयरबेस के ऊपर से गुजरे। शी और पेंग एक काफिले में एयरबेस से रवाना हुए। ट्रंप और मेलानिया मरीन 1 हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस लौट गए। अपने 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर पहुंचे जिनपिंग ने अमेरिका के साथ रिश्तों पर बयान दिया है। कहा है कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए। जिनपिंग ने भरोसा जताया है कि नए दौर में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ के सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। जिनपिंग ने ये भी कहा कि अमेरिका और चीन के लोगों के बीच दोस्ताना संबंध रहे हैं। उन्होंने दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे का पूरक बनने की भी अपील की है। अब ट्रंप और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। माना जा रहा है कि दोनों देशों की बातचीत में व्यापार शुल्क, तकनीक, एआई, सैन्य संबंध, मध्य पूर्व में संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ और ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री जैसे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अब व्हाइट हाउस में जिनपिंग का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, साथ ही औपचारिक भोज में भी शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात दिल्ली से आई एक तस्वीर की। ये वीडियो आप सबको गौर से देखना चाहिए। सड़क पर गाड़ी चलाएं तो सावधान रहें। दिल्ली के शक्तिनगर का ये वीडियो है। शक्तिनगर इलाके में गोल चक्कर के पास एक वैगनआर ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क पर पलट गई। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कार चालक ने पहले एक ई रिक्शा को बाईं तरफ से ओवरटेक किया। इसी दौरान सामने एक और ई रिक्शा आ गया, उसे बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित हो गई और जोरदार टक्कर के बाद पलट गई। हादसे में किसी के गंभीर चोट की खबर नहीं है। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ड्राइवर के बीड़ी पीने से यमुना एक्सप्रेसवे पर जल गई स्लीपर बस। पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा, काम नहीं कर रहे थे आग बुझाने वाले सिलेंडर। हादसे में 9 की मौत। सीएम योगी ने की परिजनों से बात। सेवा तीर्थ में पीएम मोदी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पहले दिन 4.5 घंटे तक मंथन। बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा। चुनाव आयोग में पसरी असहमति को लेकर सियासी बवंडर। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने वोट चोरी के दावे को दोहराया। बीजेपी बोली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है आयोग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया स्वागत। आज दोनों नेताओं के बीच अहम मुलाकात। व्यापार और ताइवान ईरान पर चर्चा की उम्मीद। अमेरिका के नए रूस बिल के खिलाफ भारत का कूटनीतिक मोर्चा। न्यूयॉर्क में एस जयशंकर ने रूबियो से की मुलाकात। मॉस्को से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ को लेकर जताई चिंता। वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। इस बीच बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा बस हादसे से जुड़ी हुई। स्लीपर बस के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। अब बस का ड्राइवर और कंडक्टर नोएडा पुलिस की हिरासत में है। दोनों आग लगने के बाद मौके से फरार हो गए थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बस मालिक मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है।

और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसी एक और घटना, नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करते दिखे युवक कैमरे में कैद। लड़की बाइक से अपने दोस्त के साथ जगत सिंहपुर गांव के बांध पर गई थी, तभी मनचलों ने लड़की के दोस्त को खदेड़ कर भगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में महिलाओं के प्रति सुरक्षा व्यवस्था की वीडियो में असलियत सामने आ रही है। समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले में डीएसपी ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 23 सितंबर की घटना बताई जा रही। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर डीलक्स बस में लगी आग, 9 की मौत। आग लगने के बाद सवारियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। आग लगने के बाद ड्राइवर कंडक्टर भाग गए। बस का ड्राइवर और कंडक्टर अब पुलिस की हिरासत में। 40-50 लोग बस में सवार थे। आग के कारणों का अभी पता नहीं है। सीएम योगी ने हादसे पर जताया खेद, मृतकों के परिजनों से की बातचीत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हिट एंड रन मामले में थार चालक गिरफ्तार, हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की हुई थी मौत, पत्नी की गंभीर हालत में इलाज जारी। विनीत मिनोचा हत्याकांड, पुलिस ने उनकी बहू के बाद अब बेटे सुब्रत को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि सुब्रत आर्थिक दबाव में था और साजिश में शामिल था। झांसी में अघोरी बाबा के वेश में सराफा दुकान पहुंचा शख्स, बातों में उलझाकर की चोरी, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। मेरठ में करेंसी बॉक्स मिले लगभग 5 लाख रूपये के नकली नोट, 186 शाखाओं से जुड़ा है नेटवर्क। यूपी के सुल्तानपुर में छात्रा को कार से मारी गई जोरदार टक्कर, हादसे के बाद कार चालक फरार। गाजियाबाद में खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद मोहन नगर होटल की जांच, पैंट्री बंद करने का नोटिस जारी। इंद्रापुरम में पुलिस की स्नैचर से मुठभेड़, चोरी की बाइक, देसी तमंचा बरामद। दिल्ली के शक्तिनगर गोल के पास कार पलटी, ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। रायपुर में सरकारी कर्मचारी से भरी बस में लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा कर्मचारी बाल बाल बचे। उज्जैन में चल रहे समारोह में भीड़ के बीच पटाखों से किया गया खतरनाक करतब, गाड़ी के ऊपर जलाए गए पटाखे, टली बड़ी घटना। नौगछिया में कोसी गंगा के गहर से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, बाढ़ के पानी में बही किसानों की मेहनत। आंध्र प्रदेश के अलूरी में भारी बारिश से नदी में उफान, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। हैदराबाद में गणेश विसर्जन ड्यूटी के दौरान एसआई को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। हैदराबाद में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना मेडिकल डिग्री लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। हैदराबाद में करमन घाट मंदिर के पास प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, 38 यात्री सुरक्षित। सुल्तानपुर में एक तरफा प्यार के चक्कर में शादीशुदा शख्स को मारी गई गोली, लड़की के भाइयों पर गोली मारने का लगा आरोप। भोपाल में वकील पुलिस विवाद पर बवाल, थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव पर रथ यात्रा के लिए कहा कि रथ यात्रा काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी। नरेंद्र कश्यप ने कहा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग जब याद करते हैं 5 वर्षों की सरकार के कालखंड को, तो आज भी लोगों के चेहरे पर तनाव होता है। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का उद्देश्य गुंडागर्दी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अयोध्या में महंत राजकुमार दास की मध्यस्थता में रामदेव ब्रजभूषण की मुलाकात, पतंजलि उत्पादों पर विवाद सुलझाने की पहल। रामदेव बाबा रामदेव से बातचीत के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह के मन में कुछ भ्रांतियां थीं जो बातचीत के बाद दूर हो गई हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया शानदार स्वागत। डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल तोड़ा, खुद अमेरिकी एयरफोर्स एंड्रयूज एयरबेस पहुंचकर जिनपिंग का वेलकम किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत के साथ कई औपचारिक कार्यक्रम शामिल, आज एक स्टेट डिनर का कार्यक्रम। अमेरिका और चीन के बीच बैठक को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा अमेरिका और चीन के बीच संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। सेनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष ने जिनपिंग के दौरे का किया विरोध, बोले ट्रंप को चीन के भारी सैन्य विस्तार, ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किया ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में ट्रंप पर जमकर पलटवार किया। पेजेश्किया ने कहा ईरान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, साथ ही अमेरिका और इसराइल पर ईरानी धरती पर हमला करने का भी आरोप लगाया। पेजेश्किया ने अपने संबोधन दौरान मीनाब स्कूल हमले के पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई। पेजेश्किया ने अपने संबोधन में कहा कि एटमी एनर्जी
ईरान का हक है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसराइल पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसराइल अलग शहरों और प्रांतों में लाखों को निशाना बनाता है और हत्याएं करता है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात मार्को रूबियो से हुई। इस दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में हुई बातचीत पर जानकारी दी। सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने दोहराया। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की बैठक में हिस्सा लिया। वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर भारत का पक्ष रखा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर भारत समेत 47 देशों के नागरिकों को युद्ध में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। व्लादिमीर पुतिन परेशान साथ हुए। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की और इसे दुनिया भर में फैलाया। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के दो दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। आज चिंतन बैठक का है दूसरा दिन। सुधारों पर विशेष ध्यान देने के साथ शासन के पहलुओं पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेवा यात्रा में शामिल लोगों से बातचीत की। ये सेवा यात्री 10 ग्रुप में वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। टीएमसी के नाम चुनाव चिन्ह पर आज से सुनवाई। त्योहार से पहले राहत। खाने के तेल पर सरकार ने घटाया आयात शुल्क। आज से लागू होंगी नई दरें। पटना में जन सुराज के नेता अनिल यादव पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। गंभीर हालत में इलाज जारी। अनिल यादव समर्थकों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अस्पताल पहुंचकर अनिल यादव से की मुलाकात। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में जंगल राज है, इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे कि पहले बिहार में जंगल राज था तो अब क्या है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी सम्राट चौधरी पर जमकर बोला हमला। कहा, 7 हत्याओं के आरोपी सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते प्रशासनिक व्यवस्था का भी अपराधीकरण किया है। एसआर को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की रिपोर्ट आने के बाद आयोग की सफाई। शुरुआती मतभेदों के बावजूद सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। अलग अलग टिप्पणी को आयोग ने बताया सामान्य था पिछले एक साल में हुए सहमति के निर्णय। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआर को लेकर दोनों आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार आपत्ति जताई है। आयोग के सूत्रों ने सिस्टम में केंद्रीय हस्तक्षेप से किया इनकार। कहा, पूरे देश के लिए एक ही सिस्टम है। चुनाव आयोग पर मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर सियासत तेज। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी राजद्रोह का मामला है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करने की मांग की। उद्धव गुट बोला, इस्तीफा दें ज्ञानेश। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने की दिल्ली महाराष्ट्र और बंगाल के चुनाव रद्द करने की मांग। उद्धव गुट ने किया समर्थन। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। संबित पात्रा बोले, बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने कांग्रेस राज की दिलाई याद। कहा, कांग्रेस का चुनाव आयोग से रहा है पुराना गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष सत्य नवीन ने राष्ट्र महासचिवों के साथ की बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा। बीजेपी ने 27 के चुनाव से पहले अपनी टीम का किया विस्तार। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान। अनिल बलूनी बने बीजेपी के संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। संजय भाटिया को राजस्थान और बिप्लव कुमार देव को मध्यप्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। गया राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड की कमान। यूपी के लिए बीजेपी का अलग प्लान। 4 नए सह प्रभारी नियुक्त किए गए। घी को लेकर बाबा रामदेव और ब्रिजभूषण के बीच खत्म हुआ विवाद। ब्रिजभूषण से मुलाकात के बाद बोले रामदेव, मेरा कोई सामान नकली नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चार्जशीट पर बवाल। बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। राहुल की सीएम मोहन यादव को चिट्ठी। एमपी में ओबीसी छात्रों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र लातूर में सीएम देवेंद्र फडणवीस से सूखा पीड़ित खेतों का लिया जायजा। किसान ने रोते हुए सुनाई अपनी तकलीफ। बिहार में दारोगा बहाली परीक्षा रद्द। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग का फैसला। बरेली में पंचायत का तालिबानी फरमान। रेप के आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित लड़की से शादी करने का आदेश। वाराणसी में नशे में तालाब पार करने की शर्त जीतने चक्कर में युवक की गई जान, डूबकर मौत। यूपी के सीतापुर में गणेश पूजा पंडाल में बरसात के चलते गिरा छज्जा। एक महिला की मौत, 8 घायल। मुरादाबाद में वनस्पति घी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। सड़क पर बिखरे घी की लूट मची। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में लाखों की चोरी। 2 आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पटना के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के बाद पकड़ी गई विदेशी शराब की खेप। 3 तस्कर गिरफ्तार।
बिहार के बेगूसराय में नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। कोडरमा में तीन नाबालिगों को अश्लील हरकत करते ग्रामीणों ने पकड़ा, खंभे से बांधकर की पिटाई। बांकुड़ा में तीन नक्सलियों ने किया सरेंडर, कम रिहैबिलिटेशन नीति पर भरोसा जताते हुए छोड़े हथियार। गुजरात खेड़ा में बड़ी वारदात नाकाम, एनआरए के मकान में डकैती की कोशिश करने वाले गैंग के चार बदमाश गिरफ्तार। विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुलम का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर की जुड़वा बहनों को मिला अलग अलग आधार नंबर, रेटिना मैच होने की वजह से जारी नहीं हो पा रहा था आधार। दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली में सज रहा है बंगाल का रंग, दिल्ली हाट में 30 सितंबर तक बंगाली हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी बंगाल की परंपरा के साथ आधुनिकता के दर्शन। स्मार्ट क्लास और वीडियो तकनीक रोचक हुआ बच्चों को पढ़ाना, सोनभद्र के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल में बच्चों में बढ़ी सीखने की ललक। एशियन गेम्स के पांचवें दिन भारत की शानदार शुरुआत, रोशी बिना देवी ने देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। 2018 एशियाई खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं रोशी बिना, एशियाई खेलों में लगातार तीन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इससे वह ने भारत के अब तक 14 मेडल, इससे पहले भारत एक गोल्ड मेडल जीत चुका है, 6 सिल्वर मेडल है। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने मेन्स डबल्स स्कल इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के तिरुवनंतपुरम पहुंचे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: टाटा AIG है तो भरोसा है।
5: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलर स्पा एट होम।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
10: यार लोन भूल गया। मैरी
11: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
12: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन। देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
11: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
13: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आयवन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंपल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
7: रूंगटा टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
6: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
3: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
2: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
6: आप पे वो पीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मेरे पास एक आइडिया।
5: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
8: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
9: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
11: तो कौन सी बनानी है?
12: एकदम सॉलिड।
13: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
14: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
6: आई लाइक दिस ओनली।

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए। चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
7: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नमस्कार, आज सुबह में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी जन्मभूमि वडनगर से वाराणसी के लिए और उनकी कर्म भूमि वाराणसी से वडनगर के लिए दो सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकली थी। उसी में शामिल सेवा यात्रियों से प्रधानमंत्री मोदी संवाद कर रहे हैं। दोनों रैलियों का समापन 7 अक्टूबर को होगा। उसी दिन मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होंगे।
1: जब सेवा का भाव होता है तो आयुष्मान योजना जन्म लेती है, और इन दोनों शहरों में से निकलते हुए आप लोगों ने रास्ते भर में देखा होगा कि सेवा के कामों को हमने कैसे आगे बढ़ाया है। साथियों, राजनीति अपनी जगह पे है, चुनाव अपनी जगह पे है,

0: विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना, अलग अलग क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों से मिलना, उनके सपनों से परिचित होना, उनकी आकांक्षाओं को समझना, उनकी बातों को जानना, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लग रहा है कि आप सभी जहां भी जा रहे हैं वहां संवाद और जनभागीदारी के सेतु बना रहे हैं। कई ग्राम सभाओं में चर्चा, कई लाभार्थियों से संवाद, कई वृक्षारोपण कार्यक्रम, कई साफ सफाई से जुड़े कार्यक्रम, कई सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बातचीत, सोशल मीडिया का नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास, सेवा भाव से किया गया ऐसा हर काम लोग याद रखते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं। और मेरी तो जिंदगी ही लोगों के आशीर्वाद से चली है। लोगों के आशीर्वाद ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊर्जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को जो बात कर रहे थे उन लोगों के साथ जो सेवा यात्रा पर निकले हैं, ये तस्वीरें हम आपके लिए 17 सितंबर की उनके जन्मदिन की लेकर आ रहे हैं जब उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था इस यात्रा को। ये बाइक यात्रा है जो कि वडनगर से वाराणसी और वाराणसी से वडनगर तक जा रही है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी ये वडनगर की थी जहां गृहमंत्री अमित शाह ने फ्लैग ऑफ किया था वहां की सेवा यात्रा को। तो तस्वीरें ये तो पुरानी है लेकिन आज जो संवाद हुआ वो भी हमने आपको सुनाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो सेवा ये लोग कर रहे हैं, जो उनके मुताबिक सेवा यात्री हैं, उनकी अहमियत को समझाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जो काम कर रहे हैं उससे उनका नेटवर्क बढ़ रहा है, किस तरीके से ग्राम पंचायतों तक ग्रास रूट लेवल तक जा करके वो एक सेवा भाव से जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए वो अहम हो जाता है। तो ये तस्वीरें तब की जब वडनगर से ये सेवा संकल्प यात्रा शुरू की गई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि है वडनगर और इस यात्रा का जो समापन होगा वो उनकी कर्मभूमि वाराणसी में होगा। वहीं वाराणसी से निकली हुई बाइक यात्रा का समापन वडनगर में होगा। अब आपके समक्ष दो तस्वीरें, एक जहां इन सेवा यात्रियों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद चल रहा है। ये एक वर्चुअल संवाद है जिसके जरिए जो लोग सेवा संकल्प अभियान से जुड़े हैं, जो इस यात्रा में निकले हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें उस वक्त की जब ये यात्राएं निकाली गई, चाहे वो गुजरात के वडनगर से हो या वाराणसी से हो। ये तस्वीरें वाराणसी की अब हम लेके आ रहे हैं जिस दिन ये बाइक यात्रा शुरू हुई थी।

0: दूसरी मेरी कर्म भूमि है। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है और वडनगर हाटकेश्वर महादेव की आशीष की भूमि है। इन दो शहरों के बीच आप सभी सेवा का इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। अभी मुझे आप सबके दर्शन करने का भी अवसर मिला और कुछ साथियों से बात करने का भी मौका मिला, जो वडनगर से निकले हैं और जो वाराणसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अनुभव सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि जैसे मैं भी आपके साथ साथ चल रहा हूं। आपने बढ़िया तरीके से सेवा की उन बातों को बताया। वैसे मैं सोशल मीडिया में आपके द्वारा जो वीडियो फोटो रखे जाते हैं उस पर नजर जरूर करता हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है कि मेरी पार्टी में से मेरे नौजवान साथी, उसमें भी बेटियां भी इतने बड़े महत्वपूर्ण साहसिक काम के साथ जुड़ी हैं। मैं उत्साहित भी हूं और आप सभी का आभारी भी हूं। साथियों, आप में से सब लोग, मैं जब संगठन का काम करता था, मेरे जीवन को भली भांति जानते हैं। मुझे बहुत सारी यात्राओं का संचालन करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का, खुद यात्रा में जाने का एक लंबा मेरा अनुभव रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जब खुद यात्राएं की या यात्राओं को ऑर्गेनाइज किया तो मैंने देखा है कि कितने प्रकार की कठिनाइयों से यात्राओं को निकलना होता है। मौसम की मार होती है, स्थान बदलते रहते हैं, आवश्यकताएं बदलती रहती है, लेकिन आपने सबने इन कामों को आगे बढ़ाया है। साथियों, हम सेवा भाव से जब काम कर रहे हैं, सेवा का जब भाव होता है, तब करोड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मिलता है। जब सेवा का भाव होता है तो आयुष्मान योजना जन्म लेती है। और इन दोनों शहरों में से निकलते हुए आप लोगों ने रास्ते भर में देखा होगा कि सेवा के कामों को हमने कैसे आगे बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंथन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। दिल्ली के सेवा तीर्थ में चल रहे केंद्रीय मंत्री परिषद के दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले करीब 4.5 घंटे तक मंत्रियों के साथ मंथन हुआ। पहले दिन का फोकस रहा विकसित भारत एट 2047 का विजन, यानी आने वाले वर्षों में देश के विकास की दिशा और सरकार की दीर्घकालिक प्राथमिकताएं क्या होंगी। चिंतन शिविर में अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों ने अपने कामकाज, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रेजेंटेशन भी दी। इस दौरान मंत्रियों को 8 अलग अलग समूहों में बांटा गया था। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इन 8 समूहों के पास पहुंचे और मंत्रियों से सीधा संवाद किया। अलग अलग टेबल पर चल रही चर्चा, विचारों और सुझावों को प्रधानमंत्री ने सुना और मंत्रियों के साथ बातचीत भी की। ये पारंपरिक कैबिनेट बैठक से अलग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज के तौर पर आयोजित की गई थी, जिसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के काम को विकसित भारत एट 2047 के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ना था। तो ये जो बैठक है आज, उसका दूसरा दिन जारी रहेगा। चिंतन का दूसरा दिन आज भी जारी रहेगा। कल जो जो हुआ है उसमें हमने आपको बताया किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग मंत्रियों के समूह पर जाकर के उनके साथ बैठक की। ये बैठक पुरानी बैठकों से अलग ऐसे है कि इसमें चिंतन हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज की जा रही है, प्रेजेंटेशन दी जा रही है अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से उनकी उपलब्धियों के बारे में और आने वाली योजनाओं के बारे में। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। बिहार में एक बार फिर जमुई कांड दोहराया गया है। सिर्फ चार दिन बाद जमुई से 131 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में फिर एक बेटी को हैवानियत का शिकार होना पड़ा है। वारदात कल की है। समस्तीपुर के जगत सिंहपुर गांव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ हैवान एक नाबालिग बेटी के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं। बिगड़ैल लड़कों ने घेर कर उसके दोस्त के साथ पहले मारपीट की, उसके बाद उसका दोस्त वहां से जब चला गया, लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो में। लड़की इस हरकत का विरोध करती हुई दिखाई देती है। वीडियो सामने आने के बाद समस्तीपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और चार आरोपियों को धर दबोचा। सवाल यह है कि आखिर बिहार में यह हो क्या रहा है? क्या कानून का किसी को कोई डर नहीं है? क्या पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह गया? आखिर कैसा समाज तैयार हो रहा है वहां पर जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है?
2: कहाँ खड़ो तो भाइयों के इलाज तो बोल ना बल कहाँ खड़ो जल्दी बोल
3: जमुई कांड के बाद समस्तीपुर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। जिस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़की के साथ कुछ मनचले युवक जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था जिसका नेतृत्व सदर डीएसपी दुर्गेश दीपक कर रहे थे और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस तरह के हरकत क्यों किया गया है और एसपी का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।
1: तो ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, खून खौला देने वाली तस्वीरें जहां बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं बिहार के सड़कों पर। किस तरीके से अगर कोई दो दोस्त बाहर निकलते हैं तो सवाल खड़े करने के लिए वहां पर कुछ लौंडे आ जाते हैं, जो गुंडे हैं वहां के लोकल, किस तरीके से इस लड़की के बाल खींच रहे हैं। एक आदमी बीच में आकर अभद्र हरकत भी करता है। लड़की डरती नहीं है, लड़की जवाब देती है, चिल्लाती है, धक्के मारती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन लड़कों की जो हिम्मत है वो इतनी ज्यादा है कि वो खुलेआम इसका वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो बनाकर उसे वायरल भी किया जाता है। आखिर पुलिस ऐसे लड़कों के साथ किस तरह का व्यवहार बाद में करती है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं है किसी के अंदर? खुलेआम एक लड़की के साथ अभद्रता, क्या सड़कों पर चलने का हक नहीं है युवाओं को? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते? रास्ते रोक करके उनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, अश्लील व्यवहार किया जाता है, गंदी भद्दी गालियां दी जाती है। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू विधायक समस्तीपुर अश्वमेध देवी जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप हमसे बात कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप भी महिला हैं, एक बेटी के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसे किस तरीके से पुलिस काबू में नहीं कर पा रही है? और ये एक बेटी की बात नहीं है, ये बार बार लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग बेटियों के साथ हो रहा है।
4: हेलो
1: जी, आगे भी बोलिए मैम।
4: देखिए जब जब अभी वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल के बाद तुरंत कार्रवाई हो गई है, तुरंत अरेस्टिंग भी हो गई है, एफआईआर भी हो गई है।
1: तो मैम क्या हम इसी बात का इंतजार करते रहेंगे कि इस तरह की हरकतें होती रहें, अलग अलग जगहों पे वीडियो वायरल होते रहे, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करे? क्या कोई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लड़कियां सुरक्षित महसूस करें?
4: पुलिस की तो जिम्मेदारी है, तो अब ना कितनी जल्दी हो गई। अगर मान ले उस समय अगर कोई भी कंप्लेन करते, उनके परिवार के लोग हो चाहे हमारी लड़कियां हो, जब तक नहीं आवाज उठाएगी तब तक कैसे होगा? हम लोग तो लड़कियां को कहते हैं अगर गलत हो तो आवाज उठाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जब तक आवाज नहीं उठाएगी तब तक कैसे जानकारी मिलेगी पुलिस को हो चाहे हम लोग का हो?
1: और ये बताएं कि जिस तरह की हरकतें वहां लड़के कर रहे हैं उनके अंदर हिम्मत कैसे आ रही है इस तरह की ये सब करने की?
4: इसीलिए ना हम प्रशासन से कहते हैं इतना कुटिए उसको सजा दीजिए कि जे आगे न उठाए कदम इस तरह।
1: क्या आपके इलाके में, आपके इलाके का ये वीडियो है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके इलाके में लड़कियां,
4: मैं भी कह रहा हूँ,
1: आपके इलाके में आप मानती हैं लड़कियां सुरक्षित हैं, या हम हर लड़की को आवाज ही उठानी पड़ेगी, उसको झगड़ना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी?
4: नहीं, हमारे यहाँ तो सुरक्षित थी महिला से, लेकिन कहाँ से ये आ गया ये सब, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी, हम है भी नहीं समस्तीपुर में, घटना निर्दयीय है, इतना अच्छी नहीं है, लेकिन गलत किया है उसको सजा मिलना चाहिए।
1: ठीक है, आप चलिए, मैं ये बात मानती हूँ कि आप कहती हैं कि ये सजा आगे दी जाएगी, लेकिन आगे ये हरकत ना हो इसके लिए एक विधायिका के तौर पे, एक महिला के तौर पे आप क्या करेंगी?
4: इस पर हम लोग जाकर के जाते हैं, समस्तीपुर पहुंचते हैं तो बैठ करके हम लोग गार्जियन के साथ हो और हमारे प्रशासन के साथ मिल करके इसको कम बना करके इसको जिस तरह की घटना आगे ना हो कार्रवाई करते हैं।
1: आप क्योंकि आप विधायक हैं, आपकी पहुंच, आपकी आवाज असेंबली तक जाती है, क्या इस मुद्दे को आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्या उनसे बातचीत करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री तो दावे करते आए हैं कि बिल्कुल सुरक्षित हैं महिलाएं आपके राज्य में।
4: सुरक्षित तो है ही, सुरक्षित नहीं के सवाल ही नहीं है, लेकिन सुरक्षित है, लेकिन अगर हुई है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगी।
1: चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन ये कदम भी उठाए कि इस तरह की हरकतें ना हो। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आइए सुन लेते हैं कि आरजेडी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है।
5: जमुई मामले को लेकर के पूरा बिहार शर्मसार हुआ, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं थूथू की स्थिति बनी, अब उसी तरह की घटना समस्तीपुर में सामने आए हैं। वजह यह है कि सरकार और सरकार का एक बार समाप्त हो गया, सरकार की जो अपराध अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखती है, और जब भी इस तरह के वारदात होते हैं तो सरकार मामले को दबाने के लिए इसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास करती है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य भर में कहीं ना कहीं मन बढ़ू मन चलू और अत्याचार व्यभिचार करने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं।
6: बच्चियों के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे या तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर लंगड़े हो जाओगे। सबक सीख लो कि बिहार में कानून का राज है, अगर चैलेंज करोगे तो जवाब भी तुरंत मिलेगा। समस्तीपुर की घटना में प्रशासन ने तुरंत 4 लोगों को अरेस्ट किया है, और जमुई की घटना तो आपको मालूम है कि सरकार ने किस तरीके से काम किया है। बिहार में कानून का राज है और पिछले 2 दशक से बिहार में अपराधियों को हमने पनपने नहीं दिया है। बिहार में अपराधी रह नहीं सकते हैं, उनको बिहार छोड़ना ही होगा।
1: और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़ गए हैं। शशि, सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के वीडियो जब वायरल हो जाते हैं तो विक्टिम है उस पर दोहरी मार होती है, पहले इस तरह की हरकत, उसके बाद कई ऐसे अनऑफिशियल चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो वायरल कर दिया जाता है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसको लेकर के आप पुलिस जो राज्य की है वो क्या कदम उठा रही है?
7: अंजलि, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत आसान नहीं होता है विक्टिम के लिए, पीड़िता के लिए ऐसे मामलों से निकल पाना। और सबसे बड़ी चुनौती जो सोशल मीडिया के दौर में है वो एक नाबालिग बच्ची जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करती है उसकी पहचान का उजागर होना, जिसकी इजाजत कानून भी नहीं देता है। जमुई के मामले में हमने देखा लगभग 2 दर्जन सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस ने टेकडाउन कराने का नोटिस दिया, बाजाब्ता 100 से ज़्यादा वहाँ पर जो सोशल मीडिया और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके वीडियो डाउन भी कराए गए, उन पर मामला भी दर्ज हुआ। इसी तरह का मामला लगभग समस्तीपुर में भी सामने आ रहा है। पुलिस ने ठीक है तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सड़क पर पहले शाम के वक्त जो जमुई में घटना आई एक अपने दोस्त के साथ जो नाबालिग छात्रा जा रही थी उसके साथ, और अब देखिए खुलेआम दिन दहाड़े जो घटना सामने आई है समस्तीपुर में, वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और जो पुलिसिंग है उसको लेकर के कई सवाल खड़े करता है। और अब तो सरकार के अंदर से भी सवाल के साथ साथ जवाब भी आने लगे हैं कि ऐसे अपराधियों पर या ऐसे दानवों पर पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए या इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष अपने तौर पे जो है वो सरकार को घेर रहा है, लेकिन खुद सरकार के लिए भी आत्ममंथन का दौर है कि आखिर एक तरह से जो घटनाओं की बाढ़ आ गई है बिहार में, हमने बैक टू बैक देखा जमुई के बाद जो समस्तीपुर का मामला सामने आया है, उस मामले को लेकर के अब सरकार क्या कोई अपनी पॉलिसी में चेंजेज लाती है, पुलिसिंग को कैसे दुरुस्त करती है। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था अंजलि, अभया ब्रिगेड बनाने का। अभया ब्रिगेड को डिप्लॉय भी किया गया है, महिलाओं का एक ऐसा पुलिस बल जो शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों के बाहर महिलाओं और महिला छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अब इसको लेकर के चर्चा हो रही है।
1: जी बिल्कुल, और इस वक्त हम एक बातचीत जो हमारे सहयोगी ने की है एलजेपी की सांसद शांभवी चौधरी से, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रही हैं।
8: हाँ शांभवी जी, रोहित बात कर रहा हूँ मैं आज।
9: जी
8: शांभवी जी, ये आपने समस्तीपुर वाली घटना देखी होगी जहाँ एक बार फिर मतलब जमुई में जैसा हुआ था वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र भी है, तो आपने देखा इस वीडियो को, कोई जानकारी आपको हुई इसके बारे में?
9: नहीं बिल्कुल, उस वीडियो की जानकारी हम लोग को कल रात में मिली थी और उसके बाद से लगातार हम लोग पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं। समस्तीपुर पुलिस ने भी रात भर इस पर कार्रवाई करके 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस के बयान के आधार पर सब गिरफ्तारी भी हो रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखें। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सर्कुलेट हो रहा है तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जो बाकी आरोपी है उसको भी कुछ देर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
8: लेकिन एक सवाल मतलब कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि भाई जमुई में अभी 2-3 दिन पहले ऐसी घटना घटी, फिर बैक टू बैक समस्तीपुर में भी इस तरीके की घटना घटी, तो आखिर मतलब कहां से हिम्मत आती है ऐसे लोगों को कि मतलब लड़कियों को इस तरीके से मतलब परेशान करें सड़क पर अगर चल रही है तो?
9: नहीं बिल्कुल, बिहार की बेटी होने के नाते ऐसे वीडियोस की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को किसी भी आधार पर, आप सरकार में हो या आप सरकार में ना हो, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। महिला की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और मेरे को बस ये लगता है कि सरकार के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ एक समाज की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि महिला सुरक्षा को हम लोग मजबूत करें और अपनी बेटियों के सम्मान में कोई भी कमी ना हो ये सुनिश्चित करें। तो जरूर एक महत्वपूर्ण चर्चा, एक सार्थक चर्चा इस पे होनी जरूरी है और कैसे कैसे हम लोग कार्रवाई के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करके महिलाओं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
1: और फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: 13 प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, 13 प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने, बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
13: कैची है वायरल है,
12: थैंक यू।
14: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
15: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
12: क्या?
15: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
16: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
15: आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है
16: पर स्टेज नहीं हिलता।
15: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
14: ओ नादान परिंदे, बैठ
15: बैठ बैठ।
14: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

वडनगर और वाराणसी ये दो पुरातन ऐतिहासिक शहर है और इन दोनों की एक और विशेष बात है, ये दोनों शहर हजारों साल से जीवंत है और मेरे लिए तो एक मेरी जन्मभूमि है

0: बात एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: स्वस्थ्य रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स।
8: बेस्ट पुट्टी?
9: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट?
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
13: JK Maxx Paints.
12: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: 봐봐.
1: 어?
2: सॉरी अरे गलती हो गई है
3: ये चोट खर्चा वर्चा
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: हाँ ला भाई मेरा बैट
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू
6: चार्ज हुआ यार
7: बैट किसका है
8: टाटा AIG है तो भरोसा है
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
10: Maddie, I need to open a savings account.
11: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
10: Small bank.
11: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege RD. Everything. There's nothing small about them.
10: Okay.
11: उज्जीवन, nothing small about us.
12: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस
14: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना वहाँ खाया शहद पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा अरे कश्मीर क्यों जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया
15: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद लायन कश्मीर हनी
14: असली शहद असली स्वाद
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा
17: अनमोल बिस्किट्स स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स
18: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब
19: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला
20: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित
21: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है
22: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित
23: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है
19: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार
24: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए
25: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा इतना जरूर
19: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
26: ड्राइवर के बीड़ी पीने से यमुना एक्सप्रेसवे पर जल गई स्लीपर बस पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा काम नहीं कर रहा था आग बुझाने वाला सिलेंडर हादसे में 9 लोगों की मौत सीएम योगी ने की परिजनों से बात बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई जैसी जाहिलों की शर्मनाक हरकत नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार की 4 आरोपियों की गिरफ्तारी चुनाव आयोग में पसरी असहमति पर सियासी बवंडर के बीच द इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा खुलासा गोवा में 97 योग्य वोटरों का नाम जोड़ने के लिए 7 दिन में किए 8 ईमेल लेकिन नहीं मिला कोई जवाब नाम और निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बैनर्जी की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई फूल पत्ती की जगह फुटबॉल खिलाड़ी का मिला है निशान सेवा संकल्प के तहत वडनगर से वाराणसी जा रहे युवाओं से पीएम मोदी का संवाद सेवा तीर्थ में भी दूसरे दिन चिंतन शिविर में रहेंगे पीएम 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

0: यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसी घटना घटी है जिसमें 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ती स्लीपर बस में जब अचानक आग लग गई जिसकी इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि बस में 30 से 35 यात्री उस वक्त सवार थे। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। ज्यादातर यात्री कूदकर बस से भाग निकले लेकिन 9 लोग बस में ही फंसे रह गए। ये बस दिल्ली से महोबा जा रही थी। आपको बता दें कि जिस बस में आग लगी उसका मालिक मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है। नोएडा पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में बस में सवार एक यात्री की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। और इस हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारी इस वक्त बस के अंदर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। अधिकारी बस में कमियों और खामियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच के दौरान बस की तकनीकी हालत को भी देखा जा रहा है और हादसे की वजहों और बस में मौजूद संभावित खामियों की जांच करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे सहयोगी अंशुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए उसी बस के अंदर से जिसमें आग लगी है। अंशुल, जरा दिखाएं इस बस का क्या हाल हो गया है, किस तरीके से ये बस मौत का मंजर बन गई कुछ लोगों के लिए और क्या खामियां थी, क्योंकि आप कवर करते आए हैं इस तरह की स्लीपर बस में जो कमियां होती हैं, जरा बताएं।
1: जी, इस बस में बस खामियां ही खामियां थी, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसका पालन किया हो। सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल से बोलूंगा कि एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल बस के पीछे एक ये फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है। आरोप यह है कि जब बस में आग लगी तो ये सिलेंडर काम ही नहीं किया और लोगों ने इस सिलेंडर से शीशे तोड़ने की कोशिश की और यहां से निकलने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखें तो ये पीछे की सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर वो लोग हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाए। इसकी वजह यह थी कि यहां पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। आप दूसरी इस तरफ देखें तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है स्लीपर का, इसको इतनी आगे तक बढ़ा दिया गया है कि अभी इस वक्त जब मैं और इमैनुअल यहाँ बस के अंदर हैं, हम खुद इस बस में चलने में हमें दिक्कत हो रही है, हमारे कंधे यहाँ आजू बाजू टच हो जा रहे हैं। तो आप सोचिए जो लोग उस समय जो दृश्य होगा, जो लोग पैनिक में होंगे, निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, वो कैसे निकल पाए होंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है इमरजेंसी एग्जिट तो है लेकिन इमरजेंसी एग्जिट को किस तरीके से सील कर दिया गया है। यहाँ पे नीचे सीट्स थी, ऊपर ये स्लीपर पॉड बनाया हुआ था, करीब ये 2.5 से 3 फीट का ये पॉड होगा। तो ऐसे कोई रास्ता ही नहीं है जहां से लोग यहां से निकल के इससे निकल पाते, या इस पतली ये जो पाथवे है इससे निकल करके यहां से बाहर आ पाते। ये जो ग्लास आप देख रहे हैं पीछे, ये ग्लास भी पूरी तरीके से शीशे का होना चाहिए था ताकि ये भी एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह काम करता, लेकिन इसे भी जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बंद करने की बस एक ये वजह है कि एक या दो सीट एक्स्ट्रा हो जाए तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए जाए। इसके बाद इमैनुअल जरा आगे आए तो इमैनुअल आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से लोगों का जो सामान है वो सामान यहीं छोड़कर लोग अफरा तफरी में जो है यहां से भागे हैं, यहां से निकलने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन जो 9 लोग पीछे की सीटों पर बैठे थे उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। आप देखिए ये पूरा जो फ्लोर है बस का, ये पूरा फ्लोर जल चुका है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी जो गलती है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए यहाँ पे चलने की बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा फ्लोर नीचे से गायब है। ये जो एंट्री है बस की, ये भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। पैसेंजर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में किसी भी तरह का पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए यहाँ पे पूरा शौचालय बनाया हुआ है और इसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यानी एक बार में एक से ज्यादा आदमी किसी भी तरीके से इस बस से बाहर निकल ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से रात को इतनी अफरा तफरी मची होगी। लोग पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर से जो है शीशा तोड़ के बाहर निकले हैं। गनीमत ये रही कि लोग अपनी जान बचा पाए, लेकिन 9 लोग जो पीछे की सीटों पर मौजूद थे उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया अपनी जान बचाने का।
0: अंशुल, एक सवाल और भी है, जब इसी तरह की स्लीपर बस में एक रेप का हादसा हुआ था, एक रेप का अपराध किया गया था, उसके बाद तो कई राज्यों की पुलिस, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, नोएडा की पुलिस हो, यह दावा कर रही थी कि उन्होंने स्लीपर बस में अंदर क्या सुरक्षा के इंतजाम है इसकी समीक्षा की है। तो इस तरह की बसें फिर बच कैसे रही हैं सड़कों पर?
2: ज्यादा उठिए या सही है?
1: जी बिल्कुल, ये हर बार, अभी पिछले साल ही ऐसा ही एक हादसा राजस्थान में भी हुआ था, जहां पे बस में आग लगी थी, लोग फंस के मर गए थे। उसके बाद प्रशासन ने बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारे वादे किए थे कि किस तरीके से वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बस जो है ऐसे गैर कानूनी तरीके से नहीं चल पाए। लेकिन दिल्ली से आने जाने वाली हजारों स्लीपर बसें ऐसे ही सारे नियम कानूनों को ताक पर रख के चलाई जाती हैं, जिसके बाद हादसे होते हैं और बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पैसेंजर सेफ्टी के जो लॉज हैं उनका पालन किया जाए। इसी बस की अगर मैं बात करूं तो पिछले अगस्त से लेकर के इस साल तक करीब 64,000 रुपए के चलान अनपेड हैं इस अकेले बस पर। उसके बाद भी प्रशासन ने इस बस को आराम से सड़कों पर चलने दिया और उसके बाद इस बस में हादसा हुआ। इसके अलावा और भी कुछ चीजें दिखाऊं तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके के जो मटेरियल है ये यूज किया गया था सीट बनाने के लिए। जो पैसेंजर सेफ्टी नियम है वो ये कहते हैं कि जो मटेरियल यूज हो वो इनफ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी जलने वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से जो मटेरियल यूज हुआ है वो ऐसा मटेरियल यूज किया गया जिसमें जल्दी आग लग पाए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है तो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों ने उस मटेरियल का इस्तेमाल किया। लेकिन ये किनका काम था ये देखना? ये प्रशासन का काम था ये सुनिश्चित करना कि ऐसा मटेरियल ना यूज हो, उस पर चलान हो, फाइन हो, बस सीज हो। लेकिन प्रशासन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। कुछ पैसों के लिए जो लोकल ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं या जो अधिकारी हैं जिनका ये काम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जिनका ये काम है कि जाके औचक निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी इलीगैलिटी जो है वो ना हो इसमें, उन्होंने अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब 9 लोगों की जान चली गई है। अब जैसा हमें पता है कि बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है, ज्यादा से ज्यादा मालिक को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन
0: सवाल बिल्कुल यही उठता है कि अलग अलग राज्यों के बीच में दौड़ रही इस तरह की बस किस तरह से लोगों की जान ले रही है। इस हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर बड़ी लापरवाही के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। दोनों हादसे के बाद से फरार हो गए थे। अब खबरों के मुताबिक नोएडा पुलिस ने उन्हें हिरासत में आखिरकार ले ही लिया है। आरोपी ड्राइवर का नाम पवन और कंडक्टर का नाम योगेश है। आपको बता दें कि आरोप कुछ ऐसे भी लगे इन पर कि ये बीड़ी सिगरेट पी रहे थे उस वक्त। आरोप ये भी लगे कि इनको बोला गया था कि एक बू आ रही है, जलने की बू आ रही है बार बार पैसेंजर्स ने जाके बोला यात्रियों ने, लेकिन इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। आरोप ये भी लगे कि जब ये बोला गया तो वो हंस पड़े, उन्होंने बात नहीं सुनी और लोगों की कही को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब आग फैल गई उसके बाद लोगों के पास भागने का कोई रास्ता, कोई जरिया ही नहीं रह गया। अब इस बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया गया है। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि ये बीड़ी सिगरेट पीते रहे। हम आपको दिखा रहे हैं एफआईआर की कॉपी, जहां चालक के ऊपर उस वक्त क्या आरोप लगाए गए। कैबिन में बीड़ी सिगरेट पीते रहे, कुछ ही समय बाद उनसे शिकायत की गई, लेकिन आगे देख सकते हैं, कहते हैं कि उनके द्वारा जानबूझकर घोर लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। तो सवाल यही उठ रहा है कि यात्रियों ने जब बोला कि आग लगी है, शायद स्मेल आ रही है, बू आ रही है, रुक जाइए, तो क्यों नहीं उन्होंने बात सुनी। दूसरा सवाल यह भी है कि चलती गाड़ी के अंदर क्या वो बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आग शुरू हुई हो, या इस आग की कोई और वजह है, ये सब बाद में जांच में पता चलेगा। लेकिन यह लापरवाही है कि आपसे यात्री शिकायत कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी जो बस है उसमें पुख्ता इंतजाम नहीं है, ना तो आपके अग्निशमन के यंत्र काम कर रहे हैं, ना ही आपकी इमरजेंसी एग्जिट सही तौर पर है, ऐसे में आप लापरवाही भी कर रहे हैं। आपसे आके बताया भी जा रहा है कि जलने की बू आ रही है, आप गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यहां बड़ी लापरवाही चालक की भी है और कंडक्टर की भी है। और अब आपको सुनाते हैं एक महिला यात्री का बयान जो हादसे में घायल हो गई। उनका इलाज नोएडा के सेक्टर 94 के अस्पताल में चल रहा है। वो बता रही हैं कि कैसे ड्राइवर और कंडक्टर लापरवाही कर रहे थे।
3: आग में भाग रहे थे, आग चल रही थी, भाग रहे थे,
4: बस चल रही थी,
3: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
4: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मूर्ति पड़ी रहे, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुकी थी।
4: बस में ये
3: बताइए,
4: पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
4: ड्राइवर के पास से आग लगी है,
5: वो बस छोड़ के भाग गया।
3: आगे से आग लगी है।
4: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था ऐसा?
3: भाई पता नहीं, बस सो रही,
4: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
0: और अब आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता का बयान, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। वो बस में ही सवार थे, उनसे बात की है आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने।
6: एफआईआर आप ही ने लिखवाई है ना?
7: जी।
6: क्या हुआ था, क्या नाम था आपका, क्या हुआ था?
7: गाड़ी में कल हम बैठे दिल्ली से, वहाँ बाजार में 9 बजे करीब हम बैठे गाड़ी में, और करीब 11:30 के समथिंग उसमें आवाजें आई चिल्लाने की। वो लोग कह रहे थे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, बस थोड़ी देर में उसने गाड़ी साइड से लगाई और बस कहने लगा उतरो सब लोग, उतरो सब लोग, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आगे दौड़ी में उसमें आग लग गई। बस उसमें जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इतने लोग निकल पाए तो आग ने बिकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
6: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
7: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
6: अच्छा।
7: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया वरना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
6: अच्छा, तो ये क्या बस डबल डेकर है, मतलब डबल
7: डबल डेकर? हाँ, स्लीपर है, डबल स्लीपर, मतलब नीचे ऊपर है, उसमें बैठने का नहीं है सिस्टम, खाली लेटने का है।
6: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
7: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या दिखा बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
6: अच्छा, ये बस कौन से ट्रबल की है?
7: राजकल्पना।
6: और आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कश्मीरी गेट से?
7: मैं दिल्ली कश्मीरी गेट से रात के लिए जा रहा था, महोबा।
0: तो इस हादसे को लेकर एडीएम अजीत सिंह ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो सकती है।
8: विशेष वाहन से और एक महिला है जिसका अभी उपचार चल रहा है आरोग्य अस्पताल में। तो इसमें समय से सभी कार्रवाइयां हुई, पुलिस प्रशासन मौके पे था और बाकी जो जिनकी मृत्यु हुई उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम और उनके परिजनों से संपर्क करके जो आगे कार्रवाई की जाएगी।
9: सर, बस के बारे में जानकारी करी, बस का जो चीजें थी वो ठीक थी, कैसी बस थी है?
8: ये एसी स्लीपर बस थी, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है।
9: सर, बस ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ है इसको?
8: अब ये पुलिस अपनी बस कस्टडी में रखा हुआ है और बाकी पुलिस इसमें नियमानुसार विधि कार्रवाई कर रही है। लगभग 15 लोग थे उनको जो है रेस्क्यू करके मोवा भेज दिया गया था और बाकी कुछ लोग जो थे जो सवार थे अपने निजी वाहनों से चले गए और एक महिला है जो जिला आरोग्य अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है। टोटल लगभग 35 लोग थे। अब पुलिस इसमें विधि कार्रवाई कर रही है, जो भी पुलिस है बस को कस्टडी में लेकर विधि कार्रवाई कर रही है।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Thank you.
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
21: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
5: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
6: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
7: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
8: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
5: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
10: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर।
5: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
4: क्या चीज है?
3: वायरल है?
5: थैंक यू।
6: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है,
8: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: ओ नादान परिंदे, बैठ
7: बैठ बैठ।
6: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
9: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
10: तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना हैं मोदी जी के और अमित शाह के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।
1: 14 बार इन लोगों ने, जिनको सीसी ऑर्नामेंटल मानते हैं, डमी मानते हैं, एक मूर्ति मानते हैं, उन्होंने 14 बार 10 महीनों में लिखित विरोध और असहमति की है। संधु साहब ने, मैं भी सिर्फ तिथियां दे रहा हूं, जिस विषय में वो बोले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है, उसमें मैं भी आऊंगा, लेकिन तिथियां नोट करें। अगस्त 13 को संधु साहब ने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 में गड़बड़ी और बदला बदली हो रही है वो कोट अनकोट अनऑथराइज्ड और इलीगल है। जोशी साहब ने और संधु साहब ने, दोनों ने फॉर्म 6 का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा।

0: पूरी लस्सी पीने के बाद पुरवा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
1: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
2: तुम तो साला डील माना नहीं।
3: एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
1: हाँ भाई।
2: किसी को भी काट सकता है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: यमुना एक्सप्रेसवे पर जल गई स्लीपर बस, पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा, काम नहीं कर रहे थे आग बुझाने वाले सिलेंडर, हादसे में 9 की मौत, सीएम योगी ने की परिजनों से बात।
1: बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई जैसे जाहिलों की शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, गाली गलौच और अश्लीलता की सारी हदें पार, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी।
0: चुनाव आयोग में पसरी असहमति पर सियासी बवंडर के बीच द इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा खुलासा, गोवा में 97 योग्य वोटर्स का नाम जोड़ने के लिए 7 दिन में किए गए 8 ईमेल, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब।
1: नाम और निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बैनर्जी की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फूल पत्ती की जगह फुटबॉल खिलाड़ी का मिला है उनको निशान।
0: सेवा संकल्प के तहत वडनगर से वाराणसी जा रहे युवाओं से पीएम मोदी का संवाद, सेवा तीर्थ में दूसरे दिन चिंतन शिविर में रहेंगे पीएम, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11, आपके साथ हूं मैं रेहा बात।
1: नमस्कार, मैं हूं अंशली इस्तवाल, शुरुआत करते हैं शतक आज तक के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत की, पुरानी कहावत का जिक्र किया, बोले सेवा हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा हमारा व्यवहार लोगों को ये दिखाना चाहिए कि चाहे हमें कितनी भी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों न मिले, हमारा रास्ता सेवा का ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी से सेवा यात्रियों ने उनके अनुभव किए साझा, इस यात्रा में लगभग 10,500 युवा और विभिन्न टीमें शामिल। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता की, केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। आज चिंतन बैठक का दूसरा दिन, सुधारों पर विशेष ध्यान देने के साथ शासन के पहलुओं पर होगी चर्चा। बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसी एक और घटना, नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करते दिखे कुछ युवक, कैमरे में कैद। लड़की बाइक से अपने दोस्त के साथ जगत सिंहपुर गांव के बांध पर गई थी, तभी मनचलों ने लड़की के दोस्त

0: कर आ रही है सामने। समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले में डीएसपी ने चार आरोपियों के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल में छात्राओं से बैक टच का आरोप, शिक्षक पर हुई है एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी।
1: पटना में जनसुराज के नेता अनिल यादव पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई, गंभीर हालत में इलाज जारी। अनिल यादव समर्थकों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, इस दौरान बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अस्पताल पहुंचकर अनिल यादव से की मुलाकात, जमकर सम्राट सरकार पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में जंगल राज है, इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे, पहले बिहार में जंगल राज था तो अब क्या है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी सम्राट चौधरी पर जमकर बोला हमला, कहा सात हत्याओं के आरोपी सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते प्रशासनिक व्यवस्था का भी अपराधीकरण कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर डीलक्स बस में आग, हादसे में 9 की मौत, बस में आग लगने के बाद सवारियों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर भाग गए थे, अब बस का मालिक ड्राइवर और कंडक्टर नोएडा पुलिस की हिरासत में। करीबन 40-50 लोग बस में सवार थे, एडीएम ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही। बस हादसे में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों से 2-2 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए को आर्थिक मदद का दिया ऐलान। ग्रेटर नोएडा बस हादसे पर राजनाथ सिंह ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना।
0: यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर कहा, अब रथ यात्रा काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग जब याद करते हैं 5 वर्षों की सरकार के कालखंड को, तो आज भी लोगों के चेहरे पर तनाव होता है, अब कोई षड्यंत्र काम नहीं आएगा। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का उद्देश्य गुंडागर्दी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अयोध्या में महंत राजकुमार दास की मध्यस्थता से रामदेव ब्रिजभूषण की मुलाकात, पतंजलि उत्पादों पर विवाद सुलझाने की पहल। रामदेव से बातचीत के बाद बोले, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मन में कुछ भ्रांतियां थी जो बातचीत के बाद दूर हो गई हैं। यूपी में एआईएमआईएम का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा चुनाव के वक्त याद आता है मुसलमान, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि 5 मिनट के लिए टोपी लगा करके 5 साल के लिए टोपी पहनाना अब नहीं चलने वाला है। यूपी चुनाव पर एआईएमआईएम ने कहा, ये चुनाव के अगले दिन ही हमको हटा देंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य तो मुसलमानों के वोट बैंक पर सियासी डकैती डालना है, हिस्सेदारी देना नहीं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के घर ईडी की रेड, जीएमएडीए के दफ्तर में ईडी के 100 कर्मचारियों और सीएपीएफ के सदस्यों ने तलाशी ली। केरल में पिनरई विजयन, बेटी वीणा और दामाद रियास पर ईडी रिपोर्ट की जांच के लिए एसआईटी का गठन।
1: न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात मार्को रूबियो से हुई, दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री अजय शंकर ने बैठक में हुई बातचीत पर जानकारी दी, सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने दोहराया। जयशंकर न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की बैठक में हिस्सा लिया, वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर भारत का पक्ष रखा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर भारत समेत 47 देशों के नागरिकों को युद्ध में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, पुतिन को बताया पेशेंट जीरो। व्लादिमीर पुतिन परेशान साथ, जेलेंस्की ने कहा पुतिन ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की और मैं इसे दुनिया भर में फैलाया। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करने की मांग की, उद्धव गुट बोला इस्तीफा दे ज्ञानेश। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल, सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में चुनाव रद्द

0: करने की मांग। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार, संबित पात्रा बोले बिना ज्ञानेश कुमार के जीते 3 लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने कांग्रेस राज की दिलाई याद, कहा कांग्रेस का चुनाव आयोग से रहा है पुराना गठबंधन।
1: झांसी में अघोरी बाबा के भेष में सराफा दुकान पहुंचा शख्स, बातों में उलझाकर की चोरी, सीसीटीवी में घटना कैद। मेरठ में करेंसी बॉक्स में मिले लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोट, 186 शाखाओं से जुड़ा है नेटवर्क। यूपी के सुल्तानपुर में छात्रा को कार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे के बाद चालक फरार। गाजियाबाद में खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद मोहनगर होटल की जांच, पैंट्री बंद कर नोटिस जारी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस की स्नैचर से मुठभेड़, चोरी की बाइक, देसी तमंचा बरामद। दिल्ली के शक्तिनगर में कार पलटी, रिक्शा को बचाने के दौरान हुआ यह हादसा। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों से भरी बस में लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा कर्मचारी बाल बाल बचे। उज्जैन में चल रहे समारोह में भीड़ की के बीच पटाखों से किया खतरनाक करतब, गाड़ी के ऊपर जलाए पटाखे, टली एक बड़ी घटना। नौगछिया में कोसी गंगा के कहर से किसानों की सैकड़ों एकड़ में फसल बर्बाद, बाढ़ के पानी में बही किसानों की मेहनत। आंध्र प्रदेश के अलूरी में भारी बारिश से नदी में उफान, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण।
0: हैदराबाद में गणेश विसर्जन ड्यूटी के दौरान एसआई को बाइक ने मारी टक्कर, लाश दौरान मौत। हैदराबाद में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना मेडिकल डिग्री लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। हैदराबाद के करमन घाट मंदिर के पास प्राइवेट बस में लगी आग, 38 यात्री सुरक्षित। सुल्तानपुर में एक तरफा प्यार में शादीशुदा शख्स को मारी गोली, लड़की के भाइयों पर गोली मारने का आरोप। भोपाल में वकील पुलिस विभाग पर बवाल, थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हिट एंड रन मामले में थार चालक गिरफ्तार, हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की हुई थी मौत, पत्नी की गंभीर हालत में इलाज जारी। बरेली में पंचायत के तालिबानी फरमान, रेप के आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित लड़की से शादी करने का आदेश। वाराणसी में नशे में तालाब पार करने की शर्त जीतने के चक्कर में युवक की गई जान, डूबकर हुई मौत। सीतापुर में गणेश पूजा पंडाल पर बरसात के चलते गिरा छज्जा, 1 महिला की मौत, 8 घायल। मुरादाबाद में वनस्पति घी से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, सड़क पर बिखरे घी की मची लूट, वीडियो हुआ वायरल।
1: पटना के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के बाद पकड़ी गई विदेशी शराब की खेप, 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। कोडरमा में 3 नाबालिगों को अश्लील हरकत करते ग्रामीणों ने पकड़ा, खंबे से बांधकर की पिटाई, पुलिस जांच में जुटी। बांकुरा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कम रिहैबिलिटेशन नीति पर भरोसा जताते हुए छोड़ा हथियार। गुजरात के खेड़ा में बड़ी वारदात नाकाम, एनआरआई के मकान में डकैती की कोशिश करने वाले गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुलम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन, बाबा रामदेव रहे मौजूद। यूपी के रामपुर की जुड़वा बहनों को मिला अलग अलग आधार नंबर, रेटिना मैच होने की वजह से जारी नहीं हो पा रहा था आधार, डीएम से गुहार के बाद यूआईएडीआई ने जारी किया अलग आधार। दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली में सजा है बंगाल का रंग, दिल्ली हाट में 30 सितंबर तक बंगाली हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में बंगाल की परंपरा के साथ आधुनिकता के दर्शन, बंगाल की पहचान मानी जाने वाली साड़ियों से लेकर मां दुर्गा की मूर्ति की मिट्टी से बनी जलूरी भी मौजूद। स्मार्ट क्लास और वीडियो तकनीक रोचक हुआ बच्चों को पढ़ाना, सोनभद्र के पीएम श्री कंपोजिट स्कूल में बच्चों में बढ़ी सीखने की ललक।
0: एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत की शानदार शुरुआत, रोशी बीना देवी ने देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया, रचा इतिहास। 2018 एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं रोशी बीना, एशियाई खेलों में लगातार 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस इवेंट में भारत का 14वां मेडल, इससे पहले भारत एक गोल्ड मेडल जीत चुका है, यह छठा सिल्वर मेडल है। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने मेन्स डबल्स स्कल्स इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तेलुगु एक्शन ड्रामा द पैराडाइज रिलीज, श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी फिल्म में अहम भूमिका में है मोहन बाबू। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की मच अवेटेड फिल्म द विवान का कल होगा लॉन्च, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू। 25 सितंबर को थिएटर्स में आ रही है महाकाव्य श्री रामायण कथा, अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। अवेंजर्स एंड गेम एनकोर भी कल दोबारा बड़े पर्दे पर आ रही है, दिसंबर में डूम्सडे से पहले मार्वल फैंस के लिए शानदार तोहफा। एक बार फिर साथ आए इमरान हाशमी और रमेश देशमिया की जोड़ी, फिल्म गन मास्टर G9 का पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज।
1: परिणीति चोपड़ा की सीरीज शक ट्रस्ट नो वन कल से होगी स्ट्रीम, एक मां की अपने खोए हुए बच्चे की खोज की तलाश पर है ये सीरीज। अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख की अदाकारी से सजी वेब सीरीज हुंकार इस हफ्ते हो रही है रिलीज, कल से जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म डोंट बी शाय भी हो रही है रिलीज, कल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी उसकी स्ट्रीम। OTT पर आ रही है रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2, इस नए सीजन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग करेंगे होस्ट। मराठी सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म अफरा तफरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है तीन भाइयों की कहानी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार स्वागत किया, इस दौरान फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल तोड़ा, उन्होंने खुद अमेरिकी एयरफोर्स एंड्रूज एफ बेस पहुंचकर शी जिनपिंग का वेलकम किया। 3 दिन के इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत के साथ साथ कई औपचारिक कार्यक्रम भी शामिल, आज एक स्टेट डिनर का भी है कार्यक्रम। अमेरिका और चीन के बीच बैठक को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा अमेरिका और चीन के बीच के संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। सेनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष ने शी जिनपिंग के दौरे का किया विरोध, बोले ट्रंप को चीन के भारी सैन्य विस्तार और ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में ट्रंप पर जमकर पलटवार किया, कहा ईरान को आतंकवादी देश बताना गलत। पेजेश्कियान ने कहा ईरान खुद आतंकवाद का शिकार रहा, साथ ही अमेरिका और इसराइल पर ईरानी धरती पर हमला करने का भी लगाया आरोप। पेजेश्कियान ने अपने संबोधन के दौरान मिनाब स्कूल हमले के पीड़ितों की तस्वीरें भी दिखाई, ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का भी जिक्र किया। पेजेश्कियान ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि एटमी एनर्जी ईरान का हक है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसराइल पर भी गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि इसराइल अलग अलग शहरों और प्रांतों में इलाकों को निशाना बनाता है और हत्याएं करता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू की गई सेवा संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों से आज पीएम ने सीधे संवाद किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी जन्मभूमि वडनगर से वाराणसी के लिए, उनकी कर्मभूमि वाराणसी से वडनगर के लिए दो सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की अहम भूमिका होगी।
1: वडनगर और वाराणसी, ये दो पुरातन ऐतिहासिक शहर है और इन दोनों की एक और विशेष बात है, ये दोनों शहर हजारों साल से जीवंत है और मेरे लिए तो एक मेरी जन्मभूमि है और दूसरी मेरी कर्मभूमि है। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है और वडनगर हाटकेश्वर महादेव की आशीष की भूमि है। इन दो शहरों के बीच आप सभी सेवा का इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। अभी मुझे आप सबके दर्शन करने का भी अवसर मिला और कुछ साथियों से बात करने का भी मौका मिला जो वडनगर से निकले हैं और जो वाराणसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अनुभव सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि जैसे मैं भी आपके साथ साथ चल रहा हूं। आपने बढ़िया तरीके से सेवा की उन बातों को बताया। जब सेवा का भाव होता है तो आयुष्मान योजना जन्म लेती है और इन दोनों शहरों में से निकलते हुए आप लोगों ने रास्ते भर में देखा होगा कि सेवा के कामों को हमने कैसे आगे बढ़ाया है। साथियों, राजनीति अपनी जगह पे है, चुनाव अपनी जगह पे है, शासन व्यवस्थाएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम तो राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हुए लोग हैं। हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर के निकले हुए लोग हैं। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना, अलग अलग क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों से मिलना, उनके सपनों से परिचित होना, उनकी आकांक्षाओं को समझना, उनकी बातों को जानना, ये सारी बातें बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लग रहा है कि आप सभी जहां भी जा रहे हैं वहां संवाद और जनभागीदारी के सेतु बना रहे हैं। कई ग्राम सभाओं में चर्चा, कई लाभार्थियों से संवाद, कई वृक्षारोपण कार्यक्रम, कई साफ सफाई से जुड़े कार्यक्रम, कहीं सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी, कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बातचीत, सोशल मीडिया का नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास, सेवा भाव से किया गया ऐसा हर काम लोग याद रखते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं और मेरी तो जिंदगी ही लोगों के आशीर्वाद से चली है। लोगों के आशीर्वाद ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊर्जा रहे हैं और आज आप जब जा रहे हैं, आपको भी कभी सोचा नहीं होगा ऐसे ऐसे लोगों से आशीर्वाद मिलते होंगे।
0: और अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। उस बस को लेकर अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस बस में आग लगी उस पर करीब 1,75,000 रुपए की 19 चालान काटे जा चुके थे, लेकिन इस सबके बावजूद बस सड़क पर लगातार दौड़ती रही है। जनवरी 2026 में कम उम्र के चालक से बस चलवाने पर ये चालान पहला हुआ था। जून 2025 में फ्यूल चेंज और रेट्रोफिटिंग नियमों के उल्लंघन पर चालान कटा। रेट्रोफिटिंग के लेकर चालक की उम्र और परमिट तक कई नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ है।
2: तो लगातार इस बस को लेकर चालान कटते रहे, लेकिन बस सड़क पर खुलेआम दौड़ती रही।
0: वहीं आग से बस पूरी तरह से जल चुकी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अंशुल सिंह।
3: यमुना एक्सप्रेसवे पे कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। दरअसल एक बस जो दिल्ली से बिहार के मोबा की तरफ जा रही थी, उस बस में अचानक से आग लग जाती है जिसके बाद करीब 9 लोगों की मौत हो गई है। अगर आप देखें इस बस को अभी एक्सप्रेसवे से हटाया जा रहा है, लेकिन अगर आप इस बस की हालत देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पूरी घटना थी कितनी भयावह थी, कितनी दर्दनाक थी, किस तरीके से जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो सही समय पर नहीं निकल पाए जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। अगर मैं आपको और थोड़ी डिटेल में बस के आसपास जाकर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी आरटीओ के नियम होते हैं उनका पालन कहीं ना कहीं नहीं किया गया, जिसके वजह से जो लोग हैं वो इससे समय रहते नहीं उतर पाए। आप देखिए ये स्लीपर बस है, एसी बस है, ऊपर के जो पॉड्स हैं ये स्लीपर बसेस के लिए बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पीछे की तरफ इमरजेंसी एग्जिट होना जरूरी था जो इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसके वजह से जो लोग इस बस में पीछे की तरफ बैठे हुए थे वो नहीं निकल पाए, सही समय पर आगे नहीं आ पाए। ये घटना तब होती है जब आगे बस का ड्राइवर जो है आगे गाड़ी में होता है और वहां से शुरुआती तौर पे जलने की बदबू आ रही होती है। कुछ पैसेंजर्स पहले कंप्लेंट भी करते हैं कि बस में कुछ जलने की बदबू आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर नहीं रुकता है, गाड़ी चलाए रहता है और फिर आगे जाकर बस में आग इतनी तेज लगती है कि किसी भी तरीके से जो है जो लोग हैं वो यहां से नहीं निकल पाए। आप देखें ये पीछे की तरफ से भी अगर आप देखें तो यहां से भी लोगों ने निकलने की कोशिश की होगी, लेकिन जो बस के अंदर मटेरियल होता है वो मटेरियल इतना ज्यादा फ्लेमेबल या इतने आसानी से आग पकड़ता है कि लोगों को बस से उतरने का टाइम ही नहीं मिला। करीब 40 के आसपास पैसेंजर्स जो है बताए जा रहे हैं इस बस में थे, जिसमें से 30 से 31 लोग जो है बस से उतर पाए, बाकी 9 लोग जो है वो बस से नहीं उतर पाए और उनकी इस पूरी घटना में जान जो है चली गई है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और ये कहा है कि जो परिजन हैं उनके परिवारों के साथ जो अधिकारी है वो समन्वय बना के रखे और ये सुनिश्चित करे कि उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि
2: वक्त एक छोटी सी ब्रेक, कवरेज के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
7: AU Current Account के साथ मिलता है free UPI QR overdraft facility और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU! सोच बदलो और बैंक भी।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: GK Max.
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: GK Max. Best पुट्टी?
12: JK Wall Max.
13: Best paint?
14: JK Max.
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
16: JK Max Paints.
15: JK Max Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
11: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
12: मेरे पास एक आइडिया।
10: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
13: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
14: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
15: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
17: रुंगटा TMT बार, एकदम सॉलिड।
16: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
18: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
11: आई लाइक दिस ओनली।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
22: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
23: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
10: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
11: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
12: मेरे पास एक आइडिया।
10: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है।
13: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
12: आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
14: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
15: ओ नादान परिंदे, बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
16: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
12: तो कौन सी बनानी है?
10: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
18: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
11: आई लाइक दिस ओनली।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा हो?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
6: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
7: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: हादसे में 9 की मौत, 19 चालान के बाद भी दौड़ती रही है बस।
1: बिहार से समस्तीपुर में भी जमुई जैसे जाहिलों की शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, गाली गलौच और अश्लीलता की सारी हदें पार, चार आरोपी गिरफ्तार।
0: चुनाव आयोग में असहमति पर सियासी बवंडर के बीच द इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा खुलासा, गोवा में 97 योग्य वोटर्स का नाम जोड़ने के लिए 7 दिन में किए गए 8 ही मेल, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब।
1: नाम और निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बैनर्जी की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फूल पत्ती की जगह फुटबॉल खिलाड़ी का मिला है निशान।
0: सेवा संकल्प के तहत वडनगर से वाराणसी जा रहे युवाओं से पीएम मोदी का संवाद, सेवा तीर्थ में दूसरे दिन चिंतन शिविर में रहेंगे पीएम, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

0: आ गया है। सिर्फ चार दिन बाद ही जमुई से 131 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में फिर एक बेटी को हैवानियत का शिकार होना पड़ा। वारदात कल की है। समस्तीपुर के जगत सिंहपुर गांव में एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ हैवान एक नाबालिग बेटी के साथ बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं। बिगड़ैल लड़कों ने घेर कर उसके साथ और उसके दोस्त के साथ मारपीट की और दोस्त वहां से चला गया। फिर लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया गया।
1: वीडियो में लड़की इस हरकत का विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद समस्तीपुर पुलिस ने अब मामले का संज्ञान लिया है और चार आरोपियों को दबोचा है। सवाल है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है? क्या कानून का डर किसी को है ही नहीं? क्या पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह गया? आखिर कैसा समाज तैयार हो रहा है जहां बेटियां सुरक्षित ही नहीं है?
0: तो समस्तीपुर से बदसलूकी का वीडियो गुस्से और आक्रोश से भर देने वाला है। एक नाबालिग बेटी को घेर कर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था के रखवालों का डर खत्म होता जा रहा है।

0: आपने जमुई का दिल दहला देने वाला वीडियो देखा। जमुई में आपने देखा कि कैसे हैवानों के झुंड ने एक नाबालिग लड़की से बदसलूकी की। आपने देखा कि कैसे चंद गुंडे नैतिकता के ठेकेदार बन गए और एक मासूम नाबालिग लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आपने जमुई कांड में पुलिस का एक्शन भी देखा और आरोपियों का एनकाउंटर भी देखा।
1: यहीं पर ये घटना हुई एनकाउंटर की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप देखिए, हर तरफ ये नदी भी है, बालू भी है। यहीं से बालू का उठाव करते रहे नंदन यादव और हरिराम यादव जैसे अपराधी जो घटना में शामिल थे, जिनको पुलिस ने आज एनकाउंटर किया, हाफ एनकाउंटर।
0: और आपने कानून व्यवस्था से समझौता न करने का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वादा भी देखा।
2: एक जो चिंता रहता है सुशासन, मैं तो कभी जाति धर्म के पीछे नहीं पड़ता हूं साथी, लेकिन मेरा यह मानना है अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का जात नहीं होता है। और हमारी पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो मेरी पुलिस जरूर उसको जवाब देने का काम करेगी, कभी उससे पीछे नहीं हट सकती।
0: लेकिन जमुई कांड के महज चार दिन बाद और जमुई से सिर्फ 131 किलोमीटर दूर समस्तीपुर में एक बार फिर एक नाबालिग लड़की को सामूहिक हैवानियत का शिकार होना पड़ा है। जमुई की तरह ही ये वीडियो हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये वीडियो इतना शर्मनाक है कि देखकर आप विचलित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। एक नाबालिग लड़की को एक लड़के के साथ देखकर यहाँ खड़ी भीड़ मोरल पुलिसिंग पर उतर आई। लड़की को सरेआम छेड़ा गया, गालियाँ दी गई, धमकी दी गई। हैवानों से घिरी वो लड़की विरोध करती रही, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था।
3: समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसका नेतृत्व सदर डीएसपी दुर्गेश दीपक कर रहे थे। और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
0: इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही, आरोपियों की धरपकड़ हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में पुलिस तंत्र का खौफ बेअसर हो रहा है? क्यों इस कदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है? समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
4: जमुई कांड की तरह समस्तीपुर की वारदात पर भी बिहार में जमकर सियासत होने लगी है।
5: बिहार में महिला सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है। समस्तीपुर में कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी पकड़े गए और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए जमुई, याद रखें, अगर आपने हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कुछ कर दिया तो फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू। सरकार और पुलिस तो अपना काम कर रही है, पर मैं समाज से भी ये बात कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि तुरंत इस तरह के कुकृतों का विरोध करें।
6: राजनीतिक रूप से पूर्व की सरकारों का उदाहरण दे करके अपना बचाव किया जाता है, जबकि वर्तमान में जो सरकार चल रही है, वर्तमान में जिस तरह से सरकार की नीतियां चल रही है, वर्तमान में जिस तरह से शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया गया, जिस तरह से अपराध अपराधियों पर पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है, शासन और प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है, सजा दिलाने की जो प्रक्रिया थी वो अब समाप्त हो गई है, और सरकार की जो नीति है उस नीतियों के कारण ही कहीं ना कहीं मनचले मनबढ़ू और अत्याचार व्यभिचार यौनाचार करने वाले तेजी से पल बढ़ रहे हैं।
4: रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रोहित, समस्तीपुर वाले मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है?
7: नेहा देखिए, जो जानकारी मिली है कि समस्तीपुर वाला जो पूरा मामला सामने आया है उसमें अब जो चार आरोपी हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिनकी शिनाख्त भी जो है पुलिस ने कल देर रात कर ली थी, उन चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसमें कुछ और जो लोग हैं नज़र आ रहे हैं उनकी भी जो है तलाश चल रही है, क्योंकि वायरल वीडियो के आधार पर ही जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जमुई के बाद तुरंत बैक टू बैक कहें दो दिन के अंदर समस्तीपुर में जिस तरीके की ये बड़ी घटना घटी है, जहां एक बार फिर से लड़की के साथ छेड़छाड़, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से उसको छुआ जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है एक बार फिर से सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि महिला सुरक्षा आखिर कहाँ गया। और जो सरकार दावा करती थी कि रात 12 बजे महिलाएं सुरक्षित हैं पटना हो या बिहार के किसी भी अन्य हिस्सों में, तो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं बैक टू बैक, तो जाहिर सी बात है सवाल महिला सुरक्षा पर भी खड़ा हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि भाई अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है या कोई ऐसी घटना घट रही है तो सरकार तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये कि कार्रवाई से बेहतर आखिर कानून का डर या खौफ क्यों नज़र नहीं आ रहा है अपराधियों में। जी
4: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी रथ से रायबरेली जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रथ से अखिलेश यादव की यह पहली यात्रा होगी। रायबरेली में वो एसपी विधायक राहुल लोधी के आवास पर चाय भी पियेंगे।
8: वही अखिलेश की इस रथ यात्रा को कई नजरियों से अहम माना जा रहा है। एक तो इसे जनसंपर्क की कोशिश माना जा रहा है, दूसरा इसे कांग्रेस के लिए एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। गठबंधन से पहले अखिलेश रायबरेली में अपना जनाधार दिखाना चाहते हैं।
4: 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद रायबरेली की 5 में से 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बाद में ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे और फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो अखिलेश की नजर इस सीट पर भी है।
9: पीडीए के बारे में खुद कंफ्यूज हैं कि पीडीए क्या है। कभी पीडीए वो कहते थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर पिछड़े में पंडित को जोड़ दिए, पिछड़े में फिर ऐसे पूरे आधी आबादी को जोड़ दिए, तो खुद उस पीडीए में कंफ्यूज है पीडीए का। कुछ दिन के बाद कह देंगे कि पताल धरती आकाश है, तो ये क्या है ये, पहले खुद स्पष्ट हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही कहे कि पी से पंडित, ऐसे आधी आबादी, अब पहले क्या कहते थे, तो अब आगे क्या कहेंगे। आगे कह देंगे कि धरती अकाल पता सब कह देंगे, तो कह दे पहले तो पीडीए का सही क्या है वही बताएंगे। पीडीए कुछ नहीं है, उनका एक जुमला है, और समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है।
10: अब रथ यात्रा कोई काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी, कोई षड्यंत्र काम नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग जब याद करते हैं 12 से 17 के 5 वर्षों की सरकार के कालखंड को, तो आज भी चेहरे पे, लोगों के चेहरे पे तनाव होता है। महिलाओं और बच्चियों के मन में दहशत का भाव होता है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सूझवान हो गई है, इसलिए ऐसी किसी पार्टी को, ऐसे किसी दल को सत्ता में नहीं लाएगी जिस दल का उद्देश्य गुंडागर्दी हो, जिस दल का उद्देश्य परिवारवाद हो, जिस दल का उद्देश्य भ्रष्टाचार हो, दंगा और फसाद हो। इसलिए रथ या चौपाल अब सब व्यर्थ की बात।
4: और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा का। संतोष, अखिलेश यादव का ये रथ है जो इसका रास्ता कांग्रेस के गढ़ से होके क्यों गुजर रहा है?
11: देखिए, ये सवाल हमने तमाम नेताओं से पूछा, पहले रथ भी दिखाते अंजलि और उसके बाद का कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का कभी गढ़ होती थी रायबरेली, लेकिन यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर तो समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है, तो किसी का गढ़ नहीं रह गया। और इस बार रायबरेली से आगाज करने का एक तरीके से ये एक जरूर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मौजूदा स्थिति में भी जब मनोज पांडे साथ छोड़कर चले गए तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर बात यही वजह है कि पीडीए रथ यात्रा की जो शुरुआत हो रही है वो रायबरेली से हो रही है, पीडीए रथ तैयार है, और सबसे बड़ी बात कि इस पीडीए रथ के जरिए रायबरेली जाएंगे अखिलेश यादव, और उसके बाद जो एक डेफिनेशन थी पीडीए की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यात्रा, लेकिन उसमें जो पीड़ित वो पीडीए, ये एक नारा और एक तब्दीली नीले रंग से लिखी गई, जो पीड़ित है वो पीडीए है। एक तरीके से समाज का किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जाति धर्म किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पीड़ित है तो वो समाजवादी पार्टी के पीडीए का हिस्सा है।
8: ये बार बार पीडीए की डेफिनेशन ही बदल जाती है, पहले पिछड़ा था, फिर पीस फॉर पंडित हो गया, अब पीड़ित हो गया, अब मतलब आपने सारों को कवर कर लिया, सभी पीडीए में आ गए फिर तो।
11: बिल्कुल, ए से अगड़ा भी होता था, ए से अगड़ा भी, अल्पसंख्यक भी, ये राजनीति है। राजनीति में हर दल को अपना वोट बैंक बढ़ाने की एक जद्दोजहद में रहती है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए में जो पहले कभी पंडित और उसके बाद अब कह दिया कि जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है, तो वोट बैंक को बढ़ाना, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने से थोड़े दूर रह गई थी, तो अब वो जो थोड़े दूरी है उसको समाजवादी पार्टी खत्म करना चाहती है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कमियां हुई उसको 2027 में पूरा करें। 2027 में जीतने का फॉर्मूला भले ही पीडीए हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन पीडीए में वो पीड़ित भी हैं जो किसी भी जाति धर्म वर्ग के हैं, तो यही वजह है कि पीडीए का दायरा बढ़ा दिया गया, इसमें जाति धर्म के अलावा पीडीए मतलब पीड़ित व्यक्ति। तो यही है कि समाजवादी पार्टी का आज रायबरेली से आगाज हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे,
8: ठीक है,
11: राहुल लोधी के घर
8: लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने अपना समीकरण साधना शुरू कर दिया है। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जमाने से समाजवादी पार्टी MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को साधकर चुनावी मैदान में बेहतर प्रदर्शन करती रही है। इस बार भी अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले बड़ा मुस्लिम कार्ड खेला है।
4: समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव यानी एक यादव चेहरे को हटाकर जासमीर अंसारी यानी कि एक मुस्लिम चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। सवाल है कि अखिलेश के इस फैसले के क्या मायने हैं, देखिए ये रिपोर्ट।
12: 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
13: हैदराबाद से निकलकर ओवैसी यूपी में दहाड़ रहे हैं, अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, सीधे सीधे डेडलाइन देकर कह रहे हैं गठबंधन करना है तो आगे बढ़ो, लेकिन ओवैसी से गठबंधन की चाहत समाजवादी पार्टी में नहीं दिख रही। अखिलेश ने दो टूक कह दिया है, गठबंधन तो पुराने साथियों से ही होगा।
14: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा, और मैं इधर देख रहा हूं किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गया आप।
13: अखिलेश ओवैसी से दूरी बनाते दिख रहे हैं, गठबंधन से इनकार करते दिख रहे हैं, लेकिन ओवैसी की सक्रियता उनकी चिंता बढ़ा रही है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा उन्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने मुसलमानों को संदेश देने वाला एक बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव ने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष पद से यादव चेहरे लाल बिहारी यादव को हटा दिया है, उनकी जगह मुस्लिम चेहरे मोहम्मद जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय लिया।
15: चुनाव नजदीक आ गया तो मुसलमानों के प्रति प्रेम फिर दिखने लगा, चुनाव नजदीक देख करके अब नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जासमीर अंसारी को बना रहे हैं, M को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमेशा समाजवादी पार्टी करती है, चुनाव से पहले मुसलमानों को लुभाती है, वोट पाती है, और फिर कैसे अखिलेश यादव जी अपने सजातीय बंधुओं को कैसे पूरी सत्ता में हिस्सेदारी देते हैं, दबदबा बनाते हैं।
13: आखिर कौन है ये जासमीर अंसारी, इनका परिचय भी जान लीजिए। जासमीर अंसारी अभी विधान परिषद में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर से सांसद रह चुकी हैं। मोहम्मद जासमीर अंसारी सीतापुर के ही रहने वाले हैं। जासमीर 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। उनकी पत्नी कैसर जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर सीतापुर सीट से सांसद चुनी गई थी। बाद में उन्होंने 2018 में बीएसपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। जासमीर अंसारी भी बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस होते हुए समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं।
16: कई लोग ये बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उस मुखर तरीके से मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट में सामने नहीं आ रही है जैसे वो आती रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं ये चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए सम्मेलन करती है तो दूसरी तरफ एक तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन भी करती है। तो समाजवादी पार्टी सभी वोट्स को एकजुट करने की कोशिश में कहीं मुस्लिम समुदाय के वोट को तो पीछे नहीं छोड़ रही है।
13: आपको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी की जीत का पूरा दारोमदार यादव और मुस्लिम वोटरों पर निर्भर करता है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में करीब 19.5% मुस्लिम वोटर हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 64 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 64 में से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम की भी नजर लगी है, और इसलिए अखिलेश की चुनौती काफी बढ़ जाती है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
8: एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
20: AU
21: सोच बदलो और बैंक भी।

0: It is a very, very serious assault on democracy.
1: This Ganesh Kumar should be suspended forthwith.
2: No one vote, no one value.
3: बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं।
4: बिहार और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अमित शाह जीत गए, मैं बीजेपी नहीं जीता।
5: आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो।
6: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ और चुनाव आयोग पर हमलों की बौछार होने लगी। हमले तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस बार इन हमलों का अपना आधार था। मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी खुलासा हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग का सामना सख्त सवालों से है। सवाल ये है, चुनाव आयोग में सहमति से फैसले नहीं होते, बहुमत के फैसले दरकिनार किए जाते हैं। दो आयुक्तों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए गए, चुनाव आयोग के फैसले में केंद्र की दखल होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई। 10 महीने में कम से कम 14 बार ऐसे मौके आए जब दोनों आयुक्तों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और फैसलों का विरोध किया। उन नोट्स में दोनों आयुक्तों का कहना था कि मंजूरी के बिना ECI के नाम से चिट्ठी आदेश जारी हुए। नए IT मॉड्यूल को लेकर मीडिया से जानकारी मिली। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक सूचना जारी की गई। 1 साल से आयोग की बैठक से पहले कोई एजेंडा तय नहीं हुआ। आयोग की बैठक के मिनट्स भी नहीं लिखे जाते थे। आयोग की मंजूरी के बिना अधिकारी विदेश भेजे गए। सरकार की मंजूरी के बिना फॉर्म 6 में बदलाव हुए। जानकारी के बिना अधिकारियों के कामों का बंटवारा हुआ। जाहिर है इस खुलासे का SIR पर चल रही कानूनी लड़ाई पर भी असर पड़ेगा। सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को सही संविधान के मुताबिक और चुनाव आयोग के क्षेत्र में मानने वाली सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड में बदलाव करेगी। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था।
1: मजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ईआरओ को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधू साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो गणेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10 महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। कि जो सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का, जो अधिकारी है जिसको अख्तियार है वो है ईआरओ, ईआरओ तय कर सकता है और उसको एक्सेस मिलना चाहिए इस सॉफ्टवेयर का कि किसको डिलीट करना है और किसको ऐड करना है। अब हुआ क्या कि ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया, ईआरओ को एक्सेस दिया ही नहीं गया। और इसमें दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने विरोध किया, संधू साहब ने और जोशी साहब ने, कि आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन ने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर लिया, कानून के खिलाफ था, इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर के खिलाफ था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी सेल है जिसमें कोई भी अधिकारी बैठा हुआ है गणेश कुमार के अधीन, वो तय करेगा कि कौन डिलीट होगा और कौन ऐड होगा।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ड्राइवर के बीड़ी पीने से यमुना एक्सप्रेस वे पर जल गई स्लीपर बस, पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा, काम नहीं कर रहे थे आग बुझाने वाले सिलेंडर, हादसे में 9 की मौत, 19 चालान के बाद भी दौड़ती रही बस। बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई जैसे जाहिलों की शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार, 4 आरोपित गिरफ्तार। चुनाव आयोग में असहमति पर सियासी बवंडर के बीच द इंडियन एक्सप्रेस का दूसरा खुलासा, गोवा में 97 योग्य वोटरों का नाम जोड़ने के लिए 7 दिन में किए गए 8 ईमेल, लेकिन नहीं मिला कोई जवाब। नाम और निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फूल पत्ती की जगह फुटबॉल खिलाड़ी का मिला है निशान। सेवा संकल्प के तहत वडनगर से वाराणसी जा रहे युवाओं से पीएम मोदी का संवाद, सेवा तीर्थ में भी दूसरे दिन चिंतन शिविर में रहेंगे पीएम, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, 12:12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पहली रिपोर्ट बिहार से आपको बताएंगे। जमुई की शर्मिंदगी से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि बिहार के समस्तीपुर से फिर से शर्मसार कर देने वाली एक वारदात, एक तस्वीर सामने आ गई। बिहार में एक बार फिर जमुई कांड दोहरा दिया गया। वारदात कल की है। समस्तीपुर के जगत सिंहपुर गांव में कुछ हैवानों ने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की। वीडियो में आरोपित घेर कर

0: पहले जमुई की घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया और अब समस्तीपुर से भी लगभग वैसा ही मामला सामने आया है। समस्तीपुर के करपुरी ग्राम थाना इलाके के जगत सिंहपुर गांव के पास एक लड़की के साथ जो बदसलूकी की घटना हुई है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई की, चार लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल वही है जो जमुई कांड के बाद बना हुआ था। आखिर बिहार में बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर अंजाम उसी तरह का होगा जैसा जमुई के आरोपियों के साथ हुआ था।
1: और समस्तीपुर की घटना को लेकर विपक्ष सम्राट सरकार पर हमलावर है। आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
2: जमुई मामले को लेकर के पूरा बिहार शर्मसार हुआ, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं थू-थू की स्थिति बनी। अब उसी तरह की घटना समस्तीपुर में सामने आए हैं। वजह यह है कि सरकार और सरकार का एक बार समाप्त हो गया। सरकार की जो अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखती है, और जब भी इस तरह के वारदात होते हैं तो सरकार मामले को दबाने के लिए इसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास करती है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य भर में कहीं ना कहीं मनबढ़ू मनचलू और अत्याचार व्यभिचार करने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं।
3: बच्चियों के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे या तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर लंगड़े हो जाओगे। सबक सीख लो कि बिहार में कानून का राज है, अगर चैलेंज करोगे तो जवाब भी तुरंत मिलेगा। समस्तीपुर की घटना में प्रशासन ने तुरंत चार लोगों को अरेस्ट किया है, और जमुई की घटना तो आपको मालूम है कि सरकार ने किस तरीके से काम किया है। बिहार में कानून का राज है, और पिछले दो दशक से बिहार में अपराधियों को हमने पनपने नहीं दिया है। बिहार में अपराधी रह नहीं सकते हैं, उनको बिहार छोड़ना ही होगा।
1: और 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पटना से। बिहार की राजधानी पटना में कल शाम जनसुराज के नेता अनिल यादव को उनके घर की पार्किंग में गोली मार दी गई। चार गोलियां मारी गई हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। बाइक पर सवार होकर तीन हमलावर पहुंचे रहे और सभी हमलावरों ने अपना चेहरा ढाक रखा था। हमलावर आए और अनिल यादव को गोली मारकर आसानी से फरार हो गए। ये वो तस्वीरें देखिए जहां पर बाइक पर तीन हमलावर आते हैं, एक बाइक चला रहा होता है, बाकी पीछे दो लोग जो बैठे होते हैं वो एक के बाद एक कई फायरिंग करते हैं और अपना चेहरा ढके होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल सीसीटीवी मौजूद है। और सामने आप देख रहे हैं, सामने अनिल यादव बैठे हुए हैं। तो पटना में जनसुराज नेता पर फायरिंग पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। देखिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तरफ से कैसे निशाना साधा गया।
4: कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार, देनदार घर में घुस करके जो है गोलियां मारी जा रही है।
5: भाई भाई साहब थोड़ा नीचे,
4: चाहे बच्चियां हो चाहे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या जनप्रतिनिधि है, तो आप समझ सकते हैं जब पटना जो राजधानी शहर है जब वहां के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब गोलियां नहीं चलती।
6: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।
1: और 12:12 रिपोर्टर में ग्रेटर नोएडा बस हादसे की रिपोर्ट अब आपको बताते हैं। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसी घटना घटित हुई जिसमें 9 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। दिल्ली से महोबा जा रही बस में यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक आग लग गई और इस हादसे में 9 यात्री जल गए, मौत हो गई उनकी। अब यह बताया जा रहा है कि इस बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। नोएडा पुलिस ने ड्राइवर कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में बस में सवार एक यात्री की शिकायत पर FIR दर्ज हो गई है।
7: कल देर रात ग्रेटर नोएडा में एक ये भयावह हादसा हुआ जिसमें बिहार के महोबा की तरफ जा रही बस में अचानक आग लग गई और आग के चलते पूरी बस झुलस गई। इस आग में 9 लोगों की मौत हो गई है। एक

0: जो औरत है उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज तक की टीम इस वक्त उस बस के अंदर खड़ी है, और अगर आप मैं आपको बस की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा दो चीजें, पहली कि ये आग कितनी भयावह थी, और दूसरी कि जो नियम कानून थे उनको कैसे ताक पर रखा गया। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी बिल्कुल सामने आपकी ये जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है। इस फायर एक्सटिंग्विशर का काम यह था कि अगर आग लगे तो आग को बुझाया जाए, लेकिन आरोप ये लगाया गया है पैसेंजर्स के द्वारा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर काम किया ही नहीं, और इसी का इस्तेमाल करके पीछे के शीशे को तोड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर आपको सामने सामने से ही दिखाऊं तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको एक्सटेंड करके काफी ज्यादा कम कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों को जब आगे भागने की कोशिश की होगी तो वो इसमें ही फंस के रह गए होंगे और आगे नहीं निकल पाए होंगे, क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्शन करके जो है इसमें यहाँ जो डिस्टेंस होना चाहिए था उसको कहीं ना कहीं कम किया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या नोएडा पुलिस किसी तरीके का एक्शन उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी लेती है जिनकी जिम्मेवारी थी ये सुनिश्चित करना, औचक निरीक्षण करके कि जो बस के जो बायलॉज हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं।
1: और बस में सवार एक यात्री ने बस ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही पर सवाल उठाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक यात्री सुनील कुमार ने आज तक से बातचीत की और बातचीत में कहा है कि बस में जलने की बदबू आ रही थी, ड्राइवर कंडक्टर बीड़ी सिगरेट पीने में मस्त थे, यात्रियों ने उन्हें बस रोकने को कहा जब आग लगना शुरू हुई, लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी, जब आग बढ़ गई तब बस रोकी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी।
2: तो सुनील जी, फिर जब बस में आग लगी तो क्या हुआ, कैसे बस में आग लगी थी?
3: सर, आधे लोग नींद में थे, आधे लोग जाग रहे थे। ड्राइवर अपने गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कर रहे थे। वहां पे उसको दो चार बार लोगों ने कहा भैया गाड़ी रोको, जैसी आ रही है गाड़ी, उसने लेकिन गाड़ी रोकी नहीं, और बस जब तक काम काफी बढ़ गया उसमें, जब ज्यादा धुआं निकलने लगा जब उसने गाड़ी रोकी।
1: अब बसों में आग की घटनाएं आए दिन सामने आती रही हैं, इससे पहले भी यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग चुकी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। क्या बसों में आग से बचाव के इंतजाम नाकाफी हैं? आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने दिल्ली के कश्मीर बस अड्डे पर बसों का रियलिटी चेक किया।
4: ये जो हिस्सा होता है ये होता है इमरजेंसी एग्जिट। अब मान लीजिए अगर आग की अनहोनी हो जाए तो ड्राइवर या खलासी कोई पीछे आए तो लीवर खींच के दरवाजा खोले, पीछे कोई एक तो लीवर नहीं दिख रहा है, यानी ये दरवाजा अगर खोलना हो तो अंदर से, और ये कितनी ऊंचाई पर है, इमरजेंसी एग्जिट बस इतना सा है, जरा पैर हटाइएगा, हाँ ये खुल रहा है, आप सोचिए, नहीं नहीं खुल रहा, ये पूरी ताकत लगा के भी, ये 1.5 से 2 फीट के इमरजेंसी एग्जिट में अगर 5 से 6 फुट लंबे लोग अगर जाना चाहें तो नहीं निकल सकते, और ये जाम है, पूरी तरह जाम, ये नहीं खुलेगा, अगर अनहोनी हो जाती आग लगती है तो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, ये यहीं पर ट्रैप होके रह जाएंगे। उसके बाद अगर शीशा तोड़ना चाहें, किसी भी शीशे पर हैमर नहीं है, वो इसे अगर तोड़ना चाहें हाथों से आप ऐसे शीशे नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर भी एक और हादसे को, ये वो बर्निंग बस हैं जो बड़ी अनहोनी कर सकते हैं और इनमें किसी भी तरह के एहतियात के कदम नहीं उठाए गए। फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसी जगह है जो समय पर नहीं निकलेगा, इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है, इमरजेंसी एग्जिट इतना छोटा है और पीछे गिर सकते हैं लोग, ज्यादा लोग नहीं निकल सकते। इन बसों में सुविधाओं के नाम पे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से आप विंडो को तोड़ करके इमरजेंसी में एग्जिट कर सके। ये वो बर्निंग बस हैं जो दिल्ली NCR नहीं देश के अलग अलग कोनों में चल रही हैं, लोग सुविधाओं के नाम पर इनमें बैठ जाते हैं, लेकिन ये जानलेवा है, खतरनाक है। पहले राजस्थान और उसके बाद नोएडा में हमने जिस सड़क पर देखा, यमुना एक्सप्रेस वे पर, ऐसी न जाने कितनी बसें व्यवस्थाओं की नाक के नीचे चल रही हैं, इनका सेफ्टी सिक्योरिटी फायर ऑडिट नहीं किया जाता, और इसीलिए न जाने ऐसी कितनी बस हादसों को न्योता दे रही हैं।
1: और इसी दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा बस आग लगने वाले हादसे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें 2 ड्राइवर हैं और 1 कंडक्टर है। देखिए, बस चलाने वाला ड्राइवर पवन कुमार, योगेश दीक्षित, इनको गिरफ्तार किया गया, और कंडक्टर रोहित नाम उसका बताया जा रहा है, उसको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर, और ये वही थे जहां से लापरवाही की शुरुआत हुई, क्योंकि जो सफर करने वाले थे वो बता रहे थे कि बस रोकी है, बदबू आ रही है, लेकिन रोकी नहीं इन्होंने। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी एक बस आग का गोला बन गई। हादसा खालापुर टोल नाके के पास हुआ, जिस वक्त आग लगी बस में 14 यात्री सवार थे, जिन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। बस उदयपुर से पुणे जा रही थी, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बस की आग बुझाई। लेकिन सवाल यह कि आखिर सड़क पर यात्रियों को लेकर दौड़ रही बसों को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? बस मालिकों से लेकर परिवहन विभाग तक कटघरे में है। मौत का दूत बनकर सड़क पर दौड़ रही बसों पर आखिर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? वही 12:12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो मुंबई से। आईआईटी मुंबई में साहिल वाकोड़े सुसाइड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और उनमें वो 3 छात्र भी शामिल हैं जो कथित तौर पर साहिल वाकोड़े के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अब तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना है और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच परीक्षा कक्ष का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया, जिसमें साहिल और प्रोफेसर दुल्ला दिखाई दे रहे हैं।
5: साहिल वाकोड़े सुसाइड मामले में वो सीसीटीवी सामने आया है जिसमें प्रोफेसर दुल्ला साहिल का पेपर ले लेते हैं और उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही सीसीटीवी है जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और जांच की दिशा में ये सीसीटीवी काफी अहम माना जा रहा है। सीसीटीवी के आखिर में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर दुल्ला जब एग्जामिनेशन हॉल में इन्वेजिलेटर के तौर पर वहां देख रहे थे, नजर रख रहे थे, तभी उनकी नजर साहिल पर पड़ी और उन्होंने साहिल का पेपर लिया और उसे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ले गए। अब देखना होगा ये सीसीटीवी क्राइम ब्रांच और आईआईटी पवई फैकल्टी द्वारा स्थापित की गई 10 सदस्यों की कमेटी के इंक्वायरी रिपोर्ट में कितना अहम साबित होती है।
1: मुंबई से आपके लिए चलते राजस्थान 12:12 रिपोर्टर में। अगली रिपोर्ट राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में जोधपुर एम्स के डॉक्टर अब हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से ओपीडी सेवाएं चरमरा गई हैं। देर रात जोधपुर एम्स के डायरेक्टर ने डॉक्टर से बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात बन ही नहीं पाई।
6: जोधपुर एम्स रेजिडेंट डॉक्टर सुसाइड केस में लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल जारी है। एम्स में मरीज परेशान हो रहे हैं, मगर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि डायरेक्टर को हटाया जाए और मृतक रेजिडेंट डॉक्टर के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही वर्क कल्चर को बदला जाए। इनका आरोप है कि रेजिडेंट डॉक्टर दबाव में काम कर रहे हैं, लगातार डे नाइट की ड्यूटी लगाई जाती है, परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से मृतक रेजिडेंट डॉक्टर भी डिप्रेशन में था और लगातार 24 घंटे की ड्यूटी के बाद उसने आत्महत्या की है। उधर पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है, अभी तक किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है। एम्स की तरफ से कहा गया है कि प्रोटोकॉल के तहत यहां पर ड्यूटी दी जाती है, इसलिए एम्स प्रशासन पूरे मामले की जांच करने के बाद ही कुछ बोलेगा।
1: 12:12 रिपोर्टर में अब रिपोर्ट रायबरेली से। समाजवादी पार्टी की चुनावी रथ यात्रा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से अखिलेश यादव चुनावी अभियान शुरू करेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। रायबरेली से यात्रा की शुरुआत को भी पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर देखा जा रहा है। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, जो कांग्रेस का गढ़ वहां पर समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा की शुरुआत हो जाती है, अब इसको कैसे देखा जाए, क्या खबरें आ रही हैं?
7: देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां से समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि अखिलेश यादव हैं वो अपने विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे और उनके साथ जो छात्र सभा के कार्यक्रम के दौरान जो बदसुलूकी का आरोप लगाया पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यह ऐलान किया कि वो रायबरेली में राहुल लोधी के पास जाएंगे। लेकिन वो आगाज होगा उस पीडीए रथ के जरिए। इस पीडीए रथ तैयार है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ जो पीडीए में पी है वो पीड़ित वो पीडीए, यानी जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है, एक नया एक नारा और उसमें ब्लू रंग को भी शामिल किया गया। नीले रंग जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का हरा और लाल रंग होता है उसमें नीले रंग को भी शामिल किया गया। तो एक तरीके से पीडीए से समाजवादी पार्टी ने कई गढ़ साधने की कोशिश की है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के जो बीएसपी का जो नीला कलर है उसके जरिए भी पीडीए में जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा एक अपने वोट दायरे को बढ़ाने की भी कोशिश है। तो एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगाज किया है पीडीए रथ के द्वारा, और 2027 के चुनावी समर की शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली से यात्रा करके कर रही है।
1: मतलब संतोष, कुछ भी अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते हैं कसर 2027 के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर चंडीगढ़ से, जहां आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड हुई है, और चंडीगढ़ में सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ये छापेमारी हुई है।
8: पंजाब में ईडी के बढ़ते कदम और पिछले कुछ समय में ईडी ने दबिश बनाई है और 26 ऐसे लोकेशन हैं जहां पे लगातार रेड हो रही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किस तरह से चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इसके अलावा लुधियाना में रेड्स हुई हैं। आपको बता दें फोकस है गमाडा और पूडा, जहां पे ये पूरा किया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं किस तरह से 290 करोड़ रुपए का घपन हुआ है। वहां पे बात आ रही है सत्येंद्र जैन, जो कि पंजाब के से प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के लिए। कहा जाता है 926 के इसी घर में वो रहा करते थे, हालांकि अलॉटमेंट सनी आलूवालिया के नाम पे हैं, जो कि पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी बीच में हरदीप मुंडिया के भांजे हैं, उनके ऊपर भी ईडी ने दबिश बनाई है और खास तौर पे उनके ठिकाने पर भी रेड हुई है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
1: और 12:12 रिपोर्टर में बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट पर। टीएमसी के नाम और घासफूस के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमौलिया बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी। पूरी खबर आपको बता रहे हैं संजय शर्मा।
9: ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि निर्वाचन आयोग को उनके दावे पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए था, उनकी सारी बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन सारी बातें सुनने के बाद भी निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से एक्शन लिया है और उनका पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया है।
1: और 12:12 रिपोर्टर में बात पीएम मोदी के चिंतन शिविर की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंथन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। दिल्ली के सीवा तीर्थ में चल रहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन विकसित भारत के विजन पर करीब 4.5 घंटे तक मंत्रियों के साथ मंथन हुआ।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का आधा समय लगभग बीत चुका है और इस चिंतन शिविर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिड टर्म समीक्षा कर रहे हैं और इस समीक्षा के आधार पर अपनी सरकार के आने वाले समय में कामकाज और कैसे बेहतर किया जाए इसका रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस का ब्यौरा भी ले रहे हैं और इस ब्यौरे के आधार पर आने वाले समय में एक बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने आज वर्ल्ड नगर से वाराणसी के लिए सेवा संकल्प बाइक यात्रा जो निकली थी उसमें सेवा यात्रियों से संवाद किया। पीएम ने क्या कहा वो बता रही हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल।
11: गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश की वाराणसी तक 10 के ग्रुप में सेवा यात्री मोटरसाइकिल रैली करते हुए निकले हैं। जिस जिस शहर वो रुकेंगे, जिस जिस तालुका में वो लोगों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों में जनहित के लिए काम करती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संवैधानिक पद पर लगभग 25 साल हो चुके हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पॉलिसीज बनाते हैं उनका उद्देश्य होता है देश का विकास और लोगों का उद्धार। अलग अलग जगहों पे लोग जब ये जाएंगे तो वो अपनी बात सामने रखेंगे, पॉलिसीज की बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करी है।
1: और सेवा यात्रियों को पीएम ने सेवा परमो धर्म का मंत्र दिया। आइए दिखाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा।
12: सभी साथियों से मैं यही कहूंगा कि अपना भी ध्यान रखिए, सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और सेवा करते करते सेवा का संदेश देना है, सेवा का उपदेश नहीं देना है। हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, कितनी ही बड़ी सत्ता हमें क्यों न मिल जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: विदेश से क्या खबर है यह भी आपको बताते हैं। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर है। प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट पर खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं। पूरी खबर बता रहे हैं सुमित चौधरी।
13: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 साल के बाद अमेरिका पहुंचे हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके का स्वागत उनका किया वो लगातार कुछ संदेह पैदा करता है। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने किसी भी बड़े नेता के साथ बातचीत करने से पहले एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। वो पहले टैरिफ बढ़ाते हैं, वो लगातार कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, और उसके बाद जब वो नेता से मिलने वाले होते हैं तो उनका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे कभी वो उनके पुराने दोस्त रहे हों। डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक ऐसी परिस्थिति में है जहां वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ना सिर्फ ईरान बल्कि रशिया के तौर पे भी, और लगातार उनकी डोमेस्टिक मार्केट है, उनके ऊपर मिड टर्म इलेक्शन का भी काफी ज्यादा प्रेशर है। ऐसे में चीन के साथ संबंध ठीक करने उनके लिए एक बड़ी प्राथमिकता भी है, और उनकी डोमेस्टिक चीजों को ठीक करने के लिए भी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि योगदान भी देगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या अमेरिका सच में शी जिनपिंग के साथ बातचीत करना चाहता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये भी है कि इस समय चाहे वो ईरान हो चाहे वो रशिया हो, एकमात्र देश जो लगातार इन तमाम देशों को जोड़ सकता है या अमेरिका की बातों को पहुंचा सकता है वो चीन ही है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ शी जिनपिंग का स्वागत इतनी बड़े तरीके से किया, भव्य तरीके से किया, बल्कि प्रोटोकॉल्स को भी तोड़ दिया, और रेड कार्पेट स्वागत करने के बाद वो खुद उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे।
1: अब 12 बजे रिपोर्टर में बात होगी। यूएन महासभा में ईरान की राष्ट्रपति के भाषण की ब्रजेश कियान ने यूएन में ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है।
14: संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने अमेरिका में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान न सिर्फ ईरान को धमकी दी थी बल्कि उनको अल्टीमेटम भी दिया था, या तो वो अमेरिका के साथ डील करें या फिर बड़े हमलों के लिए तैयार रहें। लेकिन मसूद पजिश्कियान ने जिस अंदाज से ईरान की और अपने लोगों की दलील संयुक्त राष्ट्र में सामने रखी है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अमेरिका का हमेशा से दुगलापन दुनिया में रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने कहा कि उन्होंने किसी देश पर युद्ध नहीं छेड़ा है बल्कि उन पर युद्ध थोपा गया है।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: तेरा प्यार उनका बार बार तेरा प्यार उनका बार बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
17: क्या चीज है वायरल है?
16: थैंक यू।
18: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
19: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
16: क्या?
19: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना रहा है,
20: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
19: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
18: ओ नादान परिंदे, बैठ
19: बैठ बैठ।
18: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
19: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: Maddie, I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF. There's nothing small about them.
0: Okay.
1: Ujjivan, nothing small about us.
2: In association with
3: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल. सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स.

लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे वरुण विहार और नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन। 12,000 करोड़ की बताई जा रही है लागत। साथ ही सीएम योगी 2166 करोड़ की लागत से 5 आवासीय अपार्टमेंट का शिलान्यास करेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे के पास कार्यक्रम आयोजित। संतकबीरनगर में अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा समाजवादी सरकार ने अयोध्या के विकास की अनदेखी की। ईसीआई पर अखिलेश यादव को तंज, कहा मुंह नुचुआ तो सुना था, अब चुनाव मुचुआ भी आ गए, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने फूका यूपी 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल, रायबरेली से रथ यात्रा का अखिलेश यादव ने शंखनाद किया। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर कहा अब रथ यात्रा काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग जब याद करते हैं 5 वर्षों की सरकार के कालखंड को तो आज भी लोगों के चेहरे पर तनाव होता है, अब कोई षड्यंत्र काम नहीं आएगा। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का उद्देश्य गुंडागर्दी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अयोध्या में महंत राजकुमार दास की मध्यस्थता से रामदेव ब्रिजभूषण की मुलाकात, पतंजलि उत्पादों पर विवाद सुलझाने की पहल। रामदेव बाबा बातचीत के बीच बाद में बोले ब्रिजभूषण शरण सिंह के मन में कुछ भ्रांतियां थी जो बातचीत के बाद दूर हो गई हैं। यूपी में EIMIM का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा चुनाव के वक्त याद आता है मुसलमान, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते। EIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा 5 मिनट के लिए टोपी लगा करके 5 साल के लिए टोपी पहनाना अब नहीं चलने वाला। यूपी चुनाव पर EIMIM ने कहा ये चुनाव के अगले दिन ही हमको हटा देंगे क्योंकि इनका लक्ष्य तो मुसलमानों के वोट बैंक पर सियासी डकैती डालना है, हिस्सेदारी देना नहीं। बरेली में पंचायत का तालिबानी फरमान, रेप के आरोपी को बचाने के लिए पीड़ित लड़की से शादी करने का आदेश। यूपी के सीतापुर में गणेश पूजा पंडाल पर बरसात के चलते गिरा छज्जा, 1 महिला की मौत, 8 घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर डीलक्स बस में लगी आग, 9 लोगों की मौत हो गई है, परिवहन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठे। हादसे के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, बस के मालिक, 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया। यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद बड़ा खुलासा, 19 चालान के बावजूद सड़क पर दौड़ती रही बस। बस हादसे पर सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। ग्रेटर नोएडा बस हादसे पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्ति की संवेदना। झांसी में गोरी बाबा के भेष में सराफा दुकान पहुंचा शख्स, बातों में उलझाकर चोरी की, सीसीटीवी में कैद। मेरठ में करेंसी बॉक्स में मिले लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोट, 186 शाखाओं से जुड़ा है नेटवर्क। यूपी के सुल्तानपुर में छात्रा को कार ने जोरदार टक्कर मारी, हादसे के बाद चालक फरार। गाजियाबाद में खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद मोहन नगर होटल की जांच, पेंट्री बंद कर नोटिस जारी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस की स्नैचर से मुठभेड़ हुई, चोरी की बाइक, देसी तमंचा बरामद।

0: और अब आपको यूपी की चुनावी खबरें बताते हैं। आज रायबरेली के अंदर बड़ी हलचल है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की यूपी से। थोड़ी देर में अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचने वाले पहुंच चुके हैं और अब अखिलेश यादव रायबरेली पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव का काफिला लखनऊ से निकल के रायबरेली पहुंच गया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी समर्थक वहां उनका इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार अब खत्म हो गया। जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। रायबरेली में आज अखिलेश यादव की रथ यात्रा बस अब शुरू हो रही है और वहां अखिलेश अपनी पार्टी के छात्र सभा के नेताओं से भी मिलने वाले हैं और विधायक राहुल लोधी के घर भी जाने वाले हैं अखिलेश यादव। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। देखिए, उनके कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए यहां पर मौजूद है। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष बताइए, क्या तस्वीरें, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं वहां?
1: देखिए, तस्वीरों में आपको सीधे दिखाते हैं, अखिलेश यादव अपने पीडीए रथ पर सवार हैं और पीडीए रथ पर सवार होकर उन्होंने यहां से 2027 के विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। और ये पीडीए रथ, पीडीए का फॉर्मूला इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरुआत की है रायबरेली से। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से रायबरेली से समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की अपने चुनावी आगाज की। और आप देखिए, तस्वीरों से हम दिखाते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ हुजूम है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं और ये लोग सिर्फ यहाँ से काफिला लखनऊ से लेकर रायबरेली तक इसी तरीके से नजर आ रहा है। आज जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने जो विधायक हैं रायबरेली से राहुल लोधी के घर जाएंगे और ये पूरी सड़कों पर इसे एक तरीके से अपनी ताकत दिखाने का पीडीए के लिए कि पीडीए किस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ने को तैयार है और लड़ने के साथ उसके साथ कितना बड़ा जनाधार है ये दिखाने की कोशिश। और ये समाजवादी पार्टी के चुनावी आगाज की तस्वीरें हैं जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीडीए रथ से शुरू की है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव यहाँ बचरामा पहुंचे थे और बचरामा से इस पीडीए रथ से वो रायबरेली तक जाएंगे, वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे। तो एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव का समाजवादी पार्टी ने आगाज कर दिया है, अपने प्रचार का आगाज कर दिया उस पीडीए के रथ के जरिए।
0: लेकिन संतोष, सब ये जानना चाह रहे हैं कि 2027 के संग्राम का अगर आगाज किया गया है तो उस आगाज के लिए रायबरेली को ही क्यों चुना गया? वो तो उनके साथियों की गढ़ रहा है, क्षेत्र रहा है, तो सबके मन में ये सवाल है।
1: देखिए, बिल्कुल सबके मन में यही सवाल है और ये सवाल हमने सपा के तमाम नेताओं से भी पूछा तो उनका सीधे से कहना था कि 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ से चार, मौजूदा समय में कुल रायबरेली की 6 विधानसभा हैं, उनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 2 सीटें ऐसी है जिनमें से मनोज पांडे जो इस समय पे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, 2 सीटों को छोड़कर रायबरेली सदर अदिति सिंह की और मनोज पांडे को छोड़कर बाकी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो ऐसे में किसी का गढ़ नहीं रह जाता है, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। हालांकि ये एक रायबरेली के राहुल लोधी के घर पे जाने का कार्यक्रम एक तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा था कि वो अपने नेताओं के संघर्ष में साथ होंगे और इस संघर्ष के जरिए वो दिखाने की, बताने की भी, एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में खड़े हैं और यही वजह है कि वो राहुल लोधी के घर जाएंगे अखिलेश यादव। वजह कि राहुल लोधी के साथ जिस तरीके से छात्र सभा के कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा बदसुलूकी की गई समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ, तो उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की चुनाव में अगर कोई बदसुलूकी होती है तो सपा अध्यक्ष सीधे उससे अटैच होंगे, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा।
0: कोशिश है जनता के बीच जाने की, उनको संदेश देने की कि हम साथ में बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले ही रायबरेली पहुंचे, आपने देखा भी, उससे पहले वहां उनके रथ पहुंच चुके थे। रायबरेली में क्या माहौल है, रथ देखने कितनी भीड़ उमड़ी, हमारे संवाददाता मौके पर थे और उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: समाजवादी पार्टी का पीडीए रथ तैयार है और इस पीडीए रथ की पहली तस्वीरें हम लेकर आए हैं। ये एक बस को पीडीए रथ, चूंकि ये बस हमेशा से एक पहचान रही है, लेकिन इस बार जो परिवर्तन किया गया, एक तो पीडीए उसमें लिखा गया है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर और उस तस्वीर के साथ जो पूरे एक साइड पर एक बड़े से बैनर के साथ लिखा गया है पीडीए जो पीड़ित है वो पीडीए है। ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नीले रंग के साथ जो पीड़ित है वो पीडीए है। एक तरह से पीड़ित में वो व्यक्ति शामिल कर लिए गए, जाति धर्म किसी भी जिले या तमाम भेदभाव से दूर करके हर पीड़ित व्यक्ति को पीडीए का हिस्सा बताया गया है। और ये समाजवादी पीडीए यात्रा, हालांकि पीडीए का जो नाम दिया गया था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, तो उस पीडीए के नाम को बड़ा करते हुए जो पीड़ित है वो पीडीए है। अभी अगर हम बस के पीछे से चलते हैं, ये दूसरी तरफ से, क्योंकि रायबरेली से इसकी यात्रा शुरुआत हो रही है, तो यहाँ से तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बस को देखने के लिए आतुर हैं। और ये बस का दूसरा साइड है, बस के दूसरे साइड आपको यहाँ पे अखिलेश यादव की तस्वीर, जो पीड़ित वो पीडीए, जो नीला रंग एक तरह से समाजवादी पार्टी के शामिल है प्रचार में। और उसमें सबसे आगे जो गेट बनाया गया है, जो एंट्रेंस गेट है, उसमें पार्टी के संस्थापक, पार्टी के मुखिया रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर। इस पूरे रथ पर सिर्फ दो तस्वीर है। क्या क्या राजन चौधरी जी हमारे साथ है, इसी रथ से 2027 का आगाज कर रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर विजय होगी। 27 में तो समाजवादी सरकार बनेगी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे।
1: लेकिन
2: परिवर्तन की शुरुआत है या आठ है, और संकेत है 2027 का।
1: रायबरेली से शुरुआत हुई है इसकी,
2: वो तो ऐसी उन्होंने कहा, तो होगी शुरुआत।
1: हाँ, ये 2027 का आगाज।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आठ है ये।
1: पीडीए में इस बार पीडीए में जो पीड़ित थे वो
2: सरकार बनेगी, ये तय है।
1: पीडीए में पहले तो पिछड़ा होता था, लेकिन अब की जो पीड़ित है वो,
2: हाँ, तो उसका विस्तार है ये, उसका विस्तार है, पीडीए का विस्तार है।
1: कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली से पीडीए रथ यात्रा निकाल रहे हैं, निकल चुकी है एक तरह से। और चुनावी पीडीए यात्रा से पहले अखिलेश ने आखिर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली को रथ यात्रा के लिए क्यों चुना है, आपके मन में यह सवाल होगा, तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते।
3: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा तो अभी बाकी है, लेकिन अखिलेश का रथ सुबह सुबह रायबरेली के रास्ते चल पड़ा था। रायबरेली में अखिलेश के स्वागत में जगह जगह बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लगी हुई थी। अखिलेश के रथ पर भले पीडीए यात्रा का नारा लिखा हो, लेकिन उनकी ये रथ यात्रा चुनावी पीडीए यात्रा नहीं बल्कि रायबरेली स्पेशल थी। जो रायबरेली में हरचंदपुर के समाजवादी पार्टी विधायक और ओबीसी नेता राहुल लोधी के घर तक ही थी। यूं तो अखिलेश की इस यात्रा का मकसद समाजवादी छात्र सभा के उन नौजवानों से मुलाकात थी जिनकी 17 सितंबर के दिन पुलिस अधिकारियों से झड़प हुई थी।
4: ये रथ रायबरेली लेके जा रहे हैं वो गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ावा देने के लिए, सह देने के लिए जा रहे हैं। वहाँ के जिलाध्यक्ष ने जिस तरह सीओ के साथ बदतमीजी किया है, सीओ को बोल रहा था कि चूड़ी पहन लीजिए और तमाम अभद्र टिप्पणी किया था, तो उसको सही साबित करने के लिए वो रायबरेली जा रहे हैं।
3: अखिलेश पीडीए में P4 पीड़ित बताकर हर जिले में किसी न किसी पीड़ित से मुलाकात के नाम पर ये रथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल कहानी उचाहार सीट की सियासत से जुड़ी है।
5: दो चीजें सामने आती है, पहला, इस वक्त इंडिया गठबंधन उस दौर में है जब सीट शेयरिंग की चर्चाएं चरम पर हैं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है? इस रथ यात्रा से समाजवादी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक यानी कि मनोज पांडे जो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, ऊंचाहार सीट पर जीते थे, समाजवादी पार्टी वहां अपना हक वापस चाहती है। कुछ ऐसे मायने इस रथ यात्रा को लेकर निकाले जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि जो पुलिस से प्रशासन से पीड़ित लोग हैं उनसे मिलकर भी अखिलेश यादव एक सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए ये यात्रा आज रायबरेली में अखिलेश यादव निकाल रहे हैं।
3: दरअसल पिछले चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने रायबरेली जिले की 6 में से 4 सीटें जीत ली थी। तब ऊंचाहार सीट से 3 बार के समाजवादी विधायक मनोज पांडे ने चुनाव के बाद पाला बदल लिया और योगी सरकार में मंत्री बन गए। पिछले दिनों जिस तरह मनोज पांडे ने शिव महापुराण कथा कराई है और उसमें सीएम योगी की मौजूदगी से लेकर मनोज पांडे के लिए स्पेशल सरकारी हेलीकॉप्टर भेजने तक की खबरें सुर्खियां बनी हैं, तब से समाजवादी पार्टी ने सीट पर नजरें गड़ा रखी हैं।
6: अब रथ यात्रा कोई काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी, कोई षड्यंत्र काम नहीं आएगा।
3: लेकिन अखिलेश ने अगर रायबरेली से रणबेरी फूकी है तो इसके सियासी मायने दूर तक जा रहे हैं, क्योंकि ये वही सीट है जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सांसद हैं। खबर है कि इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस रायबरेली का मैदान समाजवादी पार्टी के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में अखिलेश का रायबरेली में रथ यात्रा कर देना कांग्रेस के दावे के खिलाफ समाजवादी होड़ नजर आती है।
7: खुद उस पीडीए में कंफ्यूज है पीडीए का, कुछ दिन के बाद कह देंगे कि पताल धरती आकाश है, तो क्या है ये, पहले खुद स्पष्ट तो हों। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है,
8: रायबरेली से शुरू कर रहे हैं इसको आपके कांग्रेस का।
7: और देखिए इस रथ को ही देखिए, भगवा में है, वो भगवा को जान रहे हैं कि भगवा ही जीतेगा।
3: अब देखना होगा कि अखिलेश की रायबरेली रथ यात्रा को लेकर कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं का क्या रुख रहता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के नेता तो समाजवादी पार्टी पर लगातार जल्द गठबंधन का सीन साफ करने का दबाव बना रहे हैं। रायबरेली से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो देखिए, एक तरफ अखिलेश के पीडीए में P4 पीड़ित के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं, P4 पीड़ित के लिए, तो दूसरी ओर A4 अल्पसंख्यक मुसलमानों को रिझाने के लिए भी सियासी फैसले ले रहे हैं। अब चुनाव में चंद ही महीने बचे हैं, तो अखिलेश ने मुसलमान वोट को रिझाने के लिए विधान परिषद में नेता विपक्षी कुर्सी जासमीर अंसारी को सौंप दी है।
9: तो अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जिस किसी से भी हमारा अलायंस होगा, हम उस दिन ऐलान कर देंगे कि हमारा अलायंस इनके साथ है और इन्हीं के साथ हम जाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात और हिस्सा लेंगे।
10: हैदराबाद से निकलकर ओवैसी यूपी में दहाड़ रहे हैं, अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं, सीधे सीधे डेडलाइन देकर कह रहे हैं गठबंधन करना है तो आगे बढ़ो, लेकिन ओवैसी से गठबंधन की चाहत समाजवादी पार्टी में नहीं दिख रही। अखिलेश ने दो टूक कह दिया है, गठबंधन तो पुराने साथियों से ही होगा।
11: समाजवादी पार्टी का जो पूर्व में गठबंधन था वही रहेगा, और मैं इधर देख रहा हूँ किसी को रथ का रंग नहीं दिखाई दे रहा है, लाल रंग उन्हें कोई दूसरा रंग दिखाई दे रहा है, किसी को किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो रथ केवल डीजल भरवाने गया था, अभी से घबरा गया आप।
10: अखिलेश ओवैसी से दूरी बनाते दिख रहे हैं, गठबंधन से इनकार करते दिख रहे हैं, लेकिन ओवैसी की सक्रियता उनकी चिंता बढ़ा रही है। मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा उन्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने मुसलमानों को संदेश देने वाला एक बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव ने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष पद से यादव चेहरे लाल बिहारी यादव को हटा दिया है, उनकी जगह मुस्लिम चेहरे मोहम्मद जासमीर अंसारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय लिया।
12: चुनाव नजदीक आ गया तो मुसलमानों के प्रति प्रेम फिर दिखने लगा, चुनाव नजदीक देख करके अब नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में जासमीर अंसारी को बना रहे हैं, एम को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमेशा समाजवादी पार्टी करती है, चुनाव से पहले मुसलमानों को लुभाती है, वोट पाती है, और फिर कैसे अखिलेश यादव जी अपने सजातीय बंधुओं को कैसे पूरी सत्ता में हिस्सेदारी देते हैं, दबदबा बनाते हैं।
10: आखिर कौन है ये जासमीर अंसारी, इनका परिचय भी जान लीजिए। जासमीर अंसारी अभी विधान परिषद में उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर से सांसद रह चुकी है। मोहम्मद जासमीर अंसारी सीतापुर के ही रहने वाले हैं। जासमीर 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। उनकी पत्नी कैसर जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में BSP के टिकट पर सीतापुर सीट से सांसद चुनी गई थी। बाद में उन्होंने 2018 में BSP छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। जासमीर अंसारी भी बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस होते हुए समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं।
5: कई लोग ये बातें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उस मुखर तरीके से मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट में सामने नहीं आ रही है जैसे वो आती रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं ये चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए सम्मेलन करती है तो दूसरी तरफ एक तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन भी करती है। तो समाजवादी पार्टी सभी वोट्स को एकजुट करने की कोशिश में कहीं मुस्लिम समुदाय के वोट को तो पीछे नहीं छोड़ रही है।
10: आपको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी की जीत का पूरा दारोमदार यादव और मुस्लिम वोटरों पर निर्भर करता है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में करीब 19.5% मुस्लिम वोटर हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 64 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 64 में से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम की भी नजर लगी है और इसलिए अखिलेश की चुनौती काफी बढ़ जाती है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
13: और इस वक्त एक और खबर वाराणसी से आ रही है। यहाँ बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक जायका रेस्टोरेंट की इमारत पर बुलडोजर चल चुका है। वीडीए ने रेस्टोरेंट को अवैध बताकर पहले ही नोटिस दे दिया था। अब खुद से निर्माण न हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा वहां पर कि अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको काबू किया जा सके। ये कार्रवाई उस दौरान हुई है जब कचहरी से संदहा चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। जायका नाम के रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला है वाराणसी में। पर यहां पर वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बार बार तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
1: क्या चीज है
0: वायरल है चाहिए
2: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
3: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता।
5: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
2: ओ नादान परिंदे बैठ
1: बैठ बैठ
2: सर, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
1: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
6: तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.

0: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
1: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
2: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
3: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
4: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 पलायन रोकने के लिए।
5: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर।
0: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।
1: 14 बार इन लोगों ने, जिनको सीसी ऑर्नामेंटल मानते हैं, डमी मानते हैं, एक मूर्ति मानते हैं, उन्होंने 14 बार 10 महीनों में लिखित विरोध और असहमति की है। संधु साहब ने, मैं भी सिर्फ तिथियां दे रहा हूं, जिस विषय में वो बोले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है, उसमें मैं भी आऊंगा, लेकिन तिथियां नोट करें। अगस्त 13 को संधु साहब ने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 में गड़बड़ी और बदला बदली हो रही है वो कोट अनकोट अनऑथराइज्ड और इलीगल है। जोशी साहब ने और संधु साहब ने, दोनों ने फॉर्म 6 का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब, कोई जवाब नहीं, सन्नाटा।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी, 97 योग्य वोटर्स को फाइनल सूची में शामिल न करने पर नहीं दिया कोई जवाब। नाम और निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मामले को सुलझाने का सही समय बताएं। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच यूपी में कांग्रेस के घर से चल पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ, रायबरेली पहुंची पीडीए की बस, योगी के मंत्री बोले खुद कंफ्यूज है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। ड्राइवर के बीड़ी पीने से यमुना एक्सप्रेसवे पर जल गई स्लीपर बस, पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा, हादसे में 9 की मौत, 19 चलान के बाद भी दौड़ती रही बस, दोनों ड्राइवर कंडक्टर गिरफ्तार। समस्तीपुर में भी जमुई जैसे जाहिलों की शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

साहिल की मौत पर आई थी बॉम्बे का यू टर्न, पहले के बयान पर मांगी माफी, जांच पूरी होने का इंतजार। आईजी बॉम्बे सुसाइड केस में क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों के बयान दर्ज किए, आगे की जांच जारी। आईजी बॉम्बे मामले में राहुल गांधी ने साहिल वाकोडे के परिवार से फोन पर बात की, न्याय का दिलाया भरोसा। सुसाइड केस पर यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रणनीति और आंदोलन की दिशा की घोषणा किए जाने की संभावना। साहिल की मौत के बाद के परिवार ने आईजी बॉम्बे प्रशासन और कुछ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। साहिल आत्महत्या मामले में भीम आर्मी ने आईटी पवई के बाहर प्रदर्शन करेंगे,

राहुल गांधी आज 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस मुख्यालय में होगी प्रेस ब्रीफिंग, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में आप नेता सत्येन जैन के घर ईडी की रेड, जीएमएडीए के दफ्तर में ईडी के 100 कर्मचारियों और सीएपीएफ के सदस्यों ने तलाशी ली। मोहाली में जीएमएडीए में ईडी की छापेमारी के बीच आपका जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसी एक और घटना, नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करते दिखे कुछ युवक कैमरे में कैद। लड़की बाइक से अपने दोस्त के साथ जगत सिंहपुर गांव के बांध पर गई थी, तभी वनचलों ने लड़की के दोस्त को खदेड़कर भगा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, बिहार में महिलाओं के प्रति सुरक्षा व्यवस्था की वीडियो जमकर आ रही है सामने। समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले में डीएसपी ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की, घटना 23 सितंबर की है। समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले पर रोहिणी आचार्य का सरकार पर हमला, महिला सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। पटना में जनसराज नेता अनिल यादव पर बदमाश ने गोलियां बरसाई, गंभीर हालत में इलाज जारी। अनिल यादव समर्थकों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में जंगल राज है, इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी सम्राट चौधरी को घेरा, कहा 7 हत्याओं के आरोपी, सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते प्रशासनिक व्यवस्था का अपराधीकरण कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल में छात्राओं से बैग टच का आरोप, शिक्षक पर एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर डीलक्स बस में आग, हादसे में 9 की मौत, हादसे के बाद यातायात तो परिवहन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल। हादसे के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, बस के मालिक ड्राइवर कंडक्टर को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया। यमुना एक्सप्रेस वे बस अग्निकांड में 9 की मौत के बाद बड़ा खुलासा, 19 चलान के बावजूद सड़क पर दौड़ती रही बस। बस हादसे पर सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। ग्रेटर नोएडा बस हादसे पर राजनाथ सिंह ने जताया अफसोस, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत की, पुरानी कहावत का किया जिक्र, बोले सेवा हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, हमारा व्यवहार लोगों को यह दिखना चाहिए कि हमें कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों ना मिले, हमारा रास्ता सेवा का ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी से सेवा यात्रियों ने उनके अनुभव साझा किए, इस यात्रा में लगभग 10,500 युवा और विभिन्न टीमें शामिल हैं। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता की, केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। आज चिंतन बैठक का दूसरा दिन सुधारों पर विशेष ध्यान देने के साथ शासन के पहलुओं पर होगी चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे वरुण विहार और नैमिष नगर योजना का भूमि पूजन। साथ ही सीएम योगी 2,166 करोड़ की लागत से 5 आवासीय अपार्टमेंट का करेंगे शिलान्यास, आगरा एक्सप्रेसवे के पास कार्यक्रम आयोजित। संत कबीर नगर में अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा समाजवादी सरकार ने अयोध्या के विकास की अनदेखी की है। ईसीआई पर अखिलेश यादव का तंज, कहा मुंह नुचवा तो सुना था, अब चुनाव नुचवा भी आ गए हैं, चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी ने फूंका यूपी 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल, रायबरेली से रथ यात्रा का अखिलेश यादव ने किया आगाज। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर कहा, रथ यात्रा काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं करेगी। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग अब याद करते हैं 5 वर्षों की सरकार के कालखंड को, तो आज भी लोगों के चेहरे पर तनाव आ जाता है। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा यूपी में समाजवादी पार्टी का उद्देश्य गुंडागर्दी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अयोध्या में महंत राजकुमार दास की मध्यस्थता से रामदेव ब्रिजभूषण की मुलाकात, पतंजलि उत्पादों पर विवाद सुलझाने की पहल। रामदेव बाबा बातचीत के बाद बोले, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मन में कुछ भ्रांतियां थी जो बातचीत के बाद दूर हो गई। यूपी में एआईएमआईएम का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा चुनाव के वक्त याद आता है मुसलमान, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, 5 मिनट के लिए टोपी लगा करके 5 साल के लिए टोपी पहनाना अब नहीं चलने वाला। यूपी चुनाव पर एआईएमआईएम ने कहा, ये चुनाव के अगले दिन ही हमको हटा देंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक पर सियासी डकैती डालना है, हिस्सेदारी देना नहीं। केरल में पिनराई विजयन, बेटी वीणा दामाद रियास पर ईडी रिपोर्ट की

जांच के लिए एसआईटी का गठन। आस्था कुंज सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक्शन दिल्ली पुलिस, पार्कों में गश्त बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जगह जगह नाकेबंदी की। केपीएससी स्कैम में एसआईटी जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती कर्नाटक सरकार, 48 घंटे में फैसला। नीट में कट ऑफ घटाने के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीजीआई ने सुनवाई की कही बात। हैदराबाद में छापेमारी, 730 किलो संदिग्ध मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट जब्त, एक गिरफ्तार। झांसी में अगोरी बाबा के भेष में सराफा दुकान पहुंचा शख्स, बातों में उलझाकर की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मेरठ में करेंसी बॉक्स में मिले लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोट, 186 शाखाओं से जुड़ा है नेटवर्क। यूपी के सुल्तान में छात्रा को कार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे के बाद चालक फरार। गाजियाबाद में खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद मोहन नगर होटल की जांच, पैंट्री बंद करने का नोटिस जारी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस की स्नैचर से मुठभेड़, चोरी की बाइक, देसी तमंचा बरामद। दिल्ली के शक्तिनगर में कार पलटी, ई रिक्शा को बचाने के दौरान हुआ एक्सीडेंट। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों से भरी बस में लगी आग, 30 से ज्यादा कर्मचारी बाल बाल बचे। उज्जैन में चल रहे समारोह में भीड़ के बीच पटाखों से किया खतरनाक करतब, गाड़ी के ऊपर जलाए पटाखे, टली बड़ी घटना। नौगछिया में कोसी गंगा के कहर से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, बाढ़ के पानी बही किसानों की मेहनत। आंध्र प्रदेश के अलूरी में भारी बारिश से नदी में उफान, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। हैदराबाद में गणेश विसर्जन ड्यूटी के दौरान एसआई को बाइक से मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत। हैदराबाद में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना मेडिकल डिग्री लाइसेंस के चला रहा था क्लिनिक। हैदराबाद में करमन घाट मंदिर के पास प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, 38 यात्री सुरक्षित। सुल्तानपुर में एक तरफा प्यार में शादीशुदा शख्स को मारी गई गोली, लड़की के भाइयों पर गोली, मारने का लगा आग। भोपाल में वकील पुलिस विवाद पर बवाल, थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रा से छेड़छाड़ और कार में खींचने की कोशिश का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली के वजीराबाद में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कुख्यात गोगी गैंग के शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। नागपुर में 2 परिवारों के बच्चों के बीच विवाद ने लिया हिंसक मोड़, लोहे की रॉड से हत्या। सोनीपत में दिनदहाड़े ठगी का मामला, पैसों की माला लेकर फरार होने वाला गिरोह सक्रिय। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हिट एंड रन मामले में थार चालक गिरफ्तार, हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की हुई थी मौत। एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत की शानदार शुरुआत, रोशी बीना देवी ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, रचा इतिहास। 2018 एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं रोशी बीना, एशियाई खेलों में लगातार 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस इवेंट में भारत का ये 14वां मेडल, इससे पहले भारत एक गोल्ड मेडल जीत चुका है, ये 6ठा सिल्वर मेडल है। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने मेंस डबल्स कल इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया, देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे, टीम होटल में जोरदार स्वागत। तेलुगु एक्शन ड्रामा द पैराडाइज रिलीज, श्रीकांत उरेला ने के डायरेक्शन में बनी है फिल्म, में अहम भूमिका में है मोहन बाबू। सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की माचवी फिल्म द विमान कल होगी रिलीज। 25 सितंबर को थिएटर्स में आ रही है महाकाव्य श्री रामायण कथा, अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। अवेंजर्स एंड गेम एंड कोर भी कल दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही है, दिसंबर में डूम्स डे से पहले मार्वल फैंस के लिए तोहफा। एक बार फिर साथ आई है इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी, फिल्म गन मास्टर G9 का पहला गाना साना बनाया आपने लॉन्च। प्रीति चोपड़ा की सीरीज शक ट्रस्ट नो वन कल से होगी स्ट्रीम, एक मां के अपने खोए बच्चे की खोज पर है सीरीज। अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख के अधिकारी से सजी वेब सीरीज ओंकार इस हफ्ते लॉन्च। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म डोन भी शाय हो रही रिलीज, कल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। ओटीटी पर आ रहा रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2, इस नए सीजन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग करेंगे होस्ट। मराठी सिनेमा की बहु प्रतीक्षित फिल्म अफरा तफरी का ट्रेलर हुआ रिलीज, कॉमेडी का तड़का लेकर आ रहे 3 भाइयों की कहानी। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात मार्को रूबियो से हुई, इस दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में हुई बातचीत पर दी जानकारी, सैंक्शन रशिया एंड ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने दोहराया। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की बैठक में हिस्सा लिया, वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका और उनकी प्राथमिकताओं को लेकर भारत का पक्ष रखा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस प्रभार समेत 47 देशों के नागरिकों को युद्ध के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। व्लादिमीर पुतिन पर निशान साधते हुए जेलेंस्की ने कहा, पुतिन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की और इसे दुनिया भर में फैलाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर, डोनाल्ड ट्रंप से शानदार स्वागत किया। जरान फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी नजर आईं। डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल तोड़ा। उन्होंने खुद अमेरिकी एयरफोर्स एंड्रयूज एयरबेस पहुंचकर जिनपिंग का वेलकम किया। 3 दिन के इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत के साथ कई औपचारिक कार्यक्रम भी शामिल। आज एक स्टेट डिनर का आयोजन। अमेरिका और चीन के बीच बैठक को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा अमेरिका और चीन के बीच के संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। सेनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष ने जिनपिंग के दौरे का किया विरोध। बोले, ट्रंप की चीन के भारी सैन्य विस्तार और ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में ट्रंप पर जमकर पलटवार किया। पेजेश्कियान ने कहा, ईरान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, साथ ही अमेरिका और इसराइल पर ईरानी धरती पर हमला करने का आरोप लगाया। पेजेश्कियान ने अपने संबोधन के दौरान मीनार स्कूल हमले की पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का किया जिक्र। पेजेश्कियान ने अपने संबोधन में कहा कि एटमी एनर्जी ईरान का हक है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने इसराइल पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इसराइल अलग शहरों और प्रांतों में इलाकों को निशाना बनाता है और हत्याएं करता है।

0: गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआर के दौरान 97 ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके जिन्हें स्थानीय चुनाव अधिकारी ने दस्तावेज और आपत्तियां सुनने के बाद योग्य माना था। इसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में किया है, लेकिन जब आज तक ने गोवा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजय गोयल से नामों को मतदाता सूची में दोबारा शामिल करने को कहा तो उन्होंने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले अपने रिकॉर्ड की जांच करेंगे और फिर जवाब देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मतदाता सूची पोर्टल पर नामों को अपडेट करने के संबंध में केंद्र से कोई जवाब मिला है तो उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। संजय गोयल से बोलने से इनकार करते हुए कहा कि घटना 8 महीने पहले की है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि जब बार बार आज तक ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और आज तक की टीम को वहां से निकालने की कोशिश की।
1: सर इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर
2: बात नॉट हैव एनी नॉलेज राइट नाउ।
1: आपके पास नॉलेज बट सर कुछ जो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड
1: पर सर 97
2: मैं अपने रिकॉर्ड चेक करूंगा। अभी मैंने नहीं देते ना रिकॉर्ड्स, इट इज 8 मंथ बैक मैटर।
1: 8 मंथ बैक पर अभी इशू कैसे आ गया?
2: चेक विद माय रिकॉर्ड। ओके
1: बट जो सामने
2: चेक विद माय रिकॉर्ड आपको समझ नहीं आ रहा बार बार बार रिपीटिंग सेम क्वेश्चन।
1: बट तो इशू तो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
1: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या? सर जो 97 नाम है जुड़वाने
2: के आई डू नॉट हैव एनी नेम विद मी। अभी मैंने आपको बता दिया प्लीज, ठीक है ना? सी आई एम अदर स्टूडेंट, अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड देन यू कम बैक।
1: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। पर आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर।
2: इट वॉज रॉन्ग टू लेट यू एंटर द कैबिन।
1: इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर
2: बात नॉट हैव एनी नॉलेज राइट नाउ।
1: आपके पास नॉलेज
2: विद माय रिकॉर्ड
1: बट सर कुछ जो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड
1: पर सर 97
2: मैं अपने रिकॉर्ड चेक करूंगा। अभी मैंने नहीं देते ना रिकॉर्ड्स, इट इज 8 मंथ बैक मैटर।
1: 8 मंथ बैक पर अभी इशू कैसे आ गया?
2: चेक विद माय रिकॉर्ड। ओके
1: बट जो सामने
2: चेक विद माय रिकॉर्ड आपको समझ नहीं आ रहा बार बार बार रिपीटिंग सेम क्वेश्चन।
1: बट तो इशू तो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
1: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या? सर जो 97 नाम है जुड़वाने
2: के आई डू नॉट हैव एनी नेम विद मी। लेते
1: बट
2: अभी मैंने आपको बता दिया प्लीज, ठीक है ना? सी आई एम अदर स्टूडेंट, अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड देन यू कम बैक।
1: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। पर आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर।
2: इट वॉज रॉन्ग टू लेट यू एंटर द कैबिन। यू आर एक्टिंग टू रिजिड अननेसेसरली।
1: ओके
0: साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, जाहिर तौर पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस बारे में जवाब नहीं देंगे, लेकिन ये कहना कि उन्हें इस मुद्दे के बारे में पता नहीं है, वो रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो पहले इस इशू के बारे में जानेंगे, देश का सबसे अहम मुद्दा है, 2 दिनों से चर्चा में है, उन्हें इस बारे में मालूम नहीं, कोई अच्छी सी एक्सक्यूज तो ढूंढ कर लाते। सरकारी अधिकारी की तरह घिसा पिटा जवाब दे रहे हैं, ऊपर से बेइज्जत भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको कैबिन के अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था।
3: देखिए मामला बड़ा साफ है। 21 फरवरी को गोवा की अंतिम लिस्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई एसआईआर के बाद में, लेकिन उसके बावजूद भी जो नाम उसमें इंक्लूड नहीं किए गए वो री इंक्लूड करने को लेकर इन्हीं के दफ्तर से, सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से ही बार बार केंद्रीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके आईटी सिस्टम को मेल भेजे गए थे कि हमारे ईआरओज इसमें री इंक्लूड नहीं कर पा रहे जो उनको अधिकार होना चाहिए ईसीआई नेट के जरिए री इंक्लूड करने का, क्योंकि उनके सामने हियरिंग हो चुका है और ये वोटर्स एलिजिबल पाए गए हैं तो इनका नाम दोबारा इंक्लूड किया जाए। लेकिन फॉर सम अननोन रीजन जो उनका ओरिजिनल बयान रहा था कि हमें नहीं पता कि क्यों सेंट्रल ऑफिस ने हमें वो री इंक्लूड करने के अधिकार क्यों नहीं दिए, क्यों इनको री इंक्लूड नहीं किया गया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब ये खबर छपने के बाद एक बार फिर हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या अब कम से कम जब ये पाया गया है कि वो एलिजिबल वोटर्स हैं, क्या उनके नाम दोबारा ऐड किए जाएंगे नहीं जाएंगे, उसका कोई जवाब वो दे पा रहे। और कल भी जब चुनाव आयोग के तरफ से जो प्रेस रिलीज निकाला गया था उसमें उन्होंने डेटा सेफ्टी का कारण दिया था, उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि डेटा सेफ्टी के जरिए हो सकता है कि उसके वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन रीजनल ऑफिसर्स खुद कहती है कि ईआरओ को ही अधिकार होता है मतदाता सूची बनाने का, इन सूचियों में किसी व्यक्ति को ऐड करना है, डिलीट करना है या करेक्शन करने हैं, तो उसके अधिकार भी उनके पास होने चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रहे थे। इस मुद्दे से यह बात साफ है कि गोवा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी कहा गया है कि इसके बारे में फिलहाल कोई ना कुछ नहीं कहा जाए। हालांकि चुनाव आयोग की कल की प्रेस रिलीज में इस बारे में इसका कोई जिक्र स्पेसिफिक नहीं किया गया कि उन 97 वोटर्स का 97 वोटर्स का क्या हुआ, और सिर्फ 97 वोटर्स की बात नहीं है, उनके बारे में चिट्ठी लिखी गई वो बात सामने
0: है। प्रेस रिलीज में जिक्र होगा भी क्यों, क्योंकि फेस सेविंग एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है, इस तरह के अधिकारी जो है जाहिर तौर पर दबाव में दिख रहे हैं। संजय गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए ध्यान से।
1: सर इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर
2: आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज राइट नाउ,
1: आपके पास नॉलेज बट सर कुछ जो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड,
1: पर सर 97
2: मैं अपनी रिकॉर्ड चेक करूंगा, अभी मैंने नहीं देते ना रिकॉर्ड्स, इट इज 8 मंथ बैक मैटर,
1: 8 मंथ बैक, पर अभी इशू कैसे आ गया,
2: चेक विद माय रिकॉर्ड ओके,
1: बट जो सामने
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार आई विल रिपीटिंग सेम क्वेश्चन,
1: बट तो इशू तो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
1: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या, सर जो 97 नाम है जुड़वाने
2: के, आई डू नॉट हैव एनी नेम विद मी, लेके चले जाएंगे,
1: बट
2: अभी मैंने आपको बता दिया प्लीज, ठीक है ना, सी आई एम अदर वस्तू डू, अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड देन यू कम बैक,
1: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। पर आपके ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर,
2: इट वॉज रॉन्ग टू लेट यू एंटर द कैबिन,
1: इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर
2: आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज राइट नाउ,
1: आपके पास नॉलेज
2: विद माय रिकॉर्ड,
1: बट सर कुछ जो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड,
1: पर सर 97
2: मैं अपनी रिकॉर्ड चेक करूंगा, अभी मैंने नहीं देते ना रिकॉर्ड्स, इट इज 8 मंथ बैक मैटर,
1: 8 मंथ बैक, पर अभी इशू कैसे आ गया,
2: चेक विद माय रिकॉर्ड ओके,
1: बट जो सामने
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार आई विल रिपीटिंग सेम क्वेश्चन,
1: बट तो इशू तो
2: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
1: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या, सर जो 97 नाम है जुड़वाने
2: के, आई डू नॉट हैव एनी नेम विद मी, लेके चले जाएंगे।
0: Why you repeating the same question? इनसे भी पूछा जाना चाहिए Why you repeating the same answer? वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
8: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम
9: EU सोच बदलो और बैंक भी
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस
12: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा
13: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर
14: मेरे पास एक आइडिया है
12: क्या
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा TMT बार से जो बना है
15: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आई हैव वन एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है
13: ओ नादान परिंदे बैठो मेरा नाम सिंबल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है
17: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा
18: तो कौन सी बनानी है
19: एकदम
20: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
21: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी
13: आई लाइक दिस ओनली

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चुनाव आयोग में गड़बड़ी और असहमति पर बवंडर के बीच आज तक के सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी। 97 योग्य वोटर्स को फाइनल सूची में शामिल न करने पर नहीं दिया कोई जवाब। नाम और निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मामले को सुलझाने का सही समय बताएं। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच यूपी में कांग्रेस के गढ़ से चल पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। रायबरेली पहुंची पीडीए की बस, योगी के मंत्री बोले खुद कंफ्यूज है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। ड्राइवर के बीड़ी पीने से यमुना एक्सप्रेस वे पर जल गई स्लीपर बस, पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा, हादसे में 9 की मौत, 19 चलान के बाद भी दौड़ती रही बस। समस्तीपुर में भी जमुई जैसे जाहिलों की शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी।

0: नमस्कार और माइस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यमुना एक्सप्रेस वे पर ऐसी घटना घटी है जिसमें 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। जी हां, खबर दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा की है। यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। देखते देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। ज्यादातर यात्री कूदकर बस से भागे, लेकिन 9 लोग बस के अंदर ही फंस गए और उनकी जान चली गई। ये बस दिल्ली से महोबा जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिस बस में आग लगी उसका मालिक मध्यप्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है। नोएडा पुलिस ने बस के दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा बस हादसे, पुलिस का एक्शन, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगर यात्रियों की बात माने तो ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। वो बार बार कहते रहे कि बस रोक लीजिए, लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी। शिकायत को सुनकर वो अगर सतर्क हो जाते तो 9 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन शिकायत करने के बावजूद ड्राइवर कंडक्टर हंस के इस बात को टाल गए। एफआईआर के मुताबिक दोनों यात्रियों को कहते रहे कि मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे।
1: शोलों में रहती बस में 9 जिंदगियां खत्म हो गई। जो लोग दिल्ली से महोबा के सफर पर निकले थे उनमें से 9 यात्री अकाल ही जिंदगी गवा बैठे। हादसे के वक्त की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बस में आग लगी तो अफरा तफरी मच चुकी थी। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है।
2: ये ब्लास्ट हो रहा है रोड पे।
1: इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। सवाल उठ रहा है कि हादसे की खबर लगते ही क्या सभी यात्रियों को बचाया जा सकता था? क्या उन्हें सही सलामत बस से उतारा जा सकता था? और अगर ऐसा मुमकिन था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसमें कोई शक नहीं कि पहली नजर में बस में मौजूद स्टाफ ही इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन हुआ क्या ये भी जान लीजिए। रात करीब 11:30 बजे बस यमुना एक्सप्रेस वे पर 33वें किलोमीटर के पास पहुंची, जहां ये हादसा हुआ। उससे पहले ही यात्रियों ने बस ड्राइवर के केबिन से बदबू आने की शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी बस ड्राइवर और वहां मौजूद कंडक्टर बेफिक्र रहे। और तो और वो बीड़ी सिगरेट पीते रहे। जब ड्राइविंग सीट की तरफ से अचानक आग की लपटें निकली तो यात्री चीखने लगे, बस रोकने की गुहार करने लगे, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ने बस को रोककर जांच करने की जहमत नहीं उठाई। दोनों आपस में हंसते रहे और लोगों को धमकाते रहे, मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे।
3: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे।
4: बस चल रही थी या रुक गई?
3: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के।
4: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मुट्ठी पड़ी रहे, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चल रही।
4: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
4: ड्राइवर के पास से आग लगी है,
5: वो बस छोड़ के भाग गया।
3: आगे से आग लगी है।
4: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था ऐसा?
3: बस सो रहे,
4: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: ये तमाम आरोप FIR में भी दर्ज हैं। उसके मुताबिक लापरवाही की वजह से कुछ ही पलों में बस के अंदर धुआं भर गया। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार हो गए, यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया। बस में करीब 35 यात्री सवार थे, उनमें से ज्यादातर यात्री जान बचाकर बस से बाहर निकले। उनमें से कुछ यात्रियों ने कूदकर जान बचाई, लेकिन 9 यात्री बदकिस्मत रहे। वो अंदर ही फंसे रह गए और आग की लपटों में झुलसकर उनकी जान चली गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि बस में रखा आग बुझाने वाला सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा था।
2: इस बस में बस खामियां ही खामियां थी, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसका पालन किया हो। सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मैनुअल से बोलूंगा कि एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल बस के पीछे एक ये फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है। आरोप यह है कि जब बस में आग लगी तो ये सिलेंडर काम ही नहीं किया और लोगों ने इस सिलेंडर से शीशे तोड़ने की कोशिश की और यहां से निकलने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखें तो ये पीछे की सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर वो लोग हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाए। इसकी वजह यह थी कि यहां पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। आप दूसरी इस तरफ देखें तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है स्लीपर का, इसको इतनी आगे तक बढ़ा दिया गया है कि अभी इस वक्त जब मैं और इमानुएल यहाँ बस के अंदर हैं, हम खुद इस बस में चलने में हमें दिक्कत हो रही है, हमारे कंधे यहाँ आजू बाजू टच हो जा रहे हैं। तो आप सोचिए जो लोग उस समय जो दृश्य होगा, जो लोग पैनिक में होंगे, निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, वो कैसे निकल पाए होंगे।
1: हादसे के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस के अंदर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अधिकारियों ने बस में कमियों और खामियों का पता लगाने की कोशिश की। जांच के दौरान बस की तकनीकी हालत को भी देखा गया। मामले में और खुलासे होते जा रहे हैं। अब सामने आया है कि जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा आज तक।
0: अब आपको सुनवाते हैं शिकायतकर्ता का वो बयान जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। ये वही शिकायतकर्ता है, उनसे बात की आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने।
5: तो सुनील जी, फिर जब बस में आग लगी तो क्या हुआ, कैसे बस में आग लगी थी?
6: आधे लोग नींद में थे, आधे लोग जाग रहे थे। ड्राइवर अपनी गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कर रहे थे। आप उसको दो चार बार लोगों ने कहा भैया गाड़ी रोको, जैसी आ रही है गाड़ी। उसने लेकिन गाड़ी रोकी नहीं। बस जब तक काम काफी बढ़ गया, उसने जब ज्यादा धुआं निकलने लगा, जब उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी ड्राइवर ने रोकी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद रोकी, काफी नुकसान हो चुका था।
5: तो वो क्या बीड़ी सिगरेट भी पी रहे थे?
6: अब स्मेल तो आ रही थी सर, अब पता नहीं स्मेल बीड़ी सिगरेट की थी कि काय चीज की थी। किसी को निकाल सके, लेकिन वहाँ कुछ आई नहीं। कंडक्टर वो तो छोड़ के भाग गया सिलेंडर, तब उसका सिलेंडर उठा के पीछे के कांच में मारा, 2-3 कांच तोड़े।
5: तो क्या मतलब ड्राइवर कंडक्टर भाग गए थे?
6: जब आग तेज हो गई तो फिर सब लोग भाग गए, कोई नहीं था वहां पे।
5: तो कैसे
6: सवारी सवारी सवारी है भर्ती बस।
5: तो कैसे तोड़ा गया फिर वो बस का दरवाजा?
6: उससे तोड़ा गया जो सिलेंडर होता ना आग बुझाने वाला। उससे बुझी नहीं रही थी आग। तो उसी को उठा के फिर कांचों में मारा, जब वो कांच टूटे, लेकिन अंदर से इतना तेज धुआं निकल रहा था कि कुछ चिल्लाते रहे, कोई किसी ने सुना ही नहीं। ना अंदर आवाज जा रही थी कि क्या हो रहा था, लेकिन महसूस नहीं हुआ कि कोई अंदर है, लेकिन उनकी आवाज ही सब बेहोश हो गए होंगे इतनी देर में तो धुएं के चक्कर में।
5: अरे अच्छा, तो मतलब बस के अंदर जो आग बुझाने वाला जो सामान होता है मशीन, उससे आग बुझ नहीं रही थी?
6: मतलब कितनी स्पीड से आग फैली सर, आग बुझाने का मौका ही, मतलब उससे आग नहीं बुझी।
5: अच्छा, तो फिर उसी गैस सिलेंडर से आप लोगों ने दरवाजा तोड़ा और बचाने की कोशिश?
6: दरवाजे जो कांच पांच तोड़े पीछे के, लेकिन वो टूट गए, लेकिन इतनी तेज धुआं निकल रहा था उसमें से अंदर गाड़ी में से कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अंदर झांक के भी देखा, चिल्ला के भी देखा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर वो आग इतनी तेज फैलने लगी, हम लोगों को वहां से भागना पड़ा।
0: तो यात्रियों के आगाह करने पर अगर बस के ड्राइवर कंडक्टर सतर्क हो जाते तो शायद इतना बड़ा और जानलेवा हादसा ना होता। ऐसी तमाम लापरवाही को लेकर पुलिस ने शिकंजा कसा है और जांच शुरू की है।

0: हादसे की ये तस्वीरें देखिए। आधी रात को यात्री बेबस थे, वो अपनी आंखों के सामने 9 जिंदगियों को खत्म होते देख रहे थे। बस शोले में तब्दील हो चुकी थी। बस में सवार एक शख्स जैसे तैसे जान बचाकर बाहर भागा और फिर उसने ये वीडियो बनाया। बस में आग की लपटें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आग की लपटों में घिरी बस के आसपास यात्री भी दिखाई दे रहे हैं। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। बस में सवार यात्री सोने की तैयारी में थे, तभी यात्रियों को आग लगने की आहट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही सभी को इसकी खबर लगी, तुरंत अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग गए। लोगों के सामने भागने और खुद अपनी जान बचाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ड्राइवर ने अगर बस को सही समय पर साइड कर दिया होता तो शायद यात्रियों की जान बच सकती थी। इस मामले में मुख्य आरोपित बस चला रहा ड्राइवर और कंडक्टर हैं। जानकारी के मुताबिक बस चलाने वाले ड्राइवर का नाम पवन कुमार है, जबकि योगेश दीक्षित नाम का एक और ड्राइवर भी बस में मौजूद था। वहीं कंडक्टर का नाम रोहित बताया जा रहा है और इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लापरवाही की खबरों के बीच प्रशासन का दावा है कि बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ और बस में तेजी से आग फैल गई।
1: पुलिस की व फायर सर्विस यूनिट द्वारा अथक प्रयास करते हुए बस के अंदर जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में 9 व्यक्ति बस के अंदर जलने, दम घुटने के कारण दुखद मृत्यु अवस्था में मिले। थाना जेवर पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं। संदर्भित घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
0: इस हादसे में 9 लोगों की जान गई, एक महिला यात्री जख्मी हुई। अन्य यात्रियों को प्रशासन ने उन्हें उनके शहर तक भेजने का इंतजाम किया।
2: महिला है जिसका अभी उपचार चल रहा है आरोग्य अस्पताल में, तो इसमें समय से सभी कार्रवाइयां हुई, पुलिस प्रशासन मौके पे था और बाकी जो जिनकी मृत्यु हुई उन उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम और उनके परिजनों से संपर्क करके जो आगे कार्रवाई की जाएगी।
3: और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की मौत हो गई, उसका मालिक मध्यप्रदेश का रहने वाला है, जबकि बस का रजिस्ट्रेशन बिहार के मधुबनी का है। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट राजस्थान में बना है। प्रदूषण प्रमाण पत्र हरियाणा का है। दिल्ली से बस चल रही थी और यात्रियों को लेकर महोबा जा रही थी। इतने राज्यों में कनेक्शन होने के बावजूद किसी अधिकारी की नजर बस के संचालन में हो रही लापरवाही पर नहीं पड़ी। और दिल्ली से बिहार जाने वाली बस के सुरक्षा पैमाने का रियलिटी टेस्ट भी आज तक की टीम ने किया। एक बस में ना तो एग्जिट था, ना ही शीशे तोड़ने की व्यवस्था थी। हालात ऐसे दिखे कि आग लगी तो निकलना मुश्किल हो जाए। दिल्ली के मजनू का टीला से संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट देखिए।
4: अच्छा, यहाँ तक जाने के लिए क्या करना होगा? ये अपने आप में संघर्ष है और पहले तो इतना ऊंचा।
5: मैं इमरजेंसी एग्जिट में आ चुका हूँ।
4: तो दिल्ली से बिहार जाती बस में अगर आग लगती है, लोगों को निकलना हो तो एक बार में एक आदमी बहुत आराम से तो नहीं यहाँ तक आना पड़ेगा। फिर निकलने के लिए मेरे यहाँ पे माइक है, चले माइक रख देते हैं। महिलाएं, बच्चों को, बुजुर्गों को आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। आग वाला सिलेंडर जो आग बुझाते कहाँ है? कहाँ पे जरा दिखाइए, आइए। कितनी मुश्किल से निकलेगा, आप सोचिए कि जहां से लोगों को बच के निकलना है वो पूरी तरह से सील है। ये दिल्ली से बिहार जाने वाली बसों का हाल है, ये पूरी तरह स्क्रू ड्राइवर से सील किया हुआ है, ये नहीं खुलेगा। और जो इमरजेंसी एग्जिट है वो कहाँ है? ये है, जिसको आपने देखा, मैं पीछे के रास्ते गया था। और यहाँ तक चढ़ने के लिए आपको इस तरह से लटकना पड़ेगा। पहले आप यहाँ जाएंगे, उसके बाद तब आप यहाँ तक पहुंचेंगे। और फिर उस रास्ते जाने बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी एक्सरसाइज थी। दिल्ली से बिहार 70-80 लोगों को ले जाने वाली ये बस चलती फिरती, कहते ना कि हादसों को न्योता देने वाली बस है। सुविधाओं के नाम पे भले सब कुछ मिल जाए, तैयारियों के नाम पर जो है वो आपने देख लिया। इमरजेंसी एग्जिट के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा है, तो अगर इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे अगर होंगे आप उनके संघर्ष को समझ लीजिए। सिलेंडर के नाम पर एक हमें बर्निंग सिलेंडर दिखा जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, जबकि सिलेंडर का आकार इससे बड़ा होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट के लिए किसी भी शीशे पर हैमर नहीं है, इमरजेंसी मार्क है कि यहां से आप निकल सकते हैं, लेकिन वो निकलेंगे कैसे, उसके लिए शीशा तोड़ना है। शीशा हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता, उसके लिए हैमर होना चाहिए। वो हैमर अनिवार्य होता है, वो हैमर भी नहीं है। ये दिल्ली से बिहार की दूरी लगभग 13-14 घंटे में कई बार तय कर ली जाती है। हाईवे पर रफ्तार से दौड़ती हैं गाड़ियां और अगर आपात स्थिति हुई, आग लगी, धुआं भरा, तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
3: जिस बस में आग लगी और 9 जिंदगियां खत्म हो गई, उसी कंपनी की दूसरी बस का जायजा लेने आर्थिक संवाददाता सुशांत मेहरा दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचे।
6: कल्पना, बस सर्विस आपको यहाँ पर नजर आएगी। दरअसल यही वो बस सर्विस है जो कि नोएडा में जिस तरीके से हादसा हुआ वो भी इसी कंपनी की बस थी। इसका भी रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। ये बस है, स्लीपर बस है और इसकी क्या स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बस के ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था है और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंडक्टर के बैठने की व्यवस्था है और इसका पूरा रियलिटी चेक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बस में एंटर करते के साथ ही लिखा है नो स्मोकिंग, यानी धूम्रपान करना साफ मना है राजकल्पना। लेकिन उसके बावजूद जो आरोप लग रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर कि किस तरीके से ड्राइवर जो है वो स्मोकिंग और तंबाकू के अंदर लगातार कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ अगर आप चलेंगे तो अंदर की तरफ अगर आप बस देखेंगे तो बस में जो एग्जिट गेट होना चाहिए फायर एग्जिट अगर कोई हादसा हो जाता है उसकी स्थिति क्या है, ये देखिए ये गेट है फायर एग्जिट का लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर लॉक है। यहाँ पर बकायदा एक सीट जो है वो बना दी गई है, अगर कोई हादसा हो लोगों अगर फंस जाए या बस में कोई आग लग जाए तो कैसे यहाँ से निकलेंगे। ये गेट पूरी तरीके से आपको बंद नजर आएगा और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हैमर जो है वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा ताकि शीशे तोड़ करके आदमी बाहर निकल सके। आप ये सोचिए कि तमाम ये स्लीपर कोच है इसमें भी बकायदा शीशे जो है वो लगे हैं। अंदाजा लगाइए जब ये पूरा हादसा नोएडा के अंदर हुआ था लोग अंदर फंसे हुए थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस तरीके से इस पूरी बस की अगर आप रियलिटी चेक करेंगे तो किस तरीके के हालात है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर चढ़ने का ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर भी बकायदा जो गद्दे हैं वो लगा दिए गए हैं जबकि यहाँ पर इस तरीके से गद्दे जो है वो नहीं लगा सकते, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए खड़े होने की, लेकिन यहाँ पर भी एक पूरा कोच जो है वो लगा दिया गया ताकि आदमी सो सके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये गेट और है, इस गेट के ऊपर किस तरीके से अगर कोई हादसा होता है तो कैसे कोई अपनी जान जो है वो बचाएगा, इस पर भी पूरी तरीके से एक पूरा कोच यहाँ पर लगा दिया गया, सोने की व्यवस्था कर दी गई, एक बेड लगा दिया गया और यहाँ से रास्ता कैसे कोई व्यक्ति अगर फंसे तो कैसे अपनी जान बचाए हम भी कोशिश करेंगे। ये देखिए कि ये कैसे खुलता है, ये पूरी तरीके से लॉक है।
3: आर्थिक संवाददाता अमित भारद्वाज आनंद विहार स्थित बस अड्डे पहुंचे और वहां जाकर कई बसों का हाल देखा।
7: वहां एक नॉब है, वो नॉब इतनी बुरी तरह से लगा हुआ है कि वो खुल नहीं रहा है और जहां जो इमरजेंसी एग्जिट है बहुत विपरीत स्थिति अगर आपके बस में पैदा हो जाती है तो स्थिति से बचने के लिए आपको जान बचाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। यहां पे शायद एसी का डक्ट है वो भी खराब हो रखा है, मैं कहीं कोई हथौड़ा नहीं देख पा रहा हूं। अगर हमारे वीडियो सहयोगी को कोई हथौड़ा दिख रहा हो तो वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, फिलहाल में मेरी नजर में तो हथौड़ा मुझे किसी सीट पे यहां दिख नहीं रहा। हथौड़ा क्यों? क्योंकि अगर यमुना एक्सप्रेस वाले एक्सप्रेसवे जैसी स्थिति बनती है कि आग लग जाए कुछ हो जाए तो कांच तोड़ना पड़ेगा, कांच तोड़ेंगे कैसे, हथौड़ा तो है नहीं यहाँ पे, कहीं हथौड़ा नहीं है। ये दरवाजा आप क्योंकि यहाँ आपने एक सीट दे दिया है तो दरवाजे का भी जो हाल है वो हम देखते हैं। इमरजेंसी के हालात में आप ये दरवाजा आपको खोल के और फिर यहां से कूदना है, हाइट से आपको कूदना पड़ेगा यहां से, तो इस हालत में भी हो सकता है आपको चोट आए। और ये तो अच्छी स्थिति है कि ये दरवाजा खुल गया है, कई बसों में तो दरवाजा खुलता ही नहीं है, ऐसे हालात बने। आप क्या बता रहे हैं, इस तरफ भी दरवाजा है, यहां पे भी दरवाजा है, दरवाजा खुल जाएगा? अच्छा देख लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ। ये इमरजेंसी एग्जिट है, ये रहा, ये दरवाजा खुल गया, तो ये आप अगर इस तरह बसों में हो तो हो सकता है कि आपके लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि हमने बीते महीनों में जो हालात देखे हैं ये मॉडिफाइड बसों की, वो स्थिति ठीक नहीं रही है, कहीं दरवाजा नहीं खुलता है, कहीं पे हालात ऐसे होते हैं कि आप यहाँ तो चलिए एक जगह छीन ली गई है, खा ली गई है इमरजेंसी वाली जगह जो है पीछे की एग्जिट की, उसके बाद भी दरवाजा खुल गया, कई बार तो नॉब ही नहीं खुल रहा होता, ये हालात होते हैं।
3: अब आपको दिखाते हैं जयपुर का हाल, वहां बसों के संचालन में कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार।
8: दौर से आई हुई बस है, इसके अलावा हम आपको इमरजेंसी एग्जिट के पास लेकर चल रहे हैं कि क्या परिस्थिति है और किस तरह से वहां पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट जहां पर ये बेड लगा दिया जाता है क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं ये, और इस तरह से ये बेड यहाँ पर लगा हुआ है।
9: जी सर लगा रखा है।
8: और दूसरा इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है?
9: पास में ही सर,
8: पास में ही है ये वाला।
9: हाँ सर ये वाला।
8: यहाँ तो बेड लगाना मना है।
9: जी वो तो खाली रहता, सवाई नहीं रहती सर उसमें।
4: तो ये बेड तो लगा हुआ है?
9: लगा रखा सर, तो हम सोने के लिए लगाया था, अभी हमने अभी लगाया सर।
4: ये बेड तो लगा हुआ है परमानेंट?
9: जी सर।
4: तो ये क्या मालिक मना नहीं करता? नहीं, मालिक कहता है एक्स्ट्रा लगा लो।
9: नहीं नहीं बोला सर, किसने नहीं बोला, मालिक ने किसी ने नहीं बोला।
4: कितना किराया लेते वो
9: सर? 500-600 रुपए किराया होता सर ऑनलाइन टिकट।
4: इंदौर से?
9: जी सर।
4: हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए ये एक इमरजेंसी एग्जिट है और ये है, दोनों जगह यहाँ पर आप देखें कि वो लगा हुआ है बेड। इधर आकर खोल कर दिखाना एक बार कैसे खुलता है। ये स्थिति है यहाँ पर, जहाँ पर आपको इमरजेंसी गेट को ही पैक करके रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाने के लिए बाहर से आपको लगेगा कि इमरजेंसी गेट है, मगर यहाँ पर बेड लगा दिया गया है।
3: वही आष्टा संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह आनंद विहार बस अड्डा पहुंचे, यहां उन्होंने भारत नेपाल मैत्री बस का हाल देखा।
10: ग्राउंड पर रियलिटी चेक करते हुए मैं अब पहुंचा हुआ हूं यहां भारत नेपाल मैत्री बस जो चलती है, जो कि महेंद्र नगर से दिल्ली और दिल्ली से महेंद्र नगर। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा महेंद्र नगर दिल्ली और दिल्ली से महेंद्र नगर, ये पूरी बस सेवा यहाँ पर इसको चलाया जाता है दिल्ली से। अब इसकी रियलिटी चेक करते हैं और रियल में आखिर इस बस में जो इंटरनेशनल यात्री भी जाते हैं उनकी क्या सेफ्टी के नॉर्म्स हैं इसमें या नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ सामने की तरफ जो ड्राइवर सीट है उसको यहाँ पर दिखाते हैं कि आगे की तरफ आप देखिए कि ड्राइवर सीट के लिए स्पेस जो है यहाँ पर जो दिया गया है वो कम स्पेस है। और फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात करें तो बस में अगर बड़ी आग लगती है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 500 ml का ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि 500 ml का फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि एक बहुत ही छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें अगर बस में किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको बचा पाना काफी मुश्किल होगा। अब बस
3: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
14: एयू,
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
17: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
18: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
19: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
20: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
21: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
16: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
22: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
16: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
23: इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है। निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था।
11: प्रेजेंटेड बाय
0: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: मेजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ईआरओ को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधु साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो गणेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10 महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। कि जो सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का, जो अधिकारी है जिसको अख्तियार है वो है ईआरओ, ईआरओ तय कर सकता है और उसको एक्सेस मिलना चाहिए इस सॉफ्टवेयर का कि किसको डिलीट करना है और किसको ऐड करना है। अब हुआ क्या कि ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया, ईआरओ को एक्सेस दिया ही नहीं गया। और इसमें दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने विरोध किया, संधू साहब ने और जोशी साहब ने, कि आप क्या कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन ने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर लिया, कानून के खिलाफ था, इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर के खिलाफ था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी सेल है जिसमें कोई भी अधिकारी बैठा हुआ है गणेश कुमार के अधीन, वो तय करेगा कि कौन डिलीट होगा और कौन ऐड होगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दुनिया के सबसे बड़े मंच से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्किन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधा जवाब दिया। ये जवाब 24 घंटे के बाद आया, लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर जो जो कहा उसका मुंहतोड़ जवाब पजिश्किन ने दिया। ट्रंप ने बीते दिन ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक देश बताया। पजिश्किन ने सबूतों के साथ तस्वीरों के जरिए ट्रंप के एक एक दावे की हवा निकाली।
1: मैंने कल आपके सामने एक भाषण की तैयारी की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमें आतंकवादी कहा, हम खुद आतंकवाद के शिकार हैं। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई थी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया और बिना किसी वजह के। मैं एक ऐसे ईरान से आया हूं जहां उन्होंने एक स्कूल पर बम गिराया। इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे बम की चपेट में आकर मारे गए। जो बम अमेरिका और इसराइल ने इन पर गिराए, ये मासूम थे, इनका कोई अपराध नहीं था।
0: अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान पर आरोप लगाया था कि वो समझौता नहीं बल्कि युद्ध चाहता था। इस आरोप का जवाब ईरानी राष्ट्रपति ने दिया।
1: किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो। और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
0: दरअसल ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि बातचीत की टेबल पर ईरान के साथ अमेरिका ने शांति का प्रस्ताव रखा था। अगर ईरान प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो 28 फरवरी को हमले की नौबत नहीं आती। हालांकि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर युद्ध थोपा था, ईरान ने अपने बचाव में पलटवार किया। वहीं परमाणु हथियारों को लेकर भी ईरान ने अपनी नीति और नीयत एकदम साफ कर दी।
1: इसराइल के पास वो बम है जिससे वो तबाही मचाता है। न वो किसी संधि को मानता है और न कोई उसकी जांच करता है, और इन सब के बदले उसको इनाम मिलता है जिसके बदले वो कहीं पर भी बम बरसा सकता है। न्यूक्लियर हथियार इसराइल में है लेकिन जांच ईरान की होती है। इसराइल किसी को भी मारता है लेकिन प्रतिबंध ईरान पर लगता है। यही असली विडंबना है।
0: ईरान के मुताबिक उसका परमाणु प्रोग्राम मुख्य रूप से अपने बिजली ग्रिड को मजबूत करने और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नागरिक और शांतिपूर्ण प्रयास है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए परमाणु हथियारों की झूठी कहानी गढ़ी। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान को किसी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, वहीं ईरान ने भी दुनिया के सबसे बड़े मंच से यह ऐलान किया कि न ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भविष्य में कभी बनाएगा। लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो वो झुकेगा नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा। यानी ट्रंप की धमकी से ईरान डरने वाला नहीं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चुनाव आयोग में गड़बड़ी और असहमति पर बवंडर के बीच आज तक के सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी। 97 योग्य वोटरों को फाइनल सूची में शामिल न करने पर नहीं दिया कोई जवाब। नामों निशान फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी के टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, मामले को सुलझाने का सही समय बताएं। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच यूपी में कांग्रेस के गढ़ से चल रहा पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। रायबरेली पहुंची पीडीए की बस, योगी के मंत्री बोले खुद कंफ्यूज हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। ड्राइवर के बीड़ी पीने से यमुना एक्सप्रेसवे पर चल गई स्लीपर बस, पीड़ित मुसाफिरों का खुलासा, हादसे में 9 की मौत। 19 चालान के बाद भी दौड़ती रही बस, दोनों ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई के जाहिलों जैसी शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार, चार आरोपी गिरफ्तार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। और जैसा हमें श्रोता सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा वोट कांड को लेकर कि क्या नया खुलासा यहां पर हुआ है। अब जब खुलासा हुआ है तो फिर जब गोवा के चुनाव अधिकारी से आज तक की तरफ से सवाल पूछे गए तो कैसे वो बचते दिखे, तालम टोल करते हुए दिखे, ये हम आपको बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बागी गुट चुनाव चिन्ह नाम का मामला कोर्ट में जाता है और उसके बाद क्या होता है, अब चुनाव आयोग के पाले में वो गेंद चली जाती है, कैसे ये भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है उसके बारे में हम आपको बता दें, रुक करेंगे हम अखिलेश के मिशन 2027 का, 2027 के अखिलेश के मिशन की बात करेंगे। और रथ यात्रा उनकी निकल चुकी है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई, कांग्रेस की गढ़ रायबरेली से शुरुआत हुई, तो उसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद हम बात करेंगे कि बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर से एक और शर्मनाक वाली बात सामने आती है और यहां पर भी ऐसा ही होता है, एक छात्रा के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है, सारी हदें पार कर दी जाती है, ये सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर आ रही है मोहाली से, प्रवर्तन निदेशालय की टीम जाती है वहां पर छापे मारती है और इसी दौरान उन पर हमला हो जाता है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।

0: जारी।
1: ओ यार रखे ना बड़ी जगह,
0: मैं तोड़फोड़ भी की। असीम बसी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े। असीम, क्या हालात वहां पर हुए और ये कौन थे जिन्होंने ईडी की टीम पर हमला किया?
2: जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ईडी की टीम्स लगातार पिछले दो दिन से पंजाब में थी। पंजाब में गमाडा जो है ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मोहाली में दफ्तर है इनका, वहां पे मंगलवार से रेड चल रही थी और चंडीगढ़ में भी एक सरकारी कोठी में रेड हुई और उसके बाद एक मंत्री हैं उनके भी भतीजे के घर पे रेड हुई। लेकिन आज क्योंकि ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि मिसयूटिलाइज होती है ईडी, तो आज आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो गमाडा के बाहर प्रोटेस्ट करने गए, ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ की। लेकिन उस वक्त माहौल जो था थोड़ा वायलेंट हो गया, जब पहले उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर मेन गेट को तोड़ के अंदर चले गए और अंदर एक तरफ ईडी जो है मेन गेट के अंदर वाले गेट के अंदर जो प्रेमिसेस के गेट के अंदर खड़ी थी पैरामिलिट्री के साथ, पैरामिलिट्री वहां पर पहरा दे रही थी और बाहर आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सडनली जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ, पुलिस ने उनको वहां से हटाया, तो कुछ लोग जब आम आदमी पार्टी के बाहर आए तो वहां ईडी की गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें से एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी जिसके शीशे जो है आप देख सकते हैं विजुअल में, उनको तोड़ा गया, उनकी हवा निकाली गई। लेकिन फॉर्चुनेटली लकीली उस वक्त ईडी का कोई अफसर या ड्राइवर उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, गाड़ी को लेकिन डैमेज किया गया, एक बड़ा तगड़ा प्रोटेस्ट किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि
0: तो हुआ, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखिए बात करते हैं गोवा की। गोवा में वोट कांड को लेकर एक खबर सामने आई है और एक बार फिर से एक खुलासा हुआ है और वहां पर यह बताया जाता है कि 97 नाम को ऐड करने के लिए कई बार मेल लिखा गया लेकिन वो नाम शामिल नहीं हो पाए। चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों वाला वो आपने देखा, 10 महीने में 14 बार असहमति जताई गई थी, उसके बाद गोवा में 97 वोटों पर अब रार जम गई है क्योंकि ये बताया गया कि SIR वहां पर हुआ था, अब कुछ नाम वहां पर सही पाए गए थे आपत्तियों के बाद। अब उन नामों को जोड़ने के लिए 8 ईमेल किए गए, कितने दिन में? 7 दिन में 8 ईमेल होते हैं लेकिन वो नाम नहीं जुड़ पाते हैं। अब इसको लेकर अब सवाल भी पूछा गया और आज तक ने सवाल पूछा और पूछा इस बारे में, तो पहले बात घुमाने की कोशिश की गई, पहले ये हुआ कि जानकारी नहीं, याददाश्त नहीं, फिर बोलता अच्छा चलिए देखेंगे और उसके बाद आज तक को बाहर करने की भी धमकी दी। क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, बस सुनिए।
3: सर, इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर आपके पास नॉलेज, बट सर कुछ जो
4: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड,
3: पर सर 97
4: ना मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा, अभी मैंने नहीं देते ना रिकॉर्ड्स, इट इज 8 मंथ बैक मैटर,
3: 8 मंथ बैक, पर अभी इशू कैसे आ गया?
4: चेक विद माय रिकॉर्ड, ओके,
3: बट जो सामने
4: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार बाय रिपीटिंग सेम क्वेश्चन,
3: बट तो इशू तो
4: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
3: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या? सर जो 97 नाम है जुड़वाने,
4: आई डोंट हैव एनी नेम विद मी, लेते चले जाएंगे,
3: बट
4: अभी मैंने आपको बता दिया, प्लीज ठीक है ना, सी आई हैव अदर वर्क्स टू डू, अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड देन यू कम बैक,
3: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। पर आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर,
4: इट वॉज रॉन्ग टू लेट यू एंटर द कैबिन, यू आर एक्टिंग टू रिजिड अननेसेसरली,
3: ओके।
0: संजय गोयल हैं ये, अब आप यहाँ पर इनको सुन गए होंगे कि कितनी बार भी सवाल पूछा ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, क्योंकि जवाब देंगे तो क्या देंगे ये अब आप समझ सकते हैं, इनकी जो भाषा थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे आप समझ सकते हैं। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, बार बार सवाल पूछा गया इनसे, बार बार संजय गोयल से सवाल पूछा गया कि इस मामले में क्या हुआ, आपको कुछ याद है कि नहीं है, लेकिन सवाल देने का मन ही नहीं था उनका, ऊपर से बोल रहे कि आप बहुत रिजिड हो रहे हैं, सवाल पूछना क्या गलत है?
5: अब जी देखिए, इस मामले में जैसा कि पूरा ये मामला है, वो यही सवाल यही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो किया था कि पूरा जो सिस्टम है ECI नेट का वो बहुत सेंट्रलाइज बना दिया था, इसके खिलाफ गोयल ने खुद दरअसल आवाज उठाई थी और तकरीबन 7 दिनों के अंदर 8 ईमेल उन्होंने खुद लिखे थे, लेकिन इसका फिर भी उपाय नहीं निकला, तो शायद इसी की वजह से वो चिढ़े हुए होंगे, क्योंकि बात तो यही है कि 97 वोटर्स और अहम वोटर्स होते हैं, हर एक वोट बहुत कीमती होता है ऐसा हर किसी को बताया जाता है, और उसके के बावजूद जब जो अथॉरिटी है, जो स्टेट लेवल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन की, वो अगर कोशिश कर रही है पूरी तरीके से अपने तरीके से कि जो 97 वोटर्स है जिनका नाम निकाल दिया गया था सिस्टम से डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, उनको वापस जोड़ा जाए, क्योंकि उनके उन्होंने जब फिर से करेक्शंस देखे, उन्होंने पाया कि नहीं ये वाजिब हैं, ये सही है, इन सब का नाम 97 लोगों का वापस जोड़ा जाना चाहिए, उसके बावजूद सिस्टम उन्हें अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि IT का जो ECI नेट का जो इनका जो सिस्टम है IT का, उसने उन्हें करने नहीं

0: दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है और यही वजह है कि शायद गोयल के चेहरे पे, शायद उनके हाव भाव में ये सारी जो चिढ़ है वो दिख रही है।
1: अच्छा, क्या इन्हीं की तरफ से यानी 8 दिन में 9 मेल किए गए थे, ये कह सकते हैं हम शॉर्ट में?
0: एक बार फिर से दोहराएंगे,
1: इन्हीं की तरफ से 8 दिन में 9 मेल किए गए थे?
0: जी बिल्कुल, अगर आप देखें कुछ और रिपोर्ट्स जो हैं वो सीधे कहते हैं कि इन्होंने ही ईमेल किए थे, तो जाहिर सी बात है इन्हें इस पूरे मुद्दे पे जानकारी जरूर है। और इन्होंने कहा है कि किस तरह से जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ताकि जो स्टेट लेवल के जो लोग हैं वो अपना काम कर सकें। लेकिन इसके बावजूद ये सेंट्रलाइज सिस्टम होने से, और यही आप याद रखिए,
1: मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। और देखिए एक बार फिर आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस ओर से एक तरह से पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन तो आपको कल याद होगा जिसमें बताया गया था कि 14 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं पिछले कुछ महीनों में। अब यहां पर और डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान 97 ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके जिन्हें स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने दस्तावेज और आपत्तियां सुनने के बाद योग्य माना था। रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने, उन्हें दस्तावेज देने और अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका देने के निर्देश दिए थे कि कहीं कोई कमी हो तो आप लोग दोबारा से आप नाम रख सकते अपने। और उसके बाद 649 मतदाता सामने आए। अब इसी मामले की जांच के बाद 97 मामलों में स्थानीय ERO और AERO ने माना कि पहले लिया गया फैसला वापस लेकर इन मतदाताओं को अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए और इसीलिए इतने मेल किए गए। पूरा मामला ECI नेट के स्तर पर अटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में इन नामों को रोल बैक या दोबारा शामिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने इस सुविधा के लिए 11 से 17 फरवरी के बीच 8 बार ईमेल और पत्र भेजे और 17 फरवरी को 97 मामलों की सूची जारी भेजी गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 18 फरवरी को दिल्ली में तैनात डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने IT विभाग को लिखा कि IT सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जरूरी कार्रवाई को रोक नहीं सकता और ERO और AERO के फैसले के अनुसार रोल प्रकाशित करने की सुविधा दी जानी चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जिस तरह के आर पार के हालात है, तो आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार अब इस मामले को लेकर जो मुद्दा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। ये तो आपने गोवा का एक मामला देख लिया, लेकिन उससे पहले भी एक मामला सामने कल आया था जिसमें ये कहा गया था कि दोनों जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। हालांकि ECI की तरफ से भी उसमें एक प्रेस नोट जारी किया गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि सर्वसम्मति से ही सब हुआ है। अगर कहीं पर कोई बात सामने आती है तो ये तो अच्छी बात है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये खुलासा किया गया है। अब 97 वोट का मामला एक तरफ से गोवा में और दूसरी तरफ से 7 दिन में जो 8 ईमेल भेजेगा वो भी सामने सारा मामला आया। 2 दिन में 2 मुद्दे सामने आए और उसको लेकर विपक्ष की तरफ से अब निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष चौतरफा घेराव यहां पर कर रहा है। कांग्रेस तो बहुत एग्रेसिव यहां पर हो गई है, राहुल गांधी की तरफ से भी निशाना साधा गया, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी निशाना साधा गया। लेकिन जब राहुल की बात की तो राहुल गांधी ने क्या कहा था वो आपको सुनवाते हैं।
2: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं।
1: राहुल गांधी कह रहे हैं कि बचने वाले नहीं है, लेकिन अब इस मामले पर एक दूसरे का घेराव किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे को घेर रही है, जरा वो भी सुन लीजिए।
3: मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल डिलिब्रेशंस हुए हैं, जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, जहां पर डिलिब्रेशंस हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले ही छंद में, अपने पहले ही पैराग्राफ में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है, सारे ऑफिशियल डेमोक्रेटिक डिलिब्रेशन होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, देवर ऑल ऑन द सेम पेज।
4: माननीय CC ने सिर्फ देश को भ्रमित नहीं किया, उन्होंने देश के संवैधानिक मूल्यों को सिर्फ आघात नहीं दिया, जो कि बहुत अरसे से वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के कॉलीग्स को भ्रमित किया, उन्होंने चुनाव आयोग को हाईजैक करके अपने कॉलीग्स को एक प्रकार से उसमें सर्व करने से अलग कर दिया, उन्होंने अपने खुद के ईसीज को हाईजैक कर दिया। यह एक आंतरिक बुलडोजर का उदाहरण है। तो बाहरी बुलडोजर और आंतरिक बुलडोजर किस प्रकार से पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उसका यह बहुत घिनौना एक उदाहरण है, और विशेष रूप से घिनौना है एक संवैधानिक संस्था के लिए। सभी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, स्टैट्यूटरी संस्थाएं भी महत्वपूर्ण उतनी ही होती हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं एक स्पेशल स्टेटस रखती हैं।
1: तो देखिए, बाहरी बुलडोजर, आंतरिक बुलडोजर, हर तरह से प्रहार किया जा रहा है। राहुल गांधी को आपने सुना, अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, अब इससे पहले अगर आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा था, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी प्रहार किया गया, वो भी सुनिए जरा।
5: I do not see why the election commissioner has to have any protection against it. If he has done an illegal act, he has been fully aware that this is happening under his nose. His colleagues have brought it to his attention. He has ignored it and intentionally allowed an unfair election to take place. He should be criminally prosecuted.
1: Mausumi, hamari sahyogi, hamare saath mein judi hai. Mausumi, Congress ki taraf se har तरफ से, हर दिशा से प्रहार इस वक्त किया जा रहा है, और ज्ञानेश कुमार को भी कटघरे में यहां पर खड़ा किया जा रहा है। अब आगे किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है घेराव के लिए?
6: देखिए, बिल्कुल 2 घंटे में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इंदिरा भवन में, और जिस तरीके से पिछली बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी चौड़ी चली थी, जो कि उन्होंने चुनाव आयोग पर करी थी, पूरा भंडारा लगा हुआ था, एक तरीके से कागजों की पूरी पाइल थी, और उन्होंने बोला था कि चुनाव आयोग और सीईसी जो है वो बिल्कुल मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वोट चोरी जो है मोदी सरकार के इशारे पर हो रही है। तो उसी को लेकर अब और तीखा प्रहार राहुल गांधी करने वाले हैं। कल देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है, सभी प्रदेश अध्यक्षों और इंचार्जों को लिख दिया गया है कि हर गली चौराहे पर राजधानी में प्रदर्शन करना होगा। बताया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक आगे इसको लेकर हो सकती है। बाकी दल चाह रहे हैं कि एक साझा प्रेस वार्ता इंडिया ब्लॉक के नेता करें। तो सियासी रूप से संसद से लेकर सड़क तक की तैयारी है मानसू,
1: और बिल्कुल वो यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि कैसे प्रहार यहाँ पर किए जा रहे हैं, हर तरफ से निशाना यहाँ पर साधा जा रहा है, और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त एक मुद्दा यहाँ पर मिल चुका है और कांग्रेस उस मुद्दे को पूरी तरह से बनाती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन अब आगे इसमें अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से घेराव किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनकी तरफ से भी निशाना साधा गया। अब ईसीआई ये कह रही है कि ये जो प्रेस नोट जारी करते हुए कि सर्वसम्मति से ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन एक एक मुद्दा जो अब सामने आ रहा है उससे क्या मुश्किलें बढ़ सकती है ईसीआई की ओर?
6: बिल्कुल, देखिए मामला पेचीदा है। एक तरफ आप जान रहे हैं कि कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी, सीईसी और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी मामला चल रहा है। कहा जा रहा है जो नियुक्ति है वो मेजॉरिटी वोट से अगर हो रही है तो सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री के मौजूदगी में अगर एलओपी रहते हैं तो वो माइनॉरिटी में रहते हैं, तो सिलेक्शन भी सरकार ने एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है सीजीआई को बाहर करने से। और ऐसे में अपॉइंटमेंट से के कामकाज को लेके, खासतौर से ज्ञानेश कुमार को लेके राहुल गांधी या विपक्ष के नेता काफी सख्त हैं। कोई कह रहे हैं कि उनके पर मामला दर्ज होना चाहिए, उनके पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और इम्पीचमेंट महाभियोग लाने की बात हो रही है कि हालांकि नंबर सरकार के विपक्ष के पास कितना होगा ये देखना होगा, लेकिन इम्पीचमेंट उनके खिलाफ लाने की बात मुहिम छिड़ गई है, और ये एक तरीके से रैलिंग पॉइंट होगा। पूरा विपक्ष ज्ञानेश कुमार के ये निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे मानसू, ये बिल्कुल साफ है कि इसमें
1: आगे की भूमिका भी यहाँ पर बनाई जा रही है। अब समझिए चुनाव में तो हर एक मुद्दा यहाँ पर उठाया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस मामले में देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी, वो सुनाते हैं आपको।
7: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
8: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।
1: टीएमसी को लेकर भी एक जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, और उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले आप देखिए ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते अब यह कहा जा सकता है कि जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में यहां पर डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अब इस मामले में जवाब मांगा है। संजय शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए, संजय क्या जानकारी आपके पास?
9: यह सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल ने पैरवी करते हुए उनसे ये साफ कहा कि अगले चुनाव तक वेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए निर्वाचन आयोग ये बताए कि वो कितनी जल्दी इस पे फैसला ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी इस राय से सहमत दिखा और सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा कि सोमवार तक आप ये बताइए आपका इस मामले में टाइम फ्रेम क्या है और आप कब तक इस मामले में फैसला ले सकते हैं। क्योंकि अब दूसरे पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे कि चुनाव आयोग को ये कहे कि जल्दी फैसला, चूंकि इस मामला बहुत संजीदा है और इसमें तमाम प्रूफ और तमाम दलीलें तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, उसकी तस्दीक करनी पड़ती है, इसलिए एक समुचित समय दिया जाना आवश्यक है। ऐसे में एक महीने में इसका निपटारा करना ये थोड़ी ज्यादा ही होगी, इसमें मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सोमवार तक ही बताए कि कितने।
1: शुक्रिया आपका, बिल्कुल चुनाव आयोग को अब इसमें जवाब देना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब 2027 की बात करेंगे। अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत की, चुना कौन सी जगह को, रायबरेली को चुना जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और स्वागत सत्कार कैसे हुआ वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां बुलडोजर के जरिए स्वागत किया गया अखिलेश यादव का। बुलडोजर आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जाता है, बुलडोजर कार्रवाई की बात कही जाती है, बुलडोजर एक्शन की बात की जाती है, कई जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत बुलडोजर से हुआ, लेकिन अभी अखिलेश यादव का ये देखिए, ये वो तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर है वहां पर और साथ ही पीडीए का रथ भी आपको वहां दिखाई देगा। अखिलेश यादव रायबरेली से उनकी ये यात्रा शुरू हो चुकी है, भारी भीड़ देखी गई और जो अखिलेश के समर्थक हैं वो बुलडोजर का सहारा लेते हुए आए और फूलमाला बरसाते हुए देखे। मिशन 2027 से पहले पीडीए वाला एक्शन तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन जब ये बुलडोजर की तस्वीर आई तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बन गई। अब इस पर चर्चा भी हो रही सोशल मीडिया पर, ये देखिए बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए थे अखिलेश यादव के मिशन 2027 के लिए, और पीडीए की वो परिभाषा अलग अलग देते हैं जहाँ पर भी जाते हैं, उन्होंने पीड़ित भी लिख दिया, पीड़ित में पीछे नीला निशान भी उन्होंने लगा दिया है, तो हर एक वोट बैंक पर निशाना अपने पाले में करने की कोशिश वो कर रहे हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या दलित हो।
10: बुलडोजर से अखिलेश यादव के रथ पर, बुलडोजर से अखिलेश यादव के रथ पर फूलों की बारिश हुई जा रही है, माला लेकर बुलडोजर खड़ा हुआ है, जो बुलडोजर बीजेपी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन का प्रतीक माना जाता है, उसी बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। ये बुलडोजर ये खड़ा किया गया है रायबरेली के बसरामा में, और आप देखिए कि बुलडोजर पर तमाम कार्यकर्ता हैं। अभी तक ये तस्वीरें जो आती थी वो बीजेपी के नेताओं के स्वागत की आती थी, लेकिन रायबरेली में बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है और ये बुलडोजर पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, और यहाँ से और अब देखिए अखिलेश यादव रथ पर हैं। एक रायबरेली पहुंचकर जिस तरीके से कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और फिर बुलडोजर से स्वागत, ये एक पीडीए यात्रा की शुरुआत हुई है, और कैसे लोगों के उनसे मिलने के लिए तो देखिए छत पर भी पहुंचे हुए हैं, वो जो रथ है वहां पर अपने लोगों से मिलने के लिए भी पहुंचे थे, और अब ये बुलडोजर से स्वागत के बाद अब ये काफिला रायबरेली की तरफ बढ़ रहा है।
1: अखिलेश यादव ने रायबरेली को चुना तो बीजेपी तो कह रही है कि अखिलेश यादव यहां पर कंफ्यूज हो गए हैं, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है 2027 के लिए, बहुत संग्राम देखने को मिलेगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो तीन झुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो टीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
2: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंबल है। एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है? थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
5: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
6: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
7: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
8: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
9: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
6: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
10: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
11: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर।
6: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर।

0: चुनाव आयोग में गड़बड़ी और असहमति पर बवंडर के बीच आज तक के सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी। 97 योग्य वोटरों को फाइनल सूची में शामिल न करने पर नहीं दिया कोई जवाब। चंडीगढ़ के मोहाली में ईडी की टीम पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। डेवलपमेंट अथॉरिटी पर छापेमारी के लिए गए थे एजेंसी के अफसर, कार में की गई तोड़फोड़। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच यूपी में कांग्रेस के गढ़ से चल रहा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। रायबरेली पहुंचे पीडीए की बस यात्रा का बुलडोजर से हुआ स्वागत। स्टाफ की लापरवाही से यमुना एक्सप्रेसवे पर जली स्लीपर बस, 9 की मौत, 19 चालान। मालिक एमपी का, रजिस्ट्रेशन बिहार से, फिटनेस राजस्थान से, गजब फर्जीवाड़े के साथ दिल्ली में दौड़ती रही बस। बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई के जाहिलों जैसी शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल। गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार, 4 आरोपित गिरफ्तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: तो देखिए बुलेटिन के हिस्से में हम बात करेंगे बिहार की। कुछ वक्त पहले जमुई में जो हुआ वो सबने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। और अब समस्तीपुर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आती है, बस फर्क इतना कि वो रात के अंधेरे में हुआ और ये दिन के उजाले में हुआ। और यहां भी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, गाली गलौज किया की गई, अश्लीलता की सारी हदें पार की गई। और यहां पर एक्शन हुआ, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जमुई में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर 2 लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहां पर कई लोग आ जाते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। और ठीक समस्तीपुर से भी वो तस्वीरें सामने आई, लोगों में आक्रोश है और लोग अब ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर छेड़छाड़ के ये मामले, लड़कियों से बदसलूकी के मामले थमेंगे कब, रुकेंगे कब।
2: पहले जमुई, और अब समस्तीपुर में वही घटना। जमुई में शाम ढलते ही नाबालिग को नोचने की कोशिश हुई तो समस्तीपुर में दिन दहाड़े मनचलों ने लड़की को घेर लिया। बिहार में कानून का राज कैसा है, जहां बेटियां ना दिन में सुरक्षित हैं ना रात में। समस्तीपुर में बेटी की इज्जत तार तार करने की कोशिश हुई, सरेआम लड़की को उठाने की कोशिश हुई। ये वही बिहार है जहां मंत्री संतरी से मुख्यमंत्री तक कानून व्यवस्था पर बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं।
3: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा।
2: लेकिन हकीकत देखिए कैसे ये दरिंदे बेटी की मर्यादा भंग करने की कोशिश कर रहे हैं।
4: बिहार में छिटपुट घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
2: ये सम्राट चौधरी का बिहार है जहां दिन में भी बेटियां बाहर निकल जाएं तो कोई गिरोह उन्हें घेर सकता है, उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इनकी हिम्मत तो देखिए कि नीचता भी कर रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल भी कर देते हैं। ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा था या ये बिहार के कानून व्यवस्था के बीच सड़क नीलामी है। न पुलिस न कानून, कुछ नहीं, सड़क पर खूंखार जीव खुलेआम घूम रहे हैं।
0: तस्वीरें लगभग बिल्कुल वैसी हैं, बस फर्क इतना कि जमुई में जो अंधेरे में हुआ, समस्तीपुर में वो दिन के उजाले में हुआ। यहाँ पर भी बाल पकड़ के खींचा गया, धक्का दिया गया, मारपीट की गई। लोगों के अंदर गुस्सा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि देश के किसी भी कोने में, सिर्फ बिहार नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर कोई नाबालिग बच्चियों के साथ या किसी युवती के साथ या किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ करने की सोचे तो वो पहले 100 बार सोच ले।
5: बस तारीख और जगह का अंतर है, बाकी सब वही है। जमुई में जोड़े के साथ जो जानवरपन हुआ उसका आक्रोश अभी कम नहीं हुआ था कि बिहार के समस्तीपुर में वही कांड हो गया। एक लड़की को गांव के मंचलों ने घेर लिया, कोई उसे गंदी गालियां दे रहा था, कोई निजी टिप्पणियां कर रहा था, तो कोई उसका हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रहा था। बिहार के समस्तीपुर में ये सब दिन दहाड़े हो रहा था, एकदम खुल्लम खुल्ला, न पुलिस का भय न कानून का डर। ये मंचले लड़की को थप्पड़ भी मार रहे थे। लड़की चिल्लाती रही, संघर्ष करती रही, मदद मांगती रही, लेकिन वहाँ कोई इंसान हो तो मदद करे ना। वहाँ तो सब कायर इकट्ठा हुए थे जो या तो तमाशबीन बने थे या फिर लड़की के चरित्र की पैमाइश कर रहे थे। ये घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की है जहां 23 सितंबर को लड़का और लड़की बांध पर घूमने गए थे। इस दौरान कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जब लड़का भाग गया तो अकेली बची लड़की को टॉर्चर करने लगे। ये मनचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ बीच सड़क पर हो रहा था।
6: समस्तीपुर में भी जमुई कांड के जैसा जो हुआ है वो इसी स्थान पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे ये जो काफ़ी सुनसान जगह है जहां युवकों ने जो है नाबालिग बच्ची के साथ जो है गलत हरकत किए, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, और ये देख सकते हैं कि काफ़ी सुनसान जगह है। बगल में नदी है और इधर खाली झाड़ी ही झाड़ी है, और इसी दरमियान जो है लोगों ने लड़की को पकड़ा था।
5: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। समस्तीपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 19 साल का राहुल कुमार पासवान, 46 साल का अवधेश पासवान, 32 साल का विकास शर्मा और 38 साल का आरोपी राम बाबू सहनी शामिल हैं।
7: सबसे पहले जो वीडियो था उसका सत्यापन किया गया, घटनास्थल स्थापित किया गया, और जो जानकारी मिली उसमें करपुरी ग्राम थाना अंतर्गत जगत सिंहपुर स्थित बांध के पास जो सड़क जाती है वो सड़क घटनास्थल के रूप में चिन्हित हुआ। वीडियो में दिख रही जो बच्ची है उसको प्रथम दृष्टया हम लोगों ने वो नाबालिग दिख रही थी, तो नाबालिग मानते हुए हम लोगों ने आगे कार्रवाई करने का प्रयास किया। प्राथमिकी जब तक दर्ज हो रही थी तब तक उस बच्ची का सत्यापन नहीं हो पाया था, इसलिए घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पदाधिकारी के बयान पर ही करपुरी ग्राम थाना अंतर्गत कांड संख्या 117-26 जो BNS पॉक्सो और IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। इस घटना में शामिल जो व्यक्ति हैं वो घटनास्थल के आसपास जगत सिंहपुर और बिजौलिया इन गांवों के अभियुक्त थे।
5: पुलिस ने 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे कर दिया है, लेकिन सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर है, बिहार के हुक्मरानों से है जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन हकीकत उसके एकदम उलट है।
3: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा।
5: समस्तीपुर और जमुई कांड बिहार में कानून व्यवस्था के दावों का फंडाफोड़ है। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है मानो बिहार में हर गली जमुई, गांव-गांव समस्तीपुर हो गया है। अगर कहीं कुछ ठीक है तो उसे इत्तेफाक ही मानिए। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है।
8: जमुई मामले को लेकर के पूरा बिहार शर्मसार हुआ, पूरे बिहार में कहीं ना कहीं थू-थू की स्थिति बनी। अब उसी तरह की घटना समस्तीपुर में सामने आए हैं। वजह यह है कि सरकार और सरकार का एक बार समाप्त हो गया। सरकार की जो अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिखती है, और जब भी इस तरह के वारदात होते हैं तो सरकार मामले को दबाने के लिए इसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास करती है।
5: विपक्ष ने सवाल उठाए तो BJP और JDU ने बचाव किया और दावा किया कि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है।
9: बिहार में महिला सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है। समस्तीपुर में कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी पकड़े गए। और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए जमुई, याद रखें, अगर आपने हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कुछ कर दिया तो फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू।
10: बच्चियों के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे या तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर लंगड़े हो जाओगे। सबक सीख लो कि बिहार में कानून का राज है। अगर चैलेंज करोगे तो जवाब भी तुरंत मिलेगा। समस्तीपुर की घटना में प्रशासन ने तुरंत 4 लोगों को अरेस्ट किया है और जमुई की घटना तो आपको मालूम है कि सरकार ने किस तरीके से काम किया है। बिहार में कानून का राज है और पिछले 2 दशक से बिहार में अपराधियों को हमने पनपने नहीं दिया है।
5: सरकार और उसके प्रवक्ता दावे चाहे जो भी करें, लेकिन बिहार में कानून के राज की हकीकत यही है जो जमुई और समस्तीपुर में दिखी। आज तक ब्यूरो।
0: देखिए, सब सबक सिखाने की बात करें, लेकिन ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं, पहले जमुई अब समस्तीपुर। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, समस्तीपुर में जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, इन 4 आरोपियों की पेशी, उनको पेश करने के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। पुलिस बल भी उनके साथ में मौजूद है। 4 आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची है पुलिस। हमारे सहयोगी शशि भूषण उस स्थान पर मौजूद थे जहां से इनको ले जाया गया। कोर्ट एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
11: इस वक्त हम समस्तीपुर के करपुरी ग्राम थाने पर मौजूद हैं और इसी थाना इलाके के जगत सिंहपुर गांव के बांध के पास जो घटना है वो घटी थी, जब एक नाबालिग छात्रा जो है उस जगह से गुजर रही थी और कई युवकों ने उसको घेर करके उसके साथ बदसलूकी की और वो वीडियो फिर बाद में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। समस्तीपुर पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहुल विकास के अलावा 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और इसी थाने में उन आरोपियों को समस्तीपुर पुलिस ने रखा है। देखिए, यहाँ पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो भी करके रखी गई है, आरोपी जो हैं वो अंदर हैं, तो जाहिर तौर पर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी पुलिस करेगी। लेकिन जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, जो तमाम आरोपी हैं अब तक पुलिस के मुताबिक उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो करपुरी ग्राम थाना है वहां पर लगातार जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी रही। समस्तीपुर पुलिस ने जो आधिकारिक बयान जारी किया उसके मुताबिक 6 घंटे के अंदर जब वायरल वीडियो संज्ञान में आया पुलिस के, तो उसके 6 घंटे के अंदर तमाम जो 4 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है।
0: जिनको आप अभी सुन रहे थे, शशि भूषण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, ये बताइए कि अभी इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है?
11: देखिए हिमांशु, पहला अपडेट तो ये दे देता हूँ आपको कि जो वीडियो वायरल हुआ कल शाम से समस्तीपुर और सोशल मीडिया के अंदर, वो वीडियो 15 सितंबर का है। खुद समस्तीपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है, 15 सितंबर को घटना हुई थी, लेकिन घटना की जानकारी पीड़िता की तरफ से या फिर किसी अन्य की तरफ से नहीं दी गई थी। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो बाजाब्ता जो खुद है पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और इस वक्त देखिए हम उसी इलाके में हैं। ये समस्तीपुर का जगत सिंहपुर की तरफ जाने वाली सड़क है और इसी सड़क पर एक बांध है जो गंडक नदी के किनारे पड़ती है और वहीं पर जो घटना है उसको अंजाम दिया आरोपियों ने। 4 आरोपी जो सभी नाबालिग हैं, थोड़ा कंफ्यूजन था इस बात को लेकर के कि क्या वो आरोपी नाबालिग भी उसमें कोई है या नहीं है, लेकिन तमाम आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये कौन सा गांव है जरा बताइएगा? इस गांव अच्छा, ये घटना यहाँ से मतलब कितनी आगे, मतलब जगत सिंहपुर के पास?
12: हमको तो घटना दिया कुछ मालूम ही नहीं है, क्या चीज का घटना हुआ।
11: ये जो एक लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने सुना उसके बारे में कोई जानकारी?
12: जी नहीं, हम तो नहीं सुन रहे।
11: आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं देखा आप लोगों?
12: जी नहीं।
11: लेकिन देखिए बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन पुलिस ने 6 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए हिमांशु 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, तो उनको पॉक्सो कोर्ट में इस वक्त पुलिस लेकर के पहुंच रही है समस्तीपुर के अंदर और वहीं पर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर आगे जो रिमांड पर लेने की कार्रवाई होगी वो होगी। तो पुलिस की तत्परता भी दिखती है, लेकिन अपने आप में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, जमुई की घटना पहले जो हमने वहां ग्राउंड रिपोर्ट करी और देखिए समस्तीपुर में जो घटना हुई है, ये कम से कम बिहार को एक मायने में शर्मसार तो जरूर कर रहा है और पुलिसिंग को लेकर के सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, सवाल जरूर उठ रहे हैं और लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार से ही ऐसी खबरें सामने क्यों आ रही हैं, तो ऐसे में और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है समस्तीपुर घटना पर। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि बिहार में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं।
13: भाजपा शासित राज्य है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार भाजपा का कोई बिहार में मुख्यमंत्री बना है और कानून व्यवस्था का जनाजा जो है उठ गया है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बस नाम का रह गया है, बिहार में सैकड़ों अपराध हो रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। कल भी जो है जिस प्रकार से रात में पटना शहर में गोली मार दी जा रही है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अजब बात है जब साथ साथ मुकदमे हत्या का जब खुद मुख्यमंत्री पे ही हो, आपराधिक छवि का जब व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो इसी तरीके का स्थिति जो है उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री जी का हमने बयान देखा, सम्राट चौधरी जी का, उन्होंने रील के बारे में बोला, रील बनाओगे तो मारे जाओगे, रील नहीं बनता तो बच जाता। यानी ये क्या कहना चाहते हैं कि रील मत बनाओ, कांड करो, कांड करोगे रील नहीं बनाओगे तो बच जाओगे। ये तो खुद अपराधी है और एक नया नया आइडिया जो है वो दे रहे हैं।
0: बिहार के बाद अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में लिए चलते हैं। देखिए, एक वो कहा जाता है कि फिल्म हो या रियल लाइफ हो, पुलिस हमेशा बाद में ही आती है। कालका जी में गैंगरेप हुआ, ये सबने देखा, उसके बाद अब पुलिस एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। अब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, जगह जगह जो पार्क है वहां पर जाकर चेक किया जा रहा है कि वहां पर कैसे हालात है, क्या रही है। लेकिन उसके बावजूद जो मंचलों का मन बड़ा हुआ है उसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
14: दिल्ली में कॉमर्स छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद पुलिस की सक्रियता देख किसी के भी मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर वारदात के बाद ही पुलिस क्यों जागती है। देखिए जरा, पार्कों में पुलिस की टीमें कदमताल कर रही हैं, सड़कों पर महिला ब्रिगेड तैयार है। अब ऐसा लग रहा है कि बस अब अपराधी बचेंगे नहीं। सवाल नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना का है। कालकाजी इलाके में पार्क में जिस तरह से छात्रा के साथ गलत काम हुआ उसने राजधानी की पुलिसिंग पर सवालिया निशान लगा दिए कि अब दिल्ली में शाम को भी निकलना खतरे से खाली नहीं है। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस की टीमें राजधानी की सड़कों पर उतर गईं, पार्कों, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त होने लगी। लेकिन ये गश्त सिर्फ कालकाजी कांड के बाद जन्मे आक्रोश को सेफ्टी वॉल्व देने के लिए है या फिर पुलिस सच में हर दिन इसी तरह से सक्रिय रहेगी?
15: सिटीजन सेफ्टी को ध्यान पे रखते हुए, ट्रैफिक को ध्यान पे रखते हुए हम हर थाने लेवल पे रोज पीक आवर्स में इवनिंग टाइम पे, जिस टाइम पे सिटीजन्स बाहर पार्क में वॉक करने के लिए निकलते हैं और क्राइम होने का संभावना ज़्यादा होता है कि स्नैचिंग हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो इसको ध्यान पे रखते हुए हम इवनिंग पेट्रोलिंग करते हैं। इसमें थाने का SHO, इंस्पेक्टर्स, थाने के स्टाफ, साथ में हमें पेट्रोलिंग के लिए आउटसाइड फोर्स भी मिलते हैं, उनके साथ हम पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान हम पब्लिक पार्क्स को विजिट करते हैं, वहाँ चेक करते हैं। ये पेट्रोलिंग एक्सरसाइज एक सिटीजन्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है।
14: अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये दिल्ली का इंद्रप्रस्थ पार्क है। दिन के उजाले में पुलिस की टीमें दनदनाती हुई पार्क में घुसती हैं, तो एक बार पार्क में मौजूद लोगों के मन में सनसनी तो मच ही जाती है कि इतनी फोर्स क्यों आ गई। पार्क में मौजूद लोगों से पुलिस संवाद भी करती है, साथ ही संदिग्धों से पूछताछ करती है। कुछ देर तक पार्क का चक्कर लगाकर पुलिस लौट जाती है। सिर्फ दिन ही नहीं, रात के अंधेरे में भी पुलिस की टीमें निकलती हैं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाती हैं, फोटो वीडियो शूट करवाती हैं और इसके बावजूद भी मुखर्जी नगर जैसे स्टूडेंट एरिया में छात्रा के साथ ये हो जाता है। लड़की ने आरोप लगाया कि कार सवार कुछ लड़कों ने उसे और उसकी दोस्त पर कमेंट पास किया, विरोध करने पर कार में घसीटने की कोशिश हुई।
16: 9:30 बजे करीब रात में मैं और मेरी दोस्त विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से हम ओजीसी की तरफ जा रहे थे, तो वहां से एक गाड़ी आती है व्हाइट कलर की सफारी और वो अपना शीशा डाउन करती है और वो हमारे ऊपर कुछ कमेंट्स पास करती है, तो हम उन्हें ऐसे बोलते हैं कि मतलब बदतमीजी मत करिए यहां से चले जाइए, तो इस पे वो इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि उन्होंने मतलब इतनी भद्दी गालियां हमें दी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और फिर जब हम वहां से जाने लगे तो हम देखते हैं कि वो गाड़ी हमें पीछे से फॉलो कर रही है, और जब हम ओजीसी की तरफ बढ़कर रुके कि हम उनकी वीडियो बना सकें तो वो भी गाड़ी वहीं साथ में रुक गई और उन्होंने हमें गाड़ी के अंदर तक खींचने की कोशिश की। उसके बाद जब हमने मतलब मेरी दोस्त ने फोन निकाला तो वो वहां से भागे। उसके बाद वहां पे हम सीधे गए पहले मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, उन्होंने हमें रेफर कर दिया कि ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता। और इस प्रकार से 3 पुलिस स्टेशन का मैं 4-5 घंटे में चक्कर लगा चुकी हूँ, बट हमारी एक FIR तक ये लोग नहीं लिख रहे हैं।
17: तो ये हालत है, पुलिस भी सड़क पर है, अपराधी भी सड़कों पर है, और जो पीड़ित हैं वो इस थाने से उस थाने का चक्कर काट रहे हैं कि FIR तो लिख लो। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ दिल्ली पुलिस की लानत मलानत होने लगी तो FIR दर्ज करनी पड़ी।
18: मुखर्जी नगर थाने में एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जिसमें कल रात को जो 2 लड़कियां हैं वो मुखर्जी नगर के एरिया पे सड़क पे जा रही थी, जो कि एक सफारी गाड़ी में 4 लड़के जा रहे थे, उन्होंने लड़कियों के साथ उनको उनके साथ भद्दी बात करी है और उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया है और कुछ अपशब्द उन्होंने बोले हैं। इसको हमने संज्ञान में लेते हुए FIR रजिस्टर कर ली है, विक्टिम के हम टच में हैं और एक्यूज्ड जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए हम इस पे एक्शन ले रहे हैं।
17: दिल्ली में महिला सुरक्षा का आलम यह है कि जिस कॉलेज की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ उस कॉलेज में इनहाउस क्लासेस बंद कर दी गई हैं, अब ऑनलाइन क्लास चल रही है। छात्रा को न्याय दिलाने के लिए DU की छात्राओं ने मार्च भी निकाला। दिल्ली पुलिस भी मुश्तैदी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि ये मुश्तैदी वारदात के बाद ही क्यों दिखती है। अरविंद ओंझा, दिल्ली आज तक।
0: नोट चला यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
21: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
22: मेरे पास एक आइडिया है।
20: क्या?
22: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है
23: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
24: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
21: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा नाम सिंबल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
25: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
26: एकदम
25: सॉलिड। थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
26: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
21: आई लाइक दिस ओनली।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दिल्ली में रफ्तार की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है दिल्ली के शक्ति नगर का है और ये हर उस शख्स को देखना चाहिए जो गाड़ी चलाता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक वैगनर कार बहुत तेज रफ्तार से आती है, अचानक गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की जाती है और उसके बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद दो चक्कर खा जाती है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद ट्रैफिक रुक जाता है। डिवाइडर से भी जोरदार इस गाड़ी की टक्कर होती है, कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: कोई भी सुरक्षित नहीं है बिहार, दिन दहाड़े घर में घुस करके जो है गोलियां मारी जा रही है।
3: भाई भाई साहब थोड़ा नीचे,
2: चाहे बच्चियां हो चाहे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या जनप्रतिनिधि है, तो आप समझ सकते हैं जब पटना जो राजधानी शहर है जब वहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब गोलियां नहीं चलती।
4: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।

0: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ईसीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
1: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
0: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पर बवंडर के बीच आज तक के सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी। 57 योग्य वोटरों को फाइनल सूची में शामिल ना करने पर नहीं दिया कोई जवाब। चंडीगढ़ के मोहाली में ईडी की टीम पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। डेवलपमेंट अथॉरिटी पर छापेमारी के लिए गए थे एजेंसी के अफसर, कार में की गई तोड़फोड़। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच यूपी में कांग्रेस के गढ़ में चल पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। रायबरेली पहुंची पीडीए की बस यात्रा का बुलडोजर से हुआ स्वागत। स्टाफ की लापरवाही से यमुना एक्सप्रेसवे पर चली स्लीपर बस, 9 लोगों की मौत, 19 चालान। मालिक मध्य प्रदेश का, रजिस्ट्रेशन बिहार से, फिटनेस राजस्थान से और गजब फर्जीवाड़े के साथ दिल्ली में दौड़ती रही है बस। बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई के जाहिलो जैसी शर्मनाक हरकत। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, गाली गलौज और अश्लीलता की सारी हदें पार की। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसी एक और बड़ी घटना, नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करते दिखे युवक कैमरे में कैद हुए। लड़की बाइक से अपने दोस्त के साथ बांध पर गई थी, तभी मनचलों ने लड़की के दोस्त को खदेड़कर भगा दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले पर डीएसपी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की। घटना 23 सितंबर की बताई जा रही है। तेजस्वी यादव ने मामले पर कहा है कि जब कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन जाए तो ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। समस्तीपुर छेड़छाड़ मामले पर रोहिणी आचार्य का सरकार पर हमला, महिला सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। पटना में जनसुराज के नेता अनिल यादव पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई, गंभीर हालत में इलाज जारी है। अनिल यादव समर्थकों के एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जंगलराज है, इसका जवाब सम्राट चौधरी देंगे कि पहले बिहार में जंगलराज था तो अब क्या है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला है, कहा कि 7 हत्याओं के आरोपी सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते प्रशासनिक व्यवस्था का ही आपराधिकरण कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल के छात्राओं से बैड टच का आरोप, शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर डीलेस बस में लगी आग, हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद यातायात और परिवहन विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। हादसे के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन है, 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, 19 चालानों के बावजूद सड़क पर दौड़ती रही है बस। बस हादसे पर सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ग्रेटर नोएडा बस हादसे पर राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की अपनी

एसआई को बाइक ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। हैदराबाद के करम घाट मंदिर के पास प्राइवेट बस में लगी भीषण आग, 38 यात्री सुरक्षित। भोपाल में वकील पुलिस विवाद पर बवाल हो गया, थाना प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिमी सिक्किम में हुआ भारी भूस्खलन, प्रशासन ने निवासियों को घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है। जिले के मुखर्जी नगर में छात्र से छेड़छाड़ और कार में खींचने की कोशिश का आरोप लगाया गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली के वजीराबाद में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ है, कुख्यात गोगी गैंग के शार्प शूटर को किया गया गिरफ्तार। नागपुर में दो परिवार के बच्चों के बीच विवाद ने लिया हिंसक मोड़, लोहे की रॉड से की गई हत्या। सोनीपत में दिनदहाड़े ठगी का आरोप, अनोखा मामला सामने आया, पैसों की माला लेकर फरार होने वाला गिरोह सक्रिय है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट हिट एंड रन मामले पर थार चालक गिरफ्तार कर लिया गया, हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील की हुई थी मौत, पत्नी की गंभीर हालत में इलाज जारी है। झांसी में अघोरी बाबा के भेष में सराफा दुकान पहुंचा शख्स, बातों में उलझाकर की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मेरठ में करेंसी बॉक्स में मिले लगभग 5 लाख रुपए के नकली नोट, 186 शाखाओं से जुड़े हैं नेटवर्क। यूपी के सुल्तानपुर में छात्रों का कार में मारी जोरदार टक्कर, हादसे के बाद चालक फरार हो गया। गाजियाबाद में खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद मोहन नगर होटल की जांच जारी है, पेंट्री बंद कर नोटिस जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में पुलिस ने की स्नैचर से मुठभेड़, चोरी की बाइक देसी तमंचा बरामद किया गया है। दिल्ली के शक्तिनगर में कार पलटी, ई रिक्शा को बचाने के दौरान हुआ यह हादसा। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों से भरी बस में लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा कर्मचारी बाल बाल बचे। उज्जैन में चल रहे समारोह में भीड़ के बीच पटाखों के किया खतरनाक करतब, गाड़ी के ऊपर चलाए पटाखे, टली बड़ी हादसा। नौगछिया में कोसी गंगा के कहर से किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ के पानी में बही किसानों की मेहनत। आंध्र प्रदेश के अलूरी में भारी बारिश से नदी में उफान आ गया, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखे ग्रामीण। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत किया, पुरानी कहावत का किया जिक्र, बोले कि सेवा हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा व्यवहार लोगों के यह दिखाना चाहिए कि चाहे हमें कितनी भी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों ना मिले, हमारा रास्ता सेवा का ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी से सेवा यात्रियों से उनके अनुभवों का भी साझा किया, इस यात्रा में लगभग 10,500 युवा और विभिन्न टीमें शामिल की गई हैं। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता की है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई है। आज चिंतन बैठक का दूसरा दिन है, सुधारों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही शासन के पहलुओं पर भी होगी चर्चा। साहिल की मौत पर आईआईटी बॉम्बे का यू टर्न, पहले के बयान पर माफी मांगी है, जांच पूरी होने का इंतजार है। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, आगे की जांच जारी है। आईआईटी बॉम्बे मामले में राहुल गांधी ने साहिल वाकोड़े के परिवार से बातचीत की, न्याय का भरोसा भी दिलाया है। आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस पर यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रणनीति और आंदोलन की दिशा की घोषणा किए जाने की संभावना है। साहिल की मौत के बाद उनके परिवार ने आईआईटी बॉम्बे प्रशासन और कुछ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई है। साहिल आत्महत्या मामले पर भीम आर्मी ने आईआईटी पवई में बाहर अपना प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन होने की उम्मीद है। सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन कल होगा। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस ब्रीफिंग, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ में आप नेता सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड हुई है, जीएमएडीए के दफ्तर में ईडी ने 100 कर्मचारियों और सीएपीएफ के सदस्यों से तलाशी ली है। मोहाली में जीएमएडीए के ईडी की छापेमारी के बीच आपका जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे वरुण विहार और
नेमिशी नगर की योजना

का भूमि पूजन, 12,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है लागत। साथ ही सीएम योगी 2,166 करोड़ रुपए की लागत से 5 आवासीय अपार्टमेंट का शिलान्यास करेंगे। आगरा एक्सप्रेसवे के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संत कबीरनगर में अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का हमला, कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अयोध्या में विकास की अनदेखी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अखिलेश यादव का तंज, कहा कि मुंह नोचुआ तो सुना था, अब चुनाव मचुआ भी आ गए हैं, चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी ने फूका यूपी 2027 विधानसभा चुनावों का बिगुल, रायबरेली में रथ यात्रा कर अखिलेश यादव ने किया शंखनाद। यूपी सरकार ने मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर कहा कि अब रथ यात्रा काम नहीं आएगी, पीडीए की चौपाल भी अब कोई काम नहीं आएगी। मंत्री नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग अब याद करते हैं, 5 वर्षों की सरकार में कालखंड को तो आज भी लोगों की चेहरे पर तनाव आ जाता है। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी का उद्देश्य गुंडागर्दी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। अयोध्या में महंत राजकुमार दास की मध्यस्थता से रामदेव और ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुलाकात हुई है। पतंजलि उत्पादों पर विवाद सुलझाने की पहल की गई है। बाबा रामदेव बातचीत के बाद बोले हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के मन में कुछ भ्रांतियां थी जो बातचीत के बाद दूर कर दी गई हैं। यूपी में AIMIM का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि चुनाव के वक्त याद आता है मुसलमान राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देते हैं। AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि 5 मिनट के लिए टोपी लगाकर 5 साल के लिए टोपी पहनाना अब नहीं चलने वाला। यूपी चुनाव पर AIMIM ने कहा है कि चुनाव के अगले दिन ही हमको हटा देंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक पर सियासी डकैती डालना, हिस्सेदारी देना नहीं है। केरल में पिनई विजन, बेटी वीना और दामाद रियास पर ईडी की रिपोर्ट की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। नित मीनोचा हत्याकांड में पुलिस ने उनकी बहू के बाद अब बेटे सुब्रत को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि सुब्रत आर्थिक दबाव के था और साजिश में शामिल था। आस्था कुंज सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक एक्शन में दिल्ली पुलिस, पार्कों में गश्त बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान की भी चलाया, जगह जगह की नाकेबंदी की जा रही है। PPSC स्कैम में SIT जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कर्नाटक सरकार, 48 घंटे में फैसला होगा। नेट में कट ऑफ घटने से सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है, CJI ने सुनवाई की बात कही है। हैदराबाद में छापेमारी, 730 किलो संदिग्ध मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट जब्त किया गया, एक गिरफ्तार भी हुआ है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक, पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल। 320 की रफ्तार पर सुरक्षित मोड़ की तैयारी है, पारंपरिक रेलवे लाइनों पर इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड क्रॉसिंग टर्नआउट से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकार राइड का लोग ले रहे हैं आनंद। एशियन गेम्स में भारत की शूटिंग में मिला मेडल, अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज धारीवाल ने सीक्रेट स्किट मिक्स्ड टीम में जीता है ब्रॉन्ज। दोनों ही निशानेबाजों का इस खेलों में दूसरा पदक है, दोनों एथलीट ने कल ही मेंस और विमेंस स्केट टीम में इवेंट में जीता था ये मेडल। एशियन गेम्स में 5वें दिन भारत की शानदार शुरुआत, रोशिबी देवी ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, रचा इतिहास। 2018 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है रोशिबीना, एशियन खेलों में लगातार 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस इवेंट में भारत को 14 मेडल मिले हैं, इससे पहले भारत का एक गोल्ड मेडल जीत चुका है और यह 6ठा सिल्वर मेडल है। भारत ने अब तक करीबन 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने मेंस डबल स्कल इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं, टीम होटल में जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका पर पहुंच चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप से शानदार स्वागत किया। इस दौरान फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल को तोड़ा है, उन्होंने खुद अमेरिकी एयरफोर्स एंड्रूज
एयरबेस पहुंचकर शी जिनपिंग का वेलकम किया। तीन दिन के इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत के साथ साथ कई औपचारिक कार्यक्रम भी शामिल है। आज एक स्टेट डिनर का आयोजन भी किया गया है। अमेरिका और चीन के बीच बैठक को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान है, कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। सीनेट की सशक्त सेवा समिति के अध्यक्ष ने शी जिनपिंग के दौरे का किया है विरोध, बोले कि ट्रंप को चीन के भारी सैन्य विस्तार और ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों पर जरूर उठाना चाहिए। तेलुगु एक्शन ड्रामा द पैराडाइज रिलीज, श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी है फिल्म, अहम भूमिका में है मोहन बाबू। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मच अवेटेड फिल्म द भगवान कल होगी रिलीज, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 25 सितंबर को थिएटर में आ रही है महाकाव्य श्री रामायण कथा, अभिषेक सिंह की डायरेक्शन में बनी है फिल्म। एवेंजर्स एंड गेम एनकोर की कल दोबारा बड़े पर्दे पर लौट रही है, दिसंबर में डूम्सडे से पहले मार्वल फैंस के लिए शानदार तोहफा है। एक बार फिर साथ आई इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी, फिल्म गन मास्टर जीना इनका पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज किया गया। और नीति चोपड़ा की सीरीज शक ट्रस्ट नो वन कल होगी स्ट्रीम, एक मां की अपने खोए हुए बच्चे की खोज में बनी है सीरीज। अनीता पड्डा और फातिमा सना शेख की अदाकारी में सनी सजी है वेब सीरीज हुंकार, इस हफ्ते रिलीज हो रही है। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन में बनी फिल्म डोंट बी शाय भी हो रही है रिलीज, कल अमेजॉन प्राइम पर वीडियो होगी स्ट्रीम। ओटीटी पर आ रहा है रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2, इस नए सीजन में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी होस्ट करेंगे। मराठी सिनेमा की बहुच फिल्म अफरा तफरी का ट्रेलर हो गया रिलीज, कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है तीन भाइयों की कहानी।

0: और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते और बात करते हैं चुनाव आयोग को लेकर, खबरों को लेकर। चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। अभिजीत दिक्के ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार देश के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।
1: एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। अब वो एंटी नेशनल क्यों है? बिकॉज ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या था हमारे देश में? डेमोक्रेसी का मतलब ये था कि जहां जनता सरकार चुनेगी, द पीपल विल डिसाइड हु दे वोट, द पीपल गेट टू डिसाइड। लेकिन ज्ञानेश कुमार जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तब से गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा। ये डेमोक्रेसी होती है? ये कौन सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है? पूरी डेमोक्रेसी उल्टी कर दी आपने। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज ऑटोक्रेसी। और मैं बता देता हूँ आपको कि उन्होंने करा क्या है। जब से वो इलेक्शन कमिश्नर बने, महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए, उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट हुए, वेस्ट बंगाल में 90 लाख लोगों को वोट करने नहीं दिया, दिल्ली में 47 लाख वोटर्स को अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं, केरला में 24 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तमिलनाडु में 97 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, कर्नाटका में 1 करोड़, तेलंगाना में 73 लाख। अगर ऐसे ये फिगर्स देखें हम, तो मोर देन 13 करोड़ वोट डिलीट हुए, मोर देन 13 करोड़।
0: और अब अगली खबर राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से, जहां रोड रेज का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। गोल्फ कोर्स रोड पर एक मां बेटी की कार को कथित तौर पर स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी और इसके बाद कार रोककर महिला और उनकी बेटी के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया गया। पीड़िता पूजा वर्मा के मुताबिक घटना 27 अगस्त की रात करीब 10:09 पर है, जब AIT चौक के पास ये घटना हुई। आरोप है कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक ने उनकी कार को रास्ता रोक दिया और लोहे की रॉड निकालकर कार की हेडलाइट पर भी वार किया। पीड़िता का दावा है कि पूरी घटना उनकी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई है और उन्होंने ये फुटेज पुलिस को सबूत के तौर पर सौंपा है। महिला के मुताबिक उन्होंने इस घटना के बाद कई बार पुलिस से संपर्क भी किया, लेकिन करीब 20 दिन बाद सेक्टर 56 थाने की FIR दर्ज की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद, एक बात समझ में नहीं आती, जब ये पूरी घटना 27 तारीख की है, इस महिला ने अपना जो डैश कैम से अपना फुटेज भी जारी कर दिया, तब भी इस मामले पर FIR दर्ज करने में इतना वक्त कैसे लग गया?
2: बिल्कुल, और ये समस्या न सिर्फ गुरुग्राम पुलिस के साथ बल्कि बाकी जो NCR की पुलिस के साथ रही है और लगातार इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। ये जो विक्टिम है उन्होंने आज तक से बातचीत की है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी किया है मैंने, जिसमें उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को ये पूरी वारदात हुई और ये अपनी बच्ची के साथ कार में बैठी हुई थी, जब स्कॉर्पियो में एक सवार शख्स आता है, पहले गाड़ी को टक्कर मार देता है, उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी से उतरता है और अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, उसके बाद जो आयरन रॉड है उससे उठाकर इनकी गाड़ी को चोट मारता है। उसके बाद फिर ये पुलिस थाने पहुंची, इन्होंने शिकायत दी, PCR कॉल भी किया, उसके बाद बात आई गई हो गई और अब 20 दिन बाद जाकर FIR गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की। बड़ी बात सुमित है, आपको याद होगा जो शिवानी चौहान सिया के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, लगभग उसी जगह पर उसी रोड पर ये वारदात हुई है और सिया चौहान की इंसिडेंट से पहले की ये वारदात है, लेकिन 20 दिन बाद FIR दर्ज होना ये बताता है कि जो पुलिस है वो FIR दर्ज करने में कैसी हीला हवाली करती है। जो पूरा इंसिडेंट है वो डैश कैम में जो दर्ज भी हो गया और वो वीडियो भी आज तक के पास है, वो पुलिस को मुहैया कराया गया है। अब पुलिस ने इतनी देरी बाद FIR क्यों दर्ज की, इसका कोई जवाब पुलिस के पास है नहीं। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है।
0: बिल्कुल, और अमित देखिए, ऐसा ही लगता है कि जो मामला हाईलाइट हो गया, जो सामने आ गया, उस पर तो कार्रवाई हो जाए, लेकिन बाकी के मामलों को रफा दफा करके दबा दिया जाए। कुछ ऐसे ही चीजें इस मामले पर भी दिखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, माय गॉड मजा आ जाएगा।
3: क्या चीज है
2: वायरल है? थैंक यू।
4: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
5: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
7: नो सर,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: ओ नादान परिंदे, बैठ
3: बैठ जा, बैठ जा।
4: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: JK Maxx Paints.
14: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
5: यार लोन भूल गया। मैरी
6: इट्स
5: जस्ट अ गुड बैंक ना।
6: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
6: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
7: There's nothing small about
5: us. Oh, Jeevan, nothing small about us.
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR boards लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products. ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक दो तीन झुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
10: क्या चीज है?
9: वायरल है? थैंक यू।
11: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
12: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
13: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
11: ओ नादान परिंदे, बैठ
12: बैठ जा, बैठ जा।
11: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
12: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी.
1: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी.
2: आई लाइक दिस ओनली. तेरा प्यार प्यार प्यार.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी। 97 योग्य वोटरों को फाइनल सूची में शामिल न करने पर नहीं दिया कोई जवाब। चंडीगढ़ के मोहाली में ईडी की टीम पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। डेवलपमेंट अथॉरिटी पर छापेमारी के लिए गए थे एजेंसी के अफसर, कार में तोड़फोड़ की। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच यूपी में कांग्रेस के गढ़ से चल पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। रायबरेली पहुंची पीडीए की बस यात्रा का बुलडोजर से हुआ स्वागत।

0: 9 की मौत, 19 चालान मालिक, एमपी का रजिस्ट्रेशन बिहार से, फिटनेस राजस्थान से, फर्जीवाड़े के साथ दिल्ली यूपी में दौड़ती रही बस। बिहार के समस्तीपुर में भी जमुई के जाहिलों जैसी शर्मनाक हरकत, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, गाली गलौच और अश्लीलता की हदें पार की, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसी घटना घटी है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 यात्री सवार थे। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से बस में फैली कि पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। यात्रियों ने कूद कूद कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 9 लोग बस में ही फंसे रह गए। ये बस दिल्ली से महोबा जा रही थी। ये बताया जा रहा है कि जिस बस में आग लगी उसका मालिक मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला है। नोएडा पुलिस ने बस के दोनों ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों की बात ड्राइवर और कंडक्टर मान लेते तो यह हादसा नहीं होता। अगर यात्रियों की शिकायत को सुनकर वो सतर्क हो जाते तो 9 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन शिकायत करने पर ड्राइवर और कंडक्टर हंसते रहे। FIR के अनुसार यात्रियों को कहते रहे कि मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे।
1: शोलों में रहती बस में 9 जिंदगियां खत्म हो गई। जो लोग दिल्ली से महोबा के सफर पर निकले थे उनमें से 9 यात्री अकाल ही जिंदगी गंवा बैठे। हादसे के वक्त की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बस में आग लगी तो अफरा तफरी मच चुकी थी। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है।
2: ये ब्लास्ट हो रहा है रोड पे।
1: इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। सवाल उठ रहा है कि हादसे की खबर लगते ही क्या सभी यात्रियों को बचाया जा सकता था? क्या उन्हें सही सलामत बस से उतारा जा सकता था? और अगर ऐसा मुमकिन था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इसमें कोई शक नहीं कि पहली नजर में बस में मौजूद स्टाफ ही इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन हुआ क्या ये भी जान लीजिए। रात करीब 11:30 बजे बस यमुना एक्सप्रेसवे पर 33वें किलोमीटर के पास पहुंची, जहां ये हादसा हुआ। उससे पहले ही यात्रियों ने बस ड्राइवर के केबिन से बदबू आने की शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी बस ड्राइवर और वहां मौजूद कंडक्टर बेफिक्र रहे। और तो और वो बीड़ी सिगरेट पीते रहे। जब ड्राइविंग सीट की तरफ से अचानक आग की लपटें निकली तो यात्री चीखने लगे, बस रोकने की गुहार करने लगे, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ने बस को रोककर जांच करने की जहमत नहीं उठाई। दोनों आपस में हंसते रहे और लोगों को धमकाते रहे, मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे।
3: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे।
4: बस चल रही थी या रुकी?
3: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के।
4: उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मुट्ठी पड़ी रही, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चल रही थी।
4: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
4: ड्राइवर के पास से आग लगी
5: है, वो बस छोड़ के भाग गया।
3: आगे से आग लगी है,
4: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था ऐसा। अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: ये तमाम आरोप FIR में भी दर्ज है। उसके मुताबिक लापरवाही की वजह से कुछ ही पलों में बस के अंदर धुआं भर गया। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो ड्राइवर और कंडक्टर बस से कूदकर फरार हो गए, यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। उनमें से ज्यादातर यात्री जान बचाकर बस से बाहर निकले। उनमें से कुछ यात्रियों ने कूद कर जान बचाई, लेकिन 9 यात्री बदकिस्मत रहे। वो अंदर ही फंसे रह गए और आग की लपटों में झुलस कर उनकी जान चली गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि बस में रखा आग बुझाने वाला सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा था।
6: इस बस में बस खामियां ही खामियां थी, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसका पालन किया हो। सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल से बोलूंगा कि एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल बस के पीछे एक ये फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है। आरोप यह है कि जब बस में आग लगी तो ये सिलेंडर काम ही नहीं किया और लोगों ने इस सिलेंडर से शीशे तोड़ने की कोशिश की और यहां से निकलने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखें तो ये पीछे की सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर वो लोग हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाए। इसकी वजह यह थी कि यहां पर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। आप दूसरी इस तरफ देखें तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है स्लीपर का, इसको इतनी आगे तक बढ़ा दिया गया है कि अभी इस वक्त जब मैं और इमानुएल यहाँ बस के अंदर हैं, हम खुद इस बस में चलने में हमें दिक्कत हो रही है, हमारे कंधे यहाँ आजू बाजू टच हो जा रहे हैं। तो आप सोचिए जो लोग उस समय जो दृश्य होगा, जो लोग पैनिक में होंगे, निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, वो कैसे निकल पाए होंगे।
1: हादसे के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस के अंदर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अधिकारियों ने बस में कमियों और खामियों का पता लगाने की कोशिश की। जांच के दौरान बस की तकनीकी हालत को भी देखा गया। मामले में और खुलासे होते जा रहे हैं। अब सामने आया है कि जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा आज तक।
0: तो बताया जा रहा है कि यात्री आगाह करते रहे, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बात ही नहीं सुनी। शायद सुन लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इन सभी लापरवाहियों की अब जांच हो रही है।

0: हादसे की ये तस्वीरें देखिए। आधी रात को यात्री बेबस थे, वो अपनी आंखों के सामने 9 जिंदगियों को खत्म होते देख रहे थे। बस शोले में तब्दील हो चुकी थी। बस में सवार एक शख्स जैसे तैसे जान बचाकर बाहर भागा और फिर उसने ये वीडियो बनाया। बस में आग की लपटें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आग की लपटों में घिरी बस के आसपास यात्री भी दिखाई दे रहे हैं। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। बस में सवार यात्री सोने की तैयारी में थे, तभी यात्रियों को आग लगने की आहट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही सभी को इसकी खबर लगी, तुरंत अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग गए। लोगों के सामने भागने और खुद अपनी जान बचाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ड्राइवर ने अगर बस को सही समय पर साइड कर दिया होता तो शायद यात्रियों की जान बच सकती थी। इस मामले में मुख्य आरोपित बस चला रहा ड्राइवर और कंडक्टर हैं। जानकारी के मुताबिक बस चलाने वाले ड्राइवर का नाम पवन कुमार है, जबकि योगेश दीक्षित नाम का एक और ड्राइवर भी बस में मौजूद था। वहीं कंडक्टर का नाम रोहित बताया जा रहा है और इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लापरवाही की खबरों के बीच प्रशासन का दावा है कि बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाका हुआ और बस में तेजी से आग फैल गई।
1: पुलिस की फायर सर्विस यूनिट द्वारा अथक प्रयास करते हुए बस के अंदर जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में 9 व्यक्ति बस के अंदर जलने, दम घुटने के कारण दुखद मृत्यु अवस्था में मिले। थाना जेवर पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं। संदर्भित घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
0: इस हादसे में 9 लोगों की जान गई, एक महिला यात्री जख्मी हुई। अन्य यात्रियों को प्रशासन ने उन्हें उनके शहर तक भेजने का इंतजाम किया।
2: महिला है जिसका अभी उपचार चल रहा है आरोग्य अस्पताल में, तो इसमें समय से सभी कार्रवाइयां हुई, पुलिस प्रशासन मौके पे था और बाकी जो जिनकी मृत्यु हुई उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम और उनके परिजनों से संपर्क करके जो आगे कार्रवाई की जाएगी।
3: सर, बस के बारे में जानकारी करी, बस का जो चीज थी वो ठीक थी, कैसी बस थी?
2: ये एसी स्लीपर बस थी, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है।
3: सर, बस ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ है इसको?
2: अब ये पुलिस अपनी बस कस्टडी में रखा हुआ है और बाकी पुलिस इसमें नियमानुसार विधि कार्रवाई कर रही है। लगभग 15 लोग थे, उनको जो है रेस्क्यू करके मोवा भेज दिया गया था और बाकी कुछ लोग जो थे जो सवार थे अपने निजी वाहनों से चले गए और एक महिला है जो जिला आरोग्य अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है। टोटल लगभग 35 लोग थे। अब पुलिस इसमें विधि कार्रवाई कर रही है, जो भी पुलिस है बस को कस्टडी में लेकर विधि कार्रवाई कर रही है।
0: उधर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा, FIR दर्ज की गई, उसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई। जानकारी के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, धारा 125B, धारा 105 और धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा बस हादसे में 9 लोगों की मौत को लेकर CM योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों से बात की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। अब इस जानलेवा हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा आज तक।
4: अब इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात हम आपको दिखाते हैं। इस बस का मालिक मध्य प्रदेश का रहने वाला है, बस का रजिस्ट्रेशन बिहार के मधुबनी में था, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट राजस्थान में बना था, प्रदूषण प्रमाण पत्र हरियाणा से बना था, दिल्ली से बस चलती थी, यात्रियों को लेकर महोबा जा रही थी। इतने राज्यों में कनेक्शन होने के बाद भी किसी अधिकारी की नजर किसी राज्य में बस के संचालन में हो रही लापरवाही पर नहीं गई। जिस बस में आग लगी और 9 जिंदगियां खत्म हो गईं, उसी कंपनी की दूसरी बस का जायजा लेने आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट।
5: कल्पना, बस सर्विस आपको यहाँ पर नजर आएगी। दरअसल यही वो बस सर्विस है जो कि नोएडा में जिस तरीके से हादसा हुआ वो भी इसी कंपनी की बस थी। इसका भी रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। ये बस है, स्लीपर बस है और इसकी क्या स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बस के ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था है और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंडक्टर के बैठने की व्यवस्था है और इसका पूरा रियलिटी चेक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बस में एंटर करते के साथ ही लिखा है नो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना साफ मना है राज कल्पना। लेकिन उसके बावजूद जो आरोप लग रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर कि किस तरीके से ड्राइवर जो है वो स्मोकिंग और तंबाकू के अंदर लगातार कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ अगर आप चलेंगे तो अंदर की तरफ अगर आप बस देखेंगे तो बस में जो एग्जिट गेट होना चाहिए फायर एग्जिट अगर कोई हादसा हो जाता है उसकी स्थिति क्या है, ये देखिए ये गेट है फायर एग्जिट का लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर लॉक है, यहाँ पर बकायदा एक सीट जो है वो बना दी गई है अगर कोई हादसा हो लोगों अगर फंस जाए या बस में कोई आग लग जाए तो कैसे यहाँ से निकलेंगे। ये गेट पूरी तरीके से आपको बंद नजर आएगा और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हैमर जो है वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा ताकि शीशे तोड़ करके आदमी बाहर निकल सके। आप ये सोचिए कि तमाम ये स्लीपर कोच है इसमें भी बकायदा शीशे जो है वो लगे हैं, अंदाजा लगाइए जब ये पूरा हादसा नोएडा के अंदर हुआ था लोग अंदर फंसे हुए थे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके से इस पूरी बस की अगर आप रियलिटी चेक करेंगे तो किस तरीके के हालात है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर चढ़ने का ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर भी बकायदा जो गद्दे हैं वो लगा दिए गए हैं जबकि यहाँ पर इस तरीके से गद्दे जो है वो नहीं लगा सकते, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए खड़े होने की, लेकिन यहाँ पर भी एक पूरा कोच जो है वो लगा दिया गया ताकि आदमी सो सके। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ये गेट और है, इस गेट के ऊपर किस तरीके से अगर कोई हादसा होता है तो कैसे कोई अपनी जान जो है वो बचाएगा इस पर भी पूरी तरीके से एक पूरा कोच यहां पर लगा दिया गया, सोने की व्यवस्था कर दी गई, एक बेड लगा दिया गया और यहां से रास्ता कैसे कोई व्यक्ति अगर फंसे तो कैसे अपनी जान बचाए हम भी कोशिश करेंगे। ये देखिए कि ये कैसे खुलता है, ये पूरी तरीके से लॉक है।
4: आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज आनंद विहार स्थित बस अड्डे पहुंचे और वहां जाकर कई बसों को देखा मुआयना किया।
6: वहां एक नॉब है, वो नॉब इतनी बुरी तरह से लगा हुआ है कि वो खुल नहीं रहा है और जहां जो इमरजेंसी एग्जिट है बहुत विपरीत स्थिति अगर आपके बस में पैदा हो जाती है तो स्थिति से बचने के लिए आपको जान बचाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। यहां पे शायद एसी का डक्ट है वो भी खराब हो रखा है, मैं कहीं कोई हथौड़ा नहीं देख पा रहा हूं, अगर हमारे वीडियो सहयोगी को कोई हथौड़ा दिख रहा हो तो वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, फिलहाल में मेरी नजर में तो हथौड़ा मुझे किसी सीट पे यहां दिख नहीं रहा। हथौड़ा क्यों? क्योंकि अगर यमुना एक्सप्रेस वाले एक्सप्रेस वे जैसी स्थिति बनती है कि आग लग जाए कुछ हो जाए तो कांच तोड़ना पड़ेगा, कांच तोड़ेंगे कैसे, हथौड़ा तो है नहीं यहाँ पे, कहीं हथौड़ा नहीं है। ये दरवाजा आप क्योंकि यहाँ आपने एक सीट दे दिया है तो दरवाजे का भी जो हाल है वो हम देखते हैं। इमरजेंसी के हालात में आप ये दरवाजा आपको खोल के और फिर यहाँ से कूदना है, हाइट से आपको कूदना पड़ेगा यहाँ से, तो इस हालत में भी हो सकता है आपको चोट आए। और ये तो अच्छी स्थिति है कि ये दरवाजा खुल गया है, कई बसों में तो दरवाजा खुलता ही नहीं है, ऐसे हालात बने। आप क्या बता रहे हैं, इस तरफ भी दरवाजा है, यहाँ पे भी दरवाजा है, दरवाजा खुल जाएगा? अच्छा ये देख लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ। ये इमरजेंसी एग्जिट है, ये रहा, ये दरवाजा खुल गया, तो ये आप अगर इस तरह बसों में हो तो हो सकता है कि आपके लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि हमने बीते महीनों में जो हालात देखे हैं ये मॉडिफाइड बसों की, वो स्थिति ठीक नहीं रही है, कहीं दरवाजा नहीं खुलता है, कहीं पे हालात ऐसे होते हैं कि आप यहाँ तो चलिए एक जगह छीन ली गई है, खाली गई है इमरजेंसी वाली जगह जो है पीछे की एग्जिट की, उसके बाद भी दरवाजा खुल गया, कई बार तो नॉब ही नहीं खुल रहा होता, ये हालात होते हैं।
4: दिल्ली से कटरा की एक बस में भी वैसी ही हालत दिखाई दी, उस बस में इमरजेंसी से निकलना मौत को दावत देने जैसा दिखा, इस पर और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
7: ये जो हिस्सा होता है ये होता है इमरजेंसी एग्जिट। अब मान लीजिए अगर आग की अनहोनी हो जाए तो ड्राइवर या खलासी कोई पीछे आए तो लीवर खींच के दरवाजा खोले, पीछे कोई एक तो लीवर नहीं दिख रहा है, यानी ये दरवाजा अगर खोलना हो तो अंदर से, और ये कितनी ऊंचाई पर है, इमरजेंसी एग्जिट बस इतना सा है, जरा पैर हटाइएगा, हाँ ये खुल रहा है, आप सोचिए, नहीं नहीं खुल रहा, ये पूरी ताकत लगा के भी, ये 1.5 से 2 फीट के इमरजेंसी एग्जिट में अगर 5 से 6 फुट लंबे लोग अगर जाना चाहें तो नहीं निकल सकते और ये जाम है, पूरी तरह जामे नहीं खुलेगा, अगर अनहोनी हो जाती आग लगती है तो लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, ये यहीं पर ट्रैप होके रह जाएंगे। उसके बाद अगर शीशा तोड़ना चाहें, किसी भी शीशे पर हैमर नहीं है, वो इसे अगर तोड़ना चाहें हाथों से आप ऐसे शीशे नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर भी एक और हादसे को, ये वो बर्निंग बस हैं जो बड़ी अनहोनी कर सकते हैं और इनमें किसी भी तरह के एहतियात के कदम नहीं उठाए गए। फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसी जगह है जो समय पर नहीं निकलेगा, इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल है। इमरजेंसी एग्जिट इतना छोटा है और पीछे गिर सकते हैं लोग, ज्यादा लोग नहीं निकल सकते। इन बसों में सुविधाओं के नाम पे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से आप विंडो को तोड़ करके इमरजेंसी में एग्जिट कर सके। ये वो बर्निंग बस हैं जो दिल्ली एनसीआर नहीं देश के अलग अलग कोनों में चल रही हैं। लोग सुविधाओं के नाम पर इनमें बैठ जाते हैं, लेकिन ये जानलेवा है, खतरनाक है। पहले राजस्थान और उसके बाद नोएडा में हमने जिस सड़क पर देखा, यमुना एक्सप्रेस वे पर, ऐसी न जाने कितनी बसें व्यवस्थाओं की नाक के नीचे चल रही हैं। इनका सेफ्टी सिक्योरिटी फायर ऑडिट नहीं किया जाता और इसीलिए न जाने ऐसी कितनी बस हादसों को न्योता दे रही हैं।
4: आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे, यहां उन्होंने भारत नेपाल मैत्री बस का भी हाल देखा।
8: यहां पर आपको दिखाते हैं, सबसे पहले यहां सामने की तरफ जो ड्राइवर सीट है उसको यहां पर दिखाते हैं कि आगे की तरफ आप देखिए कि ड्राइवर सीट के लिए स्पेस जो है यहाँ पर जो दिया गया है वो कम स्पेस है। और फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात करें तो बस में अगर बड़ी आग लगती है तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 500 ml का ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि 500 ml का फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि एक बहुत ही छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसमें अगर बस में किसी भी तरीके से आग लगती है तो उसको बचा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब बस के अंदर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से बस के अंदर जो है यहाँ इसमें सुविधाएं तो काफ़ी हैं। सीटों की अगर बात करें तो ये बैठ करके जाने वाली पूरी बस है। इसमें जो है इमरजेंसी गेट जो पीछे की तरफ होता है, उस गेट की यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये इमरजेंसी गेट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी गेट यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ नहीं है। और बस में जब भी किसी को अगर भागना हो, अचानक इसमें फायर की सिचुएशन हो जाए, तो यहाँ पर इस इमरजेंसी गेट नहीं इसमें पीछे की तरफ बना हुआ है। और इस जगह क्या कर दिया है, सीटों का अरेंजमेंट पूरी तरीके से कर दिया गया है। बस के अंदर इमरजेंसी गेट नहीं है। हैमर की अगर बात करें तो हर एक सीट पर हैमर होना चाहिए। परिवहन विभाग की तरफ से इस तरीके के नॉर्म्स दिए गए हैं कि जो भी सीटें यहां पर लगी हुई हैं उसमें हर एक सीट के पास जो है हैमर लगे होने चाहिए।
4: अब देखिए लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
9: सबसे पहला आप देखिए जो पीछे का जो एग्जिट गेट है वो पूरी तरीके से लॉक है, यानी कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता है। आप किसी भी तरीके से इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं खुलेगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पे लॉक है। ना ही इसके लिए कोई व्यवस्थित हैमर है, ना ही किसी प्रकार का किसी व्यवस्था की गई कि अगर इसको तोड़ना भी चाहे हैमर से तो तोड़ सके, लेकिन वो भी नहीं टूटेगा। अब इसके अलावा यानी कि यहाँ पर एक गद्दा लगा रखा है, जो सीट है इस पर भी बैठने के लिए लोगों को दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब एग्जिट विंडो ही सीट नहीं है, दूसरा अगर हम एग्जिट विंडो देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर है तो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कैमरा पर्सन संजय सिंह से कहूँगा दिखाएंगे, तो इसमें देखिए आप एक सीट लगा रखी है। अब ऐसे में यहाँ एग्जिट विंडो पर पूरी सीट है जिस पर ना ही हैमर है और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधा है जिससे कि बचा जा सके। अगर मैं इसमें बैठ जाता हूँ तो ये कोई व्यवस्थित नहीं है, लेकिन इसको खोलने के लिए तोड़ने के लिए जो हैमर चाहिए होगा वो भी मौजूद नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कैसे पैसेंजर बाहर निकलेगा, ये बड़ी परिस्थितियाँ हैं। ना ही कोई फायर सिस्टम ऐसा है जिससे कि बुझाया जा सके आग को। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं ये बसों की हैं जहाँ पर मोटा किराया लिया जाता है और उसके बाद इन पर कोई सुरक्षा के मानक जो है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं।
4: रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
3: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
4: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
5: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
3: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं। आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
2: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
6: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
2: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चुनाव आयोग को लेकर ताजा मीडिया रिपोर्ट से ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या चुनाव आयोग में संवैधानिक तरीके से काम हो रहा था? चुनाव आयोग पर उठ रहे ऐसे सवालों पर जवाब देने के लिए आयोग के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सीआई के सभी काम कानूनों और आयोग के निर्देशों के अनुसार होते हैं। आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य होते हैं। आयुक्तों की तरफ से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए थे। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। 10 महीनों में सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों का नतीजा है। इस काम में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और परिचालन तंत्र और आयोग की कई मंजूरियां और निर्देश शामिल थे। आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईसीआई नेट, अनधिकृत छेड़छाड़, हेरफेर आदि को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। भारत का चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब आयोग दावा कर रहा है कि उसके फैसलों में कोई भी फैसला असंवैधानिक या अवैध नहीं। दोनों आयुक्तों के नाम पर हुए खुलासों का चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
1: कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल। दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफ कोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही है।
0: लेकिन सवाल इस प्रेस नोट को लेकर भी है, और वो ये कि क्या इसे लेकर भी चुनाव आयोग के दोनों आयुक्तों की सहमति है भी या नहीं, क्योंकि दोनों चुनाव आयुक्त ही ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल उठा चुके हैं कि बिना आयोग की मंजूरी के बयान जारी कर दिए जा रहे हैं। तो सवाल बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मतभेदों के दावों पर सभी फैसले सर्वसम्मत से काम करने के दावे हो रहे हैं।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सदमार्ग थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार को बताया देश के लिए खतरा। चुनाव आयोग में गड़बड़ी और असहमति पर पवंडर के बीच आज तक के सवालों पर गोवा के चुनाव अधिकारी ने साधी चुप्पी। 97 योग्य वोटरों को फाइनल सूची में शामिल न करने पर नहीं दिया कोई जवाब। समस्तीपुर में गिरफ्तार हुई लड़की को छेड़ने वाली गुंडों की टोली, लेकिन बिहार के मंत्री का बेशर्म बयान। अशोक चौधरी बोले, घटनाएं तो जापान और अमेरिका में भी होती हैं, कोई नहीं कह सकता कि कल से नहीं होगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
2: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के नेता दुश्मनी छोड़ अब इस समय साझेदारी की बातें कर रहे हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप खुद एयरपोर्ट लेने पहुंचे। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। आज ही राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बंद दरवाजे के बीच बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। वही आज रात राजकीय भोज का भी इंतजाम किया गया है। अमेरिका पहुंचने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के दौरान दो अमेरिकी B-1B लांसर बम वर्षकों ने उड़ान भी भरी और यह ट्रंप की ताकत दिखाने की आदत का एक हिस्सा था। शायद इस वजह से ही शी जिनपिंग ने अमेरिका पहुंचते ही यह कहा कि अमेरिका और चीन दो प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार, यानी उन्हें पार्टनर बनकर रहना चाहिए। और जब शी जिनपिंग ये कह रहे थे तब यह खबर आई कि शी जिनपिंग के दौरे से अमेरिका को कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी विमान कंपनी चीन से 500 विमानों के ऑर्डर मिलने की जो उम्मीद कर रही थी उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। कहा यह जा रहा है कि मई में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर जिन 200 विमानों का ऑर्डर मिला था वही पक्का अगर हो जाए तो वही बहुत होगा। और इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर जमकर गरजे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि ईरान ना उसने घुटने टेके हैं ना वो घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक आतंकी देश बताया था। जवाब में मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका को आतंकी बताते हुए मिनाब में मारे गए बच्चों की तस्वीर दिखाई और कहा कि अमेरिका ने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अपनी मिसाइल के हमलों का शिकार बनाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि भारत समेत 47 देशों के सैनिकों को रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार चुका है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज रणभूमि पर है और ये तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे पर एक रिपोर्ट, क्योंकि ये दौरा और अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, चीन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर जब आप रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, जब आप सप्लाई चेन की बात करें और दोनों देशों के बीच जो टैरिफ वॉर है उसको कुछ महीने पोस्टपोन करने पर भी बातचीत चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
3: शी जिनपिंग का विमान जैसे ही वॉशिंगटन डीसी के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, अमेरिकी वायुसेना के युद्धक विमानों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें हवा में एस्कॉर्ट किया। जिनपिंग के हवाई सुरक्षा घेरे में अमेरिकी स्टेल्थ विमान शामिल थे और जब जिनपिंग उतरे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। वैसे तो अमेरिका की सुपर पावर वाली

0: पटाखों को उड़ाकर किया था और कल जब जिनपिंग पहुंचे तो उनके ऊपर से दो B-1B लांसर बम वर्षकों को उड़ाया। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान ट्रंप खुद मजाक बनकर रह गए। अपने ही बम वर्षकों की गर्जना सुनकर ट्रंप ने आंखें बंद कर ली और परेशान हो गए, जबकि जिनपिंग स्थिर खड़े रहे। यहां तक कि चीन की फर्स्ट लेडी पेंग और मेलानिया ट्रंप भी बड़े आराम से खड़ी रही। इस दौरान अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था। ट्रंप के असहज होने की ये तस्वीरें व्हाइट हाउस के लाइव स्ट्रीम की हैं, जिन्हें देखने के बाद ट्रंप का काफी मजाक उड़ा। बाद में जब स्वागत समारोह की झलकियां जारी की गईं, तब इस तस्वीर को एडिट कर हटा दिया गया। यही नहीं, वो ट्रंप जिन्होंने चीन पर 104% टैरिफ लगा रखा था, उन्होंने न केवल 100 फीट लंबा रेड कार्पेट बिछाकर जिनपिंग का स्वागत किया, बल्कि व्यापार युद्ध पर चीज बायर को 2 महीने तक आगे भी बढ़ा दिया। 11 साल बाद जिनपिंग अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमानों का स्वागत व्हाइट हाउस में करते हैं, लेकिन ट्रंप और मेलानिया मैरीलैंड के उस मिलिट्री बेस पर पहुंचे जो वॉशिंगटन के बाहर स्थित है, और फिर दोनों ने चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत खुद किया। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध को जनवरी 2027 तक रोक दिया है, लेकिन ट्रंप जिनपिंग की बातचीत में ये एक बड़ा मुद्दा है। वहीं AI और ईरान के अलावा रूस यूक्रेन जंग जैसे मुद्दे भी चर्चा में शामिल रहेंगे। आज व्हाइट हाउस ने तकनीक से जुड़ी बड़ी हस्तियों को जिनपिंग के साथ डिनर पर बुलाया है। उनमें OpenAI, एप्पल, XAI, माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA, मेटा और दूसरी कंपनियां शामिल हैं।
1: बड़ी बात AI को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है। यहाँ तक कि पिछले इस वीकेंड पे जब सेक्रेटरी बेसेंट मिले अपने काउंटरपार्ट से न्यूयॉर्क में, तो भी AI को लेके बात की गई और ये कहा गया कि AI को लेके एक हॉटलाइन होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में, ताकि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो अमेरिका चाइना को और चाइना अमेरिका को बताए कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक बात है, क्या हम देख सकते हैं इस पे कोई कोई सहमति बन पाए अमेरिका और चाइना के बीच में?
0: आज दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बैठक होगी। ट्रंप चाहेंगे कि जिनपिंग ईरान पर अमेरिकी शर्तों के अनुसार युद्ध बंद करने का दबाव डालें। जिनपिंग चाहेंगे कि अमेरिका ताइवान को हथियार बेचना बंद करे। बैठक के बाद ही ये साफ होगा कि इतनी गर्मजोशी के साथ जो दौरा शुरू हुआ उसका अंत भी अच्छे माहौल में होगा या नहीं। आज तक ब्यूरो।
2: चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भी शी जिनपिंग और उनकी पत्नी के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर ये जो औपचारिक आगमन हुआ उसका वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने इसे अभूतपूर्व आगमन समारोह बताया, जिसमें रेड कार्पेट, 21 तोपों की सलामी, ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर, मिलिट्री बैंड और B-1B विमानों का फ्लाई पास्ट शामिल था। आप इन तस्वीरों को देखिए, अमेरिका के इतिहास को खंगालिए, तो चीन के राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट जाकर और वो भी जॉइंट बेस एंड्रूज जाकर उनका स्वागत करना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति यहां देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या दोनों देश शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों के बीच चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर विवाद हो या ऐसे कई बड़े विवाद हैं, दोनों देशों के बीच टैरिफ्स को लेकर एक युद्ध सा चला आ रहा है। ताइवान का मुद्दा है, मध्य पूर्व का मुद्दा है, रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा है, जिसमें चीन और अमेरिका दोनों अलग अलग खेमों में नजर आते हैं। वैसे अमेरिका और चीन के जो दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं, बस अब से थोड़ी ही देर में बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले अमेरिका का जो विमान निर्माता कंपनी है बोइंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर अमेरिका से आ रही है कि बीजिंग ने सैकड़ों नए विमानों के बड़े ऑर्डर की उम्मीद जो अमेरिका को दी थी, वो उम्मीद अब बस क्रैश करती जा रही है। बोइंग केवल मई में जो 200 विमानों के पुराने समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। बोइंग को उम्मीद ये थी कि इस बार चीन से सैकड़ों अतिरिक्त विमानों का एक नया सौदा मिलेगा। बातचीत इस पे हो भी रही थी,

0: लेकिन जारी बातचीत के बीच उम्मीदें ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। अब कंपनी केवल 200 विमानों के मई वाले करार को ही फाइनल करने में जुटी है। इससे पहले मई में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया था कि चीन केवल 200 बोइंग जेट खरीदेगा, तब विश्लेषकों का आकलन यह था कि उम्मीद तो 500 विमानों की थी। क्या वो उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है? खबर आते ही बोइंग के शेयर में 4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका की ये जेट निर्माता कंपनी जो है 2017 से ही चीनी बाजार में संघर्ष कर रही है और इसका सीधा फायदा यूरोपीय इसकी जो प्रतिद्वंदी है एबस को इसका फायदा मिला है, जिसने चीन के विमान बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई है। एबस और बोइंग दोनों के मार्केट अनुमानों के अनुसार 2045 तक चीन को करीब 9000 नए विमानों की आवश्यकता होगी, जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी मांग है। बड़ी खबर इस समय आ रही है भारत में चुनाव आयोग को लेकर जो विवाद इस समय छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में बदलावों पर आज तक के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि गोवा में 97 वोटरों का नाम काटने को लेकर उसने डेटा सेंट्रलाइजेशन से इनकार किया और कहा कि ईआरओ के अधिकार अभी भी ईआरओ के पास ही है। मेरे सहयोगी साहिल जोशी ने चुनाव आयोग से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल, फॉर्म 6 में बदलाव क्यों किया गया? दूसरा सवाल, जब ईसी ने चिंताएं जताई तो उनकी चिंताओं के बावजूद ये आदेश क्यों दिए गए? तीसरा सवाल, डेटा को सेंट्रलाइज क्यों किया गया? जब उन वोटरों को योग्य पाया गया तो गोवा सीईओ ऑफिस ने ईसीआई नेट पर सुधार करने के लिए ईआरओस को अनुमति देने की बार बार मांग क्यों की? ये बड़े सवाल है जो आज तक लगातार उठा रहा था। साहिल जोशी मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, सवाल आज तक ने 3 बड़े पूछे, लेकिन चुनाव आयोग से फॉर्म 6 को लेकर कि उसमें ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाला बदलाव क्यों किया गया, ईसी की जो चिंताएं थी उसके बावजूद आदेश क्यों दिए गए, क्या जवाब आ रहा है?
1: देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि फॉर्म नंबर 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप फॉर्म नंबर 6 को लेकर लगाया गया था और इसमें दोनों चुनाव आयुक्तों का यह कहना था कि फॉर्म नंबर 6 में बदलाव किए गए हैं। 2 एडेड क्वेश्चन जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे थे गौरव, वो उसमें ऐड कर दिया गया है और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अवैध है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया, उनका ये कहना है कि फॉर्म नंबर 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है हमने एक डिक्लेरेशन फॉर्म उसके साथ ऐड कर दिया है एज एन एनेक्स्चर, मतलब फॉर्म 6 के साथ में आपको एक और फॉर्म देना होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, और वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें आपको इन 2 सवालों के जवाब देने हैं कि क्या आपके माता पिता या आपके परदादा परदादी दादा दादी या नाना दादा दादी कोई इससे पहले जब एसआईआर हुआ था तो उसमें शामिल थे कि नहीं। और उसमें उन्होंने कोट किया हुआ है, उनका ये कहना है कि 14 मई 2026 को चुनाव आयोग के एसआईआर के तहत जो आदेश निकाला गया उसके तहत उन्होंने ये डिक्लेरेशन फॉर्म कंपलसरी किया और फॉर्म नंबर 6 तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब यह डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दिया जाएगा। यानी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बाईपास किया गया है, क्योंकि अगर फॉर्म नंबर 6 में बदलाव करने हैं तो कानून मंत्रालय से कराने पड़ते हैं, और अगर कानून मंत्रालय से बदलाव कराने के बजाय चुनाव आयोग का ने क्या किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो उनको अधिकार है उसके तहत उन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म उसमें ऐड किया है और उसके तहत वो फॉर्म लिए जा रहे हैं। दूसरा सवाल जो पूछा गया था वो बड़ा दिलचस्प सवाल है, खास करके ईआरओ नेट को लेकर, क्योंकि देश में जो चुनाव जो वोटर लिस्ट बनती है वो हर चुनाव क्षेत्र वाइज बनाई जाती है और उसकी जिम्मेदारी उस चुनाव क्षेत्र के ईआरओ के पास होती है। अब इसमें ईआरओ की तरफ से जो सुखविंदर सिंह संधू ने ये सवाल उठाया था कि कई ईआरओ शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास ईआरओ नेट का एक्सेस पूरी तरीके से नहीं है, तो उस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग कह रहा है कि यह गलत है, ईआरओ नेट का एक्सेस ईआरओ के पास है, ईआरओ उस ईआरओ नेट के जरिए किसी नाम को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने आपको किसी का नाम डिलीट करना है तो फॉर्म नंबर 7 पे आपको क्लिक करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर में। एक बार आपने फॉर्म नंबर 7 पे क्लिक किया किसी नाम पर तो दोबारा उस नाम को ऐड आप नहीं कर सकते, वो अधिकार आपके पास नहीं होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये गलत है कि उसको सेंट्रलाइज किया गया है, ईआरओ के पास वो अधिकार है, यानी इलेक्ट्रल रीजनल ऑफिसर के पास वो अधिकार है, लेकिन एक बार डिलीट करने के बाद दोबारा जोड़ने का अधिकार उनके पास नहीं है, रीएलोकेट करने का अधिकार नहीं। इसीलिए गोवा में 97 जो वोटर्स है उनके नाम बाहर रहे और उसके लिए एक तरीके से ईआरओ रिस्पॉन्सिबल है ये कहने की उनकी कोशिश है।
0: पर को आप नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, उस पर भी रहेगी नजर। लेकिन इस समय ईरान की बात करते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने अमेरिका और इसराइल पर तीखा पलटवार करते हुए पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। 7 महीनों से जारी जंग के बीच मसूद पेजिश्कियान ने मंच से आयतोल्ला खमेनेई और उस हमले में मारे गए, यानी ईरान पर हुए हमलों में मारे गए मिनाब की मासूम बच्चियों की तस्वीरें लहराकर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में उन तस्वीरों को लहराकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अगले 48 घंटों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य का वो जलमार्ग नहीं खुला तो ईरान के पावर ग्रिड और तेल की रिफाइनरियों पर भीषण हमला होगा, ऐसी धमकी दी जा रही है। हालांकि ईरान भी पलटवार कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र में इस युद्ध की आग फैलेगी। इस खतरे के बीच अगर कूटनीति ने अगर काम किया तो ठीक, वरना मध्य पूर्व इस बार खुली जंग की सबसे भीषण आग में झुलस सकता है। न्यूयॉर्क से देखिए आज तक की एक खास रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का मंच बुधवार को उस वक्त भीषण कूटनीतिक जंग का अखाड़ा बन गया जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने अमेरिका और इसराइल पर सीधा हमला बोल दिया। पिछले 7 महीनों से जारी भयंकर युद्ध के बीच पेजिश्कियान ने मंच से पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई और मिनाब स्कूल हमले में मारे गए 120 बच्चों की तस्वीरें लहराकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया।
3: Described us as terrorists. We have been the victims of terrorism. I come from an Iran in which our esteemed supreme leader was assassinated without any legal framework or reason. I come from an Iran where, in truth, they bombed a school. You see these children? These children perished under bombs with weapons used by the United States and Israel. They were innocent, had committed no crimes.
2: पेजिश्कियान के भाषण शुरू करते ही संयुक्त राष्ट्र में मौजूद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने वॉकआउट कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के पास ईरान से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों समेत सभी रास्ते खुले हैं। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन के मंच से चेतावनी दी थी कि उनके पास ईरान को मिटा देने का विकल्प मौजूद है।
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran? That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election.
2: इसका जवाब भी ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में दिया।
3: Essence and charter in the spirit of the United Nations, he must know that the resistance of the Iranian people will only increase in the face of sanctions, increased pressure, increased bullying. we will never bow our head or bend at the knee.
2: वैसे ट्रंप ने कल ही ईरान अमेरिका के बीच कतर के जरिए अच्छी बातचीत का दावा किया था, लेकिन कूटनीति के दांव पेच के बीच खाड़ी क्षेत्र पूरी तरह बारूद के ढेर पर खड़ा है। दुनिया के 20% तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा मजबूत कर रखा है। बुधवार को ही एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला हुआ जिसमें यूपी के सूरज यादव की मौत हो गई। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी सख्त कर दी है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 2% उछल चुकी हैं। अब बात आर पार की लड़ाई पर आ पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर अगले 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर ग्रिड्स और तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी जॉर्डन और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे विध्वंसकारी मिसाइल हमला करने की धमकी दी है। यानी अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया एक भीषण क्षेत्रीय युद्ध की आग में झुलसेगी या कूटनीति की जीत होगी। आज तक ब्यूरो।
0: युद्ध के कई मोर्चे हैं और संयुक्त राष्ट्र में क्या शांति का मार्ग निकलेगा? संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ा मंच है कूटनीति का। दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ बीचों बीच घिरा इज़राइल। न्यूयॉर्क में चल रहे यूनाइटेड नेशंस महासभा के सत्र में इस वक्त गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को लेकर इज़राइल के खिलाफ आरोपों की बौछार हो रही है। वो फ्रांस, जिसने सबसे पहले इज़राइल को आधुनिक फाइटर जेट दिए थे, उसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी इज़राइल को इस समय कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इज़राइल ने यूनाइटेड नेशंस में अपने खिलाफ चल रही मुहिम को झूठ की इंडस्ट्री का नाम दे दिया है। उसके खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक डिजिटल युद्ध, ईरान ने उस पर काउंटर अटैक किया है। उसने इज़राइल को दोषी ठहराने वालों को रट्टू तोता, यानी एक ही रट लगाने वाला तोता बता दिया है। और तोते वाले वीडियो को लेकर अर्दोगान के भाषण पर वॉकआउट और मियामी से लेकर न्यूयॉर्क तक फैली इस कूटनीति की आग किस तरह से इज़राइल को घेरने का प्रयास कर रही है और इज़राइल किस तरह पलटवार कर रहा है, देखिए यह धमाकेदार रिपोर्ट।
2: जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में प्रतिनिधियों की जगह बैठे हैं रटे रटाए तोते, जो सिर्फ एक ही धुन गा रहे हैं, ब्लेम इज़राइल, ब्लेम इज़राइल। आखिर इज़राइल को यूएन जैसी वैश्विक संस्था के खिलाफ ऐसा तीखा और व्यंगात्मक एनिमेशन जारी करने की नौबत क्यों आई? वजह है इज़राइल के खिलाफ यूएन में उठ रही लगातार वो आवाजें जिन्हें इज़राइल झूठ की इंडस्ट्री बता रहा है। इज़राइल के प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने सीधा आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र का मंच अब सिर्फ एक इको चैम्बर बन चुका है, जहां सच को दबाकर सिर्फ इज़राइल के खिलाफ सुनियोजित तरीके से नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। इस तीखे डिजिटल हमले का असर यूएन हॉल के अंदर साफ देखने को मिला, जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मंच से गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाइयों की धज्जियां उड़ानी शुरू की तो इजरायली प्रतिनिधि मंडल का सब्र टूट गया। इजरायल के कूटनीतिज्ञ विरोध में अपनी कुर्सियां छोड़कर पूरे तेवर के साथ हॉल से वॉकआउट कर बाहर निकल गए। ये घेराबंदी सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है। चौतरफा दबाव में घिरे इसराइल पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। मैक्रों ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में हमास मौजूद नहीं है, लेकिन इसराइल हर दिन वहां ज्यादती करता है।
5: Look, just look at what's happening in the West Bank. We're day in, day out, we are seeing violations. And in the name of what? Hamas was never reactive in the West Bank. What we need is respect for the legitimate rights of the Palestinian people, their legitimate right to exist. This is a prerequisite for security today and tomorrow for the people of Israel. Their security, their very existence.
2: इसराइल ने मैक्रो के बयान को हकीकत से कोसों दूर बताकर खारिज कर दिया। इसराइल का कहना है कि हमास के आतंकी वेस्ट बैंक में भी सक्रिय हैं और लगभग हर दिन इजरायली नागरिकों पर हमले करते हैं।
0: सबसे बड़ा प्रश्न यही, क्या कूटनीति से समाधान निकलेगा या युद्ध की आग में दुनिया और झुलसेगी। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: मैडी, I need to open a savings account.
9: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
8: स्मॉल बैंक,
9: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
8: Okay.
9: Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
8: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
6: तो कौन सी बनानी है?
7: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
8: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
9: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
10: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
11: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित।
12: मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
13: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
14: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
10: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
15: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
16: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। कितना जरूरत है
10: पंचायत आज तक सिर्फ आज तक पर।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

सीईसी के खिलाफ हमलावर विपक्ष। थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महुआ मोइत्रा ने संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार को बताया देश के लिए खतरा। समस्तीपुर में गिरफ्तार हुई लड़की को छेड़ने वाले गुंडों की टोली, लेकिन बिहार के मंत्री का बेशर्म बयान। अशोक चौधरी बोले, घटनाएं तो जापान और अमेरिका में भी होती हैं, कोई नहीं कह सकता कि कल से नहीं होगा। सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ से चल पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ। रायबरेली पहुंची पीडीए की बस यात्रा का बुलडोजर से हुआ स्वागत। स्टाफ की लापरवाही से यमुना एक्सप्रेसवे पर जली स्लीपर बस, 9 की मौत। एमपी का मालिक, बिहार में रजिस्ट्रेशन, राजस्थान में फिटनेस और 19 बार चालान। गजब फर्जीवाड़े के साथ दौड़ती रही बस।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले 3 साल से जेल में रखे है, और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च से इस कदर डरी हुई है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस समय कंटेनराबाद में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान कहा जा रहा है। जी हां, 27 मार्च को इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी देश भर से, यानी पाकिस्तान के अलग अलग सूबों से, इस्लामाबाद की तरफ कूच करने वाली है। इस्लामाबाद मार्च का ऐलान हो चुका है। आसिम मुनीर डर गए हैं, इसी डर के मारे पाकिस्तान की सरकार या सेना पूरी राजधानी इस्लामाबाद को उन्होंने खुली जेल में तब्दील कर दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस्लामाबाद के बेहद संवेदनशील रेड जोन और प्रसिद्ध डी चौक पर सुरक्षा के नाम पर इतने कंटेनर ठोक दिए हैं कि स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर इस पर तंज कसा जा रहा है। यह पाकिस्तान की नई कंटेनर एडिशन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसे बताया जा रहा है। जी हां, इस्लामाबाद ने, चाहे उनका संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रधानमंत्री का घर हो, इन इमारतों को बचाने के लिए प्रशासन का खौफ इतना ज्यादा है कि डबल डेकर कंटेनर लगाए गए हैं और हर कंटेनर को दूसरे कंटेनर के साथ वेल्ड कर दिया गया है कि वो अलग भी ना किया जा सके, निकाला भी ना जा सके, तोड़ा भी ना जा सके। उस तस्वीर को गौर से देखिए। देखिए, देर रात तक वेल्डिंग चल रही थी और यह अनोखा तरीका जो अपनाया है, पहले के प्रदर्शन में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कंटेनरों को क्रेन से खींचकर हटा दिया था, इसीलिए इस बार पुलिस ने सैकड़ों मालवाहक कंटेनरों को एक के ऊपर एक रखा और आपस में वेल्ड कर दिया ताकि उन्हें हिलाना मुश्किल ही नहीं, आवाम के लिए, वो आवाम जो भूखी प्यासी है, उसके लिए नामुमकिन हो जाए। इतना ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड और हाईवे पर पुलिस ने सड़कें खोद दी हैं, बड़ी बड़ी खाई बना दी है ताकि बड़ी बसें और ट्रक में लोग ना आ पाए। फिलहाल इस्लामाबाद में हालत बेहद तनावपूर्ण है। जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फैजाबाद इंटरचेंज है, फैजाबाद इंटरचेंज से लेकर श्रीनगर हाईवे तक पूरे शहर को अब सील कर दिया है। पाकिस्तान में 30,000 से ज्यादा पुलिस वाले, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के लोग, रेंजर्स, उन्हें तैनात कर दिया गया है। 24 से ज्यादा बड़े शैक्षणिक संस्थान, मदरसे पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में विपक्ष ये कह रहा है कि चाहे वो आसिम मुनीर हो या शाहबाज शरीफ की सरकार हो, जनता की आवाज और पीटीआई के जन सैलाब से इस कदर खौफ ज्यादा है कि राजधानी को कंटेनर सिटी बना दिया है। ये डर है आसिम मुनीर के मन में इमरान खान से।
1: अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम आपको खौफ का मंजर दिखाते हैं। 3 लॉन्ग मार्चेस इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे इस महीने के अंदर, और एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में पहले होता है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपने आने वाली आवाम को कैसे रोकना है, आपने उनकी बात सुननी है, क्या करना है, ये बाद की बात है, लेकिन हमने अपने इस्लामाबाद को कंटेनर स्थान बनाना होता है। आप ये देखें, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करें, अगर आप ये 26 नंबर का मकाम है, आपको यहाँ तक, वहां तक कंटेनर नजर आ रहे हैं। उस इधर पीछे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी फुल कंटेनर है, और उस जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी कंटेनर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये कंटेनर अगर मैं इस साइड पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ से जहां तक आपकी नजर जा रही है तो आपको कंटेनर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद है और ये एंट्री पॉइंट है। सिर्फ एक पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि पिंडी के अंदर जो एंट्री पॉइंट है वो भी बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद जो टी चौक है वो बंद कर दिया गया, टेक्सला से जो एंट्री होती है जीटी रोड के जरिए वो बंद करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे भी कंटेनर पहुंचा दिए, कटी पहाड़ी पे भी कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। और इस वक्त जो हुकूमत का खौफ है, डर है, आप एक बार यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे पहले 2 दफा सुहेल अफरीदी को रोका गया, यहाँ पे पहले 2 दफा आवाम को यहाँ पे जलील ख्वार किया गया। सुहेल अफरीदी कोई बड़ा जो है वो मार्च लेकर नहीं आए थे, इमरान खान से मुलाकातों के मामले पर वो इमरान खान की बहनों के साथ यहाँ पे बैठे थे और शाम को 7-8 बजे तक उनको बिठाए रखा और ना मुलाकात करवाई।
0: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल 27 सितंबर से एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है राजधानी इस्लामाबाद और जो पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स है यानी सेना मुख्यालय उसको जाने वाला रावलपिंडी का मार्ग ये राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल वहां पर जबरदस्त समय है। इमरान खान की जेल की सजा को लेकर जबरदस्त तनाव है। संभावित बड़े प्रदर्शन को देखते हुए शाबाज शरीफ सरकार ने सैन्य प्रतिष्ठान और ज्यादा जो वहां के इलाके हैं जिनको वाइटल एसेट्स वाइटल पॉइंट्स कहा जाता है जैसे रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स हो गया बड़े बड़े गैरिसन हो गए वहां दबाव खासतौर पर नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पूरे इस्लामाबाद को एक तरह से एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए इस्लामाबाद प्रशासन ने 18 सितंबर से अगले 2 महीनों के लिए पाकिस्तान में जो अभी भी धारा 144 चलती है उस धारा 144 को लागू कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर यानी 4 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं सकते, कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता, कोई रैली या विरोध प्रदर्शन, पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में प्रवेश करने से रोकने के लिए ये कंटेनर लगा दिए गए हैं। यही नहीं, इमरान खान की बहनों को और तीनों वरिष्ठ नागरिक है मतलब 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, तीनों बहनों को उज्मा खान हो अलीमा खान हो सभी को जेल में बंद कर दिया है। सोचिए ये खौफ है कि 3 वृद्ध महिलाओं को आसिम मुनीर की फौज ने जेल में बंद करा दिया है। जितने एंट्री पॉइंट्स हैं एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें सील किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक भौतिक किलेबंदी नहीं है बल्कि संचार माध्यमों को इस समय इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ठप किया जा रहा है। माने आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, स्पीड कम कर दी गई है, आप वीडियो मैसेजेस ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते, तस्वीरें ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते। अटक जिलों में रावलपिंडी और अटक जिलों में मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं को डाउनग्रेड कर दिया है, निलंबित किया जा रहा है। पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान का उसके गृह विभाग ने संघीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखते हुए चुनिंदा संवेदनशील इलाके जैसे रावलपिंडी है ब्रह्मा है बहतर है तक्षशिला है वहां पर वाह सदर चक्री यहां पर 4G से 2G करने का या फिर पूरा इंटरनेट बंद करने का अनुरोध कर दिया है। जमीन पर पुलिस है पैरामिलिट्री की तैनाती है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब प्रांत से 16,000 अतिरिक्त बल बुला लिए हैं। सिंध प्रांत से 2,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की मांग की गई है। वैसे सिंध में भी समय तनाव है क्योंकि पाकिस्तान की सेना सिंध के भी 2 टुकड़े करना चाहती है और सिंधी बोल रहे हैं हम अपनी मां के टुकड़े कभी नहीं होने देंगे। फिर पंजाब सरकार ने 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रावलपिंडी अटक झेलम मियांवाली इन सब जिलों में रेंजर्स की तैनाती कर दी है। प्रशासन को आशंका यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक दिन का नहीं होगा, कई दिनों तक चल सकता है। प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए अलग अलग वैकल्पिक रास्तों का उपयोग भी कर सकते हैं। छोटी छोटी गाड़ियों में आएंगे, लोगों के घरों में घुस जाएंगे, वहां बैठेंगे और फिर एकाएक डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस रणनीति के तहत पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी और इंटरनेट की पाबंदियों का दायरा अब और ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है।
2: कंटेनर्स का मौसम आ चुका है, शहर में जहां नजर दौड़ाएं कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, लेकिन शहर को फिलहाल बंद नहीं किया गया। इस्लामाबाद के अंदर 1,000 कंटेनर्स जबकि अटक और इस्लामाबाद के बाहर के इलाके में 2,000 कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। कंटेनर्स के अंदर और बाहर मिट्टी की ढेरियां भी रखी जाएंगी और इस्लामाबाद जो रास्ता आ रहा है पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा से वहां पर खंदकें खोदने का फैसला भी किया गया है। जमात इस्लामी ने अपना सुपर लॉन्ग मार्च मौखर किया लेकिन पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए कुल 52,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे और अटक में 30,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी होगी। 6,000 रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इंटरनल मामलात और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 16,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। 2,000 की नफरी तो पहुंच चुकी है जो सिंध से आई है, पंजाब से कोऑर्डिनेशन जारी है, लेकिन इस वक्त शहर के अंदरूनी जितने भी मामलात हैं जितनी भी सरगर्मियां हैं वो मामूल के मुताबिक चल रही है। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि आप देखिए ये मैं रेड जोन को जो रास्ता जाता था वहां से आ रही हूँ और मेरे एग्जैक्टली राइट साइड पे सरीना चौक वाला रास्ता है, ये बिल्कुल मामूल के मुताबिक यहाँ पर लाइफ अभी चल रही है। लेकिन कंटेनर्स रखे जरूर गए हैं, जो हर तरफ हमें नजर आ रहे हैं स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरापा एहतजाज थी, लेकिन आईजी ने यकीन दहानी करवाई कि अद्वियात और खुरनोश की।
0: अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विरोध प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान ने पुलिस को नेटगन से लैस कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 27 सितंबर से शुरू होने वाले पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस को नेटगन दिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, ये है क्या, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये जो नेट लॉन्चिंग डिवाइस है, यानी जाल फेंकने वाला उपकरण, ये देखिए, ये जब गोली चलाएगा तो बंदूक चलाएगा तो इससे गोली नहीं निकलेगी, इससे एक पतला सा जाल निकलेगा। एक ऐसा जाल छोड़ा जाएगा जो कुछ सेकंड में टारगेट को लपेट लेता है और उसको जकड़ लेता है, ये देखिए। अब पाकिस्तान की सरकार या सेना को उम्मीद है कि इससे वो हजारों प्रदर्शनकारियों को एक साथ रोक लेंगे। अधिकारियों का कहना यह है कि दरअसल इस नेटगन का इस्तेमाल मार्च में जो लोग आएंगे उनको काबू करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, दरअसल इसकी मैं सच्चाई आपको बता दूं, ये जो पाकिस्तान की सरकार है ना, अपनी आवाम को कैसे मूर्ख बनाती है, दरअसल ये एंटी ड्रोन इक्विपमेंट है। ये ड्रोन को पकड़ने के लिए, यानी ड्रोन अगर उड़ता हुआ आ रहा है तो जो इन्फेंट्री की पलटन होती है, इन्फेंट्री की जो एंटी ड्रोन कंपनी होती है उसके पास ये एंटी ड्रोन गन होती है। ये जाल जोर से फेंकती है और ड्रोन जो हल्का सा होता है, मतलब 4-5 किलो का ड्रोन होता है, हो सकता है उससे थोड़ा और बड़ा ड्रोन भी हो, तो उसके पंखों को जकड़ लेता है और जब पंखे नहीं चढ़ते तो वो ड्रोन गिर जाता है। उसके लिए ये एंटी ड्रोन गन बनाई गई है। इससे क्या भारी भरकम आदमी को रोक सकेंगे? लेकिन ये पाकिस्तान की मीडिया में इसको फैलाया जा रहा है कि इससे भारी भरकम भीड़ को रोक लिया जाएगा। पाकिस्तान अब इस गन का इस्तेमाल इमरान खान के समर्थकों को डराने के लिए कर रहा है। दरअसल इस तरह की बंदूकों का इस्तेमाल केवल दिखावा है, क्योंकि इससे पहले डी चौक में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक आए थे तो उनको गोली मार दी गई थी और ऐसे सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलाई गई थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे या घायल हुए थे। औपचारिक तौर पर तो पाकिस्तान ने दावा किया केवल 8 से 12 लोगों की, इमरान खान समर्थकों की उस हमले में मौत हुई थी, लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आवाम के मुताबिक आंकड़े कहीं ज्यादा थे। तो पाकिस्तान जो कत्लेआम करता है अपनी भी आवाम का, वो छिपा जाता है सच्चाई को। पाकिस्तान की हालत इस समय ये जमीनी स्थिति है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का वो मंच है जहां पर कोई भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो वहां पर पाकिस्तान अपना विलाप शुरू कर देता है और अब वो कोशिश करता है कि उसके मित्र भी उस विलाप में उसके साथ रुदाली बनके शामिल हो जाएं। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान, उनको भी मौका मिला तो उन्होंने भी कश्मीर पर अपना घिसा पिटा रागल अपना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि खुद को पूरे मुस्लिम जगत का नया खलीफा साबित करने में जुटे अर्दोगान की यह जो जुबानी जमा खर्ची है, अब इनको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इसकी नोटिस कौन लेता है। जिस कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और अमन की नई कहानी लिखी जा रही है, वो भला कंगाली के दलदल में डूबे पाकिस्तान को वहां क्यों कोई देखेगा? असली ड्रामा तो यह है कि अर्दोगान कश्मीर पर जो ज्ञान बांट रहे हैं, वही अर्दोगान मक्का रक्षा समझौते के तहत हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद करने में नहीं पहुंचे, पीठ दिखाकर मक्का अग्रीमेंट वाले जितने साथी हैं सऊदी अरब की मदद करने एक नहीं पहुंचा। पाकिस्तान भी बस केवल गीत गाकर सऊदी अरब का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अर्दोगान भी चुपचाप बैठे हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि अर्दोगान के जो खोखले वादे हैं, मुस्लिम देशों का जो बुखराव है और अपने ही मुल्क में अंदरूनी संकट में कैसे घिरा हुआ है तुर्की भी और पाकिस्तान भी। देखिए यह रिपोर्ट।
3: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बार फिर कश्मीर का पन्ना पलट दिया।
4: दो दशकों से ज्यादा समय से दक्षिण एशिया में यह जरूरी है कि कश्मीर मुद्दे समेत सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। अगर रचनात्मक कदम उठाए जाए तो सभी मुद्दों को हल किया जा सकता है।
3: लेकिन एर्दोगन का ये राग पूरी तरह से बेअसर और बेमानी हो चुका है, क्योंकि आज का भारतीय कश्मीर खुशहाली, विकास और वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन चुका है, जो पाकिस्तान जैसे कंगाली के दलदल में धंसे मुल्क की ओर मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करता। कूटनीतिज्ञों का साफ कहना है कि अगर एर्दोगन को कश्मीर की इतनी ही चिंता है तो वो पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के हालात देखें, जहां की जनता आज पाकिस्तान के अत्याचारों, महंगाई और भुखमरी से तंग आकर सड़कों पर है। एर्दोगन में दम है तो वो अपने दोस्त पाकिस्तान को समझाएं कि पीओके को संभालना उसके बस का रोग नहीं है, इसीलिए वो इस क्षेत्र को फौरन भारत के हवाले कर दे। एर्दोगन के नया खलीफा बनने का सपना कैसे एक छलावा है, इसकी पोल मक्का रक्षा समझौते ने खोल कर रख दी है। अगस्त में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच मक्का पैक्ट हुआ था, जिसके तहत एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब हूती विद्रोहियों ने मक्का की ओर मिसाइलें दागी और सऊदी पर हमला किया तो एर्दोगन और पाकिस्तान दोनों दुम दबाकर पीछे हट गए। कश्मीर पर भारत को घेरना कूटनीतिक रूप से सस्ता और आसान है, लेकिन यमन में हूतियों से लड़ने का मतलब है ईरान से सीधे पंगा लेना। ईरान के खौफ से एर्दोगन और पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और बेबस सऊदी अरब को अपनी हिफाजत के लिए अपने धुर विरोधी इसराइल से मदद की गुहार लगानी पड़ी। इसने साबित कर दिया कि मुस्लिम देशों में एकता नाम की कोई चीज नहीं है और एर्दोगन का खलीफा बनने का ख्वाब सिर्फ एक ढोंग है। दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाले एर्दोगन के अपने मुल्क तुर्की का हाल बेहाल है। 48% की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आम तुर्की आवाम की कमर तोड़ दी है। अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू को जेल में डालकर एर्दोगन तानाशाही चला रहे हैं, जिसके खिलाफ तुर्की की सड़कों पर पिछले एक दशक का सबसे बड़ा जनाक्रोश भड़क चुका है। यही नहीं, ढलती उम्र, खराब सेहत और घटती जन्म दर की वजह से एर्दोगन की अपनी पार्टी AKP के भीतर सत्ता के उत्तराधिकार की गंदी जंग छिड़ चुकी है। दुनिया को ज्ञान बांटने से पहले एर्दोगन अगर अपने घिरते स्वास्थ्य, तबाही के कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था और अपने मुल्क के अंदरूनी तांडव की चिंता कर ले तो उनके और उनके देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और ये तस्वीरें जो है ना, ये तुर्की की सच्चाई बयान करती हैं। वहां पर भी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है कि लोग दूसरे की आंख का तिनका भी देख लेते हैं लेकिन उनको अपनी आंख का शहतीर नहीं दिखता। ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों पर बिल्कुल सही साबित होता है। पाकिस्तान में अंदर से बिखराव हो रहा है। सिंधु नदी के पश्चिम में पाकिस्तान की सेना और सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इतनी समस्या है और उनका फोकस कहां है? कश्मीर। अपनी समस्याओं को छुपाओ, कश्मीर राग अलापो, यह है पाकिस्तान की असलियत। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉक स्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रूंटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठ जा। मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
6: रूंटा टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
5: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।
7: ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के वो हैं ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं दिल्ली का महाराष्ट्र का बिहार का वेस्ट बंगाल का हरियाणा का मध्य प्रदेश का ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।
8: 14 बार इन लोगों ने जिनको सीसी ऑर्नामेंटल मानते हैं डमी मानते हैं एक मूर्ति मानते हैं उन्होंने 14 बार 10 महीनों में लिखित विरोध और असहमति की है। संधू साहब ने मैं भी सिर्फ तिथियां दे रहा हूं जिस विषय में वो बोले हैं वो और भी ज्यादा गंभीर है उसमें मैं भी आऊंगा लेकिन तिथियां नोट करें। अगस्त 13 को संधू साहब ने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 में गड़बड़ी और बदला बदली हो रही है वो कोट अनकोट अनऑथराइज्ड और इलीगल है। जोशी साहब ने और संधू साहब ने दोनों ने फॉर्म 6 का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब कोई जवाब नहीं सन्नाटा।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

गोल्ड खरीदने की चाहत तो वही है, लेकिन इस बार महंगा सोना ग्राहकों की खरीदारी का तरीका बदल रहा है। त्योहार पर सोना खरीदने पहुंचे लोगों में कई ग्राहक भारी की जगह हल्के गहने पसंद कर रहे हैं। कुछ पुराने गहने एक्सचेंज करके नए गहने खरीद रहे हैं। इसकी बड़ी वजह गोल्ड की रिकॉर्ड ऊंची कीमत है। डेटा के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दौरान गोल्ड बिक्री की वॉल्यूम करीब 15% घट गई है। इसकी वजह सोने की कीमतों में एक साल में आई करीब 60% की तेजी है। कीमत में इतनी बढ़ोतरी से ग्राहकों ने खरीदारी पूरी तरह बंद तो नहीं की है, लेकिन कई लोगों ने खरीदारी का तरीका बदल दिया है और इंडस्ट्री में हल्के गहनों की मांग बढ़ी है। साथ ही पुराने सोने को एक्सचेंज करके नए गहने लेने का चलन भी बढ़ा है। वहीं कॉइन और बार की डिमांड भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि ऊंची कीमतों के बीच ग्राहक खरीदारी को लेकर ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ऊंची कीमतों के बीच फेस्टिव सीजन की शुरुआत सावधानी के साथ हुई है। कुछ ग्राहक खरीदारी टाल रहे हैं, लेकिन शादी से जुड़ी खरीदारी और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बनी हुई है। गोल्ड की कीमत बढ़ने का असर हर ग्राहक पर एक जैसा नहीं है। जहां भारी गहनों की खरीदारी पर दबाव नजर आ रहा है, वहीं अपनी पसंद के छोटे और इस्तेमाल में आने वाले गहनों की मांग बनी हुई है। खासकर युवा ग्राहक खुद के लिए ज्वेलरी खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ महिलाएं त्योहार और पर्सनल माइलस्टोन के लिए ज्वेलरी खरीद रही हैं। इसमें ऐसी ज्वेलरी की मांग है जिसे गिफ्टिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और रोजमर्रा में पहनने वाले डिजाइन पर जोर दिया जा रहा है। महंगे सोने के बावजूद ग्राहकों की खरीदारी की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ग्राहक हल्के गहने पुराने सोने के एक्सचेंज और इस्तेमाल के हिसाब से ज्वेलरी चुन रहे हैं। वहीं ज्वेलर्स को शादी का सीजन नजदीक आने से मांग में सुधार की उम्मीद है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फेस्टिव और वेडिंग सीजन आगे बढ़ने के साथ डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि ऊंची कीमतें डिस्क्रिशनरी ज्वेलरी खरीद पर दबाव बनाए रख सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की मांग बनी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा हल्के गहने एक्सचेंज और जरूरत के हिसाब से खरीदारी का रास्ता ग्राहक अपना रहे हैं। कुल मिलाकर शादी और त्योहारों का सीजन आगे बढ़ने के साथ ही गोल्ड डिमांड की तस्वीर ज्यादा साफ होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।

आयोग की चौतरफा घेरबंदी में जुटा विपक्ष, थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी। एक्स पर किया पोस्ट, संविधान के दुश्मनों का पर्दाफाश। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहा है तैयार। दिपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। जमुई के बाद समस्तीपुर की घटना से बिहार शर्मसार, लड़की से छेड़छाड़ केस में मंत्री अशोक चौधरी का बेशर्म बयान, ऐसी घटनाएं तो जापान अमेरिका में भी होती है। यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।

0: और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद शेयर बाजार में हाहाकार, भारी गिरावट के बाद बंद हुआ बाजार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल भी चुनाव आयोग के अंदर चल रहे कामकाज पर उठे सवालों को लेकर है। और इस वक्त शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विपक्ष एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रस्ताव एक साथ दोनों सदनों में लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी जब बंगाल के भीतर एसआईआर चल रही थी तब भी शिकायत की जा चुकी थी और जिसे दोनों सदनों के स्पीकर और चेयरमैन ने खारिज कर दिया था। लेकिन एक बार फिर वैसा प्रस्ताव बन रहा है जिसमें नए खुलासों के हवाले से ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी, खास करके बंगाल में एसआईआर को लेकर जो शिकायतें हो रही थी उस बात को लेकर, लेकिन उसके बाद उस वक्त स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को, सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो एक बार फिर विपक्ष लामबंद है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और आने वाले सदन में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। और थोड़ी देर में अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें विपक्ष की रणनीति को लेकर और जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दो चुनाव आयुक्त सुखविंदर सिंह संधू और विवेक जोशी के हवाले से जो भी खुलासे किए हैं उन पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट से लेकर मतदान मतगणना समेत तमाम चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने तो पूरे देश में प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए कहा है कि अब सभी राजनीतिक दलों को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। वैसे चुनाव आयुक्तों के हवाले से दिए जा रहे पिछले दो दिनों से किए गए खुलासों में दो बड़ी बातें ऐसी सामने आई है जिसमें संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसमें पहली बड़ी बात, नए वोटर्स को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जो फॉर्म 6 भरा जाता है, फॉर्म नंबर 6 जिसे कहा जाता है, उसमें बदलाव को लेकर, क्योंकि इसमें कथित तौर पर असंवैधानिक, अनधिकृत और अवैध बदलाव किए गए हैं, क्योंकि उसमें बदलाव चुनाव आयोग अपने अधिकार में नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी बात, ईआरओ और एईआरओ को मिले संवैधानिक अधिकारों का डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर अवैध अतिक्रमण का खुलासा आज हुआ है। तो पहले आपको दिखा दें कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में बिना गैजेट नोटिफिकेशन के बदलाव करने को लेकर जो विरोध जताया है वो दरअसल क्या है। तो पहले देखते हैं कि वो फॉर्म नंबर 6 जो नए वोटर को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए देना होता है, इसे हार्ड कॉपी की तरह प्रिंटआउट लेकर भी बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है। यानी आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और प्रिंटआउट निकालकर आप उसे जमा भी कर सकते हैं हार्ड कॉपी की तरह। ऑनलाइन भरते वक्त ही यही फॉर्म भरना होता है। इन दोनों फॉर्म के फॉर्मेट में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे ऑनलाइन वाले राज्य और जिला भी, अब जिसपे राज्य और जिला भी भरना है, हार्ड कॉपी में पहले वो नहीं बताना है। इसके अलावा परिजनों का जिक्र हार्ड कॉपी में ऊपर ही बता देना है, ऑनलाइन वाले में नीचे जे और के नंबर पर भरना है। यह आप डिफरेंस उसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन में जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है, जब हार्ड कॉपी वाला फॉर्म आप भरते हैं तो उसका सीक्वेंस कुछ अलग नजर आता है। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जा रहे फॉर्म 6 के मूल प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया। चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि चूंकि फॉर्म नंबर 6 संवैधानिक प्रारूप है लिहाजा उसमें बदलाव नहीं किया गया। तो बदलाव आखिरकार कहां हुआ है, क्योंकि सुखविंदर सिंह संधू साफ शब्दों में यह कह रहे थे कि जो बदलाव फॉर्म नंबर 6 में किए गए वो असंवैधानिक है। तो बदलाव क्या हुआ है वो हम आपको आज दिखाएंगे। तो बदलाव यह हुआ है कि जो भी मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन भर रहा हो या ऑफलाइन भर रहा हो, उसे, या आप देख सकते हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ता है, मतलब डिक्लेरेशन भरना पड़ता है। ये वो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो हर वोटर को अपने फॉर्म 6 के साथ देना है। यह पहले नहीं देना होता था, यानी पहले सिर्फ आपको फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ता था, लेकिन इस फॉर्म नंबर 6 के साथ अब आपको एक डिक्लेरेशन भी भरना होता है। नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऐसे किसी हलफनामे की पहले कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन अब यह देना पड़ रहा है। चुनाव आयुक्तों की आपत्ति इसी बात पर हो सकती है कि जब संवैधानिक प्रक्रिया में फॉर्म 6 के प्रारूप तय है तो यह नया हलफनामा यानी डिक्लेरेशन क्यों दिया जा रहा है। तो सवाल नंबर 1 यह है कि हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस सवाल का जवाब भी दिया गया है,
चुनाव आयोग का दावा है कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया, जो आप देख सकते हैं कि फॉर्म 6 वैसे के वैसा है। माता पिता या दादा दादी से रिश्ते की जरूरत को पहले से मंजूर फॉर्म 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा के तौर पर जोड़ा गया, तो वो कह रहे कि हमने फॉर्म नहीं बदला है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया गया। और चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस वक्त यह निर्देश जारी किया था, तो पेज नंबर 6 के पॉइंट नंबर 15 पर यह बताया जा चुका था। और आयोग का कहना है कि 14 मई 2026 के एसआईआर के आदेश में भी

में की गई घोषणा के समर्थन में एक अतिरिक्त घोषणा फॉर्म यानी इंक्लोजर डी भी साथ में भरना होगा और उसके बिना फॉर्म नंबर 6 एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पहले आरोप पर चुनाव आयोग की अघोषित सफाई है। अब बात करते हैं दूसरे आरोप की, जो गोवा के मामले को लेकर लगाया गया था। उसमें यह आरोप लगाया गया था कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में तार्किक विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले वोटर्स को दोबारा सुनवाई का आदेश दिया गया। तब गोवा में 649 लोग चुनाव आयोग के सामने खड़े हो गए। 97 मामले में ईआरओ या एईआरओ ने माना कि उनके नाम वोटर रोल में होने चाहिए। सुनवाई के बाद उनका यह डिसीजन था कि इनके नाम दरअसल वोटर लिस्ट में होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अफसर पहले नाम काट चुके थे इसलिए आदेश को पलट नहीं सके, क्योंकि ईसीआई नेट या इसे ईआरओ नेट बाद में कहा गया, उस सॉफ्टवेयर में कोई विकल्प नहीं था। आरोप यह है कि गोवा के सीईओ ने 13 से 21 फरवरी के बीच में 7 दिन में 8 बार केंद्रीय चुनाव आयोग से निवेदन किया, लेकिन 97 नाम शामिल नहीं किए जा सके। इसी मुद्दे पर दोनों चुनाव आयुक्तों ने भी सवाल खड़े किए थे कि डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर वोटर्स के डेटा को सेंट्रलाइज करके ईआरओ या एईआरओ के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उन्हें लोक प्रतिनिधि कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के तहत संवैधानिक और मतदाता निबंधन नियम 1960 के तहत वैधानिक अधिकार प्राप्त है। आरपी एक्ट की धारा 13(ख) यह कहता है कि वोटर लिस्ट बनाने, पुनरीक्षण करने, बीएलओ बहाल करने का अधिकार ईआरओ का ही होता है, जिसकी तैनाती चुनाव आयोग राज्य सरकार की सलाह से करता है। फिर धारा 13(ग) कहता है कि ईआरओ के मातहत ईआरओ की तरह नाम जोड़ने, हटाने, दावे आपत्ति का निपटारा करने का अधिकार एईआरओ को भी होता है। फिर मतदाता निबंधन नियम 1960 के नियम 18, 19, 20 कहते हैं कि किसी नाम को लेकर आपत्ति की हालत में ईआरओ या एईआरओ नोटिस जारी करने, दस्तावेज मांगने, अर्धन्यायिक सुनवाई करने का वैधानिक अधिकार उनके पास है। और नियम 21-22 कहता है कि वोटर लिस्ट में अनजाने में गलती हो गई हो या डबल एंट्री हो गई हो या मृत का नाम दर्ज हो गया हो तो आखिरी सूची प्रदर्शित करने से पहले ईआरओ स्वतः संज्ञान लेकर उसे ठीक भी कर सकता है। लेकिन गोवा वाले मामले में ईआरओ या एईआरओ ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि ईसीआई नेट पर ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि जिससे दोबारा उस नाम को ऐड किया जा सके, जिससे पुराने फैसले को बदलकर ईआरओ वोटर्स का नाम जोड़ सके। नतीजा यह हुआ कि 97 लोगों का नाम छूट गया। और इसके साथ ही बंगाल में क्या परिणाम हुए वो भी हम सबने देखा है, क्योंकि नाम निकलने के बाद वो 27 लाख वोटर्स वोट नहीं कर पाए जबकि उन्होंने दस्तावेज दिए हुए थे। अब धीरे धीरे उनकी सुनवाई हो रही है और वो जायज करार दिए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की सफाई इस मामले में भी बड़ी साफ है। उनका यह कहना है कि एक तो ईआरओ और ईसीआई नेट पोर्टल का पूरा और बिना किसी रोक टोक के एक्सेस ईआरओ को दिया गया है। दूसरा, ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म को लागू करने में जो कानूनी और रेगुलेटरी नियमों का जो नियम है उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। तीसरा, ईआरओ की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वोटर्स को जोड़ने हटाने का फैसला सीईओ की देखरेख में, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है उस राज्य का, उसकी देखरेख में किया जाता है। और ईसीआई नेट केवल एक प्लेटफॉर्म है जहां ये सुविधा मिल रही है। मतलब डेटा के सेंट्रलाइजेशन के आरोपों से आरोप आयोग फिलहाल इनकार कर रहा है, अपने आप को दूर कर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है कि इस एक्सप्लेनेशन में एक बार अगर ईआरओ ने किसी का नाम काट दिया यानी फॉर्म नंबर 7 जो होता है उस पर क्लिक करना पड़ता है, अगर वो नाम काट दिया तो उस आदेश को रद्द करने का विकल्प उसके पास मौजूद नहीं है। और इसके पीछे आयोग का तर्क यह रहा है कि एक्सेस खुला छोड़ने से डेटा की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को रिस्क है। सेंट्रलाइज होने से अनधिकृत हेरफेर का खतरा नहीं होता। डिजिटल सिस्टम का लॉग रिकॉर्ड आईटी के पास रहता है तो ऑडिट आसान रहता है। और चूंकि इसमें वोटर की संवेदनशील जानकारियां होती है इसीलिए आईटी एक्ट 2000 और डीपीडीपी एक्ट लागू होता है। और वोटर लिस्ट डेटा सिक्योरिटी नियमों के अधीन है, जिसमें आईटी एक्ट के तहत एसडीपीआई को आईएसओ 27001 के तहत 27001 के मानकों के मुताबिक सुरक्षित रखना होता है। यानी चुनाव आयोग कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हम तो नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसे में किसी भी तरीके से हम पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। यानी उनका कहना है कि ईआरओ नेट में किसी भी तरीके से कोई गलतियां नहीं है और पूरा एक्सेस अभी भी ईआरओ के पास दिया हुआ है।

0: तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नए खुलासे आते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात इस पूरे मामले से साफ हो गई है कि चुनाव आयोग को अभी भी कई चीजों की सफाई देना बाकी है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ यादव है, अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इस पे चर्चा में शामिल होंगे, और मोहम्मद अमीन जो डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। मैं आज चर्चा की शुरुआत मोहम्मद अमीन से करना चाहूंगा। मोहम्मद अमीन जी, आपने पूरा ये देखा हुआ है, मैं सवाल भी इस पैनल के सामने रखूंगा, लेकिन पहले शुरुआत मोहम्मद अमीन से होगी इस पूरे मामले को लेकर। जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया चाहिए, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अब तक जितना क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से आ चुका है, जो सवाल हमने चुनाव आयोग के भेजे थे उसका, और उसके बाद जो कल उनका प्रेस रिलीज आया हुआ है, आपको लगता है वो काफी है, या आज की स्थिति में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पॉइंट बाय पॉइंट चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए?
1: देखिए, अब कुछ ज्यादा मैटर फैल चुका है पूरी इंडिया में, और हर अपोजिशन पार्टी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जा रही है और ये बताना चाह रही है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बेईमानी होती है, बेईमानी की गई, और उसको जो संवैधानिक संस्था है उसको इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। इसलिए अब ये स्थिति बनती है कि हम एक हैं, हम नेक हैं और हम सच्चे हैं और ईमानदार हैं। सारे तीनों कमिश्नर्स को सामने आना चाहिए और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कर देना चाहिए कंट्री के सामने, देश के सामने, जिससे कि एक एक बंदे का, एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का जो जो अंदर घुस गया है वो निकल जाए।
0: लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है वो निकालना जरूरी है। अब वो भ्रम है या लोगों के मन में कोई भूमिका बन रही है, इन सारे मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन तीन सवाल अब मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग से जुड़े खुलासों में असंवैधानिक कागजात कामकाज के आरोप क्या सही नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से कामकाज किया गया, क्या वो आरोप सही नहीं है? क्योंकि अब तक उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। उनका यह कहना है कि हम साथ मिलजुल कर काम करते थे, उसमें सवाल उठाए जाते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या फॉर्म 6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र असंवैधानिक है या SIR में मंजूर प्रक्रिया है? क्योंकि चुनाव आयोग तो अब कह रहा है कि भाई हमने तो फॉर्म 6 बदला ही नहीं है, लेकिन फॉर्म 6 तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप डिक्लेरेशन नहीं भरोगे, यानी कि आप उस कानून को बाईपास करके आगे तो नहीं जा रहे, संविधान की धाराओं को बाईपास करके अपनी भूमिका तो नहीं रख रहे, इस पर भी सवाल उठेंगे। तीसरा सवाल, क्या ECI नेट के जरिए डेटा सेंट्रलाइजेशन के लगाए गए आरोप बेबुनियाद है? क्योंकि उस पर क्लैरिफिकेशन अब चुनाव आयोग ये देने की कोशिश कर रहा है कि ये आरोप के पास पूरे अधिकार है, लेकिन एक बार आपने नाम डिलीट कर दिया, फॉर्म नंबर 7 पे आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपका जो फैसला है वो आप बदल नहीं सकते। और राहुल गांधी,
2: We want to put some points across here about what has recently been in the news. So, I want you to listen to these videos carefully. I want you to notice the tone of these videos. And I want you to listen carefully to what is being said.
3: मैं 61 का हुआ हूँ, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। आप दम डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर,
4: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं।
5: NDA सरकार 400 पार।
2: Why I'm showing you these videos is because I come from a political family and I spent 50 years, more than 50 years in a political family. No political leader who operates in a democratic environment can say or make such a statement. Because in India, there is a fundamental force called anti-incumbency, that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. इंदिरा गांधी जी विंस द बांग्लादेश वॉर इज एट द हाइट ऑफ हर पॉपुलैरिटी एंड देन सडनली विद इन ईयर और टू मैसिव एंटी इनकम्बेंसी मैसिव प्रेशर द सेम एग्जैक्ट थिंग happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP. Haryana swings from one party to another. For 50 years, suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings. Sometimes Samajwadi, sometimes BSP, it disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us. We can understand the popularity of a person. We can understand the performance of a government, but we cannot understand how anti-incumbency disappears. Anti-incumbency does not exist in Saddam Hussein's Iraq. It does not exist in North Korea. There is no democracy on this planet where anti-incumbency does not exist. And so this has been a puzzle for us. Dekhiye, Hindustan ki sabse badi political force kahan gayab ho gayi? And we have been looking for the answer and we have found the answer. The vote is the foundation of our country. And I want to explain this because from the vote, which is supposed to be protected by the Election Commission, our constitution gets its power. From the vote, the constitution gets its power. From the constitution, our laws are made. And from our laws emerge our institutions. This is a chain. And this chain defines modern India. The thing to understand here is that if the vote has been destroyed, then our constitution has been destroyed. It no longer has its power. It no longer functions. If our constitution has been destroyed, our laws are illegal. And if our laws are illegal, our institutions are meaningless. So the central question here is this is not just an attack on the vote. This is an attack on the idea, on the basic infrastructure, on the expression of every single Indian person. And we have been saying it again and again and again that there is a problem with the vote. The Election Commission is the institutional protector of this vote. It is their responsibility to protect the vote. And then from there, everything arises. If the vote is destroyed, the constitution is not functioning, laws are illegal, institutions mean nothing. These are the people who have done this. And I am not speaking in the air. I have shown it with proof, and let me tell you, there is already more than enough information टू मेक दिस ए 100% सर्टिनिटी, नॉट 99%, ए 100% सर्टिनिटी दैट इंडियन इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, 2024 इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शंस आर ऑल बीइंग रिग्ड. द पीपल ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट आर हु वी कॉल द कॉन्स्पिरेटर्स. बाय द वे, मिस्टर ज्ञानेश कुमार हु सिटिंग देयर, टू इलेक्शन कमिश्नर्स, टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन. आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड. पीपल ऑफ इंडिया बिलीव्ड इट, बट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड. बट नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स, पीपल बाय द वे चोजन बाय द लीडरशिप. ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनीबडी लेस. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Gyanesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting system. So I want to emphasize, go back, I want to emphasize, from vote chori comes kanoon chori. Because if the vote is stolen, the legal structure is gone. And from kanoon chori comes sansta chori, institutions. And this is the chain that has taken place. Today, the vote is gone. The lawmaking system is gone. Meaning, if the vote has been stolen, and the MPs sitting in parliament are there based on a stolen vote, then any law they are making is illegal. Please let me repeat this. If the votes are stolen and the MPs who have entered parliament have done so on a stolen vote, then any law that they have made is illegal. And any institutional change they make is also illegal. Now, I am certain, I have no doubt, that within the next 6 months, this will be black and white in front of you. Because the information is already available. So, I'd like to go into a little bit of the sequence, because there are some interesting things in the sequence. 21st December 2023, a strange law is passed. And young people in this country need to listen to this. A law is passed that makes the election commissioner immune to investigation. No investigation can be carried out against him. And he is immune to the Indian legal system. 2023, December. 7th February, we do our press conference on Maharashtra. And we make it very clear that vote chori is going on, and we put proof on the table. After that, I give a dissent note to the Prime Minister of India, where I say the most fundamental aspect of an independent election commission free from executive interference is the process of choosing the election commissioners and Chief Election Commissioner. My view is thrown aside and the gentleman is appointed. By whom? By the Prime Minister of India. We then show Madhepura vote churi. And please understand that what is happening here is pressure is slowly building because we are getting more and more information. Information is leaking from inside and we are getting it. So pressure is building up on the institution. And they are understanding that now a problem is coming. Then we do Vote Chori Adhikar Yatra. 16th August, 1st September, 18th September, we do Aland Vote Chori. And here, we show a certain methodology that is taking place. These letters that start after our Aland Vote Chori and at approximately the same time as our Haryana Vote Chori. This was known. The ECs knew this. They understood what was going on. But then they decided that kuch na kuch ab karna padega. And that's when these letters start. After a huge amount of pressure has been put on them for over a year. We do Haryana vote chori, which frankly is the most devastating presentation because of the level of discrepancies that have taken place there. And then now the two gentlemen make it public. Please understand what these two gentlemen are saying. They are saying that the vote does not exist in India anymore. That's what they're saying. And they're also saying the man they believe is responsible for the vote not existing in India, Mr. Gyanesh Kumar, has been appointed by the Prime Minister of India. And the reason nothing happened to all their letters was because there was a protector of Mr. Gyanesh Kumar or protectors of Mr. Gyanesh Kumar sitting on top of Mr. Gyanesh Kumar. Namely the Prime Minister of India, the Home Minister and others who we have shown you pictures of here. But essentially what we are saying is the truth of the Indian electoral system has been revealed. And what I am saying to you is that there is enough material that we have that will leave absolutely no doubt in your minds that this is the case. And so we are sitting in a place, please understand, we are sitting in a place as a country where we have never been sitting before. Since 1947, we have never been sitting in this place. Which is that our elections are fundamentally broken. The laws that have been passed by Parliament are open to question because the vote has been destroyed. And the capture of the institutions that has taken place is also open to question. This is the first time in independent history that India is sitting in this point, at this point. So, what are we saying? The first thing we are saying is Mr. Gyanesh Kumar must resign immediately. And I would add to Mr. Gyanesh Kumar, please understand, you're a highly educated person, please understand what is going on here. This thing that you have done is an act against the Indian nation. This is not just some small rigging of an election. This is an attack on the Constitution of India, This is an attack on the legal structure of our country. And you are the man who was supposed to ensure that the vote was protected. And I am saying to you also that we have enough information to prove this with certainty. So this is something you need to think about. Because there are going to be consequences to this. We are not going to let democracy be destroyed in India and sit silent. We are not going to do it. And the people who are responsible for this are going to get punished. Not today, tomorrow. Not tomorrow, day after. They are going to get punished. The two election commissioners have done a wise thing. And I appreciate it. They have come clean. Mr. Gyanesh Kumar should think seriously about the position he's in. And he should turn approver. That is my advice to him. That would be an act of nationalism. We know what has happened. And we are going to reveal it. By the way, he also knows that we know. I'd like to end by saying the Prime Minister and Amit Shah are both going to be investigated for what has been done. Without any doubt. Both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word. And I'm not saying this lightly. Show me the yeah. So I'm not saying this lightly. You have seen, go back to the timeline, please. You have seen from 23. For 3 years, I've been saying this. And I've always said it based on fact. I have not used conjecture. I have not used my imagination. I have used fact. And every single person in this country knows that. And what I'm speaking here is fact. The fact is that the Prime Minister and the Home Minister of this country have attacked and destroyed the democratic architecture of this country. Thank you.
6: Hindi?
2: हाँ मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें और वीडियो में जो कहा जा रहा है इनका जो टोन है बोलने का तरीका है उसको आप अच्छी तरह सुनिए थोड़ा उसको लाउड कीजिए
3: मैं 61 का हुआ हूं 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है आप डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी मान्यवर
4: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं
5: एनडीए सरकार 400 पार
2: इसमें 50 साल 15 साल 30 साल की बात की जा रही है बीजेपी 50 साल राज करेगी 30 साल राज करेगी 15 साल राज करेगी मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं 50 साल से मैं राजनीति देख रहा हूं। कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी नेता इस देश में यह बात नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, दो तीन साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है। प्रधानमंत्री छोड़िए, नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर आपको नहीं मिलेगा। कभी तमिलनाडु में डीएमके आती थी तो एडीएमके आती है, यूपी में एसपी आती है फिर बीएसपी आती है, हरियाणा में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पार्टियां बदलती हैं। मगर बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है ही नहीं, गायब हो गई, किसी को नहीं मालूम कहां चली गई। 2014 में जीतते हैं, पांच साल बाद उससे बड़े धमाके से जीतते हैं, उसके पांच साल बाद फिर जीतते हैं और जीतते जाते हैं। गुजरात में नॉनस्टॉप सरकार चली जा रही है, मध्य प्रदेश में चली जा रही है, हरियाणा में एंटी इनकंबेंसी गायब हो गई। इसका क्या कारण है? सालों से हम ये अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो एंटी इनकंबेंसी है, हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल राजनीतिक शक्ति फोर्स, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इन पर क्यों नहीं लगती? जवाब आपको दो दिन पहले दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने दिया। वोट जो है इस देश की नींव है, फाउंडेशन है। मैं थोड़ा सा यह समझाना चाहता हूं डिटेल में। वोट से संविधान को पावर मिलती है। संविधान कहता है हर व्यक्ति के पास एक वोट है, और जब हम वोट डालते हैं हम संविधान में एनर्जी डालते हैं, पावर डालते हैं। संविधान से कानून बनते हैं, वोट से कानून बनते हैं। राज्यसभा में, विधानसभाओं में जो लोग बैठते हैं वो वोट से आते हैं। तो ये एक चेन है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से कानून, कानून से हमारी सब संस्थाएं। अगर आपने वोट खत्म कर दिया तो ना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब है, ना कानून का कोई मतलब है, ना हिंदुस्तान की कोई संस्थाओं का मतलब है। और ये अब पूरे देश को पता चल रहा है कि हमारा जो वोट है, हिंदुस्तान का जो वोट है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वो नष्ट हो गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है। ये काम किसने किया? ये जो सात फोटो हैं, इन लोगों ने किया है। ऊपर कॉन्स्पिरेटर्स हैं, क्योंकि ये कंस्पिरेसी है, देश के खिलाफ ये कंस्पिरेसी है। ऊपर कॉन्स्पिरेटर्स हैं, नीचे पॉन्स हैं। और कॉन्स्पिरेटर्स ने क्या किया? वोट चोरी की, वोट चोरी से कानून चोरी की, और कानून चोरी के बाद संस्था चोरी की, और संस्था में सारे के सारे आरएसएस के लोग भर दिए, एजुकेशन सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में। यह बिना वोट चोरी कभी नहीं हो सकता था। इसमें एक और बात समझने की है, अगर वोट चोरी हुई है, जो हुई है, तो जो भी कानून बनाए गए हैं वो सारे के सारे इलीगल कानून है, उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वोट इज द बेसिस ऑफ लॉस, वोट कानून का बेसिस है। और ये मैं चीज लाइटली नहीं कह रहा हूं, मैं ये 3 साल से कह रहा हूं और हर बार मैंने आपको प्रूफ दिया है, हरियाणा में प्रूफ दिया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, प्रूफ देके मैं बोल रहा हूं। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री जी एक नया कानून बनाते हैं, कानून ज्ञानेश कुमार जी को इम्यूनिटी देता है, ज्ञानेश कुमार जी को लीगल सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। किसने किया? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया। क्यों किया? क्योंकि ज्ञानेश कुमार उनके लिए कोई काम कर रहे थे, जो आपके 2 इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बता दिया है। उसके बाद महाराष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 7 फरवरी को, 17 फरवरी को मैं प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी देता हूं, डिसेंट नोट ज्ञानेश कुमार जी का कि वी डू नॉट एक्सेप्ट ज्ञानेश कुमार जी एज इलेक्शन कमिश्नर, मेरे ओपिनियन को बायपास कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ज्ञानेश कुमार को चुनते हैं। मैं ये दोहरा रहा हूं क्योंकि ज्ञानेश कुमार के ऊपर कंट्रोलर्स हैं, ज्ञानेश कुमार इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा, मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, न्यूट्रल प्रोसेस होनी चाहिए, और मैं कह रहा था वो प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री का और होम मिनिस्टर का दबाव है। उसके बाद माधेपुरा का वोट चोरी प्रेजेंटेशन होता है, यात्रा होती है पूरी वोट चोरी की यात्रा 15 दिन की, और उसके बाद आलंद का हम वोट चोरी का प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें हम दिखाते हैं ये करा कैसे जा रहा है और सेंट्रलाइज तरीके से करा जा रहा है, और उसमें हम बेसिकली कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है। उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। मैं ये आपको टाइमलाइन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे पहले इन दोनों ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने महाराष्ट्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कुछ नहीं कहा, जब लॉ मेड फॉर इम्यूनिटी कुछ नहीं कहा, डिसेंट नोट कुछ नहीं कहा, माधेपुरा वोट चोरी कुछ नहीं कहा, वोट अधिकार यात्रा कुछ नहीं कहा, आलंद वोट चोरी कुछ नहीं कहा, उसके बाद चिट्ठियां शुरू होती हैं। क्योंकि उनको बात समझ आ रही थी ये गेम कहां खत्म होगा, और अच्छी बात तो चिट्ठियां शुरू होती हैं। हरियाणा वोट चोरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एकदम पहले, एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो एक्चुअली 5 तारीख का नहीं था, वो 1 सप्ताह पहले का था, जो हमारा अनाउंसमेंट था वो वही दिन था जिस दिन इन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू की, इंटरेस्टिंग बात है। और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक्सपोज आता है कि 14 बार 10 महीनों में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने रिकॉर्ड में ऑब्जेक्ट किया चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, एडिंग एंड डिलीटिंग नेम्स, जो हमारा बेसिक सवाल था। हमारे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने भी कहा कि इसमें कुछ नहीं है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों बैठे थे, नेक्स्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, देश एक नई जगह पहुंच गया है। हमारी हिस्ट्री में इस प्रकार से डेमोक्रेसी पर ऐसा आक्रमण नहीं हुआ है। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, 100% कॉन्फिडेंस से, जो आपको दिख जाएगा आने 3-4 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबूत है, अवेलेबल है। तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि 2024 का इलेक्शन कंप्लीटली फेक था, उससे पहले के इलेक्शंस फेक थे, विधानसभा के चुनाव फेक है, चोरी के चुनाव है, और देश इस जगह कभी नहीं पहुंचा है। क्योंकि जिस चेन की मैं बात कर रहा था, वोट चोरी, कानून चोरी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, ये चेन कभी पहले नहीं टूटी है हमारी हिस्ट्री में। आजादी के बाद ये कभी नहीं टूटी है, और अगर ये चेन टूट गई है तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे कानून जो पास किए गए हैं, चाहे वो GST हो, बाकी कानून, वो सारे के सारे इलीगल हैं, और जो लोग हमारी संस्थाओं को चला रहे हैं वो भी इलीगल है। ये रियलिटी है। ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम, बिकॉज लेट मी टेल यू देर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। आप यह मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हिंदुस्तान के वोट को खत्म, बीजेपी खत्म कर दे, नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दे, ज्ञानेश कुमार जी खत्म कर दें, नेशनल फ्रेमवर्क को खत्म कर दें, लीगल स्ट्रक्चर को खत्म करें, हम यहां बैठे चुप बैठे रहेंगे ना। हमारी पार्टी आजादी के लिए लड़ी थी, हम नहीं चुप बैठेंगे। तो सब लोगों को सोच समझ के काम लेना है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो लिखा है, नंबर वन, देशद्रोहीज आर गोइंग टू गेट पनिश्ड, एंड वी ऑलरेडी हैव इनफ इंफॉर्मेशन, डोंट वरी, होगा, यू विल सी इन द नेक्स्ट 2-3 months, 4 months व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस। And I am making a commitment here from the people of India, the Congress party and the opposition, that Mr. Modi and Mr. Shah will be investigated for this crime. No matter what happens, we are not going to let this crime go unanswered. थैंक यू।
6: पहला सवाल इंडियन एक्सप्रेस से असद।
7: हाय मिस्टर गांधी।
2: यस
7: सर, माय क्वेश्चन इज इफ द ऑपोजिशन एंड द कांग्रेस पार्टी इज फुली कन्विंस्ड दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड and that the election process in the past have been rigged, then what is the approach that you are going to take with elections that are upcoming in states?
2: As I said, this country has never been sitting in this place before. This chain, let's go back. This chain, this is a sacred chain. This chain between vote, Constitution, laws and institutions. This is a sacred chain. If you believe in the Indian Union, this is your religion. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. It is going to come out. Right? We have been saying from the beginning, show me the timeline. I've been saying from the beginning, 3 years now, that votes are being stolen, elections are not fair. Now you're saying to me that the Congress party is saying this. No. The Congress party was saying it. Now the Election Commission itself is saying it. So whatever we have been saying has now been accepted by two election commissioners. So now we have entered a new space. Because earlier the institution was denying what we were saying. Now the institution has accepted what we were saying. Which means the institution is saying this is true. What Mr. Gandhi has been saying for 3 years is true. And Mr. Gyanesh Kumar has been helping in stealing elections.
6: Suhail, Hindi Hindustan.
8: Rahul ji, namaskar. Rahul ji, abhi aapne kaha ki aap pichle 3 varshon se is issue ko utha rahe hain aur vote chori ko leke naye naye khulase bhi aa rahe hain. To aapko kab aur kyun mehsoos hua ki vote chori ki ja rahi hai?
2: देखिए, फील मैं आपको बताता हूं. जब मैं 7 साल का था 1977 में, इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर. एवरीबॉडी न्यू इंक्लूडिंग हर दैट शी वॉज गोइंग टू लूज. फीलिंग आती है. अब वो फीलिंग एक बार गलत हो सकती है कि आपने सोचा कि भैया, जैसे वाजपेयी जी की फीलिंग गलत हो गई. एक बार गलत हो सकती है, 2 बार नहीं हो सकती. ठीक है, 2 बार हो जाएगी तो 3 बार तो हो ही नहीं सकती. और फिर 4 बार 5 बार बस होती जा रही है. तो देर इज समथिंग नोन एज अ फीलिंग, कंट्री फील्स इट. और 2-3 इलेक्शंस ऐसे थे जब हमारे पास काफी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जब हम टेक्निकली देख रहे थे तो वो हमें कह रहे थे ये दिस इज नॉट पॉसिबल. मध्य प्रदेश का इलेक्शन था, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन था, देर वर मल्टीपल इलेक्शंस वेयर दे वर सेइंग दिस कैन नॉट बी, हाउ इज दिस हैपनिंग. तो आस्ते आस्ते सस्पेशन वॉज बिल्डिंग अप. We started working on it. And I must tell you, this thing, you will probably never see the people who are responsible for this. But there is a huge team of people who are responsible for this, who are unknown, who are the biggest nationalists in this country. And they've been working silently without telling anybody what they're doing.
6: Punjab Kesari, Surinder ji. संजीव,
9: जो वोटर लिस्ट में जो नाम है उनको हटाया गया, एसआईआर का जिस तरीके से अभी चल,
2: वोट चोरी करने के बेसिक ब्रॉड 2 सिस्टम्स हैं. एक सिस्टम वोटर लिस्ट को टैम्पर करने का, वोटर्स ऐड सब्ट्रैक्ट, और दूसरा सिस्टम ईवीएम का सिस्टम. दोनों सिस्टम्स से वोट चोरी की जा रही है. वी आर अवेयर ऑफ वोट चोरी इन बोथ सिस्टम्स, ईवीएम एंड दिस. इट इज अवेलेबल वी नो इट। तो दोनों तरीके से की जा रही है, एक डायरेक्टली वोटर के नाम बदल के, वोटर्स को काट के, वोटर्स को शिफ्ट करके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदल के, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
6: संजय मिश्रा, दैनिक जागरण। या
2: दिस विल कम आउट, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, यू विल सी इट इज कमिंग आउट।
10: राहुल जी इधर।
2: हाँ जी
10: राहुल जी, आपने कहा वोट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक प्रोसेस चल रहा है SIR, उस प्रोसेस में एक तरफ जहां करोड़ों लोग बाहर हो रहे हैं, वहीं जो नए वोटर्स हैं, JNG वोटर्स हैं, उनको ऐड करना मुश्किल हो रहा है। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो वो नए वोटर को आज एंट्री लेना वोटर लिस्ट में बहुत मुश्किल है। तो ये जो JNG वोटर अभी लेफ्ट आउट हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या चैलेंज है?
2: ये जानते हैं कि जेंजीज इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और वो उनको वोट नहीं देना चाहते, वो हो रहा है। बट एक और बहुत खतरनाक चीज हो गई है कि इलेक्शन कमीशन हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जो पहले क्रेडिबिलिटी थी वो गई, तो और इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इंटरनली, एंड आई एम अवेयर ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस, इंटरनली इज सेइंग दैट वी हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ आवर वोटर लिस्ट। दिस इज द टॉक इन देयर सिस्टम दैट द वोटर लिस्ट दैट यूज्ड टू बी ए क्लीन प्रॉपरली डिफाइंड वोटर लिस्ट इज नाउ ए करप्टेड वोटर लिस्ट। It has been destroyed, people have been removed, people have been added, there is chaos. And if you speak to anybody in the election commission off the record, you can ask them, they'll tell you.
6: PTI se Archana.
11: Hi Rahul ji, I'm Archana from PTI. My question to you is, which Congress will ask the ECI to reveal which official can edit the electoral rolls and data at national level, district level, or the state level or constituency level? What is your take on that?
2: No, which are the people who can fiddle the voter list?
11: Yes.
2: There are multiple people at multiple levels. So different levels have different types of access and different people can shift voters. So it's not only that the top can do it. Multiple levels can do it. Look, frankly, we do not believe anything the election commission is saying. Right? We've been saying for 3 years, all opposition parties are saying it. Now the election commission is itself saying it. We do not believe anything they tell us because, go back to that chain, because this chain is broken. If the chain was not broken, if the vote was secure and the constitution through the vote had its power and the laws were being made and the institutions were being fed by the vote, we'd have no problem believing the election commission. But what has happened is that this chain is gone. There is no connection between the vote and the constitution. There is no connection between the vote and the institutions because the vote has been destroyed. So we cannot believe anything the election commission says. And there has to be a full reform of the election commission done independently. I don't think this government can do it. I don't think they will ever do it. This is only going to happen when this government changes. But the essence of what I'm trying to tell you is that this is fundamental attack on the idea of India. This is not just an attack on the vote. And this has been carried out by the leadership of this country. So those people who are given the holy duty, the sacred duty of protecting the basic foundation of this country have gone and attacked it. That's what's happened.
6: Sandeep Phukan, The Hindu.
12: Mr. Gandhi, you've been doing press conferences on the voter addition and deletion, and this process essentially evolved, I mean, emerged out of these SIR. That case is being heard in the...
2: No. Voter deletion, voter addition was going on much before the SIR.
12: No, I mean...
2: It's important that people understand this. SIR came once we started saying there's a problem with voter deletion and addition. It was a response to our questions. And the idea was, ki bhaiya, let us broad brush this and clean this thing out because we are going to get into trouble. Go on.
12: So when the SIR went to the Supreme Court, the case is still being heard, but the Supreme Court allowed it. It happened in Bihar with some caveats, in Bengal, and now it's happening all over the country. But after these revelations, the situation has changed. Where does that leave the opposition? How would you approach this?
2: Look,
12: are you going
2: to approach it
12: differently?
2: We are heading to a place, whether we like it or we don't like it, we are heading to a place where people don't believe it anyway. If tomorrow the BJP sweeps the national election, India will not believe it. It's that simple. So now we are heading to the point where public expression will not allow BJP to get the type of majority they were getting. So now cheating is becoming more and more difficult. And you can see that expression in Jantar Mantar. You can see it all across the country. People do not believe that elections in India are legitimate. We've been polling people. This belief, which is sacred belief for us, even if BJP wins, it's a sacred belief that people of India believe in the vote. That belief is dying. And that belief has to be revived immediately.
6: Arth, ANI.
13: Rahul sir, आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए. और
2: नहीं, मैंने कहा he should turn approver.
13: अप्रूवर आपने तो सलाह दे दी उनको.
2: हाँ, सलाह दे दी.
13: सलाह दी आपने. अगर आपकी वो सलाह नहीं मानते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा ये कि जैसे ही आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री की जांच होनी चाहिए, किस तरह की जांच होनी चाहिए, कौन जांच करे, और अगर आप लोगों की मांग या आपकी सलाह ज्ञानेश जी नहीं मानते हैं और ऐसे ही प्रोसेस चलता है, तो क्या नेता विपक्ष सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आप बीच में सीजेपी के या जयंती के मूवमेंट के दौरान उतरे थे.
2: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो सिचुएशन है, ये हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुई है. ये हम नई जगह पहुंच गए. ये जो चेन टूटी है, ये हिंदुस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं टूटी है. नेवर. सो वी आर सडनली फाइंडिंग आर सेल्स where the chain between the vote, the laws, the institutions, and the constitution is broken. It's a new territory. Mr. Modi and Mr. Shah cannot inquire about themselves, I don't think. Matlab, wo apni thodi inquiry karenge. So inquiry has to be done once this system is repaired. Everybody in India believes that the system is damaged. Many people believe that it has ceased to exist, and many people believe that it is damaged. There is nobody in their right mind in India who does not suspect that the system is damaged. There is fear, so people are scared to say it. You are also scared to say it. I appreciate that. But the fear is reducing. Because two election commissioners who were scared to say it have said it. And so there are many patriotic people like those two gentlemen who are willing to say it. And it is most important for India's future that we say it. Because remaining silent on this is an anti-national act. Final question.
6: Hemant Rajora.

0: मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी ने कल कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक कर हम एक देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो नवंबर 2025 में की थी, अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो कोई बड़ी विपक्षी ऐसी योजना बनाई जा रही है, कोई ऐसा मंच बनाया जा रहा है जिसमें आप लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे, और क्या उसमें आपके कुछ ऐसे सहयोगी जो पहले मतलब अलग डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको भी इस मंच पर लाया जाएगा, और क्या योजना होगी?
1: देखिए, ऑपोजिशन में 100% एग्रीमेंट है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. नॉट 99%, एवरीबॉडी. और फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द सिंगल बिगेस्ट इश्यू इन फ्रंट ऑफ आर डेमोक्रेसी. वी आर गोइंग टू कोऑपरेट. हम ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. एंड आर ड्यूटी, आर सेक्रेट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वोट, विच वी आर गोइंग टू डू.
2: गिरफ्तारी की मांग का विरोध करते हैं.
3: थैंक यू, थैंक यू.
1: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.
3: थैंक यू, थैंक यू.
1: डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाऊंगा, आई विल अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन. बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. आई मैम प्लीज.
4: जैसे मैं दिल्ली की जन्म, मेरा पढ़ाई सब दिल्ली का, मेरा भी वोट काट लिया. 2002 की लिस्ट में था वो जनता.
1: तो यू आर ऑब्वियसली अ कांग्रेसी. थैंक यू, थैंक यू.
5: तो राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वोट चोरी लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो चार बड़ी बातें राहुल गांधी ने इस मंच से कही हैं, उसे सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बीजेपी के आने के बाद खत्म हो गया है. आज तक इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नाम लिया इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी का, सबके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आया. लेकिन ये जब से आए हैं तब से एंटी इनकम्बेंसी का सामना इनको करना ही नहीं पड़ रहा है. मतलब वोट चोरी हो रही है. मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं है? दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ज्ञानेश कुमार को अप्रूवर बनना चाहिए. ज्ञानेश कुमार जल्द से जल्द ये समझे कि जो वो कर रहे हैं इसकी सजा उनको मिलेगी, आज नहीं तो कल. दो चुनाव आयुक्तों का सामने उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, दे हैव कम क्लीन, यानी वो सामने आए, उन्होंने अपनी बात कही है, ये बड़ी बात है. और अब ज्ञानेश कुमार को भी होना चाहिए. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी वो मांग कर रहे हैं. तीसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जांच होगी. जांच पर उनसे स्पेसिफिक सवाल भी पूछा गया है. तो आज कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला किया है. सबसे बड़ा हमला उनका ज्ञानेश कुमार पर था, मुख्य चुनाव आयुक्त पर. और इसीलिए हम कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विपक्ष का नया युद्ध. इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएं और बताएं कि आखिर ज्ञानेश कुमार के इर्द गिर्द ये पूरा तूफान जो आया हुआ है, चुनाव आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से हुए खुलासों के बाद आज राहुल गांधी ने न सिर्फ सीसी ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है, पर इसी बहाने सरकार को भी खटगरे में खड़ा कर दिया है. पहले सुन लीजिए.
1: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन. Without any doubt, both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word. In India, there is a fundamental

0: force called anti-incumbency that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. Indira Gandhi ji wins the Bangladesh war, is at the height of her popularity. And then suddenly, within a year or two, massive anti-incumbency, massive pressure. The same exact thing happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP.
1: देशद्रोही कहा है ज्ञानेश कुमार को, इस्तीफे की भी मांग की है। आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं।
2: इट इमर्जेस फ्रॉम हिज फर्स्ट स्टेटमेंट, जब वो कहते हैं कि मैं 50 साल से इसको देख रहा हूं, जिसकी 56 साल की एज है वो 50 साल की उम्र से सारी चीजें समझ रहा है। मुझे लगता है 5-6 वर्ष की आयु में राजनीति को समझने की ऐसी अद्भुत प्रतिभा सिर्फ पक्की दाढ़ी वाले नौजवान में ही हो सकती है। सेकेंड, उन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी देश का एस्टैब्लिश ट्रुथ है और वो बीजेपी के आने के बाद हुआ है। मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य, राजनीतिक दृष्टि से ज्ञान शून्य राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है। यस, ये सही है, एंटी इनकम्बेंसी इज डेफिनेटली इज वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रांग अगेंस्ट कांग्रेस। भारत की राजनीति का ज्ञान नहीं, 1967 के बाद से तमिलनाडु में कांग्रेस कभी नहीं लौटी है, तब कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था। बंगाल में 1977 के बाद से कांग्रेस नहीं लौटी है और 77 से 2011 तक 34 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही और राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आता है, दिखाई नहीं पड़ता है। अब आइए, बिहार में 1990 के बाद से कभी कांग्रेस नहीं रही है, 3 बार लगातार लालू यादव की सरकार रही है, राहुल गांधी को ज्ञान ही नहीं है। 1990 के बाद, 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में, यानी जो गांधी फैमिली का गृह राज्य था, वहां सरकार नहीं रही है, उनको पता ही नहीं है। 1999 के बाद से उड़ीसा में सरकार नहीं रही है, 25 साल लगातार बीजू जनता दल की सरकार रही है, ये पता ही नहीं है। ममता बनर्जी जी की 3 बार सरकार रही है, ये पता ही नहीं है। त्रिपुरा में लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, ये पता ही नहीं है। और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर आ जाते हैं, डेफिनेटली जिस जमाने में कांग्रेस की भी लंबे समय तक सरकार रही है, जिस जमाने में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिस जमाने में बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जिस जमाने में गोलियां चलती थीं, उत्तर प्रदेश बिहार में तो कोई चुनाव ऐसा नहीं जाता था जब कुछ लोग मारे ना जाते हों और घायल ना होते हों, तब तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी। जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब से सीसीटीवी आ गए हैं, सीसीटीवी की लाइव फुटेज आती है, जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं सत्ता में आने के। हां, यह सच है कि राहुल जी और सोनिया जी के आने के बाद कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी जी 1997 के दिसंबर में राजनीति में आई, उससे पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में थी तो 98 में एक बार रिपीट हुई, फिर कभी किसी राज्य में रिपीट नहीं होती है। और राहुल गांधी जी इतने गजब के हैं, केरल में हर बार रिपीट होती थी, वो बोलने में भूल गए, मगर पिछली बार केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के बजाय कांग्रेस को आना था, वो नहीं आई क्योंकि राहुल गांधी जी के चरण वहां पड़ गए थे। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं एंटी इनकम्बेंसी वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस गांधी परिवार के अंदर है, 100 साल से लगातार सत्ता में है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में, और आज एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो अपनी सीट बगैर अपने सहयोगी दल की बैसाखी के नहीं जीत सकते। पिछले 25 साल से रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, वरना सोनिया जी राहुल जी की क्षमता नहीं है कि बगैर सपा के सपोर्ट के अपने दम पे अपनी खानदानी सीट निकाल लें। और राहुल गांधी जी वायनाड जीते और प्रियंका गांधी वायनाड जीती, मुस्लिम लीग के सपोर्ट पर जीते हैं जहां 60-65% मुस्लिम है। क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है कि बगैर मुस्लिम लीग के समर्थन के अपनी सीट निकाल सके। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का अपना अनुभव बिल्कुल सही है और राजनीतिक दृष्टि से उनका ज्ञान अत्यंत शून्य है, भारत की राजनीति का फंडामेंटल ज्ञान उन्हें नहीं है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। पहला सवाल कि एक न्यूज रिपोर्ट के आधार के ऊपर यह कहा जा रहा है, फिर मैं उसका तकनीकी जवाब देता हूं। पहली बात, उस न्यूज रिपोर्ट में किसी भी इलेक्शन कमीशन का कोट है, हां या नहीं? नहीं तो किस आधार के ऊपर कोई बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ने यह बोला है? किसी भी न्यूज के बारे में मैं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कहता हूं, बाकायदा संबंधित व्यक्ति को क्वेश्चन पूछा जाता है और उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। वो स्टेटमेंट कोटेड है? नहीं। एक भी क्या कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट है कि सर्वसम्मत से निर्णय ना हुआ हो? नहीं। एक भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें तीनों कमिश्नर्स ना रहे हो? नहीं। तो इस बात का आधार क्या है? मैं सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिसमें किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का कोई कोट नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई रिस्पांस नहीं मेंशनड है, तो उसका आधार क्या है? और अगर इस आधार पे काल्पनिक बातें करें तो अप्रैल 2012 में उसी अखबार ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस की सरकार इतनी डर गई थी कि सेना ही आग कैप्चर खेले रही है। कैसी खारी सारी खबरों के ऊपर आप यकीन करते हैं? अब मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं, इसके बाद मीडिया से भी बहुत गहरा ताल्लुक है इनका। अखबारों की जब चीज पे जाएंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के दिल में यह समस्या क्यों है। पहली बात टेक्निकल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है चुनाव आयोग को कि वो कभी भी अपनी इच्छा और व्यवस्था के अनुसार SIR करवा सकता है। नंबर दो, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोट किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1960 में जो फॉर्म 6 था उसमें कोई परिवर्तन किया गया, इस पर स्पष्ट किया गया कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनका कहना है कि माता पिता का नाम नहीं जोड़ा गया। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात सिर्फ कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला इलेक्टोरल रोल 1952 में बना, वोटिंग की एज 21 ईयर्स थी, तो 1974 तक तो माता पिता का रेफरेंस पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि 1973 तक जो फर्स्ट टाइम वोटर बन रहा होगा उसके तो माता पिता हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि सब 1952 से पहले के रहे होंगे। उसके बाद जब यह परिस्थिति आई कि बहुत सी घुसपैठियों की समस्या आई, तो 1987 में अमेंडमेंट हुआ। तब यह किसने निर्णय लिया? 2003 में अमेंडमेंट हुआ कि 26 जनवरी 1987 से पहले पैदा हुए जो भी भारत में के नागरिक हैं वो नागरिक माने जाएंगे, उनका उसमें एंट्री होगी। 87 से लेकर 2004 के बीच में जो भी लोग आए हैं उनको यह बताना होगा कि उनके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, केवल उनसे सीधे नहीं ऐड होगा नाम। फिर उसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया कि माता और पिता में से एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, मगर कोई भी एक व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि लीगल इमिग्रेंट ने आके यहां के नागरिक से शादी कर ली और उसकी संतान जो है वो भारत की वोटर बन गई। ये तो 87 और 2003 के चेंजेस हैं। और फिर मैं देश से पूछना चाहता हूं, अगर आज कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि 18 साल का कोई व्यक्ति अगर आता है और वो ये कह रहा है, उससे पूछा जा रहा है और साफ साफ ये कहा गया, अगर आपके माता पिता का नाम है, परिवार के किसी सदस्य का नाम है, दादा दादी का भी नाम है, आपको कोई कागज देने की जरूरत नहीं, और उसके बाद आपको वोटिंग से जोड़ रोका नहीं जा रहा है, यह कहा जा रहा है इनमें से कोई एक कागज दे दीजिएगा। और मैं देश से पूछना चाहता हूं, अगर 2025 या 26 में कोई 18 साल का युवा आकर यह कहता है कि वो वोटर बनना चाहता है मगर माता पिता का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या उसे वोटर बनना चाहिए बगैर वेरिफिकेशन किए? जो ये कह रहा है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ सामान्य नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ पीपीटी बोला, मैं बगैर पीपीटी के पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के नेताओं ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा गया? और उसका आधार समझ में आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत कहां से हासिल हुई? असम की धुबरी सीट से। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते, जिनके विषय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी कह चुके हैं कि दिस इज मिनी बांग्लादेश, जहां सबसे भारी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 20 से 25 सालों में, वहीं कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, राहुल गांधी से तीन गुना बड़ी जीत। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, आप उनके एक्स और ट्विटर पोस्ट जाके चेक करिए, जब उनके प्रवक्ता करे तो लुक एट द क्राउड्स, वो कौन सा इलाका था? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, जहां सबसे ज्यादा संदेह है डूबियस वोटर्स का। और फिर हम यह भी पूछना चाहते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने यूएस एड की, या आप देखिए यूएस एड की मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रोकी, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा यूएस एड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए फंडिंग कर रहा था। इट इज अ स्टेटमेंट व्हाई द मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर पोर्ड बाय अ फॉरेन एजेंसी टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट इन इंडिया, व्हाट दे हैव टू डू विद वोटर टर्नआउट इन इंडिया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यह माजरा क्या था। माजरा यह है कि जो लोग विदेशी वोटरों के आधार के ऊपर सत्ता पे कब्जा करने का ख्वाब रखे थे, उनके ख्वाब शीशे की तरह चूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो वीडियो सबने देखा होगा कि जब इन्फिल्ट्रेटर्स वापस जा रहे थे, उन्होंने बोला है कि हम बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, वीडियो अवेलेबल, हमने 4 बार वोट डाला है, वो वीडियो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में कि हमने 4 बार वोट डाला है, वो बॉर्डर पे खड़े होकर कह रहे हैं हमें वापस जाने दो, और अपनी लोकेशन बता रहे हैं अंदर की कि हम फला फला जगह के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर किसी को लगता है एसआईआर नहीं होनी चाहिए, वो देश के साथ देशद्रोह करने की बात कर रहा है। अगर बांग्लादेश के एक एमपी ने कहा, अख्तर हुसैन ने, कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो बड़ी समस्या हो सकती है, हमारे बहुत सारे लोग वापस आने लगे, क्या मतलब है इसका? इसका डेली स्टार में आर्टिकल, धुबरी की जीत, मैं हम 4 बार वोट डाल चुके हैं ये। और अब कहानी समझिए कि ये जो प्रपंच शिरोमणि ने समझाने का प्रयास किया है, इसके पीछे वास्तविक मंतव्य क्या था। इसलिए जो बिल्कुल टेक्निकल बात है, उसके साथ साथ हम एक और बात पूछना चाहते हैं। स्टेट्स में भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, स्टेट्स में भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। मैं चुनौती से कांग्रेस और विपक्षी दलों से पूछ रहा हूं, कितनी स्टेट्स में इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के प्रोसेस में लीडर ऑफ द अपोजिशन इन्वॉल्व है, बताएं हां या ना? कितनी जगह चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व है, हां या ना? खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत, यहां तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन्वॉल्व है। और महोदय को यह भी याद नहीं रहता, वो कह रहे हैं कि हमने नोट ऑफ डिसेंट दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पे, उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट बाकी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर भी दिया था, जिनको कि आज जिनके वक्तव्य को आज वो कह रहे हैं। इसी को कहते हैं पल में वो तोला है और पल में वो माशा है, करते तो तमाशा है और खुद ही तमाशा है। दूसरी बात, ये सारे विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के सारे प्रोसेस को अपहेल्ड किया, इलेक्शन कमीशन की पूरी पावर को अपहेल्ड किया। और जिसको प्रारंभिक ज्ञान ना हो, इस इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, अगर कोई भी 2 इलेक्शन कमिश्नर किसी भी चीज पे मतभेद रखते हैं तो वो निर्णय हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुमत से ही होना है। तो सारे निर्णय एक मत से हुए, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो बहुमत से हुआ हो। अब बताते हैं कि वो कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रपंच रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने यह कहा था 2024 के इलेक्शन में कि 150 डीएम और कलेक्टर्स बदल दिए गए। जब उनसे इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप 150 बदले हुए डीएम और कमिश्नर्स की लिस्ट दीजिए, लिस्ट गायब हो गई, दी नहीं गई लिस्ट। अब इन लोगों के जमाने में कैसे सरकार चलती थी मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं अपनी टीम से कहूंगा एक वीडियो जरा प्ले करके दिखाएं। ये वो पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके पर कतरने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर लाए गए थे, जरा एक बार वो वीडियो सुनिए। ये किसके समय की बात हो रही है? राजीव गांधी जी के कैबिनेट सेक्रेटरी थे टीएन सेशन। वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया और कहा गया बता दो कि इलेक्शन कमीशन को कि इस डेट से इलेक्शन कराने हैं। तो टीएन सेशन हु वाज कैबिनेट सेक्रेटरी एट द टाइम इज सेइंग टू देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी कि उन्होंने इंग्लिश में बोला तो मैं हिंदी में बोले दे रहा हूं, महोदय ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि हम चुनाव आयोग से कहें कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं और तिथियों का समय का निर्धारण वो करेंगे। मगर उनसे कहा गया नहीं आप कहिए ये होगा। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है। उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए उनका 7 साल की उम्र में 1977 में, भाई सब 7 साल की उम्र में है। मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती जो इस प्रकार के जवाब दे रहे हो। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, मैंने बात बंगाल चुनाव से पहले कही थी कि वोट चोरी करते हैं। बिहार चुनाव में 2010 में किसकी सरकार थी? आपकी। इलेक्शन कमिश्नर कौन था 2009 में? आपके पर्सनल व्यक्ति माने जाने वाले नवीन चावला। और 2010 में कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ी, 4 सीटें जीती, 3.6% वोट प्राप्त हुए, 234 पे जमानत जब्त। मतलब कहना ठीक नहीं लगता है, जिसकी 234 सीटों पर जमानत जब्त हो गई वो कहता मेरी वोट चोरी हो गई। और मैंने बात बंगाल चुनाव से पहले कही थी कि 2021 में कांग्रेस की 0 सीट थी बंगाल में और वो कहेगी वोट चोरी हो गई। भाई तेरे पास था क्या जो चोरी हो गया? मतलब थोड़ा कहने में अभद्र सा शब्द लगता है कि नग्न व्यक्ति नृत्य करेगा फिर कहेगा कपड़ा फट गया मेरा, सामान्य भाषा में आप लोग समझते होंगे, उस भाषा में उतर के ऊंचे लेवल पर जवाब देना ठीक नहीं है। संस्कृत निष्ठ परिमार्जित परिष्कृत भाषा में मैंने आपको बता दिया, शेष आप अपने मानस पटल पर स्वयं इमेजिन कर सकते हैं। अब इसलिए हम आपसे यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और कान खोल के सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का जो राइज हुआ है वो 70 साल में डिकेड बाय डिकेड हुआ है और कांग्रेस का डिक्लाइन 70 साल में डिकेड बाय डिकेड हुआ है। 1950s का डिकेड, 50 का दशक वी वर इनसिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पार्टी, 60s का डिकेड हम 67 में 35 लोकसभा जीते जनसंघ के और उत्तर प्रदेश में हमारे 96 एमएलए जीत के आए और मध्य प्रदेश राजस्थान कई जगहों पे हमने अच्छी संख्या में आए, वी बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्टी और हमने अनेक राज्यों में एसवीडी गवर्नमेंट बनाई। 70 का दशक हम केंद्र में पहली बार सत्ता के भागीदार बने और 3 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश राजस्थान और हिमाचल में। 80 का दशक 1984 में भी राहुल गांधी जी आपका ज्ञान शून्य होगा मगर 1984 में वोट प्रतिशत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी थी कांग्रेस के बाद, भले ही हमारी सीटें 2 थी, 8.6% वोट था भारतीय जनता पार्टी का। 89 में हम 86 सीटें पाए, 90 का दशक वी बिकम द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, वी हैव क्रिएटेड द यूनिपोलर पॉलिटिक्स इनटू बाइपोलर पॉलिटिक्स। 2000 का दशक वी वर लीडिंग द कोलिशन अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, और 2010 का दशक वी वर हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ट्वाइस एंड लीडिंग द कोलिशन थ्राइस अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। क्या बात करते हैं, राजनीति का एबीसीडी नहीं पता हुआ है आपको अपने जमाने से। हम निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़े हैं। आप लोग सुविधा की राजनीति करें, उसका कारण क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता हैं। वो हर दूसरे महीने में उड़कर विदेश पहुंच जाते हैं और फिर वहां से कोई ज्ञान प्राप्त करके आते हैं और आधारहीन तथ्यहीन फैक्ट्स के आधार के ऊपर वह कोट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने एक और बात कही थी, इस तरह का टाइम भारत में नहीं आया है। बिल्कुल सही बात है, मैं राजनीतिक दृष्टि से भी कहना चाहता हूं और दूसरी यह सही बात है, भारत इस समय जिस टाइम में, ऐसा टाइम कभी नहीं आया है। आपके दौर में 2% ग्रोथ रेट थी, समय 7.8% की ग्रोथ रेट है। हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बिगेस्ट मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर वन के देश हैं। और ये सही बात है, कांग्रेस जो कहती है कि हम तो ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता, बिल्कुल आप नहीं सोच सकते। आप नहीं सोच पाए थे कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना है, क्योंकि 74 का जो पोखरण विस्फोट न्यूक्लियर पावर के नहीं कहा गया था। कांग्रेस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कहा है, इसलिए ना कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था और ना आपने कहा था न्यूक्लियर डिटरेंट की बात। आप सोच ही नहीं सकते थे कि हम जाके दूसरे देश में अटैक करके आ सकते हैं। न्यूक्लियर पावर संपन्न देश के अंदर भी हम, अगर हमारे यहां अटैक होगा तो हम करके आ सकते हैं। आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर वन का देश बन के आएगा। बिल्कुल आप जिस सोच से सोचते हैं उससे निश्चित रूप से हम मैन्युफैक्चरिंग में, हम हाई ग्रेड हाईएस्ट ग्रेड मोबाइल हैंडसेट के स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चर में वर्ल्ड के नंबर दो देश होंगे, ये आप कल्पना नहीं कर सकते थे। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये गलत नहीं है, ये वही मानसिकता है जो हमेशा भारत के बारे में कहती रही, आजादी के बाद कहा है डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, उसके बाद उन्होंने कहा भारत सरवाइव नहीं कर पाएगा, 70 के दशक में कहा भारत, 60 के दशक में कहा भारत भूखों मर जाएगा, उसके बाद यह कहा कि जिस दिन बीजेपी आ जाएगी उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। मगर सब कुछ जो सोचा रहे सोचते रहे वो कुछ और हुआ। इसलिए राहुल गांधी जी से, मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि हुई है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। वैसे आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके लिए कहना चाहूंगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अंत में मैंने सारी बातों का तीनों एंगल पर जवाब दिया है। नंबर वन पॉलिटिकल एंगल, एंटी इनकम्बेंसी एंड हिज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ द लास्ट 60-70 ईयर। नंबर टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इलेक्शन कमीशन हैज सेड। नंबर थ्री ऑन द मीडिया रिपोर्ट देर इज नो कोट नो रेफरेंस इवन एन ऑफ द रिकॉर्ड एनी रेफरेंस ऑफ एनी बडी फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट हाइप। और शायद इसीलिए मैं उनसे, एंड नंबर फोर्थ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट हिज ओन फैमिली, दैट्स वाई देयर थ्री फैमिली मेंबर्स, टू आर देयर इन लोकसभा विद द सपोर्ट, और ये भी कहना ठीक नहीं रहा, हम कहेंगे समाजवादी पार्टी के रहमो करम से और मुस्लिम लीग के फजलो करम से दो लोग सत्ता में केंद्र में हैं और राज्यसभा में माननीय सोनिया जी हैं, तो आप अपनी सीट नहीं जीत सकते। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल आपके साथ सही है, इसलिए जब भी बात करें तथ्यात्मक बात करें, मुद्दे के अनुसार बात करें, तो उनके लिए सिर्फ एक लाइन कहूंगा, और ये न करने के कारण ही। और एक और बात भी है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है ऐसा समय नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, 140 साल में कांग्रेस के लिए कभी ऐसा समय नहीं आया है कि उनके नेतृत्व के बारे में जनता में यह धारणा बनी हुई हो कि उनका नेतृत्व के एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो कि वो कभी बैठकर कॉमेडी करता हो, कभी घूम घूम कर पीपीटी दिखाता हो और फिर स्टैंड अप कॉमेडियन का साथ लेता हो, कभी अपने सांसद के साथ खड़े होकर कॉमेडी करता हो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियन का साथ लेता हो अपनी कॉमेडी के लिए क्राउड पुल करने के लिए, तो कभी भारत की संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ के अखियों से गोली मारता हो? वाकई ऐसा समय कभी नहीं आया है। तो राहुल गांधी जी के इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, और सिर्फ उनको भी, जैसे उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं, अप्रूवर मेरा विचार है राहुल गांधी जी आप अपने अप्रूवर बन जाइए, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए। तो एक बिंदु एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। और इस समय इतना हल्का किरदार दिखाया जा रहा है जितना भारत की राजनीति में कभी नहीं रहा। धन्यवाद।
3: विषय से संबंधित आपके जो प्रश्न है वो आमंत्रित हैं दीपिका। सबसे पहले
1: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को राजनीति का ज्ञान नहीं है ये बताते हुए, राहुल गांधी की राजनीतिक समझ शून्य करार देते हुए बताया कि कब कब कौन सी सरकारें तीन तीन चार चार टर्म तक देश में रही हैं। कई राज्यों में सत्ता विरोधी लहर नहीं रही, ममता बनर्जी से लेकर उन्होंने अनेकों ऐसे उदाहरण सामने दिए हैं। मुझे लगता है कि समय जाया किए बिना चर्चा की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता बीजेपी के, अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मनोज काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और मोहम्मद अमीन जो कि पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी तीन बड़ी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो कि एंटी इनकम्बेंसी हवा ही हो गई आप लोगों के आने के बाद, दूसरी बात वो कह रहे हैं पीएम और एचएम की जांच हो, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, उन्हें वो देशद्रोही बता रहे हैं। आपका जवाब इन तीन मुद्दों पर, क्योंकि आज देखिए चुनाव आयोग के अंदर से खबर आई है, ये विपक्ष का क्रिएटेड नहीं है, आपके लिए चैलेंज है।
4: देखिए जो जनता के कटघरे में देशद्रोही घोषित है वो दूसरों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट जब बांटते हैं तो जनता वापस से इनको देशद्रोही जो है चुनावों के अंदर घोषित करती है, इसलिए विपक्ष में बैठते हैं। एक एक कर फैक्चुअली बात करूंगा। इन्होंने बोला एंटी इनकम्बेंसी हो नहीं सकती, जवाहरलाल नेहरू 52, 57, 62, कुमार चामलिंग 94, 99, 2004, 2009, नवीन पटनायक 2004, 2009, 2014, 2019, ज्योति बसु 97, 82, 87, 91, 96, ऐसे तमाम हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जहां पे लोग वापस से आए हैं। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार ने वोट चोरी करी, क्या उन्हीं की सरकार के समय लोकतंत्र की चोरी हुई? तो पहले आज उनको कह देना चाहिए ऐसी बात, क्योंकि उनको अज्ञान भी और झूठ की गूंज कर रहे हैं। दूसरा बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी यहां पे बड़ी बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन के बारे में कर रहे हैं। मेरे पास ये February 1, 2009 का है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोपाल स्वामी ने प्रेसिडेंट को लिखा था कांग्रेस पार्टी के समय कि नवीन चावला को सैक कर देना चाहिए। इट इज आस्किंग फॉर सैकिंग, यहां पे डिसेंट नोट की बात नहीं, सैकिंग की बात है। इसको सैक नहीं किया गया था मैडम, उसको सैक करने के बजाय इनको प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था नवीन चावला को, और कांग्रेस पार्टी सरकार जीती थी।
1: तो इसलिए क्या करें, अब मौजूदा अभी आप 12 साल से सरकार में हैं, ये कच्चा चिट्ठा तो पता है
4: नहीं, तो ये तो फैक्ट है,
1: ये तो सबको पता है। अब 324 दो दिन से एक ही बात कितना बताइएगा,
4: 324 आर्टिकल ये कहता है कि चुनाव आयोग का कोई भी डिसीजन मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन से होता है। तो आप मान लीजिए एडिटोरियल रूम में 10 लोगों के बीच में डिस्कशन होगा, डिफरेंस होगा, मेजोरिटी कंसेंसस से होगा। कोई भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठती है, तीन जजेस बैठते हैं, एक कोई डिसेंटिंग करता है, पर आप मानते तो 2-1 बेंच का जजमेंट हो ना। तो इसी तरीके से चुनाव आयोग का तो 2-1 बेंच का जजमेंट है और मेजोरिटी ओपिनियन के साथ एसआईआर को लागू किया गया, लीगल कहा गया। तो ये क्या है, चुनाव के कटघरे में जब जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे तो अविश्वास पैदा करना चाह रहे, जनता इनकी पुरानी स्क्रिप्ट को देख रही है।
1: ठीक है, इस वक्त मेरे साथ ओपी रावत साहब जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अखिलेश जी फौरन आ रही हूं, एक बार रावत जी से बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो विवाद है ओपी रावत जी, उसमें सबसे बड़ा सवाल अब ज्ञानेश कुमार पर स्पेसिफिक आ रहा है कि वो वन मैन शो है, ज्ञानेश कुमार पर एक तरह से जिसको कहते हैं सारा हीट है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद आपको ज्ञानेश कुमार की फंक्शनिंग पर आप क्या कहेंगे रावत जी?
5: मैं उसे दुर्भाग्यजनक मानता हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग के कानून में स्पष्ट है कि जब सभी फैसले सर्वसम्मति से लेंगे या मेजोरिटी से लेंगे, तो अगर दो चुनाव आयुक्तों की मर्जी से खिलाफ जा रहे हैं आप तो वो तो फैसला उनकी मर्जी का होगा, उन्हें उसी समय फैसला रोक देना था और अपनी मर्जी का फैसला रिकॉर्ड करवा लेना था।
1: लेकिन अगर मेजोरिटी उनकी तरफ, अगर विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधु जैसे फॉर्म सिक्स को लेकर आ रहा है कि दोनों की राय थी कि ये एडिशन आप नहीं कर सकते, सरकार कानून में बदलाव करे फिर ये होगा, ठीक है, अब उनकी आपत्तियां जो है वो नहीं सुनी जा रही है, वो क्या कर सकते थे?
5: वो उसे तुरंत रोक सकते थे, अगर नहीं रुकता, नहीं रिकॉर्ड होता तो वो अपनी शिकायत लेकर राष्ट्रपति जी को जा सकते थे कि सब हमारी मेजोरिटी है, कानूनन हमारा मेजोरिटी वाला मत जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है।
1: हाँ।
5: तो राष्ट्रपति जी एक्शन ले लेते और सुलझ जाता। 14 चिट्ठियां लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस तरह से काम नहीं करती, उसमें कोई चिट्ठी पत्री का नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन हैज पावर्स ओनली इन द इलेक्शन कमीशन मीटिंग, इंडिविजुअल इलेक्शन कमिश्नर्स आर पावरलेस।
1: लेकिन रावत जी, मीडिया रिपोर्ट का दावा तो ये है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने, मतलब उन्होंने शिकायत अलग अलग कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखी है, इस पर आप क्या कहेंगे?
5: वो तो बिल्कुल गलत है, कैबिनेट सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट का पार्ट है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट से के अधीन काम नहीं करता है।
1: अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार को रिजाइन करना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जवाब में बार बार एक ही बात कह रहा है कि जो भी अंतिम निर्णय लिया गया वो यूनानिमस था, सामूहिक था। अब क्या है ये, इससे आगे कैसे?
5: अब ये देखिए क्या कौन क्या कर रहा है, इस पर सबसे कमेंट करना तो उचित नहीं है मेरे लिए। मैं फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशनर होने के नाते बस इतना ही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी प्रावधान के तहत है, या तो मेजोरिटी या फिर सर्वसम्मति। अगर सर्वसम्मति नहीं थी, आप दोनों मेजोरिटी में होते तो जो भी फैसले आप लेते वही रिकॉर्ड होते और उसके अनुसार आगे कार्रवाई होनी चाहिए।
1: लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है रावत जी कि क्या किसी भी संस्थान में ये व्यवहारिक है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त, और हमने देखा है, मतलब टीएन सेशन से लेकर आपने देखा, उनका वीडियो भी बीजेपी ने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अलग अलग लिंगदो साहब में बहुत सारे ऐसे चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जो कि बहुत ही जिनकी पर्सनालिटी या काम करने का तरीका जो है वो बहुत प्रबल रहा चुनाव आयोग के अंदर। आप कह रहे हैं कि दोनों चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था, क्या ये व्यवहारिक है कि भाई नहीं, हम यहां पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम सीधा राष्ट्रपति के पास जाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त को अलग से कोई पावर नहीं है, वो भी इनके बराबर ही है, मेजोरिटी जिस तरफ है वो फैसला होगा, और अगर नहीं हुआ है चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में अगर प्रशासन जो है आपकी बात नहीं लिख रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, आप तुरंत वहीं से सीधे जाइए राष्ट्रपति जी से टाइम लेके और वहां उनको अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए।
1: तो ओम प्रकाश रावत जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, सबसे बड़ी बात यही कह रहे हैं आप कि राष्ट्रपति के पास दोनों को अभी भी जाना चाहिए, अभी भी मीटिंग बुलाएं आप कह रहे हैं, और वहां पर चूंकि ये दोनों एक तरफ अगर हैं तो उन फैसले को वो वापस ले सकते हैं। लेकिन देखिए, दोनों चुनाव आयुक्त जो हैं वो संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, अब जिस तरह से ब्यूरोक्रेट नोट लिखता है या जो भी करता है, क्योंकि इस मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये दावा किया गया है कि उनका जो डिसेंट था या जिसको वो गलत मान रहे थे वो नोट्स उन्होंने देखे हैं, लेकिन निर्णयों पर तो रजामंदी रही है ना, जो आखिरी फैसले हुए एसआईआर को लेकर उस पर रजामंदी रही, यही तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से बता रहा है। तो अब इस पर क्या हो सकता है और क्या इस तरह के सवाल उठाने से अब कोई कुछ उसका निकलेगा, कुछ आउटकम होगा?
5: एक्चुअली ये दोनों चुनाव आयोग ठीक कह रहे हैं ना, और वहां से जो भी अभी प्रेस नोट आया उसमें भी यह है कि सर्वसम्मति से ही फैसले हुए, राय अलग अलग हो सकती है, तो वो भी इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में आया है, तो वो भी हमें ऐसे लगेगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के जरिए आया है। तो बाहर वाले को तो ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन में सारे निर्णय इलेक्शन कमीशन करती है और उसका सिद्धांत है या तो सर्वसम्मति या मेजोरिटी। बाहर वाले को कैसे पता लगेगा कि आपके साथ ये हो रहा है? आप जब तक सही जगह जाके शिकायत नहीं करोगे, राष्ट्रपति जी को नहीं मिलोगे, तब तक कैसे पता लगेगा बाहर वाले को?
1: लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ओनस अब उन पर डाला जा रहा है? देखिए, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूं कि क्या दोनों जो ये चुनाव आयुक्त हैं, सुखविंदर संधु साहब या फिर जोशी साहब, उनके पास क्या सिर्फ यही एक विकल्प है कि वो राष्ट्रपति के पास जाएं अपने शिकायत लेकर?
5: मेरी नजर में यही है कि आपको वहीं जाना चाहिए सीधे राष्ट्रपति जी के।
1: और ज्ञानेश कुमार का क्या?
5: एक्चुअली वीटो पावर नहीं है, ये मेजोरिटी डिसीजन है। इलेक्शन कमीशन में किसी को वीटो पावर नहीं है, मेजोरिटी अगर है तो आपका वो निर्णय लिखा जाएगा, वही आगे बढ़ेगा, तो ये आपका निर्णय होगा, और अगर नहीं रिकॉर्ड होता है, नहीं उस पर अमल होता है, तो आप राष्ट्रपति जी को शिकायत तुरंत कर दीजिए।
1: देखिए पॉलिटिकली ये बात तो देखिए रावत साहब उठेगी ही, आप मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, आप चुनाव आयोग के कामकाज को देखते हैं। फाइनल सवाल मेरा आपसे, अब क्या हो सकता है इस केस में? भाई ये आर्टिकल आ गया, एक शक बन गया है, वो दोनों जाहिर तौर पर दोनों चुनाव आयुक्त तो इस वक्त कुछ नहीं कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग प्रेस नोट जारी करके कहता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अब क्या कोई एक्शन हो सकता है, अब क्या हो सकता है इस पूरे केस में? जांच होनी चाहिए
5: अभी भी आपको जिन चीजों पर आपत्ति है उनके बारे में आप मीटिंग करके उनको रद्द कर सकते हैं, और अगर वो रद्द करने का निर्णय रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप राष्ट्रपति जी को शिकायत कर सकते हैं, ये तो खुला हुआ है।
1: आखिरी सवाल मेरा एसआईआर की प्रक्रिया पर है, इस प्रोसेस को आप कैसे आंकेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत नेगेटिवली इसको देखा है।
5: हम तो इस तरह से आंकते हैं कि देखिए एसआईआर करने का अधिकार कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन को है, और इसलिए वो कर रहे हैं, उसमें गलतियां हुई हैं, उसमें कमियां रही हैं, वो धीरे धीरे वो सुधारते रहे हैं, कोर्ट ने कहा है उसको मानते रहे हैं, बाहर से लोगों ने कहा उसको भी करते रहे हैं, टाइम एक्सटेंड करते रहे, जब देखा गया कि टाइम कम पड़ रहा है तो वो उस हिसाब से चल रहा है। अगर कहीं आपत्ति है और स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर्स को है, तो उनको अपना जो मेजोरिटी वाला काम है वो कर देना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आप मतलब दो बड़ी बातें जो ओपी रावत जी कह रहे हैं, भंडारी जी वो कह रहे हैं कि भाई, और अखिलेश जी को भी दिखाई, अखिलेश जी मैं आप ही के पास आ रही हूं, उनका कहना है कि उन दोनों को या तो मीटिंग फिर से बुलाएं और फिर मेजोरिटी उनकी होगी और उसको रद्द कराएं फैसले को, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखकर नोट करके तय प्रक्रिया के तहत, और दूसरा वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं अपनी शिकायत को लेकर। लेकिन बीजेपी जिन मुद्दों पर घेरी है वो कह रही है अनेकों ऐसे उदाहरण रहे हैं। भाई आप ओडिशा का ही एग्जाम्पल देख लीजिए ना, पटनायक परिवार और नवीन पटनायक को देख लीजिए, वो कितने सालों तक रहे, तो वहां पर यह एंटी इनकम्बेंसी वाला नियम कैसे लगेगा? और जो जितना जवाब बीजेपी दे रही है उस पर आपकी प्रतिक्रिया अखिलेश
6: जी, थोड़ा समय दीजिएगा। अंजना जी, बात उठ रही है कल से और आज तक और अभी तक चुनाव आयोग की तानाशाही पे, चुनाव आयोग की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे प्रश्न पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से, कटघरे में है चुनाव आयोग। तो ये बीजेपी का प्रवक्ता राहुल जी की मीटिंग समाप्त होते क्यों आकर के बीजेपी का प्रवक्ता सफाई दे रहा है? ये बीजेपी का प्रवक्ता सफाई क्यों दे रहा है?
4: कौन है ये दोस्त? भाई अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भाई इनको बताइए
6: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
4: जवाब दे रहे हैं,
6: प्लीज इसे चुप कराइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अंजना जी सवाल तो चुनाव आयोग से किया राहुल गांधी ने ना, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में चुनाव आयोग फुटपाथ घेरे में खड़ा किया ना, तो चुनाव आयोग जवाब न दे, बीजेपी का प्रवक्ता रहा है व्हाट्सएप बयान लेकर के जवाब देने के लिए,
4: तो इसी से चुनाव आयोग डिसेंट नोट पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है।
6: अरे चुप रहो, बेशर्मी मत करो मेरे भाई,
1: पूरा कर ले मैं जवाब ले लूंगी,
6: पूरा बेशर्मी मत करो,
1: रुकेगा तो आपका जवाब नहीं हो पाएगा, जल्दी सुनिए, जल्दी टाइम कम है।
6: देखिए ये जो गिरोह है, गिरोह इसी को बोलते हैं गिरोह, सवाल किससे हुआ, जवाब कौन दे रहा है? गिरोह के मुखिया ने कहा कि अपने एक प्रवक्ता को कि जाओ, हमारे एक हमारा एक इंस्टीट्यूशन हेड पकड़ा गया है, फंस गया है, तुम उसके बचाव में बोलो। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब देना था बताना था, बताना चाहिए था। चुनाव आयोग ने एक भी उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन अभी तक नहीं किया कि नहीं 14 चिट्ठी नहीं लिखी थी, चिट्ठी में ये नहीं लिखी थी, चिट्ठी में वो नहीं लिखी थी, ऐसा नहीं हुआ था, क्यों नहीं बोला? ये सारे संस्थाओं पे बैठ करके जो लूटने का षड्यंत्र, लोकतंत्र, चुप रहो, चुप रहो, पहले
4: दोनों कांग्रेस पार्टी
1: के, आप जल्दी से जवाब दीजिए प्रदीप जी, सिर्फ 10 सेकंड बचा, 10 सेकंड दूंगी बस।
4: देखिए अखिलेश जी ने आज ये कह दिया है कि रायबरेली में जब 16 बार कांग्रेस पार्टी जीती तो कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करी है, क्योंकि ये कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर चुनाव आयोगों के ऊपर ही सवाल है तो दो डिसेंट नोट पे क्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? दो डिसेंट नोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी
1: है? अखिलेश
6: देखिए अंजना जी, मैंने बड़े साफ गोई से बता दिया कि ये जो मिले हुए हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बीजेपी की पार्टी है चुनाव आयोग।
4: आप किस से मिले हो?
1: मनोज काका जी, मनोज काका जी जल्दी से, एकदम टाइम नहीं है।
7: देखिए अंजना जी, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस जिस देश के जिस संस्थान पर पूरे लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की, उसके निष्पक्ष और पारदर्शी रखने की जिम्मेदारी है उस संस्थान में ही, जब लोकतंत्र नहीं बचा है, जब
1: अमीन
7: दो, दो, दो के, अमीन दो के,
1: हाँ, जल्दी से सिर्फ दो लाइन सर, टाइम खत्म हो चुका है, सॉरी। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, अमीन साहब
8: मतलब जवाब दूं मैं
1: जी।
8: चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल अब नहीं, बहुत पहले होते रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को देश के आगे आना चाहिए। जैसे हमारा प्रेस नोट आया इलेक्शन कमीशन का, हम एक हैं, हम नेक हैं, हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं।
1: तो क्यों नहीं, क्यों किसी नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है?
8: ये तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि तीनों ही आए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिससे
1: देश के अंदर। इसी बात पर पूरी बहस को छोड़ते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात है जो आपने कही है कि कम से कम सामने आना चाहिए और सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि इससे अगर शक की गुंजाइश बनती है तो बहुत बड़ी परेशानी ये लोकतंत्र में होती है। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ट्रंप की जो मेहमान नवाजी है, क्या उसके पीछे सौदेबाजी है? इसके बाद आपको बताएंगे कि एआई कंपनीज के मालिक ही क्यों कह रहे हैं नहीं रोका एआई तो तय है तबाही। और इसके बाद बताएंगे कि आखिर बर्निंग बसों में कब तक जिंदा जलेंगे लोग। और आखिर में जमुई के बाद समस्तीपुर कांड दिखाएंगे, जहां एक बच्ची को फिर से इंसान के रूप में भेड़ियों ने घेर लिया। देखते रहिए आज।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ, कपीवा डायबिटीज जूस।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: एक दो, श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मैडी, I need to open a savings account.
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक?
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
5: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
4: असली शहद, असली स्वाद।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक दो झुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: क्या चीज
6: है
8: वो टीएमटी बार वाली, मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मैं हूँ ना, मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
9: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: ओ नादान परिंदे, बैठ
7: बैठ जा, बैठ जा।
8: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एक दम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
7: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
8: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
9: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
10: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
7: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
11: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2030 प्लान रोकने के लिए।
12: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। इतना जरूर कर सकते।
7: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इसी के बहाने राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो कराएंगे मोदी शाह की भूमिका की जांच, ज्ञानेश कुमार को बताया देशद्रोही। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, कहा उनके पास जानकारी नहीं, पीएम मोदी पर देश को भरोसा, ईसी में मतभेद सबूत नहीं। ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दिपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं तो होगा आंदोलन। जमुई के बाद समस्तीपुर की घटना से बिहार शमशान, लड़की से छेड़छाड़ केस में मंत्री अशोक चौधरी का बेशर्म बयान। उत्तर प्रदेश में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, सीएम योगी ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। शो की शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग को लेकर जारी हंगामे के साथ। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने पिछले कई चुनाव पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल के आरोपों पर पलटवार किया।
1: 2024 का इलेक्शन कंप्लीटली फेक था, उससे पहले के इलेक्शंस फेक थे, विधानसभा के चुनाव फेक है, चोरी के चुनाव है और देश इस जगह कभी नहीं पहुंचा है। क्योंकि जिस चेन की मैं बात कर रहा था, वोट चोरी, कानून चोरी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, ये चेन कभी पहले नहीं टूटी है हमारी हिस्ट्री में। आजादी के बाद ये कभी नहीं टूटी है और अगर ये चेन टूट गई है तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे कानून जो पास किए गए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, बाकी कानून हो, सारे के सारे इलीगल हैं और जो लोग हमारी संस्थाओं को चला रहे हैं वो भी इलीगल है।
2: जिस जमाने में कांग्रेस की भी लंबे समय तक सरकार रही है, जिस जमाने में वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, जिस जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिस जमाने में बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, जिस जमाने में गोलियां चलती थीं, उत्तर प्रदेश बिहार में तो कोई चुनाव ऐसा नहीं जाता था जब कुछ लोग मारे ना जाते हों और घायल ना होते हों, तब तक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए भी काम नहीं करती थी। जब से पारदर्शी इलेक्शन हो गए हैं, लोकल पुलिस की बजाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जब से सीसीटीवी आ गए हैं, सीसीटीवी की लाइव फुटेज आती है, जब से स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र जुडिशरी हो गई है, तब से उनको लाले पड़ गए हैं सत्ता में आने के। हां, यह सच है कि राहुल जी और सोनिया जी के आने के बाद कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है।
0: राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को देशद्रोही होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने भी वोट चोरी की बात कबूली है, ऐसे में ज्ञानेश कुमार को अब सरकारी गवाह बन जाना चाहिए।
1: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम, बिकॉज लेट मी टेल यू, देर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। आप यह मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हिंदुस्तान के वोट को खत्म, बीजेपी खत्म कर दे, नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दे, ज्ञानेश कुमार जी खत्म कर दें, नेशनल फ्रेमवर्क को खत्म कर दें, लीगल स्ट्रक्चर को खत्म कर दें, हम यहां बैठे चुप बैठे रहेंगे ना। हमारी पार्टी आजादी के लिए लड़ी थी, हम नहीं चुप बैठेंगे। तो सब लोगों को सोच समझ के काम लेना है।
2: मैं सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिसमें किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का कोई कोर्ट नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई रिस्पांस नहीं मेंशनड है, तो उसका आधार क्या है? और अगर इस आधार पे काल्पनिक बातें करें तो अप्रैल 2012 में उसी अखबार ने यह भी लिखा था कि कांग्रेस की सरकार इतनी डर गई थी कि सेना ही आग कैप्चर किए ले रही है।
0: अब बात बिहार के समस्तीपुर में हुई शर्मनाक कांड की। समस्तीपुर में एक नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ बांध घूमने गई थी। रास्ते में गांव के कुछ मनबड़ लोगों ने उसे रोक दिया और उनके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। अभी जमुई का मामला शांत भी नहीं हुआ था, एक और कांड हो गया है।
3: कुछ नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं। ये तस्वीरें समस्तीपुर की हैं। बिल्कुल वैसा ही वहशीपन यहाँ भी दिख रहा है जैसा जमुई में था। वैसे ही जानवर यहाँ भी एक लड़की पर टूट पड़े हैं। लड़की चिल्लाती रही, संघर्ष करती रही, मदद मांगती रही, लेकिन वहाँ कोई इंसान हो तब तो मदद करे ना। वहाँ तो सब जानवर इकट्ठा हुए थे, जो या तो तमाशबीन बने थे या फिर लड़की के चरित्र की पैमाइश कर रहे थे। यह घटना समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम इलाके की है। यहाँ 23 सितंबर को लड़का और लड़की बांध पर घूमने गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की। जब लड़का भाग गया तो अकेली बची लड़की को ये टॉर्चर करने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। समस्तीपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 19 साल का राहुल कुमार पासवान, 46 साल का अवधेश पासवान, 32 साल का विकास शर्मा और 38 साल का आरोपी रामबाबू सहनी शामिल हैं।
4: इस घटना में शामिल जो व्यक्ति हैं, वो घटनास्थल के आसपास जगत सिंहपुर और बिजौलिया, इन गांवों के अभियुक्त थे। रात्रि में ही उन लोगों की पहचान स्थापित की गई और जानकारी मिलने के 6 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
3: समस्तीपुर की घटना ने बिहार को

0: उठ गया है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बस नाम का रह गया है।
1: विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं वो सुनिए, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे।
2: भाई घटनाएं कहां नहीं होती है, गड्डा अमेरिका में भी हो रही है, गड्डा जापान में भी होती है। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में घटना नहीं हो रही है। अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी घटना होती है।
1: इसे कहते हैं बेशर्मी की इंतहा। बेटियों की सुरक्षा करने के बजाय मंत्री जी मुहजोरी कर रहे हैं। साफ लगता है कि सारी शर्म हया घोट कर पी गए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की चिंदियां पहले ही उड़ी पड़ी हैं। ऊपर से ऐसा बयान बताता है कि सरकार कितनी संजीदा है। शर्मनाक है मगर सच है। जहांगीर आलम के साथ शशि भूषण, समस्तीपुर आज तक।
3: और जमुई और समस्तीपुर की घटना के बाद अब बांका से भी शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांका में टूरिस्ट प्लेस मंदार पावर पर एक लड़के और लड़की के साथ भी मारपीट और छेड़छाड़ हुई है। तस्वीर 3 सितंबर का बताया जा रहा है। यहां भी लड़की से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस को ये वीडियो 22 सितंबर को सोशल मीडिया के जरिए मिला। मामले में 6 अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। IIT बॉम्बे में छात्र के सुइसाइड का मामला थामने का नाम नहीं ले रहा। परिवार प्रोफेसर दूल्हा के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां भी अब IIT के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
1: IIT बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
4: IIT पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने वाले के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
5: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन कर रहे। आप देखिए, आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं। हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
1: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
6: ये बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि IIT बॉम्बे में, मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये 3 बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
1: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी IIT बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का CCTV फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल ChatGPT पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
7: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
8: किसने बोला है?
7: मेरे से बोला उसने। दुल्ला प्रोफेसर, प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
1: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच IIT बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
3: उधर एम्स जोधपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टर की मौत को लेकर हंगामा जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
8: जोधपुर एम्स में एक डॉक्टर के सुसाइड ने यहाँ के सिस्टम को लेकर

0: जारी गुस्से की आग में घी का काम किया है। रेजिडेंट डॉक्टर राज नीलेश यादव की मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टरों ने मृतक के परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने, संस्थान प्रशासन की जवाबदेही तय करने और डायरेक्टर के इस्तीफे समेत कई मांगे रखी है।
1: डायरेक्टर सर की रेजिग्नेशन की डिमांड अभी भी चल रही है, जिसपे अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। सर लोगों ने भी हमें कहा, यही समझाया है कि एक हेडलेस बॉडी के बिना इसे चलाना, इंस्टीट्यूट को चलाना मुश्किल होता है।
2: और हमने बोला कि जो सर रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें लेनी चाहिए, उनका रेजिग्नेशन हमें चाहिए, हम उसी के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो बात को सुन ही नहीं रहे, वो जस्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं हमें, हमारी डिमांड्स को। कल रात हो गई, आज भी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और लोग इसीलिए बैठे हैं और इसीलिए बैठे रहेंगे, जब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा बात नहीं होगी।
0: दरअसल 2 दिनों पहले पीजी फर्स्ट ईयर के छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर नीलेश यादव का ओटी के वॉशरूम में शव मिला था। बताया जा रहा है कि नीलेश ने खुद ही इंजेक्शन का हैवी डोज लेकर सुसाइड किया। डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें कई घंटों तक काम कराया जाता है, जिसकी वजह से उन पर काफी दबाव रहता है, जिसे लेकर मैनेजमेंट और डॉक्टर्स के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
3: आप दिन में 10 घंटे से ऊपर भी ड्यूटी कर रहे हो क्या? अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आपसे नीचे वाले सुबह एक्सेप्ट कर रहे हो करेंगे। सर बाहर में जाए कंडोलेंसेस, गया तो वो
4: शांति के लिए प्रार्थना
3: नहीं करनी प्रार्थना, वो तो आके देख लिया मैं डिपार्टमेंट कैसा है।
0: एम्स ने डॉक्टर राज नरेश यादव के निधन की जांच के लिए आंतरिक समिति बनाई है। रेजिडेंट डॉक्टरों की अन्य शिकायतों के लिए भी समिति गठित की है और डॉक्टर से हड़ताल समाप्त कर ड्यूटी पर लौटने की अपील की, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए।
5: आगे जो मेन मुद्दा है कि क्यों ये हुआ है, वो है डॉक्टर का ड्यूटी टाइम, ड्यूटी आवर्स, जो कि 36-36 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर्स और उसके बारे में कोई परवाह नहीं हो रही है, उसका हमारा सेकंड प्लान, मतलब सेकंड हमारी जो मांग है वो है।
0: उधर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
6: आज का बोला था हमें, वो दीदी है वो मेरे साथ, उनको 9th मंथ है अभी, आज के लिए बुलाया था पर अभी डॉक्टर नहीं है।
7: मैं तो 3 महीना पहले आया, मेरे को डेट दी आज 24 तारीख की, आज सुबह रात को बीकानेर सुजानगढ़ से चला मैं ट्रेन में, 2:30 बजे आके यहाँ पे बैठा और अभी कोई जवाब देने वाला आदमी नहीं है यहाँ पे।
8: मैं बच्चे के है नहीं, वो दिमाग है निरोज, आज मैं कहाँ लगावा हूँ, फूटा जाना 1000 किलोमीटर आना, 1000 किलोमीटर जाना, क्या बोले कोई सोमवार तक पता नहीं है।
0: एम्स जैसे संस्थानों में डॉक्टर की इस तरह से मौत से हर कोई हैरान है। आज तक ब्यूरो।
9: यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसी घटना घटी जिसमें 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। जी हां, अब दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है ये खबर। यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 यात्री सवार थे।
0: इस भयानक आग की लपटों में 9 जिंदगियां खाक हो गई। जो लोग दिल्ली से महोबा के सफर पर निकले थे, उनमें से 9 यात्री बेमौत मारे गए। हादसे के वक्त ये तस्वीरें डरावनी हैं। बस में आग लगी तो अफरा तफरी मच चुकी थी। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है। रात करीब 11:30 बजे बस यमुना एक्सप्रेसवे पर 33वें किलोमीटर के पास पहुंची, जहां यह हादसा हुआ। उससे पहले ही यात्रियों ने बस ड्राइवर के केबिन से बदबू आने की शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद भी बस ड्राइवर और वहां मौजूद कंडक्टर बेफिक्र रहे और तो और वो बीड़ी सिगरेट पीते रहे। जब ड्राइविंग सीट की साइड से अचानक आग की लपटें निकली तो यात्री चीखने लगे।
10: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे।
11: बस चल रही थी,
10: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के।
11: उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
10: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुमने मुट्ठी पड़ी रहे अपने आप, पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुन गई।
0: बस में करीब 35 यात्री सवार थे। उनमें से ज्यादातर यात्री जान बचाकर बस से बाहर निकले। उनमें से कुछ यात्रियों ने कूदकर जान बचाई, लेकिन 9 यात्री बदकिस्मत रहे। वो अंदर ही फंसे रह गए और आग की लपटों में झुलस कर उनकी जान चली गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि बस में रखा आग बुझाने वाला सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा था।
12: बिल्कुल, बस के पीछे एक ये फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर है। आरोप यह है कि जब बस में आग लगी तो ये सिलेंडर काम ही नहीं किया और लोगों ने इस सिलेंडर से शीशे तोड़ने की कोशिश की और यहां से निकलने की कोशिश की। इसके अलावा आप देखें तो ये पीछे की सीटें हैं और इन्हीं सीटों पे वो लोग हैं जो अपनी जान नहीं बचा पाए।
0: पुलिस ने आरोपी ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में और खुलासे होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बस पर 1,75,000 के 9 चालान थे। इसके अलावा बस MP से संचालित होती है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बिहार के मधुबनी जिले का है। बस का फिटनेस प्रमाण पत्र राजस्थान और प्रदूषण प्रमाण पत्र हरियाणा से जारी हुआ है। इसके बावजूद भी बस चल रही थी। साफ है कि लापरवाही ने 9 लोगों को मार डाला। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
9: अब बात बाजार की, क्या रहा शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचा सोने चांदी का भाव, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
13: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1248 अंक टूटकर 73,581 और निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23,063 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में उछाल से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा। ब्रेंट क्रूड 2.36% चढ़कर $105.40 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ा। कमजोर ग्लोबल संकेतों ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई। शेयर बाजार में तेज गिरावट के बीच रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे कमजोर होकर 95.96 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से रुपए पर दबाव रहा। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में लगातार चौथे दिन गिरावट रही और सोना 853 रुपए गिरकर 1,51,163 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,716 रुपए गिरकर 2,30,050 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख की उम्मीद से गोल्ड पर दबाव बना रहा, जिसका असर घरेलू सराफा बाजार पर भी दिखा।
9: और अब बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे की, जहां अब से कुछ ही देर बाद शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। इससे पहले कल देर रात शी जिनपिंग अमेरिकी दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।
13: शी जिनपिंग का विमान जैसे ही वॉशिंगटन DC के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, अमेरिकी वायुसेना के युद्धक विमानों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें हवा में एस्कॉर्ट किया। जिनपिंग के हवाई सुरक्षा घेरे में अमेरिकी स्टेल्थ विमान शामिल थे और जब जिनपिंग उतरे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। कल जब जिनपिंग पहुंचे तो उनके ऊपर से 2 B-1B लांसर बम वर्षकों को उड़ाया। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान ट्रंप खुद मजाक बनकर रह गए। अपने ही बम वर्षकों की गर्जना सुनकर ट्रंप ने आंखें बंद कर ली और परेशान हो गए, जबकि जिनपिंग स्थिर खड़े रहे। यहां तक कि चीन की फर्स्ट लेडी पेंग और मेलानिया ट्रंप भी बड़े आराम से खड़ी रही। 11 साल बाद जिनपिंग अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमानों का स्वागत व्हाइट हाउस में करते हैं, लेकिन ट्रंप और मेलानिया मैरीलैंड के उस मिलिट्री बेस पर पहुंचे जो वॉशिंगटन के बाहर स्थित है, और फिर दोनों ने चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत खुद किया। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध को जनवरी 2027 तक रोक दिया है, लेकिन ट्रंप जिनपिंग की बातचीत में ये एक बड़ा मुद्दा है। वहीं AI और ईरान के अलावा रूस यूक्रेन जंग जैसे मुद्दे भी चर्चा में शामिल रहेंगे। आज व्हाइट हाउस ने तकनीक से जुड़ी बड़ी हस्तियों को जिनपिंग के साथ डिनर पर बुलाया है। उनमें OpenAI, एप्पल, XAI, माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA, मेटा और दूसरी कंपनियां शामिल हैं।
9: 7 तक में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
17: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी ठुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
18: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
19: मेरे पास एक आइडिया।
17: क्या?
19: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। TMT बार से जो बना है,
20: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला देता है। पर स्टेज नहीं हिलता
15: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
18: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
21: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
22: एकदम
21: सॉलिड। तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
23: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
18: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ओले, ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
7: अभी तो चार्ज हुआ यार।
8: ओले, बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
13: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैडी
2: सजेस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
6: ओफ ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ कपीवा डायफ्री जूस
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
4: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
5: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
6: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
7: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
8: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
3: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
9: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
3: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
10: जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हॉल में प्रतिनिधियों की जगह बैठे हैं रटे रटाए तोते जो सिर्फ एक ही धुन गा रहे हैं, ब्लेम इजराइल, ब्लेम इजराइल। आखिर इजराइल को यूएन जैसी वैश्विक संस्था के खिलाफ ऐसा तीखा और व्यंगात्मक एनिमेशन जारी करने की नौबत क्यों आई? वजह है इसराइल के खिलाफ यूएन में उठ रही लगातार वो आवाजें जिन्हें इसराइल झूठ की इंडस्ट्री बता रहा है। इसराइल के प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने सीधा आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र का मंच अब सिर्फ एक इको चैम्बर बन चुका है जहां सच को दबाकर सिर्फ इसराइल के खिलाफ सुनियोजित तरीके से नफरत और झूठ फैलाया जा रहा है। इस तीखे डिजिटल हमले का असर यूएन हॉल के अंदर साफ देखने को मिला जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मंच से गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाइयों की धज्जियां उड़ानी शुरू की तो इजरायली प्रतिनिधि मंडल का सब्र टूट गया। इजरायल के कूटनीतिज्ञ विरोध में अपनी कुर्सियां छोड़कर पूरे तेवर के साथ हॉल से वॉकआउट कर बाहर निकल गए। ये घेराबंदी सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं है। चौतरफा दबाव में घिरे इसराइल पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। मैक्रों ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में हमास मौजूद नहीं है लेकिन इसराइल हर दिन वहां ज्यादती करता है। इसराइल ने मैक्रों के बयान को हकीकत से कोसों दूर बताकर खारिज कर दिया। इसराइल का कहना है कि हमास के आतंकी वेस्ट बैंक में भी सक्रिय हैं और लगभग हर दिन इसराइली नागरिकों पर हमले करते हैं। दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और कतर के अमीर शेख तमीम के साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री बार्ट कार्नी ने भी इसराइल पर निशाना साधा। इससे पहले जिस न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है वहां के मेयर जोहरान ममदानी ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी और फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार का सूत्रधार कहा है। सुनिए नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया।
11: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
10: पूरी दुनिया के इस भारी कूटनीतिक दबाव और तानों के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखने वाले हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो यूएन के मंच पर किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी सेना के एक एक कदम का डटकर बचाव करेंगे और दुनिया के सामने इसराइल का सच रखेंगे।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इसी के बहाने राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो कराएंगे मोदी शाह की भूमिका की जांच, ज्ञानेश कुमार को बताया देशद्रोही। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, कहा उनके पास जानकारी नहीं, पीएम मोदी पर देश को है भरोसा, ईसी में मतभेद सबूत नहीं। ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दिपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। जमुई के बाद समस्तीपुर की घटना से बिहार शर्मसार, लड़की से छेड़छाड़ केस में मंत्री अशोक चौधरी का बेशर्म बयान। उत्तर प्रदेश में चल पड़ा अखिलेश यादव का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, सीएम योगी ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं मारिया शकील। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। आज से अखिलेश यादव ने भी औपचारिक तौर पर अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अखिलेश का चुनावी रथ अपने पहले सफर में पहुंचा है रायबरेली। रायबरेली यानी कि कांग्रेस पार्टी का गढ़, यानी कि गांधी परिवार का गढ़। अब सवाल यह है कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से रायबरेली को ही क्यों चुना? क्या इसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी कोई संदेश है?

0: अखिलेश यादव ने 2027 में यूपी जीतने के लिए आज बिगुल फूंक दिया। अखिलेश का रथ निकल चुका है, मिशन है यूपी फतेह और जगह चुनी है रायबरेली, वही रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है। अखिलेश यादव ने हर चुनाव की तरह इस बार भी एक लग्जरी बस को अपना रथ बनाया है। इस बार नारा पीडीए का है। वैसे तो अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हैं और इस पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन अब की बार इस बस पर ही लिख दिया है कि जो पीड़ित है वो पीडीए है। और एक बदलाव और हुआ है कि अखिलेश यादव ने बीएसपी के नीले रंग को भी अपने लाल रंग के साथ जोड़ दिया है।
1: काज होगा उस पीडीए रथ के जरिए। इस पीडीए रथ तैयार है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ जो पीडीए में पी है वो पीड़ित वो पीडीए, यानी जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। एक नया एक नारा और उसमें ब्लू रंग को भी शामिल किया गया। नीले रंग जो परंपरागत समाजवादी पार्टी का हरा और लाल रंग होता है, उसमें नीले रंग को भी शामिल किया गया। तो एक तरीके से पीडीए से समाजवादी पार्टी ने कई गढ़ साधने की कोशिश की है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के जो बीएसपी का जो नीला कलर है उसके जरिए भी पीडीए में जो पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा, एक अपने वोट दायरे को बढ़ाने की भी कोशिश है। तो एक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आगाज किया है पीडीए रथ के द्वारा, और 2027 के चुनावी समर की शुरुआत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली से यात्रा करके कर।
0: उत्तर प्रदेश में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की दो प्रमुख यूएसपी है, पहला है कानून व्यवस्था और दूसरा है सनातन। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय इतना फेमस है कि उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ के राज में माफिया राज खत्म हुआ और गलत निर्माण पर बुलडोजर चला। यही बुलडोजर यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। हालांकि ये भी आरोप लगते हैं कि योगी का बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई में लोगों के घर भी तोड़ता है।
2: बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा होगा, जान गया होगा कि इस पीडीए की हवा में, पीडीए के आंदोलन से ये बुलडोजर चलाने वाले बचने वाले नहीं है। इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है। ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा।
0: अब अखिलेश यादव इसी बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ को जवाब दे रहे हैं। जैसे ही वो आज रायबरेली पहुंचे, तुरंत उनके कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर स्वागत के लिए खड़े थे और बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे थे, जैसे कि ये संदेश दे रहे हो कि समाजवादी पार्टी का बुलडोजर घर नहीं तोड़ता बल्कि फूल बरसाता है।
1: ये बुलडोजर से अखिलेश यादव के रथ पर, बुलडोजर से अखिलेश यादव के रथ पर फूलों की बारिश हो जा रही है। माला लेकर बुलडोजर खड़ा हुआ है, जो बुलडोजर बीजेपी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन का प्रतीक माना जाता है, उसी बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। ये बुलडोजर ये खड़ा किया गया है रायबरेली के बसरामा में, और आप देखिए कि बुलडोजर पर तमाम कार्यकर्ता हैं। अभी तक ये तस्वीरें जो आती थी वो बीजेपी के नेताओं के स्वागत की आती थी, लेकिन रायबरेली में बुलडोजर से अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है और ये बुलडोजर पर कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। और यहाँ से और अब देखिए अखिलेश यादव रथ पर हैं। एक रायबरेली पहुंचकर जिस तरीके से कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और फिर बुलडोजर से स्वागत।
0: अखिलेश बढ़ते जा रहे थे और कार्यकर्ताओं की भीड़ उनका स्वागत करती जा रही थी। जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी और जगह जगह कार्यकर्ता बुलडोजर और जेसीबी मशीन लेकर खड़े थे। अखिलेश की बस के दोनों तरफ ऊंची ऊंची जेसीबी मशीनें खड़ी कर दी और उन पर कार्यकर्ता सवार होकर अखिलेश को फूलमाला पहना रहे थे।
1: बीजेपी के बुलडोजर का जवाब समाजवादी पार्टी बुलडोजर से दे रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली पहुंचे तो बुलडोजर लगाकर जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करने में लगे हैं। देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत के लिए बीजेपी के का जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जेसीबी लेकर पहुंचे हुए हैं। जेसीबी है, बुलडोजर है, जगह जगह पर बसरामा में भी बुलडोजर के साथ और ये जेसीबी के पूरी एक दो तीन तीन जेसीबी के साथ ये माला पहनाई जा रही है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को। और ये एक तरीके से बीजेपी का जो बुलडोजर और जेसीबी जिसके सहारे वो कानून व्यवस्था बेहतर करने का दावा करती है, उसी का जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया है कि वो जेसीबी लगा करके अपने अध्यक्ष का स्वागत कर रही है और अपने उत्साहित कार्यकर्ताओं को हिदायत भी दे रहे हैं अखिलेश यादव के किसी भी तरीके से कोई खतरा ना ले, लेकिन उत्साही कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। जेसीबी पर चढ़ करके जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं और ये 3 जेसीबी लगाकर अब रायबरेली पहुंच चुका है अखिलेश यादव का काफिला।
0: चुनावी कैंपेन की शुरुआत में ही अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव वो पीडीए के नारे पर ही लड़ रहे हैं। रायबरेली की रैली में उन्होंने पीडीए का एक नया मतलब भी बता दिया। पीडीए मतलब पीड़ित, दुखी और अपमान।
2: और मुझे तो लग रहा है यहाँ हम लोग कह रहे थे कि पीडीए का तूफान, पीडीए की हवा चल रही है, लेकिन रायबरेली में देखने को मिल रहा है कि पीडीए बनाम भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, लेकिन कहीं लोधी बनाम योगी तो नहीं हो गया चुनाव। सामाजिक आंदोलन हमेशा इस धरती पर सफल हुए, भारत की धरती पर सफल हुए, ये भी वही आंदोलन की कड़ी है पीडीए का आंदोलन। और ये पीडीए का जो आंदोलन है वो तमाम हमारे पीड़ित लोग, दुखी लोग और जो अपमानित हो रहे हैं वो सब एकजुट होते चले जा रहे हैं। ये जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं,
0: बीजेपी भी जानती है कि अगर उन्हें अखिलेश यादव को जवाब देना है तो उनके पीडीए की हवा निकालनी होगी। इसीलिए बीजेपी में हर कोई इसी नैरेटिव पर है कि पीडीए पर अखिलेश यादव कंफ्यूज है।
3: पीडीए के बारे में खुद कंफ्यूज है कि पीडीए क्या है। कभी पीडीए वो कहते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर पिछड़े में पंडित को जोड़ दिए, पिछड़े में फिर ए से पूरे आधी आबादी को जोड़ दिए, तो खुद उस पीडीए में कंफ्यूज है पीडीए क्या। कुछ दिन के बाद कह देंगे कि पताल धरती आकाश है, तो ये क्या है ये, पहले खुद स्पष्ट तो हों। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही कहे कि पी से पंडित, ए से आदि आबादी, अब पहले क्या कहते थे, तो अब आगे क्या कहेंगे। आगे कह देंगे कि धरती अकाल पता सब कह देंगे, तो कह दे पहले तो पीडीए का सही क्या है वही बताएंगे। पीडीए कुछ नहीं है, उनका एक जुमला है और समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है।
4: अब रथ यात्रा कोई काम नहीं आएगी।
5: वैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी हुई है। अब अंदर की बात क्या है पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता और सांसद तक समाजवादी पार्टी से जल्द सीट फाइनल करने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कोई लोड नहीं ले रहे। सवाल यह है कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस होगा।

0: अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा रायबरेली से ही शुरू क्यों की, जो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी सांसद रहे और अभी मौजूदा दौर में राहुल गांधी जिस रायबरेली के सांसद हैं, ऐसे कांग्रेस के गढ़ को अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए अखिलेश यादव ने क्यों चुना? क्या 2027 के विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग से पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को कोई मैसेज देना चाहते हैं या किसी तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है और जिस तरह की बयानबाजी दोनों खेमों से हो रही है उससे तो इस गठबंधन पर सवाल भी उठने लगे हैं। तीन दिन पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो लोकसभा सांसद सीट शेयरिंग पर ही मीडिया के कैमरों के सामने भिड़ चुके हैं। ऐसी बयानबाजी कि गठबंधन को दोस्ती तो किसी लिहाज से न कहा जाए। ये बयानबाजी बता रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 21 सितंबर को इमरान मसूद से पूछा गया कि यूपी में सपा के साथ गठबंधन पर क्या फाइनल हुआ, तो उन्होंने साफ साफ समाजवादी पार्टी को जवाब दे दिया कि अगर कांग्रेस के बिना जाने की सोच रहे हैं तो फिर गलतफहमी न पालें।
1: अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व इनसे पार पा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं।
0: इमरान मसूद ने कांग्रेस को ऐसे बताया कि जैसे वो यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी हो, और राहुल गांधी को ऐसा दिखाया जैसे वो यूपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि जमीनी लड़ाई में कांग्रेस यूपी में कहीं नहीं ठहरती। इसीलिए तुरंत अगले ही दिन समाजवादी पार्टी की ही मुस्लिम सांसद से इमरान मसूद को जवाब मिला।
2: बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
0: इकरा हसन ने तो इमरान मसूद को एकदम से बेवकूफी कह दिया। असल में कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो यूपी में उन सीटों को जीत सकती है जहां मुस्लिम वोट की बहुलता है, लेकिन लगता है कि इमरान मसूद को ऊपर से कुछ फटकार पड़ी है, इसीलिए अब वो थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने उनके नेता के गढ़ से यात्रा की शुरुआत की है, फिर भी वो बड़े कूल दिख रहे हैं।
3: नवीन सरसार वो सब यात्रा शुरू कर चुके हैं, अखिलेश यादव अब रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां से शुरू कर रहे हैं यात्रा। आप लोगों की तरफ से कब बड़ी यात्रा शुरू हुई होगी?
1: देखिए अभी सब लोग हम तैयारी में लगे हुए हैं, काम चल रहा है, और आप निश्चिंत रहिए बहुत अच्छे नतीजे आएंगे।
3: सीट शेयरिंग पर अभी तक कुछ और अपडेट
1: हो जाएगा? सीट शेयरिंग का भी कोई, सीट शेयरिंग इतना बड़ा विषय नहीं है। देखिए सब लोग अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं, हम भी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, तो सीट शेयरिंग कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि आसानी के साथ सब हल हो जाएगा, हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं।
0: असल में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि उसे गठबंधन में वो सीटें मिले जिनकी विनेबिलिटी हो, यानी जिन पर जीत सुनिश्चित हो, और उसका ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है 2024 के लोकसभा चुनावों से। 2024 लोकसभा में अखिलेश ने कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी, जिनमें से 6 पर कांग्रेस जीती, जबकि अखिलेश खुद 62 सीटों पर लड़े जिनमें से वो 37 जीते। यूपी की इन 6 सीटों ने कांग्रेस को एक तरह से रिवाइव किया, कम से कम कांग्रेसियों को तो यही लगता है। और फिर ये बयानबाजी भी हुई कि उन्हीं की वजह से अखिलेश यादव 37 सीटें जीतने में सफल रहे। अखिलेश यादव भी ये सारी बयानबाजी सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पीडीए यात्रा की शुरुआत के लिए रायबरेली को चुना, जो कथित तौर पर कांग्रेस का गढ़ है। कथित तौर पर इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनावों में तो कांग्रेस रायबरेली में कहीं भी नजर नहीं आती। पिछले 3 चुनावों के नतीजे देखिए। 2012 के विधानसभा चुनावों में रायबरेली जिले की 6 सीटों में से एसपी ने 5 जीती, 1 सीट पीस पार्टी को मिली। 2017 में बीजेपी को 3, एसपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। 2022 में बीजेपी को 2 और एसपी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस खाली रही। रायबरेली सीट के ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि विधानसभा में ये जिला समाजवादी पार्टी का ही गढ़ है, कांग्रेस का नहीं।
4: लेकिन रायबरेली से इस चुनावी प्रचार की शुरुआत की वजह क्या?
5: जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ जुल्म किया जाएगा, सभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही कार्यकर्ता उन सभी के साथ खड़े हैं, बड़ी मजबूती के साथ।
4: क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जाने के पीछे वजह भी यही है कि जो विधायक राहुल लोधी के साथ हुआ उसको लेकर?
5: जहाँ जहाँ भी पीडीए का अपमान होगा वहाँ वहाँ समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।
4: कांग्रेस के गढ़ से शुरुआत हो रही है, अभी कांग्रेस के गठबंधन की सीटों को लेकर के अभी आप लोगों की बात अटकी पड़ी है, तो क्या कहते हैं?
5: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का गढ़ है।
6: विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो ठुमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
10: आप पे वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
11: मेरे पास एक आइडिया है।
9: क्या?
11: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना है
12: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
13: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
14: ओ नादान परिंदे बैठ। मेरा ना सिंपल है, लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
15: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
16: एकदम सॉरी
15: तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
17: एक्चुअली सर, आपकी बेस्ट थी।
14: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ
3: ला, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: तो चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
16: JK वॉल मैक्स।
17: बेस्ट पेंट
18: JK मैक्स।
19: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK मैक्स पेंट्स।
20: JK मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैडी
2: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बात सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
1: आप पे वो पीएमटी बाहर वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिलाता है पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
1: ओ नादान परिंदे बैठो। मेरा ना सिंबल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
6: तो कौन सी बनानी है?
7: एकदम सॉलिड।
8: थ्री स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी
9: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
1: आई लाइक दिस ओनली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड for what has been done. Without any doubt, both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy, and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही. आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ.
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स.
0: प्रेजेंटेड बाय
4: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सोकुडो.

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने दिया पॉइंट वाइज जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है पीएम। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार। दीपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। जमुई के बाद समस्तीपुर की घटना से बिहार शर्मसार, लड़की से छेड़छाड़ केस में मंत्री अशोक चौधरी का बेशर्म बयान, ऐसी घटनाएं तो जापान अमेरिका में भी होती हैं। यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से विपक्ष पर निशाना।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। और सबसे पहले बात, चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सबसे बड़े हमले की। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी। राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्र में एक सवाल रहा और वो था कि चाहे केंद्र हो या फिर राज्य, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती। राहुल ने कहा कि वो 50 साल से राजनीति में, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सलाह दी कि वो सरकारी गवाह बन जाएं। इसके अलावा राहुल गांधी ने चेतावनी भी दी कि ज्ञानेश कुमार को सजा जरूर मिलेगी। राहुल ने भी कहा कि वक्त आने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भी वो जांच करवाएंगे। आज सीधे उनकी तरफ से कहा गया कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी की है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी नियुक्ति का विरोध किया था उन्होंने, लेकिन सरकार ने कानून से ऊपर रखा। उनकी तरफ से दावा किया गया कि ज्ञानेश कुमार के पीछे पीएम मोदी और अमित शाह हैं। राहुल के इन आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया, लेकिन पहले देखिए राहुल का चुनाव आयोग के बहाने मोदी सरकार पर वार।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। आप डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव्ड इट, बट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड। बट नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स, पीपल बाय द वे चोजन बाय द लीडरशिप, ज्ञानेश कुमार वॉज चोजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनी बडी लेस, ही वॉज चोजन बाय अमित शाह, एंड नाउ टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर सेइंग दैट मिस्टर ज्ञानेश कुमार is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए। जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन विदाउट एनी डाउट। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: So Rahul keh rahe hain ki satta virodhi lehar loktantra ki ahem taakat hai. Aisa sare loktantrik deshon mein hota hai. Sirf Uttar Korea mein aisa nahi hota. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे।
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनावों को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीती तब वो क्या करेंगे?
3: दिस चेन बिटवीन वोट, Constitution, laws and institutions. This is a sacred chain. If you believe in the Indian Union, this is your religion. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. We are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition mein 100% agreement hai ki vote chori ho rahi hai aur vote chori ko rokna hai. Not 99%, everybody. Aur frankly, main aapko batau to BJP ke andar bhi log keh rahe hain. Right, so it is very clear that this is the single biggest issue in front of our democracy. We are going to cooperate. Hum opposition ke saath cooperate karenge. Hum ek saath unke saath kaam karenge. And our duty, our sacred duty, is to protect the constitution and the vote, which we are going to.

0: राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है।
1: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है। उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में, भाई सब 7 साल की उम्र में है। मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है। जैसे उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं, अप्रूवर, मेरा विचार है राहुल गांधी जी आप अपने अप्रूवर बन जाइए। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए। तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है।
0: सियासी घमासान को अगर एक किनारे कर दें तो सवाल ये उठता है कि दोनों चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधु की आपत्तियां अगर नहीं सुनी जा रही थी तो वो क्या कर सकते थे? दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी शिकायत अलग अलग कैबिनेट सेक्रेटरी को क्यों लिखी? दोनों चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं गए? दोनों चुनाव आयुक्त संवैधानिक पदों पर हैं और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई लेकिन निर्णयों पर रजामंदी रही, फिर भी सवाल उठाने क्या सही है? इन सारे सवालों को हमने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से पूछा।
2: वो उसे तुरंत रोक सकते थे, अगर नहीं रुकता, नहीं रिकॉर्ड होता तो वो अपनी शिकायत लेकर राष्ट्रपति जी को जा सकते थे कि सर हमारी मेजोरिटी है, कानूनन हमारा मेजोरिटी वाला मत जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है तो राष्ट्रपति जी एक्शन ले लेते और सुलझ जाता। 14 चिट्ठियां लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस तरह से काम नहीं करती, उसमें कोई चिट्ठी पत्री का नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन हैज पावर्स ओनली इन द इलेक्शन कमीशन मीटिंग, इंडिविजुअल इलेक्शन कमिश्नर्स आर पावरलेस। वो तो बिल्कुल गलत है, कैबिनेट सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट का पार्ट है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट से के अधीन काम नहीं करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को अलग से कोई पावर नहीं है, वो भी इनके बराबर ही है। मेजोरिटी जिस तरफ है वो फैसला होगा और अगर नहीं हुआ है चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में अगर प्रशासन जो है आपकी बात नहीं लिख रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, आप तुरंत वहीं से सीधे जाइए राष्ट्रपति जी से टाइम लेके और वहां उनको अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। एक्चुअली ये दोनों चुनाव आयुक्त ठीक कह रहे हैं ना, और वहां से जो भी अभी प्रेस नोट आया उसमें भी यह है कि सर्वसम्मति से ही फैसले हुए, राय अलग अलग हो सकती है, तो वो भी इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में आया है तो वो भी हमें ऐसे लगेगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स के जरिए आया है। तो बाहर वाले को तो ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन में सारे निर्णय इलेक्शन कमीशन करती है और उसका सिद्धांत है या तो सर्वसम्मति या मेजोरिटी। बाहर वाले को कैसे पता लगेगा कि आपके साथ ये हो रहा है? आप जब तक सही जगह जाके शिकायत नहीं करोगे, राष्ट्रपति जी को नहीं मिलोगे, तब तक कैसे पता लगेगा बाहर वाले को? अभी भी आपको जिन चीजों पर आपत्ति है उनके बारे में आप मीटिंग करके उनको रद्द कर सकते हैं, और अगर वो रद्द करने का निर्णय रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप राष्ट्रपति जी को शिकायत कर सकते हैं, ये तो खुला हुआ है।
0: अब बात गोवा के 97 वोटरों की, जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पार्ट 2 खुलासे में गोवा में SIR को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। दावा किया कि गोवा SIR के दौरान 97 ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके जिन्हें स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने दस्तावेज और आपत्तियां सुनने के बाद योग्य माना था। इस पर क्या खुलासा है और चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले ये आंकड़ा देखिए। गोवा में साल 2022 के चुनाव में 2 सीटें 100 वोट के कम अंतर से जीती गईं। 1 सीट बीजेपी जीती जो कोंडा थी, यहां बीजेपी 77 वोटों से जीती। दूसरी सीट सेंट आंद्रे है जहां रेवोल्यूशनरी गोंड पार्टी 76 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब रही। मतलब गोवा में देश के बाकी दूसरे राज्यों की तरह

0: बहुत कम वोटों से जीत हार तय होती है। इसीलिए सवाल उठे कि 97 वोटरों को सब कुछ ठीक होते हुए भी SIR के दौरान वोटरों की अंतिम सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया। इसके जरिए ही रिपोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए गए, जिस पर चुनाव आयोग की सफाई भी आई है।
1: इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पार्ट टू खुलासे में गोवा में SIR को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। दावा किया कि गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान 97 ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके जिन्हें स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने दस्तावेज और आपत्तियां सुनने के बाद योग्य माना था। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से ड्राफ्ट वोटर सूची से बाहर हुए लोगों के नाम सार्वजनिक करने, उन्हें दस्तावेज देने और अपनी आपत्ति रखने का मौका देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गोवा में 649 आवेदन आए। इन मामलों की जांच के बाद 97 मामलों में स्थानीय ERO और AERO ने माना कि पहले लिया गया फैसला वापस लेकर इन्हें अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन पूरा मामला ECI नेट के स्तर पर अटक गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में इन नामों को रोल बैक या दोबारा शामिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने इस सुविधा के लिए 11 से 17 फरवरी के बीच 8 बार ईमेल और पत्र भेजे, लेकिन 21 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई और रिपोर्ट के मुताबिक इन 97 नामों को फाइनल वोटर लिस्ट में जगह नहीं मिली। जब 97 वोटरों से जुड़े सवाल का जवाब जानने के लिए हम गोवा के चुनाव अधिकारी संजय गोयल के पास गए तो वो आज तक के सवालों पर भड़क गए।
2: सर, इशू रिसेंट इशू है, रिसेंट इशू पे अगर आपके पास नॉलेज, बट सर कुछ जो
3: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड,
2: पर सर 97
3: मैं अपने रिकॉर्ड चेक करूंगा, अभी मैंने नहीं देखे ना रिकॉर्ड, इट इज 8 मंथ बैक मैटर,
2: 8 मंथ बैक, पर अभी इशू कैसे आ गया?
3: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड, ओके,
2: बट जो सामने
3: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड, आपको समझ नहीं आ रहा, बार बार बार रिपीटिंग सेम क्वेश्चन,
2: बट तो इशू तो
3: आई विल चेक विद माय रिकॉर्ड, देन ओनली आई कैन रिप्लाई।
2: पर सर 97 नाम जुड़वाने के लिए कोई रिप्लाई आया है क्या? सर जो 97 नाम है जुड़वाने,
3: आई डोंट हैव एनी नेम विद मी, लेके चले जाएंगे।
2: बट
3: अभी मैंने आपको बता दिया, प्लीज, ठीक है ना? सी आई हैव अदर क्वेश्चंस, अभी आपको बता दिया, लेट मी चेक माय रिकॉर्ड, देन यू कम बैक।
2: बट ये इशू अभी का है सर, अभी रिसेंट इशू आया है। पर आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है सर।
3: इट वाज रॉन्ग टू लेट यू एंटर द कैबिन, यू आर एक्टिंग टू रिजिड अननेसेसरली।
2: ओके,
1: जब कुछ वोटर्स को योग्य पाया गया तो गोवा के CEO ऑफिस ने ERO से ECI नेट पर जानकारी ठीक करने के लिए बार बार अनुरोध क्यों किया? इस पर चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि गोवा मामले में ड्राफ्ट मतदाता सूची में इन 97 लोगों के नाम मौजूद थे। विसंगतियों के संबंध में इन लोगों को नोटिस भेजा गया था। जब ये लोग ERO के सामने पेश हुए तो ERO को लगा कि मामले में कुछ गड़बड़ी है। ERO ने उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया। इसके बाद ERO ने ECI नेट में वापस नाम जोड़ने का विकल्प मांगा। ERO के पास नाम हटाने का अधिकार है। बाद में ERO इन नामों को दोबारा जोड़ना चाहता था। इसके लिए उसने IT विभाग को ईमेल लिखा। IT विभाग ने ईमेल का जवाब नहीं दिया क्योंकि ECI नेट में नाम वापस जोड़ने का ऐसा प्रावधान उपलब्ध नहीं था। इन 97 लोगों का मतदान का अधिकार समाप्त नहीं हुआ है। ये लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दोबारा जुड़वा सकते हैं।
0: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से आज 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर उनकी बात सुन लेते तो यह हादसा नहीं होता। अगर यात्रियों की शिकायत को गंभीरता से लेते, सतर्क हो जाते तो 9 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन शिकायत करने पर ड्राइवर और कंडक्टर बस हंसते रहे। FIR के अनुसार यात्रियों को ये कहते रहे कि मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे।
4: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
5: आग दौड़ी है, उसमें आग लग गई। बस जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे। इसमें लोग निकल पाए तो आग ने विकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
4: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
6: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
5: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
6: अच्छा।
5: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया वरना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर। जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
6: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
5: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं निकल रहा होगा, उसने होगा कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
4: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
7: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे।
8: बस चल रही थी या
7: रुक गई थी? बस ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
8: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
7: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम मूर्ति पड़ी रहे अपने आप, पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुकी थी।
8: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
7: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
8: ड्राइवर के पास से आग लगी,
9: वो बस छोड़ के भाग गया।
7: आगे से आग लगी है,
8: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, ऐसा
7: बस हो रही,
8: अफरा तफरी मच गई थी पूरी बस।
4: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
0: ऐसे हादसे जब होते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं कि कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती से ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्या ये महज हादसे हैं या जानबूझकर भ्रष्टाचार और अनदेखी में की जाने वाली हत्याएं हैं। क्योंकि अभी तक जो सामने आया है उन तथ्यों के अनुसार स्लीपर बस बिहार के मधुबनी में रजिस्टर्ड थी, टूरिस्ट परमिट पर इसका स्टेज कैरेज की तरह इस्तेमाल हो रहा था, ये दिल्ली से मध्य प्रदेश के बीच चलाई जा रही थी, इसका मालिक MP के छतरपुर का बताया जा रहा है, ड्राइवर UP का है। और इस बस से जान बचाकर निकलने वाले यात्रियों के माने तो इस हादसे में सिर्फ आग वजह नहीं है बल्कि बस के ड्राइवर का मौके से भागना, बस से निकल पाने के रास्ते न होना बहुत बड़ा कारण था। तो इस पूरी दुर्घटना के पीछे कितने स्तर पर कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, जरा देखिए। बस बिहार के मधुबनी में रजिस्टर्ड है, यानी जब बस की बॉडी बनी तो भ्रष्टाचार हुआ, मानकों का पालन नहीं हुआ, उसे फिटनेस सर्टिफिकेट मिला। जिम्मेदार मधुबनी के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। बिहार से बस दिल्ली पहुंच गई, किसी ने नहीं रोका, जिम्मेदार बिहार के कई जिलों की ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस। दिल्ली से रोज यह अवैध बस चल रही थी, किसी ने नहीं रोका, टूरिस्ट परमिट वाली बस स्टेज कैरिज में सवारी भरकर जाती रही, न सीसीटीवी न यात्रियों का रिकॉर्ड, जिम्मेदार दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग, आरटीओ, कश्मीरी गेट के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बीट कांस्टेबल सब। इतना ही नहीं, यह बस एक साथ तीन तीन राज्यों से रोज आवाजाही कर रही थी, दिल्ली से चलती थी, यूपी से गुजरती थी, मध्य प्रदेश तक पहुंचती थी। तीन राज्यों की पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, एक्सप्रेसवे प्रशासन, किसी ने इस बस को रोका टोका नहीं, क्योंकि यूपी से रोज बस गुजर रही थी, किसी ने नहीं रोका। बॉर्डर पर दूसरे राज्य के रजिस्ट्रेशन की बस की चेकिंग होती है, नहीं हुई, जिम्मेदार नोएडा के आरटीओ। एक्सप्रेसवे एंट्री पर बिना चेकिंग के बस टोल से गुजरी, जिम्मेदार वाईआईडे के सुरक्षा पदाधिकारी, टोल स्टाफ, यूपी हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट, पुलिस पीसीआर टीम। एमपी में रोज बस आ जा रही थी, किसी ने नहीं रोका, जिम्मेदार एमपी बॉर्डर पर तैनात एआरटीओ, ट्रैफिक पुलिस, महोबा का ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर। और ये जिम्मेदारी इसी तरह तय की जानी चाहिए, इसी तरह हर एक हादसे पर हर स्तर के अधिकारियों की पड़ताल होनी चाहिए, वरना मौत के लाक्षागृह बनाकर यूं ही मुसाफिरों की जान ली जाती रहेगी। पिछले साल दिसंबर में भी यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में आग लगने से हादसा हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान गई थी। तब सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। इस हादसे के बाद भी हमने यूपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यूपी में स्लीपर बस वाली बसें तो यूपी में खरीदते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे प्रदेशों में चलाते हैं, ऐसी 18,000 बसें।
9: सर, एक बस थी जिसमें जिस तरीके से स्लीपर बस में घटना हुई है, उसमें 9 लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर क्या आपकी तरफ से एक्शन हुआ है और क्या इसकी जानकारी मिली है?
10: बहुत दुखद है, और ये बस जो है दिल्ली से महोबा जा रही थी, और शॉर्ट सर्किट के कारण जो है, प्रारंभिक तौर पर बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी और इमरजेंसी गेट नहीं खुल पाया, जिसके कारण और यात्री बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि एसी बस थी, सभी दरवाजे मैंने खिड़कियां बंद थी। समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, इन लोगों के सीज करते हैं, और लेकिन ये लोग नेशनल परमिट लिए हुए हैं, ड्राइवर का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है, और जो भी और भी सख्ती होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: यूपी के बाहर से जो बसें आती हैं उनको चेकिंग करने के लिए, या कुछ हमारे पास ऐसा प्लान है जिससे हम लोग उनको रोक रहे हों, या इस तरीके से ये बसें बाहर से फिटनेस करा रही हैं, रजिस्ट्रेशन कहीं और से करा रही हैं, और घटना का जो इंसिडेंट है वो हो जा रहा है?
10: मैं आपको यदि कहूँ तो 18,000 गाड़ियाँ हमारे यहाँ खरीदी गई और दूसरे जगह जाकर के रजिस्टर्ड हुई, पड़ोसी स्टेट में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, नागालैंड और अरुणाचल में जाकर के रजिस्टर्ड करा रहे हैं, क्योंकि हम मानक के अनुसार वो करते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं अदर स्टेट में, जैसे हम जो है 52 टन पर जिसको करते हैं, वो हमारे यहाँ गाड़ी खरीद करके जाके दूसरे जगह 55 टन पर रजिस्टर्ड करा ले रहे हैं। इस बात को हम केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को लिखित में भी और मीटिंग में भी मैं इस बात को कह चुका हूँ।
0: जिस बस में आग लगी और 9 जिंदगियां खत्म हो गई, उसी कंपनी की दूसरी बस जो चल रही है, ऐसी ढेरों बसें पूरे देश में चल रही हैं, उनमें भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आते। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से लेकर हम आनंद विहार में ऐसी ही बसों की पड़ताल करने पहुंचे।
11: कल्पना, बस सर्विस आपको यहाँ पर नजर आएगी। दरअसल यही वो बस सर्विस है जो कि नोएडा में जिस तरीके से हादसा हुआ वो भी इसी कंपनी की बस थी। इसका भी रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। ये बस है, स्लीपर बस है, और इसकी क्या स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बस के ड्राइवर के बैठने की व्यवस्था है, और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंडक्टर के बैठने की व्यवस्था है और इसका पूरा रियलिटी चेक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हालात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बस में एंटर करते के साथ ही लिखा है नो स्मोकिंग, यानी धूम्रपान करना साफ मना है राज कल्पना। लेकिन उसके बावजूद जो आरोप लग रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर कि किस तरीके से ड्राइवर जो है वो स्मोकिंग और तंबाकू के अंदर लगातार कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ अगर आप चलेंगे तो अंदर की तरफ अगर आप बस देखेंगे तो बस में जो एग्जिट गेट होना चाहिए फायर एग्जिट अगर कोई हादसा हो जाता है उसकी स्थिति क्या है, ये देखिए ये गेट है फायर एग्जिट का लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर लॉक है। यहाँ पर बकायदा एक सीट जो है वो बना दी गई है, अगर कोई हादसा हो लोगों अगर फंस जाए या बस में कोई आग लग जाए तो कैसे यहाँ से निकलेंगे, ये गेट पूरी तरीके से आपको बंद नजर आएगा और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हैमर जो है वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा ताकि शीशे तोड़ करके आदमी बाहर निकल सके। आप ये सोचिए कि तमाम ये स्लीपर कोच है इसमें भी बकायदा शीशे जो है वो लगे हैं, अंदाजा लगाइए जब ये पूरा हादसा नोएडा के अंदर हुआ था लोग अंदर फंसे हुए थे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस तरीके से इस पूरी बस की अगर आप रियलिटी चेक करेंगे तो किस तरीके के हालात है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर चढ़ने का ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर भी बकायदा जो गद्दे हैं वो लगा दिए गए हैं जबकि यहाँ पर इस तरीके से गद्दे जो है वो नहीं लगा सकते, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए खड़े होने की, लेकिन यहाँ पर भी एक पूरा कोच जो है वो लगा दिया गया ताकि आदमी सो सके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये गेट और है, इस गेट के ऊपर किस तरीके से अगर कोई हादसा होता है तो कैसे कोई अपनी जान जो है वो बचाएगा, इस पर भी पूरी तरीके से एक पूरा कोच यहाँ पर लगा दिया गया, सोने की व्यवस्था कर दी गई, एक बेड लगा दिया गया और यहाँ से रास्ता कैसे कोई व्यक्ति अगर फंसे तो कैसे अपनी जान बचाए हम भी कोशिश करेंगे। ये देखिए कि ये कैसे खुलता है, ये पूरी तरीके से लॉक है,
12: वहाँ एक नॉब है, वो नॉब इतनी बुरी तरह से लगा हुआ है कि वो खुल नहीं रहा है और जहां जो इमरजेंसी एग्जिट है बहुत विपरीत स्थिति अगर आपके बस में पैदा हो जाती है तो स्थिति से बचने के लिए आपको जान बचाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। यहां पे शायद एसी का डक्ट है वो भी खराब हो रखा है, मैं कहीं कोई हथौड़ा नहीं देख पा रहा हूं, अगर हमारे वीडियो सहयोगी को कोई हथौड़ा दिख रहा हो तो वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, फिलहाल में मेरी नजर में तो हथौड़ा मुझे किसी सीट पे यहां दिख नहीं रहा। हथौड़ा क्यों? क्योंकि अगर यमुना एक्सप्रेस वाले एक्सप्रेस वे जैसी स्थिति बनती है कि आग लग जाए कुछ हो जाए तो कांच तोड़ना पड़ेगा, कांच तोड़ेंगे कैसे, हथौड़ा तो है नहीं यहाँ पे।
0: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है, पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की, एक ने उसका हाथ पकड़ के घसीटने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी।
13: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की, पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बिहार का समस्तीपुर जहां सरेराह सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है, दो तीन मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि यह सब होता देख वहां मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
14: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है।
1: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मनचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मनचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश में। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा है।
15: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है, और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
1: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
15: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी।
16: जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली, तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था, और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है, पीड़िता है, उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
1: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
0: बिहार में एक तरफ बेटियों की सुरक्षा का सवाल है तो उससे भी शर्मनाक बात सत्ता में बैठे मंत्रियों के तेवर और बयान है। जमुई में एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आपने देखा कि कैसे सत्ताधारी गठबंधन के नेता और मंत्री बेलगाम होते दिखे। ये सिलसिला समस्तीपुर की घटना के बाद भी जारी है।
14: मैं तो बार बार कहता हूं अपराधियों को, अरे मेरे पुलिस को चैलेंज क्यों करते हो? चैलेंज करोगे तो 24 घंटा में जवाब मिलेगा ही, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आजकल रील बनाने के चक्कर में मारा जा रहा है। आज की जो घटना है आपने देखा होगा, उसने यदि रील नहीं बनाया होता तो पकड़ाता क्या?
17: ये क्या कहना चाहते हैं कि रील मत बनाओ, कांड करो, कांड करोगे, रील नहीं बनाओगे तो बच जाओगे।
1: बिहार बिहार की सरकार बेटियों के साथ हो रही लगातार बदसलूकी से घिर गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने उनके रील वाले बयान पर घेरा और पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं।
14: उसने यदि रील नहीं बनाया होता तो पकड़ाता क्या? इसलिए रील बनाने के चक्कर में कितने लोग मारे जाएंगे।
17: लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो गया है, जनाजा उठ गया है, इन लोगों से बिहार संभल नहीं रहा। राक्षस राज आ गया है पूरी तरीके से बिहार में, जब से भाजपा के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने।
1: बिहार में शहर और तारीख भले ही अलग अलग, जमुई हो या फिर समस्तीपुर, दोनों जगह मनचले जानवरों की तरह बेटियों पर टूटते दिखे, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं दिखा। जिस बिहार सरकार पर बेटियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, उसके कानून मंत्री राज कायम है वाली बात बोलते बोलते ऐसी शर्मनाक बात कह जाते हैं कि किसी का भी खून खौल जाए। इस फेहरिस्त में शामिल होने वाली मंत्रियों में अशोक चौधरी का नाम भी है।
18: 14 करोड़ में मैं तो कभी नहीं कह सकता हूँ, मैं सरकार का मंत्री हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री इस देश का, कोई भी देश का राष्ट्रपति इस दुनिया का ये नहीं कर सकता है कि कल से हमारे यहाँ घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन घटनाएं होंगी तो उनके ऊपर कानून का पूरा बुलडोजर चलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। जिस सरकार के हम बात,
1: अशोक चौधरी के तेवर देखने लायक। जिस सरकार के राज्य में बेटियों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, उस सरकार का मंत्री भड़कते हुए साफ साफ कह रहा है कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में वो बेटियों की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। अपनी इस बात को साबित करने के लिए मंत्री जी अमेरिका से लेकर जापान तक का उदाहरण दे रहे हैं।
18: घटनाएं कहां नहीं होती है, घटना अमेरिका में भी हो रही है, घटना जापान में भी होती है। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में घटना नहीं हो रही है, अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी घटना होती है।
1: तो मंत्री जी की माने तो बिहार में बेटियों से अभद्रता नहीं रुक सकती, क्योंकि इसकी गारंटी तो अमेरिका और जापान में भी नहीं ली जा सकती। लेकिन यहाँ सवाल कानून के खौफ का है। सवाल यह है कि इस तरह की शर्मनाक हरकत करने वालों को कानून का खौफ क्यों नहीं? क्योंकि ये लोग न सिर्फ इस तरह की वारदात कर रहे हैं बल्कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये सवाल जब हमने समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी से पूछा तो उन्होंने इसके लिए कानून व्यवस्था की बजाय मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया।
19: लगता नहीं कानून का खौफ होना जरूरी है शांभवी जी? देखिए घटना होती है, सरकार कार्रवाई कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, जमुई में हुई, समस्तीपुर में हुई, लेकिन वो डर क्यों नहीं है कानून का कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पकड़ा जाऊंगा? तो वो कानून का डर क्यों नहीं दिख रहा है इस वक्त लोगों में बिहार में?
20: देखिए ये तो युवाओं में इस तरीके का व्यवहार बिहार के युवाओं में देखने को अगर मिल रहा है तो इस पे जरूर एक तरह का आप कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। युवा जो है आज के वो वीडियोस और रील्स बना रहे हैं, जब घटना कर रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी कहाँ से आ रही है, इसके इंट्रोस्पेक्शन का भी बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: बिहार में बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है। वही सरकार का एक मंत्री मीडिया के सवाल पर भड़कते हुए दो टूक कह देता है कि जब अमेरिका जापान में ये घटना नहीं रुक सकती तो बिहार को लेकर ऐसा सवाल क्यों? वही सत्ताधारी दल की सांसद इसे मानसिकता से जोड़ देगी। लेकिन दोनों में से कोई ये नहीं कबूलता दिखता कि वाकई में कुछ कमी है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। बिहार सरकार चाहे जो कहे, मंत्री और उसके प्रवक्ता दावे चाहे जो भी कर ले, लेकिन बिहार में कानून के राज के इकबाल की हकीकत वही है जो जमुई और समस्तीपुर में दिखी।
0: बिहार के मंत्री कहते नहीं थकते कि उनकी सरकार में कानून का राज है, लेकिन इसकी हकीकत से पर्दा जमुई के लोग उठाएंगे। वही जमुई जहां नाबालिग से अभद्रता करते हुए नंदन यादव को सारे देश ने देखा। आज तक की टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि नंदन यादव का वहां आतंक था। दावा है कि वो गांव की लड़कियों से अक्सर छेड़खानी करता था। इस वजह से बेटियों को लोगों ने स्कूल से निकलवा लिया। गांव के लोगों का कहना है कि नंदन यादव की करतूतों को देखते हुए उसकी टांग पर नहीं बल्कि छाती पर गोली मारी जानी चाहिए थी, ऐसा गांव वालों ने कहा। सवाल यह है कि अगर बिहार में कानून का राज था तो फिर नंदन यादव जैसे आरोपियों की वजह से बेटियां स्कूल जाना क्यों छोड़ रही हैं?
18: सरकार का इकबाल है और सरकार का इकबाल बना रहेगा और जो घटनाएं हुई हैं उन पर कार्रवाई तत्काल हो रही है।
1: बिहार में कानून के इकबाल के इस दावे को जमुई के लोग खारिज करते हैं। ये लोग नंदन यादव के आतंक के सताए हैं। वो नंदन यादव जो जमुई में नाबालिग से अभद्रता का मुख्य आरोपी है, जो अपनी मूछों पर ताव देकर रील बनाता था। नंदन यादव हाफ एनकाउंटर के बाद कानून के शिकंजे में, जिसके बाद उसके गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। आज तक की टीम जब जमुई के कुंदर गांव पहुंची और लोगों से बातचीत की तो पता चला कि नंदन यादव का इस कदर आतंक था कि लोगों को अपनी बेटियों की पढ़ाई तक छुड़वानी पड़ी।
3: छह दिन पढ़ने देखा लड़की उड़की जाता आता तो छेड़छाड़ करता है।
21: अब लड़कियां जाती है पढ़ने या नहीं? कि बंद हो गया पढ़ाई लिखाई जाना बंद।
3: अभी ना अभी अथी के मैट्रिक अथी के एग्जाम दे रहा है बीए के, अभी मैंने बंद है।
21: कुछ
22: यहाँ का माहौल तो खराब रखना है कि लड़की लोग पढ़ना बंद कर दिया, समझ गए? सीधे सीधे जैसे हाथ पकड़ लेता है, किसी को बांध पकड़ लेता है, माँ बाप बगल में जो संत है उसी को बगल में लुका हुआ रहता है, समझ गए? महुआ का स्थान अब सबको रोक दिया है, कुल का पढ़ाई बंद हो गया कुंडल में।
21: मतलब उसके दहशत था बहुत ज्यादा,
22: बहुत ज्यादा बहुत जल्दी बालों यहाँ उठाने के लिए आता था।
1: तो ये है बिहार की हकीकत, जहां नंदन यादव जैसे आरोपी के पकड़े जाने से उसके गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गांव में उसका आतंक था, राह चलती बेटियों को छेड़ना जिसका रोज का काम था, जिसने कई बेटियों का स्कूल जाना बंद करवा दिया हो। वो जमुई की घटना से पहले तक ये सब करता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं।
21: नंदन और हरिराम इसके आतंक से परेशान थे लोग?
23: जी, रोड में सर हजानी तो करता था सर, जी मेरे गांव का सर नतनी के साथ पढ़ाई छोड़वा दिया गया सर, दिन दहाड़े सर गंदा गंदा अश्लील गाना मने बजाना और गंदा शब्द का प्रयोग करना। वो दशरथ राम जी के सर फुल फैमिली से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण नतनी है। उस दिन भी मीडिया के पटना से आए हुए थे, उनके सामने भी स्टेटमेंट हुई कि सर हम लोग क्या करते, लड़ नहीं पाएंगे बदमाश से तो हम लोग पढ़ाई छोड़ा दिए।
1: नंदन यादव का हाफ एनकाउंटर करके भले ही बिहार सरकार कानून के राज की बात कहे, लेकिन उसके गांव के लोगों की गवाही बताती है कि अगर ऐसे आरोपी पर पहले लगाम लगा दी गई होगी तो उसकी हिम्मत अपनी करतूतों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की नहीं होती। जमुई में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के मामले में नंदन यादव के अलावा उसके पिता गनूरी यादव की भी पोल खोल दी है, जो दोहरे हत्याकांड में करीब 23 सालों से फरार चल रहा है, लेकिन इस बात का खुलासा उसके बेटे के सुर्खियों में आने से होने का दावा हो रहा है।
24: गनोरी यादव जो घटना में हम लोगों ने गिरफ्तार किया था उस दिन, उस पर 2003 का ही एक हत्या का कांड दर्ज हुआ है और उसमें चार्जशीट उस पर हुआ था, लेकिन विचारण के दौरान ट्रायल के दौरान जो है वो एब्सकॉन्ड कर रहा था, तो उसको भी हम लोग माननीय न्यायालय में उसी केस में उसको उपस्थित प्रोड्यूस करेंगे।
1: नंदन यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी, बता दिया है कि अगर बिहार के अपराधियों में कानून का खौफ होता तो एक बेटी के साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं होती। नंदन यादव अपने ही गांव की बेटियों का स्कूल नहीं छुड़वा पाता, उसका पिता 23 साल पुराने मामले में बाहर नहीं घूम रहा होता। आज तक ब्यूरो
0: दिल्ली में कल हमने आपको LSR कॉलेज की छात्राओं का दर्द सुनाया था, जिनका कहना था कि उन्हें हर रोज छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आज एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे सफारी गाड़ी सवार युवकों ने गाड़ी में खींचने की कोशिश की, इस दौरान उसके साथ गाली गलौज भी की।
25: 9:30 बजे करीब रात में मैं और मेरी दोस्त विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से हम OGC की तरफ जा रहे थे, तो वहां से एक गाड़ी आती है व्हाइट कलर की सफारी और वो अपना शीशा डाउन करती है और वो हमारे ऊपर कुछ कमेंट्स पास करती है, तो हम उन्हें ऐसे बोलते हैं कि मतलब बदतमीजी मत करिए यहां से चले जाइए, तो इस पे वो इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि उन्होंने मतलब इतनी भद्दी गालियां हमें दी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और फिर जब हम वहां से जाने लगे तो हम देखते हैं कि वो गाड़ी हमें पीछे से फॉलो कर रही है, और जब हम OGC की तरफ बढ़कर रुके कि हम उनकी वीडियो बना सकें तो वो भी गाड़ी वहीं साथ में रुक गई और उन्होंने हमें गाड़ी के अंदर तक खींचने की कोशिश की। उसके बाद जब हमने मतलब मेरी दोस्त ने फोन निकाला तो वो वहां से भागे। उसके बाद वहां पे हम सीधे गए पहले मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, उन्होंने हमें रेफर कर दिया कि ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता, और इस प्रकार से 3 पुलिस स्टेशन का मैं 4-5 घंटे में चक्कर लगा चुकी हूं, बट हमारी एक FIR तक ये लोग नहीं लिख रहे।
0: मध्य प्रदेश के शाजापुर से आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी स्कूल में शिक्षिका की जगह उनके पति के पढ़ाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 72 घंटे के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की और आरोपी शिक्षिका और स्कूल की प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है।
26: के महज 72 घंटे के भीतर ही जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी सरकारी शिक्षिका और स्कूल की प्रिंसिपल दोनों को निलंबित कर दिया है, यानी खबर का असर हुआ और कार्रवाई भी हुई। लेकिन खबरदार करता सवाल यही है कि स्कूलों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी जिस अफसर पर थी उसकी लापरवाही पे आखिर नजर कब पड़ेगी। शाजापुर से मनोज पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में समाचार पत्र और न्यूज चैनल के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया था, तो उसके बाद हमने बीआरसी और प्रचारी के माध्यम से जांच कराई। वहाँ जो और भी स्टाफ है उनके तथ्य लिए गए और वहाँ जो बच्चे हैं जितने भी उनके भी कथन लिए गए, और उसके बाद ये सामने आया कि हाँ कभी कभी उनके जो पति थे वो पढ़ाते थे स्कूल में। इसके बाद अभी उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई।
4: मैम वहाँ पे एक और मैडम भी थे जो जिन्होंने बताया नहीं है, 2 साल से चल रहा था, उन पे भी कुछ कार्रवाई की गई?
2: हाँ उनको भी हमने सस्पेंड किया है।
0: थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
6: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: state of mind with a cola spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cola spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर,
4: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
9: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स,

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: अब वो पीएमटी बात वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आया वन एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
3: ओ नादान परिंदे, मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा।
7: तो कौन सी बनानी है? थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
8: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर
2: उधर,
3: करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार धोती थमका लगाने बस माय गॉड मजा आ जाएगा।
6: आप पे वो PMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मेरे पास एक आइडिया।
5: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
8: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉक स्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा TMT से बना है।
6: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
11: थेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
12: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
6: आई लाइक दिस ओनली।
13: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
14: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
15: मजा नहीं आया।
16: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
17: ये लो बस।
18: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
19: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
20: जीके मैक्स।
21: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
20: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
21: जेके वॉल मैक्स
20: बेस्ट पेंट,
21: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: चलो
2: मैं
1: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो
3: सखी उड़ ले अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट।
1: बड़ी जल्दी सीख गई,
2: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
3: स्वाद सपनों का।
4: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक,
5: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege rd, everything. There's nothing small about them.
4: Okay.
5: Oh, Jeevan, nothing small about us.
6: Mera rutba hai mera signature, mera jazba hai mera signature, bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbaag Group.
7: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
8: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको वो अभूतपूर्व आज तस्वीर दिखाएंगे जहां सबसे सख्त रुख अपनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए 64 सालों का अमेरिकी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पहुंचे। लाल कालीन पर घुटनों के बल बैठकर दाग पोंछते अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर और ट्रंप की ये भारी आदर सत्कार दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये बिजनेसमैन माइंडसेट और ये मेहमान नवाजी जिनपिंग के साथ कोई मेगा डील करा पाएगी।

0: और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे फर्स्ट लेडी पेंगलियान चाइना की सॉफ्ट पावर है। शी जिनपिंग की पत्नी पहले से ही चाइना की मशहूर फोक सिंगर और आर्मी की स्टाफ परफॉर्मर थी, लेकिन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद पेंगलियान ने चाइनीज कल्चर और मेड इन चाइना को पूरी दुनिया में प्रमोट किया और यही वजह है कि आज उन्हें चाइना का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर माना जाता है। अगली खबर जिससे हम सबको सतर्क होना है, अगर एआई को वक्त रहते नहीं रोका गया तो क्या मानव सभ्यता तबाही की ओर बढ़ रही है? ये सवाल अब दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी चलाने के वाले सीईओस, जो सबसे बड़ी एआई कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनके सीईओ खुद कह रहे हैं कि एआई से मानव जाति को, मानव रेस को अब खतरा है। इन एआई टेक कंपनीज के सीईओस की सबसे बड़ी फिक्र अब बन चुका है खुद एआई। सैम ऑल्टमैन, डारियो एमेडोय, क्लेमेंट डेलांग, तमाम जो टेक दिग्गज हैं जो एआई में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन के मंच से चेतावनी दी है कि अगर एआई पर सख्त नियम नहीं बने तो इससे इंसानों का नियंत्रण खत्म होना और बायोलॉजिकल हथियारों का खतरा तय है। अगली खबर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की खबरों पर अब आयोग ने अपनी बात साफ की है। मामला फॉर्म 6 से जुड़ा है जिसे नए वोटर अपना नाम जुड़वाने के लिए भरते हैं। खबर आई थी कि आयोग के दो अधिकारियों ने इसमें बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्य फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो भी नई जानकारी जोड़ी गई है वो फॉर्म के साथ एक अलग एनेक्सर के रूप में जोड़ी गई है। चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे उनके इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी से ही कानून की चोरी होती है।
1: टू एम्फसाइज, फ्रॉम वोट चोरी कम्स कानून चोरी, बिकॉज इफ द वोट इज स्टोलन द लीगल स्ट्रक्चर इज गॉन।
0: कंटेनर, आंसू गैस और लाठीचार्ज के बाद अब पाकिस्तान पुलिस का नया हथियार है नेट गन। इस्लामाबाद पुलिस को इस बार नेट लॉन्चर से लैस किया गया है, जो हवा में 30 से 40 फीट दूर से ही मजबूत जाल फेंककर किसी भी उग्र प्रदर्शनकारी को कुछ सेकंड्स में पूरी तरह जकड़ लेता है। तो क्या इस बार इमरान की पार्टी पीटीआई का मार्च गोलियों से नहीं बल्कि पुलिस के इस जाल में उलझकर दम तोड़ेगा? क्योंकि इमरान खान और उनकी बहनों के खिलाफ कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उनके समर्थन में निकल सकते हैं। तो पाकिस्तान पुलिस की तैयारी देख लीजिए।

आज हम कहेंगे बस करो क्योंकि देश की सड़कों पर दौड़ती स्लीपर बसें। जी हाँ, अगली खबर जो वापस देश के अंदर से है, जो हालत है आज देश में स्लीपर बसों की, कभी भी आग का गोला बन जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जल गए। हैरान करने वाली बात यह है कि जब यात्रियों ने धुआं उठने की शिकायत की तो ड्राइवर कंडक्टर हंसते हुए बोलो, मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे। आखिर इस देश में कौन से नियम है और कौन सी वो व्यवस्था है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डाला जा रहा है? 8 लोग जिंदा जल जाएं और इस व्यवस्था इन मंत्रालयों के कान पर जू तक नहीं। कुल 9 लोग मारे गए हैं, जिंदा जले हैं 9 लोग और किसी के कान पर कोई असर नहीं है। और अगली खबर, बिहार के जमुई की उस खौफनाक वारदात का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अब समस्तीपुर से इंसानियत को तार तार कर दे

वाली एक और बर्बर तस्वीर सामने आई है। एक बेबस नाबालिग बच्ची, बीच रास्ते में चार दरिंदे जो उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मासूम ने हिम्मत नहीं हारी, वो उन भेड़ियों से लगातार लड़ती रही। और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महिलाओं के लिए सुरक्षा के दावे पर एक बहुत बड़ा सवाल इस वीडियो के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की को सम्मान देकर अपनी बातें मनवा पाएंगे, और क्या ये मेहमान नवाजी सौदेबाजी में भी काम आएगी। चाणक्य की नीति में किसी भी देश या उसके शीर्ष नेता से अपना काम निकलवाने के लिए चार उपाय बताए गए। पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। और इसे कई लोग साम, दाम, दंड, भेद की नीति भी कहते हैं। अब जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने चाइना से अपनी बातें मनवाने के लिए दंड नीति का इस्तेमाल किया। चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। यह भी तब हुआ जब अमेरिका के ज्यादातर नेता ये मान रहे थे कि चाइना के खिलाफ दंड नीति का इस्तेमाल करने से दोनों देशों का नुकसान हो सकता है, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी की सुनी नहीं। उस वक्त क्या, आज से सिर्फ 10 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के खिलाफ काफी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 सालों के बाद स्टेट विजिट के लिए अमेरिका पहुंचे, तो राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार ने एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लुआन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसका प्लेन साइड वेलकम उनका किया। तो उनका प्लेन साइड वेलकम करने का मतलब यह होता है कि अपने मेहमान के विमान की सीढ़ियों के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर उनका स्वागत करना। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा अमेरिका के इतिहास में 64 सालों के बाद किया। अब इससे पहले आखिरी बार साल 1962 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन का प्लेन साइड वेलकम किया था, और उस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी माने जाते थे, एलाइज। जबकि आज अमेरिका और चाइना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना सबसे खास दोस्त बताते हुए उनका भव्य स्वागत किया, और कैसे चाइना को लेकर अब वो दंड नीति की जगह साम नीति अपना रहे हैं, उसके लिए ये तस्वीरें पहले देखिए।

इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ट्रंप की साम नीति साफ नजर आती है। साम नीति का अर्थ है अपने दुश्मन को जरूरत से ज्यादा आदर और सम्मान देकर उसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करना या उसके साथ अपनी सौदेबाजी को सहज बनाना। और जानते हैं इसके लिए आज अमेरिका ने क्या क्या किया। जिस रेड कार्पेट पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत हुआ वो 100 फीट लंबा था और अमेरिका में उसका इस्तेमाल खास कूटनीतिक मौकों पर ही किया जाता है। यही नहीं, जब इस रेड कार्पेट को बिछाया जा रहा था तब इस पर कुछ जगह कुछ गंदगी रही होगी, दाग लगे होंगे। साफ करने के लिए अमेरिकी जो वहां पर अब सैनिक थे या अधिकारी थे, जो भी थे, ये अमेरिकी घुटनों के बल बैठ गए। पूरे 12 से 15 सेकंड के वीडियो में अमेरिकी सैनिकों को काफी हड़बड़ी में देखा गया, जो भी अधिकारी थे, सैनिक थे। इस घटना को लेकर चाइना के मीडिया ने भी कटाक्ष किया।

अब इन तस्वीरों से दो बातें तो समझ में आती है, जिनमें पहली बात यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीदों के विपरीत जाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही और हम चाहते हैं कि आप इस पर भी एक बार सोचें जरा। असल में कोई भी देश अपने सहयोगी देशों के साथ ज्यादा नरम रुख अपनाता है, जबकि दुश्मन प्रतिद्वंदी देशों के साथ एक मतलब फॉर्मल बिहेवियर रहता है, औपचारिक रिश्ता रखता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसका उल्टा करते हैं। वो अपने सहयोगी देशों को धमकियां देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, कई बार उन्हें द्विपक्षीय मुलाकात में असहज कर देते हैं, लेकिन जो दुश्मन देश है उनके नेताओं को राष्ट्रपति ट्रंप भर भर के सम्मान देते हैं। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का बिजनेसमैन माइंडसेट है, जिसमें वो किसी भी देश को दोस्त या दुश्मन के नजरिए से नहीं बल्कि बैलेंस शीट यानी नुकसान और फायदे के नजरिए से देखते हैं। जैसे ट्रंप का मानना है कि यूरोपीय देश आज और जापान सालों से अमेरिका की सैन्य सुरक्षा का मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं और व्यापार में अमेरिका को घाटा दे रहे हैं, इसलिए वो अपने सहयोगी देशों के साथ सख्त रुख अपनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अगर उन्हें अमेरिका की सुरक्षा चाहिए तो जेब से पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन वही विरोधी जैसे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके साथ वो नरमी दिखाते हैं, उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे इन नेताओं से सगा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कोई नहीं है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को पता है कि ये देश सीधे अमेरिका के नियंत्रण में है ही नहीं और ऐसे में उनसे फायदा निकालने के लिए या तो युद्ध करना होगा जो महंगा होगा या फिर व्यक्तिगत संबंध बनाकर बड़ा सौदा यानी मेगा डील करनी होगी। और यहां भी अगर आप देखेंगे तो जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जापान की मौजूदा प्रधानमंत्री सुनाए ताकायची व्हाइट हाउस आती हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें वैसा सम्मान नहीं देते जैसा अभूतपूर्व सम्मान वो अपने दुश्मन देशों के नेताओं को देते हैं। और ऐसा करने के पीछे उनका एक ही बड़ा कारण है और वो है इन विरोधी देशों के साथ मेगा डील करना, अमेरिका के लोगों को यह बताना कि जिन देशों के साथ पहले के राष्ट्रपति कुछ भी ठोस हासिल नहीं कर पाए उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महान सौदे किए हैं और आज भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ऐसा ही सौदा करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं उसके लिए इन तस्वीरों को याद कीजिए। इसी साल मई का महीना राष्ट्रपति ट्रंप 33 प्रभावशाली लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर चाइना की स्टेट विजिट पर आए थे, जिसमें परिवार और कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अमेरिका की 17 बड़ी कंपनीज के सीईओज और बड़े अधिकारी शामिल थे। और उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को यही उम्मीद थी कि वो चाइना के साथ एक मेगा डील पर सहमति बनाने में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रंप को अपनी टीम के साथ खाली हाथ वापस अमेरिका लौटना पड़ा। यानी उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप की साम नीति किसी काम नहीं आई और इसीलिए अब वो एक बार फिर से चाइना के साथ डील करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डील क्या हो सकती है वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना से क्या चाहिए। एक बिजनेसमैन माइंडसेट के तहत राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चाइना अमेरिकी कृषि उत्पादों और बोइंग विमानों की खरीद के अपने पुराने वादों को तेजी से पूरा करे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचे। दूसरा, उन्होंने ट्रेड वॉर पर अस्थायी युद्ध विराम को सिर्फ 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया है ताकि चाइना पर उनकी जो सौदेबाजी की पकड़ यानी एक तरह का लिवरेज बना रहे। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप को अपने कार्यकाल के बचे हुए 2.5 सालों में अमेरिकी जनता और निवेशकों को यह दिखाना है कि वो चाइना से बेहतरीन डील करवा सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना की रणनीति काफी अलग दिखती है। चाइना इस वक्त सिर्फ अमेरिका से टाइम बाय कर रहा है, यानी समय किसी तरह से बिता रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल में किसी बड़े आर्थिक संकट या नए टैरिफ युद्ध में फंसना ही नहीं चाहते कि भाई जो टाइम है इसके साथ ऐसे ही निकालो। दूसरा, इस वक्त सौदे के लिए जितना बेताब अमेरिका है उतना बेताब चाइना नहीं है। अमेरिका में मिड टर्म के चुनाव है और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही है और ऐसे में चाइना के सामने कोई मजबूरी नहीं है कि वो डील के लिए मजबूर हो। उल्टा चाइना ने रेयर अर्थ

मिनरल्स को अमेरिका के खिलाफ ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल किया, जिनके बिना अमेरिका फोन से लेकर हवाई जहाज तक बना ही नहीं सकता था। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका पहुंचने पर स्वागत हुआ, उससे तो ये पता चलता है कि अमेरिका अब चाइना को एक बराबरी की महाशक्ति मानने पर मजबूर हो गया। और दूसरा, चाइना इस दौरे को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के रूप में देखेगा, यानी चाइना ऐसा मानता है कि ताइवान, साउथ चाइना सी और सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन को लेकर अमेरिका का जो रुख है, वैसी परिस्थितियों में कोई आशंकी सौदा तो हो सकता है, लेकिन बड़ी डील शायद मौजूदा हालात में मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये द न्यू टाइम्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अभी अमेरिका और चाइना के बीच वाटर पोलो मैच खेला जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी पानी के ऊपर से नियमों के मुताबिक खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के भीतर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, किक मार रहे हैं। और अमेरिका और चाइना के बीच भी यही खेल चल रहा है, और इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। आबादी के मामले में चाइना और अमेरिका दुनिया के 3 शीर्ष देशों में आते हैं। भारत के बाद पूरी दुनिया में 141 करोड़ लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो चाइना में रहती है, जबकि लगभग 35 करोड़ लोगों के साथ तीसरी सबसे बड़ी आबादी अमेरिका। हालांकि चाइना में अमेरिका से 100 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं, और इसी आबादी का फायदा चाइना को पिछले 40 सालों में मिला है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो सिर्फ 46 सालों में, 46 years पहले, चाइना एक गरीब देश था और अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश था। चाइना की अर्थव्यवस्था $1 trillion की भी नहीं थी, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था $3 trillion की। उस दौर में अमेरिका को लगता था कि चाइना से कभी उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता, और चाइना एक गरीब देश बना रहेगा। लेकिन साल 1980 से 2026 के बीच चाइना की अर्थव्यवस्था के आकार में 6,850% की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसी दौरान 1,032% की वृद्धि। और चाइना अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था 3,107 लाख रुपए की है, जबकि चाइना की माफ कीजिएगा, आज अगर आप देखिए तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 3,107 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था 2,000 लाख करोड़ रुपए की है। और यहां बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बताता है, लेकिन इसी दौरान उसे चाइना से ये कहना पड़ता है कि किसी भी तरह उसके किसानों का सोयाबीन और दूसरा सामान खरीदे। 2025 में अमेरिका और चाइना के बीच 31,85,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, 31,85,000 crores, जिसमें अमेरिका का व्यापार, जो व्यापार घाटा था, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का, वो 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। यानी अमेरिका चाइना के सामान पर काफी हद तक निर्भर हुआ, धीरे धीरे चाइना का ही सामान ज्यादातर अमेरिकी बाजार में फैल गया, लगभग समझिए कब्जा हो गया। और आज स्थिति है कि चाइना अगर दुर्लभ खनिज निर्यात करने से इनकार कर दे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाएगा। अमेरिका और चाइना के बीच एक और बड़ा फर्क यह है कि जहां अमेरिका को अपना सुपर पावर का ताज बचाना है, वहीं चाइना की कोशिश यह है कि वो इस ताज को जल्द से जल्द हासिल करे। इसके लिए चाइना ने खुद को अमेरिकी कंपनीज के प्रभाव से बाहर निकाला। आज मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितनी प्लेटफॉर्म्स जो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन चाइना में इन पर प्रतिबंध है। चाइना इनकी जगह अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करता है और अमेरिकी प्रभाव को एक तरह से चुनौती देता है। इसके अलावा अगर सैन्य शक्ति में दोनों देशों की तुलना करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है, जबकि चाइना के पास दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना बताई जाती है। और बड़ी बात यह है कि चाइना बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और चाइना का विशाल क्षेत्रफल भी उसके लिए एक बड़ी ताकत है। चाइना का कुल क्षेत्रफल जो है वो 93,88,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अमेरिका का क्षेत्रफल 91,47,000 वर्ग किलोमीटर। और दोनों देशों में एक और बड़ा फर्क है कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना की सत्ता में स्थायी माने जाते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें हटाया नहीं जा सकता, तब राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल का बचा है, और उनकी लोकप्रियता भी अपने सबसे निचले स्तर पर है, 32% पर पहुंच गई है। ये भी तब हुआ है जब चाइना को लेकर अमेरिका के लोगों की राय बदल रही है। साल 2021 में अमेरिका के सिर्फ 9% लोग चाइना के प्रति सकारात्मक राय रखते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 19% हो गया है। इसी तरह
जो लोग चाइना के प्रति नकारात्मक राय रखते थे उनकी संख्या 2021 में 68% थी, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या भी 54% रह गई है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता कम हो रही है, तब उसी वक्त चाइना को लेकर अमेरिकी जनता की राय बदल रही है, और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बदलते मूड को देखते हुए अमेरिका और चाइना का G2 यानी ग्रुप 2 बनाना चाहते हैं। सोचे, एक जमाने में जो अमेरिका किसी देश को अपने साथ बराबरी का नहीं मानता था, वही अमेरिका आज ट्रंप के नेतृत्व में चाइना के साथ G2 बनाने की बात कह रहा है। और इसके लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की स्टेट विजिट पर आए हैं, और जानते हैं स्टेट विजिट पर क्या क्या होने वाला है। भारतीय समय अनुसार आज रात व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद रोज गार्डन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी सैन्य सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। इस समारोह के बाद व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, और आखिर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप करेंगे। देखिए,

0: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन को चाइना की सॉफ्ट पावर क्यों माना जाता है। साल 2013 में जब शी जिनपिंग पहली बार चाइना के राष्ट्रपति बने, तब उससे पहले चाइना में फर्स्ट लेडी को बहुत लो प्रोफाइल माना जाता था। उस वक्त पूर्व राष्ट्रपतियों की पत्नियां ना तो विदेश दौरों पर जाती थी, ना ही मीडिया या सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादा हिस्सा लेती थी। लेकिन जब शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने, तब उनकी पत्नी ने इस परंपरा को हमेशा के लिए पलट दिया। वो नियमित रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विदेशी दौरों पर जाने लगी। इनमें भी साल 2013 का रशिया दौरा उनके और चाइना के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साबित हुआ। उस वक्त मॉस्को में विमान से उतरते वक्त पेंग लियुआन ने जो गहरे नीले रंग का ओवरकोट, स्कार्फ और ब्लैक हील्स पहनी थी, उसकी तस्वीरें चाइना के सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई और चाइना के लोगों ने उन्हें अपना फैशन आइकन कहना शुरू कर दिया। उस वक्त आलम यह था कि चाइना की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर उनके जैसे दिखने वाले कोट, स्कार्फ मिनटों में बिक रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे। और द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि पेंग लियुआन ने अपने फैशन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली थी। ये पहला ऐसा मौका था जब दुनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी के बारे में जान रही थी, जबकि चाइना के लोग उन्हें मामा पेंग कह रहे थे। इसके कारण यह था कि पेंग लियुआन अपने शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ज्यादा लोकप्रिय थी। जब 1986 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पेंग लियुआन की पहली बार मुलाकात हुई, तब पेंग लियुआन पूरे चाइना के एक सुपरस्टार गायिका के रूप में जानी जाती थी, जबकि शी जिनपिंग उस समय केवल एक छोटे शहर शैमन शहर के डेप्यूटी मेयर थे। पेंग लियुआन को सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब वो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी। उस दौर में वो आर्मी की सिविलियन विंग में संगीतकार और परफॉर्मर के तौर पर काम कर रही थी और बाद में उन्हें मेजर जनरल के बराबर तक रैंक भी दी गई। कई बड़े और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था और उनके गाने चाइना में लोगों को देशभक्ति के करीब लेकर जाते थे। एक नेशनलिस्ट फोक सिंगर समझिए, एक बहुत ही राष्ट्रवादी जो लोक गायिका। और इसी रूप में पेंग लियुआन की पहचान घर घर तक पहुंची और जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, वो चाइना की फर्स्ट लेडी बनी, तब लोग उन्हें मामा पेंग कहने लगे। इसका कारण यह था कि पेंग लियुआन अपने विदेशी दौरों पर अक्सर अनाथालयों, स्कूल्स, बच्चों के अस्पतालों का दौरा करती थी और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे देशों में मेड इन चाइना कपड़ों और चाइना की संस्कृति को प्रमोट करना नहीं भूलती थी। इन्हीं सारी वजहों से चाइना ने अपनी जो सॉफ्ट पावर कहना शुरू कर दिया उनकी पत्नी को, जो चाइना की संस्कृति पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जा रही थी। और आज भी अगर आप उनके पहनावे को देखेंगे तो चाइना के डिजाइनर्स द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक और आधुनिक चीनी परिधान जैसे चंगसान या किपाओ पहनती हैं। देखिए,

0: यहाँ आप ये भी समझिए कि पेंग लियान से पहले जितनी भी फर्स्ट लेडीज रही वो लो प्रोफाइल क्यों रहती थी, इसके पीछे जियांग किंग को बड़ा कारण माना जाता था, जो चाइना के पहले सर्वोच्च नेता माओ त्से-तुंग की चौथी पत्नी और पूर्व अभिनेत्री थी। 1966 से 76 के बीच जब चाइना में सांस्कृतिक क्रांति हुई तब फर्स्ट लेडी रहते हुए जियांग किंग का सत्ता में दखल इतना ज्यादा था कि वो इस क्रांति की प्रमुख नेता बन गई थी और बाद में उन पर कई लोगों की हत्याएं करवाने का आरोप लगा। जब 1976 में माओ की मौत हुई तब जियांग किंग को गिरफ्तार करवा लिया गया। जिस तरह राष्ट्रपति की पत्नी रहते हुए उन्होंने सत्ता में दखल दिया उसी को देखते हुए बाद के राष्ट्रपतियों ने ऐसे नियम बनाए जिनका उद्देश्य ये था कि नेताओं की पत्नियों को लो प्रोफाइल रखना है। यही नहीं, मिसाल पेश करने के लिए जियांग किंग 1981 में मौत की सजा भी सुनाई गई थी जिससे बाद में उम्र कैद में बदला गया। हालांकि जियांग किंग ने कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया। मई 1991 में बीजिंग में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त स्थिति यह थी कि चाइना के सरकारी मीडिया में उन्हें तरह तरह की गालियां दी जा रही थी और इसके बाद राष्ट्रपतियों की पत्नियां मीडिया की खबरों से दूर रहने लगी। हालांकि अब फर्स्ट लेडी पेंग लियान को चाइना का मीडिया सॉफ्ट पावर कहता है और यहां आप ये भी देखिए कि दुनिया में कैसे अमेरिका की घटती साख का फायदा अब चाइना को मिल रहा है। प्यू रिसर्च ने 20 से ज्यादा देशों में अमेरिका और चाइना को लेकर एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला कि पहले इन देशों में 58% लोग अमेरिका को पसंद करते थे और 32% लोग चाइना को, लेकिन आज 46% लोग इन देशों में चाइना को पसंद करते हैं और सिर्फ 36% लोग बचे हैं जो अमेरिका को। तो अमेरिका की लोकप्रियता भी खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में काफी गिरी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि वैश्विक मामलों में अमेरिका की भूमिका और फैसले सही होंगे, लेकिन अब लोगों का अमेरिका पर जो भरोसा था वो सर्वे के अनुसार कम हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो देश अमेरिका के करीबी और सहयोगी रहे उन देशों में अब अमेरिका पर भरोसा तेजी से कम हो रहा है और चाइना पर इन्हीं देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। यानी अमेरिका की घटती साख और उसका सीधा फायदा चाइना को मिल रहा है और इन्हीं देशों में ज्यादातर लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मुकाबले राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद कर रहे हैं और ये सर्वे कहीं ना कहीं ऐसा संकेत देता है कि दुनिया अमेरिका की नीतियों से खुश नहीं है और अब उसने दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया है। खैर, स्टेट विजिट के बीच एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका और चाइना के बीच नया टकराव पैदा कर सकती है। अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट, मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के बेहद संवेदनशील कलपुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स चाइना के नियंत्रण वाले क्षेत्र हांगकांग में पहुंच गए हैं और चाइना की सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। पेंटागन के मुताबिक ये पुर्जे ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के एक F-35 विमान के थे जिन्हें मरम्मत और निरीक्षण के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन दावा है कि ये शिपमेंट रहस्यमय तरीके से अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस अपना रास्ता भटक गया और प्रशांत महासागर को पार करते हुए हांगकांग पहुंच गया, डाइवर्ट हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हांगकांग में चाइना की सरकार ने इन पुर्जों को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिका में बार बार मांगने पर भी वापस नहीं दिया गया। और यह भी तब हो रहा है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की स्टेट विजिट पर है। इस घटना के बाद अमेरिका को सबसे बड़ा डर है कि क्या चाइना इन पुर्जों को देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, यानी इन पुर्जों की नकल करके F-35 जैसा स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सकता है। पश्चिमी मीडिया ऐसा लिख रहा है कि चाइना के वैज्ञानिक इस बात की बारीकी से जांच कर सकते हैं कि अमेरिका ने रडार को धोखा देने के लिए किस केमिकल और मेटल कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर है जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। वो इसके जरिए अपनी खुद की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और आधुनिक बना सकते हैं। दूसरा, इन पुर्जों से चाइना को यह समझने में मदद मिल सकती है कि F-35 को रडार पर कैसे पकड़ा जाए। अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो युद्ध की स्थिति में अमेरिका की हवाई बढ़त खत्म हो जाएगी। और तीसरा, कई विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि सिर्फ दो पुर्जों से पूरा विमान कॉपी करना असंभव है और F-35 की असली ताकत उसके जटिल सॉफ्टवेयर, सेंसर फ्यूजन और आधुनिक इंजन्स में है। AI टेक्नोलॉजी के दो दिग्गज देश चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात चल रही है और अमेरिका में AI के खतरों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखते हैं कि मेरी भी AI वर्जन है और मेरी AI वर्जन भी आपको अब खबरें बताने लगी हैं। लेकिन ये जो एआई का एक नया अवतार आ रहा है जिसमें उसकी जानकारी बढ़ते जा रही है, जिसको बनाने के पीछे मकसद था इंसानों के काम को आसान बनाना, पूरी मानव जाति के लिए इसे एक सुरक्षा ढाल की तरह तैयार करना, लेकिन अब ये ढाल इतनी ताकतवर होती जा रही है कि ये इंसानों के लिए ही बड़ा खतरा बन सकती है। ये बातें किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगती है कि एआई अचानक से अपना ही उसका दिमाग हो गया, उसने लोगों पर कब्जा कर लिया, सॉफ्टवेयर पर, कंप्यूटर्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज का सच यही है, एआई डेवलपमेंट पर काम करने वाली दिग्गज कंपनीज के सीईओज की सबसे बड़ी चिंता खुद एआई है। मतलब जो एआई पर काम कर रहे हैं वही बता रहे हैं कि एआई इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा है। आप और हम भले ही अभी तक एआई को सवाल पूछने, फोटो वीडियो बनाने, किसी तरह का रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक कंपनीज के जो सीईओज हैं वो डरे हुए हैं। जो एआई बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत को बहुत करीब से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहा जाता है, अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इंसानों के लिए बड़ा खतरा होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारिया एमेडोय, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एआई एजेंट को सिखाने पढ़ाने वाली कंपनी यानी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के को फाउंडर क्लेमेंट डुलोंग जो है वो पहुंचे थे। इन तीनों टेक महारथियों ने जो कि एआई में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से एआई के विकास पर वैश्विक नियम कानून बनाने की अपील की है, बहुत बड़े खतरे की जानकारी दी है। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को एआई की बेतरतीब विकास की दौड़ से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताया है। सैम ऑल्टमैन के मुताबिक इस वक्त एआई से दो तरह के खतरे हैं। पहला, एआई से इंसानों का नियंत्रण ही खत्म होना, मतलब एआई हम ही ने बनाया और वो एआई से हमारा ही कंट्रोल खत्म हो जाए। उनके कहने का मतलब है कि इस वक्त एआई इतनी तेजी से सीख रहा है, हम जितना इंफॉर्मेशन एआई को देख रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन इंजेस्ट कर रहा है, अपने अंदर समेट रहा है कि अब ऐसा समय करीब है जब वो ऑटोनॉमस हो जाएगा, मतलब खुद सोचेगा, यानी वो इंसान के निर्देशों पर नहीं बल्कि खुद अपने कमांड पर चलेगा, वो खुद से सोचेगा, वो खुद से तय करेगा उसे क्या करना है। एक तरह से इंसानों का नियंत्रण एआई पर, मशीन पर खत्म हो जाना, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। दूसरी चिंता, एआई की ताकत कुछ लोगों के हाथों तक सीमित रहना। उनका मतलब यह है कि इस वक्त ताकतवर एआई एजेंट्स कुछ ही देशों और कंपनीज के हाथों में है, जो बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सैम ऑल्टमैन ने एक तरह की चेतावनी दी, उनका कहना है कि जिस तेजी से एआई का विकास हो रहा है, इंसानों का आने वाला जो भविष्य है जल्दी ही एआई के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि वी रिस्क लूजिंग द फ्यूचर टू एआई, मतलब भविष्य एआई के पास चला जाएगा, हमारा भविष्य। उनकी अपील है कि सख्त नियम बनाए जाएं जिससे ऐसे एआई मॉडल्स ना बन सकें जिससे जिस पर से इंसानों का ही नियंत्रण खत्म हो जाए। सबसे बड़ा खतरा तो यही है ना। अब एंथ्रोपिक के जो डारियो एमेडोय हैं, उन्होंने सैम ऑल्टमैन से आगे जाकर एआई की क्षमता को मानव जाति के विनाश के खतरों से जोड़ा, ह्यूमन रेस का अंत। उनका कहना है कि इस वक्त एआई से दो खतरे हैं, इनमें सबसे पहला है एआई का गलत इस्तेमाल। उनके मुताबिक एआई एजेंट्स का इस्तेमाल अगर आतंकी करने लगे, अगर दूसरे कट्टरपंथी समूह करने लगे, तो इसकी मदद से बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डारियो ने एआई सिस्टम से नियंत्रण खोने को मानव जाति पर एक बड़े खतरे की तरह देखा है। हगिंग फेस के कोफाउंडर क्लेमेंट डुलोंग ने इन खतरों पर सहमति जताई। इससे एक बात और उन्होंने जोड़ी, उनका कहना है कि खतरा इस बात का है कि अगर किसी देश के पास बहुत शक्तिशाली एआई एजेंट है और अन्य देशों के पास वो नहीं है, तो ऐसे देश पूरे सिस्टम के लिए एआई एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
1: इंडस्ट्री को सिर्फ बड़े फायदे और रफ्तार बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिम नहीं उठाने चाहिए, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। नहीं, हम ऐसी किसी दौड़ में फंसे हैं जहां हम ऐसा ना कर पाए। हमने पहले भी अपनी मर्जी से रफ्तार कम की है और आगे भी करेंगे। हम ऐसे सिस्टम नहीं बनाना चाहते और हमें लगता है कि सभी के लिए ऐसा करना जरूरी है जहां हम जरूरी तालमेल, मॉनिटरिंग और सुरक्षा की गारंटी ना दे पाए।
2: फर्स्ट
1: सबसे पहले हमें ऐसे सीमित समझौतों से शुरुआत करनी चाहिए जिनका हर सदस्य समर्थन कर सके, जैसे कि एआई का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल हथियार बनाने या अपनी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए करने पर रोक लगाना। हमें ऐसे मूल्यांकन और सत्यापन के लिए सिस्टम बनाने चाहिए जो एआई के विकास के साथ साथ चलें, ताकि देश फ्रंटियर मॉडल की क्षमताओं को समझ सकें और एक दूसरे की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि कर सकें। तीसरा, हमें एआई मॉडल के नियंत्रण खोने और उनके गलत इस्तेमाल के जोखिमों की जांच के लिए आम वैश्विक मानक तय करने चाहिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एआई घटनाओं की सूचना देने वाले सिस्टम भी बनाने चाहिए। हमारा पक्का मानना है कि डर फैलाने वाली बातें इतनी बुनियादी और ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सही फैसले लेने या लोगों को अपने साथ जोड़ने का सही तरीका नहीं है। भले ही हम इस साइबर हमले का शिकार हुए, लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा यकीन है कि एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद होगा और दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले की बड़ी टेक्नोलॉजी ने किया था। हम पर एआई से हमला हुआ, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि हमने एआई की मदद से ही अपना बचाव किया।
0: अब सवाल यह है कि एआई से इंसानों को किस तरह का खतरा हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मुख्य रूप से एआई दो तरह के हैं। पहला है एआई चैटबॉट, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इससे सवाल पूछते हैं, ये आपको जवाब देता है, आपका टास्क पूरा करता है। आप कहते हैं ये स्क्रिप्ट लिख के दो, आप कहते हैं ये होमवर्क खत्म करके दो, टिकट बुक करा दो, तो ये आपका तरीका बताएगा कि टिकट कैसे बुक करते हैं। दूसरा है एआई एजेंट, इसे आप कोई काम देते हैं तो ये आपको कुछ बताता नहीं बल्कि वो पूरा काम कर देता है। जैसे आपको टिकट बुक करना हो तो आप इसे अपनी जानकारी दीजिए, किसी भी तरह से आपको वो टिकट बुक करके देगा। असली खतरा इस एआई एजेंट से है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक एआई एजेंट ने सरकारी वेबसाइट को ही हैक कर लिया। यह जानकारी खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों को दी है। ओपन एआई के इस एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से जुड़ी मेडिकेयर स्टेटिस्टिक्स डेटाबेस में सेंध लगा दी। इस एआई एजेंट ने डेटाबेस में अपनी सीमाओं को लांघते हुए संवेदनशील सेंसिटिव फाइल्स तक पहुंच बनाई, उसके डेटा में फेर बदल किया, नई फाइलें जोड़ दी। डर की असली वजह यह है कि इस एआई एजेंट को सरकारी अधिकारियों ने ही स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च पर रिसर्च का काम दिया था। अब आप खतरा समझ रहे हैं? आप ही एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एआई एजेंट आपने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसे कहीं आगे जाकर ऐसा काम कर रहा है जो सच और झूठ का फर्क मिटा देगा, फाइल में नई बातें जोड़ देगा, फाइल से नई पुरानी बातें हटा देगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए उसने खुद पर लगाए गए सारे सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि एआई एजेंट पर सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को उसने तोड़ दिया। फिर इसके बाद उन हिस्सों तक पहुंच गया ये एआई एजेंट जहां उसे जाने से मना किया गया था। अब आप सोचिए कि ये एआई एजेंट इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने अपने लिए बनाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। एक तरह से उसने इंसानों द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं माना। अभी 2 महीने पहले ओपनएआई ने एक साइबर अटैक के बारे में दुनिया को बताया था जो उसके ही बनाए गए चैट जीपीटी एजेंट्स ने किया था। कंपनी का कहना था उनके एआई एजेंट्स बागी हो गए थे। इन बागी एआई एजेंट्स ने बिना कमांड के कंपनी के सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरी कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया था। ओपनएआई ने अपने एआई एजेंट्स को साइबर सिक्योरिटी टेस्ट का काम दिया था। उन्हें एक अलग सिस्टम पर रखा गया, इस सिस्टम का इंटरनेट एक्सेस भी सीमित कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इन एआई एजेंट्स ने टास्क पूरा करने के लिए आपस में ही एक मैसेज बोर्ड बनाया, उससे बात करनी शुरू की, फिर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया। और इसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हगिंग फेस के सिस्टम को हैक कर लिया। हगिंग फेस ने तो इस हैकिंग को एआई एजेंट्स के द्वारा खुद से की गई हैकिंग कहा है। एंथ्रोपिक में भी ऐसा ही हुआ था। उनके एआई एजेंट्स ने भी साइबर सुरक्षा जांच के दौरान बिना कमांड दिए 3 कंपनीज के सिस्टम को हैक कर लिया। पर हैरानी की बात यह थी कि एआई एजेंट्स को कहा गया था कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके बिना ही उसे सुरक्षा जांच करनी है। बावजूद इसके उन एआई एजेंट्स ने इंटरनेट एक्सेस हासिल किया, 3 कंपनीज के सिस्टम्स में घुस गया। मतलब काम पूरा करने के लिए उसने इंसान द्वारा दिए गए आदेश को नहीं माना। सिर्फ यही एक खतरा नहीं है बल्कि एआई का एक खतरा इसका गलत इस्तेमाल भी है। एंथ्रोपिक ने इसी महीने दावा किया कि येमेन के हूती विद्रोहियों ने उनके एआई एजेंट के जरिए हाईटेक हथियार, खतरनाक मिसाइल्स बनाने की कोशिश की। एंथ्रोपिक का कहना है कि ये लोग हथियार बनाने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि उनका टेस्ट फेल हो गया था और कंपनी ने इन यूजर्स का एक्सेस बंद कर दिया। पिछले महीने साउथ कोरिया की साइबर सुरक्षा कंपनी जिनियंस ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप किमसुकी ने साइबर अटैक के लिए AI एजेंट्स का इस्तेमाल किया। ये AI एजेंट्स उनके लिए नॉनस्टॉप ऑटोमेटिक फिशिंग अटैक कर रहे हैं। हाल ही में चाइना के एक हैकर ने डीपसी, किमी और क्लॉड के AI एजेंट्स का इस्तेमाल करके 5 दिन के अंदर 100 से ज्यादा कंपनीज पर ऑटोमेटिक साइबर अटैक किए, 6 लाख क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां चुरा ली। साइबर अटैक, हैकिंग और हथियार बनाने में AI एजेंट्स की मदद लेना दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन एक खतरा इससे भी बड़ा है। दुनिया में कई लोग और समूह AI से जैविक हथियार बनाने की कोशिश में लगे हैं। कल्पना कीजिए, एंथ्रोपिक ने इसी महीने थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनके AI मॉडल्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में किया है। उसे डर है कि ये प्रयोग जैविक हथियार बनाने की कोशिश हो सकती है। कंपनी के मुताबिक एक ग्रुप उनके AI एजेंट्स को चिकनगुनिया वायरस को तेजी से फैलाने और इंसान के इम्यून सिस्टम को तोड़ने का काम दे रहा था। इसी तरह से एक यूजर उनके AI एजेंट को बर्ड फ्लू वायरस के हवा में फैलने से जुड़े उसके गुणों के अध्ययन का काम दिया हुआ था। यानी मुमकिन है कि कुछ लोग AI का इस्तेमाल ऐसे हथियार बनाने में कर रहे हों जिससे पूरी मानव जाति को खतरा। और इन्हीं खतरे के बारे में टेक कंपनीज के CEOs ने UNSC की बैठक में दुनिया को आगाह किया है। बिहार के जमुई का वो घिनौना मंजर अभी आंखों से ओझल भी नहीं हुआ था। वो खौफ, वो चीखे, वो बेबसी अभी जहन से मिटी भी नहीं थी कि अब बिहार के समस्तीपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और बर्बर वीडियो सामने आया है। आखिर किस दौर में जी रहे हैं? क्या ये सड़कें, ये पार्क, ये रास्ते अब बेटियों के लिए आदमखोरों का अखाड़ा बन चुके हैं? समस्तीपुर में एक नाबालिग बच्ची अपने दोस्त के साथ बाइक से गुजर रही थी, तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से 4 आदमखोर निकले। पहले लड़की के साथ मौजूद लड़के को पीट पीट कर खदेड़ दिया, फिर उस अकेली बेसहारा नाबालिग बच्ची को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इन दरिंदों के सामने भी वो बच्ची डट कर खड़ी रही, मुकाबला करती रही। ये आदमखोर उस मासूम को चारों तरफ से जैसे नोच रहे थे। कभी उसके बाल पकड़े जाते थे, कभी उसकी असमत पर हाथ डाला जाता था, कभी जुबान से भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। आखिर बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस कर क्या रही है? वही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अब बिहार में कोई भी बच्ची आराम से किसी भी कोने में देर रात तक घूम सकती है, क्या उनको ये सब दिख नहीं रहा है? वो तो ये बच्ची थी, वो डरी नहीं, वो गिड़गिड़ाई नहीं, वो उन भेड़ियों के सामने तनकर खड़ी रही, उनका डट कर विरोध करती रही, उनसे जूझती रही, लड़ती रही। मगर अफसोस, वहां मौजूद किसी इंसान की गैरत नहीं जागी जो इसे बचाते। और पुलिस का तो खैर ठिकाना ही नहीं है। और जो लोग वहां खड़े थे वो तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, और पुलिस नदारद।
2: नाम लिया भाई, किशोर भाई,
3: क्या है
0: और अब आपको एक ऐसे सनसनीखेज मामले के बारे में बताएंगे जिसने तमिलनाडु में कानून, प्रशासन, सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है, जिसे तमिलनाडु की एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। जिस व्यक्ति को तमिलनाडु का एप्स्टीन कहा जा रहा है उसका नाम है आर वीरामणि। तमिलनाडु का 84 साल का ये उद्योगपति आर वीरामणि मशहूर ग्रेनाइट कारोबारी और जेम ग्रुप का चेयरमैन है। आरोप है कि ताकत, पैसा, रसूख की आड़ में उसने गरीब कमजोर वर्ग की नाबालिग बच्चियों का सालों तक यौन शोषण किया। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज है जो इस घिनौने अपराध का सबसे बड़ा सबूत बने हैं। लेकिन मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आपको सीमित फोटो ही ब्लर करके हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लड़कियां जो इस दरिंदे की शिकार बनी है वो कानून के सामने आए और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करे। इसीलिए हम उनकी पहचान को लेकर बहुत सतर्कता बरत रहे। ये कहानी सिर्फ एक दरिंदगी तक सीमित नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने महीनों तक फाइल को बंद करने और सबूतों को दबाने का खेल खेला। आज आपको समझना चाहिए कि कैसे एक एनजीओ की पेन ड्राइव से शुरू हुआ यह मामला अदालत की चाबुक के बाद फिर से खुला और यह पूरा सिंडिकेट अब बेनकाब हुआ है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह सिर्फ एक शख्स का अपराध नहीं बल्कि मासूमों के शिकार के लिए एक पूरा गिरोह सक्रिय था। इस पूरे नेक्सस का किंगपिन था आर वीरामणि, जो जेम ग्रेनाइट का चेयरमैन है और जिस पर कई नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। दूसरा नाम महेंद्र सिम्हन, जो कि वीरामणि का सबसे करीबी सहयोगी और ये आरोपी के साथ मिलकर इन अपराधों को अंजाम देने में मदद करता है। तीसरा नाम है शांति, जो वीरामणि के करीबी महेंद्र की पत्नी है। ये चेन्नई के चेनामे पेट इलाके में स्थित उस किराए के मकान का मैनेजमेंट संभालती थी जहां बच्चियों को यौन शोषण के लिए लाया जाता था। आरोप है कि शांति ही 12 से 16 साल की गरीब बच्चियों को पैसे और गिफ्ट का लालच देकर दलदल में लाती थी। चौथा नाम है गणेश, वीरामणि का एक और करीबी सहयोगी। इसके पास साथ अपराध से जुड़े वीडियो सबूत मौजूद थे लेकिन उसने पुलिस को इसकी सूचना ना देकर अपराध को छिपाने का काम किया।
4: I was not mature enough to foresee his bad intention and was unknowingly becoming a victim of his vicious sexual advances.
0: 84 साल के रसूखदार ग्रेनाइट कारोबारी आर वीरामणि की सच्चाई तब सामने आई, लोग हैरान रह गए हैं। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव फुटेज में वीरामणि एक नाबालिग बच्ची के साथ दिखाई दे रहा है जबकि एक दूसरे स्क्रीनशॉट में वो बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखता है। इस फुटेज की हकीकत सबसे पहले तमिलनाडु कांग्रेस के नेता एमपी रंजन कुमार के जरिए पुलिस तक पहुंची। रंजन कुमार ने दावा किया कि उन्होंने 2024 में वीरामणि जैसे दिखने वाले शख्स को स्थिति में देखा तो वो हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत पुलिस से पूछताछ की और सख्त जांच की मांग की लेकिन आरोप है कि पुलिस को सबूत सौंपने के बावजूद शुरुआती दौर में ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो
3: विश्राम।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: In India, there is a fundamental force called anti-incumbency that very quickly starts to resist any government. And it does not spare anybody. Indira Gandhi ji wins the Bangladesh war, is at the height of her popularity. And then suddenly, within a year or two, massive anti-incumbency, massive pressure. The same exact thing happens to leader after leader after leader. Happens to Congress leaders, happens to regional parties, but for some reason, it never happens to Mr. Narendra Modi, does not happen to Mr. Shah, does not happen to the BJP. Haryana swings from one party to another for 50 years. Suddenly anti-incumbency disappears. Maharashtra swings, suddenly it disappears. Uttar Pradesh swings, sometimes Samajwadi, sometimes BSP. It disappears. Madhya Pradesh, it disappears. Gujarat, it disappears. And this has been a fundamental question for us.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
5: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और लोगों की जरूरतें तय करती हैं कि उनके बोल कब तक मीठे रहेंगे. नमस्कार.
6: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: रावायो के बहाने राहुल का केंद्र पर निशाना, बोले सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच, ज्ञानेश कुमार देशद्रोही बन जाए अप्रूवर। राहुल के आरोप पर बीजेपी ने दिया पॉइंट वाइज जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है पीएम मोदी। ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, डीपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो करेंगे आंदोलन। जमुई के बाद समस्तीपुर की घटना से बिहार शर्मसार, लड़की से छेड़छाड़ केस में मंत्री अशोक चौधरी का बेशर्म बयान, ऐसी घटनाएं तो जापान अमेरिका में भी होती है। यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज हम दस्तक देंगे महाराष्ट्र और बिहार के किसानों की बदहाली पर आंखें मूंद कर बैठे जिम्मेदारों के खिलाफ। सूखे की मार से महाराष्ट्र के किसान 2 जून की रोटी जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, तो बिहार में बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसान मदद की आस में बैठा है, सरकारें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का मरहम लेकर घूम रही हैं। सवाल यही है कि किसानों को बदहाली और तंगहाली के दलदल से कौन निकालेगा? क्या हमारे देश का अन्नदाता सिर्फ नेताओं के नारों और सरकारी विज्ञापनों की तस्वीरों तक सिमट कर रह गया है? आज बिहार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को किसानों की पीड़ा बहुत गौर से, ध्यान से सुननी चाहिए।

0: सही पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते और तड़पते किसानों की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। कहीं बाढ़ का पानी उतरने के बाद अन्नदाता की जिंदगी उजड़ गई।
1: औरत के सब दागिने बागिने सब मैंने साहूकार के पास रख दिए, वो लाने को भी मेरे पास पैसे नहीं था।
2: बैंक का कितना कर्जा?
1: बैंक का कर्जा 1.5 लाख रुपए था मेरे पास।
2: अब आज रोते रोते आप उनके पास गए, आप खंधे पर हाथ भी रखा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने?
1: उन्होंने बोले कि वो आपको सब मदद कर देंगे, बोले सब मदद मिल जाएगी।
3: जितने गृहस्थी किया था 10 बीघा मूली का फसल किया था, धान मक्की का फसल किया था, साली बह गया, ब्याज पर पैसा लेकर के मैं काम किया था 5% पर। 5 लाख रुपया उसको देना है, अब कहाँ से दिया जाएगा, खाने का भी मुश्किल है।
0: आज महाराष्ट्र में सूखे से जूझता किसान बेबस है, तो बिहार में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अपना सब कुछ खो चुका किसान लाचार है। तस्वीरें दो लेकिन बर्बादी की चोट एक जैसी। सवाल यही है कि देश का अन्नदाता जिए तो जिए कैसे?
4: मुख्यमंत्री क्षेत्रीय खेत बांध पे आ गए, उन्होंने आश्वासन दिया, अब देखते हैं उनके आश्वासन कितना सच होता।
5: मकई लगे ये सब दहाइए, सब दहाइए अगले पानी में, कोई सरकार कुछ नहीं दे छे,
2: तक नुकसान होले
5: लाखों रुपया नुकसान होले, लाखों रुपया नुकसान होले, कोई कुछ मिले वाला नहीं छे सरकार तरफ से कुछ नहीं।
2: सूद पर पैसा लेके करते हैं,
5: सूदी पर पैसा लेकर सब चीज कर लिए।
0: महाराष्ट्र में सूखे से तबाह हुई फसल के बीच बैठा किसान सरकार से मदद की आस पे बैठा है, तो बिहार में मुआवजे की फाइलें कागजी खाना पूर्ति में अटकी हैं।
6: बहुत सारा परेशानी है हमारे तरफ, मवेशी का चारा खत्म है, खेत सारा नुकसान हो गया है, कर्ज लेके खेती किए थे,

0: रिटर्निंग में कुछ नहीं आ रहा है, ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना मुखिया, विधायक, सरपंच, कोई इधर कुछ नहीं कर रहा है।
1: कड़वी सच्चाई यही है कि कुदरत के कहर और जिम्मेदारों की अनदेखी के बीच चक्कर घिरनी की तरह घूम रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसान। कुदरत का संकट अलग है, लेकिन सवाल यही है कि बर्बादी के बाद अनदेखी की मार किसान कब तक झेलता रहेगा। जिन खेतों में कुछ महीने पहले उम्मीद बोई थी, आज उन्हीं खेतों में सूखे से नष्ट हुई फसल है। आंखों में आंसू हैं और मदद के लिए सरकार के सामने अन्नदाता हाथ जोड़कर गुहार लगाने को मजबूर है।
2: महाराष्ट्र में कुदरत के क्रोध ने खेतों की हरियाली छीन ली है। बिल्कुल इस तरफ मेरे पीछे किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है कुदरत ने। आज अन्नदाता किसान 2 जून की रोटी जुटाने के लिए खुद जूझ रहा है। फसल पहले ही चौपट हो चुकी है, सर पर कर्ज का बोझ जिंदगी के बोझ से भारी है। सवाल यही है कि किसान बेचारा जाए तो जाए कहां। आज हम आपको महाराष्ट्र के किसानों की आपबीती दिखाएंगे, सुनवाएंगे, आपको दिखाएंगे आखिर सूखे ने किसानों की जिंदगी को कैसे नरक बना दिया है और सरकार की तरफ से राहत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री किसानों से मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री किसानों से मिल रहे हैं, सरकार के मंत्री किसानों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। मांग यही है कि आश्वासन नहीं बल्कि राहत चाहिए।
3: खाली नांदेड़ में आके बैठे वो छांव में बैठे गए, कूलर में एसी में बैठ के गए। तो खेत में आने वाले नहीं, देखो अभी कैसा है, कैसा तो गांव में पसीना निकल रहा है आंगन से, वो जो देखो पसीना निकल रहा है। इधर आते नहीं, इधर आए तो वो उनकी बुखार आई समझो, आते नहीं वो फ्री या क्या वो कूलर में क्या वो ठंडे में बैठने वाले उसको चलता नहीं वो।
1: मानसून की बारिश का इंतजार किसानों के लिए सिर्फ इंतजार बनकर रह गया। खेतों में सोयाबीन और कपास की फसल पानी की कमी से बर्बाद हो गई। किसानों ने कर्ज लेकर उम्मीदें बोई थी, लेकिन सारी खुशियों को कुदरत ने ग्रहण लगा दिया। हालात ये हैं कि सूखे के चलते किसान ना घर का बचा है ना घाट का।
4: 2015 में मेरे आदमी ने आत्महत्या की है, शेतकरी आत्महत्या की है। मेरे को एक ही लड़का है, वो काम पर जाता, मैं अकेली भाई ये खेत में काम करके पैसा लगा के वो फसल निकालती, ये साल कुछ भी नहीं तो मैं क्या करूँ।
5: आंखों में पानी है आपकी।
4: हाँ मैं क्या करूँ, अकेली भाई हूँ मैं।
1: बारिश के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं। इन जिलों में अमरावती, नागपुर, वर्धा, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, हिंगोली, परभणी, बीड, सोलापुर, सांगली और सतारा में किसानों पर सूखे की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। अकोला से यवतमाल तक किसानों की यही मांग है कि महाराष्ट्र में सूखा घोषित हो ताकि किसानों को मौसम की मार से बचाया जा सके।
5: आपके आंसू क्यों फूटा है, क्या इतना संकट आया है
6: कि साहब स्कूल में जाने को जो मेरे बच्चों का स्कूल में जाते, मेरे बच्चे के वास्ते स्कूल में जाने के पैसे नहीं मेरे पास, इसके वजह से मेरे पास 5 एकड़ खेती है, पूरा खेत बर्बाद हो गया मेरा। अब रोटावेटर करने को उसमें मजदूर बोलने को भी बाहर नहीं, कुछ पैसा नहीं मेरे पास।
1: दरअसल महाराष्ट्र का करीब 84% हिस्सा सूखा ग्रस्त है। राज्य के आधे से ज्यादा हिस्से यानी 56.5% हिस्सा आज भीषण सूखे की मार झेल रहा है।
7: ये जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो गई। अभी सोयाबीन तो गया, अभी रह गई कपास। कपास भी एक एक दो दो बोंडा है कपास को, उससे भी बोंडली आ रही हमारी तरफ। हमारी सरकार को यही मांग है हमारी कि दिवाली के पहले जल्दी से जल्दी पंचनामा करके सूखा दुष्काल जाहिर करे और हमारी जो दिवाली है वो मिट्टी करे।
1: राज्य की रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में बारिश में बड़ी कमी दर्ज की गई है। सोलापुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां 56% बारिश की कमी रही। यहां 21 से 43 दिनों तक बारिश नहीं हुई। वहीं मराठवाड़ा के दूसरे जिलों लातूर, धाराशिव, बीड और परभणी में बारिश की कमी 35 से 40% के बीच रही। सरकार की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि फसलों को 60% से ज्यादा नुकसान हो सकता है। सोयाबीन की फसल में 80 से 90% तक गिरावट, मूंग और उड़द में भी 80 से 90% तक गिरावट का अनुमान है। वहीं बाजरा, मक्का और तोर की फसल में 60 से 70% तक गिरावट हो सकती है। सरकार भी मानती है कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से हालात बद से बदतर हैं। खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है
8: और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों का। इसलिए सरकार ही किसानों की सरकार है और इसमें सरकार पूरी तरह किसानों के साथ में रहेगी।
1: वहीं मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि शनिवार तक एक

0: चाहिए। इसके लिए जल्द किसानों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू कराया जाएगा। हालांकि किसानों की मांग पर असल राहत तभी मिलेगी जब सरकार आधिकारिक तौर पर सूखा घोषित करेगी। मतलब यही है कि महाराष्ट्र में सूखा घोषित करने की मांग बढ़ रही है, क्योंकि पानी की किल्लत से खरीफ की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है और रबी की फसल की संभावनाएं धूमिल हैं। सवाल यही है कि सरकार आधिकारिक तौर पर सूखे का ऐलान क्यों नहीं कर रही। दरअसल सरकारी तौर पर किसी राज्य में अकाल की कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है। एनडीआरएफ के नियमों के मुताबिक खरीफ फसल के लिए सूखा घोषित करने के लिए एक आकलन की जरूरत होती है, जो मॉनसून खत्म होने के बाद ही 5 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। बड़ी बात यह है कि राज्यों को स्थानीय हालात के आधार पर सूखा घोषित करने का अधिकार है, लेकिन केंद्र से आपदा राहत कोष पाने के लिए एक रिपोर्ट सौंपनी होती है। राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा बल की तरफ से इसके लिए एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन के मुताबिक फसल के नुकसान के आंकड़े, बारिश में कमी, नमी पर्याप्तता सूचकांक मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन, फसल उत्पादन में आई गिरावट, कुल कृषि योग्य भूमि के 50% से कम क्षेत्र में ही बुआई होना, पीने के पानी की कमी गंभीर होनी चाहिए, भूमिगत जल स्तर का घटना, बारिश की कमी 70% तक पहुँचना। आंखों में आंसू हैं और उम्मीद यही है कि संकट की घड़ी में सरकार महाराष्ट्र में सूखा घोषित करके किसानों की खाली झोली को भर देगी।
1: आपने सूखे से मारे किसानों का हाल महाराष्ट्र का देख लिया है, कितना महाराष्ट्र के किसान परेशान है। और अब कैसे यहां देखिए, इस तरफ बिहार में बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं हमारे किसान। बिहार का हर वर्ष 73% उत्तरी हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। नेपाल से आने वाली नदियां कोसी, गंडक, बागमती बिहार में तबाही मचाती हैं और इस वर्ष बिहार में 50 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो 15 जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है और इस बाढ़ में 10,000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। बिहार में बाढ़ का पानी भले ही अब उतरने लगा हो, लेकिन इस बीच कैसे फसलों की बर्बादी हुई है। खेत खलिहान घर बार सब कुछ तबाह हो गए हैं। उनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तकलीफ देती हैं। आज तक इन किसानों का दर्द जानने पहुंचा तो किसानों और बाढ़ पीड़ितों ने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई और वो दर्द भरी दास्तां आपको और हमें विचलित कर देगी।
0: ये बिहार की त्रासदी है जो हर साल आती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, हजारों करोड़ का नुकसान होता है और बिहार की विडंबना यह है कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ से बर्बादी की नियति नहीं बदलती। जब चुनाव होते हैं वादे बहुत होते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो कुछ इस तरह से बिहार की बाढ़ वाली बर्बादी से मुंह मोड़ लेती हैं। आज बिहार के बाढ़ पीड़ित इलाकों की जो दुर्दशा है, सच यही है कि लोग दाने पानी को मोहताज हैं। बिहार में बाढ़ ने ऐसी दुर्गति की है कि फसलें तबाह हो गई हैं, घर बार उजड़ गए हैं, गरीब किसान रो रहे हैं, बाढ़ से तबाह हुए खेतों को देख रहे हैं। किसी ने ब्याज पर पैसे लेकर फसल उगाई थी, किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी खेत में लगाई थी, अब न खेत बचे हैं और न फसलें। बाढ़ की विनाश लीला, किसानों का सब कुछ लील गई है। बेचारे किसान और बाढ़ पीड़ित परिवार सरकार की तरफ राहत की उम्मीदों से देखते हैं, लेकिन जब राहत राशि बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिलती तो उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। आज हम आपको बाढ़ की त्रासदी से जूझते बिहार का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिस पर सरकार का जागना जरूरी है। आरा बिहार, बर्बाद हुई फसलें, कर्ज में डूबे किसान,
2: बहुत सारा परेशानी है। हमारे तरफ मवेशी का चारा खत्म है, खेत सारा नुकसान हो गया है, कर्ज लेके खेती किए थे, रिटर्निंग में कुछ नहीं आ रहा है, ना कोई देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना मुखिया विधायक सरपंच कोई इधर कुछ नहीं कर रहा है।
0: बाढ़ का पानी

0: भले ही उतर गया, लेकिन लोगों को बर्बादी के उस दलदल में धंसा गया है जहां से निकलने का रास्ता भी किसान को नहीं दिखाई दे रहा।
1: जितने गृहस्थी किया था 10 बीघा, मूली का फसल किया था, धान मक्के का फसल किया था, साली बह गया, ब्याज पर पैसा लेकर के मैं काम किया था 5%, 5 लाख रुपया उसको देना है, अब कहाँ से दिया जाएगा, खाने का भी मुश्किल है।
0: लोगों ने बाढ़ से पहले अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर सारा पैसा खेतों में लगा दिया और अब ना फसल बची है ना पैसा, किसान जाए तो जाए कहाँ।
2: खेती की गृहस्थी के तो वो बुरा हाल हो गया है जो कुछ कहने योग्य नहीं है, हम में हिम्मत नहीं है जो कुछ बोल सके।
0: सरकार से एक आखिरी उम्मीद रहती है और वो भी दरक रही है।
3: सरकार भी नहीं दे रहे कुछ, तिरपाल भी नहीं मिला।
4: सरकार तो कह रही है कि पैसा दे रहे हैं,
3: हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है, सब लोग का मिल रहा है, हम लोग का नहीं मिल रहा है।
0: नवगछिया भागलपुर बिहार, बाढ़ से तबाह हुए खेत खलिहान, खेतों में खड़ा पानी, चौपट फसलें किसानों की बर्बादी की गवाही दे रही हैं।
5: बाढ़ की समस्या ने उसके चपेट में आ जाने से बहुत किसान मजबूर हैं, क्या करें क्या नहीं करें, लोगों से कर्ज लेके उनको किस तरह से कर्ज मुक्त होगा, ये सरकार इस पर कुछ निर्णय नहीं ले रही।
0: नवगछिया के किसान कहते हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।
6: 2 बीघा मकई लगे ले सब दहाई ले, सब दहाई अगले पानी में, कोई सरकार कुछ नहीं दे छे।
0: बेगूसराय बिहार, बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहे परिवार। बेगूसराय में बाढ़ तो खत्म हो गई लेकिन अब मुसीबतों ने घेर लिया है, कीचड़ है, कहीं कहीं पानी भी जमा है। पिछले 2 महीने से लोग सड़क किनारे जीवन गुजार रहे हैं।
7: एक बेला खाते हैं, एक बेला नहीं खाते हैं, यही सब दिक्कत है, पानी नहीं निकल रहा, घर द्वार डूबा धसा हुआ है।
8: कितना दिन से पानी है?
7: 2 महीना से पानी है सर, 2 महीना से बाल बच्चा को लेकर रोड पर रहते हैं।
0: फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बेगूसराय के किसान कहते हैं पहले फसल उगाने के लिए कर्जा लिया और अब घर चलाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा।
9: फसल सब बर्बाद हो गया एकदम, 1 महीना तक पानी रहा पूरा खेत में डूबा,
8: सब फसल बर्बाद,
9: सब गल गया, एकदम बर्बाद हो गया।
8: तो घर कैसे चलेगा आगे?
9: घर अब कर्जा ऋण ले के नहीं चलेगा, भगवान मालिक है।
10: सब क्षति हो गया, तो कर्जा पैसा लेकर लगा कुछ नहीं हुआ, सब गल पच गया, फिर कातिक बुनेंगे, फिर कर्जा पैसा लेंगे तब न बुनेंगे।
0: बाढ़ में बर्बाद हुए गांव में सरकार ने मदद के नाम पर 7,000 रुपए तो बांटे हैं लेकिन वो भी किसी को मिले और किसी को नहीं।
11: पानी दिक्कत, अभी रोड पर रह रहे हैं सर, हम भूमिहीन है, हमको जमीन नहीं है सर, हम सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं।
8: राहत मिल रहा है सरकार की तरफ से?
11: सरकार के तरफ से कहां राहत, 7,000 रुपया जो मिला है सो वही मिला है, दिया था 2-4-5-10 रोज न खिचड़ी खाने के लिए 8।
12: बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है, किसी ने कर्ज लेकर फसल बोई है, किसी ने अपनी पूरी जमा पूंजी खेत में लगा दी है, फसल उगाने में लगा दी, लेकिन अब ना फसलें बची ना खेत बचा ना जिंदगी को आगे चलाने के लिए कोई पूंजी बची। बिहार के किसान सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया है लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक 1 रुपया तक नहीं मिला है। और तो और बाढ़ पीड़ित ये भी कह रहे हैं कि 7,000 रुपए से हमारा क्या होगा।
0: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार। ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है, पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया।
13: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है, देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं जो रह रहकर बारिश हो रही है, बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी, इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या जो है वो सामने है।
0: खेत आज भी लबालब हैं, जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
13: सरकार सबको जो राहत का पैसा
14: नहीं मिला है,
13: पानी कम हुआ है काफी?
15: हाँ, पानी कम हुआ है काफी,
13: अभी भी घर सूखा नहीं है,
15: गीला है घर तो।
0: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
13: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
15: वही मिला है 7,000, 7,000 से क्यों होगा।
0: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
16: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
0: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
17: ना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियाँ ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
0: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है,
17: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है, जो आ रहा है अपना TRP बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
0: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
18: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
19: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
18: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
12: दशक में एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे मुंह में दोस्ती दिल में दुश्मनी, अमेरिका पहुंचे जिनपिंग के स्वागत में कैसे बिछ गए ट्रंप, देखते रहिए।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कोलर स्पा एट होम। What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
23: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
24: GK Max.
25: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
24: GK Max. Best पुट्टी?
25: JK Wall Max.
24: Best paint?
25: JK Max.
24: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है।
6: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
6: ओ बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
8: ओ ला बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
12: AU सोच बदलो और बैंक भी।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
2: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
1: स्मॉल बैंक?
2: स्मॉल Privilege Savings Account, Garima Savings Account, Maxima Business, Edge Current Account, Business, Maxima Business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
1: Okay.
2: Ujjivan, nothing small about us.
3: Oof. ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
4: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
3: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायफ्री जूस।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार बार बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
7: कैची है, वायरल है।
6: थैंक यू।
8: आप पे वो DMT बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
9: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
6: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
10: ये एड को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता। नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
8: उनादान परिंदे, बैठ
7: बैठ बैठ।
8: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
7: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम सॉलिड।
1: वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
7: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
8: 15 जिले बाढ़ से प्रभावित। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बिहार की नियति क्यों बना दी गई है?
9: क्या कारण है अभी भी बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित?
10: पैसा इतना कहाँ से लेके आएंगे जो ये पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता है?
4: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
11: आपने टाइमलाइन दे दिया है 2020 पलायन रोकने के लिए।
12: इतना कॉन्फिडेंस हो के कह रहा हूँ कि 2030 तक बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। कितना जरूरत है
4: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।
13: न्यूयॉर्क में भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। बैठक में भारत अमेरिका संबंधों के साथ रूस और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। जयशंकर ने रूबियो के सामने सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट को लेकर भारत के हितों और चिंताओं को रखा। दोनों नेताओं ने गल्फ और यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा की। अमेरिका की ओर से कहा गया कि भारत और अमेरिका क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर लगातार तालमेल कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सहयोग पर चर्चा हुई। नए अमेरिकी कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार है। भारत ने साफ किया कि उसकी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और एआई जैसे मुद्दों पर सहयोग जारी रखने पर भी जोर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 19 अक्टूबर को भारत का दौरा कर सकते हैं। न्यूयॉर्क से ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर अमेरिका का दबाव बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक। और अब खबर दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों की। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। उनका स्वागत खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने किया। शी के साथ उनकी पत्नी पेंग लियोन भी अमेरिका पहुंची हैं। लेकिन अमेरिका और चीन तक पूरी दुनिया में हर कोई ये जानना चाहता है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आइए हम आपको दिखाएं चीन के राष्ट्रपति का ये अमेरिका दौरा क्यों दुनिया के लिए बड़े मायने रखता है।

0: दो महाशक्तियों का मिलन दुनिया भर में चर्चा। शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा, रेड कार्पेट पर वेलकम। जिनपिंग को 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर। जिनपिंग और ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता, दोनों में क्या बात हुई? पहले टैरिफ और ट्रेड वॉर, अब जिनपिंग के आगे क्यों बिछे ट्रंप? ये तस्वीरें व्हाइट हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के औपचारिक स्वागत की हैं। वॉशिंगटन में जिनपिंग का ग्रैंड वेलकम किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका पहुंचने पर राष्ट्रपति जिनपिंग का स्वागत करने के दौरान दो अमेरिकी B-1B लैंसर बम वर्षकों ने उड़ान भरी, जो ट्रंप की ताकत दिखाने की आदत का हिस्सा थे। इस फ्लाईपास्ट को इसलिए रखा गया था कि जिनपिंग इम्प्रेस हो जाएं, लेकिन वीडियो में जो दिखा वो अपने आप में चौंकाने वाला था। जी हाँ, अपने ही बम्बर की आवाज सुनकर ट्रंप ने आंखें बीच ली, दांत बीच लिए, जबकि जिनपिंग इस दौरान बिल्कुल शांत खड़े रहे। वैसे तो अमेरिका की सुपर पावर वाली धमक और चमक फीकी पड़ रही है, फिर भी वो ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहा। पिछले साल अलास्का में पुतिन का स्वागत ट्रंप ने उनके ऊपर से B-2 बम वर्षकों को उड़ाकर किया था, और अब जिनपिंग पहुंचे तो उनके ऊपर से दो B-1B लैंसर बम वर्षकों को उड़ाया गया। यही नहीं, वो ट्रंप जिन्होंने चीन पर 104% टैरिफ लगा रखा था, उन्होंने न सिर्फ 100 फीट लंबा रेड कार्पेट बिछाकर जिनपिंग का स्वागत किया, बल्कि व्यापार युद्ध पर चीज फायर को 2 महीने तक आगे भी बढ़ा दिया। 11 साल बाद जिनपिंग अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमानों का स्वागत व्हाइट हाउस में ही करते हैं, लेकिन ट्रंप और मेलानिया मैरीलैंड के उस मिलिट्री बेस पर पहुंचे जो वॉशिंगटन के बाहर स्थित है, और फिर दोनों ने चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत खुद किया। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध को जनवरी 2027 तक रोक दिया है, लेकिन ट्रंप जिनपिंग की बातचीत में ये एक बड़ा मुद्दा है। वहीं AI और ईरान के अलावा रूस यूक्रेन जंग जैसे मुद्दे भी चर्चा में शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने तकनीक से जुड़ी बड़ी हस्तियों को जिनपिंग के साथ डिनर पर बुलाया है। उनमें OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, NVIDIA, Meta और दूसरी कंपनियां शामिल हैं।
1: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people. We have spent time together all over the world, from Germany to Argentina, Japan to South Korea, and Beijing to Palm Beach, Florida. But remarkably, this is our first time meeting together here at the White House. If we focus on our common interests, I'm confident there is much we can achieve. Throughout history, pursuit of those common interests has connected our people across the vast oceans, is those big, tremendous distances and many differences, and even made us allies in World War II. Look at the greatness that we had together fighting in World War II.
0: लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जिनपिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कार्पेट बिछा दिए, उसी चीन ने अमेरिका को एक मैसेज क्लियर कर दिया। जी हाँ, अमेरिका पहुंचते ही जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार यानी पार्टनर बनकर रहना चाहिए। और जब जिनपिंग ये कह रहे थे, तब ये खबर आई कि जिनपिंग के दौरे से अमेरिका को ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिकी विमान कंपनी चीन से 500 विमानों के ऑर्डर मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कहा जा रहा है कि मई में ट्रंप के दौरे पर जो 200 विमानों का ऑर्डर मिला था, वही पक्का हो जाए तो बहुत है। द एटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक शी निजी रिश्तों से ज्यादा चीन के हित को महत्व देते हैं। पिछले 2 साल में इसके 2 उदाहरण भी सामने आए। दोनों मामलों में चीन के जवाब के बाद अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में होने वाला स्टेट डिनर सिर्फ राजकीय भोज नहीं होता, ये अमेरिका की ओर से किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला खास सम्मान है। ये सिर्फ खाने पीने का कार्यक्रम नहीं है, इसके जरिए अमेरिका दूसरे देश के साथ अपने रिश्तों की अहमियत भी दिखाता है। इसीलिए किसी विदेशी नेता को स्टेट डिनर देना अपने आप में खास माना जाता है। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: आइए हम आपको सीधे इस समय वॉशिंगटन हमारे संवाददाता रोहित शर्मा के पास लिए चलते हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, इतना ग्रैंड वेलकम और वो भी जिनपिंग का, क्या भाई ऐसा तो नहीं कि जुबान पर कुछ है, दिल में कुछ है ट्रंप के?
3: देखिए, दोनों देश जो है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में रहे हैं और ऑब्वियसली गर्मजोशी दिखी हमें इनॉग्रल सेरेमनी में। राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए, जिस तरह की बातें कही गई इनॉग्रल जो रिमार्क्स थे उसमें दोनों ने कहा कि साथ में मिलकर काम करना है, आगे साथ में चलना चाहिए, पूरे विश्व को आगे ले जाने की बात की गई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी चीजें जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे सही। और ये हमें समझना होगा कि अमेरिका, मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि जब कोल्ड वॉर चला था रशिया से भी एंगेज किया करता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक एक्नॉलेजमेंट है कि चाइना जो है सुपर पावर है। और अब ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में जो है मीटिंग शायद खत्म हो गई है, हो चुकी है, क्योंकि शी जिनपिंग की जो कार है वो हमारे पीछे आके खड़ी हुई है, तो शायद वार्ता खत्म होगी। अब देखना होगा कि सचमुच इसमें से कुछ क्या एग्जैक्टली चीजें बाहर निकलती हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या कुछ डिलीवरेबल या टेंजिबल आउटकम है या नहीं।
2: ठीक है, तो द्विपक्षीय वार्ता का आपने ये कहा कि अभी हमें इंतजार करना होगा कि क्या क्या निकल कर आ सकता है, लेकिन ये जो दौरा है जिनपिंग का, ये अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है रोहित?
3: देखिए, अमेरिका के लिए दो लिहाजों से बहुत जरूरी है। पहला कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड और टैरिफ का वॉर शुरू किया था उसमें सिर्फ चाइना को छोड़ के कोई और मुल्क अमेरिका को नहीं झुका पाया, ये हर किसी को पता है। दूसरी चीज क्रिटिकल मिनरल्स की जो बात है, रेयर मिनरल्स की जो बात है, अर्थ एलिमेंट्स की, वो अमेरिका को चाहिए। ये जो पूरा जो कंपटीशन है, अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को देखें, सुबह भी उन्होंने एआई को लेके बात की और एआई रेस जो जीतेगा वो डोमिनेट करेगा इस सेंचुरी में, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ये कि अमेरिका के पास एक्सेस हो रेयर अर्थ मिनरल्स का
2: जी।
3: और उसको लेके ये कोशिश ये है कि उनको मनाया जाए, उनसे बातचीत की जाए।
2: ठीक है, बिल्कुल, हमें रोकना पड़ रहा है रोहित, आपको समय की थोड़ी सी कमी, बहुत धन्यवाद। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता। अब खबर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान के भाषण पर नया घमासान छिड़ गया। ईरान का दावा है कि यूएन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने झूठ बोला, ईरान को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। वहीं व्हाइट हाउस ने ईरान के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आखिर अमेरिका और ईरान के बीच जारी जुबानी युद्ध का मतलब क्या है? क्यों ईरान ने अमेरिका का साथ देने को लेकर खाड़ी के देशों को नई धमकी दी?

0: यूएन में ईरान का ट्रंप पर सीधा हमला। ईरान बोला, हमला हुआ तो लेगा बदला। आईआरजीसी की मिडल ईस्ट को नई चेतावनी। ईरानी विमान पर लगाया बैन तो खैर नहीं। ईरान की धमकी, खाड़ी देशों की जान अटकी। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन वॉर जोन में बीते कुछ दिनों से शांति है। ना तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर नया हमला हुआ है और ना ही ईरान ने अमेरिका के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ हूती और सऊदी अरब के बीच शांति है, लेकिन यूएन में अमेरिका और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों के भाषण के बीच एक बार फिर हॉर्मुज के करीब जहाज को निशाना बनाया गया। आरोप यही है कि जहाज पर हमला ईरानी सेना की तरफ से किया गया। तो क्या हॉर्मुज पर नया हमला अमेरिका को उकसाने के लिए किया गया? क्योंकि यूएन में भाषण के बाद ट्रंप ने यही दावा किया है कि पर्दे के पीछे से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है।
1: स्टीव एंड जेरेड हैड अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद मीडिएटर्स ऑफ ईरान, मेरली मीडिएटर्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट। दे हैव बीन मीडिएटिंग फॉर अ व्हाइल, बट आई थिंक देयर इज a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
0: भले ही ट्रंप ने ईरान के साथ शांति को लेकर बातचीत होने की बात कही, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत को खारिज कर दिया गया। अमेरिका को लेकर ईरान की लाइन एकदम साफ है, बातचीत होगी तो उनकी शर्तों पर। अगर अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने के लिए नया हमला किया गया तो ईरान पलटवार के लिए तैयार है।
2: No. किसी विदेशी ताकत के साथ कोई भी रिश्ता इस इलाके के पड़ोसी देशों को धमकाने का जरिया नहीं बन सकता। उन्होंने हम पर युद्ध थोपा, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि हम लड़ने या युद्ध लड़ने से डरते नहीं हैं, खासकर जो हम पर थोपा गया हो। और हम अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यारे ईरान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहेंगे।
0: ईरान के राष्ट्रपति पेदेशकियान ने इसी अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब दिया, क्योंकि ईरान के लिए ट्रंप की जुबान से बार बार धमकी निकल रही है।
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic? And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
0: ट्रंप यही सोचते हैं कि ईरान पर दबाव बनाकर सरेंडर के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ईरान झुकने के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लॉन्ग टर्म वाले प्लान पर कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में ईरानी सेना के प्रमुख ने यूएन में ईरानी राष्ट्रपति के भाषण की जमकर तारीफ की। यूएन महासभा में ईरान के राष्ट्रपति ने अपने भाषण के जरिए ईरान के गौरवशाली इतिहास की आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद किया है। पेदेशकियान ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के अपराधी राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया है। ईरान के चीफ जस्टिस एजेई ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ईरानी राष्ट्रपति इस्लामी क्रांति के शहीद नेता आयतुल्ला सैयद अली खामिनेई की आध्यात्मिक विरासत पर भरोसा करते हैं और ईरानी लोगों के वैध अधिकारों का जोरदार बचाव करते हैं। पेदेशकियान के भाषण ने अमेरिकी और इजरायली अपराधियों को भी शर्मिंदा किया। न्याय के लिए ईरानी राष्ट्र की पुकार अब दुनिया भर के स्वतंत्र लोगों के बीच गूंज रही है। ये स्पष्ट है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता में कई युद्ध अपराध किए हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से यूएन में दिए गए भाषण की निंदा की है। ईरानी शासन ने अपने ही हजारों लोगों की हत्या की है, विदेशों में अमेरिकियों को मारा है, हॉर्मुज में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है और क्षेत्र में अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले किए हैं। राष्ट्रपति साहस पूर्वक ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसा दुष्ट देश कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए, जिससे पूरी दुनिया ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बनेगी। जुबानी जंग के बीच IRGC की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है। धमकी में यही कहा गया है कि ईरान पर नया हमला हुआ तो विध्वंसक पलटवार को छेड़ने के लिए अमेरिका तैयार रहे। ईरान किसी भी सैन्य आक्रामकता का जोरदार जवाब देगा। अगर अमेरिका ईरान में किसी भी लक्ष्य पर हमला करता है तो देश एक शक्तिशाली जवाब देगा। माउंट कोलांग के आसपास की अटकलों पर कोई निश्चित राय नहीं देंगे, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरानी क्षेत्र पर किसी भी अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। यदि अमेरिका ईरान में किसी भी स्थान पर, चाहे वो माउंट कोलांग हो या कहीं और, हमला करने का इरादा रखता है तो IRGC पूरी ताकत से जवाब देगी। ईरान की रक्षा क्षमताएं युद्ध के मैदान में प्रदर्शित होती हैं, मीडिया में नहीं। ईरान के आत्मरक्षा के दृढ़ संकल्प के सामने अमेरिका कभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ईरान ही बातचीत की शर्तें तय करेगा। हम ही हैं जो दुश्मन पर अपनी शर्तें और मांगे थोपते हैं। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ अगर भविष्य में कोई बातचीत होगी तो ईरान की शर्तों पर ही होगी। जब तक ईरान की 7 शर्तों को अमेरिका नहीं मानेगा तब तक युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। 1989 की इस्लामी क्रांति की जीत के बाद से ईरान ने किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया और केवल अपनी रक्षा की है। ईरान इस युद्ध से और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिसमें उन्नत अमेरिकी विमानों पर हमला करना और USS जॉर्ज वॉशिंगटन को निशाना बनाया जाना शामिल है। ईरान ने एक अमेरिकी पनडुब्बी पर कब्जा कर लिया है और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। अगर अमेरिका पहले हमारी शर्तें पूरी नहीं करता है तो ना तो हुर्मुज खुलेगा और न ही हम बातचीत करेंगे। ईरान की 7 शर्तें हैं जिन्हें लिखित रूप से पाकिस्तान और कतर के माध्यम से भेजा गया है। हुर्मुज को फिर से खोलने से पहले तेहरान की शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। ईरानी विमानों पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी प्लान पर टिप्पणी करते हुए ईरान के टॉप सैन्य अफसर ने खाड़ी के देशों को अपना पैगाम भेजा है। हम इस क्षेत्र के सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वो अमेरिका के इस दुस्साहस में शामिल ना हो। अगर वो ईरानी विमानों को यात्रा करने की अनुमति नहीं देते हैं तो उनके अपने हवाई अड्डों पर भी उड़ाने नहीं हो पाएंगी। आप हमारे मित्र हैं, लेकिन आपको अमेरिका की सेना में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको युद्ध को फैलने से रोकना चाहिए।
3: अमेरिका और ईरान की जुबान पर कुछ है और वॉर जोन की स्थिति कुछ और। क्या ईरान पर फिर से अमेरिका हमला कर सकता है? आखिर वॉर जोन में क्या चल रहा है? हमारे साथी सुमित चौधरी से आइए समझते हैं। बताइए सुमित।
4: सईद, अगर आप देखें कि अभी जंग भले ही मैदान पे ना हो रही हो, ना तो अमेरिका लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है, ना ही ईरान रिटेरिएट कर रहा है किसी भी जगह पे, चाहे वो जॉर्डन की बात कर लीजिए या मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की बात कर लीजिए। लेकिन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जरूर चल रहा है इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए बहुत निर्णायक मोड पर पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ उनकी तरफ से थोड़ी देर बाद ही बयान आता है कि वो कई नए रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं एयर स्पेस को लेकर। लगातार अगर ईरान नहीं माना तो फिर बड़े अटैक्स होंगे। तो ये दोनों तरीके की बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि जब उनकी बातचीत हो, कोई ऑफिशियल चीजें एक्सचेंज हो, उससे पहले ईरान जान जाए कि अमेरिका के पास भी ऑप्शन नहीं और अमेरिका अब ऐसा कुछ कर सकता है जिससे ज्यादा नुकसान इस समय ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान को होने वाला बल्कि जमीनी तौर पर भी उन्हें भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर आप जमीनी तौर पर देखें, अभी कई बार ये बात कहा जाता है कि क्या अमेरिका के पास ऑप्शन है, तो अमेरिका के पास कोई बड़े ऐसे ऑप्शन नहीं। अमेरिका दोबारा से स्ट्राइक्स कर सकता है, कौन कौन से इलाकों पर कर सकता है उसका फिर टारगेट या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा या फिर वो इलाके होंगे जहां पर अभी हाल ही में जो IRGC ने अपने नए कमांडर कंट्रोल सेंटर्स बनाए हैं, या फिर कोशिश की जाएगी ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शंस की जिससे ईरान के लोगों को ज्यादा तकलीफ हो, जिसमें एयर स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लेकिन अगर ईरान की तरफ से अटैक किए जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी हूती जिस तरीके से एक्टिव हुआ है उसने अमेरिका का कंसर्न बना दिया है, उसने लगातार अमेरिका के साथ साथ उसके जो आप कह सकते मिडिल ईस्ट के पार्टनर्स है, चाहे वो सऊदी हो UAE, सभी के लिए एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ी चिंता का विषय पैदा कर दिया। तो ये दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस बार बातचीत नहीं हुई, अगर कुछ चीजें ऐसे निर्णायक नहीं हुई, तो फिर ये जंग 6-7 महीने नहीं बल्कि कई सालों तक खिंच सकती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि मिड टर्म से पहले से खत्म कर लिया जाए, इसको कम से कम ऐसे मोड पर लाया जाए जहां पर सहमति के ऊपर दोनों देश आगे बढ़ सके।
3: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: इन एसोसिएशन विद
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार बार बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
3: चाची है
4: वायरल
2: है। थैंक यू।
5: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
6: मैं हूं ना, मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
7: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन। एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता।
8: नो सर, क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: ओ नादान परिंदे, बैठ
3: बैठ बैठ।
5: सर मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?

0: एकदम
1: सॉलिड। वैसे यार तेरी स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
2: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
3: आई लाइक दिस ओनली। तेरा प्यार प्यार प्यार।
4: सारे प्रमाण तो मिल गए हैं, डॉक्यूमेंट्री मिल गए हैं, ओरल मिल गए हैं, गवाह रिलायबल मिल गए हैं, दोनों बगल में बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उन्होंने वही तो कहा है जो राहुल गांधी ने कहा था। तो संवैधानिक रूप से अब ये केस बनता है इम्पीचमेंट का, संवैधानिक रूप से लोकतंत्र की डकैती का केस बनता है, एफआईआर लॉज होनी चाहिए। और आप देखिए आज नहीं होगी कल होगी।
5: जो डिफीटेड डायनेस्टी है वो जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है वो अगर डिमोलिश करना चाहेगी, उनके बारे में जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करना चाहेगी तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश जो है वो बहुत दिनों से चुनाव आयोग कोई आज तो बना नहीं है, बीजेपी ने नहीं बनाया। एक समय था कि जब चुनाव आयोग जो है वो एक सदस्यों का होता था, उसके बाद जो है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारा देश जानता है। 1989 के बाद जो है वो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बन गया। उसके बाद उन तमाम चुनाव आयोगों को लेकर के, चुनाव की व्यवस्था को लेकर के कई बार सवाल हुए, हम भी सवाल करते रहे और भी लोग सवाल करते रहे, लेकिन वो सवाल सुधारों के लिए थे। ये नहीं था कि जो है वो आप डिफीट के डिप्रेशन में जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डिमोलिश कर दो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
8: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच, ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाएं अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं है, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारियों के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी, कल वडनगर जाने वाले सेवा संकल्प दल से करेंगे संवाद। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में कानपुर पुलिस ने गजब का यू टर्न लिया है। विनीत मिनोचा की जिस बहू शालू को कातिल करार देकर कानपुर पुलिस ने जेल भेज दिया था, असल में वो बेगुनाह निकली। असली कातिल विनीत मिनोचा का अपना बेटा सुब्रत निकला। अब जब सच्चाई सामने आई तब कानपुर के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि तब उन्हें ऐसा लगा था, बस लगा था, इसीलिए शालू को पकड़ लिया।
1: उस समय लग रहा था कि घटना का सही अनावरण हो चुका है, लेकिन जब विशाल से पूछताछ की गई तो विशाल ने जो बताया है वो आपको भी पता है कि विशाल ने कहा कि घटना मैंने करी है, परंतु घटना मेरे से भाभी ने करवाई है। शालू का नाम लिया है और शालू के बारे में जो हमारे पास कनेक्शन जो मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि गेट पे एंट्री भी शालू ने करा रखी थी और ये बिल्कुल क्लियर रूप से जो है शालू को मुलजिम बना दिया गया था। और जब इससे भी हमारी बातचीत हुई, ये भी थाने पे गया था, तो इसने भी पत्नी की तरफ ही इंगित करा कि पत्नी, जिसमें पत्नी द्वारा जो है घटना कारित कराई गई है। हम लोगों ने पहले दिन से ही जब शालू से पूछताछ हुई, शालू ने बताया था मैंने, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन परिस्थितिजन ने उस समय ऐसी परिस्थितियां जो घटना करने वाला विशाल है, विशाल ने क्लियर कट बोल दिया था कि 6 लाख रुपए में सौदा हुआ है, 2 लाख तुरंत देने की बात कही गई है और 4 लाख रुपया बाद में देने के लिए कहा गया है। और उसने सीधे सीधे शालू का नाम लिया है और शालू के मोबाइल फोन से हमें शालू के और विशाल की बातों का हमें ये लगा इनके आपस में टेलीफोन पर बात भी हो रही है। इसलिए उस समय पे हमने उन 3 लोगों को उस समय जेल भेजा गया था, जो उस समय की जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त हुई थी उसके आधार पर उन लोगों को जेल भेजा गया था।
0: कितने मासूम हैं हमारे कनपुरिया कमिश्नर साहब, कह रहे हैं कि उस वक्त ऐसा लगा था, उस वक्त ऐसा सोच रहे थे, उस वक्त विशाल ने ऐसा बोला था, उस वक्त सबूत ऐसे दिख रहे थे, सो इसीलिए उस वक्त बाकी दोनों कातिलों के साथ शालू को भी एक कातिल मानकर जेल भेज दिया। क्या करें, तब उस वक्त यही लग रहा था कि शालू ही अपने ससुर की कातिल है। कमिश्नर साहब के इस लगने भर की वजह से क्या क्या हो गया, क्या उन्हें खुद इस बात का अंदाजा है, क्या उन्हें अंदाजा है कि सिर्फ उनके लगने के चक्कर में पूरी मीडिया और सोशल मीडिया, जिसमें हम भी शामिल हैं, एक महिला, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ के बारे में पिछले 16 दिनों से क्या क्या कहा गया। सिर्फ कमिश्नर साहब और उनकी कानपुर पुलिस के इसी लगने की वजह से शालू बेगुनाह होते हुए भी पूरे 16 दिन तक जेल में रहे। कमिश्नर साहब के इसी लगने ने बेकसूर शालू को इतना बदनाम कर दिया कि बेगुनाह होते हुए भी मुजरिमों की तरह उसे दुपट्टे से अपना मुंह छुपाना पड़ा। एक आईपीएस अफसर

0: को कमिश्नर की कुर्सी तक पहुंचने में आराम से 15 साल तो लग ही जाते हैं। अब अगर इतने तजुर्बेकार कमिश्नर साहब भी सिर्फ कुछ लगने की वजह से आधी अधूरी जांच और एक कातिल के नाम भर लेने से किसी को कातिल करार देकर जेल भेज दे तो इसे आप क्या कहेंगे। वाकई कमाल है कमिश्नर साहब। 5 सितंबर की रात कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा का उन्हीं के घर में कत्ल होता है। कत्ल के 72 घंटे के अंदर अंदर कानपुर पुलिस विनीत मिनोचा की बहू शालू को कातिल करार देते हुए गिरफ्तार कर लेती है। शालू की गिरफ्तारी पर बाकायदा कानपुर के आला पुलिस अफसर मीडिया को बयान देते हैं। 2 में से 1 सुपारी किलर विशाल बाकायदा पुलिस हिरासत में मीडिया के कैमरे पर यह कहता सुनाई देता है कि उसे कत्ल के लिए उसकी भाभी यानी शालू ने कहा था। ऊपर कमिश्नर साहब जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो यही बयान था।
1: क्यों भाई, किस लिए हत्या की थी? किस लिए हत्या की थी?
2: नाम मेरा विशाल गौतम है।
1: तुम्हारा क्या नाम भैया? किस लिए किया हत्या बुजुर्ग की?
2: वो हमने उनकी बहू ने कहा था, इसलिए हमने कह रहा था पैसे देने के लिए कहीं था।
1: अच्छा।
0: अब कानपुर पुलिस खुद कह रही है कि शालू बेकसूर है। असली कातिल खुद विनीत मिनोचा का बेटा और शालू का पति सुब्रत है।
3: सुब्रत की और विशाल की जो बातें होती हैं, जब आमना सामना हुआ तो सुब्रत ने कल ही दोपहर में जब हमारी उसे पूछा रिमांड पे ले आया गया था तो हमारी टीम हमने जब बातचीत करना शुरू करा था तो उस के सामने जैसे उसको लाया गया विशाल को तो विशाल ने बिल्कुल कह दिया था कि सर मैं बिल्कुल अब सही बताता हूँ कि मेरे से बहुत गलती हुई है और इसमें भाभी इनोसेंट है लेकिन जो है भैया ने कराया है, मर्डर भैया ने कराया।
0: तो फिर सवाल तो बनता है कमिश्नर साहब, बगैर ठोस तहकीकात के सिर्फ एक कातिल के नाम लेने भर से 2-4 कॉल डिटेल से या घर में एंट्री के लिए गेट पर गार्ड को इजाजत दे देने से अगर आपकी जांच पूरी हो जाती है और आप 72 घंटे के अंदर अंदर शालू को कातिल घोषित कर देते हैं तो फिर उसी विनीत मिनोचा मर्डर केस में उसके बेटे सुब्रत से कत्ल के 8 दिन बाद तक आपकी पुलिस पूछताछ क्यों नहीं करती? जितनी जल्दबाजी आपने बेकसूर शालू को कातिल करार देने में दिखाई उतनी जल्दबाजी सुब्रत से पूछताछ करने या उसे गिरफ्तार करने में क्यों नजर नहीं आई? और अब आप कह रहे हैं कि विनीत मिनोचा मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ सुब्रत है, शालू को फंसाया गया।
3: शालू की जितने हमारी अब जितने भी जो बातें हुई हैं एक बार फिर हम उसे बात करेंगे। शालू अब तक की पूरी जो है घटनाक्रम में विशाल की बातों पर हमने जो विशाल ने उनके पक्ष में उन पर आरोप लगाए थे, जो इन्होंने आरोप लगाए थे, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो क्लियर हो गया है कि मुख्य भूमिका केवल इनकी थी, शालू को फ्रेम करने में भी इनकी और विशाल की भूमिका थी।
0: आपकी पुलिस से कहीं ज्यादा अच्छी तो शालू है जिसे आपने बेवजह 16 दिनों तक जेल में डाल कर रखा। कम से कम सच्चाई सामने आने के बाद इतनी हिम्मत तो दिखा रही है कि खुद आपसे कह रही है कि मुझे बेशक आप जाने दीजिए पर मेरे पति को भी छोड़ दीजिए, उसे फंसाइए मत।
3: पत्नी का ये भी मेरे को ये बताना है कि पत्नी जब हमने इनको अरेस्ट कर दिया तो पत्नी बोल दिया मेरे को जाने दिया जाए और इनको इनको मत, इनका नाम ये इन्होंने नहीं करा, इनको गलत मतलब न फंसाया जाए।
0: वैसे आप और आपकी पुलिस की तमाम गलतियों के बावजूद एक चीज के लिए आपकी तारीफ भी बनती है। आप चाहते तो आगे की जांच के नाम पर शालू को क्लीन चिट देने की बजाय उसे कानूनी दावपेच में फंसा कर रख सकते थे कुछ और दिन तक जेल में, लेकिन आपने कम से कम ये कहा तो सही कि शालू बेकसूर है, असली गुनहगार उसका पति सुब्रत है जिसने अपने पुराने नौकर विशाल के साथ मिलकर अपने पिता के कत्ल की साजिश रची। 24 सितंबर की दोपहर कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अफसरों के पीछे सिर्फ एक आरोपी खड़ा था, सुब्रत, अपने पिता का कातिल। आधे घंटे से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुब्रत इसी तरह बुत बनकर खड़ा रहा, चेहरे पर कोई

जबकि ठीक उसके आगे बैठे पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल लगातार इसी सुब्रत के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने विनीत मिनोचा मर्डर केस की साजिश के बारे में तफसील से बताया। साथ ही बीच सुब्रत की पुलिस कस्टडी में रिकॉर्ड बयान को मीडिया को दिखाया और सुनाया। वो खुद सुब्रत की जुबानी आपको आगे सुनाएंगे। पहले साजिश की पूरी कहानी जान लेते हैं, क्योंकि अब कहानी पूरी तरह से

0: तरह से बदल चुकी है। 24 सितंबर की देर रात करीब 2:30 बजे पुलिस पूछताछ के बाद जैसे ही सुब्रत को उसकी गिरफ्तारी की खबर दी जाती है, तब पहली बार सुब्रत अपने पापा के कत्ल की कहानी सुनाता है। उसका पूरा बयान पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पुलिस वालों ने सुना है। ये रही सुब्रत की जुबानी उसके पापा यानी विनीत मिनोचा के कत्ल की वजह और कत्ल की साजिश की कहानी, जिसके आखिर में वो खुद कहता है कि इस साजिश के बारे में शानू को कुछ भी पता नहीं था।
1: 5 सितंबर की रात को हमने
2: तेज बोलो थोड़ा,
1: हमने विशाल और उसके साथी राजकिशोर को कहा था कि जब हम निकल जाएंगे तो अंदर घुसिएगा। उसको मैंने चाबी दी थी, चाबी से उसने अपनी डुप्लीकेट बनवाई थी। तो घुसा उससे कहा था मैंने कि अपना अंदर जाना, जब पिताजी आए तब तो छुपे रहना मेरे कमरे में, जब वो खाना खा कर सो जाए तब आप अपना तकिए से मुँह दबा के एक जना पैर पकड़ना एक जना मुँह पकड़ना दबा के उनका मतलब मर्डर कर देना।
2: ठीक है, तो पापा को अपने पिताजी को की हत्या क्यों कराना चाहते थे आप?
1: सर मेरे पिता
2: क्या कारण थे?
1: दूस करेक्टर के आदमी थे, उनके कई जगह संबंध थे, अवैध संबंध थे कई औरतों के साथ, जिनमें से हमें शक भी होता था कभी कभार कि मतलब कहीं और कोई आना जाए और किसी और को ना ले आए हो।
2: ले आने का मतलब?
1: मतलब ले आ कहें या कोई और ना आ जाए कि गर्भवती है या ये है,
2: संपत्ति ना चली जाए।
1: संपत्ति ना चली जाए।
2: तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है?
1: सब मेरे ऊपर
2: सब मिला करके कितना कर्जा होगा?
1: सब मिला करके लगभग 40 लाख के आसपास का कर्जा है।
2: उसके कितने महीने में कितनी किस्तें, कितने रुपए की किस्त जाती है?
1: महीने की लगभग 55-56 हज़ार रुपए की किस्त जाती है।
2: आपको आपके पिताजी खर्च के लिए हर महीने कितने पैसे देते थे?
1: 40 हज़ार।
2: आप 40 हज़ार रुपए खर्च के लिए देते थे, 55 हज़ार रुपए किस्त हर महीने आपकी हो जाती थी।
1: जी सर।
2: तो आप उसको बढ़े हुए पैसे कहाँ से लाते थे?
1: सर नया लोन लेते थे लोन चुकाने के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड सर्व करते थे, पैसा बढ़ते थे।
2: और क्या करते थे?
1: और सर कभी कुछ दुकान से माल पार करवा के।
2: माल पार कराने का मतलब?
1: मतलब माल चोरी करके।
2: किसके माध्यम से?
1: विशाल को ही रहते थे,
2: उससे अपना खर्चा पूरा करते थे।
1: खर्चा करते
2: थे। पहली बार ये योजना कब बनाई मर्डर वाली?
1: सर मर्डर वाली योजना लगभग 3-4 महीने हो गए।
2: विशाल को कब बताई?
1: विशाल भाई तभी जब बने तभी उसे बताई थी 3-4 महीने।
2: क्या ऑफर दिया था उसको?
1: तुम्हारा कर्जा जितना है वो माफ चुका देंगे।
2: लगभग कितना पैसा देना?
1: लगभग 1.5-2 लाख रुपये।
2: 1.5-2 लाख। तो कैसे क्या फिर क्या प्लान बनाया आपने विशाल से अपने पापा की हत्या कराने के संबंध में? क्या क्या योजना बनाई शुरू में?
1: शुरू में सर विशाल ने हमको बताया कि एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, कि उन गाड़ी से जाएं अपना उनके सामने ई रिक्शा करवा दें और उससे रुकेंगे रुकेंगे उतरेंगे तो फिर कोप तुमको मार दिया जाएगा। तुमने नहीं ये सही नहीं है, तुमको क्यों रुकेंगे वहाँ पे, अगर थकेंगे भी तो निकल जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे या उस समय फंस सकते हैं, ये चीज़ नहीं करेंगे। और तो हमने सोचा था ये कि वहाँ किट्टी है, 5 तरीके से किट्टी थी तो खुद रुक था अपने का, किसी को कोई वो नहीं होगा, शक नहीं होगा।
2: क्यों शक नहीं होगा?
1: सर कैसे नहीं होगी?
2: विशाल गौतम को क्या क्या बताया था किट्टी पार्टी वाली रात में, कौन घर पे रहेगा और क्या कैसे?
1: वो बताया था कि कोई घर पर नहीं होगा, कैमरा नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग हमने बंद कर रखी है, और अंदर जाओगे हमारे कमरे में चले जाना, पिताजी जब आए अपना नाश्ता पानी खाना खाए, जब सो जाए तो उसके बाद अपना उनका दबा लेना और वहाँ से निकल जाना, देख के चेक करके कि मरे हैं कि नहीं मरे हैं।
2: सालू को इस बारे में जानकारी थी?
1: सालू को कुछ भी जानकारी नहीं थी इस बारे में।
0: तो विनीत मिनोचा के कत्ल की साजिश और कत्ल की वजह की पूरी कहानी आपने खुद आरोपी कातिल यानी सुब्रत की जुबानी सुन ली। असल में सुब्रत को यह अंदाजा ही नहीं था कि उसने अपने पापा के कत्ल की जो असली साजिश रची थी वो ऐन वक्त पर नाकाम हो जाएगी। कत्ल तकिए से मुंह दबाकर करना था ताकि उसे नेचुरल डेथ दिखाया जा सके, लेकिन विनीत मिनोचा ने विशाल और राजकिशोर को घर के अंदर देख लिया और फिर जैसे ही उन्होंने शोर मचाना

0: शुरू किया। दोनों कातिल घबरा गए और चाकू से हमला कर दिया। यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। सुब्रत को इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है कि उसने पापा का कत्ल किया। अलबत्ता इस बात का दुख जरूर है कि उन्हें चाकू से मारा गया। सुब्रत को इस बात का भी मलाल है कि उसकी वजह से इस केस में शालू फंस गई। पुलिस के मुताबिक इसी अफसोस की वजह से खुद सुब्रत खुदकुशी करने की भी सोच रहा था। खुद सुब्रत ये बता चुका है कि उसने अपने पापा को क्यों मारने का प्लान बनाया था। 40,000 रुपए उसे खर्च के लिए मिलते थे, 40 लाख का कर्जा था। ऊपर से उसे एक और डर था, डर ये कि कहीं किसी दिन विनीत मिनोचा किसी महिला को घर न ले आए और फिर सारी जायदाद उसी के नाम न कर दे। सुब्रत का इल्जाम है कि उसके पिता की कई महिलाओं के साथ संबंध थे।
1: अंदर से जो है अपने पिताजी से काफी वो इनको उनके प्रति द्वेष की भावना थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इनकी इस घटना कराने के लिए वो ये था कि इनके पिताजी के बारे में जैसे इन्होंने खुद ही बताया है, महिलाओं के बारे में इन्होंने बताया, तो इनको ये अंदेशा था। इनका ये भी कहना है कि पिताजी खुद फोटो हमको दिखाते थे और ये गोवा जाना और पार्टी में जाना, तो पिताजी के आचरण के बारे में इनको थोड़ा वो था और इनको ये था कि संभवतः पिताजी के साथ अगर कोई महिला यहाँ आ जाएगी और कोई क्लेम करने लग जाएगी प्रॉपर्टी पे तो ये हमारे हम कहीं के नहीं रहे। ये भी एक रीजन था इनका वो कराने के लिए। और समाज में इनका ये कहना है कि लोग आपत्तियां करते होंगे, इनपे कमेंट मारते होंगे, जिसकी वजह से इनके द्वेष की भावना बढ़ती चली गई।
0: लेकिन इस पूरी साजिश के दौरान कभी भी किसी भी मोड़ पर सुब्रत की पत्नी शालू इस साजिश का हिस्सा नहीं रही। वजह ये कि सुब्रत ने कभी उसे ये बताया ही नहीं था, जबकि सुब्रत पिछले 4-5 महीनों से अपने पिता को मारने की साजिश रच रहा था। तकिए से मुंह दबाने की बजाय जब घबरा कर विशाल और राजकिशोर ने चाकू से विनीत मिनोचा पर हमला किया तो जाहिर था अब ये केस पुलिस केस बनने वाला था। इसी के बाद सुब्रत ने सबसे पहले अपने पिता के मर्डर केस में चाचा को फंसाने की सोची।
1: योजना ये भी थी कि इनके चाचा पर डाला जाए इसको, परंतु जो है घूम फिर करके जब सालू का नाम आ गया तो इन्होंने फिर उसी को अपना जो है वो करने की कोशिश करी गई ताकि उसी पर साबित हो जाए। ये जब हमारी पूछताछ में हमने इनको, मैंने इसको कहा कि आपको अब हम अरेस्ट करेंगे, तो इनको पहले ये उम्मीद थी कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, इनके दिमाग में ये बैठा हुआ था। लेकिन अंदर से इनके अंदर से जो अवचेतन मन होता वो लगातार कह रहा था कि मुझे अरेस्ट हो जाएगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा।
0: लेकिन विशाल चाचा की बजाय गिरफ्तारी के बाद शालू का नाम ले बैठा। इस पर खुद सुब्रत हैरान था, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर शालू फंस रही है तो वो बच जाएगा। इसीलिए उसने भी पुलिस पूछताछ के दौरान शुरुआत में हमेशा शालू का ही नाम लिया।
1: जब भी हम इनसे पूछताछ करते थे तो ये इंडिकेट करते थे कि मुझे नहीं मालूम, ये मेरी पत्नी नहीं करा, सारी चीजें उन पे डाले। ये इनको जो लीगल एडवाइस मिल रही थी इनके परिवार से, इनको लगातार जो वो मिल रहा था, तो इनको ये कहा गया था तुम अपनी बात पर अड़िग रहना, तो इसी वजह से इन्होंने किसी भी स्तर पे हमको कोऑपरेट नहीं करा। यद्यपि जब हमने इसके अभी जब इन्होंने रिवील करा पूरा घटनाक्रम बताया, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं पहले ही दिन सोच रहा था कि आप लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे, मुझे ये अंदाजा था कि आप मुझे अरेस्ट कर देंगे, लेकिन चूंकि विशाल ने मेरे को बचा दिया था, विशाल इसके प्रति काफी वफादारी रखता है, विशाल द्वारा ये कहना कि मैं भैया के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो विशाल ने सालू को फंसाया और सालू के बारे में पूरा कुछ सब कुछ घटनाक्रम उसकी तरफ कर दिया।
0: हालांकि अब सच्चाई सामने आने के बाद सुब्रत को इस बात का मलाल है कि उसने शालू को फंसा दिया था, पर उसे अपने पिता की मौत का मलाल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो नहीं चाहता था कि उसके पिता चाकू से मारे जाएं।
2: सुब्रत, सुब्रत क्यों मारा आपने अपने पिताजी को? यही मौका
3: सर, यही है, मैं पसंद नहीं था उनका किसी और लेडी के साथ रखना, लेकिन वो बड़े खुलेआम करते थे, बड़े कैजुअल थे कि हम करते हैं, उससे तो हमारा मतलब नहीं है।
2: पैसों का भी
3: हम अपना कुछ भी अनते थे, पैसा की हमें तो कुछ करना है या अपने एंजॉयमेंट।
2: अपनी बीवी पत्नी को
3: मना करते थे।
2: पत्नी को क्यों
3: बताया? उसका सर प्री प्लान नहीं था, लेकिन उसने नाम ले लिया तो हमने सोचा कि हम बच सकते हैं।
2: आपका प्लान था पत्नी को फंसाने का?
3: नहीं, वो मौके उसने नाम ले लिया, पहले हमने उससे एक दो बार विचारा था, लेकिन फिर मना कर दिया गया था।
2: बिल्कुल भूमिका
3: नहीं लेना है
2: पत्नी की?
3: बिल्कुल भूमिका नहीं थी, उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में।
2: कर्ज किस चीज का था आपके? 20-30 लाख रुपए जो पुलिस ने बताया, यही वजह थी? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी आपके पति?
3: फाइनेंशियल नहीं सर, मैं
2: आपको एक बार भी लगा नहीं कि आपके पिता हैं किसी भी चीज है इस तरह? क्या आपको पछतावा है?
3: मुझे पिताजी को मरवाने केवल इतना पछतावा है कि जो गोद के उनको मार दिया गया, मैं वैसे नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता था कि वो मरे।
2: अभी भी आप यही चाहते हैं कि उनका मरना जायज था या आपको इस चीज का मतलब?
3: बहुत पीड़ित थी इससे, उनके संबंध से। वो कहती थी चलो जो करना करो अब, लेकिन आके वो खुले हम ऐसे बताते थे।
2: आप कोर्ट में इस बात को कबूलेंगे कि हाँ आप ही ने मर्डर किया? पुलिस के सामने तो आपने
3: सर? नहीं सर।
2: किसी चीज से आपकी पत्नी, आपको मलाल है कि आपकी पत्नी का इतना जो खबरें चली और तमाम चीजें, आपको इस चीज का गिल्ट है? ऐसा नहीं होना चाहिए,
3: शालू के साथ नहीं होना चाहिए,
2: नहीं होना चाहिए।
0: सुब्रत के बिछाए जाल में शालू फंस तो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुब्रत को इसका मलाल भी था। विनीत मिनोचा के मर्डर के बाद से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। इसी मलाल के चलते उसने ये भी सोच रखा था कि वो नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे देगा।
1: इनका ये भी कहना था कि मुझे अंदर से गिल्ट भी हो रहा था, ये भी इन्होंने कहा मुझे अंदर से गिल्ट हो रहा था कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी जो है वो जेल चली गई है। तो ये भी कह रहे, इनका ये भी प्लान था जो हमें लग रहा कि मैं स्लीपिंग पिल्स ले लूं, क्योंकि लगातार ये सो नहीं पा रहे थे, इनकी आदतें भी खराब रही हैं, कर्जा इन पर है, पेपर भी पढ़ रहे थे और इनको काफी स्ट्रेस था। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि यदि अगर ये अरेस्ट नहीं होते बाई दे और ये जैसे घुमाते ही रहते तो इनकी नेक्स्ट योजना ये भी थी, ये दवा खा करके अपने खुद ही बैठ जाते।
2: विनीत मिनोचा हत्याकांड में आज कानपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने पूरा केस ही पलट कर रख दिया है। जिस शालू को अभी तक इस पूरी हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया जा रहा था, अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसे तो विशाल और सुब्रत ने मिलकर फंसाया था। जो विशाल कल तक पुलिस को यह स्टेटमेंट दे रहा था कि उसने यह हत्या शालू के कहने पे की, आज वही विशाल पुलिस को बयान दे रहा है कि उसने यह हत्या सुब्रत के कहने पे की थी और शालू का नाम भी उसने सुब्रत के कहने पर ही लिया था। पुलिस की माने तो सुब्रत विशाल के साथ मिलकर कई महीनों से इस पूरे हत्याकांड की साजिश रच रहा था और साथ ही साथ ये भी प्लानिंग रख रहा था कि अगर वह पकड़ा गया तो कैसे शालू को इस पूरे मामले में फंसाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने सुब्रत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जेल जाने से पहले आज तक के कैमरा पर सुब्रत ने बताया कि उसे अपने पिता की हत्या करने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसे अपने पत्नी को फंसाने का मलाल जरूर है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो सच बोल रहा है या नहीं, यह बात सिर्फ सुब्रत ही जानता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस, बाय गॉड मजा आ जाएगा।
6: आप पे वो टीएमटी बार वाली मजबूती नहीं आ रही है सर।
7: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
7: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंटा टीएमटी बार से जो बना रहा है,
8: ये ऐड को झेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आई हैव वन, एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
9: क्योंकि वो मजबूत रुंटा टीएमटी से बना है।
10: ओ नादान परिंदे, बैठ। मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही है क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
11: इसको देखने का जिगरा किसी के पास नहीं होगा। तो कौन सी बनानी है?
12: एकदम सॉरी,
11: फिर स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी।
13: एक्चुअली सर आपकी बेस्ट थी।
14: आई लाइक दिस ओनली।
15: नई सरकार के बाद
14: बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
15: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
16: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
17: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
18: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
19: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं अब?
14: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
20: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
14: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: पूरी लस्सी पीने के बाद पूर्वा यूं ही फेंक दिया बिना पानी लिए और पानी घोल के पिए, तो वो घूर के देखते हैं एक बार, गोरस बर्बाद कर दिया।
2: डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया कि भैया हुतियों ने अटैक कर दिया है, कुछ करिए भैया। उसने कहा नहीं करेंगे, हमारा हुतियों से डील हो गया है।
3: तुम तो साला डील माना नहीं। एक कमजोर प्रेसिडेंट एक घायल कुत्ते की तरह होता है।
2: हाँ भाई।
3: किसी को भी काट सकता है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पटना में बुद्धा कॉलोनी इलाके में वारदात और कैमरे में कैद हमले की तस्वीरें। बाइक से आए थे हमलावर, दो बाइक तीन हमलावर, और निशाने पर थे जन स्वराज नेता अनिल यादव। दिन दहाड़े हुई फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 24 की पार्षद ज्ञानवती देवी के पति और जन स्वराज नेता अनिल यादव को उनके ही अपार्टमेंट की पार्किंग में बदमाशों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक दो बाइक पर सवार तीन हमलावर अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे और अनिल यादव पर चार से पांच गोलियां दागकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल अनिल यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
1: पूरे बिहार की ये स्थिति है और जंगल राज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग, ये उनको जवाब देना है कि बिहार के लोगों को आपने कहा कि जंगल राज से बचना है तो हमको वोट दो, और ये क्या है? अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? ये तो सम्राट चौधरी जी को बताना है, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बताना है।
0: हमले के बाद अस्पताल में नेताओं का पहुंचना भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जांच में जुटी है।
2: अभी उन्होंने कुछ नहीं बता पाए हैं, उन्होंने बोला है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस हर एक बिंदु पे जांच कर रही है।
3: किसी पार्टी में भी
2: जन स्वराज पार्टी से जुड़े
3: हैं।
0: पटना में हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बहस तेज कर दी है। पटना से सुजीत कुमार, आज तक ब्यूरो।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाएं अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं है, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार। दीपके ने भी कसी कमर, कहा 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, कहा तैयारियों के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी, कल वडनगर जाने वाले सेवा संकल्प दल से करेंगे संवाद। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: छत्रपति संभाजीनगर में बारिश की कमी से फसलें बर्बाद, रोहित पवार ने निपानी पहुंचकर जायजा लिया, तत्काल सूखा घोषित करने की मांग की गई। संजय शेरसाट का रोहित पवार पर पलटवार, संभाजीनगर में किसानों को सरसकट मदद दी जाएगी, सुरक्षा पर राजनीति बंद की जाए। वाशिम में फसल नुकसान का जायजा लेने पहुंचे फडणवीस, किसानों को सीधे आर्थिक मदद का ऐलान किया, चारा पानी और बच्चों की शिक्षा में भी सहायता का भरोसा। साहिल वाकोड़े की मौत के मामले में SC/ST आयोग सक्रिय हुआ, अधिकारियों ने IIT प्रशासन से मुलाकात की, माता पिता को भी गेस्ट हाउस बुलाया। FSSAI का बड़ा फैसला, एनालॉग प्रोडक्ट को पनीर बताकर बेचने पर रोक, लेबल और मार्केटिंग से भी हटाना होगा पनीर का नाम। दुर्गा पूजा से दिवाली तक 29 दिनों में करीब 6.25 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री का अनुमान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर को मिलेगा त्योहारी सीजन का सबसे बड़ा फायदा। लैब ग्रोन डायमंड्स और डिमांड घटने से 2021 के मुकाबले नेचुरल डायमंड 30-40% तक सस्ता हुआ, इस गिरावट के बावजूद महंगे सोने के डायमंड ज्वेलरी की कीमतों में नहीं आने दी है कमी। कोटक महिंद्रा के मुताबिक 25-30 साल के होम लोन ग्राहकों की संख्या 2 साल में 86% बढ़ी है, होम लोन पोर्टफोलियो में जेंजी की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 9% हुई। IRCA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, OMCS को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा। सरकार ने क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 16.5% से घटाकर 5.5% की है, पिछले एक साल में करीब 20% महंगा हुआ था खाने का तेल, इस कटौती से त्योहारों में राहत मिलने की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं आज तक, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। IIT बॉम्बे में सुइसाइड करने वाले छात्र साहिल के माता पिता ने मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, वो आरोपी प्रोफेसर दुल्ला की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो CBI भी इस पूरे मामले की जांच करे।
2: पहले तो जानना चाहूंगा कि क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रहा है, मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र सरकार है, क्या आपको विश्वास नहीं है उन पर?
3: पूरा विश्वास है सर, ये सुसाइड देखिए पिछले साल का कितना हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आया है, उसका हौसला बढ़ रहा है सर, इसके कारण वो अरेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा सर क्या है वो। आप पिछले साल का आप समझदार आदमी है, आपको पता है पिछले साल पहली आत्महत्या नहीं है सर, तो आप समझदार है, आपको पूरा ये है सर, जब ये नहीं होगा तो न्याय ये हो जाएगा। अरेस्ट करिए सर, प्लीज़ अरेस्ट करिए, आप हम पर भरोसा मत करिए, पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए सर, प्लीज़ आप।
2: उन्हें जबरन छुट्टी पर तो भेजा गया है, यहाँ पर IIT खुद एक इंटरनल जांच कर रही है, CBI की जांच जो शुरू है उसमें भी कई सारी निकलकर चीज़ें सामने आने वाली है, तब तक आप रुकना नहीं चाहते और उससे पहले ही अरेस्ट, मतलब ये प्रोसीजर में नहीं बैठता, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनको अरेस्ट किस बिना पर किया जाए, उनके अगेंस्ट जब पुख्ता सबूत होंगे तभी अरेस्ट।
3: सबूत है ना सर, सबूत आप वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो जो आप उस पर ये कर रहे यानी उसको जातिवाद कर रहे, तो एक लड़की वीडियो में जब केदारे सर बोल रहे थे कि 18 उनकी 20 के 18 मांगे पूरी करी, उस वक्त वो एक लड़की है, वो यहाँ जातिवाद हुआ है, वो करके बार बार बोल रही थी, तब केदारेश्वर ऐसा ये करके परेशान हो रहे थे। आप वो वीडियो देख लीजिए सर, थोड़ा जूम करके देख लीजिए, तो आप कैसे नहीं मानेंगे या मेरे लड़के के साथ हुआ नहीं है, उससे ज़्यादा पुरावा क्या होना है पहले। और दूसरी बात, उसकी आत्महत्या जो पहले बोल रहे वो क्या जीबी लॉन्च करा, बाद में माफी मांग रहे, आपको कुछ गलत दिख रहा कि नहीं सर? और इससे ज्यादा और सबूत क्या होना है सर, आप बोलिए ना।
2: देखिए अभी एफआईआर तो दर्ज हुई है, एट्रोसिटीज एक्ट के तहत दर्ज हुई है, अब उसमें क्या क्या एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, जो जो दावे या आरोप किए जा रहे हैं उसकी पूरी तरह से डिटेल में तफ्तीश होगी, उसी के बाद किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा नहीं लगता?
3: हम सादे तरह से करेंगे अनशन सर, हमें घर पे ये नहीं है, हमारा कोई ये भड़का वगैरह करने का नहीं है, हमारा दिल दुख रहा है ये करके यहाँ पे बैठेंगे सर, हम बाकी कुछ नहीं होना सर।
4: मेरा एक ही लड़का था अकेला, वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और वो केदार सर और वो डुल्ला सर को त्वरित अटक की जाए, यही मेरी मांग है, मुझे जस्टिस चाहिए।
3: उनका हौसला बढ़ रहा है सर, इतनी आत्महत्या होने के बाद भी कुछ नहीं होता करके उसका हौसला बढ़ रहा है सर, उसका हौसला इतना बढ़ रहा, मेरा कुछ नहीं होता, मैं सेटल कर रहा है, एक क्या है वो, आप थोड़ी जानकारी निकाल लीजिए, आप सभी अच्छे लोग हैं, आपको सब मालूम है, बस बाकी कुछ नहीं आपने को।
0: आईआईटी बॉम्बे सुसाइड केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें छात्र और संस्थान के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। एग्जाम हॉल में मौजूद कुछ छात्रों ने परीक्षा की निगरानी कर रहे शिक्षकों और हॉस्टल कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन आरोपी प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। साहिल के फोन में पैटर्न लॉक है, इसीलिए फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि उसने किसे कॉल किया था या किसका कॉल आया था। हालांकि फोन के डिस्प्ले पर कई मिस्ड कॉल्स के नोटिफिकेशन दिखाई जरूर दे रहे थे।
5: आईआईटी बॉम्बे में मामला तो शुरू हुआ था छात्र साहिल वाकोड़े के सुसाइड से, लेकिन अब पूरा मंच सियासत ने हाईजैक कर लिया है। महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में आईआईटी बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ भी प्रदर्शन करने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वर्षा गायकवाड़ कैंपस के अंदर जाकर फैकल्टी से मिलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
6: कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ आईआईटी पवई के बाहर आई थी प्रदर्शन करने वाली थी, और साथ ही अंदर जाकर डायरेक्टर से मिलने वाली थी, लेकिन उसके पहले उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया गया, और अब वर्षा गायकवाड़ को जो है पुलिस डिटेन कर रही है, गाड़ी में भरकर उन्हें ले जाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है।
5: वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि देश के सभी शैक्षिक संस्थानों में बीजेपी और संघ के लोगों का कब्जा हो गया है। आज राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
7: हमारी मांग ये है कि आरएसएस जो घुस गई है यूनिवर्सिटी में और ये आईआईटी में, और ये जो धर्म का आजाद दीदी का जो यहाँ पे चलता है, और हमारी मांग ये है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। ये आईआईटी में जो है मुंबई में ये पहली घटना नहीं हुई, बॉम्बे में ये तीसरी चौथी घटना है, और इसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर चल रहे, हमने क्या किया बताइए। ये बिल्कुल राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है, और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएस के कारण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
5: उधर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोपी प्रोफेसर दुल्ला को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की।
8: जो प्रोफेसर है उसकी हिस्ट्री रही है कास्टिज्म के ऊपर कमेंट्स करने की, वैसी हिस्ट्री उसकी रही है, ऐसे उनके पेरेंट्स का मानना है, तो क्यों नहीं सवाल पूछे।
5: आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी साहिल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया।
6: भीम आर्मी द्वारा आईआईटी पवई के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आईआईटी पवई कैंपस में जाने की कोशिश इनकी थी लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही रोक लिया है। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे
9: हमारे।
6: तो देख सकते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। जस्टिस फॉर साहिल वाकोड़े, ऐसी मांग जो है वो भीम आर्मी द्वारा की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, उनको कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया था और अब भीम आर्मी के जो लोग हैं उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है यहाँ पर पैदा ना हो।
5: पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख जोगेंद्र कवाड़े भी मुंबई आईआईटी पहुंचे जहां उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
10: ये संस्थात्मक संस्था के अत्याचार के वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा उसे, तो सीधी बात है अगर उसने कॉपी किया हो तो उसका रिकॉर्ड आपके पास है क्या? भाई कार्रवाई तो की होगी, अभी आप बता रहे हो आत्महत्या करने के बाद, अभी जब आपके गले में फंदा आ रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि उसने कॉपी किया, ये किया, वो किया, झूठे झूठा बात झूठी बात है। सरकार ने इसका ध्यान देना चाहिए, इसके अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी आईटीआई पवई की है उसके संस्थान में अगर इस प्रकार से भेदभाव जातिवाद छुआछूत का अगर वातावरण होगा तो बाकी संस्थानों में क्या चल रहा होगा।
5: इधर आज साहिल के माता पिता नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से मिलने सहयाद्री गेस्ट हाउस पहुंचे जहां उन्होंने अपने वकील के साथ एनसीएससी के चेयरमैन किशोर मकवाना से बात की। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए साहिल के माता पिता ने मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है।
11: ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन से बात हुई, मुलाकात हुई, साहिल के माता पिता ने क्या मांगे रखी?
12: साहिल के माता पिता ने मांगे रखी कि अब तक आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है, उनका अरेस्ट करना जरूरी है।
11: अरेस्ट के साथ और क्या क्या मांगे रखी गई?
12: साहिल का चरित्र हरण हो रहा है ऑन सोशल मीडिया, वो नहीं होना चाहिए। आईआईटी के माध्यम से जो वीडियो लीक हुआ है वो किसने किया उसके ऊपर भी आरोप लगना चाहिए, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए।
11: चेयरमैन का क्या कहना है? चेयरमैन
12: ने कहा कि हमने जितने ही मांगे हैं वो मांगे हम लोग सरकार के सामने रखेंगे और जो सही तरीके से कानून तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए।
11: लेकिन अब आगे जाकर आपका कदम क्या होने वाला है? साहिल के माता पिता क्या करने वाले?
12: साहिल के माता पिता भी आजाद मैदान में अनशन के लिए बैठने वाले हैं।
11: कब तक बैठेंगे?
12: जब तक नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे।
5: छात्र साहिल वाकोड़े के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। इससे पहले 23 सितंबर को आईआईटी बॉम्बे के एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आ रहा है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास के बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर नकल के लिए पेपर अपलोड कर रहा था लेकिन साहिल के माता पिता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रोफेसर दुल्ला उसे जाति सूचक शब्दों के जरिए टॉर्चर कर रहे थे जिससे तंग आकर साहिल ने सुसाइड किया।
13: वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है, उसको टॉर्चर करा वाला है। हाँ टॉर्चर क्या है, टॉर्चर क्या है, सुसाइड नहीं, उसकी हत्या की है, हत्या की है उसने।
5: मुंबई क्राइम ब्रांच 6 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है, इनमें उन 3 छात्रों के बयान भी दर्ज किए हैं जो कथित तौर पर साहिल वाकोड़े के करीबी थे लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वो उन्हें समन भेज चुके हैं लेकिन उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस घमासान के बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दीपेश त्रिपाठी और दिव्येश सिंह के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: बीएमसी के वेस्ट वार्ड ने जुहू की कपोल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद एक्टर अजय देवगन के बंगले में सैलॉन और स्पा खोलने की योजना के चलते काम रोकने का नोटिस जारी कर दिया है। बीएमसी के मुताबिक उन्होंने इस प्रॉपर्टी के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कोई मंजूरी नहीं ली है, भले ही ये प्रॉपर्टी कमर्शियल इलाके में है। अजय देवगन की टीम ने सूत्रों से कहा है कि परिसर के प्रस्तावित इस्तेमाल के संबंध में अधिकारियों से जरूरी मंजूरी और अप्रूवल ले लिए गए थे।
14: लीगल होगा अगर ऐसा कर रहे हैं, पहली बात तो उनको परमिशन मिलेगा ही नहीं बीएमसी से, बीएमसी का कोई भी डिपार्टमेंट हो नहीं मिल सकता उनको परमिशन, क्योंकि जो रेसिडेंस है तो वो रेसिडेंस ही रहेगा और कमर्शियल वो वहाँ कर नहीं सकते और मिला तो उनको किस हिसाब से परमिशन मिलेगा, फिर उसकी भी इंक्वायरी होगी, देखेंगे भाई परमिशन कैसे मिला क्या हुआ।
9: इस वक्त मुंबई के जुहू इलाके में NS रोड नंबर 11 पर प्लॉट नंबर S10 पर हम खड़े हैं। यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर जो है अजय देवगन, उनका एक बंगलो है। इस बंगलो हमारे पीछे है। अब लीव एंड लाइसेंस पर एक स्पा कंपनी को ये बंगलो देने पर आसपास के जो रहवासी हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद BMC के वेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे स्टॉप वर्क नोटिस दिया है। जो रहवासी है उनका ये कहना है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही सिर्फ अलाउड है, कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। और कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड ना होने के बावजूद ये बंगलों को अगर किसी कमर्शियल जगह पर दिया जाता है तो वहाँ पे रेजिडेंट्स को तकलीफ हो सकती है, यहाँ पर लोग आएंगे उसके साथ गाड़ियाँ पार्क होगी और ये रेजिडेंशियल एरिया में एक तरह से डिस्टर्बेंस ला सकता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग जो सोसाइटी है उसमें भी इस पूरे मामले को लेकर के एक केस चल रहा है। हालांकि अजय देवगन कैंप की तरफ से ये कहा गया है कि सारी जो परमिशन है वो परमिशन उनके पास है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको BMC या किसी और एजेंसी की तरफ से फर्निश करने के लिए कहे गए हैं वो करेंगे। एक NOC दी गई थी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए, लेकिन कहा जा रहा है रेसिडेंट्स की तरफ से कि वो लीव एंड लाइसेंस के लिए थी, कमर्शियल यूज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो इनके पास नहीं है। वहादत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
0: वेलकम। और आशिकी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले अभिनेता मुश्ताक खान का 56 साल की उम्र में निधन हो गया। वो करीब 15 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे, उन्होंने आज अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान 5 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें कल मुंबई में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी तक 12 दिन से मुंबई में गणपति महोत्सव की रौनक थी, आम लोगों से लेकर VIP तक बप्पा का दर्शन करने आ रहे थे लोग, लेकिन अब विसर्जन की घड़ी आ गई है। कल सुबह से सभी गणेश पंडालों से बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए जाने लगेगी। लालबाग चौराहा के बप्पा की विसर्जन यात्रा बेहद धूमधाम से निकाले जाने की तैयारियां कर ली गई हैं। मुंबई पुलिस और BMC ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं।
15: बारह दिन का गणेश उत्सव 14 सितंबर को शुरू हुआ था और 25 सितंबर को बप्पा के विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। इसीलिए बप्पा के विसर्जन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं में मायूसी है कि इतने दिन गजानन महाराज का पूजन अर्चन के बाद अब उन्हें विसर्जित करने का समय आ गया है। इसलिए कहा जाता है कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। BMC और मुंबई पुलिस ने गणेश विसर्जन में उमड़ने वाले जन सैलाब के लिए खास बंदोबस्त किए हैं।
16: गणेश विसर्जन को लेकर के मुंबई पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त है। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं, वो रास्ता दिखाऊं, जहां से मुंबई में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, जिनमें लालबाग के राजा, चिंतामणि, तेजुका का राजा, गणेश गली, परेल का महाराजा, परेल का राजा विघ्नहर्ता, लंबोदर, तमाम बड़े पंडालों के ऊंची ऊंची गणेश जी की प्रतिमाएं यहीं से होकर के सीधे गिरगांव चौपाटी में विसर्जन करने के लिए चले जाएंगे। आपको बताएं कि साउथ मुंबई का ये गिरगांव चौपाटी है जहां पर तमाम बड़ी ऊंची गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और सारी जिम्मेदारी अच्छी व्यवस्था की इस समय मुंबई पुलिस के कंधों पर है। आपको बताएं कि 22,000 से ज्यादा मुंबई पुलिस के कर्मी पूरे मुंबई में विसर्जन के लिए तैनात होंगे। गिरगांव चौपाटी भी उसी में शामिल होता है। लगभग 38 से ज्यादा जो है DCP लेवल, लगभग 66 से ज्यादा ACP लेवल, 6 ज्वाइंट कमिश्नर, 3,000 से ज्यादा सीनियर पुलिसकर्मी, 1,000 के आसपास तकरीबन वो पुलिसकर्मियों को यहां लाया जाएगा जिन्हें अभी प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है।
15: मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान मूर्तियों के इको फ्रेंडली विसर्जन के लिए BMC ने 278 जगहों पर 383 तालाब बनाए। शहर में विसर्जन की व्यवस्था संभालने के लिए 25,000 पुलिसकर्मी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ज्यादातर सार्वजनिक गणेश पंडालों में मूर्तियों का विसर्जन आखिरी दिन ही होता है, जिनमें लाल बागचा राजा, परेल के महाराजा, गणेश गली के बप्पा, साकीनाका के गजानन प्रमुख है। BMC ने 6 फीट से बड़ी मूर्तियों के लिए 67 प्राकृतिक विसर्जन स्थलों पर जरूरी इंतजाम किए। इनमें 44 समुद्री तट और जेट्टी जबकि 23 प्राकृतिक झीलें शामिल हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि 6 फीट तक की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में करना जरूरी है।
17: अभी यहाँ पे गणेश उत्सव की तैयारी BMC और के माध्यम से चल रही है। अभी अपना 25 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, उसके हिसाब से BMC ने पूरे पैमाने पे कोशिश करके तैयारी की है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो समंदर में जो अपनी रेत है, रेत पे कोई गाड़ियाँ वगैरह ना फंसे, इसके लिए हम लोग ने एक 1200 के लगभग हम लोग ने लोखंड के प्लेटें बिछाई है, जिससे कि ट्रॉलियाँ वगैरह ना फंसे और विसर्जन स्मूथली हो सके। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो 6 फुट के नीचे की मूर्ति है, उसके लिए विसर्जन के लिए हम लोग ने आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है। 10 के आसपास वो पॉन्ड की यहाँ पे हम लोग ने व्यवस्था की है। उसके अलावा यहाँ पे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनकी पार्किंग की भी भरपूर मात्रा में हम लोग ने प्रोविजन करके रखी है, जिससे कि भावी जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको कोई गाड़ी से लेकर कोई समस्या ना हो।
15: समुद्र तटों पर रेत के ऊपर करीब 1200 स्टील प्लेटें बिछाई गई। चौपाटियों और समुद्र तटों पर 23 जर्मन राफ्ट्स, 34 क्रेन, 85 एम्बुलेंस और 10 मोटर बोट तैयार रखी गई हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी ने 1132 लाइफ गार्ड तैनात किए हैं।
16: गणेश उत्सव बड़े ही संपन्न तरीके से अपने समय पर है। अब विसर्जन की बारी है। कल से गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाएगा। एक बहुत बड़ा योगदान इस सफल महापर्व में बीएमसी को भी जाता है। बीएमसी आने के बृहन मुंबई महानगर पालिका हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के गिरगांव चौपाटी पे देखिए एक बहुत ही ज्यादा भव्य मंच बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाया गया है। खास बात यह है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने यहां आने वाले वो सारे रास्ते जहां से गणपति बप्पा अपने जूम के साथ जुलूस के साथ अपने श्रद्धालुओं के साथ उतरेंगे, आसपास के झाड़ों की जो टहनियां हैं उसे काट दी गई है, सड़कों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और साथ ही साथ ये जहां मौजूद हैं गिरगांव चौपाटी है इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया गया है, ताकि सभी यहां पर आकर के अपने गणपति बप्पा का विसर्जन बड़े ही खुशी खुशी कर सकें। आपको बताएं कि लगभग 25,000 से ज्यादा जो बीएमसी के कर्मी हैं वो कल ड्यूटी पर तैनात होंगे। लगभग 380 से ज्यादा पूरे मुंबई भर में कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जिसमें से 12 तालाब गिरगांव चौपाटी पर भी है। इसके अलावा जितने भी आला बड़े अधिकारी हैं वो यहां मौजूद होंगे और ये जो विराट सा मंच बीएमसी द्वारा बनाया गया है यहां पर सभी बैठेंगे। कमिश्नर से लेकर के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो यहां पर बैठेंगे और यहां आने वाले जितने भी बड़े पंडालों के ऊंची ऊंची गणेश जी की प्रतिमाएं होती हैं उन सभी का दर्शन भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और ये सारी चीजें बड़े ही सुलभ तरीके से हो जाए इन चीजों का ख्याल भी रखेंगे।
15: ट्रैफिक पुलिस ने विसर्जन के दौरान मुंबई वालों को जाम से बचाने के लिए रूट डायवर्ट का प्लान तैयार किया है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई आज तक।
0: इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: The Prime Minister and Amit Shah are both going to be investigated for what has been done. Without any doubt. Both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy, and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई के अंधेरी इलाके में स्वप्राक्षय मित्र मंडल ने बीएमसी गौरव अवार्ड जीता है। इसकी थीम एक पेड़ की कहानी है और इस गणेश मंडल को पहला स्थान मिला है, जिसके तहत विजेता मंडल को 75,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। लगातार पेड़ काटे जाने वाली घटना पर आधारित एक 3 मिनट की फिल्म एलईडी में श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है, जिसमें एक पेड़ आईसीयू में एडमिट दिखाया जाता है जो अपनी दुर्दशा की कहानी सुना रहा है।
4: मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में, जिन्हें मुंबई के बीएमसी ने गौरव सम्मान दिया है, शील्ड दिया है और नंबर वन की पोजीशन हासिल की है। जी हां, सपना अक्षय मित्र मंडल के दरबार में मौजूद हूं और यहां पर एक ऐसी कहानी बताई गई है जिसकी वजह से बीएमसी ने इन्हें फर्स्ट प्राइज दिया है। सबसे पहले तो बप्पा का दर्शन करें, वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और बप्पा के आसपास की जो तस्वीरें हैं, जो दृश्य हैं, उसे देखने के बाद मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर पूरी कहानी बताई गई है। थोड़ा सा बाहर की तरफ भी चलते हैं और यहां पर आप देखें कि तीन विभागों में अलग अलग चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि आखिर क्यों बीएमसी ने इसी मंडल को चुना है नंबर वन की पोजिशन पे। तो देखिये यहां पर एक थिएटर बनाया हुआ है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आकर के बैठते हैं, पूरी तरह से एसी में तब्दील है। और अब थोड़ा चलचित्र देखें। दरअसल कहानी यह है कि एक वृक्ष है जो अपनी भाषा में, अपनी जुबानी, अपनी कहानी बता रहा है। ये एलईडी स्क्रीन है जिस पर वो सारी पूरी कहानी बताई जाती है। वृक्ष का साफ तौर से ये कहना है कि धीरे धीरे मैं जो हूं यहां से गायब होते जा रहा हूं और यही वजह है कि जितनी भी प्रकृति द्वारा जो भी दोष हो रहा है वही सबसे बड़ी वजह है।
3: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लगातार आज तक पर जारी हैं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए। और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप।
6: ये जो आज विवाद पैदा हुआ ये अलग किस्म का है। इसमें तो ये बात कही गई है मीडिया द्वारा कि इस किस्म की चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें विरोध प्रकट किया है जो कुछ प्रक्रिया चल रही थी। अब वो विरोध कब प्रकट किया, उस उन चिट्ठियों का कोई संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है।

इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन की जिसकी सबसे बड़ी मान्यता है, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, ये हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करने की कोशिश है। जो निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन है वो भी निष्पक्ष नहीं बची। और आपको याद होगा जिस समय समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव हारी थी, मैंने ये आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के वोटों को चिन्हित कर करके वोटर लिस्ट से निकाला गया था, डिलीट किया गया था।

चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी। चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार। दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। सीसी विवाद पर राहुल गांधी ने कहा ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दें। राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर हमला, कहा सरकारी गवाह बन जाएं ज्ञानेश, वोट चोरी से बने सभी कानून वैध।
1: ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं।
0: राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया एक एक करके जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी। बीजेपी ने कहा चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं है, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा राहुल गांधी का यह दावा कि एंटी इनकम्बेंसी केवल बीजेपी के आने के बाद शुरू हुई है, जो पूरी तरह से गलत है और हास्यास्पद भी।
2: नैतिक दृष्टि से एंटी इनकम्बेंसी देश का एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है और वो बीजेपी के आने के बाद हुआ है। मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य, राजनीतिक दृष्टि से ज्ञान शून्य राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है। यस, ये सही है, एंटी इनकम्बेंसी इज डेफिनेटली इज वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट कांग्रेस।
0: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों ही सदनों में ड्राफ्ट्स तैयार हो रहे हैं। इसी ने फॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों को खारिज किया, एसआईआर के तहत अतिरिक्त घोषणा पत्र का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार। अभिजीत दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा भारत अब उस शासन के आगे नहीं झुकेगा जिसने वोट और चुनाव चुराए। जमुई के बाद समस्तीपुर की घटना से बिहार शर्मसार, लड़की से छेड़छाड़ के केस में मंत्री अशोक चौधरी का बेशर्म बयान, ऐसी घटनाएं तो जापान अमेरिका में भी होती हैं। यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। सीएम योगी ने कहा आक्रमण करने वालों का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट नहीं, भारत की सनातन परंपरा और ज्ञान को नष्ट करना भी था। छत्रपति संभाजीनगर में बारिश की कमी से फसलें बर्बाद, रोहित पवार ने निपानी पहुंचकर लिया जायजा, तत्काल सूखा घोषित करने की मांग। खाद की कमी और बारिश की मार से किसान परेशान, रोहित पवार ने सरकार से मांगी है तत्काल राहत, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता की मांग की गई। संजय शिरसाट का रोहित पवार पर पलटवार, संभाजीनगर में किसानों को सरसठ मदद की जाएगी, सुरक्षा पर राजनीति बंद की जाए। वास्ते में फसल नुकसान का जायजा लेने पहुंचे फडणवीस, किसानों को सीधे आर्थिक मदद का ऐलान, चारा पानी और बच्चों की शिक्षा में भी सहायता का भरोसा। ओबीसी क्रीमिलेयर पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है 2 साल में जवाब, मार्च के आदेश को पिछली तारीख से लागू करने पर जताई आपत्ति। म्यांमार में आतंकी ट्रेनिंग के आरोप में गिरफ्तार 7 विदेशी नागरिकों को राहत, एनआईए कोर्ट ने 1 महीने के लिए परिवार से मिलने यूएसए यूक्रेन जाने की अनुमति भी दी। एफएसएसएआई का बड़ा फैसला, एनालॉग प्रोडक्ट को पनीर बताकर बेचने पर रोक, लेबल और मार्केटिंग से भी हटाना होगा पनीर का नाम। सेंट्रल ट्रैफिक रेंज की बड़ी कार्रवाई, सितंबर में अब 84 बसें जब्त और 1314 के चालान, परमिट नियम तोड़ने पर मालिकों पर भी कार्रवाई। विशेष छूट वाली दवाओं की बिक्री पर सख्ती, बिल 2 और शिफ्ट 2 में नहीं चलेगा खेल, संस्थागत सप्लाई पर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई लिखना अनिवार्य है। नकली काउंटरफिट दवाओं पर शिकंजा, अब उसी डॉक्टर या संस्थान के नाम पर होगी बिलिंग जहां दवा की आपूर्ति होगी, H1 और X दवाओं के लिए खरीद का आदेश जरूरी। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म के आरोप में दरोगा हेड कांस्टेबल सस्पेंड, बर्खास्तगी का प्रोसेस शुरू हुआ, चारों ही आरोपियों को कोर्ट में करेंगे पेश। जूनागढ़ में 5 साल की बच्ची को तेंदुआ उठाकर ले गया, खेत से शव बरामद हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गांव वालों में दहशत। गुरुग्राम में फिर से सामने आया खौफनाक रोड रेस, गोल्फ कोर्स रोड पर मां बेटी की कार से टक्कर, लोहे की रॉड से हमला किया, 20 दिन के बाद FIR। सहरसा में आपदा प्रबंधन मंत्री ने किया दावा, सामुदायिक किचन में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा बाढ़ पीड़ितों ने किया है भोजन। मुजफ्फरनगर में नहाते समय महिला का वीडियो बनाया गया, वायरल करने की धमकी देकर 3 साल तक यौन शोषण के आरोप है, आरोपी गिरफ्तार। भिवंडी में 3 सवारियों की क्षमता वाले ऑटो में 17 स्कूली बच्चों को ठूस कर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है, ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर में 7 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, डीजे मालिक और ऑपरेटर गिरफ्तार। खरगोन में गणेश पंडाल में गरबा करने को लेकर एक समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, पथराव, 3 लोग घायल हुए, 3 लोगों की गिरफ्तारी। सूरत में लग्जरी बसों की टक्कर, 2 बसों की सवार मामूली चोटें बसों में सवार यात्रियों को आई हैं। बाल बाल एक बड़ा हादसा होने से बचा। अलवर में व्यापारी के तमंचे की नोक पर बदमाशों ने लूटपाट कर डाली। घटना के बाद व्यापारियों ने भारी आक्रोश जताया। 1,60,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे बदमाश। नागपुर में दो परिवारों ने बच्चों के बीच विवाद में हिंसक मोड़ ले लिया। बच्चों के माता पिता आपस में भिड़ गए। लोहे की रॉड से हत्या की गई। घटना का फुटेज सामने आया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर पैसेंजर बस में भीषण आग लगी। 14 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। राजकोट में मोरबी रोड पर भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की इसमें जान चली गई है। सवाई माधोपुर में एक होटल परिसर में घुस गया था लेपर्ड। होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लेपर्ड की गतिविधि। अहमदाबाद में अमेरिका के लोगों को ठगने वाले कॉल सेंटर को पकड़ा गया। बैंक और वकील की फर्जी पहचान बताकर 200 से ज्यादा लोगों को ठगा गया था। 2 युवतियां और 7 टोटल गिरफ्तारी। बरनाला में युवक ने जहरीला पदार्थ सेवन करके जान देने की कोशिश की। पुलिसकर्मी पर रिपोर्ट के बदले 5,000 से 10,000 रुपए मांगने के आरोप भी लगाए। इंदौर में खाना ठंडा होने पर डिलीवरी बॉय से मारपीट की गई। शराब के नशे में विवाद का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में चारा लेने निकले थे दोनों मासूम भाई। पटाखों के कचरे में हुआ धमाका। छोटा भाई 4 दिन से वेंटिलेटर पर, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। जालौन में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्लीपर बस में भीषण आग लगी। 9 की मौत हुई। उरई के हासिम खान ने जान पर खेलकर 13 से 14 लोगों को बचाया। फरीदाबाद में 30-40 युवकों का उत्पात। वर्कशॉप पर और पथराव और लाठी डंडों से हमला। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उदयपुर में मशहूर गणपति मन्नत वाले राजा का भव्य श्रृंगार। बप्पा को धारण कराई गई। 2,51,00,000 रुपए नोटों से बनी हुई अनोखी आंगी। इस अनोखे श्रृंगार में 50, 100, 200, 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया। इस सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अकोला में कलाकार की अनोखी भक्ति से लोगों ने तारीफें की। 35,000 मोतियों से बनाई गई है

गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में भादरवी महामेला का आयोजन, 450 ड्रोन से शानदार ड्रोन शो। गणेशोत्सव को लेकर आगरमालवा में विशेषता, उत्सव में 10 दिनों तक होता है रामलीला का आयोजन। अनंत चतुर्दशी पर श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ संपन्न होगी ये रामलीला, 1951 से लगातार जारी है परंपरा। बद्रीनाथ धाम में महाब्रह्म कपाल में पितृपक्ष की तैयारियां तेज हुई, पितरों के मोक्ष के लिए उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 26 तारीख से शुरुआत होगी। पितृपक्ष का विशेष धार्मिक महत्व है, इस दौरान लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। मुंबई गणेश विसर्जन को लेकर गिरगांव चौपाटी पर बीएमसी की तैयारियां पूरी हुई, पुलिस बंदोबस्त और ट्रैफिक कंट्रोल का भी खास इंतजाम। हाईटेक हुई दिल्ली पुलिस, संदिग्ध वस्तुएं या बम जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष हाईटेक रोबोट का किया गया है लाइव डेमो। इंसानी जान को जोखिम में डाले बिना खतरनाक और लावारिस वस्तुओं की जांच करना, उन्हें और सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करना रोबोट का काम होगा। केदारनाथ धाम में दिखा आस्था का सैलाब, 15 लाख पार हुआ है भक्तों का आंकड़ा। पहाड़ों पर मौसम बदल गया, उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी हुई है पहली, चक्र तीर्थ में खिले सैलानियों के चेहरे। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला है मेडल, अनंतजीत सिंह नारुका और परिणाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम में ब्रॉन्ज जीता। दोनों ही निशानेबाजों का इस खेल में दूसरा पदक है, दोनों ही एथलीट्स ने कल ही मेंस और वेमेन्स की टीम में मेडल जीत लिया था। एशियन गेम्स 2026 में रोशिबेना देवी ने रच दिया इतिहास, वुशू में देश को दिलाया है सिल्वर मेडल। 25 वर्षीय रोशिबेना का यह तीसरा एशियाड मेडल है, इससे पहले उन्होंने जकार्ता पालेमबांग में 2018 में खेलों में ब्रॉन्ज और 2023 में हांगजो खेलों में सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में जीता है ब्रॉन्ज, सतनाम का ये एशियन गेम्स में लगातार दूसरा रोइंग मेडल। दुर्गा पूजा से दिवाली तक 29 दिनों में करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान है, कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर में मिलेगा त्योहारी सीजन का सबसे बड़ा फायदा। लैबग्रोन डायमंड्स और डिमांड घटने से 2021 के मुकाबले नेचुरल डायमंड्स 30-40% सस्ते हुए, इस गिरावट के बावजूद महंगे सोने ने डायमंड ज्वेलरी की कीमतों में नहीं आने दी है कमी। कोटक महिंद्रा बैंक के मुताबिक 25 से 30 साल के होम लोन ग्राहकों को संख्या 2 साल में 86% बढ़ गई है, होम लोन पोर्टफोलियो में जेंसी की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 9% हुई। आईसीआरए की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 530 करोड़ रुपए का नुकसान, ओएमसीएस को पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 9 रुपए प्रति लीटर का घाटा। सरकार ने क्रूड सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी 16.5% से 5% कर दी है, पिछले एक साल में करीब 20% महंगा हो गया था खाने का तेल, त्योहारी सीजन में राहत मिलेगी। यूबीएस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में पर्सनल लोन ग्रोथ का नया दौर शुरू हुआ है, अगस्त में एनबीएफसी के पर्सनल लोन ग्रोथ 30% पर पहुंच गई है। आईआरडीए ने बीमा एजेंट्स के कमीशन के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, प्रोडक्ट की जटिलता से एजेंट का कमीशन जोड़ने से कमीशन की सीमा घटने और हटने के बाद बड़ी लागत पर लगाम की कोशिश। रिटेलर्स एसोसिएशन के सर्वे में दावा किया गया कि अगस्त में रिटेल सेक्टर की बिक्री 10% बढ़ गई है, पश्चिम भारत में सबसे तेज ग्रोथ। सरकारी रिफाइनर्स ने एलपीजी उत्पादन को अगस्त के औसत से करीब 20% बढ़ाकर 44,000 टन रोजाना तक पहुंचाया, त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने और खाड़ी क्षेत्रों से सप्लाई जोखिम के बीच कदम उठाया। एफएसएसएआई ने कुछ फूड प्रोडक्ट्स के कथित भ्रमित करने वाले दावों को लेकर 5 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, ऑनलाइन ग्रोसरी खरीदने पर प्रोडक्ट लेबल और दावों की विश्वसनीयता पर निगरानी बढ़ने की संभावना। वेलकम फिल्म एक्टर मुश्ताक खान का निधन हुआ, 56 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, 5 साल से कैंसर से पीड़ित थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मच अवेटेड फिल्म आज रिलीज होगी, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू। आज से थिएटर्स में आ रही है महाकाव्य श्री रामायण कथा, अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। एवेंजर्स एंड गेम एनकोर भी आज दोबारा से बड़े पर्दे पर लौट रही है, दिसंबर में डूम्सडे से पहले मार्वल फैंस के लिए शानदार तोहफा। एक बार फिर से साथ आए इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी, फिल्म गनमास्टर G9 का पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज किया गया। परिणीति चोपड़ा की सीरीज शक ट्रस्ट नो वन आज स्ट्रीम होगी, एक मां को अपने खोए हुए बच्चे की खोज पर है ये सीरीज। अनीत पड्डा फातिमा सना शेख की अदाकारी से सजी वेब सीरीज हुंकार इस हफ्ते रिलीज होगी, कल से जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे। आलिया भट्ट ने प्रोडक्शन में बनी फिल्म डोंट बी शाय रिलीज हो रही है, कल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। ओटीटी पर आ रहा है रियलिटी शो राइज एंड फॉल का सीजन 2, इस नए सीजन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे। मराठी सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म अफरा तफरी का ट्रेलर रिलीज हुआ, कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है 3 भाइयों की कहानी। यूक्रेन से शांति समझौते पर रूसी सरकार का

बयान का। यूक्रेन में अस्थायी सीज फायर नहीं, स्थायी शांति समझौता चाहता है रूस। काला सागर की सुरक्षा को लेकर न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच मुलाकात। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रस्क का बड़ा बयान का। दिसंबर में अमेरिका में होने वाले G20 बैठक में रूसी राष्ट्रपति को बुलाने से यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता जारी रखने को मिल सकता है बढ़ावा। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्कीव पर बड़ा हमला, कीव में 2 लोगों की मौत हुई, खार्कीव में 6 लोगों की मौत की खबर। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी डीजल निर्यात पर संभावित रोक को लेकर जताई है चिंता। यूरोपीय यूनियन ने कहा डीजल निर्यात पर रोक से अमेरिकी और EU के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को दी है सावधानी बरतने की सलाह। कहा ताइवान को हथियार बेचने पर बेहद सावधानी बरते अमेरिका। ओमान के तट पर के पास कोयला ले जा रहे MV केप दाओ पर ईरानी मिसाइल से हमला। हमले में एक भारतीय क्रू समेत 1 की मौत हुई, बाकी 27 नाविकों को रॉयल ओमान नेवी ने रेस्क्यू किया। परमाणु हथियारों पर उत्तर कोरिया सरकार का बड़ा बयान। कहा उत्तर कोरिया को मिला परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा, बदला नहीं जा सकता, नहीं होगा कोई निरस्त्रीकरण। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला, 10 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान ने कहा इन ठिकानों से 1 दिन पहले पाकिस्तान पर किए गए थे ड्रोन से हमले। UN महासभा में अफ्रीकी नेताओं ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को दोहराया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा UN चार्टर के तहत देश संप्रभु और बराबर।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको वो अभूतपूर्व आज तस्वीर दिखाएंगे जहां सबसे सख्त रुख अपनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए 64 सालों का अमेरिकी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पहुंचे। लाल कालीन पर घुटनों के बल बैठकर दाग पोंछते अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर और ट्रंप की ये भारी आदर सत्कार दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये बिजनेसमैन माइंडसेट और ये मेहमान नवाजी जिनपिंग के साथ कोई मेगा डील करा पाएगी।

0: और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे फर्स्ट लेडी पेंग लियान चाइना की सॉफ्ट पावर है। शी जिनपिंग की पत्नी पहले से ही चाइना की मशहूर फोक सिंगर और आर्मी की स्टाफ परफॉर्मर थी, लेकिन शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद पेंग लियान ने चाइनीज कल्चर और मेड इन चाइना को पूरी दुनिया में प्रमोट किया और यही वजह है कि आज उन्हें चाइना का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर माना जाता है। अगली खबर जिससे हम सबको सतर्क होना है, अगर एआई को वक्त रहते नहीं रोका गया तो क्या मानव सभ्यता तबाही की ओर बढ़ रही है? ये सवाल अब दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी चलाने के वाले सीईओस, जो सबसे बड़ी एआई कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनके सीईओ खुद कह रहे हैं कि एआई से मानव जाति को, मानव रेस को अब खतरा है। इन एआई टेक कंपनीज के सीईओस की सबसे बड़ी फिक्र अब बन चुका है खुद एआई। सैम ऑल्टमैन, डारियो एमेडोय, क्लेमेंट डेलांग, तमाम जो टेक दिग्गज हैं जो एआई में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन के मंच से चेतावनी दी है कि अगर एआई पर सख्त नियम नहीं बने तो इससे इंसानों का नियंत्रण खत्म होना और बायोलॉजिकल हथियारों का खतरा तय है। अगली खबर चुनाव आयोग के अंदर मतभेद की खबरों पर अब आयोग ने अपनी बात साफ की है। मामला फॉर्म 6 से जुड़ा है जिसे नए वोटर अपना नाम जुड़वाने के लिए भरते हैं। खबर आई थी कि आयोग के दो अधिकारियों ने इसमें बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्य फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो भी नई जानकारी जोड़ी गई है वो फॉर्म के साथ एक अलग एनेक्सर के रूप में जोड़ी गई है। चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों के बाद देश की राजनीति में भूचाल आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे उनके इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी से ही कानून की चोरी होती है।
1: टू एम्फसाइज, फ्रॉम वोट चोरी कम्स कानून चोरी, बिकॉज इफ द वोट इज स्टोलन द लीगल स्ट्रक्चर इज गॉन।
0: कंटेनर, आंसू गैस और लाठीचार्ज के बाद अब पाकिस्तान पुलिस का नया हथियार है नेट गन। इस्लामाबाद पुलिस को इस बार नेट लॉन्चर से लैस किया गया है, जो हवा में 30 से 40 फीट दूर से ही मजबूत जाल फेंककर किसी भी उग्र प्रदर्शनकारी को कुछ सेकंड्स में पूरी तरह जकड़ लेता है। तो क्या इस बार इमरान की पार्टी पीटीआई का मार्च गोलियों से नहीं बल्कि पुलिस के इस जाल में उलझकर दम तोड़ेगा? क्योंकि इमरान खान और उनकी बहनों के खिलाफ कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उनके समर्थन में निकल सकते हैं। तो पाकिस्तान पुलिस की तैयारी देख लीजिए।

आज हम कहेंगे बस करो क्योंकि देश की सड़कों पर दौड़ती स्लीपर बसें। जी हाँ, अगली खबर जो वापस देश के अंदर से है, जो हालत है आज देश में स्लीपर बसों की, कभी भी आग का गोला बन जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जल गए। हैरान करने वाली बात यह है कि जब यात्रियों ने धुआं उठने की शिकायत की तो ड्राइवर कंडक्टर हंसते हुए बोलो, मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे। आखिर इस देश में कौन से नियम हैं और कौन सी वो व्यवस्था है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी को इस तरह से खतरे में डाला जा रहा है? 8 लोग जिंदा जल जाएं और इस व्यवस्था इन मंत्रालयों के कान पर जू तक नहीं। कुल 9 लोग मारे गए हैं, जिंदा जले हैं 9 लोग और किसी के कान पर कोई असर नहीं है। और अगली खबर, बिहार के जमुई की उस खौफनाक वारदात का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अब समस्तीपुर से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक और बर्बर तस्वीर सामने आई है। एक बेबस नाबालिग बच्ची, बीच रास्ते में 4 दरिंदे जो उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस मासूम ने हिम्मत नहीं हारी, वो उन भेड़ियों से लगातार लड़ती रही। और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महिलाओं के लिए सुरक्षा के दावे पर एक बहुत बड़ा सवाल इस वीडियो के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन आज सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की को सम्मान देकर अपनी बातें मनवा पाएंगे और क्या ये मेहमान नवाजी सौदेबाजी में भी काम आएगी। चाणक्य की नीति में किसी भी देश या उसके शीर्ष नेता से अपना काम निकलवाने के लिए 4 उपाय बताए गए। पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। और इसे कई लोग साम, दाम, दंड, भेद की नीति भी कहते हैं। अब जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब उन्होंने चाइना से अपनी बातें मनवाने के लिए दंड नीति का इस्तेमाल किया, चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया। यह भी तब हुआ जब अमेरिका के ज्यादातर नेता ये मान रहे थे कि चाइना के खिलाफ दंड नीति का इस्तेमाल करने से दोनों देशों का नुकसान हो सकता है, लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी की सुनी नहीं। उस वक्त क्या, आज से सिर्फ 10 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप चाइना के खिलाफ काफी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज जैसे ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 सालों के बाद स्टेट विजिट के लिए अमेरिका पहुंचे तो राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार ने एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा। सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लुआन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसका प्लेन साइड वेलकम उनका किया। तो उनका प्लेन साइड वेलकम करने का मतलब यह होता है कि अपने मेहमान के विमान की सीढ़ियों के बिल्कुल नजदीक खड़े होकर उनका स्वागत करना। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा अमेरिका के इतिहास में 64 सालों के बाद किया। अब इससे पहले आखिरी बार साल 1962 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन का प्लेन साइड वेलकम किया था और उस वक्त ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी माने जाते थे, एलाइज। जबकि आज अमेरिका और चाइना एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना सबसे खास दोस्त बताते हुए उनका भव्य स्वागत किया और कैसे चाइना को लेकर अब वो दंड नीति की जगह साम नीति अपना रहे हैं, उसके लिए ये तस्वीरें पहले देखिए।

इन तस्वीरों में राष्ट्रपति ट्रंप की साम नीति साफ नजर आती है। साम नीति का अर्थ है अपने दुश्मन को जरूरत से ज्यादा आदर और सम्मान देकर उसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करना या उसके साथ अपनी सौदेबाजी को सहज बनाना। और जानते हैं इसके लिए आज अमेरिका ने क्या क्या किया। जिस रेड कार्पेट पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत हुआ वो 100 फीट लंबा था और अमेरिका में उसका इस्तेमाल खास कूटनीतिक मौकों पर ही किया जाता है। यही नहीं, जब इस रेड कार्पेट को बिछाया जा रहा था तब इस पर कुछ जगह कुछ गंदगी रही होगी, दाग लगे होंगे। साफ करने के लिए अमेरिकी जो वहां पर अब सैनिक थे या अधिकारी थे, जो भी थे, ये अमेरिकी घुटनों के बल बैठ गए। पूरे 12 से 15 सेकंड के वीडियो में अमेरिकी सैनिकों को काफी हड़बड़ी में देखा गया, जो भी अधिकारी थे, सैनिक थे। इस घटना को लेकर चाइना के मीडिया ने भी कटाक्ष किया और ये लिखा कि चाइना में स्टेट विजिट से पहले हर छोटी चीज तय और व्यवस्थित होती है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। देखिए,

अब इन तस्वीरों से दो बातें तो समझ में आती है, जिनमें पहली बात यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीदों के विपरीत जाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात है उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही और हम चाहते हैं कि आप इस पर भी एक बार सोचे जरा। असल में कोई भी देश अपने सहयोगी देशों के साथ ज्यादा नरम रुख अपनाता है, जबकि दुश्मन प्रतिद्वंदी देशों के साथ एक मतलब फॉर्मल बिहेवियर रहता है, औपचारिक रिश्ता रखता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसका उल्टा करते हैं। वो अपने सहयोगी देशों को धमकियां देते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, कई बार उन्हें द्विपक्षीय मुलाकात में असहज कर देते हैं, लेकिन जो दुश्मन देश है उनके नेताओं को राष्ट्रपति ट्रंप भर भर के सम्मान देते हैं। उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का बिजनेसमैन माइंडसेट है, जिसमें वो किसी भी देश को दोस्त या दुश्मन के नजरिए से नहीं बल्कि बैलेंस शीट यानी नुकसान और फायदे के नजरिए से देखते हैं। जैसे ट्रंप का मानना है कि यूरोपीय देश आज और जापान सालों से अमेरिका की सैन्य सुरक्षा का मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं और व्यापार में अमेरिका को घाटा दे रहे हैं, इसलिए वो अपने सहयोगी देशों के साथ सख्त रुख अपनाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अगर उन्हें अमेरिका की सुरक्षा चाहिए तो जेब से पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन वही विरोधी जैसे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ वो नरमी दिखाते हैं, उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे इन नेताओं से सगा राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कोई नहीं है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को पता है कि ये देश सीधे अमेरिका के नियंत्रण में है ही नहीं और ऐसे में उनसे फायदा निकालने के लिए या तो युद्ध करना होगा जो महंगा होगा या फिर व्यक्तिगत संबंध बनाकर बड़ा सौदा यानी मेगा डील करनी होगी। और यहां भी अगर आप देखेंगे तो जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जापान की मौजूदा प्रधानमंत्री सुनाए ताकाइची व्हाइट हाउस आती हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें वैसा सम्मान नहीं देते जैसा अभूतपूर्व सम्मान वो अपने दुश्मन देशों के नेताओं को देते हैं। और ऐसा करने के पीछे उनका एक ही बड़ा कारण है और वो है इन विरोधी देशों के साथ मेगा डील करना, अमेरिका के लोगों को यह बताना कि जिन देशों के साथ पहले के राष्ट्रपति कुछ भी ठोस हासिल नहीं कर पाए उनके साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महान सौदे किए हैं और आज भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ऐसा ही सौदा करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं उसके लिए इन तस्वीरों को याद कीजिए। इसी साल मई का महीना राष्ट्रपति ट्रंप 33 प्रभावशाली लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर चाइना की स्टेट विजिट पर आए थे, जिसमें परिवार और कैबिनेट के मंत्रियों के साथ अमेरिका की 17 बड़ी कंपनीज के सीईओज और बड़े अधिकारी शामिल थे। और उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को यही उम्मीद थी कि वो चाइना के साथ एक मेगा डील पर सहमति बनाने में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ट्रंप को अपनी टीम के साथ खाली हाथ वापस अमेरिका लौटना पड़ा। यानी उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप की साम नीति किसी काम नहीं आई और इसीलिए अब वो एक बार फिर से चाइना के साथ डील करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डील क्या हो सकती है वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना से क्या चाहिए। एक बिजनेसमैन माइंडसेट के तहत राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि चाइना अमेरिकी कृषि उत्पादों और बोइंग विमानों की खरीद के अपने पुराने वादों को तेजी से पूरा करे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा पहुंचे। दूसरा, उन्होंने ट्रेड वॉर पर अस्थायी युद्ध विराम को सिर्फ 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया है ताकि चाइना पर उनकी जो सौदेबाजी की पकड़ यानी एक तरह का लिवरेज बना रहे। और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप को अपने कार्यकाल के बचे हुए 2.5 सालों में अमेरिकी जनता और निवेशकों को यह दिखाना है कि वो चाइना से बेहतरीन डील करवा सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना की रणनीति काफी अलग दिखती है। चाइना इस वक्त सिर्फ अमेरिका से टाइम बाय कर रहा है, यानी समय किसी तरह से बिता रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल में किसी बड़े आर्थिक संकट या नए टैरिफ युद्ध में फंसना ही नहीं चाहते कि भाई जो टाइम है इसके साथ ऐसे ही निकालो। दूसरा, इस वक्त सौदे के लिए जितना बेताब अमेरिका है उतना बेताब चाइना नहीं है। अमेरिका में मिड टर्म के चुनाव है और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता भी लगातार गिर रही है और ऐसे में चाइना के सामने कोई मजबूरी नहीं है कि वो डील के लिए मजबूर हो। उल्टा चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका के खिलाफ ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल किया है, जिनके बिना अमेरिका फोन से लेकर हवाई जहाज तक बना ही नहीं सकता था।
यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका पहुंचने पर स्वागत हुआ, उससे तो ये पता चलता है कि अमेरिका अब चाइना को एक बराबरी की महाशक्ति मानने पर मजबूर हो गया। और दूसरा, चाइना इस दौरे को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के रूप में देखेगा। यानी चाइना ऐसा मानता है कि ताइवान, साउथ चाइना सी और सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन को लेकर अमेरिका का जो रुख है, वैसी परिस्थितियों में कोई आशंकी सौदा तो हो सकता है, लेकिन बड़ी डील शायद मौजूदा हालात में मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये द न्यू टाइम्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अभी अमेरिका और चाइना के बीच वाटर पोलो मैच खेला जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी पानी के ऊपर से नियमों के मुताबिक खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के भीतर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, किक मार रहे हैं। और अमेरिका और चाइना के बीच भी यही खेल चल रहा है, और इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। आबादी के मामले में चाइना और अमेरिका दुनिया के 3 शीर्ष देशों में आते हैं। भारत के बाद पूरी दुनिया में 141 करोड़ लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है वो चाइना में रहती है, जबकि लगभग 35 करोड़ लोगों के साथ तीसरी सबसे बड़ी आबादी अमेरिका। हालांकि चाइना में अमेरिका से 100 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं, और इसी आबादी का फायदा चाइना को पिछले 40 सालों में मिला है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो सिर्फ 46 सालों में, 46 ईयर्स पहले, चाइना एक गरीब देश था और अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश था। चाइना की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की भी नहीं थी, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की। उस दौर में अमेरिका को लगता था कि चाइना से कभी उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता और चाइना एक गरीब देश बना रहेगा। लेकिन साल 1980 से 2026 के बीच चाइना की अर्थव्यवस्था के आकार में 6,850% की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसी दौरान 1,032% की वृद्धि। और चाइना अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था 3,107 लाख रुपए की है, जबकि चाइना की आज अगर आप देखिए तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 3,107 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था 2,000 लाख करोड़ रुपए की है। और यहां बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बताता है, लेकिन इसी दौरान उसे चाइना से यह कहना पड़ता है कि किसी भी तरह उसके किसानों का सोयाबीन और दूसरा सामान खरीदे। 2025 में अमेरिका और चाइना के बीच 31,85,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, 31,85,000 crores, जिसमें अमेरिका का व्यापार, जो व्यापार घाटा था, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का, वो 16,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। यानी अमेरिका चाइना के सामान पर काफी हद तक निर्भर हुआ, धीरे धीरे चाइना का ही सामान ज्यादातर अमेरिकी बाजार में फैल गया, लगभग समझिए कब्जा हो गया। और आज स्थिति है कि चाइना अगर दुर्लभ खनिज निर्यात करने से इनकार कर दे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाएगा। अमेरिका और चाइना के बीच एक और बड़ा फर्क यह है कि जहां अमेरिका को अपना सुपर पावर का ताज बचाना है, वहीं चाइना की कोशिश यह है कि वो इस ताज को जल्द से जल्द हासिल करे। इसके लिए चाइना ने खुद को अमेरिकी कंपनीज के प्रभाव से बाहर निकाला। आज मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितनी प्लेटफॉर्म्स जो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन चाइना में इन पर प्रतिबंध है। चाइना इनकी जगह अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करता है और अमेरिकी प्रभाव को एक तरह से चुनौती देता है। इसके अलावा अगर सैन्य शक्ति में दोनों देशों की तुलना करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है, जबकि चाइना के पास दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना बताई जाती है। और बड़ी बात यह है कि चाइना बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और चाइना का विशाल क्षेत्रफल भी उसके लिए एक बड़ी ताकत है। चाइना का कुल क्षेत्रफल जो है वो 93,88,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अमेरिका का क्षेत्रफल 91,47,000 वर्ग किलोमीटर। और दोनों देशों में एक और बड़ा फर्क है कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना की सत्ता में स्थायी माने जाते हैं और मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें हटाया नहीं जा सकता, तब राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल का बचा है और उनकी लोकप्रियता भी अपने सबसे निचले स्तर पर है, 32% पर पहुंच गई है। यह भी तब हुआ है जब चाइना को लेकर अमेरिका के लोगों की राय बदल रही है। साल 2021 में अमेरिका के सिर्फ 9% लोग चाइना के प्रति सकारात्मक राय रखते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 19% हो गया है। इसी तरह जो लोग चाइना के प्रति नकारात्मक राय रखते थे उनकी संख्या 2021 में 68% थी, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या भी
54% रह गई है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता कम हो रही है, तब उसी वक्त चाइना को लेकर अमेरिकी जनता की राय बदल रही है, और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बदलते मूड को देखते हुए अमेरिका और चाइना का G2 यानी ग्रुप 2 बनाना चाहते हैं। सोचिए, एक जमाने में जो अमेरिका किसी देश को अपने साथ बराबरी का नहीं मानता था, वही अमेरिका आज ट्रंप के नेतृत्व में चाइना के साथ G2 बनाने की बात कह रहा है। और इसके लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की स्टेट विजिट पर आए हैं, और जानते हैं स्टेट विजिट पर क्या क्या होने वाला है। भारतीय समय अनुसार आज रात व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद रोज गार्डन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी सैन्य सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। इस समारोह के बाद व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, और आखिर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप करेंगे। देखिए,

0: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन को चाइना की सॉफ्ट पावर क्यों माना जाता है। साल 2013 में जब शी जिनपिंग पहली बार चाइना के राष्ट्रपति बने, तब उससे पहले चाइना में फर्स्ट लेडी को बहुत लो प्रोफाइल माना जाता था। उस वक्त पूर्व राष्ट्रपतियों की पत्नियां ना तो विदेश दौरों पर जाती थी, ना ही मीडिया या सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादा हिस्सा लेती थी। लेकिन जब शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति बने, तब उनकी पत्नी ने इस परंपरा को हमेशा के लिए पलट दिया। वो नियमित रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विदेशी दौरों पर जाने लगे। इनमें भी साल 2013 का रशिया दौरा उनके और चाइना के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साबित हुआ। उस वक्त मॉस्को में विमान से उतरते वक्त पेंग लियुआन ने जो गहरे नीले रंग का ओवरकोट, स्कार्फ और ब्लैक हील्स पहनी थी, उसकी तस्वीरें चाइना के सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई और चाइना के लोगों ने उन्हें अपना फैशन आइकन कहना शुरू कर दिया। उस वक्त आलम यह था कि चाइना की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर उनके जैसे दिखने वाले कोट, स्कार्फ मिनटों में बिक रहे थे, आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे। और द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि पेंग लियुआन ने अपने फैशन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली थी। ये पहला ऐसा मौका था जब दुनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी के बारे में जान रही थी, जबकि चाइना के लोग उन्हें मामा पेंग कह रहे थे। इसके कारण यह था कि पेंग लियुआन अपने शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ज्यादा लोकप्रिय थी। जब 1986 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पेंग लियुआन की पहली बार मुलाकात हुई, तब पेंग लियुआन पूरे चाइना के एक सुपरस्टार गायिका के रूप में जानी जाती थी, जबकि शी जिनपिंग उस समय केवल एक छोटे शहर शैमन शहर के डेप्यूटी मेयर थे। पेंग लियुआन को सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब वो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी। उस दौर में वो आर्मी की सिविलियन विंग में संगीतकार और परफॉर्मर के तौर पर काम कर रही थी और बाद में उन्हें मेजर जनरल के बराबर तक रैंक भी दी गई। कई बड़े और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था और उनके गाने चाइना में लोगों को देशभक्ति के करीब लेकर जाते थे। एक नेशनलिस्ट फोक सिंगर समझिए, एक बहुत ही राष्ट्रवादी जो लोक गायिका। और इसी रूप में पेंग लियुआन की पहचान घर घर तक पहुंची और जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, वो चाइना की फर्स्ट लेडी बनी, तब लोग उन्हें मामा पेंग कहने लगे। इसका कारण यह था कि पेंग लियुआन अपने विदेशी दौरों पर अक्सर अनाथालयों, स्कूल्स, बच्चों के अस्पतालों का दौरा करती थी और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे देशों में मेड इन चाइना कपड़ों और चाइना की संस्कृति को प्रमोट करना नहीं भूलती थी। इन्हीं सारी वजहों से चाइना ने अपनी जो सॉफ्ट पावर कहना शुरू कर दिया उनकी पत्नी को, जो चाइना की संस्कृति पहचान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जा रही थी। और आज भी अगर आप उनके पहनावे को देखेंगे तो चाइना के डिजाइनर्स द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक और आधुनिक चीनी परिधान जैसे चंगसान या किपाओ पहनती हैं। देखिए,

0: या आप ये भी समझिए कि पेंग लियान से पहले जितनी भी फर्स्ट लेडीज रही वो लो प्रोफाइल क्यों रहती थी। इसके पीछे जियांग किंग को बड़ा कारण माना जाता था, जो चाइना के पहले सर्वोच्च नेता माओ त्से-तुंग की चौथी पत्नी और पूर्व अभिनेत्री थी। 1966 से 76 के बीच जब चाइना में सांस्कृतिक क्रांति हुई, तब फर्स्ट लेडी रहते हुए जियांग किंग का सत्ता में दखल इतना ज्यादा था कि वो इस क्रांति की प्रमुख नेता बन गई थी, और बाद में उन पर कई लोगों की हत्याएं करवाने का आरोप लगा। जब 1976 में माओ की मौत हुई तब जियांग किंग को गिरफ्तार करवा लिया गया। जिस तरह राष्ट्रपति की पत्नी रहते हुए उन्होंने सत्ता में दखल दिया, उसी को देखते हुए बाद के राष्ट्रपतियों ने ऐसे नियम बनाए जिनका उद्देश्य यह था कि नेताओं की पत्नियों को लो प्रोफाइल रखना है। यही नहीं, मिसाल पेश करने के लिए जियांग किंग 1981 में मौत की सजा भी सुनाई गई थी, जिससे बाद में उम्र कैद में बदला गया। हालांकि जियांग किंग ने कभी भी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया। मई 1991 में बीजिंग में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त स्थिति यह थी कि चाइना के सरकारी मीडिया में उन्हें तरह तरह की गालियां दी जा रही थी, और इसके बाद राष्ट्रपतियों की पत्नियां मीडिया की खबरों से दूर रहने लगी। हालांकि अब फर्स्ट लेडी पेंग लियान को चाइना का मीडिया सॉफ्ट पावर कहता है, और यहां आप ये भी देखिए कि दुनिया में कैसे अमेरिका की घटती साख का फायदा अब चाइना को मिल रहा है। प्यू रिसर्च ने 20 से ज्यादा देशों में अमेरिका और चाइना को लेकर एक सर्वे किया, जिसमें यह पता चला कि पहले इन देशों में 58% लोग अमेरिका को पसंद करते थे और 32% लोग चाइना को, लेकिन आज 46% लोग इन देशों में चाइना को पसंद करते हैं और सिर्फ 36% लोग बचे हैं जो अमेरिका को। तो अमेरिका की लोकप्रियता भी खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में काफी गिरी है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि वैश्विक मामलों में अमेरिका की भूमिका और फैसले सही होंगे, लेकिन अब लोगों का अमेरिका पर जो भरोसा था वो सर्वे के अनुसार कम हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो देश अमेरिका के करीबी और सहयोगी रहे उन देशों में अब अमेरिका पर भरोसा तेजी से कम हो रहा है, और चाइना पर इन्हीं देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। यानी अमेरिका की घटती साख और उसका सीधा फायदा चाइना को मिल रहा है, और इन्हीं देशों में ज्यादातर लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मुकाबले राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसंद कर रहे हैं। और ये सर्वे कहीं ना कहीं ऐसा संकेत देता है कि दुनिया अमेरिका की नीतियों से खुश नहीं है और अब उसने दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखना शुरू कर दिया है। खैर, स्टेट विजिट के बीच एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका और चाइना के बीच नया टकराव पैदा कर सकती है। अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट, मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के बेहद संवेदनशील कलपुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स चाइना के नियंत्रण वाले क्षेत्र हांगकांग में पहुंच गए हैं, और चाइना की सरकार ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। पेंटागन के मुताबिक ये पुर्जे ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के एक F-35 विमान के थे, जिन्हें मरम्मत और निरीक्षण के लिए अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन दावा है कि ये शिपमेंट रहस्यमय तरीके से अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस अपना रास्ता भटक गया और प्रशांत महासागर को पार करते हुए हांगकांग पहुंच गया, डाइवर्ट हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हांगकांग में चाइना की सरकार ने इन पुर्जों को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिका में बार बार मांगने पर भी वापस नहीं दिया गया। और यह भी तब हो रहा है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की स्टेट विजिट पर है। इस घटना के बाद अमेरिका को सबसे बड़ा डर है कि क्या चाइना इन पुर्जों को देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, यानी इन पुर्जों की नकल करके F-35 जैसा स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना सकता है। पश्चिमी मीडिया ऐसा लिख रहा है कि चाइना के वैज्ञानिक इस बात की बारीकी से जांच कर सकते हैं कि अमेरिका ने रडार को धोखा देने के लिए किस केमिकल और मेटल कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर है जिसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। वो इसके जरिए अपनी खुद की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और आधुनिक बना सकते हैं। दूसरा, इन पुर्जों से चाइना को यह समझने में मदद मिल सकती है कि F-35 को रडार पर कैसे पकड़ा जाए। अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो युद्ध की स्थिति में अमेरिका की हवाई बढ़त खत्म हो जाएगी। और तीसरा, कई विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि सिर्फ दो पुर्जों से पूरा विमान कॉपी करना असंभव है, और F-35 की असली ताकत उसके जटिल सॉफ्टवेयर, सेंसर फ्यूजन और आधुनिक इंजन में है। AI टेक्नोलॉजी के दो दिग्गज देश चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात चल रही है, और अमेरिका में AI के खतरों को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखते हैं कि मेरी भी AI वर्जन है और मेरी AI वर्जन भी आपको अब खबरें बताने लगी है, लेकिन ये जो एआई का एक नया अवतार आ रहा है जिसमें उसकी जानकारी बढ़ते जा रही है, जिसको बनाने के पीछे मकसद था इंसानों के काम को आसान बनाना, पूरी मानव जाति के लिए इसे एक सुरक्षा ढाल की तरह तैयार करना, लेकिन अब ये ढाल इतनी ताकतवर होती जा रही है कि ये इंसानों के लिए ही बड़ा खतरा बन सकती है। ये बातें किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लगती है कि एआई अचानक से अपना ही उसका दिमाग हो गया, उसने लोगों पर कब्जा कर लिया, सॉफ्टवेयर पर, कंप्यूटर्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज का सच यही है, एआई डेवलपमेंट पर काम करने वाली दिग्गज कंपनीज के सीईओस की सबसे बड़ी चिंता खुद एआई है। मतलब जो एआई पर काम कर रहे हैं वही बता रहे हैं कि एआई इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा है। आप और हम भले ही अभी तक एआई को सवाल पूछने, फोटो वीडियो बनाने, किसी तरह का रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक कंपनीज ने के जो सीईओज हैं वो डरे हुए हैं। जो एआई बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असली ताकत को बहुत करीब से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहा जाता है, अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इंसानों के लिए बड़ा खतरा होगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमाडोर, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एआई एजेंट को सिखाने पढ़ाने वाली कंपनी यानी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के को फाउंडर क्लेमेंट डुलोंग जो है वो पहुंचे थे। इन तीनों टेक महारथियों ने जो कि एआई में काम कर रहे हैं, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों से एआई के विकास पर वैश्विक नियम कानून बनाने की अपील की है, बहुत बड़े खतरे की जानकारी दी है। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को एआई की बेतरतीब विकास की दौड़ से पैदा होने वाले खतरों के बारे में बताया है। सैम ऑल्टमैन के मुताबिक इस वक्त एआई से दो तरह के खतरे हैं। पहला, एआई से इंसानों का नियंत्रण ही खत्म होना, मतलब एआई हम ही ने बनाया और वो एआई से हमारा ही कंट्रोल खत्म हो जाए। उनके कहने का मतलब है कि इस वक्त एआई इतनी तेजी से सीख रहा है, हम जितना इंफॉर्मेशन एआई को देख रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन इंजेस्ट कर रहा है, अपने अंदर समेट रहा है कि अब ऐसा समय करीब है जब वो ऑटोनॉमस हो जाएगा, मतलब खुद सोचेगा, यानी वो इंसान के निर्देशों पर नहीं बल्कि खुद अपने कमांड पर चलेगा, वो खुद से सोचेगा, वो खुद से तय करेगा उसे क्या करना है। एक तरह से इंसानों का नियंत्रण एआई पर, मशीन पर खत्म हो जाना, आप समझ रहे हैं इसका मतलब। दूसरी चिंता, एआई की ताकत कुछ लोगों के हाथों तक सीमित रहना। उनका मतलब यह है कि इस वक्त ताकतवर एआई एजेंट्स कुछ ही देशों और कंपनीज के हाथों में है, जो बाकी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सैम ऑल्टमैन ने एक तरह की चेतावनी दी, उनका कहना है कि जिस तेजी से एआई का विकास हो रहा है, इंसानों का आने वाला जो भविष्य है जल्दी ही एआई के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि वी रिस्क लूजिंग द फ्यूचर टू एआई, मतलब भविष्य एआई के पास चला जाएगा, हमारा भविष्य। उनकी अपील है कि सख्त नियम बनाए जाएं जिससे ऐसे एआई मॉडल्स ना बन सके जिस पर से इंसानों का ही नियंत्रण खत्म हो जाए। सबसे बड़ा खतरा तो यही है ना। अब एंथ्रोपिक के जो डारियो एमाडोर हैं, उन्होंने सैम ऑल्टमैन से आगे जाकर एआई की क्षमता को मानव जाति के विनाश के खतरों से जोड़ा, ह्यूमन रेस का अंत। उनका कहना है कि इस वक्त एआई से दो खतरे हैं, इनमें सबसे पहला है एआई का गलत इस्तेमाल। उनके मुताबिक एआई एजेंट्स का इस्तेमाल अगर आतंकी करने लगे, अगर दूसरे कट्टरपंथी समूह करने लगे, तो इसकी मदद से बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। डारियो ने एआई सिस्टम से नियंत्रण खोने को मानव जाति पर एक बड़े खतरे की तरह देखा है। हगिंग फेस के कोफाउंडर क्लेमेंट डुलोंग ने इन खतरों पर सहमति जताई। इससे एक बात और उन्होंने जोड़ी, उनका कहना है कि खतरा इस बात का है कि अगर किसी देश के पास बहुत शक्तिशाली एआई एजेंट है और अन्य देशों के पास वो नहीं है, तो ऐसे देश पूरे सिस्टम के लिए एआई एक बड़ा खतरा बन जाएगा।
1: इंडस्ट्री को सिर्फ बड़े फायदे और रफ्तार बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिम नहीं उठाने चाहिए, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। नहीं, हम ऐसी किसी दौड़ में फंसे हैं जहां हम ऐसा ना कर पाए। हमने पहले भी अपनी मर्जी से रफ्तार कम की है और आगे भी करेंगे। हम ऐसे सिस्टम नहीं बनाना चाहते और हमें लगता है कि सभी के लिए ऐसा करना जरूरी है जहां हम जरूरी तालमेल, मॉनिटरिंग और सुरक्षा की गारंटी ना दे पाए।
2: फर्स्ट
1: सबसे पहले हमें ऐसे सीमित समझौतों से शुरुआत करनी चाहिए जिनका हर सदस्य समर्थन कर सके, जैसे कि एआई का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल हथियार बनाने या अपनी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए करने पर रोक लगाना। हमें ऐसे मूल्यांकन और सत्यापन के लिए सिस्टम बनाने चाहिए जो एआई के विकास के साथ साथ चलें, ताकि देश फ्रंटियर मॉडल की क्षमताओं को समझ सकें और एक दूसरे की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि कर सकें। तीसरा, हमें एआई मॉडल के नियंत्रण खोने और उनके गलत इस्तेमाल के जोखिमों की जांच के लिए आम वैश्विक मानक तय करने चाहिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एआई घटनाओं की सूचना देने वाले सिस्टम भी बनाने चाहिए। हमारा पक्का मानना है कि डर फैलाने वाली बातें इतनी बुनियादी और ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सही फैसले लेने या लोगों को अपने साथ जोड़ने का सही तरीका नहीं है। भले ही हम इस साइबर हमले का शिकार हुए, लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा यकीन है कि एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद होगा और दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले की बड़ी टेक्नोलॉजी ने किया था। हम पर एआई से हमला हुआ, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि हमने एआई की मदद से ही अपना बचाव किया।
0: अब सवाल यह है कि एआई से इंसानों को किस तरह का खतरा हो सकता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मुख्य रूप से एआई दो तरह के हैं। पहला है एआई चैटबॉट, जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इसे सवाल पूछते हैं, ये आपको जवाब देता है, आपका टास्क पूरा करता है। आप कहते हैं ये स्क्रिप्ट लिख के दो, आप कहते हैं ये होमवर्क खत्म करके दो, टिकट बुक करा दो, तो ये आपका तरीका बताएगा कि टिकट कैसे बुक करते हैं। दूसरा है एआई एजेंट, इसे आप कोई काम देते हैं तो ये आपको कुछ बताता नहीं बल्कि वो पूरा काम कर देता है। जैसे आपको टिकट बुक करना हो तो आप इसे अपनी जानकारी दीजिए, किसी भी तरह से आपको वो टिकट बुक करके देगा। असली खतरा इस एआई एजेंट से है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक एआई एजेंट ने सरकारी वेबसाइट को ही हैक कर लिया। यह जानकारी खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों को दी है। ओपन एआई के इस एआई एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से जुड़ी मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस में सेंध लगा दी। इस एआई एजेंट ने डेटाबेस में अपनी सीमाओं को लांघते हुए संवेदनशील सेंसिटिव फाइल्स तक पहुंच बनाई, उसके डेटा में फेरबदल किया, नई फाइलें जोड़ दी। डर की असली वजह यह है कि इस एआई एजेंट को सरकारी अधिकारियों ने ही स्वास्थ्य पर हो रहे खर्च पर रिसर्च का काम दिया था। अब आप खतरा समझ रहे हैं? आप ही एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही एआई एजेंट आपने जो ऑर्डर्स दिए उसे कहीं आगे जाकर ऐसा काम कर रहा है जो सच और झूठ का फर्क मिटा देगा, फाइल में नई बातें जोड़ देगा, फाइल से नई पुरानी बातें हटा देगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए उसने खुद पर लगाए गए सारे सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि एआई एजेंट पर सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे, उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को उसने तोड़ दिया। फिर इसके बाद उन हिस्सों तक पहुंच गया ये एआई एजेंट जहां उसे जाने से मना किया गया था। अब आप सोचिए कि ये एआई एजेंट इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसने अपने लिए बनाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। एक तरह से उसने इंसानों द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं माना। अभी 2 महीने पहले ओपनएआई ने एक साइबर अटैक के बारे में दुनिया को बताया था जो उसके ही बनाए गए चैट जीपीटी एजेंट्स ने किया था। कंपनी का कहना था या उनके एआई एजेंट्स बागी हो गए थे। इन बागी एआई एजेंट्स ने बिना कमांड के कंपनी के सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरी कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया था। ओपनएआई ने अपने एआई एजेंट्स को साइबर सिक्योरिटी टेस्ट का काम दिया था। उन्हें एक अलग सिस्टम पर रखा गया, इस सिस्टम का इंटरनेट एक्सेस भी सीमित कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इन एआई एजेंट्स ने टास्क पूरा करने के लिए आपस में ही एक मैसेज बोर्ड बनाया, उससे बात करनी शुरू की, फिर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लिया। और इसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हगिंग फेस के सिस्टम को हैक कर लिया। हगिंग फेस ने तो इस हैकिंग को एआई एजेंट्स के द्वारा खुद से की गई हैकिंग कहा है। एंथ्रोपिक में भी ऐसा ही हुआ था। उनके एआई एजेंट्स ने भी साइबर सुरक्षा जांच के दौरान बिना कमांड दिए 3 कंपनीज के सिस्टम को हैक कर लिया। पर हैरानी की बात यह थी कि एआई एजेंट्स को कहा गया था कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उसके बिना ही उसे सुरक्षा जांच करनी है। बावजूद इसके उन एआई एजेंट्स ने इंटरनेट एक्सेस हासिल किया, 3 कंपनीज के सिस्टम्स में घुस गया। मतलब काम पूरा करने के लिए उसने इंसान द्वारा दिए गए आदेश को नहीं माना। सिर्फ यही एक खतरा नहीं है बल्कि एआई का एक खतरा इसका गलत इस्तेमाल भी है। एंथ्रोपिक ने इसी महीने दावा किया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने उनके एआई एजेंट के जरिए हाईटेक हथियार, खतरनाक मिसाइल्स बनाने की कोशिश की। एंथ्रोपिक का कहना है कि ये लोग हथियार बनाने में कामयाब रहे। ये अलग बात है कि उनका टेस्ट फेल हो गया था और कंपनी ने इन यूजर्स का एक्सेस बंद कर दिया। पिछले महीने साउथ कोरिया की साइबर सुरक्षा कंपनी जिनियंस ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया के हैकिंग ग्रुप किमसुकी ने साइबर अटैक के लिए AI एजेंट्स का इस्तेमाल किया। ये AI एजेंट्स उनके लिए नॉनस्टॉप ऑटोमेटिक फिशिंग अटैक कर रहे हैं। हाल ही में चाइना के एक हैकर ने डीपसी, किमी और क्लॉड के AI एजेंट्स का इस्तेमाल करके 5 दिन के अंदर 100 से ज्यादा कंपनीज पर ऑटोमेटिक साइबर अटैक किए, 6 लाख क्रेडिट कार्ड्स की जानकारियां चुरा ली। साइबर अटैक, हैकिंग और हथियार बनाने में AI एजेंट्स की मदद लेना दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन एक खतरा इससे भी बड़ा है। दुनिया में कई लोग और समूह AI से जैविक हथियार बनाने की कोशिश में लगे हैं। कल्पना कीजिए, एंथ्रोपिक ने इसी महीने थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उनके AI मॉडल्स का इस्तेमाल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में किया है। उसे डर है कि ये प्रयोग जैविक हथियार बनाने की कोशिश हो सकती है। कंपनी के मुताबिक एक ग्रुप उनके AI एजेंट्स को चिकनगुनिया वायरस को तेजी से फैलाने और इंसान के इम्यून सिस्टम को तोड़ने का काम दे रहा था। इसी तरह से एक यूजर उनके AI एजेंट को बर्ड फ्लू वायरस के हवा में फैलने से जुड़े उसके गुणों के अध्ययन का काम दिया हुआ था। यानी मुमकिन है कि कुछ लोग AI का इस्तेमाल ऐसे हथियार बनाने में कर रहे हों जिससे पूरी मानव जाति को खतरा, और इन्हीं खतरे के बारे में टेक कंपनीज के CEOs ने UNSC की बैठक में दुनिया को आगाह किया है। बिहार के जमुई का वो घिनौना मंजर अभी आंखों से ओझल भी नहीं हुआ था। वो खौफ, वो चीखें, वो बेबसी अभी जहन से मिटी भी नहीं थी कि अब बिहार के समस्तीपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और बर्बर वीडियो सामने आया। आखिर किस दौर में जी रहे हैं? क्या ये सड़कें, ये पार्क, ये रास्ते अब बेटियों के लिए आदमखोरों का अखाड़ा बन चुके हैं? समस्तीपुर में एक नाबालिग बच्ची अपने दोस्त के साथ बाइक से गुजर रही तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से 4 आदमखोर निकले। पहले लड़की के साथ मौजूद लड़के को पीट पीट कर खदेड़ दिया, फिर उस अकेली बेसहारा नाबालिग बच्ची को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इन दरिंदों के सामने भी वो बच्ची डट कर खड़ी रही, मुकाबला करती रही। ये आदमखोर उस मासूम को चारों तरफ से जैसे नोच रहे थे। कभी उसके बाल पकड़े जाते थे, कभी उसकी असमत पर हाथ डाला जाता था, कभी जुबान से भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। आखिर बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस कर क्या रही है? वही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अब दिल्ली, अब बिहार में कोई भी बच्ची आराम से किसी भी कोने में देर रात तक घूम सकती है, क्या उनको ये सब दिख नहीं रहा है? वो तो ये बच्ची थी, वो डरी नहीं, वो गिड़गिड़ाई नहीं, वो उन भेड़ियों के सामने तनकर खड़ी रही, उनका डटकर विरोध करती रही, उनसे जूझती रही, लड़ती रही, मगर अफसोस वहां मौजूद किसी इंसान की गैरत नहीं जागी जो इसे बचाते। और पुलिस, पुलिस का तो खैर ठिकाना ही नहीं है। और जो लोग वहां खड़े थे वो तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, और पुलिस नदारद। और अब आपको एक ऐसे सनसनीखेज मामले के बारे में बताएंगे जिसने तमिलनाडु में कानून, प्रशासन, सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है, जिसे तमिलनाडु की एप्स्टीन फाइल्स कहा जा रहा है। जिस व्यक्ति को तमिलनाडु का एप्स्टीन कहा जा रहा है उसका नाम है आर वीरामणि। तमिलनाडु का 84 साल का ये उद्योगपति आर वीरामणि मशहूर ग्रेनाइट कारोबारी और जेम ग्रुप का चेयरमैन है। आरोप है कि ताकत, पैसा, रसूख की आड़ में उसने गरीब कमजोर वर्ग की नाबालिग बच्चियों का सालों तक यौन शोषण किया। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज है जो इस घिनौने अपराध का सबसे बड़ा सबूत बने हैं। लेकिन मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आपको सीमित फोटो ही ब्लर करके हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लड़कियां जो इस दरिंदे की शिकार बनी है वो कानून के सामने आए और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करे। इसीलिए हम उनकी पहचान को लेकर बहुत सतर्कता बरत रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक दरिंदगी तक सीमित नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने महीनों तक फाइल को बंद करने और सबूतों को दबाने का खेल खेला। आज आपको समझना चाहिए कि कैसे एक एनजीओ की पेन ड्राइव से शुरू हुआ यह मामला अदालत की चाबुक के बाद फिर से खुला और यह पूरा सिंडिकेट अब बेनकाब हुआ है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह सिर्फ एक शख्स का अपराध नहीं बल्कि मासूमों के शिकार के लिए एक पूरा गिरोह सक्रिय था। इस पूरे नेक्सस का किंगपिन था आर वीरामणि, जो जेम ग्रेनाइट का चेयरमैन है और जिस पर कई नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। दूसरा नाम महेंद्र सिम्हन, जो कि वीरामणि का सबसे करीबी सहयोगी और ये आरोपी के साथ मिलकर इन अपराधों को अंजाम देने में मदद करता है। तीसरा नाम है शांति, जो वीरामणि के करीबी महेंद्र की पत्नी है। ये चेन्नई के चेनामेपेट इलाके में स्थित उस किराए के मकान का मैनेजमेंट संभालती थी जहां बच्चियों को यौन शोषण के लिए लाया जाता था। आरोप है कि शांति ही 12 से 16 साल की गरीब बच्चियों को पैसे और गिफ्ट का लालच देकर दलदल में लाती थी। चौथा नाम है गणेश, वीरामणि का एक और करीबी सहयोगी। इसके पास अपराध से जुड़े वीडियो सबूत मौजूद थे लेकिन उसने पुलिस को इसकी सूचना ना देकर अपराध को छिपाने का काम किया।
2: I was not mature enough to foresee his bad intention and was unknowingly becoming a victim of his vicious sexual advances.
0: 84 साल के रसूखदार ग्रेनाइट कारोबारी आर वीरामणि की सच्चाई तब सामने आई, लोग हैरान रह गए हैं। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव फुटेज में वीरामणि एक नाबालिग बच्ची के साथ दिखाई दे रहा है जबकि एक दूसरे स्क्रीनशॉट में वो बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखता है। इस फुटेज की हकीकत सबसे पहले तमिलनाडु कांग्रेस के नेता एमपी रंजन कुमार के जरिए पुलिस तक पहुंची। रंजन कुमार ने दावा किया कि उन्होंने 2024 में वीरामणि जैसे दिखने वाले शख्स को स्थिति में देखा तो वो हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत पुलिस से पूछताछ की और सख्त जांच की मांग की लेकिन आरोप है कि पुलिस को सबूत सौंपने के बावजूद शुरुआती दौर में ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों की जरूरतें तय करती हैं कि उनके बोल कब तक मीठे रहेंगे। नमस्कार।

0: चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। आप दम डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन विदाउट एनी डाउट। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people.

0: Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
2: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
3: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है. अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
2: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है. सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है.
4: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार. ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है. पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया.
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है. देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है. बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस छत के ऊपर पन्नी. इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है. तो ये समस्या जो है वो सामने है.
4: खेत आज भी लबालब हैं. जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है.
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा मिला है,
6: नहीं मिला है.
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी.
5: अभी भी घर सूखा नहीं है,
7: गीला है घर तो.
4: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं.
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
7: मिला? मिला है 7,000. 7,000 से क्यों होगा?
4: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है.
8: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है. इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है. हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए.
4: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर.

0: हेक्टेयर। बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता ये है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
1: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है और ये सारा चीज बहा के ले गया।
0: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
1: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना TRP बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
0: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
2: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
3: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
2: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
0: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
4: जब ही हम मंत्री बने थे तब ही हम अपने सचिव को कहे जो पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था है, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, GR की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
0: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है। यानी कि 15 ज़िले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है।
0: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
0: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
7: आग दौड़ी में उसमें आग लग गई, बस उसमें जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसमें लोग निकल पाए तो आग ने बिकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
0: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
8: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
7: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
8: अच्छा,
7: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया गन्ना को पछा गया एकदम बिल्कुल, कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो जल्दी गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया, जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
8: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
7: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं।
8: ओ
7: बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा, जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए, ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए, लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
9: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
10: बस चल रही थी या रुकी?
9: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के,
10: और इसके बाद बाकी सब लोग जो थे
9: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मोती पड़ी रहे अपने आप, पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुकी थी।
10: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसी कोई जलने की बदबू आ रही है?
9: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
10: ड्राइवर के पास से आग लगी,
11: वो बस छोड़ के भाग गया,
9: आगे से आग लगी है।
10: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था ऐसा,
9: बस सो रहे,
10: अफरा तफरी मच गई थी पूरी बस।
0: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
6: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है, पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई, एक ने तो उसका हाथ पकड़कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
12: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं है कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराम सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है, 2-3 मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए, कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहाँ मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
11: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है।
12: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मनचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मनचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
13: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग वो गुजर रही थी, और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है, और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
12: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
13: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी
14: है? जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था, और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है पीड़िता है उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
12: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नई सरकार के बाद बिहार में सबसे बड़ा सियासी मेला।
1: आपका सपना तो पूरा हुआ, जनता का सपना कब पूरा होगा?
2: आप जनसुराज को चैलेंज नहीं मानते?
3: दे दो 6 साल के लिए महिलाओं को देश, देखो क्या हो जाए।
1: कि आप दूसरी ऐसी बीजेपी के नेता हैं जो इस मंच से पलायन को रोकने पर वादा करके जा रही हैं।
4: आप बिहार को क्या देना चाहते हैं? अब
0: सम्राट चौधरी के राज में कैसे बदलेगा बिहार?
5: शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे।
0: पंचायत आज तक, सिर्फ आज तक पर।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डट डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वोट चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: Rahul Gandhi ke ye aarop us media report ke baad lagaye gaye jisme chunav aayog mein matbhed ke daave kiye gaye, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट, बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से ही लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनावों को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीती तो क्या करेंगे?
3: दिस चेन बिटवीन वोट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ सीक्रेट चेन. इफ यू बिलीव इन द इंडियन यूनियन, दिस इज योर रिलीजन. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition may 100% agreement है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. नॉट 99%, एवरीबॉडी. और फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द सिंगल बिगेस्ट इश्यू इन फ्रंट ऑफ आर डेमोक्रेसी. वी आर गोइंग टू कोऑपरेट. हम ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. एंड आर ड्यूटी, आर सेक्रेट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वोट, विच वी आर गोइंग टू डू.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. जैसे उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं, अप्रूवर. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है।
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार। ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है। पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया।
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है। देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है। बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी। इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या जो है वो सामने है।
1: खेत आज भी लबालब हैं। जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा
6: नहीं है, मिला है।
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी,
5: अभी भी घर सूखा नहीं है।
7: नहीं, गीला है घर तो।
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
8: वही मिला है 7,000। 7,000 से क्यों होगा?
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
9: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डीएम साहब से, कि जितना मेरा परिवार है 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता ये है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
10: ना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियाँ ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
10: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना TRP बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
11: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
12: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
11: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
13: जब ये हम मंत्री बने थे तब ये हम अपने सचिव को कहे जी पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था है, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, GR की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
6: आग दौड़ी में उसमें आग लग गई, जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसमें लोग निकल पाए तो आग ने बिकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
14: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
6: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
14: अच्छा,
6: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया, अन्ना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
14: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
6: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए, ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए, लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
15: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
16: बस चल रही थी या
15: रुक गई थी, बस ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
16: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
15: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुमने मूर्ति पड़ी रहे अपने आप, पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुन गई।
16: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसी कोई जलने की बदबू आ रही है?
15: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
16: ड्राइवर के पास से आग लगी,
17: वो बस छोड़ के भाग गया।
15: आगे से आग लगी है,
16: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
0: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने चार आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
17: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं है कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराह सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। दो तीन मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहां मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
18: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे, रूल ऑफ लॉ है।
17: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मंचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मंचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
19: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है, और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
20: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं।
19: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी
21: है? जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था, और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है पीड़िता है, उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
20: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां भी आईआईटी के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
22: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
23: आईआईटी पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
24: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन करें ये आप देखिए, आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
22: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
25: ये बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
22: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
26: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
27: किसने बोला?
26: मेरे से बोला उसने। डुल्ला प्रोफेसर प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
22: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने भी कसी है कमर का, 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डट डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है, वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: Rahul Gandhi ke ye aarop us media report ke baad lagaye gaye jisme chunav aayog mein matbhed ke daave kiye gaye, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. जैसे उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं, मेरा विचार है राहुल गांधी जी आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है. सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है.
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार. ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है. पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया.
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है. देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है. बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी. इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को

0: जो है वो सामने है।
1: खेत आज भी लबालब है, जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
0: सरकार सबको जो राहत का पैसा
2: है, नहीं मिला है।
0: पानी कम हुआ है काफी?
3: हाँ, पानी कम हुआ है काफी।
0: अभी भी घर सूखा नहीं है?
3: नहीं, गीला है घर तो।
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
0: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
4: वही मिला है? 7,000, 7,000 से क्यों होगा।
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
5: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डीएम साहब से, कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है, जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता ये है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा, बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
6: ना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियाँ ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
6: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना TRP बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
7: ननुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
8: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
7: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
9: जब ही हम मंत्री बने थे तब ही हम अपने सचिव को कहे जी पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था है, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, GR की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
0: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 ज़िले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
10: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे।

0: सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
1: आग दौड़ी है, उसमें आग लग गई, बस जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसने लोग निकल पाए तो आग ने विकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
0: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
2: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
1: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
2: अच्छा,
1: लेकिन फिर लेकिन अंधेरा इतना हो गया अन्ना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
2: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
1: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए लेकिन 9 लोग जल कर मारे गए।
3: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
4: बस चल रही थी या
3: रुक गई थी, बस ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
4: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मूर्ति पड़ी रहे, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क बन गई।
4: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
4: ड्राइवर के पास से आग लगी,
5: वो बस छोड़ के भाग गया।
3: आगे से आग लगी है,
4: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था,
3: ऐसा बस हो रही,
4: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
0: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
6: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है, पहले जमुई और अब समस्तीपुर। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़ कर घसीटने की भी कोशिश की, हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
7: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है, कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराम सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। दो तीन मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहाँ मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
5: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है।
7: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मंचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मंचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
8: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है, और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
7: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
8: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी
9: है? जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली, तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था, और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर से हमारे ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया, उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है। उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है, पीड़िता है, उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है। हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
7: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
6: आईआईटी बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां भी आईआईटी के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
10: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
11: आईआईटी पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
12: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन कर रहे। आप देखिए, आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं। हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
10: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
13: जी बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में, मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
10: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
14: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
15: किसने बोला?
14: मेरे से बोला उसने। डुल्ला प्रोफेसर प्रॉपर्टी है ना, उसका क्या है, वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
10: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डक डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वोट चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: Rahul Gandhi ke ye aarop us media report ke baad lagaye gaye jisme chunav aayog mein matbhed ke daave kiye gaye, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से ही लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनावों को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीती तो क्या करेंगे?
3: दिस चेन बिटवीन वोट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ सीक्रेट चेन. इफ यू बिलीव इन द इंडियन यूनियन, दिस इज योर रिलीजन. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition may 100% agreement है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. Not 99%, everybody. और frankly मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, right? तो it is very clear that this is the single biggest issue in front of our democracy. We are going to cooperate. हम opposition के साथ cooperate करेंगे. हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. एंड आर ड्यूटी, आर सेक्रेट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वोट, व्हिच वी आर गोइंग टू डू.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है।
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार। ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है। पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया।
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है। देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है। बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी। इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या जो है वो सामने है।
1: खेत आज भी लबालब है। जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा
6: नहीं है, मिला है।
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी।
5: अभी भी घर सूखा नहीं है?
7: नहीं, गीला है घर तो।
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
5: लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
8: वही मिला है? 7,000, 7,000 से क्यों होगा।
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
9: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डीएम साहब से, कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है, जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
10: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
10: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना टीआरपी बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
11: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
12: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
11: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
13: जब ये हम मंत्री बने थे तब ये हम अपने सचिव को कहे जो पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ के विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और समुदाय किचन बनाने की व्यवस्था है, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, जीआर की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
6: आग दौड़ी में उसमें आग लग गई, जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसमें लोग निकल पाए तो आग ने बिकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
14: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
6: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
14: अच्छा,
6: लेकिन फिर लेकिन अंधेरा इतना हो गया, बंदा को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
14: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
6: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए, ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए, लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
15: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
16: बस चल रही थी या रुक
15: रुक गई थी, बस ड्राइवर भाग गया था छोड़ के।
16: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
15: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुमने मुट्ठी पड़ी रहे अपने आप, पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चल रही।
16: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसी कोई जलने की बदबू आ रही है?
15: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
16: ड्राइवर के पास से आग लगी है,
17: वो बस छोड़ के भाग गया।
15: आगे से आग लगी है,
16: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, ऐसा
15: बस हो रही,
16: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे, इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
0: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़ कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने चार आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
17: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराह सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। दो तीन मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहां मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
18: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे, रूल ऑफ लॉ है।
17: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मंचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मंचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश में। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
19: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
20: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
19: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी।
21: जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है पीड़िता है उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
20: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
0: IIT बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है तो वहीं सियासी पार्टियां भी IIT के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
22: IIT बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
23: IIT पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने वाले के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
24: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन करें, ये आप देखिए आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
22: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
25: ये बिल्कुल राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि IIT बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये 3 बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
22: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी IIT बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का CCTV फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर डुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल ChatGPT पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर डुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
26: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
27: किसने बोला है?
26: मेरे से बोला उसने। डुल्ला प्रोफेसर प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
22: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण डुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच IIT बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप दम डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट. बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है. सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है.
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार. ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है. पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया.
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है. देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है. बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी. इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है. तो ये समस्या जो है वो सामने है.
1: खेत आज भी लबालब हैं. जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है.
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा नहीं
6: है, अभी नहीं मिला है.
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी.
5: अभी भी घर सूखा नहीं है?
7: गीला है घर तो.
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं.
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
7: मिला? मिला है 7,000. 7,000 से क्यों होगा?
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है.
8: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जियाराशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए

0: हाल है।
1: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियाँ ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
0: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
1: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना TRP बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
0: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
2: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
3: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
2: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
0: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
4: जब ये हम मंत्री बने थे तब ये हम अपने सचिव को कहे जो पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और समुदाय किचन बनाने की व्यवस्था है, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन शीट, GR की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
0: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नज़र डालें तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 ज़िले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है।
0: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
6: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
0: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे? सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे? इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
7: आगे दौड़ी में उसमें आग लग गई, जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसने लोग निकल पाए तो आग ने बिकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, तो बाहर नहीं निकल पाए।
0: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
8: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
7: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
8: अच्छा,
7: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया, बंदा को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, और जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
8: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
7: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा

0: लोगों ने कहा होगा उससे, क्या दिखा बदबू आ रही क्या हो रहा,
1: हाँ
0: जब तक उसने ज्यादा पकड़ ली।
2: सबसे बड़ी बात यह है कि यह आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
3: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे।
4: बस चल रही थी या रुकी?
3: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के।
4: और उसके बाद बाकी सब लोग जो थे
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुमने मूर्ति पड़ी रहे अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुकी थी।
4: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसी कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
4: ड्राइवर के पास से आग लगी है,
5: वो बस छोड़ के भाग गया।
3: आगे से आग लगी है,
4: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था ऐसा,
3: बस हो रही,
4: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
2: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
6: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है, पहले जमुई और अब समस्तीपुर। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़ कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
7: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराम सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। 2-3 मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहाँ मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
8: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे, रूल ऑफ लॉ है।
7: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात
1: बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती और अगर निकल जाए तो मनचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मनचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश में। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
5: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
1: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
5: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी
9: है? जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली, तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है, पीड़िता है, उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
1: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
6: IIT बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां भी IIT के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
10: IIT बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
11: IIT पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
12: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन करें ये आप देखिए, आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
10: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
13: ये बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि IIT बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
10: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
14: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
13: किसने बोला?
14: मेरे से बोला उसने।
13: दुल्ला
14: प्रोफेसर प्रॉपर्टी है ना, उसका क्या है, वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
10: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: गणेश कुमार देशद्रोही बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी, चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार, दीपके ने भी कसी है कमर का, 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत का, तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डट डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन विदाउट एनी डाउट। Both the Prime Minister and Amit Shah are at the top of this conspiracy. And they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से ही लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनावों को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीती तो क्या करेंगे?
3: दिस चेन बिटवीन वोट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ सीक्रेट चेन. इफ यू बिलीव इन द इंडियन यूनियन, दिस इज योर रिलीजन. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition may 100% एग्रीमेंट है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. नॉट 99%, एवरीबॉडी. और फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द सिंगल बिगेस्ट इश्यू इन फ्रंट ऑफ आर डेमोक्रेसी. वी आर गोइंग टू कोऑपरेट. हम ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. एंड आर ड्यूटी, आर सेक्रेट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वोट, विच वी आर गोइंग टू डू.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है।
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार। ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है। पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया।
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है। देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है। बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस छत के ऊपर पन्नी, इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या जो है वो सामने है।
1: खेत आज भी लबालब है। जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा
6: नहीं है, मिला है।
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी,
5: लेकिन अभी भी घर सूखा नहीं है,
7: गीला है घर तो।
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
8: मिला? मिला है 7,000। 7,000 से क्यों होगा?
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
9: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
10: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
10: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना टीआरपी बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
11: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
12: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
11: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
13: जब ही हम मंत्री बने थे तभी हम अपने सचिव को कहे जो पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था, उस सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, जीआर की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
6: आग दौड़ी है, उसमें आग लग गई, जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इतने लोग निकल पाए तो आग ने विकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
14: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
6: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
14: अच्छा,
6: लेकिन फिर लेकिन अंधेरा इतना हो गया, वरना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो जल्दी में गिर गया, तो वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
14: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
6: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए, ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए, लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
15: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
16: बस चल रही थी,
15: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
16: उसके बाद बाकी सब लोग जो
15: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मूर्ति पड़ी रही, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुकी थी।
16: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
15: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
16: ड्राइवर के पास से आग लगी,
17: वो बस छोड़ के भाग गया।
15: आगे से आग लगी है,
16: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, ऐसा
15: बस हो रही,
16: अफरा तफरी मच गई थी पूरी बस।
1: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
0: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़ कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
17: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं है कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराह सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। 2-3 मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहाँ मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
18: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे, रूल ऑफ लॉ है।
17: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मंचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मंचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश में। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
19: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर, जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी, और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
20: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
19: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी।
21: जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है पीड़िता है उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
20: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है तो वहीं सियासी पार्टियां भी आईआईटी के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
22: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
23: आईआईटी पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने वाले के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
24: हम आंदोलन नहीं आंदोलन करें, ये आप देखिए आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
22: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
25: जी बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
22: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
26: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
27: किसने बोला है? किसने?
26: मेरे से बोला उसने।
27: किसने बोला? साहिल को किसने बोला? ये सब
26: दुल्ला प्रोफेसर, ओ प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो दिन है ना वहाँ का, उसने उसको।
22: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी। चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार। दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप वोट डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वोट चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट. बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है. सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है.
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार. ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है. पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया.
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है. देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है. बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर पन्नी. इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है. तो ये समस्या जो है वो सामने है.
1: खेत आज भी लबालब हैं. जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है.
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा नहीं
6: है, अभी नहीं मिला है.
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी.
5: अभी भी घर सूखा नहीं है?
7: गीला है घर तो.
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं.
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
7: मिला? मिला है 7,000. 7,000 से क्यों होगा?
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है.
8: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जियाराशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
6: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
6: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना TRP बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
9: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
10: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
9: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
11: जब ही हम मंत्री बने थे तब ही हम अपने सचिव को कहे जी पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था है, उस सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, GR की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के

0: का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 ज़िले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
3: आगे दौड़ी में उसमें आग लग गई, बस जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसने लोग निकल पाए तो आग ने विकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
4: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
3: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
4: अच्छा,
3: लेकिन फिर लेकिन अंधेरा इतना हो गया वरना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर। जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, तो वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
4: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
3: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसमें रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
5: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
6: बस चल रही थी,
5: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
2: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है, पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई, एक ने तो उसका हाथ पकड़ कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
7: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं है कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

0: लिया हो क्यों?
1: बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेरा सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। दो तीन मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहाँ मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
2: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है।
1: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मंचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मंचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश में। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
3: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है, और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
1: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
3: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी
4: है? जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली, तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था। और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है, पीड़िता है, उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
1: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में
0: IIT बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां भी IIT के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
5: IIT बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
6: IIT पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने वाले के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
7: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन करें, ये आप देखिए आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं, हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
5: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
8: ये बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि IIT बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये 3 बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
5: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी IIT बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का CCTV फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल ChatGPT पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
9: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
10: किसने बोला?
9: मेरे से बोला उसने।
10: दुल्ला
9: प्रोफेसर प्रॉपर्टी है ना, उसका क्या है, वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
5: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच IIT बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनाव आयोग के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी। चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार। दीपके ने भी कसी है कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डर डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट, बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से ही लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनावों को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीती तो क्या करेंगे?
3: दिस चेन बिटवीन वोट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ सीक्रेट चेन. इफ यू बिलीव इन द इंडियन यूनियन, दिस इज योर रिलीजन. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition may 100% एग्रीमेंट है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. नॉट 99%, एवरीबॉडी. और फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द सिंगल बिगेस्ट इश्यू इन फ्रंट ऑफ आर डेमोक्रेसी. वी आर गोइंग टू कोऑपरेट. हम ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. एंड आर ड्यूटी, आर सेक्रेट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वोट, विच वी आर गोइंग टू डू.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. मेरा विचार है राहुल गांधी जी, आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है।
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार। ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है। पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया।
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है। देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है। बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस छत के ऊपर पन्नी, इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या जो है वो सामने है।
1: खेत आज भी लबालब है। जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा
6: मिला है।
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी,
5: अभी भी घर सूखा नहीं है।
7: गीला है घर तो।
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
7: मिला है? 7,000, 7,000 से क्यों होगा।
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
8: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
9: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
9: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना टीआरपी बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
10: ननुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
11: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
10: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
12: जब ही हम मंत्री बने थे तभी हम अपने सचिव को कहे जो पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, जीआर की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर रखें, नजर डालें, तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस में आग लगने के बाद लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये बात इस मामले में FIR करवाने वाले ने आज तक को बताई।
13: आगे दौड़ी है, उसमें आग लग गई, जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, इसने लोग निकल पाए तो आग ने विकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, बाहर नहीं निकल पाए।
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
14: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
13: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
14: अच्छा,
13: लेकिन फिर लेकिन अंधेरा इतना हो गया वरना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर, और जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, तो वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
14: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
13: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने रुका होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए, ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए, लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
15: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे,
16: बस चल रही थी या रुकी?
15: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
16: उसके बाद काफी सब लोग जो थे
15: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुम में मूर्ति पड़ी रही, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुकी थी।
16: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर ऐसे आग लगने की या फिर ऐसी कोई जलने की बदबू आ रही है?
15: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
16: ड्राइवर के पास से आग लगी,
17: वो बस छोड़ के भाग गया।
15: आगे से आग लगी है,
16: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, ऐसा
15: बस हो गई,
16: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
0: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
17: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं है कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराम सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। 2-3 मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहाँ मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
18: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। ये रूल ऑफ लॉ है।
17: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मंचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मंचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश में। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
19: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर, जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी, और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें, ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
20: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
19: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी।
21: जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है पीड़िता है उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
20: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
0: आईआईटी बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है तो वहीं सियासी पार्टियां भी आईआईटी के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
22: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
23: आईआईटी पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
24: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन कर रहे। ये आप देखिए, आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं। हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
22: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
25: जी बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
22: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
26: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
27: किसने बोला?
26: मेरे से बोला उसने। डुल्ला प्रोफेसर प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
22: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चुनावों के बहाने राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आए तो वोट चोरी को लेकर मोदी शाह की भूमिका की होगी जांच। ज्ञानेश कुमार देशद्रोही, बन जाए अप्रूवर। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा नेता विपक्ष के पास है ज्ञान की कमी। चुनाव आयोग में मतभेद कोई सबूत नहीं, जनता के आशीर्वाद के चलते सत्ता में है प्रधानमंत्री मोदी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष, दोनों सदनों के लिए ड्राफ्ट हो रहे हैं तैयार। दीपके ने भी कसी कमर, का 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो होगा आंदोलन। बीजेपी मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत, का तैयारी के साथ मीडिया से करें बात, सरकारी योजनाओं की दें जानकारी। और यूपी में चल पड़ा अखिलेश का चुनावी रथ, रायबरेली से शुरू पीडीए की यात्रा, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से साधा विपक्ष पर निशाना। चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
1: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
2: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है, आप डट डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
1: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
3: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
1: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
3: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके दो जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
1: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है, अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
3: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन, आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोज क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Ganesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Ganesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
1: राहुल गांधी के ये आरोप उस मीडिया रिपोर्ट के बाद लगाए गए जिसमें चुनाव आयोग में मतभेद के दावे किए गए, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
3: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन। विदाउट एनी डाउट. बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर एट द टॉप ऑफ दिस कंस्पिरेसी एंड दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर दे हैव डन टू दिस कंट्री. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट. दिस इज एन एक्ट अगेंस्ट इंडियाज पीपल. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
1: तो राहुल कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर लोकतंत्र की अहम ताकत है. ऐसा सारे लोकतांत्रिक देशों में होता है, सिर्फ उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं होता. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे.
0: राहुल गांधी से पूछा गया कि वोट चोरी का आरोप वो काफी पहले से ही लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों के बाद 2027 के चुनावों को लेकर वो क्या स्टैंड लेंगे? अगर बीजेपी 2029 में दोबारा जीती तो क्या करेंगे?
3: दिस चेन बिटवीन वोट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ सीक्रेट चेन. इफ यू बिलीव इन द इंडियन यूनियन, दिस इज योर रिलीजन. Let me repeat it. If you believe in the Indian Union, if you believe in that flag, then this is your religion. Because this is how India's people express their voice. So we are sitting in a very different place. And as I said, the information is available not only to us, to multiple actors. Opposition may 100% एग्रीमेंट है कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी को रोकना है. नॉट 99%, एवरीबॉडी. और फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अंदर भी लोग कह रहे हैं, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज द सिंगल बिगेस्ट इश्यू इन फ्रंट ऑफ आर डेमोक्रेसी. वी आर गोइंग टू कोऑपरेट. हम ऑपोजिशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक साथ उनके साथ काम करेंगे. एंड आर ड्यूटी, आर सेक्रेट ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वोट, विच वी आर गोइंग टू डू.
0: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. सुधांशु ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं 50 साल से राजनीति समझ रहा हूं, मगर उनकी खुद की उम्र 56 साल की है. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल ज्ञान शून्य है.
4: मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि 6 साल की उम्र का तो आपको याद है, ये जब आप 19 साल के थे तब का नहीं याद है? अद्भुत ज्ञान संपन्न है. उनसे एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इलेक्शन में ये वोट चोरी हो जाती है, आपको कब पता चला? तो आप लोग जाके देखिए, उनका 7 साल की उम्र में, 1977 में. भाई सब 7 साल की उम्र में, मुझे लगता है अगर इनकी इतनी प्रबल मेधा होती, इतनी प्रबल शक्ति होती, स्मरण शक्ति, तो मुझे लगता है आज कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती. जो जनता के विश्वास के अनुसार काम नहीं करते हैं उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती है. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों में केंद्र में और उससे पूर्व गुजरात में निरंतर जनता की सेवा करके और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाई है. उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सलाह देना चाहते हैं. अप्रूवर मेरा विचार है, राहुल गांधी जी आप अपने अप्रूवर बन जाइए. कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है और उसकी दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप देख लीजिए. तो एक बिंदु, एक लाइन कह के विषय समाप्त करता हूं कांग्रेस के लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा. सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है. बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में. जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है.
0: बिहार में किसान बाढ़ की त्रासदी के बाद सरकारी मदद का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए देने का दावा किया, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी रुपया नहीं मिल पाया है।
1: कटिहार बिहार, बाढ़ में सब बर्बाद, न खेत बचे न घर द्वार। ये कटिहार में मस्जिद मेहर टोला गांव है। पूरे गांव को बाढ़ ने तहस नहस करके रख दिया।
5: ये मौसम भी जो है ये बारिश का है। देखिए बारिश हो रही है इस समय, हम जब यहाँ पर हैं, जो रह रहकर बारिश हो रही है। बारिश में कम से कम एक अदद पन्नी की दरकार होती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस छत के ऊपर पन्नी, इनका आरोप है कि पन्नी सरकार जो नहीं दे रही है, या फिर जो दिया जा रहा है कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या जो है वो सामने है।
1: खेत आज भी लबालब हैं, जिंदगी कैसे कट रही है, कैसे गुजर रही है, कोई देखने वाला नहीं है।
5: सरकार सबको जो राहत का पैसा मिला
6: है, नहीं मिला है।
5: पानी कम हुआ है काफी?
7: हाँ पानी कम हुआ है काफी,
5: लेकिन अभी भी घर सूखा नहीं है,
7: गीला है घर तो।
1: सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपए देने का दावा कर रही है, लेकिन किसी को पैसे मिले हैं और किसी को नहीं।
5: कोई लेकिन सरकारी मदद मिला है, कोई सरकारी पैसा
8: मिला? मिला है 7,000, 7,000 से क्यों होगा।
1: कटिहार में 400 परिवारों को सरकार की तरफ से 7,000 रुपए की राहत राशि मिलनी है।
9: जिया राशि के संबंध में हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि जितना मेरा परिवार है, 400 घर है जिसको जिया राशि अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि पहले मुरादपुर पंचायत के नाम से स्थापित था, अभी नया जो नगर पंचायत बना है इसमें शिफ्ट नहीं हो पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है। हम डीएम साहब के यहाँ गए थे, वहाँ पे जाके अर्जी लगाए हैं कि जल्द ही जिया राशि की उपलब्ध की जाए।
1: आपको बता दें कि बिहार सरकार दावा करती है कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर कृषि इनपुट सब्सिडी के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि भेजती है, जिसमें असिंचित फसल क्षेत्र 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल क्षेत्र 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बहुवर्षीय फसल जैसे गन्ना 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। शर्त यह है कि ये सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर की भूमि तक के लिए दी जाती है। इसके लिए पात्रता यह है कि फसल का नुकसान 33% से अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए जमीन के मालिक और बटाईदार यानी किराए पर खेती करने वाले दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। छपरा बिहार, फसलें बर्बाद, रोते किसान। ये बाढ़ में तबाह हुए छपरा के दिलिया रहीमपुर पंचायत का हाल है।
10: इतना पानी था, सीने भर पानी था। हम लोग बहुत कोशिश किए, देखिए रस्सी से हम लोग रोक के रखे, लेकिन रस्सियां ना काम होती है, क्योंकि बीच धारा हमको लगता है उस समय का इसी होके गुजरता है, यहीं से गुजरता है, और ये सारा चीज बहा के ले गया।
1: बर्बादी पर लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है।
10: गुस्सा भी आ रहा, दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारा मजाक बनाया जा रहा है। जो आ रहा है अपना टीआरपी बटोर के हमको गरीब दिखा के चला जा रहा है।
1: किसान कह रहे हैं कि सारी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन कोई पूछने तक नहीं आ रहा।
11: नेनुआ, भिंडी, ये सब फसल बर्बाद हो चुका है।
12: क्या आपको मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है?
11: नहीं सर, मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
1: बाढ़ पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां हैं, और सरकार ऐसा दावा कर रही है कि जैसे बाढ़ में सब कुछ दुरुस्त कर दिया गया है।
13: जब ही हम मंत्री बने थे तभी हम अपने सचिव को कहे जी पूरे बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका है, उस विभीषिका के को हम जानते हैं, तो जितने भी ऊंचे स्थान है और शिविर रखने का, बाढ़ राहत केंद्र और सामुदायिक किचन बनाने की व्यवस्था, वो सब जगह चिन्हित कर लिए थे, और राहत सामग्री के लिए पोलोथीन सीट, जीआर की राशि, सूखा राशन सब के लिए हम लोगों ने पहले ही टेंडर कर दिए थे।
1: ऐसे में सरकार से यही सवाल है कि सिर्फ दावों से बात नहीं बनने वाली है, सरकार को उन किसानों की सुध लेनी होगी जिन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसलें बोई और आज बाढ़ ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वो जाएं तो कहां जाएं?
5: बिहार में इस बार जो भयंकर त्रासदी बाढ़ के रूप में आई है, उसमें अगर केवल सरकारी आंकड़ों पर ही नजर डालें तो तकरीबन 51 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और तकरीबन 40% जो बिहार का हिस्सा है वो इस बार बाढ़ की चपेट में आया है, यानी कि 15 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और काफी फसल का नुकसान हुआ है।
1: कटिहार से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस आग लगती है, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे में जिंदा बचे यात्रियों का दावा है कि अगर ड्राइवर और कंडक्टर मान जाते तो यह हादसा नहीं होता।
1: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 9 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि इस देश में कब तक लोग इस तरह स्लीपर बस में जलकर मरते रहेंगे। सरकारें और उनके अफसर कब तक आम आदमी को इस तरह मरते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। इस बस को लेकर जो जानकारी सामने आई है, जो इस बस के अंदर हुआ वो लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके बनाई गई इस बस

0: जाके दौड़ेंगे, उसमें आग लग गई। बस उसमें जैसे लोग निकलने लगे तो भगदड़ तो मची, एक दूसरे के ऊपर गिरे, और इतने लोग निकल पाए निकल पाए, उस आग ने बिकराल रूप ले लिया। इतनी तेज हो गई आग, उसका धुआं अंदर भर गया, तो बाहर नहीं निकल पाए।
1: सोचिए उन लोगों की बेबसी को जो जानते हैं कि मर जाएंगे लेकिन बस से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलने का जो इंतजाम बस में होना चाहिए वो नदारद था।
2: आप कैसे निकले, मतलब बाकी लोग क्या कैसे निकल पाए, मतलब दरवाजे से निकले तोड़ ताड़ के?
0: नहीं, दरवाजे सब लोग निकले, जितने लोग निकले दरवाजे से ही निकले।
2: अच्छा,
0: लेकिन फिर हाँ, लेकिन अंधेरा इतना हो गया, गाना को पछा गया एकदम, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, लोगों को दम घुटने लगा उसी के अंदर। जो निकलने की भी कोशिश कर रहा वो गैलरी में गिर गया, फिर वो उठ ही नहीं पाया। जितने लोग निकले वो सब निकले खिड़की से ही है।
2: आग लगी कहाँ थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या केबिन में, बस के केबिन में कहाँ हुई थी?
0: बस के केबिन मतलब नीचे से धुआं हुआ निकल रहा होगा, उसने होगा कोई दिक्कत नहीं। बस इसके बाद जब उसने धुआं देखा तो लोगों ने कहा होगा उससे, क्या धुआं बदबू आ रही, क्या हो रहा। जब तक उसने ज्यादा आग पकड़ ली।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि ये आग गाड़ी चलाने वालों के बीड़ी सिगरेट पीने से लगी। जब आग लगी तो बस के अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे, तो ये बस आग का गोला इसलिए बनी क्योंकि नियमों की हर कदम पर अनदेखी हुई। इसे समझने के लिए अब आप FIR की कॉपी देखिए, जिसमें बताया गया कि बस के केबिन में आग लगी। जब इस बारे में ड्राइवर कंडक्टर को बताया गया तो उन्होंने अनदेखी की। जब आग दिखने लगी तब भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और हंसते हुए कहा कि मरना है तो मरो, बस हम नहीं रोकेंगे। लेकिन तब तक बस में आग फैल चुकी थी। FIR करवाने वाले सुनील कुमार किसी तरह बस से बाहर कूदने में कामयाब हो गए। ड्राइवर कंडक्टर भी भाग गए लेकिन 9 लोग जलकर मारे गए।
3: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे।
4: बस चल रही थी या रुक रही?
3: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था, छोड़ गया।
4: बाकी सब लोग
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुमने मोटी पड़ी रहे, अपने आप पता नहीं किस तरह जमीन पर सड़क चुन गई।
4: बस में ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर ऐसे आग लगने की या फिर ऐसे कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है।
4: ड्राइवर के पास से आग लगी है,
5: वो बस छोड़ के भाग गया।
3: आगे से आग लगी है,
4: वो बीड़ी सिगरेट पी रहा था, ऐसा
3: बस सो रहे,
4: अफरा तफरी मच गई थी पूरे बस।
1: तो इस मामले में हर कदम पर नियम और कानून की अनदेखी हुई। जिस बस में आग लगी और 9 लोगों की जान गई, उस पर करीब 1,75,000 रुपए के 19 चालान थे। इसके बाद भी बस सड़क पर दौड़ती रही। अरुण त्यागी और अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक।
6: बिहार के समस्तीपुर में जमुई जैसा कांड हुआ है, पहले जमुई और अब समस्तीपुर। बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में कुछ मंचलों ने लड़की को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी की गई। एक ने तो उसका हाथ पकड़कर घसीटने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों के इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल फिर से वही, बिहार में इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी?
7: जमुई में एक बेटी के साथ हुई अभद्रता को देश अभी भूला नहीं है कि समस्तीपुर में वैसी ही शर्मनाक घटना सामने आई। 10वीं की छात्रा के साथ मंचलों ने छेड़छाड़ की। पूरे राज्य में लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार का समस्तीपुर, जहां सरेराम सरेआम एक बेटी को छेड़ा जा रहा है। 2-3 मंचले सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बेटी से जोर जबरदस्ती करते हुए

0: कभी उसकी बांह पकड़ते, कभी उसकी गर्दन दबाई जाती है। इस दौरान इस बेटी से गाली गलौज भी की जाती है। एक बेटी को उसकी इजाजत के बिना गलत इरादे से छुआ जाता है। हैरत की बात यह है कि ये सब होता देख वहां मौजूद लोग हंसते नजर आए। समस्तीपुर में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद फिर से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुराना बयान वायरल हो जाता है, जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे।
1: रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा, किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा। रे रूल ऑफ लॉ है।
0: तो ये सम्राट चौधरी का बिहार है, जहां दिन हो या रात बेटियां घर के बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल जाए तो मनचलों का झुंड उन्हें कभी भी घेर सकता है, उनके साथ अभद्रता कर सकता है। बेटियों से बदसलूकी करने वाले इस गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपने कारनामों का वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसे वायरल भी कर देते हैं। बिहार में ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच हो रहा है। ये शर्मनाक घटना समस्तीपुर के करपुरी ग्राम इलाके की, जहां 23 सितंबर को पीड़ित छात्रा अपने दोस्त के साथ बांध पर घूमने गई। इसी दौरान छेड़खानी के इरादे से कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। सबसे पहले इन लोगों ने लड़के के साथ मारपीट की, जिसके भागने के बाद अकेली बची इस छात्रा को टॉर्चर करने लगे। ये मनचले लड़की के निजी अंगों को छूने लगे, उसे घसीट कर ले जाने की कोशिश हुई। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा।
2: समस्तीपुर में जो घटना अब सामने आई है, उसने कानून व्यवस्था से लेकर के सरकार की तरफ से जो पुलिसिंग की जाती है उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हम समस्तीपुर के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना 15 सितंबर की है। 15 सितंबर को इसी सड़क पर जहां हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जो छात्रा है नाबालिग, वो गुजर रही थी और तमाम जो आरोपी हैं उन्होंने छात्रा को घेरा, यहीं पर निशाना बनाया, उसके शरीर को बैक टच किया और छात्रा प्रतिवाद करती रही। हम आपको बता दें ये समस्तीपुर जिले के अंदर जगत सिंहपुर जो गांव है वो है, और यहीं पर ये बांध वाली सड़क है।
0: वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों के बैकग्राउंड की जांच कर रही है कि कहीं इन्होंने इसी तरह की कोई घटना पहले तो अंजाम नहीं दी।
2: क्या क्या आइडेंटिफाई किया आपने अब तक, चूंकि अरेस्टिंग तो चार हो चुकी
3: है? जैसे ये आपको पता है कि कल रात को लगभग अराउंड 10:30 हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अराउंड 10:30 हम मेरे पर्सनल नंबर पे पहली बार जब ये जानकारी मुझे मिली, तब तक हमारी टीम की कुछ लोगों को भी ये वीडियो मिल चुका था, और अभी भी उस समय से लेकर अभी तक जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ये अनवरत रूप से तब से लेकर अभी तक मैं स्वयं लगा हुआ हूँ। ये जगह भी हम लोगों ने चिन्हित की, जो इस घटना में अभियुक्त थे उन लोगों को भी चिन्हित किया। उनमें से चार ही लोग थे वो लोग जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का पहले का भी आपराधिक इतिहास निकला है। उनके और कौन से लोग हैं, कौन लोग उनसे जुड़े हैं, उनके परिवार के सदस्यों का क्या बैकग्राउंड है, वो सब भी हम लोग अभी तक चेक कर रहे हैं। उस वीडियो में जो बच्ची है पीड़िता है, उनके साथ जो एक लड़का और दिख रहा है, उन लोगों की आइडेंटिटी भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रही है, हम लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं।
0: बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है वो कानून व्यवस्था की बीच सड़क पर नीलामी है। पहले जमुई और अब समस्तीपुर की घटना ने दिखा दिया है कि बिहार में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर खुलेआम बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता।
4: आईआईटी बॉम्बे में छात्र की सुइसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार प्रोफेसर डुल्ला के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है, तो वहीं सियासी पार्टियां भी आईआईटी के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
5: आईआईटी बॉम्बे इस वक्त सियासी जंग का नया अखाड़ा बन गया है, जहां आज कांग्रेस के कार्यकर्ता साहिल सुसाइड केस में प्रदर्शन करने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
6: आईआईटी पवई के बाहर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस जो है उनको अंदर डाल दिया।
7: हम आंदोलन नहीं, आंदोलन कर रहे। आप देखिए, आवाज उठाने पर भी पाबंदी लग रही है। मोदी सरकार में ये हो रहा है कि आवाज उठाने पर भी पाबंदी। हम तो आकर शोक जताने के लिए खड़े हैं। हम मांग कर रहे हैं कि भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार कर रही है सर।
5: उधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
8: जी बिल्कुल, राहुल जी ने परिवार से बात की, परिवार को कहा हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम साहिल को न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में, मुंबई में ये पहली बार घटना नहीं हुई है, ये तीन बार पहले भी घटना ऐसी हुई है और इसका हमने पूरी इंक्वायरी मांग की थी। हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का पूरी तरह से जो है वो आरएसएसकरण हो रहा है, यहाँ पे धर्मवाद चल रहा है, यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटी आपको दिखने को मिलेगी।
5: छात्र साहिल वाकोडे के माता पिता भी आईआईटी बॉम्बे गेट पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आजाद मैदान में तय जगह पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है, जिसे लेकर घमासान जारी है। इस बीच आज तक को एग्जामिनेशन सेंटर का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें साहिल मोबाइल में कुछ करता नजर आता है। इस बीच प्रोफेसर दुल्ला उसे देख लेते हैं और फिर उसे क्लास से बाहर ले जाते हैं। इसी एग्जाम को लेकर विवाद है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साहिल चैट जीपीटी पर पेपर अपलोड कर रहा था, जिसके बाद प्रोफेसर दुल्ला ने उसे टॉर्चर किया, जिसकी वजह से साहिल ने सुसाइड किया।
9: ऊंचे जाति का हो तुम, नीचे जाति का हो,
10: किसने बोला?
9: मेरे से बोला उसने। डुल्ला प्रोफेसर, ओ प्रॉपर्टी है ना उसका, क्या है वो डीन है ना वहाँ का, उसने उसको।
5: मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों का बयान दर्ज किया और इनमें उन 3 छात्रों के बयान दर्ज किए जो कथित तौर पर साहिल वाकोडे के करीबी थे। क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रोफेसर सूर्य नारायण दुल्ला का बयान दर्ज नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि वे उनसे पूछताछ करने से पहले डिजिटल सबूत इकट्ठा करना और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करना चाहते हैं। इस बीच आईआईटी बॉम्बे ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 11 अक्टूबर से शुरू होंगी। दिवेश सिंह, मुंबई आज तक।
4: चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बाद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, सलाह और चेतावनी दी।
11: एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग में मतभेद के दावों के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और वो सवाल किया जिस पर उनकी तरफ से सालों मंथन का दावा होता है।
12: 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। आप डर डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने, 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी।
11: राहुल ने कहा कि वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 50 साल से राजनीति देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा देश और विदेश में कहीं नहीं देखा कि किसी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ा हो।
13: इंदिरा गांधी जी बांग्लादेश का युद्ध जीतती हैं, देश के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2-3 साल में भयंकर एंटी इनकंबेंसी आती है। वाजपेयी जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी आती है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में जिसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी नहीं आई है।
11: राहुल गांधी के मुताबिक इस सवाल का जवाब वो चोरी है, एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिन पर अब खुद उनके साथी चुनाव आयुक्त सवाल उठा रहे हैं।
13: ज्ञानेश कुमार जी को बात समझ लेनी चाहिए, उनके 2 जूनियर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक प्रकार से उन्होंने बात एक्सेप्ट कर ली है कि इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, दिस इज ए क्राइम, ज्ञानेश कुमार शुड टर्न अप्रूवर, माय एडवाइस टू हिम।
11: राहुल गांधी ने अपने आरोपों को एक कड़ी से जोड़ते हुए कहा कि अगर वोट की चोरी होती है तो उससे कानून की चोरी होती है और कानून की चोरी के बाद संस्थाओं की चोरी होती है। उनके मुताबिक ये एक ऐसा सिलसिला है जो लगातार आगे बढ़ता है। अगर वोट ही खत्म हो गया तो फिर संविधान की ताकत भी खत्म हो जाएगी।
13: टू इलेक्शन कमिश्नर्स आर रेजिंग क्वेश्चंस ऑन दैट मैन। आई हैव बीन रेजिंग क्वेश्चंस, दोस क्वेश्चंस वर इग्नोर्ड। People of India believed it, but institutional framework of India was not interested. But now, two election commissioners, people, by the way, chosen by the leadership. Gyanesh Kumar was chosen by the Prime Minister of India, not by anybody less. He was chosen by Amit Shah. And now two election commissioners are saying that Mr. Gyanesh Kumar is responsible for the chaos, for the damage that has taken place to our voting.
11: Rahul Gandhi ke ye aarop us media report ke baad lagaye gaye, jisme Chunav Aayog mein matbhed ke daave kiye gaye, जिन्हें राहुल अपनी वोट चोरी के आरोप पर मुहर बताते हुए कह रहे हैं कि वो ना ज्ञानेश कुमार को छोड़ेंगे और ना ही पीएम मोदी को।
13: द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह आर बोथ गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर व्हाट हैज बीन डन विदाउट एनी डाउट। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह are at the top of this conspiracy and they are going to be investigated for what they have done to this country. This is an act against the Indian state. This is an act against India's people. And we cannot sit silent. We refuse to sit silent while this happens. Deshdrohis, because these are Deshdrohis. A person who attacks the vote, who fundamentally destroys India's democratic institution, is nothing other than a Deshdrohi. You cannot give him any other word. That's the word.
11: So Rahul keh rahe hain ki satta virodhi lehar loktantra ki ahem taakat hai. Aisa sare loktantrik deshon mein hota hai. Sirf Uttar Korea mein aisa nahi hota. भारत में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की कमान संभालने वाले ज्ञानेश कुमार अपने फर्ज का पालन नहीं कर रहे।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।